0: बदल दिया। शुक्रवार को योगी आदित्यनाथ मऊ में 392 करोड़ से अधिक की 114 परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करने पहुंचते हैं। विकास के मंच से विपक्ष पर जिस तरह योगी बरसते हैं, इसमें बड़ी राजनीतिक रणनीति छिपी है।
1: अब मैं कह सकता हूं, किसी माफिया में दुस्साहस नहीं, किसी गुंडे में दुस्साहस नहीं कि किसी पर्व और त्योहार में व्यवधान पैदा कर दे और उपद्रव पैदा कर दे। अगर कोई किसी रामलीला में, किसी यज्ञ और कथा में, किसी धार्मिक आयोजन में रामनवमी हो, शिवरात्रि हो, जन्माष्टमी हो, रक्षाबंधन हो, इन आयोजनों में अगर किसी ने व्यवधान डाला तो पर्व तो मनाई लेगा, लेकिन उसके बाद ये तय है कि रावण और कंस जैसी दुर्गति उसकी तय है जो व्यवधान डालने वाला है।
0: रावण और कंस वाला अंजाम मुख्यमंत्री उस मऊ की जमीन पर याद कराते हैं, जिस मऊ में साल 2005 में हुए दंगे से जुड़ा मुख्तार अंसारी का वीडियो आज भी लोग भूले नहीं, जिसमें मुख्तार अंसारी खुली जिप्सी में AK-47 लेकर घूमता दिखा था।
1: मऊ जनपद के लोग भूले नहीं होंगे, जिनकी उम्र 30-35 वर्ष से ऊपर है वे याद करें, 2005 में 21 वर्ष पहले इसी मऊ में कैसे भरत मिलाप कार्यक्रम के अवसर पर दंगा करके मऊ को जलाने का कुत्सित प्रयास हुआ था, कैसे सत्ता के संरक्षण में माफिया एक उत्सव भरे आस्था के केंद्र रामलीला के आयोजन में व्यवधान पैदा करके निर्दोष हिंदुओं का कत्लेआम कर रहे थे। सरकार मौन थी, क्योंकि सरकार ने उन माफियाओं के सामने घुटना टेका हुआ था।
0: मुख्तार अंसारी का इतिहास योगी इसलिए याद करा रहे हैं क्योंकि मुख्तार के विधायक बेटे अब्बास अंसारी भले योगी के मंच पर मौजूद रहे, ओम प्रकाश राजभर की पार्टी से टिकट लेकर जीते, लेकिन तब राजभर 2022 में अखिलेश यादव के साथ मिलकर चुनाव लड़े थे और मुख्तार अंसारी के भाई अफजाल जो गाजीपुर से सांसद है वो समाजवादी पार्टी के टिकट पर ही जीते थे। तो मुख्तार का दौर याद दिलाकर तब की सत्ता में रही समाजवादी पार्टी पर निशाना योगी आदित्यनाथ साधते हैं।
1: आज माफिया पिस्तौल लहराते हुए कोई धमका करके खुली जीप में चल करके किसी हिंदू को धमका नहीं सकता है, अब नहीं धमका सकता है।
0: असल में योगी इस वक्त दो रणनीति पर काम कर रहे हैं, अखिलेश की तरफ से पीडीए के लोगों के एनकाउंटर वाले आरोप का जवाब देना और पूर्वांचल की सीटों पर जाति के नाम पर नहीं बल्कि हिंदू के नाम पर वोट को एकजुट करना। इसी हफ्ते अखिलेश यादव ने योगी सरकार की सबसे मजबूत पिच यानी लॉ एंड ऑर्डर पर एनकाउंटर में जाति देख गोली चलाने का आरोप लगाया।
2: उत्तर प्रदेश में भाजपा सरकार एनकाउंटर के बहाने पीडीए को डराकर उसका हक मारना चाहती है। उत्तर प्रदेश में भाजपा सरकार जाति धर्म देखकर के इंटाउन करवाती है, इससे प्रदेश का सामाजिक सौहार्द बिगड़ता है। फर्जी इनकाउंटर नाकाम सरकार की पहचान है, जो सरकार नाकाम हो जाती है वो फर्जी इनकाउंटर का रास्ता अपनाती है।
0: इसी के जवाब में अब समाजवादी पार्टी के राज में अपराधियों के बोलबाले का दावा करते हुए 2027 का दांव योगी आदित्यनाथ चलते हैं।
1: अब कोई किसी गरीब की जमीन पर कब्जा नहीं कर सकता है, अब नहीं कर सकता है, अगर करेगा तो उसे पता है कि कब्जा करेगा पहले माफिया और गुंडे, पार्टी विशेष के गुंडे जबरन कब्जा करते थे गरीब की जमीन पर, व्यापारियों की प्रतिष्ठान पर, अब नहीं कर सकते। अब करेंगे तो उसे मालूम है कि बुलडोजर आएगा, संपत्ति को फिर से जब्त करवाएगा।
0: सरकारी डेटा बताता है कि मार्च 2017 से अब तक 17,043 एनकाउंटर अगर उत्तर प्रदेश में हुए हैं तो इसका सीधा सा मतलब है कि उत्तर प्रदेश में हर रोज 5 एनकाउंटर योगी राज में किया जा रहा है। जिस एनकाउंटर में अखिलेश यादव जाति गणित बैठाकर अपने मुताबिक वोट का बंटवारा चाहते हैं, वहां कानून व्यवस्था के दम पर जवाब योगी आदित्यनाथ देते हैं।
2: उत्तर प्रदेश में एनकाउंटर वर्चस्व की धाक जमाने के लिए कह जाते हैं, अपनी धाक बनी रहे, धाक से लोग डरे, इसलिए उत्तर प्रदेश में एनकाउंटर किए जा रहे हैं।
1: आपका एक वोट 500 वर्षों की गुलामी के कलंक को धो करके अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण कर देता है, ये वोट की ताकत है। आपका एक वोट काशी में काशी विश्वनाथ धाम का निर्माण कर देता है। आपका एक वोट बेटी और व्यापारी की सुरक्षा कर देता है। आपका एक वोट माफिया को मिट्टी में मिला करके सदैव के लिए उपद्रव मुक्त कर्फ्यू मुक्त प्रदेश बनाने में सफल हो जाता है।
0: पूर्वांचल में आने वाले मऊ में योगी आदित्यनाथ के आक्रामक होने, मुख्तारवादी राजनीति की याद दिलाने, एक वोट से मंदिर निर्माण की बात बताने की वजह खास है। इसीलिए पूर्वांचल का हिसाब समझिए, जहां 21 जिले आते हैं, कुल 130 विधानसभा सीटें हैं और 26 लोकसभा सीटें, जहां 2022 में NDA 77 सीट जीता था और विपक्ष को 53 सीटों पर जीत मिली थी। लेकिन पूर्वांचल का गणित क्या बदल रहा है? वजह यह कि 2019 से 2024 के बीच के लोकसभा चुनाव में देखें तो NDA जो 2019 में 21 सीट जीता था वो घटकर 2024 में 10 सीट पर आ गया, जबकि 2019 में एक सीट जीतने वाली समाजवादी पार्टी 15 सीट जीत जाती है और अखिलेश के साथ राहुल की पार्टी भी एक सीट जीतती है, मतलब NDA 10 और इंडिया गठबंधन 16। तो क्या पूर्वांचल की इसी सीट गणित को सुधारने में अब योगी आदित्यनाथ जुट गए हैं?
1: व्यवधान डाला तो पर्व तो मनाई लेगा, लेकिन उसके बाद तय है कि रावण और कंस जैसी दुर्गति उसकी तय है जो व्यवधान डालने वाला है।
3: क्या समाजवादी पार्टी महिलाओं के मुद्दे पर घिरने जा रही है, जहां एक तरफ उन्हीं की पार्टी की महिला नेता को आपसी विवाद में समाजवादी पार्टी के ही नेता बेरहमी से पीटते हैं, तो उनकी ही पार्टी से जीती महिला विधायक के घर पर हमले के आरोप भी पार्टी के ही नेता पर लगते हैं?
0: तारीख 28 मई, जगह मंडिया चंदौली उत्तर प्रदेश, घटना घर में घुसकर महिलाओं से मारपीट, पीड़ित समाजवादी पार्टी महिला मोर्चा की जिला प्रमुख और आरोपी समाजवादी पार्टी के ही नेता। CCTV वीडियो में दिखता है कि एक पुरुष एक महिला को बालों से घसीटते हुए पीट रहा है। अगले ही पल दो पुरुष और दो महिलाएं जमीन पर बेसुध महिला को पीटने लगते, एक दूसरी लड़की को भी पीटा गया, वो किसी तरह जान बचाकर भागी, लेकिन जमीन पर गिरी महिला को बुरी तरह पीटा जाता रहा, छोटी टेबल उठाकर उस पर जानलेवा हमला किया गया। महिला को बचाने की कोशिश कर रहे एक बुजुर्ग की भी बुरी तरह पिटाई होती है। करीब दो मिनट तक मारपीट के बाद लोग बाहर निकलते हैं, फिर एक शख्स लौटकर महिला के सिर पर हमला करने लगता है। बाहर से आई एक दूसरी महिला ने सहारा देकर पीड़ित महिला को यहां पर फिर बैठाया। मामला जब थाने पहुंचा तो पुलिस में दर्ज शिकायत में पता चला कि योजना के तहत जिस महिला की पिटाई की गई वो पीड़ित महिला समाजवादी पार्टी की महिला मोर्चा की जिला अध्यक्ष गार्गी पटेल है, जो OBC समुदाय से आती है, और इनके ऊपर हमला करने वाले जो लोग हैं उनमें समाजवादी पार्टी के नेता प्यारेलाल यादव, प्यारेलाल यादव की पत्नी उर्मिला यादव, प्यारेलाल यादव की बेटी डॉली यादव के अलावा परिवार के अमित यादव और मनोज यादव शामिल थे। पीड़ित गार्गी पटेल ने आरोप लगाया कि समाजवादी पार्टी के नेता सिद्धांत जायसवाल की साजिश के तहत ही उनके साथ मारपीट की गई। पता चला कि पीड़िता और आरोपी सभी प्रॉपर्टी का काम करते हैं और विवाद की एक वजह लेन देन भी है। लेकिन अब दूसरी तस्वीर देखिए, तारीख 26 मई 2026, जगह अमेठी, घटना घर में घुसकर हमले की कोशिश, पीड़ित समाजवादी पार्टी की ही विधायक जो अब BJP के करीब मानी जाती है, आरोपी समाजवादी पार्टी के नेता। रात के वक्त मुंह छिपाकर कुछ लोग गाली गलौज करते नजर आते हैं। ये सभी जिस दरवाजे को तोड़कर अंदर घुसने की कोशिश कर रहे हैं, ये घर समाजवादी पार्टी के अमेठी से विधायक और पूर्व कैबिनेट मंत्री गायत्री प्रजापति की पत्नी महाराजी प्रजापति का है। आरोप है कि रात में दो स्कॉर्पियो और बाइक पर सवार आए लोगों ने सोशल मीडिया पर हुए कमेंट को लेकर हमला करने की कोशिश की।
4: ये समाजवादी पार्टी के जो अपने आप कार्यकर्ता बताते हैं उसमें जयसिंह यादव हैं, जयसिंह यादव हैं, बलराम यादव खाजा भादर से हैं, शेर बहादुर यादव जो घटकौर से हैं, विपिन यादव जो कनका सिंहपुर से हैं, ब्रजेश यादव बैदिकपुर से हैं, ऐसे तमाम लोग हैं, अनुराग यादव रेवा से हैं, ऐसे तमाम लोग हैं जो मैं नाम प्रार्थना पत्र में लिख चुका हूँ। ये सारे लोग समाजवादी पार्टी से, इसमें कोई दो राय नहीं।
0: पीड़ित परिवार का कहना है कि आरोपी जयसिंह यादव समाजवादी पार्टी के सांसद के करीबी हैं। इन दोनों घटनाओं को लेकर अब सत्ता पक्ष की तरफ से समाजवादी पार्टी को महिला सुरक्षा के मसले पर घेरा जाने लगा है।
3: पश्चिम बंगाल में दो साल पहले बीजेपी को 2019 के मुकाबले 6 सीटें कम मिली थी, लेकिन दो साल बाद बीजेपी ने तृणमूल कांग्रेस से दोगुनी विधानसभा की सीटें जीतकर चुनाव जीत लिया। तृणमूल को जनता ने भले ही हरा दिया हो, लेकिन बंगाल में उसके खिलाफ जनता का गुस्सा शांत होने के बजाय बढ़ रहा है। शहर शहर कटमनी लेने के आरोपी नेताओं को जनता दौड़ा दौड़ा कर भगा रही है।
5: गुंडागर्दी, हिंसा, सिंडिकेट, भ्रष्टाचार, कट मनी, ये जो त्रास था बंगाल की जनता पर, हमारे नए मुख्यमंत्री के चार्ज लेते ही कुछ ही महीनों में ये सारा समाप्त हो जाएगा।
0: अमित शाह के इसी वादे को शुभेंदु अधिकारी पूरा करने में जुट गए। बदले बंगाल में जनता ने भी मोर्चा संभाल लिया। ये पश्चिम बंगाल का कूच विहार, जहां आम लोग लाउड स्पीकर से बंगाल में बदलाव का ऐलान कर रहे हैं। दावा कर रहे हैं कि तृणमूल कांग्रेस की जिस पंचायत समिति ने आवास योजना के नाम पर कमीशन वसूला है, उसे 4 जून तक वापस कर दिया जाएगा। सवाल है कि क्या ये बंगाल कट मनी की वापसी की शुरुआत?
6: टाका गुला जो नाम रिटर्न दीते भाई के तारीख दी 4 তারিখ, তো এরা কোনো খোঁজ খবর করে না। আমরা ওই নিয়ে পঞ্চায়েতের বাড়ি গেছিলাম ঘেরাও করতে।
0: কুচ বিহার মে কটমনি দেনে ওয়ালে লোগো নে তৃণমূল কংগ্রেস কি স্থানীয় পঞ্চায়েত সদস্য জ্যোৎস্না বর্মন কে ঘর পর জবরদস্ত বিরোধ প্রদর্শন কিয়া। আরোপ হ্যায় কি টিএমসি নেতাও নে আবাস যোজনা কে লাভার্থিও সে 5,000 সে লেকর 25,000 রুপয়ে তক কি কটমনি ওসুলি থি। धमकी दी गई थी कि अगर कटमनी नहीं दी तो आवास योजना की अगली किस्त रोक दी जाएगी, लेकिन 4 मई को राज्य में सत्ता बदलने के बाद स्थानीय लोगों ने अपना पैसा वापस मांगने के लिए विरोध प्रदर्शन शुरू किया, जिसके बाद दावा है टीएमसी के आरोपी नेताओं ने वसूली हुई कटमनी 4 जून तक लौटाने का वादा कर दिया है।
7: जिस प्रकार से टीएमसी के नेताओं के, कॉर्पोरेटर्स के, विधायकों के चेले चपाटों को जनता आड़े हाथ ले रही है, क्योंकि किसी भी सरकारी योजना में, आवास योजना या कोई भी और योजना में, लाभार्थी से ये कटमनी और करप्शन करते थे, पैसा लेते थे, घूस लेते थे, ब्राइब लेते थे, उन्हीं को उनका अधिकार देने के लिए 30,000, 20,000, 40,000 रुपए, और अब जनता का आक्रोश फूट पड़ा है।
0: बदले बंगाल की अब ये दूसरी तस्वीर देखिए, जिसमें टीएमसी के नेता से मारपीट होती है। कटमनी लेने के आरोपी टीएमसी नेता के कपड़े उतारकर चप्पल से जनता उन्हें पीटने लगती है। ये मामला बीरभूम जिले के दुबराजपुर नगर पालिका के वार्ड नंबर 6 का। आरोप है कि सरकारी आवास योजना में घर दिलाने के नाम पर आम लोगों से यहां पर 10,000 से 30,000 रुपए टीएमसी के राज में उनके नेताओं ने वसूल

0: करते थे, पैसा लेते थे, घूस लेते थे, ब्राइब लेते थे उन्हीं को उनका अधिकार देने के लिए, 30,000, 20,000, 40,000 रुपए। और अब जनता का आक्रोश फूट पड़ा है।
1: बदले बंगाल की अब ये दूसरी तस्वीर देखिए, जिसमें टीएमसी के नेता से मारपीट होती है। कटमनी लेने के आरोपी टीएमसी नेता के कपड़े उतारकर चप्पल से जनता उन्हें पीटने लगती है। ये मामला बीरभूम जिले के दुबराजपुर नगर पालिका के वार्ड नंबर 6 का आरोप है कि सरकारी आवास योजना में घर दिलाने के नाम पर आम लोगों से यहाँ पर 10,000 से 30,000 रुपए टीएमसी के राज में उनके नेताओं ने वसूले थे। इस घटना के बाद स्थानीय पार्षद भास्कर रूस समेत कई टीएमसी नेताओं के खिलाफ लोगों का गुस्सा फूटा। स्थानीय सूत्रों के मुताबिक लंबे समय से आवास का नाम टी गैलेक्सी हाउस है। बताया जाता है कि आलिशान महल नुमा घर बंगाल के उत्तर 24 परगना जिले के खरदहा विधानसभा क्षेत्र में टीएमसी के प्रभावशाली नेता का है, जिसने दावा है कि कटमनी लेकर न सिर्फ महल जैसा घर बनाया बल्कि अवैध संपत्ति जमा कर रखी है। इस वीडियो के आधार पर कहा जा रहा है कि यह आलिशान महल कटमनी के पैसे से बनाया गया, जिसमें जनता से जबरन वसूला गया पैसा लगा है। दावा है कि सत्ता का रौब दिखाकर अब तक तृणमूल कांग्रेस के नेता और बांदीपुर ग्राम पंचायत के उप प्रधान प्रसेनजीत साहा ने आम लोगों को धमकाकर खूब वसूली की और इस तरह की संपत्ति बनाई। वरना आप ही सोचिए ग्राम पंचायत के उप प्रधान की कितनी ही तनख्वाह रही होगी जिसमें वो इतना आलीशान घर बनवा सके। दावा है कि पार्टी की सरकार होने की वजह से टीएमसी के ऐसे नेताओं पर कोई कार्रवाई नहीं होती थी, लेकिन सरकार बदलते ही जनता चप्पल लेकर आरोपी नेताओं के पीछे दौड़ रही है। पहली नजर में भले ही लग रहा कि ऐसा क्यों हो रहा, लेकिन दशकों से अपनी गाढ़ी कमाई का पैसा कटमनी के तौर पर देने वाले लोगों को नई सरकार बनने के बाद दोषी नेताओं को सबक सिखाने का मौका मिल रहा है। जान बचाने के लिए कटमनी वसूलने वाले आरोपी टीएमसी नेताओं को कहना पड़ रहा है कि वो उसे वापस लौटाएंगे। पश्चिम बंगाल जनता के गुस्से की एक और बड़ी वजह तृणमूल कांग्रेस के नेताओं पर सरकारी राहत सामग्री लूटने का आरोप। उत्तर 24 परगना हिंगलगंज विधानसभा क्षेत्र के दुलदुली ग्राम पंचायत में राहत सामग्री टीएमसी के नेताओं के घर से मिली। अरजीत मंडल और तरुण मंडल नाम के आरोपी नेताओं की गिरफ्तारी की मांग को लेकर स्थानीय लोगों ने बड़ा प्रदर्शन किया। इस दौरान आरोपी नेताओं के घर से सरकारी राहत सामग्री मिली, जिसने दिखाया कि कैसे न सिर्फ सरकारी योजनाओं के बदले वसूली की जा रही बल्कि राहत सामग्री तक लूट ली जाती है। इसीलिए पश्चिम बंगाल में जनता आरोपी नेताओं के पीछे पड़ चुकी है।
2: यूपी के हमीरपुर में भी सिस्टम की नाकामी मजदूरों की मौत की वजह बनी है, जहां तेज हवाओं ने पुल के एक ही हिस्से को गिरा दिया, भ्रष्टाचार के पूरे खेल को बेपर्दा कर दिया। मामले में एक्शन लेते हुए जे को सस्पेंड कर दिया गया है, तो वहीं डीपीएम के खिलाफ विभागीय कार्रवाई शुरू कर दी गई है।

0: उत्तर प्रदेश का हमीरपुर बेतवा नदी के ऊपर बनता केवल यहाँ पुल नहीं गिरा, क्या पुल निर्माण से जुड़ा भरोसा भी गिर गया। हजारों क्विंटल लोहे का वजन, हजारों क्विंटल वजनी सीमेंट का स्लैब, पुल के बीचों बीच का निर्माणाधीन हिस्सा फिर भी गिर जाता है। क्या बनने से पहले ही टूटने का कारण भ्रष्टाचार है, या फिर 40 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चली आंधी लाखों क्विंटल वजनी पुल के हिस्से को गिरा सकती है। जिस पुल के बनते बनते गिर जाने से 6 मजदूरों की जान चली गई, 6 गरीब परिवारों पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा, वहां राहत बचाव के लिए पहुंचे पुलिस वाले हंसते हुए नजर आते हैं। और इन सब के बीच हमीरपुर के SP निदान शेखर पाठक सबसे पहले ये दलील तुरंत दे देते हैं कि पुल गिरने की वजह तेज हवा हो सकती है।
1: जो कारण है वो अभी जो है जांच उपरांत जो है बताए क्या है, लेकिन जैसे कि कल एडवाइजरी जारी की गई थी और कल जो है पानी बहुत बरस रहा था और विंड्स और जो हवा बहुत तेज चल रही थी, तो उसकी वजह से जो प्रथम दृष्टया जो बात सामने आ रही है कुछ इस प्रकार है कि शायद उस वजह से हुआ हो, परंतु विस्तृत रूप से
0: जाने से 6 मजदूरों की जान चली गई, 6 गरीब परिवारों पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा, वहां राहत बचाव के लिए पहुंचे पुलिस वाले हंसते हुए नजर आते हैं। और इन सब के बीच हमीरपुर के SP निदान शेखर पाठक सबसे पहले ये दलील तुरंत दे देते हैं कि पुल गिरने की वजह तेज हवा हो सकती है।
1: जो कारण है वो अभी जो है जांच उपरांत जो है बताए क्या है, लेकिन जैसे कि कल एडवाइजरी जारी की गई थी और कल जो है पानी बहुत बरस रहा था और विंड्स और जो हवा बहुत तेज चल रही थी, तो उसकी वजह से जो प्रथम दृष्टया जो बात सामने आ रही है कुछ इस प्रकार है कि शायद उस वजह से हुआ हो, परंतु विस्तृत रूप से जांच की।
0: जब जांच के बाद ही पता चलना है तो फिर आंधी के नाम पर पुल गिरने की पर्ची फाड़ने वाली जल्दबाजी क्यों?
2: ने आप में एक सवाल फिलहाल बना हुआ है। बड़ी बात यह भी है कि आखिर किस प्रकार की गुणवत्ता थी। अगर आप इस पुल को देखें तो काफी मोटे पिलर्स और काफी सख्त मटेरियल ऐसा लगता है इस्तेमाल हुआ, लेकिन उसके बाद भी आखिर एक तेज आंधी कैसे एक निर्माणाधीन पुल को गिरा देती है, ये सवाल जरूर पूछे जाएंगे। आप तस्वीरें देखें अगर पीछे की, तो वो एक एंड है जहां पर एक चंक को वहां पर लगाया जाने की प्रक्रिया उस वक्त चल रही थी जब ये हादसा हुआ। यहां के ग्रामीण ये भी बता रहे हैं कि ये कुल मिलाकर रात वक्त के वक्त भी यहां पर कार्य चल रहा था। ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है।
3: इसकी जांच के लिए जिला प्रशासन ने जिलाधिकारी से मेरी वार्ता हुई, उन्होंने अभी एक टीम का गठन किया है जिसमें एक्सपर्ट्स भी हैं, जांच के बाद ही टिप्पणी की जानी उचित होगी।
4: जो लोग भी इसमें दोषी होंगे, कंपनी के लोग दोषी होंगे या सरकार के लोग दोषी होंगे, जांच होगी। माननीय मुख्यमंत्री जी ने संज्ञान लिया है, जो लोग दोषी होंगे उनके ऊपर कड़ी कार्रवाई, ऐसा मुझे मानना है कि सरकार करे।
0: मौसम विभाग ने हमीरपुर के लिए गुरुवार शाम को ऑरेंज वार्निंग दी थी, मतलब सतर्क रहना था, लेकिन न पुल बनाने वाला ठेकेदार, न सेतु निगम के इंजीनियर और अधिकारी, न जिला प्रशासन, कोई भी सतर्क नहीं था। दावा है कि गर्मी की वजह से दिन में न करके रात में पुल का काम होता रहा, जबकि आंधी तूफान का अलर्ट पहले ही आ चुका था।

0: यहाँ पर जो ये सेतु बन रहा था इसमें कुछ एक सेक्शन गिर गया था रात को तकरीबन 2 से 2:30 बजे के बीच में जो हमें सूचना मिली। इस सेक्शन के ऊपर कुछ कर्मचारी थे, कुछ लेबर थे जो काम कर रहे थे।
1: पुल गिरा तो अखिलेश यादव ने सवाल उठाया, लिखा कि जो पुल हवा से टूट जा रहे हैं जब उन पर ट्रैफिक चलेगा तो क्या होगा, ये कल्पना ही डर पैदा करती है।
2: क्या इसकी गुणवत्ता बेहतर नहीं थी या जुड़ाव जहां से हो रहा था उसकी गुणवत्ता बेहतर नहीं थी? ये जो गुणवत्ता वाला एंगल है इस पर जरूर सवाल उठेंगे, उठने भी चाहिए, क्योंकि 6 मासूम जाने इसमें गई हैं।
3: ये जो सेगमेंट ऊपर से नीचे आए हैं होता क्या है, इनके बीच में एक तार पड़ता है जिससे इनका कसाव होता है आपस में। तार का पूर्ण रूप से कसाव नहीं हो पाया था, कारण कि निर्माणाधीन है। जब पूरे सेगमेंट रखेंगे और तब उसका कसाव होगा तो स्वाभाविक है पुल फिर अपनी जगह स्थायी होता है और उसमें कोई डिस्टरबेंस नहीं होती है, कोई हवा आए पानी आए।
1: जांच से पता चलेगा कि ये पुल वाकई केवल तेज आंधी में गिर गया या फिर आंधी को कटघरे में डालकर कुछ लोग अपने भ्रष्टाचार को मजबूती से खड़ा करने में जुटे हैं। समर्थ श्रीवास्तव, हमीरपुर, आज तक।
4: अब बात करेंगे स्टंटबाजों की, जिन्हें यूपी पुलिस ने सबक सिखाया है। गंगा एक्सप्रेसवे पर गाड़ियों के साथ जिंदगी से खिलवाड़ करने वाले रीलबाज अब कान पकड़कर रील बनाने से तौबा कर रहे हैं।

0: दौलत का नशा जब सर पर सवार होता है तो आदमी ऐसी हरकत करता है। ये अमीरों की बिगड़ी हुई औलादे जो अपने साथ साथ दूसरों की जिंदगी से भी खेल रही। ये नया नया शुरू हुआ मेरठ से प्रयागराज को जोड़ने वाला गंगा एक्सप्रेसवे है और इसी एक्सप्रेसवे पर ये युवक स्टंट कर रहे हैं। महंगी महंगी गाड़ियां हैं, थार, फॉर्च्यूनर, स्कॉर्पियो और भी महंगी गाड़ियां। बीच में गाड़ी है जिसका सनरूफ खुला हुआ है, उस पर चढ़ा हुआ आदमी वीडियो बना रहा है और उसके चारों ओर ये महंगी गाड़ियां चक्कर लगा रही हैं। सोचिए, ये वो एक्सप्रेसवे है जिस पर स्पीड लिमिट 100 से 120 किलोमीटर प्रति घंटा है। यहाँ किसी बड़े हादसे को न्योता दिया जा रहा है। काफी देर तक स्टंट करने के बाद डिवाइडर पर लगी फुलवारी को कुचलते हुए ये सड़क के दूसरी तरफ गिर गए। आधे घंटे तक हुड़दंग करने के बाद टोल कर्मियों से इन्होंने बदतमीजी की और बैरियर तोड़कर भाग गए। वीडियो वायरल हुआ तो प्रशासन एक्शन में आया। ये जिन गाड़ियों का दम भर रहे थे उसी के आगे कान पकड़कर अब माफी मांग रहे हैं।
1: सीसीटीवी का अवलोकन कर गाड़ियों के नंबर आइडेंटिफाई किए गए, वह इन गाड़ियों को जो है सीज किया गया थाना खरकौदा द्वारा। वह इनके चालक जो है उनके विरुद्ध अवश्य विधिक कार्रवाई थाना खरकौदा पर की जा रही है।
0: उम्मीद है यह सबक है उन रीलबाजों के लिए जो चंद व्यूज के लिए अपनी और दूसरों की जान के साथ खिलवाड़ करते हैं। उस्मान चौधरी, मेरठ, आज तक।
2: इसी के साथ हम रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आज तक।
3: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।
4: ब्रिंग ऑन द ऑफ रोड, ब्रिंग होम अ न्यू होंडा विद अ ग्रेट डील ऑन योर फेवरेट होंडा व्हीकल्स। Conquer trails and back roads in cars built for exploring. With the rugged Honda Pilot, Ridgeline, CRV, and Passport, the road might stop, but you're not done. All from the 2025 Kelley Blue Book Best Value brand.
5: Based on 2025 Consumer Choice Awards from Kelley Blue Book, visit kbb.com for more information.
6: The music you love is all right here on TuneIn, bringing you good vibes and the hottest hits. But are you ready to amp things up even more? Just upgrade to TuneIn Premium for all of our exclusive music channels, completely commercial free. So you get more of today's hits. More country roads. And everything else. Hear it all here, commercial free, on TuneIn.
3: Presented by पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।

नीट कांड पर राहुल गांधी का सरकार पर धावा। वीडियो जारी करके कहा मोदी पर भारत का युवा नहीं करता भरोसा। सुप्रीम कोर्ट ने भी पूछा केंद्र से गड़बड़ी कहां शुरू हुई और कौन जिम्मेदार। यूपी में माफियाओं पर गरजे योगी आदित्यनाथ, कहा त्योहारों पर उपद्रव मचाने वालों की रावण कंस जैसी होगी दुर्गति। समाजवादी पार्टी के तंज, चुनाव के वक्त करते हैं हिंदू मुसलमान। कर्नाटक में आज विधायक दल की बैठक में नेता चुने जाएंगे। डीके शिवकुमार नई सरकार से पहले कल दिल्ली में राहुल गांधी से की मुलाकात। ईरान से डील के करीब पहुंचने के ट्रंप के दावे को तेहरान ने किया खारिज। अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा था हम फैसले के करीब हटाएंगे नौसैनिक नाकेबंदी। और आईपीएल के फाइनल में पहुंची गुजरात टाइटंस, दूसरे क्वालिफायर में राजस्थान को 7 विकेट से हराया। रविवार को अहमदाबाद में बेंगलुरु के साथ मुकाबला।

0: नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक और आपके साथ मैं हूं शशि शर्मा। बात करेंगे नीट परीक्षा पेपर लीक मामले की, जिसे लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई है। कोर्ट ने एक बार फिर से पेपर कराने वाली संस्था एनटीए से सवाल किया है कि आखिर कब और कैसे पेपर लीक जैसी समस्या का समाधान निकलेगा।
1: सवाल नीट के लाखों छात्रों के भविष्य का है, सवाल परीक्षा कराने वाली संस्थाओं का है। आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई तो एक बार फिर एनटीए की भूमिका सवालों के घेरे में नजर आई। ऐसे मामलों में जब तक जवाबदेही तय नहीं की जाएगी, ये घटनाएं रुकेंगी नहीं। यूपीएससी में तो ऐसी समस्या नहीं आई, एनटीए को उनसे सीखने की जरूरत है।
2: सुप्रीम कोर्ट ने खुद ने बोला मैटर स्टार्ट होते ही कि अकाउंटेबिलिटी एक बहुत बहुत इम्पोर्टेंट एरिया है, बिकॉज अगर कोई अकाउंटेबल ही नहीं होगा तो एट एवरी लेवल ये बार बार होने के चांसेस ज्यादा बढ़ जाए।
1: सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कोर्ट को बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद इस मामले पर नजर रख रहे हैं ताकि कोई चूक ना हो। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने पेपर लीक के बाद बड़े लेवल पर सुरक्षा सुधार की बात कोर्ट के सामने रखी। पेपर सेट करने वालों से लेकर मॉडरेटरों, जांचकर्ताओं, अनुवादकों, प्रूफ रीडरों के लिए रैंड रोटेशन नीति लागू की जा रही है। अनुवाद जैसे काम के लिए 85% काम में एआई का इस्तेमाल हो रहा है। लीक प्रूफ परीक्षा कराने के लिए आगे 1000 सरकारी सुरक्षित परीक्षा केंद्र बनाए जा रहे हैं। क्लाउड आधारित बुनियादी ढांचे में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग से लेकर ब्लॉकचेन का उपयोग किया जा रहा है। उन्नत साइबर सिक्योरिटी और नेक्स्ट जेन फायरवॉल लगाए जा रहे हैं।
3: नीट यूजी परीक्षा में पेपर लीक के मामले को लेकर पूरे देश में बवाल मचा है। उधर संसद में संसदीय समिति पूछताछ कर रही है, इधर सुप्रीम कोर्ट में इस मामले की अहम सुनवाई हुई, जिसमें सरकार ने फिर वही दोहराया कि अब ऐसा नहीं होगा, अब सारी चीजें दुरुस्त होंगी, कील कांटे दुरुस्त कर लिए गए हैं और अब जो एग्जाम होंगे वो बिल्कुल फुल प्रूफ होंगे, जिसमें किसी भी तरह की गड़बड़ी की गुंजाइश होगी ही नहीं।
1: हाई पावर्ड कमेटी के अध्यक्ष राधा कृष्णन व्यक्तिगत रूप से आज की सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट में पेश हुए। केस की सुनवाई कर रहे जस्टिस नरसिम्हा ने शिक्षा मंत्रालय से नीट यूजी परीक्षाओं की जांच प्रक्रिया का ब्यौरा मांगा है। संजय शर्मा, दिल्ली आज तक।
0: और अब आपको उत्तर प्रदेश की राजनीति से दिखाते हैं, जहां मुख्यमंत्री पूर्वांचल के मऊ पहुंचे थे, विकास परियोजनाओं की सौगात उन्होंने दी, लेकिन फिर योगी ने आक्रामक होकर विपक्ष पर वार किया, बिना नाम लिए मुख्तारवादी राजनीति से खबरदार किया। क्या इसकी वजह पूर्वांचल में बीजेपी का 2024 में सीट और वोट घटना है, जिसकी 2027 वाली किलेबंदी में योगी जुट चुके हैं।
4: समाजवादी पार्टी तो माफिया और गुंडों के सामने नतमस्तक थी, किसी माफिया में तो साहस नहीं।

0: में तो सास नहीं कि किसी पर्व और त्योहार में व्यवधान पैदा कर दे और पत्रों पैदा कर दे। माफिया पिस्तौल लहराते हुए कोई धमका करके खुली जीप में चल करके किसी हिंदू को धमका नहीं सकता है। रावण और कंस जैसी दुर्गति उसकी तय है जो व्यवधान डालने वाला है।
1: क्या अचानक योगी आदित्यनाथ ने 2027 के रण में गियर बदल दिया? शुक्रवार को योगी आदित्यनाथ मऊ में 392 करोड़ से अधिक की 114 परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करने पहुंचते हैं। विकास के मंच से विपक्ष पर जिस तरह योगी बरसते हैं, इसमें बड़ी राजनीतिक रणनीति छिपी है।
0: अब मैं कह सकता हूं, किसी माफिया में दुस्साहस नहीं, किसी गुंडे में दुस्साहस नहीं कि किसी पर्व और त्योहार में व्यवधान पैदा कर दे और उपद्रव पैदा कर दे। अगर कोई किसी रामलीला में, किसी यज्ञ और कथा में, किसी धार्मिक आयोजन में रामनवमी हो, शिवरात्रि हो, जन्माष्टमी हो, रक्षाबंधन हो, इन आयोजनों में अगर किसी ने व्यवधान डाला तो पर्व तो मनाई लेगा, लेकिन उसके बाद ये तय है कि रावण और कंस जैसी दुर्गति उसकी तय है जो व्यवधान डालने वाला है।
1: रावण और कंस वाला अंजाम मुख्यमंत्री उस मऊ की जमीन पर याद कराते हैं, जिस मऊ में साल 2005 में हुए दंगे से जुड़ा मुख्तार अंसारी का वीडियो आज भी लोग भूले नहीं, जिसमें मुख्तार अंसारी खुली जिप्सी में AK-47 लेकर घूमता दिखा था।
0: मऊ जनपद के लोग भूले नहीं होंगे, जिनकी उम्र 30-35 वर्ष से ऊपर है, वे याद करें 2005 में 21 वर्ष पहले इसी मऊ में कैसे भरत मिलाप कार्यक्रम के अवसर पर दंगा करके मऊ को जलाने का कुत्सित प्रयास हुआ था, कैसे सत्ता के संरक्षण में माफिया एक उत्सव भरे आस्था के केंद्र रामलीला के आयोजन में व्यवधान पैदा करके निर्दोष हिंदुओं का कत्लेआम कर रहे थे। सरकार मौन थी, क्योंकि सरकार ने उन माफियाओं के सामने घुटना टेका हुआ था।
1: मुख्तार अंसारी का इतिहास योगी इसलिए याद करा रहे हैं क्योंकि मुख्तार के विधायक बेटे अब्बास अंसारी भले योगी के मंच पर मौजूद रहे, ओम प्रकाश राजभर की पार्टी से टिकट लेकर जीते हैं, लेकिन तब राजभर 2022 में अखिलेश यादव के साथ मिलकर चुनाव लड़े थे और मुख्तार अंसारी के भाई अफजाल जो गाजीपुर से सांसद है वो समाजवादी पार्टी के टिकट पर ही जीते थे। तो मुख्तार का दौर याद दिलाकर तब की सत्ता में रही समाजवादी पार्टी पर निशाना योगी आदित्यनाथ साधते हैं।
0: आज माफिया पिस्तौल लहराते हुए कोई धमका करके खुली जीप में चल करके किसी हिंदू को धमका नहीं सकता है, अब नहीं धमका सकता है।
1: असल में योगी इस वक्त दो रणनीति पर काम कर रहे हैं, अखिलेश की तरफ से पीडीए के लोगों के एनकाउंटर वाले आरोप का जवाब देना और पूर्वांचल की सीटों पर जाति के नाम पर नहीं बल्कि हिंदू के नाम पर वोट को एकजुट करना। इसी हफ्ते अखिलेश यादव ने योगी सरकार की सबसे मजबूत पिच यानी लॉ एंड ऑर्डर पर एनकाउंटर में जाति देख गोली चलाने का आरोप लगाया।
2: उत्तर प्रदेश में भाजपा सरकार एनकाउंटर के बहाने पीडीए को डराकर उसका हक मारना चाहती है। उत्तर प्रदेश में भाजपा सरकार जाति धर्म देखकर के एनकाउंटर करवाती है, इससे प्रदेश का सामाजिक सौहार्द बिगड़ता है। फर्जी एनकाउंटर नाकाम सरकार की पहचान है। जो सरकार नाकाम हो जाती है वो फर्जी एनकाउंटर का रास्ता अपनाती है।
1: इसी के जवाब में अब समाजवादी पार्टी के राज में अपराधियों के बोलबाले का दावा करते हुए 2027 का दांव योगी आदित्यनाथ चलते हैं।
0: अब कोई किसी गरीब की जमीन पर कब्जा नहीं कर सकता है, अब नहीं कर सकता है। अगर करेगा तो उसे पता है कि कब्जा

0: करेगा। पहले माफिया और गुंडे, पार्टी विशेष के गुंडे जबरन कब्जा करते थे गरीब की जमीन पर, व्यापारियों की प्रतिष्ठान पर, अब नहीं कर सकते। अब करेंगे तो उसे मालूम है कि बुलडोजर आएगा, संपत्ति को फिर से जब्त करवाएगा।
1: सरकारी डेटा बताता है कि मार्च 2017 से अब तक 17,043 एनकाउंटर अगर उत्तर प्रदेश में हुए हैं, तो इसका सीधा सा मतलब है कि उत्तर प्रदेश में हर रोज 5 एनकाउंटर योगी राज में किया जा रहा। जिस एनकाउंटर में अखिलेश यादव जाति गणित बैठा कर अपने मुताबिक वोट का बंटवारा चाहते हैं, वहाँ कानून व्यवस्था के दम पर जवाब योगी आदित्यनाथ देते हैं।
2: उत्तर प्रदेश में एनकाउंटर वर्चस्व की धाक जमाने के लिए कह जाते हैं, अपनी धाक बनी रहे, धाक से लोग डरे, इसलिए उत्तर प्रदेश में एनकाउंटर किए जा रहे हैं।
0: आपका एक वोट 500 वर्षों की गुलामी के कलंक को धो करके अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण कर देता है। ये वोट की ताकत है। आपका एक वोट काशी में काशी विश्वनाथ धाम का निर्माण कर देता है। आपका एक वोट बेटी और व्यापारी की सुरक्षा कर देता है। आपका एक वोट माफिया को मिट्टी में मिला करके सदैव के लिए उपद्रव मुक्त, कर्फ्यू मुक्त प्रदेश बनाने में सफल हो जाता है।
1: पूर्वांचल में आने वाले मऊ में योगी आदित्यनाथ के आक्रामक होने, मुख्तारवादी राजनीति की याद दिलाने, एक वोट से मंदिर निर्माण की बात बताने की वजह खास है। इसीलिए पूर्वांचल का हिसाब समझिए, जहां 21 जिले आते हैं, कुल 130 विधानसभा सीटें हैं और 26 लोकसभा सीटें, जहां 2022 में एनडीए 77 सीट जीता था और विपक्ष को 53 सीटों पर जीत मिली थी। लेकिन पूर्वांचल का गणित क्या बदल रहा है? वजह ये कि 2019 से 2024 के बीच के लोकसभा चुनाव में देखें तो एनडीए जो 2019 में 21 सीट जीता था, वो घटकर 2024 में 10 सीट पर आ गया, जबकि 2019 में एक सीट जीतने वाली समाजवादी पार्टी 15 सीट जीत जाती है और अखिलेश के साथ राहुल की पार्टी भी एक सीट जीतती है, मतलब एनडीए 10 और इंडिया गठबंधन 16। तो क्या पूर्वांचल की इसी सीट गणित को सुधारने में अब योगी आदित्यनाथ जुट गए हैं?
0: व्यवधान डाला तो पर्व तो मनाई लेगा, लेकिन उसके बाद ये तय है कि रावण और कंस जैसी दुर्गति उसकी तय है जो व्यवधान डालने वाला है।
3: क्या समाजवादी पार्टी महिलाओं के मुद्दे पर घिरने जा रही है? जहां एक तरफ उन्हीं की पार्टी के महिला नेता को आपसी विवाद में समाजवादी पार्टी के ही नेता बेरहमी से पीटते हैं, तो उनकी ही पार्टी से जीती महिला विधायक के घर पर हमले का आरोप भी पार्टी के ही नेता पर लगता है।
1: तारीख 28 मई, जगह मनिया चंदौली उत्तर प्रदेश। घटना, घर में घुसकर महिलाओं से मारपीट। पीड़ित समाजवादी पार्टी महिला मोर्चा की जिला प्रमुख और आरोपी समाजवादी पार्टी के ही नेता। सीसीटीवी वीडियो में दिखता है कि एक पुरुष एक महिला को बालों से घसीटते हुए पीट रहा है। अगले ही पल दो पुरुष और दो महिलाएं जमीन पर बेसुध महिला को पीटने लगते। एक दूसरी लड़की को भी पीटा गया, वो किसी तरह जान बचाकर भागी, लेकिन जमीन पर गिरी महिला को बुरी तरह पीटा जाता रहा। छोटी टेबल उठाकर उस पर जानलेवा हमला किया गया। महिला को बचाने की कोशिश कर रहे एक बुजुर्ग की भी बुरी तरह पिटाई होती। करीब दो मिनट तक मारपीट के बाद लोग बाहर निकलते हैं, फिर एक शख्स लौटकर महिला के सिर पर हमला करने लगता है। बाहर से आई एक दूसरी महिला ने सहारा देकर पीड़ित महिला को यहां पर फिर बैठाया। मामला जब थाने पहुंचा तो पुलिस में दर्ज शिकायत में पता चला कि योजना के तहत जिस महिला की पिटाई की गई, वो पीड़ित महिला समाजवादी पार्टी की महिला मोर्चा की जिला अध्यक्ष गार्गी पटेल है, जो ओबीसी समुदाय से आती है, और इनके ऊपर हमला करने वाले जो लोग हैं उनमें समाजवादी पार्टी के नेता प्यारेलाल यादव, प्यारेलाल यादव की पत्नी उर्मिला यादव, प्यारेलाल यादव की बेटी डॉली यादव के अलावा परिवार के अमित यादव और मनोज यादव शामिल थे। पीड़ित गार्गी पटेल ने आरोप लगाया कि समाजवादी पार्टी के नेता सिद्धांत जायसवाल की साजिश के तहत ही उनके साथ मारपीट की गई। पता चला कि पीड़िता और आरोपी सभी प्रॉपर्टी का काम करते हैं और विवाद की एक वजह लेन देन भी है। लेकिन अब दूसरी तस्वीर देखिए, तारीख 26 मई 2026, जगह अमेठी, घटना घर में घुसकर हमले की कोशिश, पीड़ित समाजवादी पार्टी की विधायक जो अब बीजेपी के करीब मानी जाती है, आरोपी समाजवादी पार्टी के नेता। रात के वक्त मुंह छिपाकर कुछ लोग गाली गलौज करते नजर आते हैं। ये सभी जिस दरवाजे को तोड़कर अंदर घुसने की कोशिश कर रहे हैं, ये घर समाजवादी पार्टी के अमेठी से विधायक और पूर्व कैबिनेट मंत्री गायत्री प्रजापति की पत्नी महाराजी प्रजापति का है। आरोप है कि रात में दो स्कॉर्पियो और बाइक पर सवार आए लोगों ने सोशल मीडिया पर हुए कमेंट को लेकर हमला करने की कोशिश की।
4: ये समाजवादी पार्टी के जो अपने आप कार्यकर्ता बताते हैं, उसमें जयसिंह यादव हैं, बलराम यादव खाजा भादर से हैं, शेर बहादुर यादव जो घटकौर से हैं, विपिन यादव जो कनका सिंहपुर से हैं, ब्रजेश यादव बैदिकपुर से हैं, ऐसे तमाम लोग हैं, अनुराग यादव रेबा से हैं, ऐसे तमाम लोग हैं जो मैं नाम प्रार्थना पत्र में लिख चुका हूं। ये सारे लोग समाजवादी पार्टी से, इसमें कोई दो राय नहीं।
1: पीड़ित परिवार का कहना है कि आरोपी जयसिंह यादव समाजवादी पार्टी के सांसद के करीबी हैं। इन दोनों घटनाओं को लेकर अब सत्ता पक्ष की तरफ से समाजवादी पार्टी को महिला सुरक्षा के मसले पर घेरा जाने लगा है।
3: पश्चिम बंगाल की बात करेंगे, क्योंकि पश्चिम बंगाल में दो साल पहले बीजेपी को 2019 के मुकाबले 6 सीटें कम मिली, लेकिन दो साल बाद बीजेपी ने तृणमूल कांग्रेस से दोगुनी विधानसभा सीटें जीतकर चुनाव जीत लिया। तृणमूल को जनता ने भले ही हरा दिया हो, लेकिन बंगाल में उसके खिलाफ जनता का गुस्सा शांत होने का नाम नहीं ले रहा, लगातार ये गुस्सा बढ़ रहा है। शहर शहर कटमनी लेने के आरोपी नेताओं को जनता दौड़ा दौड़ा कर भगा रही है।
5: गुंडागर्दी, हिंसा, सिंडिकेट, भ्रष्टाचार, कटमनी, ये जो त्रास था बंगाल की जनता पर, हमारे नए मुख्यमंत्री के चार्ज लेते ही कुछ ही महीनों में ये सारा समाप्त हो जाएगा।
1: अमित शाह के इसी वादे को शुभेंदु अधिकारी पूरा करने में जुट गए। बदले बंगाल में जनता ने भी मोर्चा संभाल लिया। ये पश्चिम बंगाल का कूच विहार, जहां आम लोग लाउड स्पीकर से बंगाल में बदलाव का ऐलान कर रहे हैं, दावा कर रहे हैं कि तृणमूल कांग्रेस की जिस पंचायत समिति ने आवास योजना के नाम पर कमीशन वसूला है, उसे 4 जून तक वापस कर दिया जाएगा। सवाल है कि क्या ये बंगाल कटमनी की वापसी की शुरुआत?
6: ওদের টাকা গুলা যেন আমরা রিটার্ন দিতে পাই, আমাদেরকে তারিখ দিছিল একটা 4 তারিখ, তো এরা কোনো খোঁজ খবর করে না। আমরা ওই নিয়ে পঞ্চায়েতের বাড়ি গেছিলাম ঘেরাও করতে।
1: কুচবিহার में कटमनी देने वाले लोगों ने तृणमूल कांग्रेस की स्थानीय पंचायत सदस्य ज्योत्सना बर्मन के घर पर जबरदस्त विरोध प्रदर्शन किया। आरोप है कि टीएमसी नेताओं ने आवास योजना के लाभार्थियों से 5,000 से लेकर 25,000 रुपए तक की कटमनी वसूली थी। धमकी दी गई थी कि अगर कटमनी नहीं दी तो आवास योजना की अगली किस्त रोक दी जाएगी। लेकिन 4 मई को राज्य में सत्ता बदलने के बाद स्थानीय लोगों ने अपना पैसा वापस मांगने के लिए विरोध प्रदर्शन शुरू किया, जिसके बाद दावा है टीएमसी के आरोपी नेताओं ने वसूली हुई कटमनी 4 जून तक लौटाने का वादा कर दिया है।
7: जिस प्रकार से टीएमसी के नेताओं के, कॉर्पोरेटर्स के, विधायकों के चेले चपाटों को जनता आड़े हाथ ले रही है, क्योंकि किसी भी सरकारी योजना में, आवास योजना या कोई भी और योजना में, लाभार्थी से ये कटमनी और करप्शन करते थे, पैसा लेते थे, घूस लेते थे, ब्राइब लेते थे उन्हीं को उनका अधिकार देने के लिए 30,000, 20,000, 40,000 रुपए, और अब जनता का आक्रोश फूट पड़ा है।
1: बदले बंगाल की अब ये दूसरी तस्वीर देखिए, जिसमें टीएमसी के नेता से मारपीट होती है। कटमनी लेने के आरोपी टीएमसी नेता के कपड़े उतार कर चप्पल से जनता उन्हें पीटने लगती है। ये मामला बीरभूम जिले के दुबराजपुर नगर पालिका के वार्ड नंबर 6 का। आरोप है कि सरकारी आवास योजना में घर दिलाने के नाम पर आम लोगों से यहां पर 10,000 से 30,000 रुपए टीएमसी के राज में उनके नेताओं ने वसूले थे। इस घटना के बाद स्थानीय पार्षद भास्कर रूस समेत कई टीएमसी नेताओं के खिलाफ लोगों का गुस्सा फूटा। स्थानीय सूत्रों के मुताबिक लंबे समय से आवास योजना का लाभ दिलाने का भरोसा देकर पैसे लेने की शिकायत सामने आती रही। बुधवार को अचानक नाराज लोग पार्षद के घर पहुंचे। हालात तनावपूर्ण होता देख भास्कर रूस वहां से निकल गया। मौके पर मौजूद उनके करीबी दूसरे नेता संजय गड़ाई को लेकर लोगों का विरोध बढ़ गया। आरोप है कि उत्तेजित भीड़ ने उनके साथ मारपीट की है। पश्चिम बंगाल में जनता का गुस्सा सातवें आसमान पर क्यों है, उसे समझने के लिए इस आलीशान घर को देखिए जिसका नाम टी गैलेक्सी हाउस है। बताया जाता है कि आलीशान महलनुमा घर बंगाल के उत्तर 24 परगना जिले के खरदहा विधानसभा क्षेत्र में टीएमसी के प्रभावशाली नेता का है, जिसने दावा है कि कटमनी लेकर न सिर्फ महल जैसा घर बनाया बल्कि अवैध संपत्ति जमा कर रखी है। इस वीडियो के आधार पर कहा जा रहा है कि यह आलीशान महल कटमनी के पैसे से बनाया गया जिसमें जनता से जबरन वसूला गया पैसा लगा है। दावा है कि सत्ता का रौब दिखाकर अब तक तृणमूल कांग्रेस के नेता और बांदीपुर ग्राम पंचायत के उप प्रधान प्रसेनजीत साहा ने आम लोगों को धमकाकर खूब वसूली की और इस तरह की संपत्ति बनाई। वरना आप ही सोचिए ग्राम पंचायत के उप प्रधान की कितनी ही तनख्वाह रही होगी जिसमें वो इतना आलीशान घर बनवा सके। दावा है कि पार्टी की सरकार होने की वजह से टीएमसी के ऐसे नेताओं पर कोई कार्रवाई नहीं होती थी, लेकिन सरकार बदलते ही जनता चप्पल लेकर आरोपी नेताओं के पीछे दौड़ रही है। पहली नजर में भले ही लग रहा कि ऐसा क्यों हो रहा, लेकिन दशकों से अपनी गाढ़ी कमाई का पैसा कटमनी के तौर पर देने वाले लोगों को नई सरकार बनने के बाद दोषी नेताओं को सबक सिखाने का मौका मिल रहा है। जान बचाने के लिए कटमनी वसूलने वाले आरोपी टीएमसी नेताओं को कहना पड़ रहा है कि वो उसे वापस लौटाएंगे। पश्चिम बंगाल जनता के गुस्से की एक और बड़ी वजह तृणमूल कांग्रेस के नेताओं पर सरकारी राहत सामग्री लूटने का आरोप। उत्तर 24 परगना के हिंगलगंज विधानसभा क्षेत्र के दुलदुली ग्राम पंचायत में राहत सामग्री टीएमसी के नेताओं के घर से मिली। अरिजीत मंडल और तरुण मंडल नाम के आरोपी नेताओं की गिरफ्तारी की मांग को लेकर स्थानीय लोगों ने बड़ा प्रदर्शन किया। इस दौरान आरोपी नेताओं के घर से सरकारी राहत सामग्री मिली जिसने दिखाया कि कैसे न सिर्फ सरकारी योजनाओं के बदले वसूली की जा रही बल्कि राहत सामग्री तक लूट ली जाती है। इसीलिए पश्चिम बंगाल में जनता आरोपी नेताओं के पीछे पड़ चुकी है।
3: और अब बात करेंगे स्टंट बाजों की जिन्हें यूपी पुलिस ने सबक सिखाया है। गंगा एक्सप्रेसवे पर गाड़ियों के साथ जिंदगी से खिलवाड़ करने वाले रील बाज अब कान पकड़कर रील बनाने से तौबा कर रहे हैं।

0: दौलत का नशा जब सर पर सवार होता है तो आदमी ऐसी हरकत करता है। ये अमीरों की बिगड़ी हुई औलादें जो अपने साथ साथ दूसरों की जिंदगी से भी खेल रही। ये नया नया शुरू हुआ मेरठ से प्रयागराज को जोड़ने वाला गंगा एक्सप्रेसवे है और इसी एक्सप्रेसवे पर ये युवक स्टंट कर रहे हैं। महंगी महंगी गाड़ियां हैं, थार, फॉर्च्यूनर, स्कॉर्पियो और भी महंगी गाड़ियां। बीच में एक गाड़ी है जिसका सनरूफ खुला हुआ है, उस पर चढ़ा हुआ आदमी वीडियो बना रहा है और उसके चारों ओर ये महंगी गाड़ियां चक्कर लगा रही हैं। सोचिए, ये वो एक्सप्रेसवे है जिस पर स्पीड लिमिट 100 से 120 किलोमीटर प्रति घंटा है। यहाँ किसी बड़े हादसे को न्योता दिया जा रहा है। काफी देर तक स्टंट करने के बाद डिवाइडर पर लगी फुलवारी को कुचलते हुए ये सड़क के दूसरी तरफ गिर गए। आधे घंटे तक हुड़दंग करने के बाद टोल कर्मियों से इन्होंने बदतमीजी की और बैरियर तोड़कर भाग गए। वीडियो वायरल हुआ तो प्रशासन एक्शन में आया। ये जिन गाड़ियों का दम भर रहे थे उसी के आगे कान पकड़कर अब माफी मांग रहे हैं।
1: सीसीटीवी का अवलोकन कर गाड़ियों के नंबर आइडेंटिफाई किए गए। वे इन गाड़ियों को जो है सीज किया गया थाना खरकौदा द्वारा। वे इनके चालक जो है उनके विरुद्ध अवश्य विधिक कार्रवाई थाना खरकौदा पर की जा रही।
0: उम्मीद है ये सबक है उन रीलबाजों के लिए जो चंद व्यूज के लिए अपनी और दूसरों की जान के साथ खिलवाड़ करते हैं। उस्मान चौधरी, मेरठ, आज तक।
2: और चलिए इसी के साथ हम यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आज तक।
3: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाएं स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा प्यार से परोस।
4: Music you love is all right here on TuneIn, bringing you good vibes and the hottest hits. But are you ready to amp things up even more? Just upgrade to TuneIn Premium for all of our exclusive music channels, completely commercial free. So you get more of today's hits. More country roads. And everything else. Hear it all here, commercial free, on TuneIn.
5: क्या आप बार बार दुर्घटना के शिकार हो रहे हैं? क्या अचानक से पैसे का बड़ा नुकसान हो रहा है? क्या आपका सबसे नजदीकी रिश्ता टूट रहा है? जीवन में कब घटती हैं दुर्घटनाएं और क्या हैं इनसे बचने के उपाय, जानिए मेरे साथ सिर्फ।
4: The music you love is all right here on TuneIn, bringing you good vibes and the hottest hits. But are you ready to amp things up even more? Just upgrade to TuneIn Premium for all of our exclusive music channels, completely commercial free. So you get more of today's hits. More country roads. And everything else. Hear it all here, commercial free, on TuneIn. Call something classic, you've got to mean it. And that's why when we say TuneIn's exclusive classic hip-hop station is the real deal, we mean it. From golden age gems from OGs like Tupac and Biggie to chart-topping bangers from the biggest artists of all time like Jay-Z and DMX, there's a little something for every hip-hop fan on this station. Ready to find your flow? Just search classic hip-hop or tell your device to play classic hip-hop on TuneIn to listen.
6: TuneIn's how-to. A brief look at all the special functions and things you might not know we have.
7: Ready to listen to all your favorite audio? With TuneIn, you can catch your favorite music, news, sports, and more anytime, anywhere, across all your devices. From your smart speakers to smartphone, from your car to your TV. With TuneIn, you can enjoy all your favorite stations wherever you are. Plus, you can fire it up with voice command. Just ask your smart device to play TuneIn and start listening.
8: आज तक ला रहा है आपके लिए वीडियो वाला पेपर, हर रोज सुबह आपके मोबाइल पर, वो भी आपके पुराने न्यूज़पेपर से पहले। इसे पढ़ने के लिए अपने डिवाइस पर epaper.aajtak.in टाइप करें या फिर स्क्रीन पर दिए हुए QR कोड को स्कैन करें।
9: नीट जो री एग्जाम होना है उसके लिए कैसी तैयारियां हैं आप लोगों की, किस तरह के आप लोग बंदोबस्त कर रहे हैं कि जो पिछले महीने हुआ वो दोबारा ना हो?
10: पिछले महीना जो हुआ वो दुर्भाग्यपूर्ण है, वो नहीं होनी चाहिए थी। हमारी चिंता बच्चों की मानसिक स्थिति के साथ जुड़ा हुआ है और हम जिम्मेदारी लेते हैं। तब भी मैंने कहा था पिछले बार जब मैंने आप लोगों को मिला था और कहा था कि हम जिम्मेदारी लेते हैं, और हम जिम्मेदारी लेते हैं परीक्षा को निर्भुल करने के लिए। 21 जून को री नीट की तिथि तय हुई है। पिछले दिनों में भी नीट की एक प्रोटोकॉल है कैसे ये परीक्षा होगी, इसमें इस बार और मजबूती और स्पष्टता और सुरक्षा की व्यवस्था लाने की आवश्यकता है। इस सारे प्रबंधन के बाद इस बार जो घटना हुई या आगे कैसे ना हो उसकी जिम्मेवारी हम सभी के ऊपर है। बच्चों को थोड़ा तनाव मुक्त करने के लिए, बोझ मुक्त करने के लिए हमने पिछले बार की जो फीस था, जो परीक्षा कैंसिल हुई उसकी फीस हम लौटाएंगे, जो अभी की परीक्षा होगा उसको फीस माफ करेंगे, फीस नहीं लेंगे।
11: क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।
3: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाएं स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा प्यार से परोसा। प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाएं स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा प्यार से परोसा।

सरकार पर धावा, वीडियो जारी करके कहा मोदी पर भारत का युवा नहीं करता भरोसा। सुप्रीम कोर्ट ने भी पूछा केंद्र से गड़बड़ी कहां शुरू हुई और कौन जिम्मेदार। यूपी में माफियाओं पर गरजे योगी आदित्यनाथ, कहा त्योहारों पर उपद्रव मचाने वालों की रावण कंस जैसी होगी दुर्गति। समाजवादी पार्टी के तंज चुनाव के वक्त करते हैं हिंदू मुसलमान। कर्नाटक में आज विधायक दल की बैठक में नेता चुने जाएंगे डीके शिवकुमार, नई सरकार से पहले कल दिल्ली में राहुल गांधी से की मुलाकात। ईरान से डील के करीब पहुंचने के ट्रंप के दावे को तेहरान ने किया खारिज, अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा था हम फैसले के करीब हटाएंगे नौसैनिक नाकेबंदी। और आईपीएल के फाइनल में पहुंची गुजरात टाइटंस, दूसरे क्वालिफायर में राजस्थान को 7 विकेट से हराया, रविवार को अहमदाबाद में बेंगलुरु के साथ मुकाबला।

0: नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक और आपके साथ मैं हूं शशि शर्मा। बुलेटिन की शुरुआत, इस सेगमेंट की शुरुआत हम कर रहे हैं देश के कोने कोने से आई कुछ बड़ी और अहम खबरों के साथ, जिनकी तस्वीरें देखकर आप भी हैरान रह जाएंगे। कहीं सड़क पर अचानक से हुई हिंसा ने दहशत फैला दी, तो कहीं मामूली से विवाद में बड़ा झगड़ा देखा गया। आगजनी, मारपीट और सड़क हादसों की ये घटनाएं हालात की गंभीरता को बयां कर रही हैं। हर तस्वीर अपने पीछे एक अलग ही कहानी और सवाल छोड़कर जा रही है। आइए नजर डालते हैं उन तमाम घटनाओं पर। तो मनाली में लंबे वीकेंड और भीषण गर्मी से राहत पाने के लिए पर्यटकों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी है। रोहतांग दर्रे की बर्फ देखने पहुंचे सैलानियों की वजह से मनाली रोहतांग मार्ग पर हालात बिगड़ गए। करीब 5 घंटे तक लोग फंसे रहे, लगभग 5 किलोमीटर लंबा जाम लगा। और आपको ये भी बता दें कि 50 किलोमीटर का सफर तय करने में 7 से 8 घंटे लोगों को लग गए। सुबह निकले पर्यटक दोपहर तक रोहतांग पहुंच पा रहे थे और भारी ट्रैफिक और अव्यवस्थित पार्किंग की वजह से सड़क किनारे जैम की स्थिति बन गई थी। प्रशासन तैनात है, लेकिन भीड़ के आगे व्यवस्थाएं पूरी तरह से कमजोर पड़ती हुई नजर आ रही हैं। ये देखिए जरा ड्रोन तस्वीरें जो आपको बयां करने के लिए काफी है कि किस तरह ट्रैफिक जैम, चारों ही तरफ गाड़ियां खड़ी नजर आ रही हैं। 7 से 8 घंटे 50 किलोमीटर को पार करने में लग रहे हैं। तो वीकेंड्स पर वैसे भी तमाम जो हिल स्टेशंस हैं वहां तक पहुंचने में बहुत ज्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। रोहतांग दर्रे तक पहुंचने के लिए देखिए जरा किस तरह के हालात पैदा हो गए। व्यवस्थाएं काफी कोशिश करके प्रशासन की तरफ से की जा रही है, लेकिन पूरी तरह से नाकामी और अव्यवस्था साफ साफ नजर आ रही है। यह खबर है कोल्हापुर से, जहां मॉर्निंग वॉक पर निकली महिला से सोने की चेन झपटने की सनसनीखेज वारदात सामने आई है। रोड पर टहलने गई महिला पर 2 अज्ञात लोगों ने पहले हमला बोला, 1.5 लाख रुपए की कीमत की सोने के मंगलसूत्र को झपटकर वो फरार हो गए। ये पूरी की पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई है। जानकारी के मुताबिक एक आरोपी ने पैदल आकर अचानक से महिला के गले पर हाथ डालकर चेन छीनी, झपट्टा मारा, जिसके बाद दूसरा आरोपी बाइक से आया और दोनों ही मौके से फरार हो गए। आपको यह भी बता दें, इस घटना से इलाके में दहशत फैल गई है। हालांकि मॉर्निंग वॉक के दौरान इस तरह की कई घटना पहले भी अलग अलग जगहों से सामने आ चुकी हैं। यह खबर है जामनगर से, जहां कानून व्यवस्था को खुली चुनौती देने वाली एक और घटना सामने आई है। शहर के दिग्जैम सर्किल के पास स्थित एक पान की दुकान के बाहर देर रात मामूली सी कहा सुनी हुई और इसने ले लिया हिंसक रूप। देखते ही देखते मामला मारपीट तक पहुंच गया था। जानकारी यह है कि कुछ युवकों के बीच पहले विवाद शुरू हुआ, अचानक से इतना ये बढ़ गया कि एक दूसरे पर लात घूंसे वो बरसाने लगे। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक घटना के दौरान मौके पर अफरा तफरी मच गई थी। आसपास मौजूद जो लोग थे वो दहशत में आ गए थे और ये पूरी घटना दुकान में जो सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ था उसमें कैद हो गई है। अब सोशल मीडिया पर तेजी के साथ यह घटना वायरल हो रही है। वीडियो में युवक खुलेआम मारपीट करते हुए नजर आ रहे हैं, जिससे शहर में कानून व्यवस्था को लेकर एक बार फिर से सवाल उठे हैं। यूपी के झांसी में तरबूज के छिलके फेंकने को लेकर शुरू हुआ मामूली सा विवाद हिंसक झड़प में बदल गया। दोनों पक्षों के बीच लाठी डंडे चले, देखते ही देखते महिलाएं, बुजुर्ग, बच्चे इस झगड़े में शामिल हो गए थे। सड़क पर हुई इस मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर जबरदस्त तरीके से वायरल है। अफरा तफरी साफ साफ देखी जा सकती है। घटना पुंछ थाना क्षेत्र में ग्राम फतेहपुर स्टेट की है। पीड़िता लक्ष्मी ने बताया कि विवाद रिश्तेदारों के बीच हुआ था। पुलिस ने धारा 151 लागू कर दी है, मामला दर्ज कर लिया है, जांच शुरू कर दी गई है, लेकिन तस्वीरें काफी कुछ बयां कर रही हैं। देखिए जरा, कोई अंदाजा लगा सकता है कि सिर्फ छिलके फेंकने से शुरू हुआ विवाद है जो यहां तक पहुंच गया। बिहार के सुपौल जिले में सिमराही NH-27 स्थित मीट मार्केट में शुक्रवार शाम को 2 मीट काटने वालों के बीच विवाद हुआ और इसने ले लिया हिंसक रूप। देखते देखते दोनों पक्षों में लाठी डंडे, धारदार हथियार, ईंट पत्थर जमकर चले हैं। बाजार में अफरा तफरी फैल गई थी। इस घटना में करीब 7 लोग घायल हो गए, जिसमें से एक की हालत गंभीर बताई जा रही है। सभी घायलों को राघोपुर रेफरल अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां से एक को सुपौल सदर अस्पताल रेफर कर दिया गया है। बताया जा रहा है कि पुराना विवाद इस झगड़े की वजह बना। पुलिस जांच में जुटी हुई है। यह खबर है जमशेदपुर से, जहां जुगसलाई बाजार स्थित होटल गणगौर के वर्कशॉप में अचानक से भीषण आग लग गई थी, जिससे कुछ ही देर के बाद पूरी यूनिट जलकर खाक हो गई। आग की लपटें इतनी तेज थी कि पूरे इलाके में दहशत फैल गई, लोग अपने घरों से बाहर निकल आए। स्थानीय लोगों का आरोप है कि वर्कशॉप में सुरक्षा मानकों की अनदेखी की जाती है, जिससे कि यह हादसा हुआ। दमकल की 4 गाड़ियां मौके पर पहुंची, आग बुझाने का काम शुरू किया गया, तुरंत पूरी तरह से काबू नहीं पाया जा सका बहुत देर तक। गनीमत यह रही है कि गैस सिलेंडर समय रहते बाहर निकाल लिए गए थे, वरना और बड़ा यह हादसा हो सकता था। ठाणे जिले के विभंडी इलाके में एक स्क्रैप गोदाम में भीषण आग लगने से हड़कंप मच गया था। आग लगते ही पूरे इलाके में धुएं का गुबार फैल गया, आसपास के लोगों में दहशत का माहौल बन गया। घटना की सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर पहुंची, कई गाड़ियों ने मिलकर इस आग पर काबू पाया। आग लगने के कारण क्या रही अभी साफ नहीं हो पाया, लेकिन प्राथमिक तौर पर भारी नुकसान की आशंका जरूर जताई जा रही है। मौके पर पुलिस बल भी तैनात कर दिया गया था ताकि राहत और बचाव काम में कोई भी बाधा न आए। शांतिनगर पुलिस स्टेशन के वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक विनायक गायकवाड़ ने बताया कि आग पर काबू पाने के प्रयास लंबे समय तक किए गए और फिलहाल स्थिति पर काबू पा लिया गया है। जम्मू कश्मीर के रियासी जिले में सलाल डैम के पास जंगल में भीषण आग लगने के बाद हड़कंप मचा था। आग देखते ही देखते इतनी ज्यादा फैल गई थी बड़े इलाके में कि बड़ा इलाका इसकी चपेट में आया। धुएं का गुबार चारों तरफ देखा गया, स्थानीय लोग दहशत में आ गए थे। वन विभाग और दमकल की टीमों ने मौके पर पहुंचकर इस आग पर काबू पाया है। हालांकि तेज हवाओं और सूखे मौसम की वजह से आग पर नियंत्रण पाना और ज्यादा चुनौतीपूर्ण बना रहा। जंगल के अंदरूनी हिस्सों तक आग फैल चुकी है और कहा जा रहा है कि वन्यजीवों को भी इससे खतरा पैदा हो गया है। चुरू शहर में उस समय हड़कंप मच गया था जब एक अनियंत्रित ऑटो सीधे मोबाइल शॉप में जा घुसा। अचानक से हुई इस घटना में दुकान में बैठे हुए लोग, आसपास के मौजूद लोग बुरी तरह से स्तब्ध रह गए थे। मौके पर अफरा तफरी मच गई थी। टेम्पो चालक ऑटो लेकर पुलिया नंबर 4 से आ रहा था, तभी अशोक स्तंभ के पास उसके ब्रेक फेल हो गए। चालक ने सड़क पर मौजूद लोगों को बचाने की कोशिश की और ऑटो को गली में मोड़ दिया, लेकिन भीड़ देखकर उसने वाहन शॉप की तरफ मोड़ा, जिससे कि ऑटो सीधा घुस गया दुकान के भीतर। हादसे के वक्त दुकान में व्यापारी सहित 4-5 और भी लोग मौजूद थे। अचानक से हुई इस टक्कर में कांच का गेट, काउंटर और मोबाइल फोन क्षतिग्रस्त हुए हैं। घटना में 2 लोगों को हल्की सी चोटें भी आई हैं। गाजियाबाद के खोड़ा में एक युवक की हत्या ने पूरे इलाके में सनसनी फैला दी है, जिस युवक को देर रात अस्पताल पहुंचाया गया, उसने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। आपको बता दें कि अस्पताल के लोगों में गुस्सा है, आंसू हैं और इंसाफ की भी मांग है।
1: एक मामूली कहा सुनी और फिर चंद सेकंड में बिछ गई एक लाश। ये तस्वीरें गाजियाबाद के खोड़ा इलाके की हैं, जहां सूर्या नाम के युवक पर चाकू से हमला किया गया। प्रत्यक्षदर्शी के मुताबिक पहले सड़क पर कहा सुनी हुई, जो गाली गलौज और मारपीट तक पहुंच गई। इसके बाद आरोप है कि असद, आतिफ और फरहान समेत कुछ युवा सूर्या को बातचीत के बहाने गली में ले गए और वहीं उस पर चाकू से हमला कर दिया।
2: बकरा ईद के दिन बच्चे को घर से बुलाया गया धोखे से, फिर उससे ये पूछा जाता है कि बकरा कटता कैसे।
1: गंभीर हालत में युवक को अस्पताल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टर उसे बचा नहीं सके। मौत की खबर मिलते ही परिवार में कोहराम मच गया। परिजनों का आरोप है कि पुरानी रंजिश और आपसी विवाद इस हमले की वजह बना। हत्या की खबर फैलते ही इलाके में तनाव का माहौल बन गया। अस्पताल के बाहर हिंदू संगठनों की भारी भीड़ जमा हो गई और लोगों में आक्रोश देखने को मिला। हालात को देखते हुए अस्पताल और आसपास के इलाके में भारी पुलिस बल तैनात किया गया है। पुलिस का कहना है कि आरोपियों की पहचान कर ली गई है और गिरफ्तारी के लिए टीमें लगा दी गई हैं।
3: आरोपी लड़के की तलाश के लिए टीमें गठित कर दी गई हैं। शीघ्र उसकी गिरफ्तारी सुनिश्चित की जाएगी। पूरे प्रकरण में पूछताछ साक्ष्यों के आधार पर अग्रिम वैधानिक कार्रवाई सुनिश्चित की जा रही है। थाना पुलिस के द्वारा लगातार ही उक्त घटना को लेकर के नजर रखी जा रही है।
1: एक युवक की मौत, 3 नाम सामने और सवाल अभी भी कायम है कि सड़क पर शुरू हुआ मामूली विवाद इतनी बड़ी वारदात में कैसे बदल गया। ब्यूरो रिपोर्ट आज तक।
0: और अब बात करेंगे मौसम के कहर के बारे में। कहीं आसमान से आफत बरस रही है, कहीं आंधी तूफान ने तबाही मचा डाली है। कहीं ओलावृष्टि ने किसानों की महीनों की मेहनत को बर्बाद करके रख दिया है। राजस्थान से लेकर उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, यूपी, कश्मीर, बंगाल और छत्तीसगढ़ तक मौसम ने ऐसा रौद्र रूप दिखाया है कि सड़कें दरिया बन गई हैं, कई जगहों पर पेड़ जड़ से उखड़ गए हैं, ट्रैफिक थम सा गया, लोग दहशत में आ गए।
1: बारिश जिसका इंतजार लोग हफ्तों से कर रहे थे, वही बारिश अब आफत बनकर बरस रही है। कहीं आंधी ने पेड़ों को जड़ से उखाड़ दिया, कहीं ओलावृष्टि ने किसानों की मेहनत तबाह कर दी, तो कहीं सड़कों ने दरिया का रूप ले लिया। राजस्थान से लेकर उत्तराखंड, हिमाचल से लेकर कश्मीर, यूपी, बंगाल और छत्तीसगढ़ तक मौसम का ऐसा रौद्र रूप देखने को मिला कि जनजीवन पूरी तरह अस्त व्यस्त हो गया। सबसे पहले बात राजस्थान की, यहाँ जयपुर में तेज बारिश और ओलावृष्टि ने शहर की रफ्तार पर ब्रेक लगा दिया। कई इलाकों में जलभराव हुआ और तेज हवाओं से पेड़ और होर्डिंग धराशायी हो गए। धौलपुर में डेढ़ घंटे की मूसलाधार बारिश ने हालात बिगाड़ दिए। सड़कें, कॉलोनियां और गली मोहल्ले पानी में डूब गए। कई घरों में पानी घुस गया और बिजली गुल होने से लोग रात भर परेशान रहे। अब बात उत्तराखंड की, यहां देहरादून में तेज बारिश ने मौसम बदल दिया, लेकिन शहर की रफ्तार थम गई। टिहरी गढ़वाल में बारिश और भारी ओलावृष्टि ने किसानों की कमर तोड़ दी। खेतों में खड़ी सब्जियां और फल फसलें बर्बाद हो गए। वहीं धनौल्टी में देर रात आए तूफान ने भारी तबाही मचाई। 20 से 30 देवदार के पेड़ गिर गए, इको पार्क की टेंट शेड उड़ गई और बर्मा ब्रिज पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। बागेश्वर में लगातार बारिश के बाद नदियां उफान पर आ गईं। गोमती नदी पर बने बैजनाथ बैराज के गेट खोलने पड़े और प्रशासन ने सायरन बजाकर लोगों को अलर्ट किया। वहीं हिमाचल प्रदेश के शिमला में तेज बारिश ने मौसम का मिजाज पूरी तरह बदल दिया। जम्मू कश्मीर की श्रीनगर गुलमर्ग रोड पर तेज आंधी से कई पेड़ उखड़ गए, सड़कें बंद करनी पड़ी और ट्रैफिक रोक दिया गया। बात उत्तर प्रदेश की करें तो आगरा में तेज आंधी और तूफान के साथ झमाझम बारिश हुई, पेड़ गिर गए, टिन शेड उड़ गए और कई इलाकों में जलभराव से ट्रैफिक थम गया। बात पश्चिम बंगाल की करें तो आसनसोल में भारी बारिश के बाद सड़कें पानी में डूब गईं, जलभराव से यातायात प्रभावित हुआ और लोगों ने खराब ड्रेनेज व्यवस्था पर नाराजगी जताई। छत्तीसगढ़ के बस्तर में तेज आंधी, ओलावृष्टि और बारिश ने भारी तबाही मचाई। कई पेड़ उखड़ गए, सड़कें जाम हो गईं और मकानों की छतों को नुकसान पहुंचा। मौसम विभाग ने आने वाले दिनों में और आंधी बारिश की चेतावनी दी है। आज तक ब्यूरो।
0: राहत की बारिश की बात करेंगे क्योंकि आफत की बारिश लगातार राहत की बारिश बनती हुई नजर आ रही है। आंधी, तूफान और बारिश ने, वज्रपात ने देश के कई राज्यों में मौत और तबाही की एक ऐसी तस्वीर छोड़ी हुई है जिसने लोगों को दहला कर रख दिया है। कहीं पेड़ गिर गए हैं और कहीं दीवारें भरभरा कर ढह गई हैं, कहीं निर्माणाधीन पुल ने कई जिंदगियों को ली लिया तो कहीं आसमानी बिजली ने लोगों को संभलने तक का मौका नहीं दिया। पश्चिम बंगाल से लेकर उत्तर प्रदेश और झारखंड से लेकर अलग अलग जगहों पर मौसम का कहर कई परिवारों की खुशियों को छीन चुका है। हमारी इस खास रिपोर्ट को देखें।
1: बारिश की बूंदें जब आसमान से बरसी तो लोगों ने राहत की उम्मीद की थी, लेकिन किसी को अंदाजा नहीं था कि यही बदला मौसम कई घरों में मातम छोड़ जाएगा। कहीं पेड़ मौत बनकर लोगों पर टूट पड़े, कहीं दीवारें भरभराकर जिंदगियां निकल गईं, कहीं आसमानी बिजली ने पल भर में सब कुछ खत्म कर दिया। तो कहीं तेज तूफान ने बन रहे पुल को ही कब्रगाह में तब्दील कर दिया। सबसे बड़ा कहर पश्चिम बंगाल में देखने को मिला। कोलकाता समेत पश्चिम बंगाल के कई जिलों में आए भीषण तूफान और बारिश ने 7 लोगों की जान ले ली। उत्तर प्रदेश के हमीरपुर में तूफान के दौरान एक अंडर कंस्ट्रक्शन पुल मौत का जाल बन गया। तेज आंधी के बीच पुल का हिस्सा भरभराकर गिर पड़ा और 6 लोगों की जान चली गई। हादसे के बाद मलबे के बीच घंटों तक राहत और बचाव अभियान चलाया गया। बांदा में भी तूफान ने 2 परिवारों को उजाड़ दिया। एक बुजुर्ग की दीवार गिरने से मौत हो गई, जबकि दूसरे व्यक्ति की जान पेड़ गिरने से चली गई। जालौन में भी कुदरत का कहर 2 जिंदगियां लील गया। एक महिला तेज आंधी की चपेट में आकर जान गंवा बैठी, जबकि एक व्यक्ति दीवार गिरने से मारा गया। झारखंड के गढ़वा में आसमानी बिजली मौत बनकर गिरी। महिला वज्रपात की चपेट में आ गई। आंधी तूफान बारिश और वज्रपात के इस कहर ने कई परिवारों को हमेशा का दर्द दे दिया है। आज तक ब्यूरो।
0: और अब आपको उत्तर प्रदेश की राजनीति से खबर दिखाते हैं, जहां मुख्यमंत्री पूर्वांचल के मऊ पहुंचे थे। विकास योजनाओं की सौगात उन्होंने दी, लेकिन फिर योगी ने आक्रामक होकर विपक्ष पर वार भी किया। बिना नाम लिए मुख्तारवादी राजनीति से खबरदार किया। क्या इसकी वजह पूर्वांचल में बीजेपी का 2024 में सीट और वोट घटना है, जिसकी 2027 वाली किलेबंदी में योगी जुट चुके हैं?
4: समाजवादी पार्टी तो माफिया और गुंडों के सामने नतमस्तक थी। किसी माफिया में दुस्साहस नहीं, किसी गुंडे में दुस्साहस नहीं कि किसी पर्व और त्योहार में व्यवधान पैदा कर दे और उपद्रव पैदा कर दे। माफिया पिस्तौल लहराते हुए कोई धमका करके खुली जीप में चल करके किसी हिंदू को धमका नहीं सकता है। रावण और कंस जैसी दुर्गति उसकी तय है जो व्यवधान डालने वाला है।
5: क्या अचानक योगी आदित्यनाथ ने 2027 के रण में गियर बदल दिया? शुक्रवार को योगी आदित्यनाथ मऊ में 392 करोड़ से अधिक की 114 परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करने पहुंचते हैं। विकास के मंच से विपक्ष पर जिस तरह योगी बरसते हैं, इसमें बड़ी राजनीतिक रणनीति छिपी है।
4: अब मैं कह सकता हूं, किसी माफिया में दुस्साहस नहीं, किसी गुंडे में दुस्साहस नहीं कि किसी पर्व और त्योहार में व्यवधान पैदा कर दे और उपद्रव पैदा कर दे। अगर कोई किसी रामलीला में, किसी यज्ञ और कथा में, किसी धार्मिक आयोजन में रामनवमी हो, शिवरात्रि हो, जन्माष्टमी हो, रक्षाबंधन हो, इन आयोजनों में अगर किसी ने व्यवधान डाला तो पर्व तो मनाई लेगा, लेकिन उसके बाद ये तय है कि रावण और कंस जैसी दुर्गति उसकी तय है जो व्यवधान डालने वाला है।
5: रावण और कंस वाला अंजाम मुख्यमंत्री उस मऊ की जमीन पर याद कराते हैं, जिस मऊ में साल 2005 में हुए दंगे से जुड़ा मुख्तार अंसारी का वीडियो आज भी लोग भूले नहीं, जिसमें मुख्तार अंसारी खुली जिप्सी में AK-47 लेकर घूमता दिखा था।
4: मऊ जनपद के लोग भूले नहीं होंगे, जिनकी उम्र 30-35 वर्ष से ऊपर है वे याद करें, 2005 में 21 वर्ष पहले इसी मऊ में कैसे भरत मिलाप कार्यक्रम के अवसर पर दंगा करके मऊ को जलाने का कुत्सित प्रयास हुआ था, कैसे सत्ता के संरक्षण में माफिया एक उत्सव भरे आस्था के केंद्र रामलीला के आयोजन में व्यवधान पैदा करके निर्दोष हिंदुओं का कत्लेआम कर रहे थे। सरकार मौन थी, क्योंकि सरकार ने उन माफियाओं के सामने घुटना टेका हुआ था।
5: मुख्तार अंसारी का इतिहास योगी इसलिए याद करा रहे हैं क्योंकि मुख्तार के विधायक बेटे अब्बास अंसारी भले योगी के मंच पर मौजूद रहे, ओम प्रकाश राजभर की पार्टी से टिकट लेकर जीते हैं, लेकिन तब राजभर 2022 में अखिलेश यादव के साथ मिलकर चुनाव लड़े थे। और मुख्तार अंसारी के भाई अफजाल जो गाजीपुर से सांसद हैं, वो समाजवादी पार्टी के टिकट पर ही जीते थे। तो मुख्तार का दौर याद दिलाकर तब की सत्ता में रही समाजवादी पार्टी पर निशाना योगी आदित्यनाथ साधते हैं।
4: आज माफिया पिस्तौल लहराते हुए कोई धमका करके खुली जीप में चल करके किसी हिंदू को धमका नहीं सकता है, अब नहीं धमका सकता है।
5: असल में योगी इस वक्त दो रणनीति पर काम कर रहे हैं, अखिलेश की तरफ से पीडीए के लोगों के एनकाउंटर वाले आरोप का जवाब देना और पूर्वांचल की सीटों पर जाति के नाम पर नहीं बल्कि हिंदू के नाम पर वोट को एकजुट करना। इसी हफ्ते अखिलेश यादव ने योगी सरकार की सबसे मजबूत पिच यानी लॉ एंड ऑर्डर पर एनकाउंटर में जाति देख गोली चलाने का आरोप लगाया।
6: उत्तर प्रदेश में भाजपा सरकार एनकाउंटर के बहाने पीडीए को डराकर उसका हक मारना चाहती है।
0: और इसी के साथ हम यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आज तक।
7: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।
8: This is the sound of Jack buzz cutting his way to a small fortune. To Jack, every time he cuts his own hair, that's 50 bucks right in his pocket. If Jack sees DIY buzz cuts as a saving strategy, Wells Fargo is right behind him. And with their mobile app, tracking his savings is easy.
9: Oh, ouch.
8: However you make money work, we can work with that.
10: Mobile carrier's message and data rates may apply. Wells Fargo Bank NA, member FDIC.
11: The music you love is all right here on TuneIn, bringing you good vibes and the hottest hits. But are you ready to amp things up even more? Just upgrade to TuneIn Premium for all of our exclusive music channels, completely commercial free. So you get more of today's hits. More country roads. And everything else. Hear it all here, commercial free, on TuneIn.
12: There's just something about classic soul music that gets you moving. And TuneIn's exclusive soul groove station has all the right moves. Hit play on the grooviest 70s selection. Get your masters in melody with Motown Classics. Or just set the right tone with smooth, soulful vibes from Marvin Gaye and more. It's all right here on TuneIn, ready to set the perfect 70s tone. Search Soul Groove or tell your device to play Soul Groove on TuneIn now to listen.
13: Listening to your favorite station just got even easier with Google Assistant and TuneIn. Your go-to station is just a voice away. Just tell Google to play your favorite station on TuneIn and you're instantly connected.
14: This is 80s hits exclusively on TuneIn.
13: You're listening to Fox News Radio. Classic rock hits.
15: You're listening to MSNBC.
13: No scrolling, no typing. Just the shows, music, and news you love. Anytime you want. Try it now and thank us later.
7: Presented by Patanjali Dant Kanti Toothpaste, complete oral health ka sach.

राहुल गांधी का सरकार पर धावा, वीडियो जारी करके कहा मोदी पर भारत का युवा नहीं करता भरोसा। सुप्रीम कोर्ट ने भी पूछा केंद्र से गड़बड़ी कहां शुरू हुई और कौन जिम्मेदार। यूपी में माफियाओं पर गरजे योगी आदित्यनाथ, कहा त्योहारों पर उपद्रव मचाने वालों की रावण कंस जैसी होगी दुर्गति। समाजवादी पार्टी के तंज, चुनाव के वक्त करते हैं हिंदू मुसलमान। कर्नाटक में आज विधायक दल की बैठक में नेता चुने जाएंगे, डीके शिवकुमार नई सरकार से पहले कल दिल्ली में राहुल गांधी से की मुलाकात। ईरान से डील के करीब पहुंचने

कि ट्रंप के दावे को तैराने किया खारिज। अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा था हम फैसले के करीब हटाएंगे नौसैनिक नाकेबंदी। और आईपीएल के फाइनल में पहुंची गुजरात टाइटंस। दूसरे क्वालिफायर में राजस्थान को 7 विकेट से हराया। रविवार को अहमदाबाद में बेंगलुरु के साथ मुकाबला।

नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं भाग्य चक्र और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। आज हम बात करेंगे दुर्घटना की, शारीरिक दुर्घटना, आर्थिक दुर्घटना, आपके रिश्तों में, आपके संबंध में आने वाली दुर्घटना। दुर्घटनाएं होती क्यों हैं और अगर दुर्घटना की संभावनाएं हैं तो उससे बचने के उपाय क्या हैं, आज इस विषय पर बात करेंगे। बात करेंगे 12 राशियों के दैनिक राशिफल की और कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे कि अगर आज किसी महत्वपूर्ण काम से जाना है तो क्या करके घर से निकलें कि आपको सफलता मिले, और आज का दिन कितना महत्वपूर्ण है, आज कौन सा काम करें कौन सा काम ना करें। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जानते हैं पंचांग।

2026 दिन शनिवार, तिथि है अधिक ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि, नक्षत्र है विशाखा नक्षत्र, चंद्रमा तुला राशि में संचरण कर रहे हैं, राहु काल का समय प्रातः 9 बजे से 10:30 तक, पूर्व दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो जरा सा घी खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। देखिए, आज हम बात कर रहे हैं जीवन में घटने वाली दुर्घटनाओं के बारे में। दुर्घटनाओं के योग क्या होते हैं और ज्योतिष में इसके लिए कौन से ग्रह जिम्मेदार हैं। देखिए, कोई भी अशुभ घटना, बुरी घटना अगर आकस्मिक रूप से घट जाए तो वो दुर्घटना है। सामान्यतः हम समझते हैं कि दुर्घटना का मतलब होता है चोट लग जाना, शारीरिक क्षति हो जाना, लेकिन दुर्घटना केवल चोट चपेट या शारीरिक क्षति नहीं होती, कभी कभी अन्य तरीके से भी जीवन में दुर्घटना घट जाती है। दुर्घटना आर्थिक भी हो सकती है कि आपको पैसे रुपए का अचानक बड़ा नुकसान हो जाए, और दुर्घटना मानसिक भी हो सकती है कि मेंटली आप बड़ी मुश्किल में आ जाएं। सूर्य और चंद्रमा आपकी डेली लाइफ पर, आपके दैनिक जीवन पर सबसे ज्यादा असर डालते हैं, इसीलिए जीवन में घटने वाली दुर्घटना के सबसे बड़े जिम्मेदार होते हैं। सूर्य और चंद्रमा के बाद राहु, मंगल और शनि, ये ज्यादातर दुर्घटनाओं के लिए जिम्मेदार होते हैं। बृहस्पति, शुक्र, शुभ बुध, शुभ चंद्र, ये दुर्घटनाओं से आदमी की रक्षा करते हैं। नॉर्मली रोज के जीवन में सूर्य और चंद्रमा को देखा जाता है और उसी के आधार पर ये बताया जा सकता है कि किस दिन दुर्घटना की संभावना सबसे प्रबल है, किस दिन सावधानी रखने की आवश्यकता ज्यादा है। दुर्घटनाओं पर हमारी चर्चा जारी रहेगी, लेकिन आपको बता दें कि कार्यक्रम के अंत में हम बताएंगे कि अगर आज किसी महत्वपूर्ण काम से जाना है तो क्या करके घर से निकलें कि सफलता मिले, और आज का दिन किस समय सबसे ज्यादा शुभ होगा और उस समय कौन सा उपाय करना चाहिए। अब जान लेते हैं मेष, वृषभ और मिथुन राशि का दैनिक राशिफल। मेष राशि, विवाह के मामलों में तेजी आएगी, करियर में सफलता मिलेगी, धन का लाभ होगा, खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा सफेद। वृषभ राशि, धन की स्थितियां ठीक रहेंगी,
मानसिक तनाव कम होगा, परिवार में शुभ कार्य होगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा गुलाबी। मिथुन राशि, पारिवारिक समस्या हल होगी, रुका हुआ धन मिल सकता है, दौड़ भाग बढ़ी रहेगी। हनुमान चालीसा का एक बार पाठ कर लें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा धानी। अब सामान्य जीवन में आपको चोट चपेट लगती है या वाहन दुर्घटना होती है तो शारीरिक और वाहन दुर्घटना के लिए कौन से ग्रह जिम्मेदार होते हैं? शनि राहु या शनि मंगल के कारण वाहन दुर्घटना घटती है। शनि मंगल का संबंध आपकी कुंडली में अगर नकारात्मक है तो आप वाहन दुर्घटना के शिकार होंगे। साढ़े साती या ढैया जब उतर रही होती है उस समय भी अक्सर दुर्घटनाओं की और चोट चपेट की संभावना बन जाती है। लग्न के स्वामी का कमजोर होना शरीर में चोट लगाता है, शारीरिक क्षति होती है। लेकिन अगर दुर्घटना के समय में मारक दशा चल रही हो तो आदमी का प्राणांत भी हो सकता है। और अगर मारक दशा ना हो तो चोट चपेट लगती है लेकिन केवल वाहन की क्षति होती है और आदमी बच जाता है। अब अगर आपकी कुंडली में, आपकी दशाओं में शारीरिक दुर्घटना के योग बनते हैं, शारीरिक दुर्घटना की संभावनाएं बनती हैं, तो उससे बचने के उपाय क्या हैं? अगर कुंडली में शारीरिक दुर्घटनाओं का योग हो या चोट चपेट का प्रबल योग हो तो राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करिएगा। नित्य प्रातः राम रक्षा स्तोत्र का पाठ जरूर करेंगे। अगर साढ़े साती या ढैया की वजह से प्रबल दुर्घटना के योग बन गए हों तो बजरंग बाण पढ़ना अच्छा होगा। अगर आपकी मारक दशा चल रही हो और उसमें दुर्घटना के योग हों तो शिव जी का रुद्राभिषेक करवाइए या महामृत्युंजय मंत्र का जप करवाइएगा। यात्रा शुरू करने के पहले, कहीं भी आने जाने के पहले अपने गुरु या अपने इष्ट देव का अगर ध्यान करेंगे तो आपके लिए बेहतर होगा, आप दुर्घटनाओं से सुरक्षित बने रहेंगे। दुर्घटनाओं पर हमारी चर्चा जारी रहेगी, लेकिन आपको बता दें कि कार्यक्रम में आगे हम बताएंगे आपके जन्म की तारीख के अनुसार आज का दिन कैसा जाने वाला है और आज के दिन का शुभ समय क्या है, उसमें कौन सा उपाय किया जाएगा। अब जान लेते हैं कर्क, सिंह और कन्या राशि का दैनिक राशिफल।

सावधानी रखें, शनि मंत्र का अगर जप कर लें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा सफेद।

व्यस्तता बनी रहेगी। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा लाल। कन्या राशि, थोड़ी व्यस्तता बनी रहेगी, धन के मामलों में सफलता मिलेगी, ऑफिस की समस्या कम हो जाएगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं उस शुभ रंग आपके लिए होगा हरा। वक्त हो गया है आपके सवाल का। अगर आप ज्योतिष के माध्यम से अपनी समस्या का समाधान चाहते हैं तो आप हमें मेल कर सकते हैं भाग्यचक्र@aajtak.com पर। आज का पहला प्रश्न निर्मला जी ने लिखा है हमें, और निर्मला जी हमें बिहार से मेल लिखती हैं। अपने बेटे के बारे में जानना चाहती हैं। बेटे की जन्म की तारीख है 23 नवंबर 2004। जन्म का समय शाम के 4:47। जन्म स्थान है भागलपुर बिहार। ये कह रही हैं कि मेरा बेटा गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहा है, क्या मेरे बेटे को गवर्नमेंट जॉब मिलेगी और उसका भविष्य कैसा रहेगा? निर्मला जी, अगर आपका बेटा प्रशासनिक सेवा की तैयारी करे, बैंकिंग या फाइनेंस की सेक्टर में तैयारी करे, तो इन क्षेत्रों में आपके बेटे को गवर्नमेंट जॉब मिल सकती है साल 2027 में। आने वाला समय आपके बेटे का अच्छा है, उसमें कोई बहुत चिंता की बात नहीं है। अपने बेटे को एक मोती बनवा के पहना दीजिए, 8-10 रत्ती की मोती, तांबे या सोने की अंगूठी में, और इसको पहना जाएगा शुक्ल पक्ष के सोमवार की रात को सबसे छोटी उंगली में। तो एक इनको मोती पहनाएं। ध्यान रखें, इनको मोती चांदी में नहीं सोने में पहनाना ज्यादा बेहतर होगा। और दूसरा इनको कहें कि रोज सुबह सूर्य भगवान को जल चढ़ाएं तो इनको सफलता जल्दी मिलेगी। तो शारीरिक दुर्घटना के बारे में आपने जान लिया। अब जानिए आर्थिक दुर्घटनाएं कब होती हैं और फाइनेंशियल मुश्किलें कब आती हैं। देखिए, आर्थिक दुर्घटना का मतलब है पैसे का एकदम से बड़ा नुकसान हो जाना, सडन पैसे की दिक्कत आ जाना। बुध अगर कुंडली में खराब है, बुध की स्थिति अगर निगेटिव है, तो आर्थिक दुर्घटनाओं के योग बनते हैं। मंगल एक ऐसा ग्रह है जो अगर कुंडली में निगेटिव हो तो व्यक्ति एकदम से कर्जों में डूब जाता है। राहु का अगर नकारात्मक प्रभाव हो, धन के मामले से राहु का संबंध हो, तो व्यक्ति राजा से रंक हो जाता है। बृहस्पति एक ऐसा ग्रह है जो आर्थिक दुर्घटना घट जाने के बावजूद दोबारा से आपको खड़ा कर देता है। कुंडली में बुध निगेटिव हो, बुध वक्री हो, बुध की दशा चल रही हो, आप कोई काम शुरू करेंगे, काम खराब होगा, पैसे डूबेंगे, या बिना सोचे विचारे आप पैसे का इन्वेस्टमेंट करेंगे और कुंडली में बुध अच्छा ना हो तो भी आपके पैसे डूब जाएंगे। अब ये जानते हैं कि अगर कुंडली में पैसे के बड़े नुकसान होने का
या आर्थिक दुर्घटनाओं के होने का योग है तो उससे बचने के लिए क्या करना चाहिए? अगर कुंडली में बुध खराब है तो पन्ना कभी मत पहनिएगा, क्योंकि बुध खराब होगा और आप पन्ना पहनेंगे तो बड़ा पैसे का झटका आपको लग सकता है। अगर आर्थिक नुकसान के आर्थिक दुर्घटना के योग हैं तो नियमित रूप से विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करिएगा। अगर मंगल की वजह से नुकसान पे नुकसान हो रहा है और आप कर्ज में डूबते चले जा रहे हैं तो रोज हनुमान चालीसा पढ़ना अच्छा होगा, और साथ में अगर हनुमान जी की पूजा करेंगे तो मांस मदिरा त्याग देंगे। अगर राहु का प्रभाव हो जिसकी वजह से आर्थिक दुर्घटना की संभावना हो, पैसे रुपए के बड़े नुकसान के योग हो, तो दारिद्र दहन स्तोत्र रोज सुबह पढ़िएगा और नियमित रूप से जितना कर सकें यथाशक्ति अगर धन का दान करिएगा तो आप आर्थिक मुश्किलों से आर्थिक दुर्घटना से बचे रहेंगे। दुर्घटनाओं पर हमारी चर्चा जारी है, लेकिन आपको बता दें कि कार्यक्रम में आगे हम बताएंगे आपके जन्म की तारीख के अनुसार आज का दिन कैसा जाने वाला है और आज के दिन की जिज्ञासा क्या है और समाधान क्या है। अब जान लेते हैं तुला, वृश्चिक और धनु राशि का दैनिक राशिफल। तुला राशि, धन प्राप्ति के मजबूत योग हैं, परिवार में व्यस्तता रहेगी, रुके हुए काम आपके पूरे होंगे। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा

परिवार में मतभेद हो सकता है, स्वास्थ्य का ध्यान बनाए रखें, वाहन सावधानी से चलाएंगे, शनि मंत्र का अगर जप कर लें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा नारंग।

योग बन रहे हैं, किसी धर्म स्थान पर जा सकते हैं। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा सुनहरा। देखिए, बहुत बार जीवन में ऐसा होता है कि जो हमारे नजदीकी रिश्ते होते हैं किसी छोटी की बात पर, छोटी सी बात पर अलग हो जाते हैं, दूर हो जाते हैं और जीवन में दोबारा संबंध नहीं जुड़ पाते। यानी बिना वजह के रिश्तों में आकस्मिकता आ जाती है, अचानक से दुर्घटना घट जाती है। आपके रिश्तों में दुर्घटना किन ग्रहों की वजह से घटती है? चंद्रमा और शुक्र, ये दोनों रिश्ते बनाते भी हैं और रिश्तों में आकस्मिक समस्याएं पैदा भी करते हैं। राहु जो है वो रिश्तों की समस्या बढ़ा देता है। आम तौर पर राहु की स्थिति में शक, वहम ये सब पैदा होता है तो रिश्तों की समस्या बढ़ जाती है। मंगल के कारण रिश्तों में विस्फोटक दुर्घटना घट जाती है। लोग आपस में झगड़ा कर लेते हैं, अपशब्द बोल लेते हैं, एक दूसरे को मार देते हैं, हिंसा हो जाती है और रिश्ता पूरी तरह से परमानेंटली टूट जाता है। तो आपके नजदीक रिश्तों में दुर्घटना घट सकती है ग्रहों के प्रभाव के कारण। अगर कुंडली में रिश्तों की दुर्घटना के योग हैं तो क्या उपाय करेंगे? कुंडली में जो ग्रह रिश्तों में दुर्घटना दे सकता है, सूर्य, मंगल, राहु, केतु और शनि, सबसे ज्यादा सूर्य जो समस्या का कारण ग्रह है रिश्तों के लिए, उसकी शांति कराइए। नियमित रूप से सूर्य भगवान को जल अर्पित करिए, सादा जल, प्लेन वाटर। भगवान शिव और मां पार्वती की संयुक्त उपासना, ज्वाइंट पूजा करिए। और जिनकी कुंडलियों में रिश्तों के खराब होने या टूटने की संभावना है, ऐसे लोग हीरा सोच समझ कर सावधानी के साथ धारण करेंगे। कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे कि आज का दिन कितना महत्वपूर्ण है और आज के दिन कौन सा काम करें, कौन सा काम ना करें। अब जान लेते हैं मकर, कुंभ और मीन राशि के लोगों का दैनिक राशिफल। मकर राशि, धन लाभ के योग हैं, करियर में व्यस्तता रहेगी, विवाह के मामलों में तेजी आएगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा फिरोजी।

स्वास्थ्य बेहतर होता जाएगा। पूजा उपासना में समय लगाएं। हनुमान चालीसा का अगर एक बार पाठ कर लें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा नीला।

व्यर्थ का मानसिक तनाव हो सकता है, वाहन सावधानी से चलाइएगा। शनि मंत्र का अगर जप कर लें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा पीला। वक्त हो गया है ऐसा क्यों का। ऐसा क्यों में हम आपके मन और जीवन से जुड़ी हुई तमाम जिज्ञासाओं का समाधान करने का प्रयास करते हैं। लोगों का ऐसा कहना है कि गाड़ी के आगे डैशबोर्ड पर हनुमान जी का चित्र या मूर्ति जरूर लगानी चाहिए। हनुमान जी का चित्र ही क्यों, उनकी मूर्ति ही क्यों, ऐसा क्यों कहा जाता है? देखिए, एक तो हनुमान जी रक्षा करते हैं हर तरह की दुर्घटना से और हर तरह की समस्या से। दूसरी बात यह है कि हनुमान जी ने सबसे लंबी और सकुशल यात्रा की थी जब वो लंका गए थे, तो यात्रा के मामले में हनुमान जी की कृपा प्राप्त करना जरूरी है। तो हनुमान जी के डैशबोर्ड पर रहने से, उनका चित्र या उनकी मूर्ति, आप जब गाड़ी चलाना शुरू करते हैं तो पहले उनको नमस्कार करके गाड़ी चलाते हैं। इससे वाहन की और वाहन के लोगों की रक्षा होती है और आप सफल और सुरक्षित यात्रा कर पाते हैं। अब वक्त हो गया है लकी नंबर के अनुसार आपका लक जानने का। नंबर 1 से लेके नंबर 9 तक के लोगों के लिए आज का दिन कैसा रहने वाला है, आइए जानते हैं। नंबर 1, स्वास्थ्य में सुधार होगा। नंबर 2, धन लाभ के योग बन रहे हैं। नंबर 3, रुके हुए काम पूरे होंगे। नंबर 4, मानसिक अशांति हो सकती है। नंबर 5, यात्रा के योग बन रहे हैं। नंबर 6, विवाह तय हो सकता है। नंबर 7, काम की अधिकता रहेगी। नंबर 8, करियर में लाभ के योग हैं। और नंबर 9, धन लाभ के योग बन रहे हैं। अब वक्त हो गया है भाग्य पहर का, तो आइए जानते हैं कि आज भाग्य पहर का शुभ समय क्या है और इसमें कौन सा उपाय किया जाएगा। आज भाग्य पहर का शुभ समय है शाम को 6 बजे से 7:30 तक। इस समय में पीपल के वृक्ष के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाइएगा। आपके रोजगार और करियर की स्थिति में सुधार होगा। अगर आज आपकी कोई परीक्षा है, कोई इंटरव्यू है, किसी महत्वपूर्ण मीटिंग में जाना है, तो क्या करके घर से निकलें कि आपको सफलता मिले, आइए जानते हैं सक्सेस मंत्र में। अगर आज आपकी कोई परीक्षा है तो घी खाकर घर से जाइए, सफल होंगे। अगर आज आपका कोई इंटरव्यू है, लौंग खाकर घर से जाइए, सफलता मिलेगी। अगर आज कोई महत्वपूर्ण मीटिंग है तो हनुमान जी को लाल फूल चढ़ाइएगा, इसके बाद जाइएगा, काम बन जाएगा। अगर डॉक्टर के पास या हॉस्पिटल जाना है इलाज के लिए, चिकित्सा के लिए, तो चंदन का छोटा सा तिलक लगा के जाइएगा, आपके स्वास्थ्य में सुधार होगा। अगर वाहन, भूमि, भवन, आभूषण, कोई बड़ी खरीदारी करनी है तो नीला रुमाल साथ में रखने से आपको लाभ होगा। अब वक्त हो गया है शुभ मंगल सावधान का, तो आइए जानते हैं कि आज का दिन किस राशि के लिए बहुत शुभ होगा
और किस राशि को बहुत सावधान रहना होगा।

होगा। तुला राशि वालों के लिए हर कार्य में सफलता मिलेगी, चिंताएं समाप्त होंगी। आज का दिन मंगलमय होगा वृषभ राशि वालों के लिए। स्वास्थ्य में सुधार होगा, जीवन बेहतर होगा। और आज सावधान रहना होगा वृश्चिक राशि वालों को। बेवजह का तनाव, बेवजह की चिंता परेशान कर सकती है। आइए अब जानते हैं कि आज का दिन कितना महत्वपूर्ण है और आज के दिन क्या करें क्या ना करें। इस समय अधिक मास चल रहा है तो इस समय किसी भी नए काम की शुरुआत मत करिएगा। और आज के दिन जल और खाने पीने की चीज का दान करें तो आपके लिए शुभ होगा। तो भाग्य चक्र में आज के लिए बस इतना ही। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, इसी कामना के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आज तक। नमस्कार।

0: नीट मामले पर राहुल गांधी के वीडियो के बाद गरमाई है सियासत। प्रधानमंत्री मोदी पर जमकर बोला हमला। राहुल गांधी ने कहा भारत का युवा प्रधानमंत्री मोदी पर भरोसा नहीं करता। नीट परीक्षा व्यवस्था पर उठाए सवाल। सोशल मीडिया पर राहुल गांधी के वीडियो को लेकर बीजेपी का पलटवार। अमित मालवीय ने राहुल गांधी के बयान पर उठाए हैं सवाल। अमित मालवीय ने नीट के मुद्दे पर राहुल गांधी को बयान को बताया गैर जिम्मेदाराना। कहा राहुल गांधी छात्रों के मुद्दे पर जिम्मेदारी नहीं सनसनी फैला रहे हैं। नीट पेपर लीक कांड में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। सुप्रीम कोर्ट ने सख्ती से कहा तय कर्मियों की जिम्मेदारी, तभी सच का पता चल पाएगा। नीट पर सुनवाई के दौरान सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता, प्रधानमंत्री मोदी खुद कर रहे हैं मामले की निगरानी। सुप्रीम कोर्ट ने संस्थाओं की क्षमता मजबूत करने पर दिया है जोर। कहा पेपर लीक के जड़ तक पहुंचना जरूरी। राधाकृष्ण कमेटी ने सुप्रीम कोर्ट को बताया एनटीए को मजबूत करने की सलाह दी गई थी। लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म के लिए दिए गए थे 110 सुझाव। नीट मामले पर संसदीय समिति की भी बैठक। समिति के सामने पेश हुए सीबीआई और एनटीए के निदेशक, एनटीए के निष्पक्ष परीक्षा का भरोसा दिया गया। सीबीएसई की ऑन स्क्रीन मॉर्निंग प्रणाली पर बड़ा विवाद। कॉपी जांच प्रक्रिया पर उठे हैं गंभीर सवाल। उत्तर पुस्तिकाओं में गड़बड़ी और अदला बदली के आरोप में सीबीएसई की नई व्यवस्था पर छात्रों की शिकायतें बढ़ी। सीबीएसई मुख्यालय पर एनएसयूआई का बड़ा प्रदर्शन। ओएसएम सिस्टम वापस लेने की मांग तेज हुई। राहुल गांधी का दावा है एनडीए नीट छात्रों ने परीक्षा व्यवस्था पर उठाए सवाल। पेपर लीक और माफिया को लेकर लगाए गंभीर आरोप। स्कैनिंग और मूल्यांकन में गड़बड़ी के आरोप। 13,000 से ज्यादा कॉपियां मैनुअल जांची गई। कर्नाटक में आज कांग्रेस विधायक दल की बेंगलुरु में बैठक। डीके शिव कुमार को चुना जाएगा नेता। विधायक दल की बैठक से पहले दिल्ली में राहुल गांधी से मिले डीके शिव कुमार। रविवार को ले सकते हैं मुख्यमंत्री पद की शपथ। दिल्ली में राहुल गांधी से मीटिंग में सिद्धरमैया ने कैबिनेट के लिए सौंपी है सूची। सूत्रों के मुताबिक सिद्धरमैया ने अपने बेटे के लिए मांगा है पसंदीदा विभाग। सिद्धरमैया ने कांग्रेस हाईकमान को दिया समन्वय समिति बनाने का प्रस्ताव। सूत्रों के मुताबिक हाईकमान राजी नहीं। गुजरात के दौरे पर अमित शाह ने भुज में पाकिस्तान बॉर्डर का दौरा किया। सीमा पर जवानों से मुलाकात की। त्रिशा शर्मा मौत के मामले में बड़ा अपडेट। सीबीआई ने दो आरोपियों को हिरासत में लेकर पूछताछ तेज की है। 5 दिन की सीबीआई रिमांड पर भेजे गए त्रिशा के पति और सास जज गिरिबाला और बेटे से हो सकती है साथ बिठाकर पूछताछ। त्रिशा शर्मा की मौत के मामले में साजिश और सबूतों से छेड़छाड़ की आशंका की भी जांच जारी है। वैसी ने एसआईआर प्रक्रिया को बताया गंभीर मुद्दा। कहा यह जीवन और मृत्यु का सवाल है। सड़कों पर नमाज पर बोले सदुद्दीन वैसी। कहा अगर सड़कों पर नमाज पढ़ना गलत है तो सभी धार्मिक सड़क समारोहों का भी विरोध होना चाहिए। योगी के बयान पर समाजवादी पार्टी का पलटवार। प्रवक्ता फरूख हसन चांद ने कहा चुनाव के वक्त हमेशा हिंदू मुसलमान करते हैं लोग। यूपी में हमीरपुर पुल हादसे पर अखिलेश ने बीजेपी पर बोला हमला। पोस्ट में लिखा हवा से बने पुल पर गाड़ी चली तो क्या होगा, भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ा रहा है हर निर्माण। आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम को कोर्ट से राहत मिली। दो पासपोर्ट के मामले में 7 साल की सजा रद्द। सेशंस कोर्ट का फैसला। बिहार बीजेपी की नई टीम का ऐलान। 14 प्रदेश उपाध्यक्ष बनाए गए। निशा सिंह महिला मोर्चा की बनाई गई अध्यक्ष। ऋषिकेश के परमार्थ ने केतन घाट पर बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन ने गंगा आरती में हिस्सा लिया। सीएम पुष्कर सिंह धामी भी शामिल हुए। पंजाब नगर निगम में आम आदमी पार्टी का जबरदस्त दबदबा। 8 में से 5 नगर निगमों में भारी जीत दर्ज। पंजाब निकाय चुनावों में आपकी सुनामी। 800 से ज्यादा सीटों पर जीत दर्ज की। मोहाली बरनाला बटाला मोगा और बठिंडा में आम आदमी पार्टी ने बड़ी बढ़त के साथ जीत हासिल की। कांग्रेस ने कपूरथला नगर निगम को बहुमत हासिल किया है। बीजेपी ने अबोहर में दर्ज की है जीत। पंजाब निकाय चुनावों के नतीजों पर सियासी बयानबाजी तेज हुई। भगवंत मान ने इसे विकास की जीत बताया है। राजस्थान के जयपुर और धौलपुर में तेज बारिश और ओलावृष्टि से जनजीवन अस्त व्यस्त हुआ। कई इलाकों में जलभराव और बिजली आपूर्ति बाधित। उत्तराखंड में भारी बारिश और तूफान का कहर। टिरी और धनौल्टी में फसलों को नुकसान। कई पेड़ गिरे। बागेश्वर में नदियां उफान पर हैं। बैराज के गेट खोले गए। प्रशासन ने सायरन बजाकर लोगों को किया था अलर्ट। हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर के खराब मौसम से जनजीवन प्रभावित है। कई सड़कें बंद हैं। यातायात ठप हुआ। उत्तर प्रदेश के आगरा में आंधी बारिश में बड़ा नुकसान, पेड़ गिरे, टीन शेड उड़े और कई इलाकों में जल भराव। पश्चिम बंगाल के आसनसोल में भारी बारिश से सड़कें डूबी, जल जमाव से यातायात प्रभावित हुआ। छत्तीसगढ़ के बस्तर में आंधी और ओलावृष्टि से मकानों और फसलों को भारी नुकसान। प्रयागराज में भारी बारिश से कई जगहों पर जल भराव, पानी में मस्ती करते हुए नजर आए बच्चे। बिहार में तेज आंधी और बारिश का रेड अलर्ट जारी, कई जिलों में भारी बारिश की चेतावनी। मौसम विभाग ने लोगों से सतर्क रहने की अपील की, तेज हवाओं के साथ बिजली गिरने की भी आशंका जताई गई। कावेरी कॉलिंग प्रोजेक्ट के तहत 242 करोड़ पौधे लगाने की मुहिम, कावेरी नदी को फिर से जीवंत बनाने का लक्ष्य। नोएडा में ग्लोबल हॉस्पिटैलिटी एंड टूरिज्म कॉन्क्लेव का आयोजन, देश विदेश से शेफ और पर्यटन विशेषज्ञ इसमें शामिल हुए। गुजरात के भुज पहुंचे गृहमंत्री अमित शाह ने बॉर्डर का किया मुआयना, G7 सीमा चौकी पर पौधारोपण किया, BSF जवानों से मुलाकात की। मां वैष्णो देवी के दरबार में मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव ने टेका मत्था, मध्य प्रदेश की खुशहाली का आशीर्वाद मांगा। अल्मोड़ा के कसार देवी मंदिर में विदेशी पर्यटक मार्क रोज जंगल और मंदिर परिसर में कूड़ा साफ कर रहे हैं, उनका यह प्रयास पर्यावरण संरक्षण और स्वच्छता का बड़ा संदेश। जमशेदपुर में मिठाई बनाने वाली मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में भीषण आग लगी, धुएं और लपटों से इलाके में मचा था हड़कंप। जम्मू कश्मीर के रियासी में सलाल डैम के पास भीषण जंगल में आग लगी, इलाके में हड़कंप। अहमदाबाद वडोदरा हाईवे पर भीषण हादसा, बेकाबू कार ने सड़क पर खड़े लोगों को कुचल डाला। जामनगर में पान की दुकान के बाहर देर रात मारपीट हुई, CCTV कैमरे में पूरी घटना कैद। चुरू के रतनगढ़ में ब्रेक फेल होने से ऑटोमोबाइल शॉप में घुस गया था, इलाके में हड़कंप मचा, CCTV कैमरे की तस्वीरें सामने आई। गाजियाबाद के खोड़ा में युवक की चाकू मारकर हत्या, इलाज के दौरान मौत से इलाके में तनाव। मृतक के परिजन और स्थानीय लोगों में आक्रोश है, अस्पताल के बाहर भारी पुलिस बल तैनात। महाराष्ट्र के भिवंडी में स्क्रैप गोदाम में भीषण आग लगी, मौके पर पहुंचकर फायर ब्रिगेड की गाड़ियों ने काबू पाया। सूरत में पत्नी की प्रताड़ना से परेशान पति ने कलेक्टर ऑफिस में इच्छा मृत्यु की अर्जी दी है, पत्नी पर लुटेरी दुल्हन का आरोप भी लगाया। सूरत में पॉश फ्लैट में चल रहे लेडीज जुआ क्लब पर पुलिस का छापा, फ्लैट मालिक की पत्नी समेत 7 की गिरफ्तारी। अलवर में युवक ने आत्महत्या की, फेसबुक लाइव में 6 लोगों पर प्रताड़ना के आरोप लगाए, पुलिस मामले की जांच में जुटी। बालोतरा में सड़क हादसे में घायल 2 युवकों की इलाज के दौरान मौत हुई, पुलिस की गाड़ी से टक्कर के बाद गई थी जान। मुजफ्फरपुर में लक्ष्मी चौक स्थित रेस्टोरेंट के किचन में भीषण आग लगी, शॉर्ट सर्किट से हादसा, फायर ब्रिगेड ने पाया काबू। बेगूसराय में मॉर्निंग वॉक के दौरान लड़की को कार सवार बदमाशों ने अगवा करके रेप किया, 1 आरोपी की गिरफ्तारी। अलवर में करंट लगने से पति पत्नी की मौत, खेत में काम करने के दौरान यह हादसा हुआ। करनाल हत्याकांड में 1 आरोपी की गिरफ्तारी, 10 रुपए मांगने पर सब्जी विक्रेता की पीट पीट कर हत्या कर डाली थी। चुरू में ब्रेक फेल होने से मोबाइल शॉप में घुस गया था ऑटो, CCTV कैमरे में कैद हुई है तस्वीरें। सहारनपुर में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई, 1 लाख इनामी एहसान एनकाउंटर में ढेर हुआ इंस्पेक्टर और सिपाही को भी गोली लगी। ग्रेटर नोएडा में पुरानी रंजिश में बदमाशों ने आधी रात घर के बाहर फायरिंग कर डाली, पुलिस ने 2 को गिरफ्तार किया। इंदौर में लॉरेंस बिश्नोई गैंग के मास्टरमाइंड राहुल सिंह राठौर को पुलिस ने गिरफ्तार किया, 25,000 का इनामी था। कानपुर के सचेंडी गैंगरेप केस में आरोपी और निलंबित दरोगा अमित मौर्य गिरफ्तार, 50,000 का इनाम रखा गया था। जमशेदपुर के जुगसलाई में मिठाई की दुकान में मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में भीषण आग लगी, कड़ी मशक्कत के बाद काबू पाया गया। रांची में साइबर ठगी गैंग का भंडाफोड़, फ्लैट में चल रहा था फर्जी अकाउंट और आईडी बनाने का खेल, 5 की गिरफ्तारी। चरखी दादरी में पुलिस मुठभेड़ में टीचर ललित हत्याकांड के 2 मुख्य आरोपी गिरफ्तार किए गए, गिरफ्तारी के दौरान आरोपियों ने पुलिस की टीम पर ताबड़तोड़ फायरिंग की। जाला में दर्दनाक हादसा, दीवार गिरने से 2 मासूम बच्चों की मौत हुई। राजस्थान रॉयल्स को हराकर IPL के फाइनल में पहुंचा गुजरात टाइटंस, रविवार को बेंगलोर से खिताबी भिड़ंत होगी। राजस्थान ने दिया था 215 रनों का लक्ष्य, गुजरात के 8 गेंद बाकी रहते ही 3 विकेट गंवाकर हासिल किया लक्ष्य। गुजरात की जीत के हीरो बने कप्तान शुभमन गिल, 53 गेंदों पर ही जड़े थे 104 रन, पारी में जड़े 3 छक्के और 15 चौके। बेकार गई राजस्थान के वैभव सूर्यवंशी, सूर्यवंशी की धुआंधार 96 रनों की पारी, इनिंग्स में 7 छक्के और 8 चौके लगाए। गुजरात की ओर से रवाडा होल्डर ने झटके थे 2 विकेट, सिराज और प्रसिद्ध कृष्णा के खाते में 1-1 विकेट। संजय दत्त की खलनायक रिटर्न्स में कमिश्नर राम की किरदार में नजर आएंगे जैकी श्रॉफ, एक्टर ने किया कंफर्म। रणवीर के ऊपर बैन के बाद एक्टर ने बचाव के लिए सिनेमा एंड टीवी आर्टिस्ट एसोसिएशन को लिखा है। संगठन की वाइस प्रेसिडेंट पद्मिनी कोलापुरी बोली, हम रणवीर के साथ। वरुण धवन की अपकमिंग फिल्म है जवानी को इश्क होना है, CBFC ने UA 16+ सर्टिफिकेट दिया है। अभिनेता अनुपम खेर की फिल्म श्री राम भूमि की हुई आधिकारिक घोषणा, अयोध्या और राम जन्मभूमि के इतिहास पर आधारित है ये फिल्म। प्राइम वीडियोज की नई वेब सीरीज द पिरामिड स्कीम का ट्रेलर रिलीज किया गया। धुरंधर 2 में जस्सी का रोल निभाने वाले एक्टर परमबीर चीमा समेत रणबीर शौरी नजर आएंगे। हॉर्मुज पर अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप का बड़ा बयान, कहा हॉर्मुज में नाकेबंदी हटाएगा अमेरिका। ट्रंप का यूरेनियम पर बड़ा बयान, कहा ईरान से ढूंढ निकाला जाएगा यूरेनियम। अमेरिका, ईरान और IAEA के समन्वय से यूरेनियम निकालकर किया जाएगा उसे नष्ट। ईरान के सर्वोच्च नेता मुज्तबा खामनेई का बड़ा बयान, कहा ईरान के दुश्मन अब देश में फूट डालने की कोशिश में है। अमेरिका ने ईरान से जुड़ी तेल बिक्री पर प्रतिबंध लगाए हैं, दोनों देशों के बीच किसी समझौते की कोशिशें जारी। हॉर्मुज पर बोली ईरान के पूर्व IRGC के प्रमुख, कहा हॉर्मुज स्ट्रेट व्यापार के लिए खुला रहेगा, हॉर्मुज को लेकर किसी तरह की बाधा नहीं होगी। हॉर्मुज में अमेरिकी नाकेबंदी पर बड़ा खुलासा, अमेरिकी सेना का दावा 111 जहाजों को बदलना पड़ा अपना रूट। US सेंट्रल कमांड का दावा, ईरान के खिलाफ नाकेबंदी के दौरान हॉर्मुज में 20 से ज्यादा वॉरशिप तैनात थी। इसराइल का बेरूत और दक्षिणी लेबनान पर भीषण हमला, इसराइली लड़ाकू विमानों से कई घरों को नुकसान। हमले से पहले इसराइल ने दक्षिणी लेबनान के कई गांवों को खाली करने का निर्देश दिया, इलाके में तनाव बढ़ा। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के व्हाइट हाउस से सिचुएशन रूम में ईरान डील पर अहम बैठक समाप्त हुई, अंतिम फैसले पर अभी स्थिति साफ नहीं है।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
2: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो,
1: हेक्सा ऑर्गेनिक रेडियंट स्किन एंड नरिश्ड हेयर प्योर आयुर्वेदिक ब्यूटी, durable pipes, fittings and tanks, a complete range of...
3: There's just something about classic soul music that gets you moving. And TuneIn's exclusive soul groove station has all the right moves. Hit play on the grooviest 70s selection. Get your masters in melody with Motown Classics. Or just set the right tone with smooth, soulful vibes from Marvin Gaye and more. It's all right here on TuneIn, ready to set the perfect 70s tone. Search Soul Groove or tell your device to play Soul Groove on TuneIn now to listen.
4: From the biggest names in sports talk to the biggest moments in sports, this is NBC Sports Radio. Get your daily football fix with Mike Florio. Spend your mornings with Dan Patrick and the Danettes and dive deep with Dan Le Batard. Live, unfiltered, and always on Monday through Friday. Then when the games are on, we've got you covered with live events from NBC Sports. Search NBC Sports Radio or tell your device to play NBC Sports Radio on TuneIn to listen.
5: The music you love is all right here on TuneIn, bringing you good vibes and the hottest hits. But are you ready to amp things up even more? Just upgrade to TuneIn Premium for all of our exclusive music channels, completely commercial-free. So you get more of today's hits. More country roads. And everything else. Hear it all here, commercial-free, on TuneIn.
6: विक्रम चाहे जितना भी फड़फड़ा ले ढूंढ नहीं पाएगा।
7: ए प्रिया, कैसा लगा मेरा स्टंट?
8: विक्रम, एक हिंट तो देते।
9: विक्रम!
8: हिंट
7: बड़े आराम से।
10: लायन ओज फैमिली सुपर एक्शन फैमिली लायन,
11: इसमें है फाइबर, बीटा ग्लूकोन, प्रोटीन, मैग्नीशियम तत्व, इसलिए यह शारीरिक संतुलन के साथ साथ शरीर को स्वस्थ रखता है। लायन ओट्स फैमिली सुपर एक्शन फैमिली।
9: मौसम विभाग ने कहा है कि इस साल भारत में गर्मी का असर बहुत ही ज्यादा होने वाला है।
12: रामराज व्हाइट शर्ट्स इस समर को कूल बना दे।
13: ऊंचाई पर बने रहने के लिए जरूरी है इरादों का प्योर होना। गैलेंट एडवांस बनाते हैं ऐसा स्टील जो अंदर से है ज्यादा प्योर, ज्यादा मजबूत। गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो।
14: और वही कहाँ गए थे घूमने?
15: जीके मैक्स।
16: वैसे रोहन पढ़ाई में कैसा है?
15: जीके मैक्स बेस्ट पुट्टी,
17: जेके वॉल मैक्स
18: बेस्ट पेंट,
19: जेके मैक्स।
20: बाकी सब सवालों का पता नहीं, लेकिन मोस्ट ब्यूटीफुल वॉल्स के लिए सिर्फ जेके मैक्स पेंट्स। जेके मैक्स पेंट्स, खुशियों के रंग।
21: टेबल के ऊपर जब भी खाते हैं दबा के खाते हैं भाई साहब, सब पचा दे।
22: पर दिक्कत तो होने आती है जो टेबल के नीचे से।
23: मुल्तानी पश्मीना, अपने हक का खाओ, सब कुछ पचाओ।
24: डायरेक्टर, द टेस्ट ऑफ सक्सेस।

0: feels like summer. Monte Carlo, it's the way you make me feel.
1: Honey, इस घर में कुछ है जो टूटता नहीं.
2: ये पिलर कभी नहीं टूटेगा. रुंगटा स्टील टीएमटी से बना.
3: रुंगटा नहीं तो घर स्ट्रॉन्ग नहीं. रुंगटा स्टील टीएमटी बार एकदम सॉलिड.

0: इन एसोसिएशन विद
1: समकूल कूलर, हवा ऐसी छोड़े पूरी फैमिली को ठंडक से जोड़े, समकूल कूलर, लाइफ बनाए वंडरफुल।
0: हिंट, बड़े आराम से
2: पंजाब नेशनल बैंक, भरोसे का प्रतीक।
3: Cool stylish fans, enhance home decor with beautiful fans.
4: Sharda University, the world comes together at Sharda University. Where are you?
0: Vimal, bolo zuba kesri.
5: 25 saalon se jahan tiki hai desh ki nazar. Mere saath phir se shuru ho raha hai wahi safar. ये खबरें सात तक देखते रहिए आज तक।
6: Why and by whom was Coempt given the CBSE contract? Second, which procedures were circumvented to give Coempt this contract? If we could figure out in 30 seconds that this company earlier had a different name, why didn't the CBSE figure this out? And why were no background checks done? Third, and most important, what is the exact relationship between Coempt management and the Modi government?
7: मैं उनकी एक आदत, उनको एक बीमारी आ गई है। भारत में कोई भी परिवर्तन को सहज नहीं कर पाते हैं। उन्होंने SIR को विरोध किया था, उन्होंने EVM को विरोध किया था, उन्होंने भारत की अनेकों व्यवस्था को, भारत की डिजिटल इंडिया को विरोध करते हैं। ये एक दिवालिया मानसिकता के लक्षण है। आपको मैं क्या कह पाऊंगा, उनकी एक अंडरस्टैंडिंग है विषयों के ऊपर। बाकी रहा कोई स्पेसिफिक कंपनी के बारे में वो कह रहे हैं, मेरे शाम तक मेरे पास जो जानकारी है उन्हीं के साथ सिद्ध दो राज्यों में, कर्नाटक और तेलंगाना में, वो संस्था 5 शिक्षानुष्ठान की OSM काम कर रहा है।
8: अच्छा,
7: उनकी वेबसाइट चला रहे, उनकी सॉफ्टवेयर पोर्टल चला रहे। इसलिए तो ये तो कोई, कभी राहुल गांधी कोई विषय कुछ बोलते हैं तो फैक्ट चेक तो करते ही नहीं, बेबुनियाद बातों पे वो एक दुनिया गढ़ बैठते हैं।
9: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।
10: ड्यूरेबल पाइप्स, फिटिंग्स एंड टैंक्स, अ कंप्लीट रेंज ऑफ सैनिटरी सॉल्यूशंस।

ईरान अमेरिका में डील को लेकर भारी कंफ्यूजन, डील के करीब पहुंचने वाले बयान के बाद सिचुएशन रूम पहुंचे ट्रंप, ईरान ने दावे को किया खारिज, कहा हॉर्मुज रूट फ्री नहीं रहेगा। कर्नाटक में आज मुख्यमंत्री चुने जाएंगे डीके शिव कुमार, कांग्रेस विधायक दल की बैठक में लगेगी मोहर, 3 जून को 15 मंत्रियों के साथ ले सकते हैं शपथ, सिद्धरमैया के करीबियों को मिल सकती है जगह। नीट पेपर लीक पर सुप्रीम कोर्ट ने सरकार के बयान के बाद राहुल गांधी ने पीएम पर किया हमला, कहा अगर प्रधानमंत्री खुद निगरानी कर रहे हैं तो कैसे हुई इतनी बड़ी चूक, बीजेपी बोली छात्रों के भविष्य पर राजनीति कर रहे हैं नेता विपक्ष। दिल्ली से सटे गाजियाबाद में नाबालिग लड़के की हत्या ने लिया धार्मिक रंग, हिंदू संगठनों का प्रदर्शन, 24 घंटे का अल्टीमेटम दिया, आरोपी अशद आतिफ फरहान की तलाश। आईपीएल के फाइनल में पहुंची गुजरात टाइटंस, दूसरे क्वालिफायर में गिल ने तूफानी शतक से राजस्थान को 7 विकेट से हराया, काम नहीं आई सूर्यवंशी की 96 रनों की पारी।

नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक और आपके साथ मैं हूं शशि शर्मा। 8 बज गए, स्वागत है आप सभी का। सबसे पहले ये जान लीजिए कि अगले आधे घंटे में क्या खास है आपके लिए। बात गर्मी से हम करेंगे कि राहत थोड़ी सी मिल गई है गर्मी की। मौसम बदला है, तेज बारिश हुई है, कहां कहां बारिश हुई है ये आपको पूरी खबर देंगे। साथ ही साथ हम बात करेंगे नीट पर मचे हुए बवाल की भी। राहुल गांधी के सवाल और बीजेपी के जवाब भी हम आपको दिखाएंगे। कर्नाटक के सियासी अध्याय की भी हम बात करने वाले हैं क्योंकि डीके युग अब बस शुरू होने वाला है। और ठीक 8:30 बजे आपके लिए होगा नॉनस्टॉप 100। तो शुरुआत हम मौसम के मिजाज से करेंगे। आधा हिंदुस्तान गर्मी का प्रचंड मार को झेल रहा था, लेकिन शुक्रवार की रात राहत भरा दिन रहा और देश के कई हिस्सों में झमाझम बारिश हुई है। कहीं कहीं मूसलाधार बारिश देखी गई है, कहीं कहीं दिन से ही शुरुआत हो गई थी। कई जगहों पर रात के समय बादल बरसे हैं। आसमान से बरस रही आफत से कहीं आंधी तूफान ने तबाही मचाई है तो कहीं ओलावृष्टि की भी खबर है।

0: राजस्थान से लेकर उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, यूपी, कश्मीर, बंगाल, छत्तीसगढ़, इन तमाम जगहों पर मौसम बदला है। आगरा और धौलपुर में इतनी बारिश हुई है कि सड़कें दरिया बनी हुई नजर आईं, पेड़ जड़ से उखड़ गए, ट्रैफिक जाम हो गया और लोग दहशत में नजर आए इन तमाम जगहों पर। तो तस्वीरें बयां करने के लिए काफी हैं कि गर्मी से राहत तो मिल गई है, लेकिन अलग अलग जगहों पर जलभराव की भी समस्या देखी गई है और आंधी की वजह से कई जगहों पर जड़ों से पेड़ उखड़ गए थे। और अब आपको राजस्थान के धौलपुर की तस्वीर भी दिखा दें। धौलपुर में शुक्रवार को दिन में तेज आंधी तूफान और रात में तेज बारिश हुई है, जिससे सड़कों पर सैलाब सा आ गया था। तस्वीरें देखिए, बयां करने के लिए काफी है कि किस तरीके से एक ही बारिश में सड़कें लबालब नजर आ रही हैं।
1: फेमस है यहाँ
0: तो गर्मी से तो राहत मिल गई है, लेकिन अलग अलग जगहों पर आंधी तूफान, ओलावृष्टि और साथ ही साथ जलभराव ने काफी मुश्किलें खड़ी कर दी हैं। धौलपुर की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, देखिए किस तरीके से सड़कों पर पानी है, आवाजाही में काफी मुश्किलें हुई हैं और खासतौर से शाम के समय जहां जहां तेज बारिश हुई है उन तमाम इलाकों में जबरदस्त तरीके से ट्रैफिक जाम भी देखा गया है। तस्वीरों के जरिए अब हम समझाने की कोशिश करते हैं कि धौलपुर राजस्थान की किस तरह की तस्वीर सामने आई है। देखिए किस तरह यहाँ सड़कों पर जलभराव नजर आ रहा है, वाटर लॉगिंग की समस्या शुरू हो गई थी। हालांकि प्रशासन की तरफ से कहा यह गया कि तमाम समस्या से राहत मिल गई है, मतलब तुरंत ही प्रशासन की तरफ से पानी को निकालने का काम शुरू कर दिया गया था। अब जरा देखिए उत्तर प्रदेश के आगरा की तस्वीर, यहां पर भी झमाझम बारिश हुई है। बारिश के बाद पानी भरा हुआ चारों ही तरफ आपको नजर आएगा, तो गर्मी से बुरी तरह जो चिलचिलाती हुई गर्मी थी उससे तो राहत मिल गई है, लेकिन अलग अलग जगहों पर ज्यादा बारिश की वजह से मुश्किलें भी पेश आई हैं।
2: राजस्थान से लेकर उत्तराखंड, हिमाचल से लेकर कश्मीर, यूपी, बंगाल और छत्तीसगढ़ तक मौसम का ऐसा रौद्र रूप देखने को मिला कि जनजीवन पूरी तरह अस्त व्यस्त हो गया। सबसे पहले बात राजस्थान की, यहाँ जयपुर में तेज बारिश और ओलावृष्टि ने शहर की रफ्तार पर ब्रेक लगा दिया। धौलपुर में डेढ़ घंटे की मूसलाधार बारिश ने हालात बिगाड़ दिए। सड़कें, कॉलोनियां और गली मोहल्ले पानी में डूब गए। अब बात उत्तराखंड की, यहाँ देहरादून में तेज बारिश ने मौसम बदल दिया, लेकिन शहर की रफ्तार थम गई। टिहरी गढ़वाल में बारिश और भारी ओलावृष्टि ने किसानों की कमर तोड़ दी। वहीं धनौल्टी में देर रात आए तूफान ने भारी तबाही मचाई। 20 से 30 देवदार के पेड़ गिर गए, इको पार्क की टेंट शेड उड़ गई और बर्मा ब्रिज पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। बागेश्वर में लगातार बारिश के बाद नदियां उफान पर आ गईं। गोमती नदी पर बने बैजनाथ बैराज के गेट खोलने पड़े और प्रशासन ने सायरन बजाकर लोगों को अलर्ट किया। जम्मू कश्मीर की श्रीनगर गुलमर्ग रोड पर तेज आंधी से कई पेड़ उखड़ गए, सड़कें बंद करनी पड़ी और ट्रैफिक रोक दिया गया। बात उत्तर प्रदेश की करें तो आगरा में तेज आंधी और तूफान के साथ झमाझम बारिश हुई, पेड़ गिर गए, टिन शेड उड़ गए और कई इलाकों में जलभराव से ट्रैफिक थम गया। मौसम विभाग ने आने वाले दिनों में और आंधी बारिश की चेतावनी दी है। आज तक ब्यूरो।
0: तो राहत की बारिश अब आफत की बारिश बनती हुई नजर आ रही है, क्योंकि आंधी, तूफान, बारिश और वज्रपात ने देश के कई राज्यों में मौत और तबाही की ऐसी तस्वीर छोड़ी है जिसने लोगों को दहला कर रख दिया। कहीं पेड़ लोगों पर मौत बनकर गिरे हैं, कहीं दीवारें भरभराकर ढह गई हैं, कहीं निर्माणाधीन पुलों ने कई जिंदगियों को निगल लिया है, तो कहीं आसमानी बिजली ने लोगों को संभलने तक का मौका नहीं दिया। पश्चिम बंगाल से लेकर उत्तर प्रदेश और झारखंड तक मौसम का कहर कई परिवारों की खुशियों को छीन ले गया।
2: कहीं पेड़ मौत बनकर लोगों पर टूट पड़े, कहीं दीवारें भरभराकर जिंदगियां निकल गईं, कहीं आसमानी बिजली ने पल भर में सब कुछ खत्म कर दिया, तो कहीं तेज तूफान ने बन रहे पुल को ही कब्रगाह में तब्दील कर दिया। सबसे बड़ा कहर पश्चिम बंगाल में देखने को मिला। कोलकाता समेत पश्चिम बंगाल के कई जिलों में आए भीषण तूफान और बारिश ने 7 लोगों की जान ले ली। उत्तर प्रदेश के हमीरपुर में तूफान के दौरान एक अंडर कंस्ट्रक्शन पुल मौत का जाल बन गया। तेज आंधी के बीच पुल का हिस्सा भरभराकर गिर पड़ा और 6 लोगों की जान चली गई। हादसे के बाद मलबे के बीच घंटों तक राहत और बचाव अभियान चलाया गया। बांदा में भी तूफान ने 2 परिवारों को उजाड़ दिया। एक बुजुर्ग की दीवार गिरने से मौत हो गई, जबकि दूसरे व्यक्ति की जान पेड़ गिरने से चली गई। जालौन में भी कुदरत का कहर 2 जिंदगियां लील गया। एक महिला तेज आंधी की चपेट में आकर जान गंवा बैठी, जबकि एक व्यक्ति दीवार गिरने से मारा गया। झारखंड के गढ़वा में आसमानी बिजली मौत बनकर गिरी, महिला वज्रपात की चपेट में आ गई। आंधी तूफान बारिश और वज्रपात के इस कहर ने कई परिवारों को हमेशा का दर्द दे दिया है। आज तक ब्यूरो।
0: और यह खबर है गाजियाबाद से, बड़ी और अहम खबर, जहां एक शख्स की हत्या कर दी गई है, चाकू मारकर हत्या की गई है। गाजियाबाद के खोड़ा में एक युवक की हत्या ने पूरे इलाके में सनसनी फैला दी है। जिस युवक को देर रात अस्पताल पहुंचाया गया था, उसने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया।
2: एक मामूली कहा सुनी और फिर चंद सेकंड में बिछ गई एक लाश। ये तस्वीरें गाजियाबाद के खोड़ा इलाके की हैं, जहां सूर्या नाम के युवक पर चाकू से हमला किया गया। प्रत्यक्षदर्शी के मुताबिक पहले सड़क पर कहा सुनी हुई, जो गाली गलौज और मारपीट तक पहुंच गई। इसके बाद आरोप है कि असद, आतिफ और फरहान समेत कुछ युवा सूर्या को बातचीत के बहाने गली में ले गए और वहीं उस पर चाकू से हमला कर दिया। गंभीर हालत में युवक को अस्पताल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टर उसे बचा नहीं सके। मौत की खबर मिलते ही परिवार में कोहराम मच गया। परिजनों का आरोप है कि पुरानी रंजिश और आपसी विवाद इस हमले की वजह बना। हत्या की खबर फैलते ही इलाके में तनाव का माहौल बन गया। अस्पताल के बाहर हिंदू संगठनों की भारी भीड़ जमा हो गई और लोगों में आक्रोश देखने को मिला। हालात को देखते हुए अस्पताल और आसपास के इलाके में भारी पुलिस बल तैनात किया गया है। पुलिस का कहना है कि आरोपियों की पहचान कर ली गई है और गिरफ्तारी के लिए टीमें लगा दी गई हैं। एक युवक की मौत, 3 नाम सामने और सवाल अभी भी कायम है कि सड़क पर शुरू हुआ मामूली विवाद इतनी बड़ी वारदात में कैसे बदल गया। ब्यूरो रिपोर्ट आज तक।
0: और इस खबर पर तमाम जानकारी के साथ हमारे साथ हमारे सहयोगी अंशुल जुड़ गए। अंशुल, अभी ताजा अपडेट क्या है, क्योंकि कहा जा रहा है कि पुलिस वहां तैनात है, बहुत जबरदस्त हंगामा और लोगों में बहुत ज्यादा नाराजगी और रोष है।
3: जी हाँ, कल सुबह से ही जिस तरीके से वहां पे भीड़ लग रही थी, नारेबाजी हो रही थी, उसके बाद पुलिस बल वहां काफी भारी संख्या में मुहैया कराई गई है। वहाँ ग्राउंड जीरो पे अभी ये सिचुएशन है कि अभी भी जो पुलिस बल है ये यहाँ पे काफी भारी संख्या में मौजूद है। इसके अलावा जो अक्यूज है, करीब करीब 7 लोग हैं, जैसा आरोप लगाया गया है कि 7 लोग हैं, जिसमें से 3 के नाम सामने आए हैं, 4 लोगों के नाम अभी तक एफआईआर में नहीं आए हैं। 7 लोग शामिल हैं जिन्होंने पूरी हत्या को अंजाम दिया। 17 साल का सूर्या बकरीद वाले दिन अपने घर से ये पूरा मामला सुलटाने के लिए, निपटाने के लिए बाहर निकला, तो उसे ये 7 लोग बगल वाले गली में ले जाते हैं और उसके बाद इस पे चाकू से हमला कर देते हैं और फिर वहां से फरार हो जाते हैं। गाजियाबाद पुलिस का अभी ये कहना है कि इन्होंने इनकी पहचान कर ली है और कुछ लोगों को राउंड अप भी किया है, हिरासत में भी लिया है, लेकिन अभी तक जो मेन अक्यूज है, जो 7ों के 7ों आरोपी है, उनमें से किसी की गिरफ्तारी नहीं हो पाई है, जिसकी वजह से जो हिंदू संगठन है वहां पे वो काफी गुस्से में आ गए हैं और पुलिस को 24 घंटे का अल्टीमेटम दिया है कि अगर 24 घंटे में पुलिस सख्त कार्रवाई करके इन 7ों के 7ों लोगों को अरेस्ट नहीं करती है तो हिंदू संगठन जो है अपना प्रदर्शन और धरना और उग्र कर सकते हैं। तो अभी ये देखना होगा कि गाजियाबाद पुलिस कितनी जल्दी जा करके इन लोगों को पकड़ सकती है, जिसके बाद कहीं ना कहीं जो गुस्सा है वहां के लोगों में वो गुस्सा थोड़ा शांत हो पाए।
0: तो ये जानने वाले थे अंशुल, जो इस पूरे के पूरे हत्याकांड में शामिल रहे हैं, और क्या परिवार ने कुछ कोई पुरानी रंजिश तो नहीं थी, कोई और बात तो नहीं थी, इसके बारे में कोई जानकारी दी है?
3: जी बिल्कुल, ये एक ही मोहल्ले के रहने वाले हैं और कुछ दिनों पहले ही जो 17 वर्षीय सूर्या है उसका एक झगड़ा हुआ था, जिसके बाद बकरीद वाले दिन उसे घर से बुलाया गया ये कहते हुए कि आकर के बातचीत कर लो और इस मामले को सुलटा देते हैं। जैसे ही वो बातचीत करने पहुंचता है, उसे वहां पे घेर लिया जाता है, धक्का मुक्की की जाती है और फिर उस पर चाकू से हमला कर दिया जाता है। तो ये सातों के सातों लोग सूर्या को जानते थे, इन्हें पता था वो कहाँ रहता है, किस वक्त वो खाली रहता है और कब उसे बुलाया जा सकता है जब उसके घर पे कोई ना हो। सूर्या के साथ बस उसकी माँ है इस वक्त और उसके पिता नहीं है, जिसकी वजह से उसकी माँ ऑफिस गई हुई थी, अपने काम पर गई हुई थी, जब उन्हें पता लगता है कि उनके बेटे पर इस तरीके से हमला हो गया है और उसके बेटे की जान चली गई है।
0: बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए अंशुल आपका। तमाम अपडेट्स के लिए हम आपका रुख करेंगे। इस पूरे मामले में पुलिस वहां तैनात है, तुरंत ही गिरफ्तारी की मांग आसपास के लोगों की तरफ से की जा रही है आरोपियों की। आगे बढ़ेंगे पुणे से बड़ी और अहम खबर। पुणे में जहरीली शराब पीने से आपको बता दें कि 15 लोगों की जान चली गई है। कोर्ट ने 4 आरोपियों को 8 जून तक पुलिस हिरासत में भेज दिया है। मामले में महाराष्ट्र में पुलिस अलर्ट मोड पर है। इस कड़ी में कोल्हापुर पुलिस और साथ ही स्थानीय अन्वेषण विभाग ने करवीर इलाके में अवैध शराब बनाने वाले 2 घरेलू भट्टियों पर छापेमारी भी की है। कार्रवाई के दौरान शराब बनाने में इस्तेमाल होने वाले रसायन, तैयार शराब और अन्य उपकरणों को बरामद कर लिया गया है। पुलिस ने करीब 155,820 रुपए मूल्य की सामग्री को जब्त किया है। तमाम चीजों को नष्ट वहां किया गया है। प्रशासन का कहना यह है कि अवैध और मिलावटी शराब के कारोबार के खिलाफ अभियान आगे भी इसी तरह जारी रहेगा। लगातार मरने वालों की संख्या बढ़ती जा रही है, जो बढ़कर हो गई है 15। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ हमारे संवाददाता ओमकार जुड़ गए, उनका हम रुख करेंगे। ओमकार, क्या जानकारी है और जिस तरीके से 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 लोगों की जान चली गई है सुबह होते हो, तो कहा जा रहा है कि कई की हालत अभी भी गंभीर है।
4: एग्जैक्टली कल 12 लोगों की मौत हुई थी और उसके बाद जो लोग गंभीर थे उनमें से और 3 लोगों की मौत हो चुकी है, तो अभी तक कुल आंकड़ा 15 तक पहुंच चुका है। अभी भी अस्पताल में 3 लोग ऐसे हैं जो अपनी मौत को लेकर जूझ रहे हैं, उनपे भी जो मेडिकल केयर यूनिट है वहाँ उनपे उपचार चल रहे हैं। सबसे अहम बात यह है, पुणे पुलिस ने अब ऑपरेशन वॉशआउट शुरू किया है। पिंपरी चुनचर पुलिस हो या फिर अब ये पूरा मामला सीआईडी को सौंप दिया जाएगा, तो गृह अन्वेषण विभाग जो महाराष्ट्र का है वो अभी आगे इन्वेस्टिगेशन करेगा। तब तक इसके लिंक जो पुणे के नजदीकी शहर है उरुई कांचन हो या फिर यहाँ से जो सातारा और कोल्हापुर के रूट है वहां अब छापेमारी हो रही है। सब इसी के साथ जो 15 लोग गए हैं, अब सरकार बोल रही है कि इस पूरे मामले में इन्वेस्टिगेशन होगा और इन्वेस्टिगेशन आगे जाएगा, लेकिन जहां जहां से जहरीली शराब मिल रही थी, जहां इसे बनाया जा रहा था, क्योंकि अभी फॉरेंसिक टीम ने इसमें जो सैंपल्स कलेक्ट किए हैं उसमें प्राथमिक तौर पर यह दिख रहा है कि मिथेनॉल की मात्रा इसमें ज्यादा थी और इसी के कारण ये सब कुछ हुआ है। तो फॉरेंसिक लैब भी वहां पहुंची है, उसने भी सैंपल्स कलेक्ट किए हैं और आगे का जो इन्वेस्टिगेशन है वो शुरू है।
0: बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए आपका ओमकार। मुंबईकरों को सुबह सुबह महंगाई का झटका लगा है। मुंबई में सीएनजी के दामों में इजाफा किया गया है। मुंबई में सीएनजी के दाम 2 रुपए प्रति किलो बढ़ा दिए गए हैं। कीमत बढ़ने के बाद सीएनजी के दाम हो गए 84 रुपए प्रति किलोग्राम से बढ़कर 86 रुपए प्रति किलोग्राम। सीएनजी की कीमतों में हुई इस बढ़ोतरी का असर अब निजी वाहन चालकों, टैक्सी, ऑटो रिक्शा, व्यावसायिक वाहनों पर भी पड़ेगा। तो सुबह सुबह 2 रुपए सीएनजी प्रति किलो बढ़ा दी गई है मुंबई में और अब इसके दाम हो गए 86 रुपए प्रति किलो। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ हमारे संवाददाता दीपेश त्रिपाठी जुड़ गए। दीपेश, जिस तरीके से पेट्रोल, डीजल, सीएनजी लगातार इनके दामों में इजाफा हो रहा है, उसके बाद ट्रांसपोर्ट पर, बाकी के खाने पीने की चीजों पर सीधा सीधा आम जनता की जेब पर असर पड़ेगा इसका?
5: सही, बिल्कुल। देखिए, सीएनजी के दाम 14 तारीख को ही 2 रुपए बढ़ाए थे, जिससे कीमत 82 रुपए से बढ़कर 84 रुपए हुई थी और आज दोबारा से 2 रुपए की बढ़ोतरी एमएमआर रीजन में की गई है। यानी अब सीएनजी के दाम 86 रुपए प्रति किलो हो गए हैं और ज्यादातर व्यावसायिक गाड़ियां जो होती हैं वो सीएनजी इस्तेमाल करती हैं, जिसकी वजह से सीधा असर जो है ये आम आदमी की जेब पर पड़ेगा, क्योंकि लगातार पिछले 15 दिनों में ये दूसरी बार बढ़ोतरी की गई है और इसकी वजह से जो आम आदमी की जेब पर बोझ है वो बढ़ेगा। अब देखना होगा जो व्यावसायिक गाड़ियां इस्तेमाल कर रहे हैं, जो कंपनियां हैं वो इसमें क्या करती हैं, किस तरीके से इसे बढ़ोतरी करती हैं। अब आने वाले दिनों में ये भी जानना अहम होगा कि
0: जी। बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए आपका। तो लगातार महंगाई बढ़ रही है और आपको ये भी बता दें कि तमाम बाकी की चीजों पर इसका असर आना तय है। राजस्थान के चुरू की अब हम बात करेंगे। चुरू शहर में उस समय हड़कंप मच गया था जब एक अनियंत्रित ऑटो सीधे मोबाइल शॉप में जा घुसा। अचानक हुई इस घटना से दुकान में बैठे हुए लोग, आसपास मौजूद लोग कुछ देर के लिए स्तब्ध रह गए थे, घबरा गए थे। मौके पर अफरा तफरी मच गई थी। टेम्पो चालक ऑटो लेकर पुलिया नंबर 4 से आ रहा था और तभी अशोक स्तंभ के पास उसके ऑटो के ब्रेक फेल हो गए। चालक ने सड़क पर मौजूद लोगों को बचाने की कोशिश की और ऑटो को गली में मोड़ दिया, लेकिन गली में बहुत ज्यादा भीड़ थी। उसे देखकर वाहन शॉप की तरफ वो मुड़ा और ऑटो सीधे दुकान में घुस गया। हादसे के वक्त दुकान में व्यापारी सहित 4-5 और भी लोग मौजूद थे। अचानक से टक्कर के बाद कांच, गेट, काउंटर, मोबाइल फोन, तमाम चीजों को टूटी हैं, क्षतिग्रस्त हुई हैं और हल्की चोटें लोगों को भी आई हैं। ये देखिए, तस्वीरें बयां करने के लिए काफी हैं कि कैसे कांच तोड़ते हुए ऑटो घुसा है दुकान के भीतर और यहां पर लोग मौजूद थे। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह लोग बुरी तरह से डर गए थे। अच्छी बात यह रही है कि टेबल और कांच जरूर टूटा है, नुकसान जरूर हुआ है, लेकिन ज्यादा चोटें लोगों को नहीं आई हैं। ऑटो चालक का कहना यह था कि ब्रेक फेल होने की वजह से मेन रोड से उसने गली में घुसाया, वहां पर भी बहुत ज्यादा भीड़ थी और उसे समझ कुछ आता उससे पहले उसका ऑटो दुकान में घुस चुका था। और अब बात करेंगे नीट पेपर लीक पर मचे हुए घमासान के बारे में। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने नीट परीक्षा और परीक्षा प्रणाली को लेकर केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोला है। सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट करते हुए उन्होंने कहा कि नीट छात्रों से मुलाकात के दौरान यह साफ हुआ कि देश का युवा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर भरोसा नहीं करता। राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि छात्रों ने उन्हें बताया कि पेपर व्हाट्सएप और टेलीग्राम जैसे प्लेटफॉर्म्स पर खुलेआम बेचे जा रहे हैं। उनके मुताबिक छात्रों को यह भी जानकारी है कि पेपर लीक का नेटवर्क कैसे काम करता है, कौन इसमें शामिल है और किस तरह माफिया सक्रिय है। उन्होंने सवाल उठाया कि जो बातें छात्र जानते हैं वो सरकार और संस्थाएं क्यों नहीं जानती।
6: पैसे के लिए नहीं करना चाहते हो, आप फेथ के लिए करना चाहते हो, तो आप यहां आए हो बिकॉज योर फेथ इन नीट इज ब्रोकन, बट इन आपके प्रोफेशन में तो फेथ इज द मेन थिंग कि जो आपको, जिसका आप इलाज कर रहे हो उसको लगे कि आप उसकी जान बचाने की कोशिश कर रहे हो, ऑनेस्टली जान बचाने की कोशिश कर रहे हो, बट वो तो पूरा मतलब बिजनेस सा बन गया है। और आपका भी जो चल रहा है, फ्रेंकली आपने मुझे बोला कि ट्यूशन फीस, दिस इज नॉट, ट्यूशन फीस इज नॉट योर रिस्पॉन्सिबिलिटी,
7: इट इज आवर पेरेंट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी।
6: एक्चुअली द एजुकेशन सिस्टम शुड नॉट रिक्वायर यू टू हैव ट्यूशन, एक्चुअली द सिस्टम शुड बी स्ट्रॉन्ग इनफ दैट यू डोंट रिक्वायर ट्यूशन एट होम, ऑल दिस स्टफ, बट दैट सिस्टम इज कंप्लीटली बिकम essentially a business. So the whole pura idea hai ki bhai paisa nahi
7: hai, a business.
6: So it's no, government can't do it. It is government has decided that it wants to hand this over to somebody else. This, in my view, it is the government's responsibility to educate people. It is the government's responsibility to give people health care. That's my view. That is not the current government's view.
0: तो राहुल गांधी ने सरकार को घेरा तो बीजेपी ने भी पलटवार कर दिया है। बीजेपी कह रही है कि अब एयरफोर्स को लगा दिया गया है, लीक नहीं होगा, तो वहीं विपक्ष सवाल उठा रहा है कि फौज का काम सीमाओं की सुरक्षा है या परीक्षा की सुरक्षा और उसे परीक्षा को करवाना है।
8: प्रधानमंत्री जी ने खुद निर्देश दिए हैं और राजनाथ सिंह जी की यहाँ बैठक भी हुई और ये चिंता की जा रही है कि अब ना लीक हो, जरूरत पड़े तो एयरफोर्स की भी जरूरत पड़े तो एयरफोर्स की भी के हवाई जहाज भी यूज किए जाए ताकि किसी प्रकार से कोई लीकेज ना हो। परंतु अंतर्गत इसका सोल्यूशन है जबकि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होने शुरू हो।
9: कितनी बार सुना है आपने इस सरकार में, 12 वर्षों से मैं कम से कम 1200 बार सुन चुका अलग अलग मुद्दों पे। अब तो सुना है कि सेना की मदद लेने वाले हैं, मतलब दुनिया में हम अकेला देश होंगे जहां की परीक्षाएं भी हमारी सेना कंडक्ट करेगी। अरे सेना को तो बकस दीजिए महाराज, उनका बहुत महत्वपूर्ण काम है, सरहद संभाल रहे हैं, इस देश को सुरक्षित रख रहे हैं, आप एक परीक्षा तक नहीं करवा रहे। ऊपर से ये भी सुना है कि स्कूलों को इंस्ट्रक्शन दिया गया है कि रील बनाओ ओएसएम के फेवर में।
0: और अब बात करेंगे कर्नाटक के बारे में, क्योंकि कर्नाटक की सियासत में अब सत्ता परिवर्तन का अंतिम अध्याय तेजी से लिखा जा रहा है। कांग्रेस के अंदर चली खींचतान और लंबी बैठकों के बाद आज का दिन बड़ा ही अहम माना जा रहा है, जहां नए मुख्यमंत्री के नाम पर अंतिम मोहर लगने की पूरी संभावना है। तो आपको बता दें कि बैठक में डीके शिव कुमार नेता चुने जाएंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण बैठक है और उसके बाद तय किया जाएगा कि कब उनका शपथ ग्रहण होना है। सिद्धरमैया इस्तीफा दे चुके हैं और जिस तरीके से पूरा मान मनोबल का दौर चला उसके बाद मनाकर सिद्धरमैया को रेजिग्नेशन दिलवा दिया गया है और अब नंबर है डीके शिव कुमार का।
10: कांग्रेस ने आज बेंगलुरु के विधान सौधा में अहम सीएलपी बैठक बुलाई है। इस बैठक में एआईसीसी पर्यवेक्षक केसी वेणुगोपाल और रणदीप सिंह सुरजेवाला मौजूद रहेंगे। माना जा रहा है कि डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार को कांग्रेस विधायक दल का नेता चुने जाने की औपचारिकता पूरी की जाएगी, जिससे उनके 25वें मुख्यमंत्री बनने का रास्ता साफ हो सकता है। सूत्रों के मुताबिक पूर्व मुख्यमंत्री सिद्धारमैया का इस्तीफा स्वीकार कर लिया गया है और उन्हें नई सरकार बनने तक कार्यवाहक मुख्यमंत्री के रूप में जिम्मेदारी संभालने को कहा गया है। कांग्रेस हाईकमान ने इस पूरे बदलाव को लेकर संगठनात्मक तैयारी लगभग पूरी कर ली है। इसी बीच डीके के मंत्रिमंडल में 15 नामों के शामिल होने की संभावना है। सूची में सत्ता संतुलन, जातीय समीकरण और क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व को ध्यान में रखा गया है। साथ ही सिद्धारमैया और शिव कुमार दोनों खेमों के नेताओं को जगह देने की कोशिश दिखाई दे रही है ताकि पार्टी में संतुलन बना रहे। हालांकि अंतिम फैसला कांग्रेस हाईकमान की मंजूरी के बाद ही लिया जाएगा। कुछ पुराने चेहरों को दोबारा मौका मिलने की संभावना है, जबकि कुछ नए नाम भी कैबिनेट में शामिल हो सकते हैं। इस बीच वरिष्ठ नेता केजे जॉर्ज का नाम संभावित सूची से बाहर बताया जा रहा है। अब सबकी नजरें आज होने वाली सीएलपी बैठक पर टिकी है, जहां कर्नाटक की नई राजनीतिक तस्वीर लगभग साफ हो सकती है।
0: और इसी के साथ हम यहाँ एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, आप बने रहें हमारे साथ, देखते रहें आज तक।
11: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोस, इन एसोसिएशन विद
12: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
13: हेक्सा ऑर्गेनिक रेडियंट स्किन एंड नरिश्ड हेयर, प्योर आयुर्वेदिक ब्यूटी।

0: विक्रम चाहे जितना भी फड़फड़ा ले ढूंढ नहीं पाएगा।
1: प्रिया कैसा लगा मेरा स्टंट?
2: विक्रम एक हिंट तो देते।
3: विक्रम
2: हिंट
3: बड़े आराम से

0: feels like summer. Monte Carlo, it's the way you make me feel.
1: टेबल के ऊपर से जब भी खाते हैं दबा के खाते हैं, भाई साहब सब पचा देते हैं।
2: पर दिक्कत तो उन्हें आती है जो टेबल के नीचे से खाते हैं।
3: मुल्तानी पश्मीना, अपने हक का खाओ, सब कुछ पचाओ।
4: और भाई कहाँ गए थे घूमने?
5: जीके मैक्स।
6: वैसे रोहन पढ़ाई में कैसा है?
5: जीके मैक्स बेस्ट पुट्टी,
7: जेके वॉल मैक्स
5: बेस्ट पेंट,
8: जेके मैक्स।
9: बाकी सब सवालों का पता नहीं, लेकिन मोस्ट ब्यूटीफुल वॉल्स के लिए सिर्फ JK Maxx Paints.
10: JK Maxx Paints. खुशियों के रंग।
11: इसमें है फाइबर, बीटा ग्लूकोन, प्रोटीन, मैग्नीशियम तत्व, इसलिए ये शारीरिक संतुलन के साथ साथ शरीर को स्वस्थ रखता है। लायन ओट्स फैमिली, सुपर एक्शन फैमिली।
12: करेक्टर, द टेस्ट ऑफ सक्सेस।
13: आपके पास दो ऑप्शंस हैं, या तो सुपरमैन बनकर फर्नीचर को भीगने से बचा लो, या E3 HDMR बोर्ड लगाकर फर्नीचर को लाइफटाइम के लिए वाटर और टर्माइट प्रूफ बना लो। E3 प्रोडक्ट्स, ये रिश्ता लंबा चलेगा।
14: मौसम विभाग ने कहा है कि इस साल भारत में गर्मी का असर बहुत ही ज्यादा होने वाला है।
15: रामराज व्हाइट शर्ट्स इस समर को कूल बना रही।
16: गोल्डी छोले मसाले जहाँ जाएं रिश्ते बनाएं।
17: गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश।
18: ऊंचाई पर बने रहने के लिए जरूरी है इरादों का प्योर होना। कैलेंट एडवांस बनाते हैं ऐसा स्टील जो अंदर से है ज्यादा प्योर, ज्यादा मजबूत। कैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो।
19: 25 सालों से जहां टिकी है देश की नजर, मेरे साथ फिर से शुरू हो रहा है वही सफर। ये है खबरें 7 तक, देखते रहिए आज तक।

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा,
1: इन एसोसिएशन विद
2: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
3: हेक्सा ऑर्गेनिक रेडियंट स्किन एंड नरिश्ड हेयर, प्योर आयुर्वेदिक ब्यूटी।

ईरान अमेरिका में डील को लेकर भारी कंफ्यूजन। डील के करीब पहुंचने वाले बयान के बाद सिचुएशन रूम पहुंचे ट्रंप। ईरान ने दावे को किया खारिज का हॉर्मुज रूट फ्री नहीं रहेगा। कर्नाटक में आज मुख्यमंत्री चुने जाएंगे डीके शिव कुमार। कांग्रेस विधायक दल की बैठक में लगेगी मुहर। 3 जून को 15 मंत्रियों के साथ ले सकते हैं शपथ। सिद्धा के करीबियों को मिल सकती है जगह। नीट पेपर लीक पर सुप्रीम कोर्ट में सरकार के बयान के बाद राहुल गांधी ने पीएम पर किया हमला। कहा अगर खुद प्रधानमंत्री कर रहे हैं निगरानी तो कैसे हुई इतनी बड़ी गलती। बीजेपी बोली छात्रों के भविष्य पर राजनीति कर रहे हैं नेता विपक्ष। दिल्ली से सटे गाजियाबाद में नाबालिग लड़के की हत्या ने लिया धार्मिक रूप। हिंदू संगठनों का प्रदर्शन। 24 घंटे का अल्टीमेटम दिया आरोपी अशद आतिफ फरहान की तलाश। और आईपीएल के फाइनल में पहुंची गुजरात टाइटंस। दूसरे क्वालिफायर में गिल के तूफानी शतक से राजस्थान को 7 विकेट से हराया। काम नहीं आई सूर्यवंशी की 96 रनों की पारी।

0: तो सबसे पहले बड़ी और अहम खबर आपको बता दें, गाजियाबाद में हिंदू युवक की हत्या को लेकर इस वक्त बड़ी और अहम खबर यह है कि हत्या से पहले का एक वीडियो अब सामने आया है। हिंदू युवक सूर्या के साथ हाथापाई करते हुए नजर आए, कई लड़के वीडियो में सूर्या को घेर कर खड़े हुए नजर आ रहे हैं कुछ लड़के, और इसके बाद ही सूर्या को चाकू मारकर मार डाला गया था, उसकी हत्या कर डाली गई थी। हिंदू युवक सूर्या की हत्या का कुछ आरोप मुस्लिम लड़कों पर लगा है, असद आतिफ फरहान इनके नाम है। कई लड़कों पर हत्या के आरोप हैं जिनकी गिरफ्तारी की मांग की जा रही है। बवाल जबरदस्त बढ़ा हुआ है। ये जो तस्वीरें हैं बयां करने के लिए काफी हैं कि किस तरीके से कई युवकों ने सूर्या को घेरा हुआ है और इसी के कुछ ही देर बाद चाकू मारकर सूर्या को मौत के घाट उतार दिया गया था। लहूलुहान हालत में तुरंत ही अस्पताल में सूर्या को भर्ती कराया गया जहां उसे मृत घोषित कर दिया गया था। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ हमारे संवाददाता अंशुल जुड़ गए। अंशुल, ये जो वीडियो है बहुत कुछ बयां करने के लिए काफी है और इसमें तीन नहीं कई लड़के नजर आ रहे हैं।
1: जी हाँ बिल्कुल, अभी तक तीन लड़के ऐसे हैं जिनको आइडेंटिफाई करके कंप्लेंट में जिनका नाम दिया गया है जो कि उसी मोहल्ले के रहने वाले हैं। लेकिन अगर आप उनकी तस्वीरों में देखें और सामने परिवार का भी जैसा आरोप है उनका कहना है, करीब छह से सात लड़के ऐसे थे जो आते हैं और फिर सूर्या को घर से बुलाते हैं ये कहकर कि जो मामला उनके बीच चल रहा था, जो विवाद चल रहा था, उसे कहीं ना कहीं सुलझा लिया गया। जब सूर्या वहां पहुंचता है तो उसे घेर करके उसके साथ धक्का मुक्की की जाती है, गाली गलौज की जाती है और उसके बाद एक धारदार चाकू से, बड़े चाकू से उस पर हमला कर दिया जाता है, जिसके बाद उसे वहां छोड़ करके उसे घायल अवस्था में वहां छोड़ करके ये सातों के सातों लोग वहां से फरार हो जाते हैं। और फिर जब पुलिस वहां पहुंचती है तो पुलिस सूर्या को लेकर के अपोलो अस्पताल में एडमिट कराती है, जहां फिर वहां पहुंचने के बाद उसकी मौत हो जाती है, जिसके बाद से ही पूरे इलाके में काफी तनावपूर्ण माहौल बना हुआ है। काफी सारे हिंदू संगठन भी कल यहाँ आकर के काफी ज्यादा धरना प्रदर्शन किया, जिसके बाद उन्होंने पुलिस प्रशासन से बातचीत करने के बाद उन्हें 24 घंटे का अल्टीमेटम दिया और ये कहा कि अगर 24 घंटे में ये सभी लोग पकड़े नहीं जाते और इनके साथ वैधिक कार्रवाई नहीं होती तो ये जो आक्रोश है, ये जो गुस्सा है, ये कहीं ना कहीं और भड़क सकता है। अभी तक आपको बता दें कि गाजियाबाद पुलिस के हाथ खाली है, कुछ लोगों को हिरासत में लिया गया है, लेकिन जो मेन अक्यूज है इस पूरे मामले में वो अभी तक फरार है।
0: बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए आपका। आगे बढ़ेंगे और अब आपको दिखाएंगे नॉनस्टॉप 100
2: पतंजलि।

0: अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की व्हाइट हाउस सिचुएशन रूम में ईरान की डील पर अहम बैठक समाप्त हुई, दो घंटे तक चली थी ये बैठक। अंतिम फैसले पर अभी भी स्थिति साफ नहीं है, ट्रंप बोले ईरान डील पर जल्द होगा फैसला, सीज फायर बढ़ाने पर भी चर्चाएं। ईरान का आरोप, ट्रंप झूठी जीत दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, बातचीत अभी भी अधूरी है। ईरान अमेरिका डील पर मतभेद बरकरार है, परमाणु कार्यक्रम और हॉर्मुज को लेकर टकराव। यूएस नेवी ने जहाजों की चेतावनी जारी कर दी, हॉर्मुज में तनाव बढ़ गया है, अमेरिका ने ईरान पर अवैध माइनिंग के आरोप लगाए। हॉर्मुज पर अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप का बड़ा फैसला, कहा हॉर्मुज में नाकेबंदी हटाएगा अमेरिका, ईरान पर जल्द किया जाएगा अंतिम फैसला। ट्रंप का यूरेनियम पर बड़ा बयान, कहा ईरान से ढूंढकर निकाला जाएगा यूरेनियम, अमेरिका ईरान और आईएईए के समन्वय से यूरेनियम निकालकर किया जाएगा उसे नष्ट। ईरान के सर्वोच्च नेता मुज्तबा खामनेई का बड़ा बयान, कहा ईरान के दुश्मन देश अब फूट डालने की कोशिश में जुटे हैं। अमेरिका ने ईरान से जुड़ी तेल बिक्री पर नए प्रतिबंध लगाए, दोनों ही देशों के बीच किसी भी समझौते की कोशिश नहीं। हॉर्मुज पर बोले ईरान के पूर्व आईआरजीसी के प्रमुख, कहा हॉर्मुज स्ट्रेट व्यापार के लिए खुला रहेगा, हॉर्मुज को लेकर किसी भी तरह की बाधा को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हॉर्मुज में अमेरिकी नाकेबंदी पर बड़ा खुलासा, अमेरिकी नेता का दावा 111 जहाजों को बदलना पड़ा था अपना रूट। यूएस सेंट्रल कमांड का दावा, ईरान ने के खिलाफ नाकेबंदी के दौरान हॉर्मुज में 20 से ज्यादा वॉरशिप तैनात किए गए थे। इसराइल का बेरूत और दक्षिणी लेबनान पर भीषण हवाई हमला, इजरायली लड़ाकू विमानों ने कई घरों को नुकसान पहुंचाया। हमले से पहले इसराइल ने दक्षिणी लेबनान के कई गांवों को खाली करने का आदेश दिया था, इलाके में तनाव बढ़ा। कर्नाटक में आज कांग्रेस विधायक दल की बेंगलुरु में बैठक है, डीके शिवकुमार को चुना जाएगा नेता। विधायक दल की बैठक से पहले दिल्ली में राहुल गांधी से मिले डीके शिवकुमार, रविवार को ले सकते हैं मुख्यमंत्री पद की शपथ। दिल्ली में राहुल गांधी से मीटिंग में सिद्धरमैया ने कैबिनेट के लिए सौंपी है सूची, सूत्रों के मुताबिक सिद्धरमैया ने अपने बेटे के लिए मांगा है पसंदीदा विभाग। सिद्धरमैया ने कांग्रेस हाईकमान को दिया समन्वय समिति बनाने का प्रस्ताव, सूत्रों के मुताबिक हाईकमान राजी नहीं। गुजरात के दौरे पर अमित शाह ने भुज में पाकिस्तान बॉर्डर का किया दौरा, सीमा पर जवानों से मुलाकात की। नीट मामले पर राहुल गांधी के वीडियो के बाद गरमाई है सियासत, प्रधानमंत्री मोदी पर जमकर बोला हमला। राहुल गांधी ने कहा भारत का युवा प्रधानमंत्री मोदी पर भरोसा नहीं करता, नीट परीक्षा व्यवस्था पर भी सवाल उठाए। सोशल मीडिया पर राहुल गांधी के वीडियो को लेकर बीजेपी का पलटवार, अमित मालवीय ने राहुल गांधी के बयान पर उठाए सवाल। अमित मालवीय ने नीट के मुद्दे पर राहुल गांधी के बयान को गैर जिम्मेदाराना बताया, कहा राहुल गांधी छात्रों के मुद्दे पर जिम्मेदारी नहीं सनसनी फैला रहे हैं। नीट पेपर लीक कांड में सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई की, सुप्रीम कोर्ट ने सख्ती से कहा तय करनी होगी जिम्मेदारी तभी सच का पता चल पाएगा। नीट पर सुनवाई के दौरान सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता, प्रधानमंत्री मोदी खुद कर रहे हैं मामले की निगरानी। सुप्रीम कोर्ट ने संस्थाओं को इतना मजबूत करने पर जोर दिया, कहा पेपर लीक के जड़ तक पहुंचना बड़ा जरूरी। राधाकृष्ण कमेटी ने सुप्रीम कोर्ट को बताया एनडीए को मजबूत करने की सलाह दी गई थी, लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म के लिए दिए गए थे करीब 110 सुझाव। नीट मामले पर संसदीय समिति की भी बैठक, समिति के सामने पेश हुए सीबीआई और एनडीए के निदेशक, एनडीए ने निष्पक्ष परीक्षा का भरोसा दिया। सीबीएसई की ऑन स्क्रीन मॉर्निंग प्रणाली पर मार्किंग प्रणाली पर बड़ा विवाद, कॉपी जांच प्रक्रिया पर सवाल उठे हैं। उत्तर पुस्तिकाओं में गड़बड़ी और अदला बदली के आरोप हैं, सीबीएसई की नई व्यवस्था पर छात्रों की शिकायतें बढ़ी। सीबीएसई मुख्यालय पर एनएसयूआई का बड़ा प्रदर्शन, ओएसएम सिस्टम वापस लेने की मांग तेज हुई। राहुल गांधी का दावा, नीट छात्रों ने परीक्षा व्यवस्थाओं पर सवाल उठाए, पेपर लीक को माफियाओं को लेकर भी गंभीर आरोप लगाया। स्कैनिंग और मूल्यांकन में गड़बड़ी के आरोप, 13,000 से ज्यादा कंपनियां कॉपियां मैनुअल जांची गई। त्रिशा शर्मा मौत के मामले में बड़ा अपडेट, सीबीआई ने दो आरोपियों को हिरासत में लेकर पूछताछ तेज की। 5 दिन की सीबीआई रिमांड पर भेजे गए त्रिशा के पति और सास जज गिरीवाला और बेटे से हो सकती है साथ बिठाकर पूछताछ। त्रिशा शर्मा की मौत के मामले में साजिश और सबूतों से छेड़छाड़ की आशंका की भी जांच जारी। ओवैसी ने एसआईआर प्रक्रिया को बताया गंभीर मुद्दा, का यह जीवन और मृत्यु का सवाल है। सड़कों पर नमाज पर बोले असदुद्दीन ओवैसी, कहा अगर सड़कों पर नमाज पढ़ना गलत है तो सभी धार्मिक सड़क समारोहों का भी विरोध होना चाहिए। योगी के बयान पर समाजवादी पार्टी का पलटवार, प्रवक्ता फखरुल हसन चांद ने कहा चुनाव के वक्त हमेशा हिंदू मुस्लिम करते हैं। यूपी में हमीरपुर पुल हादसे पर अखिलेश ने बीजेपी पर हमला बोला, पोस्ट में लिखा हवा से बने पुल पर गाड़ी चढ़ी तो क्या होगा, भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ रहा है हर निर्माण। आजम खान के बेटे अब्दुल आजम को कोर्ट से राहत, दो पासपोर्ट के मामले में 7 साल की सजा रद्द, सेशंस कोर्ट का फैसला। बिहार बीजेपी की नई टीम का ऐलान, 14 प्रदेश उपाध्यक्ष बनाए गए, निशा सिंह महिला मोर्चा की बनाई गई हैं अध्यक्ष। ऋषिकेश के परमार्थ निकेतन घाट पर बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन ने गंगा आरती में हिस्सा लिया, सीएम पुष्कर सिंह धामी भी शामिल हुए। पंजाब नगर निगम चुनाव में आम आदमी पार्टी का जबरदस्त दबदबा, 8 में से 5 नगर निगमों में भारी जीत दर्ज की। पंजाब निकाय चुनावों में आम आदमी पार्टी की सुनामी, 800 से ज्यादा सीटों पर जीत दर्ज की। मोहाली, बरनाला, बटाला, मोरगा और बठिंडा में आम आदमी पार्टी ने बड़ी बढ़त के साथ जीत हासिल की। कांग्रेस ने कपूरथला नगर निगम में बहुमत हासिल कर लिया है, बीजेपी ने अबोहर में जीत दर्ज की है। पंजाब निकाय चुनाव नतीजों पर सियासी बयानबाजी तेज हुई, भगवंत मान ने इसे विकास की जीत बताया है। राजस्थान के जयपुर और धौलपुर में तेज बारिश और ओलावृष्टि से जनजीवन अस्त व्यस्त हुआ, कई इलाकों में जलभराव और बिजली आपूर्ति की खबर। उत्तराखंड में भारी बारिश और तूफान का कहर देखा गया, टेरी और धनौल्टी में फसलों को भारी नुकसान। बागेश्वर में नदियां उफान पर, बैराज के गेट खोले गए, प्रशासन ने सायरन बजाकर लोगों को अलर्ट किया। हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर में खराब मौसम से जनजीवन अस्त व्यस्त है, कई सड़कें बंद और यातायात ठप। उत्तर प्रदेश के आगरा में आंधी बारिश से बड़ा नुकसान, पेड़ गिरे, टीन शेड उड़े और कई इलाकों में जल भराव भी। पश्चिम बंगाल के आसनसोल में भारी बारिश से सड़कें डूबी, जल जमाव से यातायात प्रभावित हुआ। छत्तीसगढ़ के बस्तर में आंधी और ओलावृष्टि से मकानों और फसलों को भारी नुकसान हुआ। प्रयागराज में भारी बारिश से कई जगहों पर जलभराव, पानी में मस्ती करते हुए नजर आए बच्चे। बिहार में तेज आंधी और बारिश का रेड अलर्ट जारी, कई जगहों पर भारी बारिश की चेतावनी। मौसम विभाग ने लोगों से सतर्क रहने की अपील की, तेज हवाओं के साथ बिजली गिरने की भी आशंका जताई। जमशेदपुर में मिठाई बनाने वाली मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में भीषण आग लगी, धुएं लपटों से इलाके में हड़कंप। जम्मू कश्मीर के रियासी में सलाल डैम के पास भीषण जंगल में आग लगी, इलाके में हड़कंप मचा। अहमदाबाद वडोदरा हाईवे पर भीषण हादसा, बेकाबू कार ने सड़क पर खड़े लोगों को कुचल डाला। जामनगर में पान की दुकान के बाहर देर रात मारपीट हुई, सीसीटीवी फुटेज सामने आई। चुरू के रतनगढ़ में ब्रेक फेल होने से ऑटोमोबाइल शॉप में घुस गया था ऑटो, इलाके में हड़कंप, सीसीटीवी फुटेज सामने आई। मनाली में पर्यटकों में भारी तादाद, मनाली रोहतांग रास्ते में भारी जाम, 50 किलोमीटर के सफर में 7 से 8 घंटे लग रहे हैं। पर्यटकों की भारी भीड़ के सामने मनाली पुलिस प्रशासन की तैयारियां नाकाफी, पार्किंग की कमी और सड़क किनारे गाड़ियों के खड़े होने से स्थिति और ज्यादा भयानक। श्रीनगर गुलमर्ग रोड पर बिगड़े हैं मौसम के हालात, आंधी तूफान ने सड़कों पर कई पेड़ गिराए, लंबा जाम लगा। उत्तराखंड के टिहरी जिले में अचानक से बदल गया मौसम, कई इलाकों में तेज बारिश के साथ ओले भी गिरे, किसानों को भारी नुकसान। उत्तराखंड के बागेश्वर जिले में भी मूसलाधार बारिश हुई, मौसम सुहाना। गाजियाबाद के खोड़ा में युवक की चाकू मारकर हत्या, इलाके में हड़कंप। मृतक के परिजनों ने स्थानीय लोगों में आक्रोश है, अस्पताल के बाहर भारी पुलिस बल तैनात। महाराष्ट्र के विवंडी में स्क्रैप गोदाम में भीषण आग लगी, मौके पर पहुंचकर फायर ब्रिगेड की गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। सूरत में पत्नी की प्रताड़ना से परेशान होकर पति ने कलेक्टर ऑफिस में जाकर इच्छा मृत्यु की अर्जी दी, पत्नी पर लुटेरी दुल्हन के भी आरोप लगाए। सूरत के पॉश फ्लैट में चल रहे लेडीज जुआ क्लब पर पुलिस ने छापा मारा, फ्लैट मालिक की पत्नी समेत 7 की गिरफ्तारी। अलवर में युवक ने आत्महत्या की, फेसबुक लाइव में आकर 6 लोगों पर प्रताड़ना के आरोप लगाए थे, पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। बालोतरा में सड़क हादसे में घायल 2 युवकों के इलाज के दौरान मौत हुई, पुलिस की गाड़ी से टक्कर के बाद जान गई। मुजफ्फरपुर में लक्ष्मी चौक स्थित रेस्टोरेंट में किचन में लगी थी भीषण आग, शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगने की आशंका, पाया गया काबू। बेगूसराय में मॉर्निंग वॉक के दौरान लड़की को कार सवार बदमाशों ने अगवा किया और उसके बाद रेप की घटना को अंजाम दिया गया। एक आरोपी गिरफ्तार। अलवर में करंट लगने से पति पत्नी की मौत हुई। खेत में काम करने के दौरान हादसा हुआ। करनाल हत्याकांड में एक आरोपी की गिरफ्तारी। 10 रुपए की मांगने पर सब्जी विक्रेता की पीट पीट कर हत्या कर डाली थी। शुरू में ब्रेक फेल होने की वजह से मोबाइल शॉप में घुस गया था ऑटो। सीसीटीवी फुटेज सामने आई। सहारनपुर में पुलिस बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई। 1 लाख का इनामी बदमाश ढेर हुआ। इंस्पेक्टर और सिपाही को गोली लगी। ग्रेटर नोएडा में पुरानी रंजिश में बदमाशों ने आधी रात को घर के बाहर फायरिंग कर डाली। पुलिस ने 2 को गिरफ्तार किया। इंदौर में लॉरेंस बिश्नोई गैंग के मास्टरमाइंड राहुल सिंह राठौर को पुलिस ने गिरफ्तार किया। 25,000 का इनामी था। कानपुर के सचेंडी गैंग रेप केस में आरोपी और निलंबित दरोगा समेत अमित मौर्य गिरफ्तार किए गए। 50,000 का इनाम था। जमशेदपुर के जुगसलाई में मिठाई की दुकान में मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में भीषण आग लगी। कड़ी मशक्कत के बाद काबू पाया गया। रांची में साइबर ठगी का भांडाफोड़। फ्लैट में चल रहा था फर्जी अकाउंट और आईडी बनाने का खेल। 5 की गिरफ्तारी। चरखीदादरी में पुलिस मुठभेड़ में ललित हत्याकांड के 2 मुख्य आरोपी गिरफ्तार किए गए। गिरफ्तारी के दौरान आरोपियों ने पुलिस की टीम पर ताबड़तोड़ फायरिंग की थी। जाला में दर्दनाक हादसा। दीवार गिरने से 2 मासूमों की मौत की खबर। राजस्थान रॉयल्स को हराकर आईपीएल के फाइनल में पहुंचा है गुजरात टाइटंस। रविवार को बेंगलोर में होगी खिताबी भिड़ंत। राजस्थान ने दिया था 215 रनों का लक्ष्य। गुजरात ने 8 गेंद बाकी रहते 3 विकेट गंवाकर हासिल कर लिए लक्ष्य। गुजरात की जीत के हीरो बने कप्तान शुभमन गिल। 53 गेंदों पर जड़े 104 रन। पारी में जड़े 3 छक्के और 15 चौके। बेकार गई राजस्थान के वैभव सूर्यवंशी की धुआंधार 96 रनों की पारी। इनिंग्स में 7 छक्के और 8 चौके जड़े। गुजरात की ओर से रवाडा और होल्डर ने झटके थे 2 विकेट। सिराज और प्रसिद्ध कृष्णा के खाते में 1-1 विकेट। संजय दत्त की कलंक रिटर्न्स में कमिश्नर राम के किरदार में नजर आएंगे जैकी श्रॉफ। एक्टर ने कंफर्म किया। रणबीर पर बैन के बाद एक्टर के बचाव में सिनेमा एंड टीवी आर्टिस्ट एसोसिएशन सामने आई। संगठन की वाइस प्रेसिडेंट पद्मिनी कोल्हापुरी बोली, हम रणबीर के साथ हैं। वरुण धवन की अपकमिंग फिल्म जवानी को इश्क होना है को सीबीएफसी ने दिया है UA 16+ सर्टिफिकेट्स। अभिनेता अनुपम खेर की फिल्म श्री रामभूमि की हुई आधिकारिक घोषणा। अयोध्या और राम जन्मभूमि के इतिहास पर आधारित इस फिल्म का मुहूर्त संपन्न। प्राइम वीडियो की नई वेब सीरीज द पिरामिड स्कीम का ट्रेलर रिलीज किया गया। धुरंधर 2 में जस्सी का रोल निभाने वाले एक्टर परमवीर चीमा समेत रणबीर शौर्य और शेखर सुमन नजर आएंगे।
1: Presented by पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
2: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुट।

नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं भाग्य चक्र और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। आज हम बात करेंगे दुर्घटना की, शारीरिक दुर्घटना, आर्थिक दुर्घटना, आपके रिश्तों में, आपके संबंध में आने वाली दुर्घटना। दुर्घटनाएं होती क्यों हैं और अगर दुर्घटना की संभावनाएं हैं तो उससे बचने के उपाय क्या हैं, आज इस विषय पर बात करेंगे। बात करेंगे 12 राशियों के दैनिक राशिफल की और कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे कि अगर आज किसी महत्वपूर्ण काम से जाना है तो क्या करके घर से निकलें कि आपको सफलता मिले, और आज का दिन कितना महत्वपूर्ण है, आज कौन सा काम करें कौन सा काम ना करें। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जानते हैं पंचांग। दिनांक 30 मई 2026 दिन शनिवार, तिथि है अधिक ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि, नक्षत्र है विशाखा नक्षत्र, चंद्रमा तुला राशि में संचरण कर रहे हैं, राहु काल का समय प्रातः 9 बजे से 10:30 तक, पूर्व दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो जरा सा घी खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। देखिए, आज हम बात कर रहे हैं जीवन में घटने वाली दुर्घटनाओं के बारे में। दुर्घटनाओं के योग क्या होते हैं और ज्योतिष में इसके लिए कौन से ग्रह जिम्मेदार हैं। देखिए, कोई भी अशुभ घटना, बुरी घटना अगर आकस्मिक रूप से घट जाए तो वो दुर्घटना है। सामान्यतः हम समझते हैं कि दुर्घटना का मतलब होता है चोट लग जाना, शारीरिक क्षति हो जाना, लेकिन दुर्घटना केवल चोट चपेट या शारीरिक क्षति नहीं होती, कभी कभी अन्य तरीके से भी जीवन में दुर्घटना घट जाती है। दुर्घटना आर्थिक भी हो सकती है कि आपको पैसे रुपए का अचानक बड़ा नुकसान हो जाए, और दुर्घटना मानसिक भी हो सकती है कि मेंटली आप बड़ी मुश्किल में आ जाएं। सूर्य और चंद्रमा आपकी डेली लाइफ पर, आपके दैनिक जीवन पर सबसे ज्यादा असर डालते हैं, इसीलिए जीवन में घटने वाली दुर्घटना के सबसे बड़े जिम्मेदार होते हैं। सूर्य और चंद्रमा के बाद राहु, मंगल और शनि, ये ज्यादातर दुर्घटनाओं के लिए जिम्मेदार होते हैं। बृहस्पति, शुक्र, शुभ बुध, शुभ चंद्र, ये दुर्घटनाओं से आदमी की रक्षा करते हैं। नॉर्मली रोज के जीवन में सूर्य और चंद्रमा को देखा जाता है और उसी के आधार पर ये बताया जा सकता है कि किस दिन दुर्घटना की संभावना सबसे प्रबल है, किस दिन सावधानी रखने की आवश्यकता ज्यादा है। दुर्घटनाओं पर हमारी चर्चा जारी रहेगी, लेकिन आपको बता दें कि कार्यक्रम के अंत में हम बताएंगे कि अगर आज किसी महत्वपूर्ण काम से जाना है
तो क्या करके घर से निकलें कि सफलता मिले, और आज का दिन किस समय सबसे ज्यादा शुभ होगा और उस समय कौन सा उपाय करना चाहिए। अब जान लेते हैं मेष, वृषभ और मिथुन राशि का दैनिक राशिफल। मेष राशि, विवाह के मामलों में तेजी आएगी, करियर में सफलता मिलेगी, धन का लाभ होगा। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा सफेद। वृषभ राशि, धन की स्थितियां ठीक रहेंगी, मानसिक तनाव कम होगा, परिवार में शुभ कार्य होगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं उस शुभ रंग आज के लिए होगा गुलाबी। मिथुन राशि, पारिवारिक समस्या हल होगी, रुका हुआ धन मिल सकता है, दौड़ भाग बढ़ी रहेगी। हनुमान चालीसा का एक बार पाठ कर लें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा धानी। अब सामान्य जीवन में आपको चोट चपेट लगती है या वाहन दुर्घटना होती है तो शारीरिक और वाहन दुर्घटना के लिए कौन से ग्रह जिम्मेदार होते हैं? शनि राहु या शनि मंगल के कारण वाहन दुर्घटना घटती है। शनि मंगल का संबंध आपकी कुंडली में अगर नकारात्मक है तो आप वाहन दुर्घटना के शिकार होंगे। साढ़े साती या ढैया जब उतर रही होती है उस समय भी अक्सर दुर्घटनाओं की और चोट चपेट की संभावना बन जाती है। लग्न के स्वामी का कमजोर होना शरीर में चोट लगाता है, शारीरिक क्षति होती है, लेकिन अगर दुर्घटना के समय में मारक दशा चल रही हो तो आदमी का प्राणांत भी हो सकता है, और अगर मारक दशा ना हो तो चोट चपेट लगती है

उसमें कौन सा उपाय किया जाएगा। अब जान लेते हैं कर्क, सिंह और कन्या राशि का दैनिक राशिफल।

सावधानी रखें, शनि मंत्र का अगर जप कर लें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा सफेद। सिंह राशि।

व्यस्तता बनी रहेगी। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा लाल। कन्या राशि, थोड़ी व्यस्तता बनी रहेगी, धन के मामलों में सफलता मिलेगी, ऑफिस की समस्या कम हो जाएगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आपके लिए होगा हरा। वक्त हो गया है आपके सवाल का। अगर आप ज्योतिष के माध्यम से अपनी समस्या का समाधान चाहते हैं तो आप हमें मेल कर सकते हैं भाग्यचक्र@aajtak.com पर। आज का पहला प्रश्न निर्मला जी ने लिखा है हमें, और निर्मला जी हमें बिहार से मेल लिखती हैं। अपने बेटे के बारे में जानना चाहती हैं। बेटे की जन्म की तारीख है 23 नवंबर 2004। जन्म का समय शाम के 4:47। जन्म स्थान है भागलपुर, बिहार। ये कह रही हैं कि मेरा बेटा गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहा है, क्या मेरे बेटे को गवर्नमेंट जॉब मिलेगी और उसका भविष्य कैसा रहेगा? निर्मला जी, अगर आपका बेटा प्रशासनिक सेवा की तैयारी करे, बैंकिंग या फाइनेंस की सेक्टर में तैयारी करे, तो इन क्षेत्रों में आपके बेटे को गवर्नमेंट जॉब मिल सकती है साल 2027 में। आने वाला समय आपके बेटे का अच्छा है, उसमें कोई बहुत चिंता की बात नहीं है। अपने बेटे को एक मोती बनवा के पहना दीजिए, 8-10 रत्ती की मोती, तांबे या सोने की अंगूठी में, और इसको पहना जाएगा शुक्ल पक्ष के सोमवार की रात को सबसे छोटी उंगली में। तो एक इनको मोती पहनाएं, ध्यान रखें इनको मोती चांदी में नहीं सोने में पहनाना ज्यादा बेहतर होगा। और दूसरा इनको कहें कि रोज सुबह सूर्य भगवान को जल चढ़ाएं तो इनको सफलता जल्दी मिलेगी। तो शारीरिक दुर्घटना के बारे में आपने जान लिया, अब जानिए आर्थिक दुर्घटनाएं कब होती हैं और फाइनेंशियल मुश्किलें कब आती हैं। देखिए, आर्थिक दुर्घटना का मतलब है पैसे का एकदम से बड़ा नुकसान हो जाना, सडन पैसे की दिक्कत आ जाना। बुध अगर कुंडली में खराब है, बुध की स्थिति अगर निगेटिव है, तो आर्थिक दुर्घटनाओं के योग बनते हैं। मंगल एक ऐसा ग्रह है जो अगर कुंडली में निगेटिव हो

से कर्जों में डूब जाता है। राहु का अगर नकारात्मक प्रभाव हो, धन के मामले से राहु का संबंध हो, तो व्यक्ति राजा से रंक हो जाता है। बृहस्पति एक ऐसा ग्रह है जो आर्थिक दुर्घटना घट जाने के बावजूद दोबारा से आपको खड़ा कर देता है। कुंडली में बुध निगेटिव हो, बुध वक्री हो, बुध की दशा चल रही हो, आप कोई काम शुरू करेंगे, काम खराब होगा, पैसे डूबेंगे, या बिना सोचे विचारे आप पैसे का इन्वेस्टमेंट करेंगे और कुंडली में बुध अच्छा ना हो तो भी आपके पैसे डूब जाएंगे। अब ये जानते हैं कि अगर कुंडली में पैसे के बड़े नुकसान होने का या आर्थिक दुर्घटनाओं के होने का योग है तो उससे बचने के लिए क्या करना चाहिए। अगर कुंडली में बुध खराब है तो पन्ना कभी मत पहनिएगा, क्योंकि बुध खराब होगा और आप पन्ना पहनेंगे तो बड़ा पैसे का झटका आपको लग सकता है। अगर आर्थिक नुकसान के आर्थिक दुर्घटना के योग हैं तो नियमित रूप से विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करिएगा। अगर मंगल की वजह से नुकसान पे नुकसान हो रहा है और आप कर्ज में डूबते चले जा रहे हैं तो रोज हनुमान चालीसा पढ़ना अच्छा होगा, और साथ में अगर हनुमान जी की पूजा करेंगे तो मांस मदिरा त्याग देंगे। अगर राहु का प्रभाव हो जिसकी वजह से आर्थिक दुर्घटना की संभावना हो, पैसे रुपए के बड़े नुकसान के योग हो, तो दारिद्र दहन स्तोत्र रोज सुबह पढ़िएगा और नियमित रूप से जितना कर सकें यथाशक्ति अगर धन का दान करिएगा तो आप आर्थिक मुश्किलों से आर्थिक दुर्घटना से बचे रहेंगे। दुर्घटनाओं पर हमारी चर्चा जारी है, लेकिन आपको बता दें कि कार्यक्रम में आगे हम बताएंगे आपके जन्म की तारीख के अनुसार आज का दिन कैसा जाने वाला है और आज के दिन की जिज्ञासा क्या है और समाधान क्या है। अब जान लेते हैं तुला, वृश्चिक और धनु राशि का दैनिक राशिफल। तुला राशि, धन प्राप्ति के मजबूत योग हैं, परिवार में व्यस्तता रहेगी, रुके हुए काम आपके पूरे होंगे। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज

मतभेद हो सकता है, स्वास्थ्य का ध्यान बनाए रखें, वाहन सावधानी से चलाएंगे, शनि मंत्र का अगर जप कर लें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा नारंगी।

धन लाभ के योग बन रहे हैं, किसी धर्म स्थान पर जा सकते हैं। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा सुनहरा। देखिए, बहुत बार जीवन में ऐसा होता है कि जो हमारे नजदीकी रिश्ते होते हैं किसी छोटी की बात पर, छोटी सी बात पर अलग हो जाते हैं, दूर हो जाते हैं और जीवन में दोबारा संबंध नहीं जुड़ पाते। यानी बिना वजह के रिश्तों में आकस्मिकता आ जाती है, अचानक से दुर्घटना घट जाती है। आपके रिश्तों में दुर्घटना किन ग्रहों की वजह से घटती है? चंद्रमा और शुक्र, ये दोनों रिश्ते बनाते भी हैं और रिश्तों में आकस्मिक समस्याएं पैदा भी करते हैं। राहु जो है वो रिश्तों की समस्या बढ़ा देता है। आम तौर पर राहु की स्थिति में शक, वहम ये सब पैदा होता है तो रिश्तों की समस्या बढ़ जाती है। मंगल के कारण रिश्तों में विस्फोटक दुर्घटना घट जाती है। लोग आपस में झगड़ा कर लेते हैं, अपशब्द बोल लेते हैं, एक दूसरे को मार देते हैं, हिंसा हो जाती है और रिश्ता पूरी तरह से परमानेंटली टूट जाता है। तो आपके नजदीक रिश्तों में दुर्घटना घट सकती है ग्रहों के प्रभाव के कारण। अगर कुंडली में रिश्तों की दुर्घटना के योग हैं तो क्या उपाय करेंगे? कुंडली में जो ग्रह रिश्तों में दुर्घटना दे सकता है, सूर्य, मंगल, राहु, केतु और शनि, सबसे ज्यादा सूर्य जो समस्या का कारण ग्रह है रिश्तों के लिए, उसकी शांति कराइए। नियमित रूप से सूर्य भगवान को जल अर्पित करिए, सादा जल, प्लेन वाटर। भगवान शिव और मां पार्वती की संयुक्त उपासना, ज्वाइंट पूजा करिए। और जिनकी कुंडलियों में रिश्तों के खराब होने या टूटने की संभावना है, ऐसे लोग हीरा सोच समझकर सावधानी के साथ धारण करें। कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे कि आज का दिन कितना महत्वपूर्ण है और आज के दिन कौन सा काम करें, कौन सा काम ना करें। अब जान लेते हैं मकर, कुंभ और मीन राशि के लोगों का दैनिक राशिफल। मकर राशि, धन लाभ के योग हैं, करियर में व्यस्तता रहेगी, विवाह के मामलों में तेजी आएगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा फिरोजी।

होगा, स्वास्थ्य बेहतर होता जाएगा। पूजा उपासना में समय लगाएं। हनुमान चालीसा का अगर एक बार पाठ कर लें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा नीला।

स्वास्थ्य का मानसिक तनाव हो सकता है, वाहन सावधानी से चलाइएगा। शनि मंत्र का अगर जप कर लें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा पीला। वक्त हो गया है ऐसा क्यों का। ऐसा क्यों में हम आपके मन और जीवन से जुड़ी हुई तमाम जिज्ञासाओं का समाधान करने का प्रयास करते हैं। लोगों का ऐसा कहना है कि गाड़ी के आगे डैशबोर्ड पर हनुमान जी का चित्र या मूर्ति जरूर लगानी चाहिए। हनुमान जी का चित्र ही क्यों, उनकी मूर्ति ही क्यों, ऐसा क्यों कहा जाता है? देखिए, एक तो हनुमान जी रक्षा करते हैं हर तरह की दुर्घटना से और हर तरह की समस्या से। दूसरी बात यह है कि हनुमान जी ने सबसे लंबी और सकुशल यात्रा की थी जब वो लंका गए थे, तो यात्रा के मामले में हनुमान जी की कृपा प्राप्त करना जरूरी है। तो हनुमान जी के डैशबोर्ड पर रहने से, उनका चित्र या उनकी मूर्ति, आप जब गाड़ी चलाना शुरू करते हैं तो पहले उनको नमस्कार करके गाड़ी चलाते हैं। इससे वाहन की और वाहन के लोगों की रक्षा होती है और आप सफल और सुरक्षित यात्रा कर पाते हैं। अब वक्त हो गया है लकी नंबर के अनुसार आपका लक जानने का। नंबर 1 से लेके नंबर 9 तक के लोगों के लिए आज का दिन कैसा रहने वाला है, आइए जानते हैं। नंबर 1, स्वास्थ्य में सुधार होगा। नंबर 2, धन लाभ के योग बन रहे हैं। नंबर 3, रुके हुए काम पूरे होंगे। नंबर 4, मानसिक अशांति हो सकती है। नंबर 5, यात्रा के योग बन रहे हैं। नंबर 6, विवाह तय हो सकता है। नंबर 7, काम की अधिकता रहेगी। नंबर 8, करियर में लाभ के योग हैं। और नंबर 9, धन लाभ के योग बन रहे हैं। अब वक्त हो गया है भाग्य पहर का, तो आइए जानते हैं कि आज भाग्य पहर का शुभ समय क्या है और इसमें कौन सा उपाय किया जाएगा। आज भाग्य पहर का शुभ समय है शाम को 6 बजे से 7:30 तक। इस समय में पीपल के वृक्ष के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाइएगा। आपके रोजगार और करियर की स्थिति में सुधार होगा। अगर आज आपकी कोई परीक्षा है, कोई इंटरव्यू है, किसी महत्वपूर्ण मीटिंग में जाना है, तो क्या करके घर से निकलें कि आपको सफलता मिले, आइए जानते हैं सक्सेस मंत्र में। अगर आज आपकी कोई परीक्षा है तो घी खाकर घर से जाइए, सफल होंगे। अगर आज आपका कोई इंटरव्यू है, लौंग खाकर घर से जाइए, सफलता मिलेगी। अगर आज कोई महत्वपूर्ण मीटिंग है तो हनुमान जी को लाल फूल चढ़ाइएगा, इसके बाद जाइएगा, काम बन जाएगा। अगर डॉक्टर के पास या हॉस्पिटल जाना है इलाज के लिए, चिकित्सा के लिए, तो चंदन का छोटा सा तिलक लगा के जाइएगा, आपके स्वास्थ्य में सुधार होगा। अगर वाहन, भूमि, भवन, आभूषण, कोई बड़ी खरीदारी करनी है तो नीला रुमाल साथ में रखने से आपको लाभ होगा। अब वक्त हो गया है शुभ मंगल सावधान का, तो आइए जानते हैं कि आज का दिन किस राशि के लिए बहुत शुभ होगा
और किस राशि को बहुत सावधान रहना होगा।

का तुला राशि वालों के लिए हर कार्य में सफलता मिलेगी, चिंताएं समाप्त होंगी। आज का दिन मंगलमय होगा वृषभ राशि वालों के लिए, स्वास्थ्य में सुधार होगा, जीवन बेहतर होगा। और आज सावधान रहना होगा वृश्चिक राशि वालों को, बेवजह का तनाव, बेवजह की चिंता परेशान कर सकती है। आइए अब जानते हैं कि आज का दिन कितना महत्वपूर्ण है और आज के दिन क्या करें क्या ना करें। इस समय अधिक मास चल रहा है तो इस समय किसी भी नए काम की शुरुआत मत करिएगा। और आज के दिन जल और खाने पीने की चीज का दान करें तो आपके लिए शुभ होगा। तो भाग्य चक्र में आज के लिए बस इतना ही। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, इसी कामना के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आज तक। नमस्कार।

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परो
1: इन एसोसिएशन विद
2: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
3: ये भोपाल के अर्बन एरियाज के फोटोग्राफ्स हैं जिनमें टाइगर का मूवमेंट है,
4: तो इसीलिए इन्हें अर्बन टाइगर्स कहा जाता है।
5: अलर्ट रहना भाई, कभी भी दिख सकता है।
4: टाइगर टाइगर ओहो, पीछे पीछे पीछे पीछे पीछे बिल्कुल साइड में बैठा है।
6: हम हजार बार जाएंगे तो हम किसी को नहीं देख पाए, लेकिन हजारों आके हमें देखते हैं।
7: Music you love is all right here on TuneIn, bringing you good vibes and the hottest hits. But are you ready to amp things up even more? Just upgrade to TuneIn Premium for all of our exclusive music channels, completely commercial free. So you get more of today's hits. More country roads. And everything else. Hear it all here, commercial free, on TuneIn.
8: TuneIn's How To, a brief look at all the special functions and things you might not know we have.
9: TuneIn is your MVP for everything sports audio. With live sports and a full lineup of podcasts and sports talk shows, you'll get all the sports action you'll ever need. Get updates on your favorite sports teams and alerts when they play. Just follow your favorite teams on TuneIn and you'll receive notifications. Plus, you'll also get recommendations based on your favorite teams. Start following your team and stay in the loop.
7: Call something classic, you've got to mean it. And that's why when we say TuneIn's exclusive classic hip-hop station is the real deal, we mean it. From golden age gems from OGs like Tupac and Biggie to chart-topping bangers from the biggest artists of all time like Jay-Z and DMX, there's a little something for every hip-hop fan on this station. Ready to find your flow?
10: It's your boy,
7: just
10: Jay-Z.
7: Search classic hip-hop or tell your device to play classic hip-hop on TuneIn to listen.
11: विक्रम चाहे जितना भी फड़फड़ा ले, ढूंढ नहीं पाएगा।
12: ए प्रिया, कैसा लगा मेरा स्टंट?
13: विक्रम, एक हिंट तो देते।
14: विक्रम!
13: हिंट।
12: बड़े आराम से।
15: गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाएं रिश्ते बनाएं।
16: गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश।

0: feels like summer. Monte Carlo, it's the way you make me feel.
1: Character, the taste of success. Character, the taste of success.
2: टेबल के ऊपर जब भी खाते हैं दबा के खाते हैं ये भाई साहब सब पचा देते
3: पर दिक्कत तो होने आती है जो टेबल के नीचे से खा
4: मुल्तानी पश्मीना अपने हक का खाओ सब कुछ पचाओ
5: और भाई कहाँ गए थे घूमने
6: जीके मैक्स
7: वैसे रोहन पढ़ाई में कैसा है
6: जीके मैक्स बेस्ट पुट्टी
8: जेके वॉल मैक्स
6: बेस्ट पेंट
9: जेके मैक्स
10: बाकी सब सवालों का पता नहीं लेकिन मोस्ट ब्यूटीफुल वॉल्स के लिए सिर्फ
6: JK Maxx Paints.
10: JK Maxx. JK Maxx Paints. खुशियों के रंग.

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: मौसम विभाग ने कहा है कि इस साल भारत में गर्मी का असर बहुत ही ज्यादा होने वाला है।
3: रामराज व्हाइट शर्ट्स इस समर को कूल बना रही।
4: इन एसोसिएशन विद
5: समकूल कूलर, हवा ऐसी छोड़े पूरी फैमिली को ठंडक से जोड़े। समकूल कूलर, लाइफ बनाए वंडरफुल।
4: हिंट, बड़े आराम से।
6: पंजाब नेशनल बैंक, भरोसे का प्रतीक।
7: कूल स्टाइलिश फैंस, एनहांस होम डेकोर विद ब्यूटीफुल फैंस।
8: शारदा यूनिवर्सिटी, द वर्ल्ड कम्स टुगेदर एट शारदा यूनिवर्सिटी। वेयर आर यू?
4: विमल बोलो जुबां केसरी।
9: 11 मई आज तक पर पेपर लीक कनेक्शन का पर्दाफाश।
10: नीट की परीक्षा से पहले एक गेस पेपर धड़ल्ले से मोबाइल पर बंटता है। 135 सवाल उसी गेस पेपर से हूबहू मिलते हैं।
11: 15 दिन पहले से पूरे देश में बट रहा था, एनटीओ को पता नहीं।
9: 12 मई आज तक के खुलासे पर मुहर।
12: जिम्मेदारी लेते हैं कि जो हुआ गलत हुआ।
10: आज तक की खबर के बाद आज सरकार की तरफ से एक्शन हुआ, एनटीए जागी, पेपर रद्द हुआ। हमने आज तक पर लगातार दस्तक दी है, खबरदार किया है, हर दल की सरकार को जगाया है, बताया है कि पेपर लीक रोक लीजिए वरना बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ होता रहेगा।
9: जहां खबर वहां खबरदार।
4: इन एसोसिएशन विद
13: E3 HDMR, ये रिश्ता लंबा चलेगा।
14: आज तक ला रहा है वीडियो वाला पेपर, हर सुबह आपके मोबाइल में, वो भी आपके पुराने न्यूज़पेपर से पहले। पढ़ने के लिए अपने डिवाइस पर टाइप करें epaper.aajtak.in या स्क्रीन पे दिए गए QR कोड को अभी स्कैन करें।

0: क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाएं स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा।
2: इन एसोसिएशन विद
3: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
4: हेक्सा ऑर्गेनिक रेडिएंट स्किन एंड नरिश्ड हेयर, प्योर आयुर्वेदिक ब्यूटी।

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाएं स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा।
1: इन एसोसिएशन विद
2: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो,
0: हेक्सा ऑर्गेनिक, प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाएं स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा।
1: इन एसोसिएशन विद
2: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो,
0: हेक्सा ऑर्गेनिक, रेडियंट स्किन एंड नरिश्ड हेयर, प्योर आयुर्वेदिक ब्यूटी।

0: मुख्य आरोपी समेत 8 की गिरफ्तारी। कर्नाटक में आज मुख्यमंत्री चुने जाएंगे डीके शिवकुमार। कांग्रेस विधायक दल की बैठक में लगेगी मोहर। 3 जून को 15 मंत्रियों के साथ ले सकते हैं शपथ। सिद्धा के करीबियों को मिल सकती है जगह। नीट पेपर लीक में राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री मोदी पर साधा निशाना। कहा खुद निगरानी कर रही हैं तो कैसे हुई इतनी बड़ी गलती। बीजेपी बोली छात्रों के भविष्य पर राजनीति कर रहे हैं नेता विपक्ष। और ईरान अमेरिका में डील को लेकर भारी कंफ्यूजन। डील के करीब पहुंचने वाले बयान के बाद सिचुएशन रूम में ट्रंप का मंथन। ईरान ने दावे को किया खारिज। कहा हॉर्मुज रूट फ्री नहीं रहेगा।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी। लगाए स्वाद और सेहत का तड़का हर मात्र।
0: गाजियाबाद के कोड़ा में युवक की चाकू मारकर हत्या। इलाज के दौरान नोएडा में मौत के बाद इलाके में तनाव। मौके वारदात पर मौजूद लोगों के मुताबिक बहस के बाद आरोपी ने चाकू से हमला किया था। घटना में युवक की मौत हुई। युवक की मौत के बाद परिजनों का आरोप कई लोगों ने मिलकर किया था हमला। पुलिस जांच में जुटी। घटना के बाद अस्पताल और आसपास भारी पुलिस बल तैनात है। सुरक्षा बढ़ा दी गई है। आरोपियों की तलाश जारी है। प्रशासन ने शांति बनाए रखने की भी अपील की है। राजस्थान के जयपुर और धौलपुर में तेज बारिश और ओलावृष्टि से जनजीवन अस्त व्यस्त हुआ। कई इलाकों में जलभराव और बिजली आपूर्ति बाधित। उत्तराखंड में भारी बारिश और तूफान का कहर। टिहरी और धनौल्टी में फसलों को भारी नुकसान। कई पेड़ गिरे। बागेश्वर में नदियां उफान पर है। बैराज के गेट खोले गए। प्रशासन ने सायरन बजाकर लोगों को अलर्ट किया। उत्तराखंड में भारी बारिश और तूफान का कहर। टिहरी और धनौल्टी में फसलों को भारी नुकसान। कई पेड़ गिरे। बागेश्वर में नदियां उफान पर है। बैराज के गेट खोले गए। प्रशासन ने सायरन बजाकर लोगों को अलर्ट किया। हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर में खराब मौसम से जनजीवन प्रभावित हुआ। कई सड़कें बंद हैं और यातायात ठप। उत्तर प्रदेश के आगरा में आधी बारिश से बड़ा नुकसान। पेड़ गिरे, टीन शेड उड़े और कई इलाकों में जल भराव। पश्चिम बंगाल के आसनसोल में भारी बारिश से सड़कें डूबी हुई हैं। जल भराव से यातायात प्रभावित हुआ। छत्तीसगढ़ के बस्तर में आंधी और ओलावृष्टि से मकानों और फसलों को भारी नुकसान। प्रयागराज में भारी बारिश से कई जगहों पर जल भराव। पानी में मस्ती करते हुए नजर आए बच्चे। बिहार में तेज आंधी और बारिश का रेड अलर्ट जारी। कई जिलों में भारी बारिश की चेतावनी। मौसम विभाग ने लोगों से सतर्क रहने की अपील की है। तेज हवाओं के साथ बिजली गिरने की भी आशंका। नीट मामले में राहुल गांधी के वीडियो के बाद गरमाई है सियासत। पीएम मोदी पर जमकर बोला हमला। राहुल गांधी ने कहा भारत का युवा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर भरोसा नहीं करता है। नीट परीक्षा व्यवस्था पर भी सवाल उठाए। सोशल मीडिया पर राहुल गांधी के वीडियो को लेकर बीजेपी का पलटवार। अमित मालवीय ने राहुल गांधी के बयान पर उठाए हैं सवाल। अमित मालवीय ने नीट के मुद्दे पर राहुल गांधी के बयान को बताया गैर जिम्मेदाराना। कहा राहुल गांधी छात्रों के मुद्दे पर जिम्मेदारी नहीं सनसनी फैला रहे हैं। नीट के मामले में एनटीए ने सुप्रीम कोर्ट में दिया हलफनामा। पेन पेपर मोड में हुई थी परीक्षा। स्वास्थ्य मंत्रालय की योजना को लागू किया गया। 21 जून को नीट की दोबारा परीक्षा में पेपर पहुंचाने के लिए वायुसेना की ली जा सकती है मदद। रक्षा मंत्री के घर पर हुई बैठक में इस पर चर्चा की गई। नीट कांड को लेकर राहुल गांधी ने सरकार पर फिर से बोला धावा। वीडियो जारी करके कहा देश के युवाओं को अब नरेंद्र मोदी पर भरोसा नहीं है। राहुल गांधी ने नई परीक्षा व्यवस्था बनाने पर जोर दिया है। कहा टुकड़ों में सुधार से नहीं चलेगा काम। माफिया का काम सबको पता। नीट पेपर लीक को लेकर दिल्ली सरकार का फैसला। 21 जून को परीक्षार्थियों के लिए डीटीसी बस में फ्री यात्रा की सुविधा। सीबीएसई की ऑन स्क्रीन मार्किंग प्रणाली पर बड़ा विवाद। कॉपी जांच प्रक्रिया पर उठाए गए हैं गंभीर सवाल। उत्तर पुस्तिकाओं में गड़बड़ी और अदला बदली के आरोप। सीबीएसई की नई व्यवस्था पर छात्रों की शिकायतें बढ़ी। सीबीएसई मुख्यालय पर एनएसयूआई का बड़ा प्रदर्शन। ओएसएम सिस्टम वापस लेने की मांग तेज की गई। स्कैनिंग और मूल्यांकन में गड़बड़ी के आरोप। 13,000 से ज्यादा कॉपियां मैनुअल जांची गई। कर्नाटक में आज कांग्रेस विधायक दल की बेंगलुरु में बड़ी बैठक, डीके शिव कुमार को चुना जाएगा नेता। विधायक दल की बैठक से पहले दिल्ली में राहुल गांधी के साथ डीके की मुलाकात, 3 जून को ले सकते हैं मुख्यमंत्री पद की शपथ। दिल्ली में राहुल गांधी से मीटिंग में सिद्धरमैया ने कैबिनेट के लिए सौंपी है सूची, सूत्रों के मुताबिक सिद्धरमैया ने अपने बेटे के लिए मांगा पसंदीदा विभाग। सिद्धरमैया ने कांग्रेस हाईकमान को दिया समन्वय समिति बनाने का प्रस्ताव, सूत्रों के मुताबिक हाईकमान राजी नहीं। गुजरात के दौरे पर अमित शाह ने भुज में पाकिस्तान बॉर्डर का किया दौरा, सीमा पर जवानों से की मुलाकात। त्रिशा शर्मा मौत के मामले में बड़ा अपडेट, सीबीआई ने 2 आरोपियों की हिरासत में लेकर पूछताछ तेज की। 5 दिन की सीबीआई रिमांड पर भेजे गए त्रिशा के पति और सास, जज गिरीवाला और बेटे के हो सकती है साथ बिठाकर पूछताछ। त्रिशा शर्मा की मौत के मामले में साजिश और सबूतों से छेड़छाड़ की आशंका की भी जांच जारी है। ओवैसी ने एसआईआर प्रक्रिया को बताया गंभीर मुद्दा, का ये जीवन की और मृत्यु का सवाल है। सड़कों पर नमाज पर बोले असदुद्दीन ओवैसी, का अगर सड़क पर नमाज पढ़ना गलत है तो सभी धार्मिक समारोहों पर प्रतिबंध होना चाहिए। योगी के बयान पर समाजवादी पार्टी का पलटवार, प्रवक्ता फखरुल हसन चांद ने कहा चुनाव के वक्त हमेशा करते हैं हिंदू मुस्लिम की बात। यूपी में हमीरपुर पुल हादसे पर अखिलेश ने बीजेपी पर बोला हमला, पोस्ट में लिखा हवा से बने पुल पर गाड़ी चली तो क्या होगा, भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ रहा है हर निर्माण। आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम को कोर्ट से राहत मिली, 2 पासपोर्ट वाले मामले में 7 साल की सजा रद्द, सेशंस कोर्ट का फैसला। बिहार बीजेपी की नई टीम का ऐलान, 14 प्रदेश उपाध्यक्ष बनाए गए, निशा सिंह महिला मोर्चा की बनाई गई अध्यक्ष। ऋषिकेश के परमार्थ निकेतन घाट पर बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन ने गंगा आरती में हिस्सा लिया, सीएम पुष्कर सिंह धामी भी इसमें शामिल हुए। पंजाब नगर निगम चुनाव में आम आदमी पार्टी का जबरदस्त दबदबा, 8 में से 5 नगर निगमों में भारी जीत दर्ज। पंजाब में कई चुनावों में आपकी सुनामी, 800 से ज्यादा सीटों पर दर्ज की गई है जीत। मोहाली बरनाला बटाला मोगा और बठिंडा में आम आदमी पार्टी की बड़ी बढ़त के साथ जीत हासिल की। कांग्रेस ने कपूरथला नगर निगम में बहुमत हासिल किया है, बीजेपी ने अबोहर में जीत दर्ज की। पंजाब निकाय चुनाव नतीजों पर सियासी बयानबाजी तेज हुई, भगवंत मान ने इसे विकास की जीत बताया है। गाजियाबाद के खोड़ा में युवक की चाकू मारकर हत्या, इलाज के दौरान मौत के बाद इलाके में तनाव। मृतक के परिजन और स्थानीय लोगों में आक्रोश, अस्पताल के बाहर भारी पुलिस बल तैनात। महाराष्ट्र के भिवंडी में स्क्रैप गोदाम में भीषण आग लगी, मौके पर पहुंचकर फायर ब्रिगेड की गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। सूरत में पत्नी की प्रताड़ना से परेशान पति ने कलेक्टर ऑफिस में इच्छा मृत्यु की अर्जी दाखिल की, पत्नी पर लुटेरी दुल्हन का आरोप लगाया। सूरत के पॉश फ्लैट में चल रहे लेडीज जुआ क्लब पर पुलिस का छापा, फ्लैट मालिक की पत्नी समेत 7 महिलाएं गिरफ्तार की गई। अलवर में युवक ने आत्महत्या की, फेसबुक लाइव में 6 लोगों पर प्रताड़ना के आरोप लगाए थे, पुलिस ने मामले की जांच शुरू की। बालोतरा में सड़क हादसे में घायल 2 युवकों की इलाज के दौरान मौत हो गई है, पुलिस की गाड़ी की टक्कर के बाद जान गई। मुजफ्फरपुर में लक्ष्मी चौक स्थित रेस्टोरेंट में किचन में लग गई थी भीषण आग, शॉर्ट सर्किट से हादसा हुआ, फायर ब्रिगेड ने काबू पाया। बेगूसराय में मॉर्निंग वॉक के दौरान लड़की को कार सवार बदमाशों ने अगवा किया, रेप को अंजाम दिया, 1 आरोपी को गिरफ्तार किया गया। अलवर में करंट लगने से पति और पत्नी की मौत हुई, खेत में काम करने के दौरान यह हादसा हुआ। करनाल हत्याकांड में 1 आरोपी की गिरफ्तारी, 10 रुपए मांगने पर सब्जी विक्रेता की पीट पीट कर हत्या। चिरू में ब्रेक फेल होने की वजह से मोबाइल की शॉप में घुस गया था ऑटो, सीसीटीवी में कैद हुई तस्वीरें। सहारनपुर में पुलिस बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई, 1 लाख का इनामी एहसान एनकाउंटर में ढेर, इंस्पेक्टर और सिपाही को लगी गोली। ग्रेटर नोएडा में पुरानी रंजिश में बदमाशों ने आधी रात को घर के बाहर फायरिंग कर डाली, पुलिस ने 2 को गिरफ्तार कर लिया है। इंदौर में लॉरेंस विष्णु गैंग के मास्टरमाइंड राहुल सिंह राठौर को पुलिस ने गिरफ्तार किया, 25,000 का इनाम था। जमशेदपुर में मिठाई बनाने वाली मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में भीषण आग लगी थी, धुएं और लपटों से इलाके में हड़कंप मचा। जम्मू कश्मीर के रियासी में सलाल डैम के पास भीषण जंगल में आग लगी, इलाके में हड़कंप। अहमदाबाद वडोदरा हाईवे पर भीषण हादसा, बेकाबू कार ने सड़क पर खड़े हुए लोगों को कुचला। जामनगर में पान की दुकान के बाहर देर रात मारपीट हुई, सीसीटीवी फुटेज सामने आई। चुरू के रतनगढ़ में ब्रेक फेल होने से ऑटो मोबाइल की शॉप में घुसा, इलाके में हड़कंप मचा, सीसीटीवी तस्वीरें सामने आई। कानपुर के सचंडी गैंगरेप केस में आरोपी और निलंबित दरोगा अमित मौर्या को गिरफ्तार किया गया, 50,000 का इनाम रखा गया था। जमशेदपुर के जुगसलाई में मिठाई की दुकान की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में आग लगी थी, कड़ी मशक्कत के बाद काबू पाया गया। रांची में साइबर ठगी गैंग का भांडाफोड़, फ्लैट में चल रहा था फर्जी अकाउंट और आईडी बनाने का खेल, 5 की गिरफ्तारी। चरखीदादरी में पुलिस मुठभेड़ में टीचर ललित हत्याकांड के 2 मुख्य आरोपी गिरफ्तार किए गए, गिरफ्तारी के दौरान आरोपियों ने पुलिस की टीम पर ताबड़तोड़ फायरिंग की। जालना में दर्दनाक हादसा, दीवार गिरने से 2 मासूम बच्चों की गई जान। संजय दत्त की खलनायक रिटर्न्स में कमिश्नर राम के किरदार में नजर आएंगे जैकी श्रॉफ, एक्टर ने खुद ही कंफर्म किया। रणवीर पर FWIC के बैन के बाद एक्टर के बचाव में सिनेमा एंड टीवी आर्टिस्ट एसोसिएशन यानी कि सिंटा उतर आई है। संगठन की वाइस प्रेसिडेंट पद्मिनी कोलापुरी बोली, हम रणवीर के साथ हैं। वरुण धवन की अपकमिंग फिल्म जवानी को इश्क होना है को CBFC ने दिया है UA16+ सर्टिफिकेट, रिपोर्ट्स के मुताबिक फिल्म का रन टाइम। अभिनेता अनुपम खेर की फिल्म श्री रामभूमि की हुई आधिकारिक घोषणा, अयोध्या और राम जन्मभूमि के इतिहास पर आधारित इस फिल्म का मुहूर्त संपन्न। प्राइम वीडियो की नई वेब सीरीज द पिरामिड स्कीम का ट्रेलर रिलीज किया गया, धुरंधर 2 में जस्सी का रोल निभाने वाले एक्टर परमबीर चीमा, साथ ही रणबीर शौरी और शेखर सुमन मुख्य किरदार में नजर आएंगे। राजस्थान रॉयल्स पर आकर IPL के फाइनल में पहुंचा है गुजरात टाइटंस, रविवार को बेंगलोर से खिताबी भिड़ंत। राजस्थान ने दिया था 215 रनों का लक्ष्य, गुजरात ने 8 गेंद बाकी रहते ही 3 विकेट गवाकर हासिल कर लिया लक्ष्य। गुजरात की जीत के हीरो बने कप्तान शुभमन गिल, 53 गेंदों पर जड़े 104 रन, पारी में जड़े 3 छक्के 15 चौके। बेकार गई राजस्थान के वैभव सूर्यवंशी की धुआंधार 96 रनों की पारी, इनिंग्स में 7 छक्के और 8 चौके लगाए। गुजरात की ओर से रवाडा और होल्डर ने झटके थे 2-2 विकेट, सिराज और प्रसिद्ध कृष्णा के खाते में 1-1 विकेट। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की व्हाइट हाउस सिचुएशन रूम में ईरान डील पर अहम बैठक समाप्त हुई, 2 घंटे तक चली है बैठक। अंतिम फैसले पर अभी स्थिति साफ नहीं है, ट्रंप बोले ईरान डील पर जल्द होगा फैसला, सीज फायर बढ़ाने पर भी चर्चा की गई। ईरान का आरोप, ट्रंप झूठी जीत दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, बातचीत अभी भी अधूरी। ईरान अमेरिका डील पर मतभेद बरकरार है, परमाणु कार्यक्रम और हॉर्मुज को लेकर टकराव। US नेवी और UK एनटीओ ने जहाजों के लिए चेतावनी जारी की, हॉर्मुज में तनाव बढ़ा है, अमेरिका ने ईरान पर अवैध माइनिंग के आरोप लगाए। हॉर्मुज पर अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप का बड़ा फैसला, कहा हॉर्मुज में नाकेबंदी हटाएगा अमेरिका, ईरान पर जल्द होगा अंतिम फैसला। ट्रंप का यूरेनियम पर बड़ा बयान, कहा ईरान से ढूंढ निकाला जाएगा यूरेनियम, अमेरिका ईरान और IAEA के समन्वय से यूरेनियम निकालकर नष्ट किया जाएगा। ईरान के सर्वोच्च नेता मुज्तबा खामनेई का बड़ा बयान, कहा ईरान के दुश्मन देश अब फूट डालने में जुटे हैं। अमेरिका ने ईरान से जुड़ी तेल बिक्री पर नए प्रतिबंध लगा दिए हैं, इन दोनों ही देशों के बीच किसी समझौते की कोशिशें लगातार जारी। हॉर्मुज पर बोली ईरान के पूर्व IRGC के प्रमुख, कहा हॉर्मुज स्ट्रेट व्यापार के लिए खुला रहेगा, हॉर्मुज को लेकर किसी भी तरह की बाधा बर्दाश्त नहीं की जाएगी। हॉर्मुज में अमेरिकी नाकेबंदी पर बड़ा खुलासा, अमेरिका की सेना का दावा, 111 जहाजों को बदलना पड़ा था अपना रूट। US सेंट्रल कमांड का दावा, ईरान के खिलाफ नाकेबंदी के दौरान हॉर्मुज में 20 से ज्यादा वॉरशिप तैनात थी। इसराइल का बेरूत और दक्षिणी लेबनान पर भीषण हवाई हमला, इजरायली लड़ाकू विमानों से कई घरों को नुकसान पहुंचा। हमले से पहले इसराइल ने दक्षिणी लेबनान के कई गांवों को खाली करने का आदेश दिया था, इलाके में तनाव बढ़ा।

0: गाजियाबाद हिंदू युवक की हत्या को लेकर इस वक्त बड़ी और अहम खबर आपको बता दें, गाजियाबाद पुलिस ने 5 लोगों को हिरासत में लिया है। हिरासत के लिए लिए गए लोगों से पूछताछ जारी है। आरोपी आपको बता दें कि हिरासत में ले लिए गए हैं और इस हत्या से पहले भी एक वीडियो सामने आया था, कुछ मिनट्स पहले का वो वीडियो है, जिसमें हिंदू युवक सूर्या के साथ हाथापाई करते हुए नजर आ रहे हैं। तमाम लड़के, कई लड़के इसके बाद ही सूर्या की चाकू मारकर हत्या करने के बाद फरार हो गए थे। हिंदू युवक सूर्या की हत्या का आरोप कुछ मुस्लिम लड़कों पर लगाया, जिनके नाम है असद, आतिफ, फरहान समेत कई और लड़के जो फरार बताए जा रहे हैं। तो इस हत्या के पहले का वीडियो हम आपको दिखा रहे हैं, तस्वीरें देकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कई लड़कों ने इस घेरे को बनाया हुआ है और सूर्या को घेरा हुआ है। कुछ ही मिनट्स पहले का ये वीडियो बताया जा रहा है, हत्या से चाकू मारकर बुरी तरह से सूर्या को घायल कर दिया गया था। अस्पताल में भर्ती कराने के दौरान उसे बचाया नहीं जा सका। आसपास जबरदस्त विरोध है, बड़ी संख्या में लोग इकट्ठा हैं, नाराजगी जाहिर कर रहे हैं और जल्द से जल्द गिरफ्तारी की मांग की जा रही है। 3 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, सूर्या की तस्वीर देखिए आप, और जिसे बहला फुसलाकर मामले को सुलझाने के लिए ले जाया गया था। हत्या से कुछ मिनट्स पहले का ये वीडियो, जहां घेरा बनाकर सूर्या के साथ ये लड़के नजर आ रहे हैं और इसी के कुछ ही देर बाद चाकू मारकर सूर्या को मौत के घाट उतार दिया गया और बुरी हालत में परिवार और बाकी के लोग।
1: शायद कल ये पूरा हादसा हुआ, एक बार आप बता पाएंगे कि कल किस तरीके से ये पूरा हादसा हुआ और किस समय हुआ?
2: भैया देखो, मुझे नहीं पता, मैं ड्यूटी पे थी, ठीक है, मैं 8-10 हजार की नौकरी करती हूँ, मैं अपने बच्चे पाल रही हूँ, मुझे नहीं पता, मेरा बेटा घर पे था, ठीक है, इन लोगों ने फोन करके धोखे से मेरे बेटे को बुलाया और जाके ही आ जाओ ईद मिलते हैं, ठीक है। फिर मेरे बेटे से कहा, तुमने बकरा कटते हुए देखा है? मेरा बोला, मैंने नहीं देखा है। ऐसे कह के एकदम चप्पू उसके पेट में डाल के ऐसे घुमा दिया है। अब मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे जान के बंदे जानी, खून के बंदे खूनी चाहिए, और मुझे कुछ नहीं कहना बस।
1: कौन लोग थे ये, कहाँ रहते हैं? और
2: मोमनन थे, पिछली गली में रहते हैं। हाँ,
1: किस बात पे ये जो तू तड़ाक हुई थी या कुछ भी जो विवाद हुआ था, ये किस बात पे हुई थी, कुछ पता
2: है? किसी कोई बात नहीं थी, कोई बात।
0: और इस खबर पर तमाम जानकारी के साथ हमारे साथ हमारे सहयोगी अंशुल जुड़ गए। अंशुल, क्या जानकारी है और इन तीनों लड़कों के बारे में और क्या पता चल पाया अभी तक?
3: जी, अभी तक जो तफ्तीश से सामने आया है, पुलिस को ये पता लगा है कि ये तीनों ही लड़के आसपास के मोहल्ले में ही रहते थे और ये बस 3 नहीं, करीब 6-7 लोग हैं जिन्होंने इस पूरे घटना को अंजाम दिया है, जिसके बाद ये सभी के सभी अभी तक फरार है। गाजियाबाद पुलिस के सूत्रों का ये कहना है कि अभी तक उन्होंने 5 लोगों को हिरासत में लिया है, लेकिन ये 5 लोग वो नहीं है जिन्होंने इस पूरे हमले की घटना को अंजाम दिया है, बल्कि उनके जानने वाले हैं। गाजियाबाद पुलिस ये जानना चाहती है, पता लगाना चाहती है कि आखिर ये 6 या 7 लोग जो थे ये कहाँ छुपे हुए हैं और यहाँ से घटना को अंजाम देने के बाद किस तरफ फरार हुए हैं। इसके लिए गाजियाबाद पुलिस ने कई टीमें बना दी हैं और पूरी गहनता से पूरे मामले की जो है तफ्तीश की जा रही है, लेकिन अभी तक जो 7 के 7 अक्यूज थे या 7 जो अक्यूज है वो अभी तक गाजियाबाद पुलिस के हाथ में नहीं चढ़े हैं, जिसकी वजह से
0: इस वीडियो में कुछ देर पहले की जो तस्वीरें हैं साफ कोई वीडियो बना भी रहा है, आसपास भी कुछ लोग मौजूद होंगे, क्या किसी ने बचाने की कोशिश नहीं की? हालांकि इस तरह की तस्वीरें बार बार सामने आती हैं जब इंसान जान गंवा देता है और आसपास लोग सिर्फ वीडियो बनाते रह जाते हैं, साथ ही साथ कई लड़के इसमें नजर आ रहे हैं, क्या इनके बारे में और जानकारी मिल पाई है कि आखिर इतने सारे लड़कों ने घेर कर सूर्या को मौत के घाट उतार
3: दिया थी और इन लड़कों के बीच में कुछ तू तलाश हुई थी, जिसके बाद इसे ये बोलकर बुलाया गया कि आओ और इस पूरे मामले को आज सुलटा लेते हैं और पूरे मामले को निपटा लेते हैं, लेकिन जैसे ही सूर्या वहां पहुंचता है, ये करीब 6-7 लड़के वहां मौजूद थे, उससे बहस बात से कुछ दिन पहले सूर्या की और इन लड़कों के बीच में कुछ तू तलाश हुई थी, जिसके बाद इसे ये बोलकर बुलाया गया कि आओ और इस पूरे मामले को आज सुलटा लेते हैं और पूरे मामले को निपटा लेते हैं, लेकिन जैसे ही सूर्या वहां पहुंचता है, ये करीब 6-7 लड़के वहां मौजूद थे, उससे बहसबाजी होती है, गाली गुफ्तार होती है और उसके बाद उसे उस पर चाकूओं से धारदार तलवार से हमला कर देते हैं, जिसके बाद उसे घसीट कर थोड़ी आगे तक भी ले जाते हैं और फिर जब वो बेहोश होकर गिर जाता है तो उसे छोड़ करके वहां से।
0: बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए आपका, और इसी के साथ एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुकेंगे, बने रहे हमारे साथ, देखते रहे आज तक।
4: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच। in association with Bharat ki apni electric sawari.
5: There's just something about classic soul music that gets you moving. And TuneIn's exclusive soul groove station has all the right moves. Hit play on the grooviest 70s selection. Get your masters in melody with Motown Classics. Or just set the right tone with smooth, soulful vibes from Marvin Gaye and more. It's all right here on TuneIn, ready to set the perfect 70s tone. Search Soul Groove or tell your device to play Soul Groove on TuneIn now to listen.
6: Some people think that Talk Sport's just a clever name, that we just talk sport. But that's absolute balderdash. We breathe it, dream it, think it, play it and eat it for breakfast wrapped up in an English muffin. So, if you want to get seriously sauteed by soccer, poached by the Premier League and marinated by monster news and reaction, listen to Talk Sport. It's not just a clever name, dude. Listen live from London on TuneIn and munch it down for free. Mmm, delicious. A bit salty. Warning, Talk Sport definitely contains nuts.
7: The music you love is all right here on TuneIn, bringing you good vibes and the hottest hits. But are you ready to amp things up even more? Just upgrade to TuneIn Premium for all of our exclusive music channels, completely commercial free. So you get more of today's hits. More country roads. And everything else. Hear it all here, commercial free, on TuneIn.
8: विक्रम चाहे जितना भी फड़फड़ा ले ढूंढ नहीं पाएगा
9: ए प्रिया कैसा लगा मेरा स्टंट
10: एक हिंट तो देते
11: विक्रम
10: हिंट
11: बड़े आराम से

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: मौसम विभाग ने कहा है कि इस साल भारत में गर्मी का असर बहुत ही ज्यादा होने वाला है।
3: रामराज व्हाइट शर्ट्स इस समर को कूल बना दे।
4: 11 मई आज तक पर पेपर लीक कनेक्शन का पर्दाफाश।
5: नीट की परीक्षा से पहले एक गेस पेपर धड़ल्ले से मोबाइल पर बंटता है। 135 सवाल उसी गेस पेपर से हूबहू मिलते हैं।
6: 15 दिन पहले से पूरे देश में बट रहा था, एनटीओ को पता नहीं।
4: 12 मई आज तक के खुलासे पर मुहर।
7: जिम्मेदारी लेते हैं कि जो हुआ गलत हुआ।
5: आज तक की खबर के बाद आज सरकार की तरफ से एक्शन हुआ, एनटीए जागी, पेपर रद्द हुआ। हमने आज तक पर लगातार दस्तक दी है, खबरदार किया है, हर दल की सरकार को जगाया है, बताया है कि पेपर लीक रोक लीजिए वरना बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ होता रहेगा।
4: जहां खबर वहां खबरदार।
8: इन एसोसिएशन विद E3 HDMR, ये रिश्ता लंबा चलेगा।
9: Why and by whom was COAMPT given the CBSE contract? Second, which procedures were circumvented to give COAMPT this contract? If we could figure out in 30 seconds that this company earlier had a different name, why didn't the CBSE figure this out? And why were no background checks done? Third, and most important, what is the exact relationship between COAMPT management and the Modi government?
10: मैं उनकी एक आदत, उनको एक बीमारी आ गई है। भारत में कोई भी परिवर्तन को सहज नहीं कर पाते हैं। उन्होंने SIR को विरोध किया था, उन्होंने EVM को विरोध किया था, उन्होंने भारत की अनेकों व्यवस्था को, भारत की डिजिटल इंडिया को विरोध करते हैं। ये एक दिवालिया मानसिकता की लक्षण है। आपको मैं क्या कह पाऊंगा, उनकी एक अंडरस्टैंडिंग है विषयों के ऊपर। बाकी रहा कोई स्पेसिफिक कंपनी के बारे में वो कह रहे हैं, मेरे शाम तक मेरे पास जो जानकारी है उन्हीं के साथ सिद्ध दो राज्यों में, कर्नाटक और तेलंगाना में, वो संस्था 5 शिक्षानुष्ठान की OSM काम कर रहा है।
5: अच्छा,
10: उनकी वेबसाइट चला रहे, उनकी सॉफ्टवेयर पोर्टल चला रहे। इसलिए तो ये तो कोई, कभी राहुल गांधी कोई विषय कुछ बोलते हैं तो फैक्ट चेक तो करते ही नहीं, बेबुनियाद बातों पे वो एक दुनिया गढ़ बैठते हैं।
8: क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।

दिल्ली से सटे गाजियाबाद में नाबालिग युवक की हत्या के बाद भड़का गुस्सा, बकरीद के दिन घर से बुलाकर 20 सड़क पर घेर कर मारा, हिरासत में लिए गए 5 संदिग्ध। पुणे जहरीली शराब से मरने वालों की संख्या बढ़कर हुई 18, फडणवीस सरकार में सीआईडी को सौंपी गई है जांच, अब तक मुख्य आरोपी समेत 8 गिरफ्तार। कर्नाटक में आज मुख्यमंत्री चुने जाएंगे डीके शिव कुमार, कांग्रेस विधायक दल की बैठक में लगेगी मोहर, 3 जून को 15 मंत्रियों के साथ ले सकते हैं शपथ, सिद्धा के करीबियों को मिल सकती है जगह। नीट पेपर लीक में राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री मोदी पर साधा निशाना, कहा खुद निगरानी कर रहे हैं तो कैसे हुई इतनी बड़ी चूक। बीजेपी बोली छात्रों के भविष्य पर राजनीति कर रहे हैं नेता विपक्ष। और ईरान अमेरिका में डील को लेकर भारी कंफ्यूजन, डील के करीब पहुंचने वाले बयान के बाद सिचुएशन रूम में ट्रंप का मंथन, ईरान ने दावे को किया खारिज, कहा हॉर्मुज रूट फ्री नहीं रहेगा।

0: दो इम्तिहान जिस पर देश में मचा है घमासान। भविष्य बनाने वाली परीक्षाएं खुद बनी प्रश्न। क्या नीट परीक्षा होगी नीट एंड क्लीन? क्या फुल प्रूफ हो पाएगा एनटीए का परीक्षा तंत्र? शिक्षा मंत्री का भूल सुधार का आश्वासन।
1: पिछले महीना जो हुआ वो दुर्भाग्यपूर्ण है, वो नहीं होनी चाहिए थी। हमारी चिंता बच्चों की मानसिक स्थिति के साथ जुड़ा हुआ है और हम जिम्मेदारी लेते हैं।
0: लीक तंत्र से युद्ध में एयरफोर्स की एंट्री। रक्षा प्लान, पर्चा पहुंचाएंगे एयरफोर्स विमान। सीबीएसई के परीक्षा सिस्टम पर भी सवालों की बौछार।
2: कोएम, द कंपनी दैट डिड द ओएसएम फॉर योर एग्जाम वाज एक्चुअली कॉल्ड ग्लोबरीना। ग्लोबरीना हैज कैरिड आउट दिस स्कैम ट्वाइस बिफोर इन तेलंगाना। टू शेयर दिस वीडियो एंड आस्क द फॉलोइंग क्वेश्चंस टू द गवर्नमेंट एंड द प्राइम मिनिस्टर।
0: आज तक पर परीक्षा सिस्टम का पोस्टमार्टम। पेपर लीक पर देश के छात्रों की आवाज। सबसे बड़ा शो, परीक्षा की अग्नि परीक्षा।

नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक आपके साथ। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। आप देख रहे हैं आज तक आपके साथ, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। मामला और मुद्दा इतना संगीन है कि हर किसी का चेहरा उतर जाता है। ये देश की चिंता है, ये परीक्षाओं की अग्नि परीक्षा इस वक्त देश में हो रही है। दो परीक्षा जो केंद्र सरकार और परीक्षा कराने वाले जांच एजेंसीज के लिए सबसे बड़ी परीक्षा बन चुके हैं, वो है नीट की परीक्षा, जिससे इस देश के भविष्य के डॉक्टर्स तैयार होते हैं, और दूसरी है सीबीएसई की परीक्षाएं। आप कल्पना कीजिए, जिस घर में सीबीएसई का बच्चा एग्जाम दे रहा होता है, उस पूरे घर में लगभग एक साल तक अव्यवस्थित तरीके से सब कुछ चलता है। बच्चा रात रात भर जगकर एग्जाम के लिए पढ़ाई करता है, खाना पीना सब भूल जाता है। ऐसी स्थिति हो जाती है, वो कई बार एंग्जाइटी से गुजरता है, परेशानियों से गुजरता है, तब जाकर वो उस एग्जाम तक पहुंचता है जिससे उसका आगे का भविष्य तय होना है, और एग्जाम का ही कोई ठिकाना नहीं। ऐसी परीक्षा जो छात्रों के भविष्य की बुनियाद बनाती है, आज हम उसकी चर्चा करेंगे। सवाल है कि जब

0: परीक्षाएं ही निष्पक्ष नहीं होंगी तो नया भारत, विकसित भारत, भविष्य का भारत कैसे तैयार होगा। परीक्षाओं में लीक की खबर से देश भर में एक बेचैनी है। न्यायपालिका चिंतित है। नीट की परीक्षा कराने वाले एनटीए को कड़ी फटकार लगा चुकी है, कह चुकी है कि उसने पिछली गलतियों से कुछ सबक नहीं लिया है। संसदीय कमेटी लगातार एनटीए को तलब कर रही है, सवाल पूछ रही है। इस सब के बीच केंद्र सरकार परीक्षाओं की विश्वसनीयता को लेकर भी कम चिंतित नहीं है। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नीट की दोबारा होने वाली परीक्षा की तैयारियों की मॉनिटरिंग का जिम्मा उठाया है। यहां तक कि वायुसेना के विमानों से प्रश्न पत्र पहुंचाने के विकल्प आजमाने पर बात हो रही है। खुद प्रधानमंत्री अब इसमें शामिल हो रहे हैं, और अगर वायुसेना को शामिल करने की बात की जा रही है तो मुझे लगता है सबसे ज्यादा इसी से उम्मीद बनती है, क्योंकि कहा जाता है कि भाई चाहे ब्यूरोक्रेसी हो, नेता हो, हमें पता नहीं हम उन पर कितना विश्वास कर सकते हैं, लेकिन जब बात देश की सेना की आती है तो वो चंद पैसों के लिए अपने ईमान को नोक पर नहीं रख देते हैं या फिर ईमान बेचने के लिए तैयार नहीं होते। तो मुझे लगता है अब इस मामले में जब इतने असहाय छात्र दिख रहे हैं और उनके माता पिता दिख रहे हैं तो एक सेना से ही उम्मीद हमारे देश की बनती हुई दिखती है। इस वक्त बेहद खास मेहमान हमारे साथ दिल्ली यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर योगेश सिंह जी लाइव आज तक पर जुड़ रहे हैं। योगेश जी, मुझे लगता है कि आप भी उस चिंता में शामिल होंगे जो इस वक्त देश में लाखों बच्चे जिससे गुजर रहे हैं, उनके माता पिता गुजर रहे हैं। आप देश के सबसे प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर हैं। सबसे पहले तो आपकी नजर से ये समझने की कोशिश करेंगे, जो बेसिक सवाल है जो हमसे जनता भी पूछती है जब हम लोगों के बीच जाते हैं, कि निष्पक्ष जो पेपर्स हैं, जो एग्जाम्स हैं, वो इस देश में मुमकिन है, और अगर है तो कैसे? योगेश जी,
1: देखिए सबसे बड़ी बात तो यह है कि जो घटना हो गई वो दुर्भाग्यपूर्ण है, इसमें तो कोई बात ही नहीं है, और आगे नहीं होनी चाहिए ये भी ठीक है। तो अभी जो ये जो विश्वास का संकट पैदा हुआ है, चाहे वो पेरेंट्स के बीच में हो, विद्यार्थियों के बीच में हो, एजुकेशन फ्रेटर्निटी के बीच में हो, तो सरकार ने अगर एयरफोर्स को इन्वॉल्व करने का तय किया या इस पर विचार किया जा रहा है तो अच्छी बात है कि ये जो ट्रस्ट डेफिसिट है ये थोड़ा कम होगा इसके माध्यम से, मुझे ऐसे लगता है। बाकी ये तो बुनियादी बात है कि किसी तरीके से एग्जाम में गड़बड़ ना हो, ये बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि यहां पर क्या था, स्टेक्स हाई थे, जिस कारण से जो कई माफिया ऑपरेट करते हैं, आपने देखा है ड्रग माफिया है, ये लिकर माफिया है, जहां जहां ऐसे ही एजुकेशन में भी एक माफिया है जो कि इसको सिस्टम को बार बार तोड़ने की कोशिश करता है। तो जो पुलिस फोर्सेज हैं उनको इसको सख्ती से निपटना चाहिए और इस बार एग्जेम्पलरी जो है पनिशमेंट सबको देनी चाहिए, जिससे हिम्मत ना हो कि अगली बार ये कर पाएं। एक तो ये बात है। दूसरी बात यह है कि अभी तो जो एग्जाम होने वाला है अभी अगले महीने जून में 21 तारीख को, वो अच्छे से होगा, सरकार अपनी तरफ से पूरा प्रयास कर रही है। मैं तो यही कहूंगा कि विश्वास बच्चे बनाए रखें, फोकस कर रहे हैं अपनी स्टडीज पे, और अच्छे से एग्जाम दें, और आगे जो जो भी पॉसिबल होगा वो सारे स्टेप्स लिए ही जाएंगे। अच्छी बात है अगर हम आर्मी को या एयरफोर्स को इन्वॉल्व करने की सोच रहे हैं, थोड़ा भरोसा बढ़ेगा, जैसे आर्मी फ्लैग मार्च भी करती है तो भरोसा बढ़ता है, ये वैसी सी बात है इसमें। लेकिन करना तो सब जो लोग इन्वॉल्व हैं उन्हीं को करना है, उनको अच्छे से करना चाहिए ये काम।
0: अब योगेश जी, वाइस चांसलर साहब, मेरा सवाल आपसे यह है कि आपने भी खुद, और मैं इस बात की प्रशंसा करती हूं कि आपने भी बड़ी साफगोई से ये माना कि एक एजुकेशन माफिया इस देश में, जैसे हर क्षेत्र में हम देखते हैं ड्रग माफिया, अब हर क्षेत्र में ऐसा है। मेरा प्रश्न आपसे यह है कि इस माफिया में कौन लोग होते हैं? क्या वक्त आ गया है कि हम इस देश में कोचिंग सेंटर्स के नाम पर चल रहे उन माफियाओं के गर्दन तक पहुंचे जिन्होंने शिक्षा को एक ऐसा धंधा बना दिया है जिससे उनकी जेबें भर सके, बच्चों का भविष्य उनके लिए चिंता की बात है ही नहीं?
1: देखिए, माफिया जो है ये तो जो पैसा इन्वॉल्व है इस कारण से ये माफिया बनता है, पनपता है और बड़ा होता चलता है। इसमें कुछ एजुकेशन के जो कोचिंग इंस्टीट्यूशन भी होंगे और बहुत सारे नहीं भी होंगे, बहुत सारे पढ़ाई का भी काम करते होंगे, पर एक वर्ग उनका हो सकता है, कुछ के नाम भी इसमें आ सकते हैं, क्योंकि वो क्या होता है, ऑर्गेनाइज करने में सहायता करते हैं इसमें। तो कोचिंग की परंपरा से कैसे बाहर निकले, ये अलग एक चिंता का विषय है देश का, कि पूरे एजुकेशन सिस्टम में जब हम एंट्रेंस टेस्ट पे जाते हैं, जहां डिफिकल्टी लेवल थोड़ा हायर होता है तो बच्चे कोचिंग पे जाते हैं, तो ये जो डिफिकल्टी लेवल एग्जामिनेशन का है इसमें भी सोचना चाहिए हमें, क्योंकि एंट्रेंस टेस्ट जो है वो फिल्ट्रेशन का माध्यम बन गया जो कि सिलेक्शन का होना चाहिए था। होता क्या है कि देश बहुत बड़ा है इतने सारे लोग, 22 लाख लोग अगर बैठने हैं तो उनको फिल्टर करना पड़ेगा। तो अब समय आ गया इस पे भी, इसके स्ट्रक्चर पे भी विचार करने की जरूरत है कि हम 2 स्टेज पे जाना चाहिए, 3 स्टेज पे जाना चाहिए, क्या सोच करना चाहिए। तो सरकार करेगी इस पे, पर अभी तो 21 जून तक का फोकस रखना चाहिए कि इस बार का एग्जाम अच्छे से हो जाए और बाद में फिर आगे स्टेप्स इस पे लेने चाहिए हमको।
0: जी योगेश जी, हम आज तक पर यह सबसे बड़ा कार्यक्रम इसलिए कर रहे हैं, हमने देश भर से छात्रों को जूम के जरिए भी जोड़ा है, छात्र हमारे साथ यहां पर भी ऑडिटोरियम में मेरे साथ मौजूद है, अनेकों उनके प्रश्न है। लेकिन वीसी साहब, एक बार फिर से आपकी नजर से मैं ये समझना चाहूंगी, क्योंकि आपने भी अब तो नीट के ये कई बार हो चुका है जो ये पेपर लीक हो रहा है, आपको क्या लगता है कौन सा वो पॉइंट है जहां पर ये पेपर्स लीक हो रहे हैं, मतलब कौन सी जगह है जिसको प्लग करने की जरूरत है जिससे ये लीकेज रुक पाए? जी,
1: पहले तो सारी की सारी चेन ही बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जरा भी कहीं से भी कमजोर होगी वो नुकसान देगा। पर इस बार जो नई बात निकल कर आई कि टीचर्स इन्वॉल्व हुए, जो जिस तरह से अभी शुरू में खबरें आई हैं और उनमें से अरेस्ट भी हुए हैं बहुत सारे लोग, ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। ये पहली बार हुआ है जो कि पूरे के पूरे जो टीचर्स की कम्युनिटी है उनके लिए भी शर्म की बात है और दुख की बात है। आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ था, पेपर लीक सेंटर से होता था या इम्पर्सोनेशन की कोशिश करते थे, एक की जगह दूसरा बच्चा देता था, सेंटर से पेपर लेकर भाग जाते थे, बाहर पेपर सॉल्व होता था अंदर लाने की कोशिश होती थी, इस पर सारा ये माफिया काम करता था। पर सोर्स ही, टीचर से लीक करेंगे, ये जो है सबसे दुर्भाग्यपूर्ण है, सबसे ज्यादा चिंता की बात है कि ये किया इसके ये तो किसी ने कभी सोचा ही नहीं था कि ऐसा भी कभी हो सकता है कि टीचर्स, कुछ टीचर्स का स्तर इस तरह का गिर गया कि उन्होंने इस काम में किया। अगर ये सच है जो खबरें आ रही हैं, मैं मानता हूं कहीं ना कहीं इन्वॉल्वमेंट होगी, तो हर लेवल पे बहुत जो है सतर्क भी रहने की जरूरत है और सख्ती करने की भी जरूरत है, क्योंकि डर से बहुत सारी चीजें ठीक होती हैं। तो और जो सेंटर्स हैं हमारे जो बनते हैं वहां पर भी चैलेंजेस बहुत सारे रहते ही हैं, क्योंकि ये तोड़ने की कोशिश करते हैं। अभी क्या होता है जैसे कि चेन्नई सेंटर से पेपर निकाल दिया, कुछ लोग बैठते ही क्वेश्चन पेपर लेकर भाग जाते हैं, उनको क्या होता है ये करना होता है कि ये क्वेश्चन पेपर कैसे भी बाहर आ जाए, बाहर आता है सॉल्व होता है और दूसरे सेंटर्स पे जाता है कुछ सॉल्व होके। ये बहुत सालों से ऐसे चलता रहा है इस तरह का इम्पर्सोनेशन का, बाद में उस पर थोड़ी सख्ती हुई, थोड़ा कम हुआ, पर ये मतलब ये चोर पुलिस वाला काम चल ही रहा है, 20 साल से चल रहा है ये, पर इस बार जरा ज्यादा हो गया कि टीचर्स इन्वॉल्व हो गए, ये एक बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण बात है। इस पे तो सबको चिंता करनी चाहिए और मैं मानता हूं कि मैं भी एक टीचर हूं, मेरे लिए बहुत शर्म की बात है कि टीचर्स इसमें इन्वॉल्व हुए हैं।
0: वाकई शिक्षक का
1: ऐसा हुआ नहीं कभी।
0: हाँ बिल्कुल ऐसा नहीं हुआ था, और शिक्षकों का जब नाम आता है तो वाकई सिर शर्म से झुक जाता है, क्योंकि आप सब कुछ उसी पर भरोसा करते हैं, मास्टर साहब कहा जाता है उनको। अन्य प्रोफेशंस को लेकर लोग कई बार गुस्से में गाली भी दे देते हैं, लेकिन एक डॉक्टर साहब और एक मास्टर साहब जिसको लेकर हमेशा एक विश्वास, भरोसा, इज्जत, सम्मान लोग देते हैं, वही चरमराता हुआ दिखता है। वीसी साहब, एक सवाल मेरा और है, लेकिन उससे पहले आदित्य, एक पटना से हमारे साथ इस वक्त हमारे छात्र जुड़ रहे हैं। आदित्य, आपका क्या प्रश्न है?
2: सर मेरा प्रश्न ये है कि कब तक ऐसा चलता रहेगा, तो इंश्योरेंस के बारे में कोई सोचता नहीं और बार बार पेपर लीक होता रहता है, तो क्या गारंटी मिलेगी कि नेक्स्ट टाइम से ऐसा नहीं होगा?
0: बिल्कुल, और आदित्य जो आपने कहा ना, वही मेरा पहला प्रश्न भी था वाइस चांसलर साहब से, मैंने पहला प्रश्न यही किया कि क्या हम उम्मीद रखेंगे इस देश में अब ठीक ठाक से, निष्पक्ष तरीके से, बिना लीकेज के एग्जाम्स होंगे भी? और प्रोफेसर साहब इसी में एक सवाल मैं जोड़ दे रही हूँ, उसको भी आप वाइस चांसलर साहब उसका जवाब दे दीजिएगा, कि क्या सीबीएसई के रिजल्ट्स में, क्या ओएसएम सिस्टम को इंट्रोड्यूस करने में हमने जल्दबाजी कर दी? क्योंकि अब सोचिए कुछ बच्चों के पेपर्स जब वो चेक के लिए जा रहे हैं तो उनके पेपर्स धुंधले हैं, मतलब ठीक पीडीएफ अपलोड नहीं हुआ है, या उनके पेपर्स बदल गए हैं, या एनसीईआरटी का वर्ड बाय वर्ड आंसर नहीं। अब शिक्षा क्या है? शिक्षा थोड़ा ना कंठस्थ करके उगलने की चीज है, वो तो समझ कर लिखने की चीज है, जानने की चीज है। जो भी वर्ड से थोड़ा भी डिफरेंट हो रहा है एनसीईआरटी की किताब से, उसमें मार्क्स कट रहे हैं। तो क्या ओएसएम सिस्टम को भी इंट्रोड्यूस करने में जल्दबाजी कर दी गई? दोनों प्रश्न के जवाब वाइस चांसलर साहब।
1: हाँ, पहली बात तो यह है कि आप भरोसा रखिए, एक मुझे लगता है ये पीक आ गया इसका, अब जो है बहुत अच्छे से इस बार इलाज होगा इसका और आगे ऐसा नहीं होगा। मैं तो ऐसा ही मानता हूं, ये पीक हो गया कि टीचर्स तक इन्वॉल्व हो गए, अब सरकार बहुत सख्ती से निपटेगी इस सारे मामले को। इसलिए भरोसा रखो, मैं सारे बच्चों से भी अपील करूंगा कि भरोसा रखो सिस्टम पे। इसी ने इस देश को इतना आगे बढ़ाया है, अच्छे अच्छे हमारे देश के बच्चे अच्छा कर रहे हैं हर क्षेत्र में, तो इसी शिक्षा संस्थान और से निकले हैं सारे के सारे। तो भरोसा रखें, अगली बार बहुत अच्छा होगा, इस बार भी कुछ नहीं होगा, मेरा ऐसा मानना है। और दूसरी बात यह है कि जो ये जो ओएसएम सिस्टम की आप बात कर रहे हैं कि ओएमआर स्कैनिंग हुई और उससे जो इश्यू आए, वैसे तो ये टेक्नोलॉजी टेस्टेड टेक्नोलॉजी है, बहुत सारी देश की, हमारे देश की यूनिवर्सिटीज 5-5, 10-10 साल से इसको कर रही हैं। लेकिन अभी सीबीएसई क्योंकि बड़ा सिस्टम है, जब आप छोटे सिस्टम पे कोई चीज लगाते हैं और सक्सेस आती है, और जब बड़े पे लगाते हैं तो बहुत सारे चैलेंजेस आ जाते हैं। मुझे क्या लगता है, बहुत बड़े सिस्टम पे जब लगाया और क्योंकि ये स्कूल सिस्टम पे लगा तो ये चैलेंजेस आ गए, और कहीं स्कैनिंग ठीक से नहीं हुई, कहीं टीचर्स ने लापरवाही करी, और टीचर्स ने जब ट्रेनिंग ली होगी तो उतनी सीरियसली ट्रेनिंग भी नहीं ली होगी ऐसा लगता है, और कहीं ट्रेनिंग हुई भी नहीं होगी ऐसा भी हो सकता है, इसी कारण से शायद ये हुआ। जल्दबाजी तो इसलिए कहना ठीक नहीं होगा कि जब भी कोई चीज लगाते हैं तब वो नया ही होता है, तो चैलेंजेस आ जाते हैं एक दो बार में, तो वो धीरे धीरे सेटल होते हैं। लेकिन हाँ, बच्चों के भविष्य का मामला है तो इसको सारे को ना ध्यान से देखना चाहिए ताकि किसी बच्चे का कोई इसमें नुकसान ना हो, क्योंकि अगर ऐसा होगा तो फिर और भरोसे का संकट बढ़ेगा। पर किया ये बड़े टेस्टेड टेक्नोलॉजी थी, ऐसा नहीं है कि पहली बार ही ऐसा देश में हुआ, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज में आराम से चल रहा है। तीसरी जो आपने अंजना जी बात कही वो बहुत अच्छी बात है कि ये रोट लर्निंग, हम राष्ट्रीय शिक्षा नीति की बात करते हैं कि रोट लर्निंग, रटने को कम करेंगे प्रवृत्ति को, यदि लाइन बाय लाइन कोई चेक करेगा और मार्क्स कम ज्यादा होंगे तो नई चीज होगी, नहीं ऐसा नहीं है, समझ के लिखना ही चाहिए। और अगर किसी जो इवेल्युएटर्स हैं उन्होंने किया है तो उनके समझ का फेर है, मुझे नहीं लगता कि सीबीएसई बीएसई अपेक्षा रखता होगा कि जो जो एनसीईआरटी की किताबों में लिखा है वो लाइन बाय लाइन जो बच्चा लिखेगा उसको ज्यादा मार्क्स या पूरे मार्क्स लिखेंगे। पर कई बार बहुत सारे लोग इसमें इन्वॉल्व होते हैं, उनकी नासमझी से भी ये स्थिति उत्पन्न हो सकती है। लेकिन हाँ, हमको रटने की प्रवृत्ति को कम करना है, इसी कारण से समझ को बढ़ाना ये बहुत ही जरूरी है, और इवेल्युएशन सिस्टम अगर उसमें सपोर्ट नहीं करेगा तो सारी जो मेहनत और समझ है वो खराब हो जाएगी। इसलिए बहुत जिम्मेदारी का काम है, शिक्षक बनना ही जिम्मेदारी का काम है, उसके बाद में पढ़ाना उससे बड़ी जिम्मेदारी का काम है, कॉपियों को जांचना और बड़ी जिम्मेदारी का काम है। तो ये हमारे लोगों को भी समझने की जरूरत है कि ये भागते दौड़ते नहीं होता है, ना होना चाहिए। आपकी लापरवाही से एक बच्चे के भविष्य में फर्क पड़ता है, इसकी तो हमको चिंता करनी ही चाहिए। तो मैं सारे टीचर्स से भी अपील करूंगा कि हमको इसको सीरियसली लेना चाहिए, ईमानदारी से ऑनेस्टली करना चाहिए, और ज्यादातर लोग करते ही हैं, पर जो लोग नहीं भी करते उनके लिए भी सीरियसनेस की एक आवश्यकता है।
0: वाइस चांसलर साहब, अगला सवाल मेरा थोड़ा हटके है, एक मां होने के नाते भी है और देशभर में जितने माता पिता देख रहे होंगे उनके नजरिए से भी है। मैंने एग्जाम दिया, अब मेरे एग्जाम में ये स्थिति बन गई कि मुझे पता नहीं मेरा और जो मेरा एस्टिमेटेड नंबर्स है उससे 30-40-50 मार्क्स मुझे कम मिल गए, मैं क्या करूं? इस एंग्जाइटी के लिए जवाबदेही किसी की है इस देश में? इस परेशानी के लिए क्या किसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स होगी सर? क्योंकि देखिए, आप इतने सारे बच्चे एग्जाम दे रहे हैं, कई उनमें से ऐसे होंगे जिनको विदेश में कहीं पर अपना मार्क्स देना है और वहां पे कट ऑफ है कि 85% प्लस अगर आप आए तो आपको जो कंडीशनल एडमिशन था वो दे दिया गया, अब आप क्या मार्क्स उनको देंगे? कई है जो देश के अंदर में एडमिशन के लिए सोच रहे हैं। तो जिस एंग्जाइटी से बच्चा गुजरता है, जिस एंग्जाइटी से, जिस चिंता से माँ बाप गुजरते हैं, क्या किसी की जवाबदेही नहीं है?
1: नहीं, बिल्कुल है जवाबदेही, बिल्कुल जवाबदेही है। अब आप देखिए, अभी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी कह रही है कि एवरी इंस्टीट्यूशन शुड बी डिग्री अवार्डिंग इंस्टीट्यूशन, धीरे धीरे उस पर जाएं। बहुत सारे इंस्टीट्यूशन हैं, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज हैं जहां पर कि कॉपी बच्चे को दे देते हैं कि आप ये हमने चेक किए, कॉपी आप देख लीजिए, और उसको टाइम दे देते हैं कि एक दिन का, और उसके बाद में अगर कोई मार्क्स है तो टीचर और वो उसको देख लेते हैं। लेकिन जहां टीचर और स्टूडेंट में बहुत दूरी है, जैसे सीबीएसई का एग्जाम ही है, या बड़ी यूनिवर्सिटीज जहां एफिलिएशन है, बहुत सारे कॉलेजेस हैं, वहां ये संभव ही नहीं है, ये हो नहीं पाता है। कॉपी दिखाने की प्रथा तो एज ए बेस्ट प्रैक्टिस हमको शुरू करनी चाहिए, करी भी है, लेकिन जब टीचर और उसमें डिस्टेंस इतना है, जानते नहीं है। आप देखिए, आप आईआईटीज हो गई, एनआईटीज हो गई, सेंट्रल इंस्टीट्यूशंस में बहुत सारे ऐसे हैं, यूनिवर्सिटीज बहुत सारी जहां कॉपी दे देते हैं बच्चे को, तो वो प्रॉब्लम मिनिमाइज हो जाती है वहां पे, कि डिस्कशन हो जाता है। आज वो समय आ गया है कि सोचने की जरूरत है कि ये दूरी कैसे कम की जाए ताकि डिस्कशन हो सके। शायद इसीलिए सरकार बहुत गंभीरता से सोचती है कि अब की इंस्टीट्यूशंस को ऑटोनॉमी दी जाए ताकि जो टीचर है जो पढ़ा रहा है वही पेपर बनाएगा, वही चेक करेगा, विद्यार्थी से उसका अच्छा कॉन्टेक्ट होगा। वर्ल्ड के जितने भी बेस्ट इंस्टीट्यूशंस हैं वो यही परंपरा वहां चलती है, पर हम क्योंकि अभी एफिलेशन वाले इस मोड में देश है और बहुत सारे हैं तो इसका मतलब हुआ कि एक्सपेंशन की जरूरत होगी और हरेक को ऑटोनॉमी देनी होगी इस काम के लिए, तब इस परंपरा से हम हटेंगे। अदरवाइज ये तो थोड़ा रहने ही वाली है कि जब दूसरा कोई चेक कर रहा है कॉपी तो उसका अपना पर्सपेक्टिव है, अपनी समझ है, कम ज्यादा हो जाते हैं, लेकिन फिर भी कॉपी बच्चे को दिखानी चाहिए और उसकी रिवॉल्यूशन होनी चाहिए। यदि वो कहता है कि इसमें ये मुझे लग रहा है, वो एक हमें एक नई लेयर इंट्रोड्यूस करने की जरूरत मैं भी महसूस करता हूं।
0: जी वाइस चांसलर साहब आप बने रहिए हमारे साथ, कुछ छात्र यहाँ पर भी हमारे साथ स्टूडियो में आए हैं, एक दो सवाल हाथ उठाइएगा जिनको पूछना।
3: सर जितना ध्यान बच्चों की चेकिंग पे दी जाती है अगर उतना ही ध्यान नीट एग्जाम्स पे भी दिया जाए, अगर क्वेश्चन पेपर्स को लेकर दिया जाए तो
0: चेकिंग से आपका मतलब है एग्जाम सेंटर्स पे जो चेकिंग
3: उनसे, तो उतना ध्यान अगर दिया जाए तो बच्चों की जिंदगी सुधर जाएगी और एक साल बर्बाद नहीं होंगे उतना।
0: बिल्कुल छोटे छोटे
4: सर मेरा सवाल ये है कि देश में इतनी सारी समस्याएं हैं, विमेन सेफ्टी, एजुकेशन, हेल्थ सेंटर, और उसके बाद में मोदी जी वहां पर मेलोनी को मेलोडी खिला रहे हैं, तो आप
0: ये आपका आपको लगता है गंभीर प्रश्न है, इसमें आपको ये इशू लाना जरूरी था?
4: मैम मेरा सवाल ये है कि
0: एग्जाम ठीक कैसे हो,
4: नहीं देश में इतनी सारी समस्याएं हैं उसके बावजूद भी क्या आपको लगता है कि देश सच में विश्वगुरु है?
0: वाइस चांसलर साहब दो बच्चे मेरे साथ बाहर से भी जुड़े हुए हैं, उनके भी सवाल ले लेते हैं, आप उसका भी जवाब दे दीजिएगा। दो बच्चे मेरे साथ बाहर से जुड़े हुए हैं, संस्कृति संस्कृति आप अपना सवाल पूछ सकती हैं, भिलाई से संस्कृति जुड़ी है।
5: जी जी मैम, ये एग्जाम जैसे रिपीट हो रहे हैं बार बार, तो इसमें जो फेलियर्स हो रहे हैं इसके कारण क्या बच्चों से एक्सपेक्ट किया जा सकता है कि उनके पास सेम मेंटल स्ट्रेंथ रहेगी और सेम करेज वो जुटा पाएंगे हर बार? क्योंकि किसी ने 650 स्कोर किया था पिछले बार, क्या वो सेम कर पाएगा, सेम मेंटल स्ट्रेंथ उसकी रहेगी? और अब तक तो काफी लोग तो दूसरा एग्जाम दिलाने के लिए है भी नहीं हमारे साथ, तो क्या वापस हमें लाइफ दे पाएगी ये सारी टेस्टिंग बॉडीज, क्या हमें ये सब लॉस्ट लाइफ्स वापस मिल पाएंगी? ये क्वेश्चन
0: वेरी वेरी वैलिड क्वेश्चन संस्कृति, और काफी गंभीर सवाल आपने पूछा है। तो वाइस चांसलर साहब सभी बच्चों की आपने बात सुन ली है, अगर आप जवाब देना चाहें एक एक करके।
1: जी हाँ, देखो ऐसा है कि पहले तो मैं संस्कृति का जवाब देता हूं कि अभी ये घटना हो गई, आज मैं मानता हूं कि अभी वो वापस नहीं लाया जा सकता, वो जो नुकसान हुआ उसकी भरपाई भी नहीं हो सकती, लेकिन अब आगे देखने का भी तो वक्त है ना, अभी तो एग्जाम की डेट फिक्स हो गई, उसकी तैयारी करके आप एग्जाम दीजिए, आपको एक अच्छा भविष्य मिलेगा, क्योंकि तैयारी आपकी है, मेहनत आपकी है, बहुत सारे बच्चे भी मेहनत कर रहे हैं, अगर हम अपना समय ऐसे खराब होगा तो हम पिछड़ जाएंगे, लेकिन ये नहीं होना चाहिए, ये तो सही बात है नहीं होना चाहिए, कोई भी नहीं कह सकता, ये तो हमारे सिस्टम की कमजोरी ही आई इसके अंदर कि हम उन ताकतों से ठीक से लड़ ही नहीं पाए जो इस सिस्टम को रोज तोड़ने की कोशिश करते हैं, और उन्होंने तोड़ लिया, वो सक्सेसफुल हो गए, पर इसको इस बार ऐसा इलाज होगा कि ये भी याद करेंगे। पर दूसरी जो बात कही है, अभी नए नए जो सिस्टम्स आएंगे जब भी हम उनको इम्प्लीमेंट करते हैं थोड़ी सावधानी की जरूरत तो होती है। मैं स्लोगन की बात है जो विश्वगुरु की, मैं उसमें इसलिए नहीं जाता हूं स्लोगन में कि इसकी कोई आवश्यकता नहीं है अभी, कि जब लोग कहने लगेंगे कि तो होगा तब होगा, अभी हमें बहुत लंबा जाना है, बहुत अच्छी व्यवस्थाएं अपने बच्चों के लिए तैयार करनी है, और लेकिन एक दिन में ये हो नहीं रहा, लेकिन आप देखो बहुत कुछ बदला है देश के अंदर, ऐसा नहीं कहो सोचो कि बदला नहीं है, बहुत बदला है, बहुत अच्छा हुआ है देश, आगे और अच्छा होगा, और शिक्षा में भी और मजबूती आएगी, इसको ठीक से इसका इलाज भी होगा, अब क्योंकि ये पीक आ गया है इसका, अब इसका अच्छे से इलाज भी होगा, ऐसा नहीं कि ये पहली बार हुआ होगा। इम्परसोनेशन की घटनाएं तो हर एग्जाम में बहुत सारी होती हैं, हम सब जानते हैं, और उनको रोका भी जाता है, कितनी FIR लॉज होती है देश के अंदर, पर ये जो मैं पीक इसलिए कह रहा हूं क्योंकि टीचर्स इन्वॉल्व हो गए इसके अंदर, ये है पीक किसी का दुर्भाग्यपूर्ण होना सोसाइटी का, जब टीचर्स का इतना पतन हो जाए कि वो इसमें इन्वॉल्व हो जाए तो ये डूब मरने की बात होती है, ये दुर्भाग्यपूर्ण बात है जो टीचर्स के आचरण से, और ये पीक आ गया, अब इसका इलाज होगा, होना भी चाहिए, मैं भी सरकार से भी और बाकी सबसे भी आग्रह करूंगा जितनी हमारी एजेंसीज हैं, इसको जल्दी से जल्दी निपटाओ, ये बीमारी का इलाज अब जरूरी है, ये कैंसर है, इसका इलाज बहुत जरूरी है।
0: बिल्कुल। और वीसी साहब, आपने जो कहा टीचर्स का शामिल होना, मुझे लगता है कि शायद पहले भी होते थे अगर लीक्स होता था, लेकिन पहली बार यहां तक हम लोग पहुंचे हैं और ये जरूरी है कि अंत तक इसको सील किया जाए। लेकिन कोचिंग की मैं बात कर रही थी और मुझे लगता है कोचिंग सेंटर्स इस बार भी संलिप्त पाए गए हैं। कई जगह पर कोचिंग सेंटर्स के जरिए ये पेपर्स पहुंचाए जा रहे थे छात्रों को। तो कोचिंग हब जिसे कहा जाता है कोटा, उस शहर से भावना हमारे साथ जुड़ी है। भावना पूछे। भावना बोलिए, आपकी आवाज आ रही है जी। बोलिए बोलिए।
6: मैं पूछना चाहती हूँ कि जिन बच्चों ने सेलिब्रेशन कर लिए हैं, अब उनका क्या, उनके पेरेंट्स का क्या? अब वापस उनका नंबर नहीं आया, डोंट नीड मी।
0: बिल्कुल, धन्यवाद भावना आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। ऐसे ही अनेकों छात्र हर जगह से जुड़े हुए हैं और वाइस चांसलर साहब, सबका वही सवाल है जो मैंने शुरुआत में आपसे पूछा कि अब हमारा क्या, अब हमारा क्या होगा, हमारे परिवार का क्या होगा, क्योंकि उनके लिए या तो इट्स अ लॉस ऑफ अ ईयर और फिर वो जो उस मोमेंटम के साथ फिर से पढ़ना बड़ा बहुत मुश्किल लगता है, इनकी हताशा समझ में आती है। प्रोफेसर साहब,
1: बिल्कुल सही है, हताशा समझ में भी आती है, परेशानी भी है, लेकिन ऑप्शन नहीं है बेटा, पढ़ना तो पड़ेगा ही। अब ऐसे ऐसे हाथ छोड़ देने से, हिम्मत हारने से तो नहीं होता ना। दुनिया में बहुत सारा संकट आता है, उससे व्यक्ति भी बाहर निकलता है, देश भी बाहर निकलता है। मत सोचो ऐसा, पॉजिटिव रखो माइंडसेट को, अच्छे से दोबारा तैयारी करो, अच्छा होगा। और सरकार जिस तरह से आने वाले समय में एक्शन ले रही है और मेडिकल की सीट्स भी बढ़ाने की तरफ, काफी मेडिकल कॉलेजेस खोलने पे चल रहा है, तो धीरे धीरे सिचुएशन आएगी। पर उसकी बात इसलिए आवश्यकता नहीं क्योंकि आपके जीवन में वो नहीं आएगा। तो अभी तो अच्छे से तैयारी करके 21 जून का एग्जाम दीजिए, भरोसा रखिए और अच्छा होगा सब कुछ। ऐसा मानेंगे तो अच्छा लगने लगेगा आपको। बहुत मत सोचिए इस समय, जो हो गया दुर्भाग्यपूर्ण है और बहुत ही शर्मनाक है कि टीचर्स इन्वॉल्व हो गए। तभी मैं बोलता हूं ये पीक आ गई, अब इलाज होगा इसका बहुत अच्छे से।
0: चलते चलते वाइस चांसलर दिल्ली यूनिवर्सिटी के योगेश सिंह साहब, हालांकि ना इन एग्जाम्स को कराने में आपकी कोई भूमिका है, ना इन एग्जाम्स के जो भी इसका तरीका होता है उसमें आपकी कोई भूमिका है, लेकिन बावजूद इसके आपने इस बात के लिए हामी भरी कि छात्रों की जो भी चिंताएं हैं उनको आप एड्रेस करना चाहते थे, उनके सवालों का जवाब देना चाहते थे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद प्रोफेसर योगेश सिंह साहब। और चलते चलते कुछ ऐसा जो आप उम्मीद और प्रेरणा देने के लिए हमारे छात्रों को बोलना चाहें जो आज तक देख रहे हैं, इस वक्त जरूर बोलते हुए जाएं।
1: मैं यही कहना चाहूंगा कि आप हमारे बच्चे हैं, आपका हित जो है वो हमारा हित है, उससे अलग नहीं है। और अगर देखिए, अगर ये ना हुआ होता, पकड़ा नहीं गया होता, आप थोड़ा तो सोचो ना कि हिम्मत करी कि कैंसिल भी किया और आज मान रहे हैं कि हमारी गलती हो गई, सिस्टम में गलती हो गई। तो उससे क्या है कि नहीं तो दूसरे ऐसे बच्चे एडमिशन ले जाते जिनका एडमिशन नहीं होना था, अच्छे बच्चों को एडमिशन फिर नहीं होना था अगर ये पकड़ा नहीं जाता तो ठीक से। तो जो हो गया इसको एक दुर्घटना मान के छोड़ दीजिए, अच्छा सोचिए, ये हमारा देश है, हम सबने इसकी चिंता करनी है। ये खराब करने से तो कुछ नहीं होगा ना, स्वर्णिम भविष्य है हम सबका। मैं आपको मानता हूं कि पॉजिटिव रहिए, भरोसा रखिए और एग्जाम दीजिए, आपको कहीं ना कहीं अच्छा एडमिशन भी होगा। मेरी तरफ से भी मैं और आपको बहुत सारी शुभकामनाएं इसके लिए।
0: बहुत बहुत धन्यवाद आपका प्रोफेसर योगेश सिंह, वाइस चांसलर दिल्ली यूनिवर्सिटी के, हमारे साथ जुड़ने के लिए और छात्रों की बातों का जवाब देने के लिए। चार खास मेहमान हमारे साथ यहां पर भी जुड़े हुए हैं, लेकिन इससे पहले कि हम इनसे चर्चा करें, हमारे साथ यहां पर डॉक्टर शिखा दरबारी जुड़ी हुई हैं जो कि फॉर्मर ज्वाइंट सेक्रेटरी हैं पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमिटी ऑन एजुकेशन की। आपके इनसाइट्स बहुत ये रहेंगे, जानकार उससे जानकारी मिलेगी। प्रोफेसर संगीत रागी हमारे साथ प्रोफेसर दिल्ली यूनिवर्सिटी के हैं, पोलिटिकल एनालिस्ट हैं, और आशुतोष जी हमारे साथ पोलिटिकल एनालिस्ट के तौर पर इस चर्चा में जुड़ रहे हैं। लेकिन उससे पहले जल्दी से आपको अपनी ये रिपोर्ट दिखा देते हैं।
7: नीट जो री एग्जाम होना है उसके लिए कैसी तैयारियां हैं आप लोगों की, किस तरह के आप लोग बंदोबस्त कर रहे हैं कि जो पिछले महीने हुआ वो दोबारा ना हो?
8: पिछले महीना जो हुआ वो दुर्भाग्यपूर्ण है, वो नहीं होनी चाहिए थी। हमारी चिंता बच्चों की मानसिक स्थिति के साथ जुड़ा हुआ है और हम जिम्मेदारी लेते हैं। तब भी मैंने कहा था, पिछले बार जब मैंने आप लोगों को मिला था और कहा था कि हम जिम्मेवारी लेते हैं, और हम जिम्मेवारी लेते हैं परीक्षा को निर्भुल करने के लिए।
7: आ
9: आज तक से बातचीत में देश के शिक्षा मंत्री नीट परीक्षा में गड़बड़ी की जिम्मेदारी लेने से कतई नहीं हिचक रहे। वो कहते हैं कि बच्चों को ही मानसिक परेशानी का सरकार को एहसास है और ये भी कहते हैं कि जब दोबारा परीक्षा होगी तो व्यवस्था अलग स्तर की होगी।
8: 21 जून को री नीट की तिथि तय हुई है। पिछले दिनों में भी नीट की एक प्रोटोकॉल है कैसे ये परीक्षा होगी, इसमें इस बार और मजबूती और स्पष्टता और सुरक्षा की व्यवस्था लाने की आवश्यकता है। इस सारे प्रबंधन के बाद इस बार जो घटना हुई या आगे कैसे ना हो उसकी जिम्मेवारी हम सभी के ऊपर है। बच्चों को थोड़ा तनाव मुक्त करने के लिए, बोझ मुक्त करने के लिए हमने पिछले बार की जो फीस था, जो परीक्षा कैंसिल हुई उसकी फीस हम लौटाएंगे, जो अभी की परीक्षा होगा उसको फीस माफ करेंगे, फीस नहीं लेंगे।
9: तो 21 जून वो तारीख है जिस दिन ये साबित होगा कि नीट के बच्चों को साफ सुथरी परीक्षा का हक दिलाने में तमाम एजेंसियां कितनी कामयाब रही। लेकिन इस वक्त केंद्र सरकार नीट के सुरक्षा चक्र को अभेद्य बनाने में एड़ी चोटी का जोर लगाती दिख रही है। तैयारी हो रही है नीट परीक्षा में वायुसेना को उतारने की, वायुसेना को प्रश्न पत्रों की सुरक्षा सौंपने की, वायुसेना के विमानों से प्रश्न पत्र भेजने की। ये सारी प्लानिंग बड़े लेवल पर हो रही है क्योंकि केंद्र की मोदी सरकार अब नीट परीक्षा को फुल प्रूफ बनाने के लिए कमर कस चुकी है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह मोर्चे पर उतर आए हैं। गुरुवार को एक बड़ी बैठक हुई जिसमें रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, एनटीए के महानिदेशक अभिषेक सिंह और शिक्षा मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी शामिल हुए। इस बैठक में इस संभावना पर विचार किया गया कि प्रश्न पत्रों को सेंटर तक ले जाने के लिए क्यों न वायुसेना के विमानों का इस्तेमाल किया जाए, क्यों न वायुसेना का सहयोग लिया जाए। ये विकल्प प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने रखा जाएगा। पीएम मोदी ही इस पर अंतिम निर्णय लेंगे। सूत्रों के मुताबिक प्रधानमंत्री 21 जून को होने वाली पुनर्परीक्षा की तैयारियों की व्यक्तिगत रूप से निगरानी कर रहे हैं और उन्हें परीक्षा प्रक्रिया से संबंधित हर जानकारी दी जा रही है। केंद्र की इस तैयारी से हैरानी नहीं होनी चाहिए क्योंकि ये 22 लाख से ज्यादा छात्रों के भविष्य का सवाल है जो खुद इस देश के भविष्य हैं। आज तक ब्यूरो।
10: पहले कैसा अटेम्प्ट गया था और अभी एनटीए से आपका क्या सवाल है?
11: पहला मेरा अटेम्प्ट, मेरा जो सबसे अच्छा स्कोर था वो मेरा नीट में आया था, ये स्कोर 644। और फिर उसके बाद मैं हॉस्टल में रहता हूँ, मैंने अपने नोट्स जो वगैरह थे, जो ड्रेस थी वो मैं हॉस्टल में छोड़ करके चला गया घर। फिर मैं घर चला गया और अच्छा एग्जाम गया था, मैं सोचा रहा था कि अब कॉलेज जाऊंगा और फिर हॉस्टल वालों ने हमारे नोट्स भेज दिए। अब मैं सोच रहा हूँ अगले साल की मैं तैयारी कैसे करूँ, अगले एग्जाम में दूंगा कैसे, बस इसी के चक्कर में मैं हूँ कि अगला मैं पढ़ूं तो पढ़ूं कैसे। पूरे साल भर की जो गलतियां थी मैंने वो इकट्ठे करके रखी थी कि एग्जाम से 10 दिन पहले उसको पढ़ूंगा और फिर मैं उसको पढ़ करके एग्जाम देने जाऊंगा, जो कि मैंने किया। अभी पूरी गलतियां लिखी, पढ़ा, फिर एग्जाम से पहले या एग्जाम जस्ट पहले भी मैं पढ़ करके गया, उसको एग्जाम में डिलीवर करके आया, फिर उसके बाद पता चल रहा है पेपर लीक हो गया।
0: बिल्कुल, और सबसे बड़ी बात यही है कि मतलब बच्चे मेहनत कर रहे हैं, ईमानदारी से कर रहे हैं, गलती किसी और की है, भरपाई इनको करनी है फिर से पढ़ाई करके, मतलब इससे बड़ी त्रासदी क्या हो सकती है? आशुतोष जी,
12: तो इसका मतलब है कोई बहुत ऑर्गेनाइज्ड माफिया है जिस पर क्रैकडाउन नहीं हो रहा। और मैं इसके लिए सरकार,
0: और एक नहीं है, मल्टीपल है, मल्टीपल देश भर में है।
12: और अभी 21 मई की बात है, पिछली बार जब यूजीसी नेट का पेपर लीक हुआ था उस पर सीबीआई के इन्वेस्टिगेशन हुए और सीबीआई ने कोर्ट में जाके क्लोजर रिपोर्ट लगा दी कि पेपर लीक का हमें कोई किसी तरीके का कोई सबूत नहीं मिला। कोर्ट ने इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर को झाड़ लगाई है और कल 30 तारीख को उसकी दोबारा सुनवाई है। मतलब ये तरीका अगर है कि आप इसको अगर गंभीरता से ले रहे थे तो या तो आप पहले कहते कि पेपर लीक नहीं हुआ और उसी समय आप बात कर देते। आपने इन्वेस्टिगेशन किया, आपने ये माना कि पेपर लीक के लिए पैसे दिए गए, फिर भी आपने उस पर क्लोजर रिपोर्ट लगा दी। तो मेरा कहना है कि इसको सिर्फ स्टैंड अलोन केस ना माना जाए, इसके पीछे निश्चित तौर पर कोई बड़ा माफिया है, कोई बड़ा आदमी है। जब तक उसको आप नहीं पकड़ेंगे तब तक फुल प्रूफ नहीं कर सकते। और मैं वायुसेना के पक्ष में नहीं हूं, क्यों नहीं हूं, मुझे वायुसेना की क्रेडिबिलिटी पर कोई सवाल नहीं है, लेकिन ये सिविलियन एडमिनिस्ट्रेशन का काम है। क्योंकि आज आप नीट पे लगा देंगे, कल जो राजस्थान के अंदर एग्जामिनेशन होंगे,
0: एग्जाम तो ठीक से हो जाए।
12: मैं कह रहा हूँ अगर ये सिर्फ नीट का प्रॉब्लम है, अगर सिर्फ नीट का प्रॉब्लम तो बात अलग है, हर स्कूल में हर जगह परीक्षा होती, यूपी में होती, तमिलनाडु में होती, केरला में होती, क्या हर जगह
0: लगाना पड़ेगा तो क्या दिक्कत है?
12: मैं कह रहा हूँ हर जगह एयरफोर्स लगाएंगे,
0: क्यों नहीं लगा सकते?
12: तब तो सिविल एडमिनिस्ट्रेशन को
0: अपडेट, ऐसा नहीं है ना कि हमेशा के लिए खत्म, इस एग्जाम के लिए बातचीत हो रही है ताकि जब तक व्यवस्था को ठीक से फुल प्रूफ नहीं किया जा सकता है तब तक इसको करने क्या दिक्कत है? संगीत रागी जी, उसके बाद मैं आ रही हूँ।
13: देखिए कोई एक माफिया तो नहीं है, और आप चले जाइए यूनिवर्सिटीज के डिफरेंट कॉलेजेस में, आप चले जाइए दिल्ली यूनिवर्सिटी के आप हॉस्टल में चले जाइए, इलाहाबाद के हॉस्टल में चले जाइए, लखनऊ के हॉस्टल में चले जाइए, आपको पता लग जाएगा। हम लोगों को बार बार आकर के लोग बताते हैं कि क्वेश्चन पेपर ये यहाँ बिक रहा है सर, वहाँ ये है, ये माफिया
0: का पेपर या यूनिवर्सिटी के एग्जाम का पेपर?
13: नीट के पेपर जो एनटीए जेआरएफ का पेपर ऑर्गेनाइज करती है उसके बारे में भी, अंडर ग्रेजुएट एग्जामिनेशन के बारे में भी, आप हॉस्टल में चले जाइए, सब बातें बहुत खुल करके होती है। मैं पिछली बार भी जब एनटीए के डायरेक्टर थे उनको मैंने पर्सनली फोन करके बोला था, ये मैं फिर ऑनलाइन आज तक पर बोल रहा हूँ कि साहब पूरे दुनिया को पता हो जाती है, आपको पता नहीं है इन सब चीज़ों के बारे में? तो उन्होंने कहा सेंटर में, देखिए बहुत सीधी सीधी बात है, कहाँ से संभावना हो सकती है? एक जो क्वेश्चन पेपर बनाता है, आजकल डर से मुझे कई जगह से एग्जाम क्वेश्चन पेपर बनाने के लिए मुझे इनविटेशन आता है, मैं जाना बंद कर दिया हूँ ताकि पता नहीं कौन कहाँ पर करेगा और सारे ठिकरे जो होता है वो हम भी पुलिस के किनारे थाने में घूमते हुए नजर आएंगे। एक तो जो क्वेश्चन पेपर बनाता है वो, दूसरा जहां पर क्वेश्चन पेपर की प्रिंटिंग होती है वो, तीसरा जो है वो एनटीए के अंदर के लोग, और चौथा जो है वो जो माफिया घूम रहा होता है जिसका संबंध या तो एनटीए से हो सकता है या टीचर से हो सकता है या फिर प्रिंटिंग पेज तक सीधे चला जा सकता है। तो ये पूरा का पूरा नेटवर्क काम कर रहा है, और ये 2015, 16, 17 मत कीजिए, ये बहुत पहले से चला आ रहा है। उत्तर प्रदेश के मेडिकल एग्जाम जब हुआ था तो वहां पर भी हुआ था, राजस्थान के अंदर हमने देखा था वहां भी होता था, और दोनों के बीच में अंतर करना हम लोगों को बहुत आवश्यक है। जो सीबीएसई में हुआ है वो टेक्निकल ग्लिच है, और ऐसे टेक्निकल ग्लिचेज जो हैं वो आपको दुनिया के हर देश में, बहुत अच्छा अमेरिका की टेक्नोलॉजी है सैट पेपर जो है वो 2020 के अंदर ही, उसमें भी ऐसे टेक्निकल ग्लिचेज हैं। आप चाइना के अंदर जाएंगे तो ऐसे न्यूमरस एग्जांपल्स मिल जाएंगे, लेकिन सीबीएसई का मामला जो है वो बहुत खतरनाक
0: जुड़ी हुई है। नाम बताइएगा मुझे। जेनी, जेनी आपको आवाज आ रही है? जेनी आपकी आवाज आ रही है, बताइए आप क्या कहना चाहेंगी?
14: मैं ये कहना चाहूंगी कि जो नीट की प्रिपरेशन होती है वो पूरी 2 साल या बहुत लोगों के लिए उससे भी ज्यादा टाइम लगता है, तो उसके थ्रू आउट जो उनका मेंटल स्टेट रहता है और एंग्जाइटी रहती है और जो उनके एफर्ट्स रहते हैं वो सब भी अभी कैसे अफेक्ट होगा रीनीट के वजह से?
0: मैम
15: देखिए ये जो है पूरा सिस्टम जो है, अगर हम कहेंगे एग्जामिनेशन सिस्टम जो है वो बहुत सैक्रोसेंट होता है।
0: तो मेरा सवाल आपसे ये है कि ये पेपर लीक क्या वहां पर इशू बना था आपके सामने में कभी भी?
15: एनटीए की पूरी वर्किंग का जो है वो एक इशू आया था पार्लियामेंट्री कमेटी के सामने, और पार्लियामेंट्री कमेटी ने कहा था कि एनटीए की वर्किंग जो है इट्स नॉट इंस्पायरिंग एनी काइंड ऑफ कॉन्फिडेंस। तो अगर हमको उसकी वर्किंग ही सही नहीं लग रही है,
0: लूपहोल है।
15: लूपहोल देखिए एनटीए की वर्किंग में इस तरह से था कि वहां कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है, वहां पे अकाउंटेबिलिटी नहीं आ रही है। और अगर हम यहां पे देखें, हम अपनी युवा पीढ़ी के साथ किस तरह का मजाक कर रहे हैं कि जो टीचर था, देखिए यहां पे अगर आप चाहे एनटीए का इंफ्रास्ट्रक्चर देखिए, उसका आर्किटेक्चर देखिए, या पूरा एनक्रिप्शन का देखिए, या पूरा प्रिंटिंग प्रेस का देखिए, वहां पर कहीं कोई गड़बड़ी नहीं निकली। कहां गड़बड़ी निकली है? हमारे शिक्षक के साथ, जिसने पेपर बनाया था, कुलकर्णी जी का जो पूरा नाम आ रहा है कि उन्होंने हाथ से लिख के पेपर बाहर ले गए और इस तरह का किया। तो देखिए बजट में भी और पार्लियामेंट में भी, हर जगह जहां पे भी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी होती है,
0: जो उस बच्ची का सवाल था वो बहुत वैलिड और अच्छा सवाल था। वो ये पूछ रही है कि हम बच्चों को तो बड़ा एग्जाम चेक कर लेते हो भाई, यहाँ पे पैंट भी वैसे उठा उठा के देख लेते हो। एक सेकंड, टीचर पेपर और पेन लिख के पूरा एग्जाम शीट कॉपी कर रहा है और फिर वो लेके बाहर जा रहा है, किसी को दिख ही नहीं रहा है।
15: नो, दिस इज वेयर आई वाज कमिंग कि जब भी इस तरह की चीजें होती हैं, बजट डिवीजन में जो है पूरा आईबी का इंक्वायरी होती है, 360 डिवीजन का पूरा आपका 360 डिग्री उसकी इंक्वायरी होती है, उसके बाद ही किसी को वहां पे बजट डिवीजन में लाया जाता है ताकि बजट लीक ना हो। सेम इज ट्रू फॉर एनी एग्जामिनेशन, कि जब आप एग्जामिनेशन में किसी टीचर को बिठा रहे हैं तो उसका अगर आपने बैकग्राउंड चेक नहीं किया है, अगर वो छोटे से अमाउंट के लिए कंप्रोमाइज हो गया, टीचर का मैं वहां पे क्या कर रही हूं ना, सो दिस इज द एनटीए अकाउंटेबिलिटी कि वो उसको
0: मैडम एक सवाल है बस आपसे, आपसे जानकारी ले रहे हैं हम लोग, आप बीच बीच में रुक के सवाल सुना कीजिए। एनटीए के पास ऐसे कोई रूल्स नहीं है भाई, जो एग्जाम का क्वेश्चंस बना रहा है उससे इंपॉर्टेंट कौन है? उसकी चेकिंग के लिए क्या कोई प्रावधान ही नहीं है कि भाई वो क्या लेके अंदर जा रहा है और क्या लेके बाहर आ रहा है? ऐसे घूमते हुए जा रहा है, सवाल लिख रहा है, वहां पे लिखता है, फिर फाइनल करता है, फिर कॉपी करता है और क्वेश्चन पेपर लेकर निकल रहा है, उसकी फिजिकल चेकिंग तक नहीं होती है?
15: आई थिंक यहाँ पे एक हमारा
0: मोबाइल हमारा लिया जाता है,
15: दिस इज अवर वीक लिंक, जहाँ पे कि एनटीए शायद गड़बड़ कर गया कि उसने अपने टीचर के ऊपर इतना ज्यादा कॉन्फिडेंस कर लिया कि ये मेरा टीचर जो क्वेश्चन पेपर बना रहा है उससे मैं कहाँ से उम्मीद करूंगी कि वही क्वेश्चन पेपर को लीक कर देगा। तो शायद यहाँ पे एनटीए से
0: एक और बच्चों पर भरोसा नहीं है, बच्चों का एक एक चीज चेक करते हैं,
15: इसमें एक ही जो
0: भी चेकिंग होनी चाहिए ताकि कोई उसका फायदा ना
15: उठाए। बिल्कुल नहीं,
12: मुझे लगता है जब एक टेंडेंसी हो गई, एक पैटर्न बन गया कि अभी से नहीं, मैं संगीत की आय से सहमत हूँ, ये 20-25 साल से लीक हो रहे हैं,
15: तो
12: हम ये कह दें खाली एक टीचर जिम्मेदार, ये संभव ही नहीं है। इसके पीछे एक बड़ा माफिया, जब तक उस पर क्रैक डाउन नहीं होगा, आखिर क्यों सीबीआई ने जो जो नेट और उसका यूजी का एग्जाम था उसे क्लोजर रिपोर्ट क्यों लगाई? कोर्ट को दिखाई पड़ रहा है कि इस पूरे मामले में गड़बड़ी है और सीबीआई को नहीं दिखाई पड़ रहा, कोर्ट ने झाड़ लगाई उसकी 21 मई, अभी एक हफ्ते पहले की बात है। तो जब तक वो माफिया पे क्रैकडाउन, और मेरा साफ तौर पे कहना ये हिंदुस्तान के अंदर जितने बड़े बड़े कोचिंग सेंटर्स हैं ये सारे के सारे बंद होने चाहिए, सारे बंद होने चाहिए। दरअसल माफिया की जड़ ये है, जब आपने एजुकेशन को प्रॉफिट का धंधा बना रखा है पूरी तरीके से, सिर्फ आपके लिए धंधा, पैसा कमाना है बस, इसके अलावा कुछ नहीं।
0: और आजकल तो और उसमें भी एक सेकंड, और उसमें भी आजकल हो गए हैं स्टार टीचर्स, यूट्यूब वाले स्टार टीचर्स, जिनको कुछ जानना ना कौड़ी, कभी ब्लैक बोर्ड लेकर कुछ एक्सप्लेनर बनाते हैं, खाली व्यूज बटोरते हैं, उटपटांग ग्रैब्स लिखते हैं और उसके बाद से अपने आप को इतना महारथी समझने लगते हैं कि कुछ लोग उनको फॉलो करने लगते हैं उनके तमाशे की वजह से, और फिर वो जाकर जहां पर जो आता है वो बोलते हैं और उसके दम पर फिर वो पैसे वसूलते हैं, छात्रों से वसूलते हैं। ये सबसे बड़ी चिंता की बात है। ये जो एक्सप्लेनर बनाने वाले यूट्यूबर्स हैं और जो शिक्षक हैं उनमें फर्क है, वो फर्क सबको समझना पड़ेगा। ये जो आकर पैसों के लिए अपना धंधा बना रहे हैं एडुकेशन को, वो एक तरफ है और इसी वजह से स्कूल्स कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज में पढ़ाई नहीं होती है। बच्चों से कह दिया जाता है कि भैया तुम कोचिंग सेंटर को ज्वाइन कर लो तभी तुम क्रैक कर पाओगे। ये कैसी व्यवस्था में हम जी रहे हैं, ये बहुत बड़ा सवाल है। आज हमारे साथ कुछ और छात्र अनंत लखनऊ से जुड़ रहे हैं। अनंत बोलिए।
16: मैम हमें ये जानना है कि ये हमारा कैसे कंफर्म हो जाएगा कि इस बार जो हमारी नीट का पेपर होगा वो लीक नहीं होगा, जैसे कि हमारा 2024 में भी पेपर लीक हुआ था बट रीनीट नहीं हुआ था। 25 में उन्होंने ऐसा पेपर सेट कर दिया था कि हमारे कोचिंग इंस्टीट्यूट या हमारे जो टीचर्स है वो तक उस पेपर को इतने टाइम में नहीं कर पा रहे थे। 26 में मैम रीनीट ही हो गया। तो मैम अभी ये क्या कन्फर्म है कि मैम ये रीनीट लीक नहीं होगा? और हमारे ऊपर इतना मेंटल प्रेशर है मैम, जिस तरह से हम पहले तैयारी की है वो एफिशिएंसी हमारे अंदर दिख ही नहीं रही है अब।
0: आई टोटली अग्री, मैं आपकी हर बात से सहमत हूँ और मुझे लगता है कि हर किसी को ये फील हो रहा होगा, क्योंकि आप कैसे कॉन्फिडेंस लाएं और कहीं ऐसा ना हो कि अब गुस्से में ऐसा पेपर सेट कर दिया जाए जिसको कोचिंग सेंटर्स, आप देखिए ना, मतलब कोचिंग सेंटर के टीचर्स को एपिटोम ऑफ नॉलेज माना जा रहा है। ये बच्चा भी कह रहा है कि कोचिंग सेंटर के टीचर भी सॉल्व नहीं कर पाए क्योंकि उनको सवाल पहले से नहीं दिया गया होगा। मैं आपको ये गारंटी से कह सकती हूँ, उनमें से आधे टीचर्स ऐसे होते हैं जो आपस में नेटवर्किंग उनकी होती है, उनको ये पता होता है किस तरह के क्वेश्चंस आने वाले हैं, उन क्वेश्चंस को और प्रोबेबल क्वेश्चंस और उनके आंसर्स को वो सर्कुलेट करते हैं, फिर उनके कोचिंग सेंटर के कुछ बच्चे निकाल लेते हैं, फिर वो अखबार में बड़ा सा अपना इश्तेहार छापते हैं और इस तरह से शिक्षा इस देश में एक धंधा बन चुका है।
13: अंजना जी, मैं आपने बहुत सही कहा, एक कोचिंग सेंटर में पढ़ाने वाले किसी शिक्षक का हो सकता है कि पैकेज जो हो वो 1 करोड़ से ज्यादा का हो, वो 2 करोड़ का भी सालाना पैकेज हो सकता है, और दिल्ली यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर का पैकेज जानते होंगे मैक्सिमम 50 लाख होगा साल का, इससे ज्यादा नहीं होगा। मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये जो धंधा है,
0: आप बता ही सकते हैं, आप प्रोफेसर हैं, शर्मा
13: नहीं नहीं, हमारा भी उन्हीं के बराबर होगा, लगभग 50 लाख के बराबर ही होगा। तो मैं साफ साफ ये कह रहा हूँ, कोई एक चूंकि वो एविडेंस मेरे पास नहीं है, एक बिहार के पब्लिक सर्विस कमीशन के एक अधिकारी ने मुझसे कहा सर आप आ जाइए यहाँ पर क्वेश्चन पेपर सेट करने के लिए, और उन्होंने खुल करके कहा कि इतना बड़ा धंधा ये सब कोचिंग सेंटर है, हम लोग इससे छुटकारा पाना चाहते हैं, हम लोग चाहते हैं कि कोई ऑनेस्ट आदमी आए और इसका जिम्मेदारी ले, लेकिन हम लोगों को भी डर लगने लगा है कि अब जहाँ पर कहीं भी लीकेज हो सकता है बिहार के अंदर, कोटा के अंदर जो कोचिंग माफिया हैं, उनके पूरे संपर्क हैं, सभी के संपर्क होते हैं इन लोगों के साथ, और वहीं से पेपर लीक की शुरुआत होती है। तो ये पूरा नेटवर्क इतना बड़ा है, कोई छोटा नहीं है। और मैं फिर आपसे जोहरा करके बहुत जिम्मेदारी के साथ बोल रहा हूं, इसमें सारे लोग सम्मिलित हैं, सारे लोग सम्मिलित हैं। कहना बड़ा मुश्किल है, कह नहीं पा रहा हूं, कुछ बहुत सारी चीजें रिटेन करने पड़, अपने आप को करना पड़ रहा है।
0: डरिए मत,
13: नहीं, नहीं नहीं नहीं, डरने की बात नहीं है, करना जानबूझ करके कर रहा है, क्योंकि क्योंकि ये पूरा गिरोह ऐसे काम करता है, आप 2 लाख में, 4 लाख में, 10 लाख में बिक रहा है, ये पूरी जानकारी यदि यूनिवर्सिटी सिस्टम में आप चले जाइए, अंडर ग्रेजुएट कॉलेजेस के हॉस्टल में चले जाइए, ये पता होता है।
0: ठीक है,
13: मैं तो हैरान होता हूँ कि कैसे लोगों को नहीं मालूम होता है इन सब चीजों।
15: और इसमें देखिए, एक और जो सबसे बड़ा स्टेक होल्डर है उसको हम भूल जा रहे हैं, ये कौन से पेरेंट्स हैं जो एथिकली जो है इतने डिग्रेडेशन है उनके अंदर कि वो अपने बच्चे को 25-25 लाख का पेपर ला के दे रहे हैं, और अपने बच्चे को वो क्या सिखा रहे हैं, वो कैसा डॉक्टर बनेगा, वो कल को डॉक्टर बनके जो है वो मरीज की जान ले लेगा। तो ये जो एक सबसे बड़ा पेरेंट्स का भी है, देखिए हमेशा डिमांड एंड सप्लाई होता है, तो अगर डिमांड नहीं है, अगर मार्केट में कोई अगर पेपर खरीदने को तैयार नहीं होगा तो कोई क्यों बेचेगा। पर इतना बड़ा अमाउंट हो गया है कि कोचिंग का माफिया बन गया है, पूरा ये नेटवर्क का माफिया बन गया है, पेरेंट्स उसमें शामिल है। क्योंकि अगर आप देखिए, जब से नीट नहीं होता था ना, उससे पहले जो पेरेंट्स हैं वो जाके सीधे मेडिकल कॉलेज में सीट खरीद देते थे अपने बच्चे के लिए। अब क्योंकि नीट मैंडेटरी हो गया है तो वो तो अब सीट खरीद नहीं पा रहे, तो अब उनके पास क्या बचा कि वो इस तरह से इस माफिया को एक स्ट्रेंथन करें ताकि ये पेपर लीक हो और उनके बच्चे को 25 लाख या 50 लाख में पेपर लाके दे दें।
0: आपने सही बात कही है, हालांकि मैं ये मानती हूं कि सारा का सारा ओनस सिर्फ पेरेंट्स पे शिफ्ट नहीं किया जा सकता है, ओनस और जिम्मेदारी एनटीए की है कि वो इन एग्जाम्स को ठीक से कराए, और नहीं होता है तो फिर उनके खिलाफ सख्त एक्शन की पूरी की पूरी जिम्मेदारी और जवाबदेही इस देश के शिक्षा मंत्रालय की है, ताकि सख्त से सख्त कार्रवाई हो। और मतलब कुछ पेरेंट्स पैसा देकर खरीदते हैं इसलिए बाकी बच्चों के साथ नाइंसाफी हो जाए, इसकी आप इजाजत देश में नहीं दे सकते हैं। इस खबर पर आज तक की नजर लगातार बनी रहेगी, और सारे बच्चों को हम ये अपनी तरफ से आश्वासन देते हैं कि आपकी चिंताएं हमारी चिंताओं का हिस्सा है, और ऐसा कुछ भी होने पर हम एक बार फिर आपके साथ खड़े रहेंगे। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।

0: Jam out to your favorite songs with today's hits. TuneIn has got you covered with the top songs of today. From pop songs to EDM bangers. The hits are on. And hip-hop beats.
1: I'm in the game, I should have joined with this Jesus 3.
0: Today's hits will keep the party going 24-7. Listen now. Just search Today's Hits or ask your device to play Today's Hits on TuneIn. The music you love is all right here on TuneIn, bringing you good vibes and the hottest hits. But are you ready to amp things up even more? Just upgrade to TuneIn Premium for all of our exclusive music channels, completely commercial-free. So you get more of today's hits. More country roads. And everything else. Hear it all here, commercial-free, on TuneIn.
2: ऊंचाई पर बने रहने के लिए जरूरी है इरादों का प्योर होना। कैलेंट एडवांस बनाते हैं ऐसा स्टील जो अंदर से है ज्यादा प्योर, ज्यादा मजबूत। कैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो।
3: आपके पास दो ऑप्शंस हैं, या तो सुपरमैन बनकर फर्नीचर को भीगने से बचा लो, या E3 HDMR बोर्ड लगाकर फर्नीचर को लाइफ टाइम के लिए वाटर और टर्माइट प्रूफ बना लो। E3 प्रोडक्ट्स, ये रिश्ता लंबा चलेगा।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: और भाई कहाँ गए थे घूमने?
3: जीके मैक्स।
4: वैसे रोहन पढ़ाई में कैसा है?
3: जीके मैक्स बेस्ट पुट्टी।
4: जेके वॉल मैक्स
3: बेस्ट पेंट।
4: जेके मैक्स।
3: बाकी सब सवालों का पता नहीं, लेकिन मोस्ट ब्यूटीफुल वॉल्स के लिए सिर्फ जेके मैक्स पेंट्स। जेके मैक्स पेंट्स, खुशियों के रंग।
5: इसमें फाइबर, बीटा ग्लूकोन, प्रोटीन, मैग्नीशियम तत्व, इसलिए ये शारीरिक संतुलन के साथ साथ शरीर को स्वस्थ रखता है। लायन ओट्स फैमिली, सुपर एक्शन फैमिली।
6: करेक्टर, द टेस्ट ऑफ सक्सेस।

0: क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच
2: इन एसोसिएशन विद
3: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
4: The biggest classic rock hits do just that. They hit hard. And on TuneIn's Classic Rock Hits, you'll find only the best in high-octane awesomeness. We're talking rock gods like Led Zeppelin, Kiss, AC/DC, Lynyrd Skynyrd, and so many more. So for those of you about to rock, search Classic Rock Hits or ask your smart device to play Classic Rock Hits on TuneIn.
1: Presented by Patanjali Dant Kanti Toothpaste Complete Oral Health ka Sach
2: in association with
3: Bharat ki apni electric sawari Sokudo
5: Hexa Organic Radiant Skin and Nourished Hair Pure Ayurvedic Beauty Durable Pipes Fittings and Tanks a complete range of sanitary solutions

बार बकरीद के दिन कुर्बानी दिखाने के बहाने घर बुलाकर 17 साल के सूर्या को घेरकर बीच सड़क पर बेरहमी से मारने के आरोप। कर्नाटक में आज मुख्यमंत्री चुने जाएंगे डीके शिव कुमार। कांग्रेस विधायक दल की बैठक में लगेगी मुहर। 3 जून को 8 एमएस 10 मंत्रियों के साथ ले सकते हैं शपथ। सिद्धरमैया के करीबियों को मिल सकती है जगह। मुंबई में महंगाई की एक और किस्त। सीएनजी के दाम 2 रुपए प्रति किलो बढ़ाए गए। 16 दिन में दूसरी बार इजाफा।

0: नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक और आपके साथ मैं हूं शशि शर्मा। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर, गाजियाबाद से हिंदू युवक की हत्या को लेकर जबरदस्त हंगामा देखने को मिल रहा है। गाजियाबाद पुलिस ने 4 में से 3 आरोपियों को गिरफ्तार भी कर लिया है। पुलिस ने फरहान आसिफ और नवाब को गिरफ्तार कर लिया है। मुख्य आरोपी का पिता है फरहान आसिफ और आपको बता दें कि बाकी के जो आरोपियों की तलाश है वो जारी है। पुलिस ने अलग अलग जगहों पर छापेमारी की है। हत्या से पहले का वीडियो भी सामने आ गया है जिसमें हिंदू युवक सूर्या के साथ हाथापाई करते हुए कई युवक नजर आ रहे हैं। सूर्या की चाकू मारकर हत्या कर दी गई थी। 3 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। हत्या से कुछ देर पहले का वीडियो देखिए जिसमें कई युवक सूर्या को घेरे हुए नजर आ रहे हैं। ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं 17 साल के सूर्या की है जिसे घर से बुलाकर मार डाला गया है चाकू घोपकर। परिवार का हाल बेहाल है, कड़ी मांग की जा रही है, तमाम इलाके में तनाव है। आगे बढ़ेंगे और अब आपको दिखाएंगे शतक आज तक।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच, इन एसोसिएशन विद भारत।
0: गाजियाबाद के कोड़ा में युवक की चाकू मारकर हत्या, इलाज के दौरान नोएडा में मौत, इलाके में तनाव। वारदात में शामिल 3 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया, एक अभी भी फरार है, जांच के लिए टीम गठित। युवक की मौत के बाद परिजनों का आरोप, कई लोगों ने मिलकर किया था हमला, पुलिस जांच में जुटी। गाजियाबाद मर्डर पर बीएचपी का भड़काऊ बयान, कहा कुर्बानी के बहाने बुलाया गया, हलाल कर दिया गया। मौका वारदात पर मौजूद लोगों के मुताबिक बहस के बाद आरोपी ने चाकू से हमला बोला था, घटना में युवक की मौत हुई। नीट मामले पर राहुल गांधी के वीडियो के बाद गरमाई है सियासत, प्रधानमंत्री मोदी पर जमकर बोला हमला। राहुल गांधी ने कहा भारत का युवा प्रधानमंत्री मोदी पर भरोसा नहीं करता, नीट परीक्षा व्यवस्था पर सवाल उठाए। सोशल मीडिया पर राहुल गांधी के वीडियो को लेकर बीजेपी का पलटवार, कहा छात्रों के भविष्य पर राजनीति कर रहे हैं राहुल गांधी। नीट मामले पर एनटीए के सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दिया गया, पेन पेपर मोड में हुई थी परीक्षा, स्वास्थ्य मंत्रालय की योजना को किया गया था लागू। प्रयागराज में लेखपाल भर्ती पेपर लीक के मामलों में छात्रों का गुस्सा, दोबारा से परीक्षा कराने की मांग, हजारों छात्रों ने कंपनी बाग तक निकाला मार्च। सीबीएसई की ऑन स्क्रीन मार्किंग प्रणाली पर विवाद, कॉपी जांच प्रक्रिया पर उठाए गए हैं गंभीर सवाल। उत्तर पुस्तिकाओं में गड़बड़ी और अदलाबदली के आरोप हैं, सीबीएसई की नई व्यवस्था पर छात्रों की शिकायतें बढ़ गई हैं। सीबीएसई मुख्यालय में एनएसयूआई का बड़ा प्रदर्शन, ओएसएम सिस्टम वापस लेने की मांग तेज की गई। स्कैनिंग और मूल्यांकन में गड़बड़ी के आरोप हैं, 13,000 से ज्यादा कॉपियां मैनुअल जांची गई। सीबीएसई के ओएस मूल्यांकन पर छात्रों ने उठाए हैं सवाल, 4 लाख से ज्यादा छात्रों ने दोबारा कॉपी जांच के लिए आवेदन दिया है। कर्नाटक में आज कांग्रेस विधायक दल की बेंगलुरु में बैठक होगी, डीके शिवकुमार को चुना जाएगा नेता। विधायक दल की बैठक से पहले दिल्ली में राहुल गांधी से मिले डीके शिवकुमार 3 जून को ले सकते हैं मुख्यमंत्री पद की शपथ। दिल्ली में राहुल गांधी से मीटिंग में सिद्धरमैया ने कैबिनेट के लिए सौंपी है सूची, सूत्रों के मुताबिक सिद्धरमैया ने अपने बेटे के लिए मांगा है पसंदीदा विभाग। सिद्धरमैया ने कांग्रेस हाईकमान को दिया है समन्वय समिति बनाने का प्रस्ताव, सूत्रों से खबर, हाईकमान राजी नहीं। गुजरात दौरे पर अमित शाह ने भुज में पाकिस्तान, सिद्धरमैया ने अपने बेटे के लिए मांगा है पसंदीदा विभाग। सिद्धरमैया ने कांग्रेस हाईकमान को दिया है समन्वय समिति बनाने का प्रस्ताव, सूत्रों से खबर, हाईकमान राजी नहीं। गुजरात दौरे पर अमित शाह ने भुज में पाकिस्तान बॉर्डर का दौरा किया, सीमा पर जवानों से मुलाकात की। योगी के बयान पर समाजवादी पार्टी का पलटवार, प्रवक्ता फखरुल हसन चांद ने कहा चुनाव के वक्त हमेशा करते हैं हिंदू मुसलमान। यूपी में हमीरपुर पुल हादसे पर अखिलेश यादव ने बीजेपी पर हमला बोला, पोस्ट में लिखा हवा से बने पुल पर गाड़ी चली तो क्या होगा, भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ रहा है हर निर्माण। आजम खान के बेटे अब्दुल आजम को कोर्ट से राहत, 2 पासपोर्ट मामले में 7 साल की सजा रद्द, सेशंस कोर्ट का फैसला। बिहार बीजेपी की नई टीम का ऐलान, 14 प्रदेश उपाध्यक्ष बनाए गए हैं, निशा सिंह महिला मोर्चा की बनाई गई हैं अध्यक्ष।

ऋषिकेश के परमार्थ निकेतन घाट पर बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन ने गंगा आरती में हिस्सा लिया। सीएम पुष्कर सिंह धाबी भी शामिल हुए। बहराइच के प्रयागीपुर में अतिक्रमण पर एक्शन, सरकारी जमीन पर बने अवैध निर्माण पर बुलडोजर चलाया गया। यूपी के जालौन में पुलिस और बदमाशों में मुठभेड़ हुई, गैंगस्टर शाहरुख के पैर में लगी थी गोली, 9 मुकदमों में वांछित है आरोपी। यूपी के गोंडा में पुलिस का बड़ा एक्शन, 40 करोड़ 60 लाख के मादक पदार्थ नष्ट किए गए, एनईपीएस एक्ट में 898 मुकदमे। झारखंड में धनबाद में प्रतिबंधित मांस मिलने पर बवाल हुआ, मौके पर पहुंची पुलिस पर पथराव किया गया, कई राउंड फायरिंग। महाराष्ट्र में पुणे में जहरीली शराब पीने से 15 लोगों की मौत हुई, सीआईडी को सौंपी गई है जांच, सप्लाई नेटवर्क पर नजर। पंजाब के पठानकोट में सुबह बदला है मौसम का मिजाज, तेज बारिश के साथ गिरे ओले, गर्मी से राहत। हिमाचल के कुल्लू में पैराग्लाइडिंग के दौरान बड़ा हादसा टला, तेज हवाओं में फंस गया था ग्लाइडर, हाईवे पर इमरजेंसी लैंडिंग। लखनऊ के चारबाग रेलवे स्टेशन की शेड गिरने से एक्शन लिया गया, ठेकेदार पर 50 लाख रुपए का जुर्माना, प्रोजेक्ट इंजीनियर सस्पेंड। जम्मू कश्मीर के राजौरी में सुरक्षा बलों का तलाशी अभियान जारी, इलाके में कुछ आतंकवादियों के छुपे होने की आशंका। सीडीएस के पद से रिटायर हुए जनरल अनिल चौहान, राष्ट्रीय महासमर स्मारक जाकर दी सैनिकों को श्रद्धांजलि, एनएस राजा होंगे नए सीडीएस। साइकिल से कोर्ट के लिए निकले लखनऊ जिला न्यायालय के जज, वैश्विक संकट के बीच ईंधन बचाने का संकेत। सहारनपुर के शाकुमरी देवी मंदिर पहुंचे सांसद इमरान मसूद, श्रद्धालुओं से मुलाकात की, पहाड़ी चोटी एक्टिवेट करने की भी मांग की गई। यूपी के झांसी में पेट्रोल पंप पर कार लेकर बदमाश भागा, टेस्ट ड्राइव के बहाने कार डीलर से मुलाकात की थी, मौका मिलते ही वाहन लेकर फरार हुआ। मुंबई में महंगाई का झटका, 2 रुपए प्रति किलो महंगी हुई है सीएनजी, ठाणे नवी मुंबई में 86 रुपए प्रति किलो हुई है सीएनजी। राजस्थान के जयपुर और धौलपुर में तेज बारिश और ओलावृष्टि से जनजीवन अस्त व्यस्त, कई इलाकों में जलभराव और बिजली आपूर्ति बाधित। उत्तराखंड में भारी बारिश और तूफान का कहर, टिहरी और धनौल्टी में फसलों को भारी नुकसान, कई पेड़ गिरे। बागेश्वर में नदियां उफान पर हैं, बैराज के गेट खोले गए हैं, प्रशासन ने सायरन बजाकर लोगों को अलर्ट रहने के लिए कहा। जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में खराब मौसम से जनजीवन अस्त व्यस्त हुआ, कई सड़कें बंद हैं, यातायात ठप हुआ। उत्तर प्रदेश के आगरा में आंधी बारिश के बाद बड़ा नुकसान, पेड़ गिरे, टीन शेड उड़ गए, कई इलाकों में जल भराव। पश्चिम बंगाल के आसनसोल में भारी बारिश से सड़कें डूब गई हैं, जलभराव से यातायात प्रभावित हुआ। छत्तीसगढ़ के बस्तर में आंधी और ओलावृष्टि से मकानों और फसलों को भारी नुकसान पहुंचा है। प्रयागराज में भारी बारिश से कई जगहों पर जलभराव, पानी में मस्ती करते हुए नजर आए बच्चे। बिहार में तेज आंधी और बारिश का रेड अलर्ट जारी, कई जिलों में भारी बारिश की चेतावनी। मौसम विभाग ने लोगों से सतर्क रहने की अपील की, तेज हवाओं के साथ बिजली गिरने की भी आशंका जताई गई। पंजाब नगर निगम चुनाव में आम आदमी पार्टी का जबरदस्त दबदबा, 8 में से 5 नगर निगमों में भारी जीत दर्ज की गई। पंजाब निकाय चुनावों में आम आदमी पार्टी की सुनामी, 800 से ज्यादा सीटों पर जीत दर्ज की। मोहाली, बरनाला, बटाला, मोगा और बठिंडा में आम आदमी पार्टी ने बड़ी बढ़त के साथ जीत हासिल की। कांग्रेस ने कपूरथला नगर निगम में बहुमत हासिल किया, बीजेपी ने अबोहर में जीत दर्ज की। पंजाब निकाय चुनाव नतीजों पर सियासी बयानबाजियां तेज हुई, भगवंत मान ने इसे विकास की जीत बताया। जमशेदपुर में मिठाई बनाने वाली मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में भीषण आग लगी थी, धुएं और लपटों से इलाके में हड़कंप मचा। जम्मू कश्मीर के रियासी में सलाम डैम के पास भीषण जंगल में आग लगी, इलाके में हड़कंप। महाराष्ट्र के भिवंडी में सक्रिय स्क्रैप गोदाम में भीषण आग लगी थी, मौके पर पहुंचकर फायर ब्रिगेड की गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। सूरत में पत्नी की प्रताड़ना से परेशान होकर पति ने कलेक्टर ऑफिस में इच्छा मृत्यु की अर्जी दी है, पत्नी पर लुटेरी दुल्हन के आरोप लगाए। सूरत के पॉश फ्लैट में चल रहे लेडीज जुआ क्लब पर पुलिस का छापा, फ्लैट मालिक की पत्नी समेत 7 को गिरफ्तार किया गया। अलवर में युवक ने आत्महत्या की, फेसबुक लाइव में 6 लोगों पर प्रताड़ना के आरोप लगाए, पुलिस मामले की जांच में जुटी।
बालोतरा में सड़क हादसे में घायल दो युवकों की इलाज के दौरान मौत हुई, पुलिस की गाड़ी से टक्कर के बाद गई थी जान। मुजफ्फरपुर में लक्ष्मी चौक स्थित रेस्टरूम में किचन में भीषण आग लगी, शॉर्ट सर्किट से हादसा हुआ, फायर ब्रिगेड ने काबू पाया। बेगूसराय में मॉर्निंग वॉक के दौरान लड़की को कार सवार बदमाशों ने अगवा करके रेप किया, एक आरोपी की गिरफ्तारी। अलवर में करंट लगने से पति पत्नी की मौत हुई, खेत में काम करने के दौरान हादसा। करनाल में हत्याकांड में एक आरोपी की गिरफ्तारी, 10 रुपए मांगने पर सब्जी विक्रेता की पीट पीट कर हत्या कर डाली थी। चुरू में ब्रेक फेल होने से मोबाइल शॉप में घुस गया था ऑटो, सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई थी तस्वीरें। सहारनपुर में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई, 1 लाख का इनामी एहसान एनकाउंटर में ढेर हुआ, इंस्पेक्टर और सिपाही को गोली लगी। ग्रेटर नोएडा में पुरानी रंजिश में बदमाशों ने आधी रात को घर के बाहर फायरिंग की, पुलिस ने 2 को गिरफ्तार कर लिया है। इंदौर में लॉरेंस बिश्नोई गैंग के मास्टरमाइंड राहुल सिंह राठौर को पुलिस ने गिरफ्तार किया, 25,000 का इनाम था। कानपुर में सचंडी गैंगरेप केस में आरोपी को निलंबित दरोगा अमित मौर्या को गिरफ्तार किया गया, 50,000 का इनाम था। जमशेदपुर के जुगसलाई में मिठाई की दुकान में मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में भीषण आग लगी, कड़ी मशक्कत के बाद इस आग पर काबू पाया गया। रांची में साइबर ठगी गैंग का भंडाफोड़, फ्लैट में चल रहा था फर्जी अकाउंट और आईडी बनाने का धंधा, 5 की गिरफ्तारी। चरखीदादरी में पुलिस मुठभेड़ में टीचर ललित हत्याकांड के 2 मुख्य आरोपी गिरफ्तार, गिरफ्तारी के दौरान आरोपियों ने पुलिस टीम पर ताबड़तोड़ फायरिंग की। जाला में दर्दनाक हादसा, दीवार गिरने से 2 मासूम बच्चों की मौत की खबर। राजस्थान रॉयल्स को हराकर आईपीएल के फाइनल में पहुंचा गुजरात टाइटंस, रविवार को बेंगलोर में होगी खिताबी भिड़ंत। राजस्थान ने दिया 215 रनों का लक्ष्य, गुजरात ने 8 गेंद बाकी रहते ही 3 विकेट गंवाकर हासिल किया लक्ष्य। गुजरात की जीत के हीरो बने कप्तान शुभमन गिल, 53 गेंदों पर ही जड़े 104 रन, पारी में जड़े 3 छक्के और 15 चौके। बेकार गई राजस्थान के वैभव सूर्यवंशी की धुआंधार 96 रनों की पारी, इनिंग्स में 7 छक्के और 8 चौके लगाए। गुजरात की ओर से रवाडा होल्डर ने झटके थे 2-2 विकेट, सिराज और प्रसिद्ध कृष्णा के खाते में 1-1 विकेट। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की व्हाइट हाउस सिचुएशन रूम में ईरान डील पर अहम बैठक समाप्त हुई, 2 घंटे तक चली ये बैठक। अंतिम फैसले पर अभी भी स्थिति साफ नहीं है, ट्रंप बोले ईरान डील पर जल्द होगा फैसला, सीज फायर बढ़ाने पर भी चर्चाएं। ईरान का आरोप, ट्रंप झूठी जीत दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, बातचीत अभी भी अधूरी। ईरान अमेरिकी डील पर मतभेद बरकरार, परमाणु कार्यक्रम और हॉर्मुज को लेकर टकराव बना हुआ है। यूएस नेवी और यूके एमटीओ ने जहाजों की चेतावनी जारी कर दी है, हॉर्मुज में तनाव बढ़ गया है, अमेरिका ने ईरान पर अवैध माइनिंग के भी आरोप लगाए हैं। हॉर्मुज पर अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप का फैसला, कहा हॉर्मुज में नाकेबंदी हटाएगा ईरान, ईरान अब जल्द ही अंतिम फैसला लेगा। ट्रंप का यूरेनियम पर बड़ा बयान, कहा ईरान से ढूंढ निकाला जाए यूरेनियम, अमेरिका ईरान और आईएईए के समन्वय से यूरेनियम निकालकर नष्ट किया जाएगा। ईरान के सर्वोच्च नेता मुज्तबा खामनेई का बड़ा बयान, कहा ईरान के दुश्मन अब देश में फूट डालने की कोशिश में हैं। ईरान से जुड़ी तेल बिक्री पर नए प्रतिबंध लगाए गए अमेरिका की तरफ से, दोनों ही देशों के बीच किसी समझौते की कोशिशें लगातार जारी। हॉर्मुज पर बोले ईरान के पूर्व आईआरजीसी के प्रमुख, कहा हॉर्मुज स्ट्रेट व्यापार के लिए खुला रहेगा, हॉर्मुज को लेकर किसी भी तरह की कोई बाधा नहीं होगी। हॉर्मुज में अमेरिकी नाकेबंदी पर बड़ा खुलासा, अमेरिकी सेना का दावा 111 जहाजों को बदलना पड़ा था अपना रूट। यूएस सेंट्रल कमांड का दावा, ईरान के खिलाफ नाकेबंदी के दौरान हॉर्मुज में 20 से ज्यादा वॉरशिप तैनात थे। इसराइल का बेरूत और दक्षिणी लेबनान पर भीषण हवाई हमला, इसराइली लड़ाकू विमानों ने कई घरों को नुकसान पहुंचाया। हमले से पहले इसराइल ने दक्षिणी लेबनान के कई गांवों को खाली करने का भी आदेश दिया था, इलाके में तनाव। संजय दत्त की खलनायक रिटर्न्स में कमिश्नर राम के किरदार में नजर आएंगी जैकी श्रॉफ, एक्टर ने कंफर्म किया। रणबीर पर बैन के बाद एक्टर के बचाव में सिनेमा एंड टीवी आर्टिस्ट एसोसिएशन यानी कि सिंटाई संगठन की वाइस प्रेसिडेंट पद्मिनी कोलापुरी बोली, हम रणबीर के साथ हैं। वरुण धवन की अपकमिंग फिल्म जवानी को इश्क होना को सीबीएफसी ने दिया है UA16+ का सर्टिफिकेट, रिपोर्ट्स के मुताबिक फिल्म खूबसूरत है।
अभिनेता अनुपम खेर की फिल्म श्री राम भूमि की हुई है आधिकारिक घोषणा। अयोध्या और राम जन्मभूमि के इतिहास पर आधारित इस फिल्म का मुहूर्त संपन्न हुआ। प्राइम वीडियोज की नई वेब सीरीज द पिरामिड स्कीम का ट्रेलर रिलीज किया गया। धुरंधर 2 में जस्सी का रोल निभाने वाले एक्टर परमवीर चीमा समेत रणबीर शौरी और शेखर सुमन नजर आएंगे।

0: और अब बात करते हैं मिडिल ईस्ट में जारी तनाव के बारे में। ईरान के साथ समझौते को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप आखिरी फैसला लेने जा रहे हैं, जिसको लेकर ट्रंप ने सिचुएशन रूम में मीटिंग भी की है। इस मीटिंग में हॉर्मुज को खोलने को लेकर चर्चा की गई है। बहुत ही महत्वपूर्ण ये कि अमेरिका के दावों को नकारते हुए ईरान ने साफ कर दिया है कि परमाणु मुद्दे पर कोई बातचीत नहीं हो रही, अभी बस उनका ध्यान है जंग को खत्म करने पर। आपको बता दें, सबसे पहले बात करते हैं ईरान को लेकर अमेरिका में हुई बड़ी बैठक के बारे में, क्योंकि अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने अधिकारियों के साथ सिचुएशन रूम में बड़ी बैठक की है। करीब 2 घंटे तक ये मीटिंग चली है, जिसमें सीज फायर को आगे बढ़ाने और साथ ही हॉर्मुज को खोलने को लेकर भी चर्चा की गई है। अमेरिका की मीडिया की अगर माने तो ट्रंप बहुत ही जल्द ईरान समझौते पर फैसला लेंगे, साथ ही ट्रंप ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खोलने की भी मांग रखी है। तो पूरी दुनिया में ऊर्जा संकट बना हुआ है, पूरी दुनिया की नजरें टिकी हुई है कि कब ये पूरी तरह से युद्ध खत्म हो। सिचुएशन रूम में 2 घंटे तक ट्रंप की बैठक हुई है और सीज फायर बढ़ाया जा सकता है।
1: It wasn't going to be good for us as the line, ultimately, because, you know, I'm playing it out and we're going to see, and that's what I do. I negotiate, they negotiate, they're very good negotiators, they're crafty. But in the end, we have all the cards because we've defeated them militarily. Look, they have no navy. Every ship, they have 159 ships. Every one of them are at the bottom of the sea. If we didn't hit them with the B-2 bombers 9 months ago, they would have a nuclear weapon right now.
0: तो ईरान को लेकर अमेरिका के रक्षा मंत्री पीथ हिटसिक का बड़ा बयान सामने आया है। सिंगापुर में एक कार्यक्रम के दौरान हिटसिक ने साफ कहा कि अमेरिका दुनिया की सुरक्षा के लिए अपनी जिम्मेदारियां पूरी करने के लिए तैयार है। अमेरिका यह सुनिश्चित करना चाहता है कि ईरान परमाणु हथियार हासिल न कर सके। तो एक बार फिर से अपने बयान को दोहराया गया है अमेरिका की तरफ से। उन्होंने कहा कि ईरान को परमाणु हथियार नहीं बनाने देंगे। एनरिच्ड यूरेनियम और हॉर्मुज को लेकर लगातार तनाव अभी भी बरकरार है। 2 अहम मुद्दे हैं ईरान और अमेरिका के बीच जिस पर सहमति बनती हुई नजर नहीं आ रही। सुरक्षा की जिम्मेदारी निभाने का यूएस का फैसला और यूएस तैयार है। एक बार फिर से ये बयान दिया गया है अमेरिका की तरफ से, परमाणु हथियार संपन्न देश ईरान को नहीं बनने दिया जाएगा, एक बार फिर से अमेरिका ने दोहराया है। और उधर आपको यह भी बता दें कि अमेरिका के दावों पर ईरान ने पलटवार किया है। ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बगई ने कहा है कि परमाणु मुद्दे पर कोई बातचीत हो ही नहीं रही और फिलहाल उनका ध्यान युद्ध खत्म करने पर है। साथ ही इस्माइल बगई ने कहा कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खोलने पर सिर्फ ईरान और ओमान मिलकर फैसला लेंगे, अमेरिका के साथ इसे लेकर कोई भी समझौता नहीं होगा। ईरान को लेकर ट्रंप का बड़ा बयान सोशल मीडिया ट्रूथ सोशल पर पोस्ट करके कहा गया है कि ईरान को यह स्वीकार करना होगा कि वो कभी भी परमाणु हथियार या बॉम्ब नहीं बनाएंगे। साथ ही स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को तुरंत ही खाली करना होगा और वहां किसी भी तरह का कोई टोल नहीं लगाया जा सकता। साथ ही ट्रंप ने यह भी कहा कि अमेरिका अपनी नौसैनिक नाकेबंदी हटा रहा है, साथ ही साथ ईरान का एनरिच्ड यूरेनियम भी नष्ट किया जाएगा। ये पहाड़ों के नीचे दबे परमाणु ठिकानों में मौजूद है, जिन्हें 11 महीने पहले अमेरिकी B-2 बॉम्बर्स ने निशाना बनाया था। तो 2 बहुत अहम मुद्दे हैं, एनरिच्ड यूरेनियम और हॉर्मुज, और इसे लेकर अमेरिका की तरफ से भी रुख साफ कर दिया गया है कि परमाणु संपन्न देश ईरान को नहीं बनने दिया जाएगा। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खोलने को लेकर ईरान का बड़ा बयान सामने आया है। ईरान की फास्ट न्यूज एजेंसी के मुताबिक अमेरिका की नाकेबंदी हटने के बाद ईरान इस पर फैसला लेने वाला है। वहीं अपनी पूर्व निर्धारित व्यवस्थाओं के अनुसार हॉर्मुज स्ट्रेट को फिर से खोल दिया जाएगा, ये भी ईरान ने साफ कर दिया है। हालांकि ईरान की तरफ से यह भी साफ किया गया है कि अमेरिका से इस पर कोई बातचीत नहीं हो रही है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर जो भी समझौता होगा, जो भी डिसीजन लिया जाएगा, वो ओमान के साथ मिलकर लिया जाएगा। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की वजह से दुनिया भर में ऊर्जा संकट है और सबकी नजरें हैं कि जल्द से जल्द कोई बीच का रास्ता निकले। ईरान के साथ डील को लेकर अमेरिका के ट्रेजरी सेक्रेटरी स्कॉट बेसिन का बड़ा बयान सामने आया है। दोनों ही टीमें लगातार बातचीत कर रही हैं, उनकी तरफ से कहा गया, और राष्ट्रपति ट्रंप ने यह बात बिल्कुल स्पष्ट कर दी है। उन्होंने कैबिनेट की बैठक में भी इस बारे में बात की थी। उनकी कई सीमाएं हैं और ईरान को अपना अत्यधिक समृद्ध यूरेनियम सौंपना होगा। वो परमाणु हथियार बनाने का प्रयास नहीं कर सकते। हॉर्मुज पर नौवहन पहले की ही तरह स्वतंत्र होगा, खुला होगा, इसीलिए कोई बुरा समझौता हम नहीं करेंगे। अमेरिकी जनता के लिए एक बेहतरीन समझौता करेंगे, ये एक बार फिर से अमेरिका की तरफ से साफ किया गया है।
2: The teams have been going back and forth, and President Trump has made it very clear. He talked about it at the cabinet meeting that he has several red lines, and Iran has to turn over their highly enriched uranium. They cannot pursue a nuclear weapon, and the Strait of Hormuz, back to your question on energy, has to free transit. Navigation of the seas has to be free and open as it was before. So he's not going to take a bad deal. He's going to make a great deal for the American people.
0: और अब बड़ी और अहम खबर। सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने ड्रोन के इस्तेमाल पर जोर दिया है। एक कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि ड्रोन आज की जरूरत है, हर जवान को ड्रोन उड़ाना आना चाहिए। तो बड़ी और अहम खबर हम आपको बता रहे हैं। सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने ड्रोन के इस्तेमाल पर जोर देते हुए एक कार्यक्रम में कहा कि ड्रोन आज की जरूरत है और हर जवान को ड्रोन उड़ाना आना चाहिए। हाल ही के दिनों में जिस तरीके से युद्ध के दौरान ड्रोन्स का इस्तेमाल हुआ है, उसके बाद वैसे भी ड्रोन की महत्ता बढ़ जाती है। कई बार इसका जिक्र किया गया है और एक कार्यक्रम के दौरान जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने भी इसी बात पर जोर दिया।
3: और आपने ध्यान दिया होगा, जब से मैंने आर्मी चीफ टेक ओवर किया है, मैंने बोला है ईगल ऑन द आर्म, मतलब हर जवान के हाथ में ईगल होना चाहिए। जब मैं बोल रहा हूँ तो वो ईगल पक्षी नहीं, ईगल मैं ड्रोन की बात कर रहा हूँ। इसका मतलब ये है कि हर जवान को एक ड्रोन उड़ाने की काबिलियत होनी चाहिए। आपने देखा है जो भी हमारे एकेडमीज या बाकी जगह हैं, वहाँ पर इनकी ट्रेनिंग हो रही है, वहाँ पर सिमुलेटर्स हैं। और जब मैं दिसंबर महीने में यहाँ पर आया था तो मैंने खुद कमांडेंट साहब से बातचीत करके यहाँ पर आर्मी ट्रेनिंग टीम को करीब 4 से 6 बड़े ड्रोन और सिमुलेटर यहाँ पे उनको प्रदान किया था। और उसके बाद कमांडेंट साहब ने उस पर काफ़ी आगे कार्रवाई की और बहुत सारे ड्रोन्स यहाँ पे लाए गए हैं। तो कहने का ये मतलब है कि ड्रोन्स है, काउंटर ड्रोन इक्विपमेंट है, इसके बारे में जानकारी हर को होनी जरूरी है।
0: आगे बढ़ेंगे, अब बात करेंगे यूपी के लोगों को लगे महंगाई के करंट के बारे में, क्योंकि यूपी में बिजली के बिल में 10% की बढ़ोतरी कर दी गई है। ईंधन अभिलाष के नाम पर लिया जाएगा यह अतिरिक्त शुल्क। बढ़ा हुआ बिल जून के बिल के साथ आने वाला है। उपभोक्ताओं को बिजली के लिए 10% अलग से चार्ज देना होगा। भारी कटौती और किल्लत के बीच बिजली दरों में बढ़ोतरी से उपभोक्ताओं को झटका लगा है। यूपी पावर कॉर्पोरेशन ने बिजली महंगी करने का फैसला भी किया है और आदेश जारी कर दिए हैं। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी संतोष शर्मा जुड़ गए हैं। संतोष, वैसे भी महंगाई की मार जारी है, पेट्रोल डीजल सीएनजी सब पे कीमतें बढ़ रही हैं, अब बिजली की भी मार पड़ेगी?
4: बिजली की भी मार पड़ेगी। एक तरफ बिजली की किल्लत, बिजली की आवाजाही से लोग हाल बेहाल हैं, परेशान हैं, लेकिन वही दूसरी तरफ बिजली पावर कॉर्पोरेशन, उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन ने 10% बिजली का बिल महंगी कर दी है। 10% सरचार्ज बढ़ाने का आदेश जारी किया है कि अब 10% जो बिल बढ़ करके आएगा उसमें 10% इजाफा होगा। उसके पीछे जो वजह भी बताई गई कि लगातार जो एक तरीके से जो कच्चा माल खरीदने के लिए लिया गया पावर प्लांट्स में, वो महंगा होता जा रहा है और उसके चलते ये बिजली दरें महंगी की गई हैं और ये 10% तक ये सरचार्ज बढ़ेगा, जिसकी वजह से ये सीधा असर बिजली उपभोक्ताओं पर पड़ेगा और बिजली उपभोक्ताओं को जो बिल आता है उसमें लगभग 10% तक ये इजाफा होगा। तो बिजली महंगी हो गई है उत्तर प्रदेश में। एक तरफ बिजली की किल्लत से लोग बेहाल हैं, अब दूसरी तरफ महंगी बिजली भी परेशान करेगी।
0: बहुत बहुत शुक्रिया संतोष इस तमाम जानकारी के लिए आपका। इसी के साथ हम यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आज तक।
5: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाएं स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा प्यार से परोस, इन एसोसिएशन विद
6: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी।
7: Looking for an app to hear all your favorite music, news, sports and more? We've got all your audio all in one place right here on TuneIn. Play your favorite stations like Hey Buena.
8: La Que Buena.
7: ESPN Radio.
9: We know LeBron has to be the best player on the planet to get
7: The Daily.
10: From the New York Times, I'm Katrin Benhold, and this is The Daily.
7: And so much more. Whatever you love listening to, you can hear it all on TuneIn. The biggest classic rock hits do just that. They hit hard. And on TuneIn's Classic Rock Hits, you'll find only the best in high-octane awesomeness. We're talking rock gods like Led Zeppelin, Kiss, AC/DC, Lynyrd Skynyrd, and so many more. So for those of you about to rock, search Classic Rock Hits or ask your smart device to play Classic Rock Hits on TuneIn.
11: The music you love is all right here on TuneIn, bringing you good vibes and the hottest hits. But are you ready to amp things up even more? Just upgrade to TuneIn Premium for all of our exclusive music channels, completely commercial-free. So you get more of today's hits. More country roads. And everything else. Hear it all here, commercial-free, on TuneIn.
12: ऊंचाई पर बने रहने के लिए जरूरी है इरादों का प्योर होना. गैलेंट एडवांस बनाते हैं ऐसा स्टील जो अंदर से है ज्यादा प्योर, ज्यादा मजबूत. गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो.
13: डायरेक्टर, द टेस्ट ऑफ सक्सेस.
14: और वही कहाँ गए थे घूमने?
15: जीके मैक्स.
16: वैसे रोहन पढ़ाई में कैसा है?
15: जीके मैक्स बेस्ट पुट्टी.
17: जेके वॉल मैक्स
18: बेस्ट पेंट.
19: जेके मैक्स.
20: बाकी सब सवालों का पता नहीं, लेकिन मोस्ट ब्यूटीफुल वॉल्स के लिए सिर्फ जेके मैक्स पेंट्स.
21: जेके मैक्स पेंट्स. खुशियों के रंग.
22: हनी, इस घर में कुछ है जो टूटता नहीं.
23: ये पिलर कभी नहीं टूटेगा. रुंगटा स्टील TMT से बना.
24: रुंगटा नहीं तो घर स्ट्रॉन्ग नहीं. रुंगटा स्टील TMT बार एकदम सॉलिड.
23: रुंगटा स्टील TMT से बना.
24: रुंगटा नहीं तो घर स्ट्रॉन्ग नहीं. रुंगटा स्टील TMT बार एकदम सॉलिड.

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार।
1: विमल बोलो जुबान केसरी।
2: इन एसोसिएशन विद
3: समकूल कूलर, हवा ऐसी छोड़े पूरी फैमिली को ठंडक से जोड़े, समकूल कूलर लाइफ बनाए वंडरफुल।
2: हिंट, बड़े आराम से
3: पंजाब नेशनल बैंक, भरोसे का प्रतीक।
4: कूल स्टाइलिश फैंस, एनहांस होम डेकोर विद ब्यूटीफुल फैंस।
5: शारदा यूनिवर्सिटी, द वर्ल्ड कम्स टुगेदर एट शारदा यूनिवर्सिटी।
3: आराम से पंजाब नेशनल बैंक, भरोसे का प्रतीक।
4: Cool stylish fans, enhance home decor with beautiful fans.
5: Sharda University, the world comes together at Sharda University. Where are you?
2: Vimal, bolo zuba kesri.

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा, इन एसोसिएशन विद
1: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो,
0: हेक्सा ऑर्गेनिक रेडिएंट स्किन एंड नरिश्ड हेयर प्योर आयुर्वेदिक ब्यूटी.
2: There's just something about classic soul music that gets you moving. And TuneIn's exclusive Soul Groove station has all the right moves. Hit play on the grooviest 70s selection. Get your masters in melody with Motown Classics. Or just set the right tone with smooth, soulful vibes from Marvin Gaye and more. It's all right here on TuneIn, ready to set the perfect 70s tone. Search Soul Groove or tell your device to play Soul Groove on TuneIn now to listen.
3: TuneIn's How To, a brief look at all the special functions and things you might not know we have.
4: Ready to listen to all your favorite audio? With TuneIn, you can catch your favorite music, news, sports, and more anytime, anywhere, across all your devices. From your smart speakers to smartphone, from your car to your TV. With TuneIn, you can enjoy all your favorite stations wherever you are. Plus, you can fire it up with voice command. Just ask your smart device to play TuneIn and start listening.
0: Presented by पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा, इन एसोसिएशन विद
1: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो,
0: हेक्सा ऑर्गेनिक रेडिएंट स्किन एंड नरिश्ड हेयर प्योर आयुर्वेदिक ब्यूटी.

0: में नामजद तीन आरोपी फरहान आसिफ नवाब गिरफ्तार। बकरीद के दिन कुर्बानी दिखाने के बहाने घर से बुलाकर 17 साल के सूर्या को घेर कर 20 सड़क पर बेरहमी से मारने के आरोप। कर्नाटक में आज मुख्यमंत्री चुने जाएंगे डीके शिवकुमार। कांग्रेस विधायक दल की बैठक में लगेगी मुहर। 3 जून को 8 एमएस 10 मंत्रियों के साथ ले सकते हैं शपथ। सिद्धरमैया के करीबियों को मिल सकती है जगह। यूपी के लोगों को लगा महंगाई का करंट। बिजली बिल में 10 फीसदी की बढ़ोतरी। फ्यूल सरचार्ज में इजाफा। जून से आएगा बढ़ा हुआ बिल। ईरान अमेरिका में डील को लेकर भारी कंफ्यूजन। डील के करीब पहुंचने वाले बयान के बाद सिचुएशन रूम में ट्रंप का मंथन। ईरान ने दावे को किया खारिज। कहा हॉर्मुज रूट फ्री नहीं रहेगा। और उत्तर प्रदेश में आंधी तूफान की तबाही से अब तक 16 की मौत। अकेले बुंदेलखंड में 10 लोगों की जान गई। आज भी 40 जिलों में तेज हवा के साथ बारिश का अलर्ट। नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक और आपके साथ मैं हूं शशि शर्मा। सुबह के 11:30 बजे के बुलेटिन में बात हम चार बड़ी खबरों की करने जा रहे हैं। पहली खबर दिल्ली से सटे गाजियाबाद से है, जहां हिंदू नाबालिग युवक की हत्या के बाद इलाके में भारी तनाव फैला हुआ है। साथ ही साथ बात हम करने जा रहे हैं नीट पेपर मामले में भी, क्योंकि सियासी घमासान थमने का नाम नहीं ले रहा इस पर। साथ ही आपको बताएंगे पुणे में जहरीली शराब से 14 लोगों की जान जा चुकी है, कई की हालत गंभीर है, और अब महाराष्ट्र सरकार ने क्या बड़ा एक्शन इसके खिलाफ लिया है। इसके अलावा बात करेंगे कर्नाटक की सियासत के बारे में भी। माना यह जा रहा है कि आज डीके शिवकुमार को विधायक दल का नेता चुन लिया जाएगा। लेकिन सबसे पहले हम बात कर लेते हैं गाजियाबाद की, जहां 17 साल के लड़के सूर्या चौहान की हत्या कर दी गई है। बकरीद के दिन सूर्या की चाकू मारकर बेरहमी से हत्या की गई। इस केस में 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि 1 आरोपी की तलाश पुलिस को अभी है। सूर्या की हत्या के बाद से हिंदूवादी संगठनों का विरोध प्रदर्शन जारी है। इलाके में भारी तनाव है। पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। मांग की जा रही है कि इस मामले में तुरंत गिरफ्तारी होनी चाहिए, तुरंत सजा मिले, क्योंकि जिस तरीके से घेर कर कई लड़कों ने दिन दहाड़े सूर्या की हत्या की है, उसके बाद कई हिंदूवादी संगठन एकजुट होकर इलाके में मौजूद हैं। लगातार नारेबाजी की जा रही है। ये जो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, ये वीडियो है, और हत्या से बस कुछ ही मिनट्स पहले का ये वीडियो बताया जा रहा है, जब ताबड़तोड़ चाकू के वार से सूर्या को मौत के घाट उतार दिया गया।
1: बकरीद के दिन हुए निर्मम हत्या में अब 3 आरोपियों को अरेस्ट कर लिया गया है। कौन है ये लोग, इस पर ज्यादा बातचीत करने के लिए हमारे साथ एसीपी इंद्रापुरा में अभिषेक श्रीवास्तव जी हैं। सर, बड़ी सफलता, 3 लोगों को हिरासत में ले लिया गया है, अरेस्ट कर लिया गया है। कौन है ये 3 लोग और क्या इनका नाम FIR में मौजूद है?
2: थाना क्षेत्र खोड़ा में दिनांक 28 मई को हुई घटना के संदर्भ में परिजनों से प्राप्त तहरीर के आधार पर तत्काल ही सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कराया गया, तथा उसी क्रम में आज थाना खोड़ा की पुलिस टीम के द्वारा 3 नामजद अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया गया है। घटना संबंधित 2 अन्य संदिग्धों को भी हिरासत में लेकर के पूछताछ की जा रही है। पूरे प्रकरण में पूछताछ और साक्ष्यों के आधार पर अग्रिम वैधानिक कार्रवाई सुनिश्चित की जा रही है।
1: सर, टोटल कितने लोग हैं, क्योंकि वीडियो में दिख रहा है कम से कम 6 से 7 लोग थे, तो क्या 6 से 7 लोग सबके सब आइडेंटिफाई हो चुके हैं?
2: सभी लोगों को चिन्हित किया गया है, तथा गिरफ्तार तथा संदिग्ध अभियुक्तों से भी लगातार पूछताछ की जा रही है। गहनता से हर तथ्य की जांच की जा रही है, उसके आधार पर अग्रिम वैधानिक कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।
1: हत्या की वजह क्या थी, कोई वजह सामने निकल के आई है सर अभी तक की तफ्तीश में?
2: अभी सभी बिंदुओं पर पूछताछ जारी है, जो भी तथ्य सामने आएंगे उनसे अवगत कराया जाएगा।
0: तो हत्या के बाद से इलाके में तनाव है, कई संगठन यहां पहुंचे हुए हैं, परिवार का रो रो कर बुरा हाल है। और कुछ ही मिनट पहले का वीडियो भी सामने आया है, जिसमें कई लड़के सूर्या को घेरे हुए देखे जा सकते हैं। कहा जा रहा है उसी के बाद ताबड़तोड़ चाकू के वार से उसकी हत्या कर डाली गई। इस खास रिपोर्ट को देखिए।
3: गहरे नारंगी रंग की शर्ट पहने एक लड़के को 4 से 5 लड़कों ने पकड़ रखा है। सफेद शर्ट पहना लड़का उसे छुड़ाने की कोशिश कर रहा है। कुछ लड़के आसपास भी खड़े हैं। इन सब के बीच गुट में जुटे लड़के नारंगी रंग की शर्ट पहने लड़के को छोड़ नहीं रहे हैं। ये तस्वीरें गाजियाबाद के खेड़ा इलाके में बेरहमी से हुई हिंदू नाबालिग सूर्या की हत्या से ठीक पहले की बताई जा रही है, जहां मामूली विवाद में मुस्लिम दोस्तों ने चाकुओं से गोद कर 17 साल के सूर्या की जान ले ली।
4: हम लोग घूम घाम के आए थे, 2-4 लड़के खड़े थे, असद, आतिफ, फरहान, 3-4 लड़के और खड़े थे उनके साथ, उनका नाम नहीं मालूम। वो नशे वशे में थे, उन्होंने हमारे साथ गाली गलौज करी, गाली गलौज से बात मारपीट भी होता रही, हाथापाई होने के बाद सब कुछ बातचीत खत्म होने के बाद हम लोग साइड चले गए। उसके बाद वो असद नाम का लड़का वो चक्कू लेके वापस आता है, कहता है कि बातचीत कर लेते, लड़ाई झगड़े से कोई फायदा नहीं है। वो उसे बातचीत के बहाने वापस गली में लेके गया, गली में जाने उसने चक्कू निकाला और सूर्य के पेट में मार दिया। उसके बाद हम लोग वहाँ से, वो तो भाग गया असद, हमने सूर्य उठाया हॉस्पिटल लेके आया जल्दी, यहाँ पे इमरजेंसी में एडमिट कराया हमने।
3: बकरीद के मौके पर दिन दहाड़े हुई ये वारदात जितनी सनसनीखेज है, आरोप उतने ही संगीन। दावा हो रहा है कि सूर्या की हत्या से पहले आरोपियों ने उससे पूछा था कि कभी उसने बकरा कटते देखा है। इनकार करने के फौरन बाद उस पर चाकुओं से हमला बोल दिया।
5: इन लोगों ने फोन करके धोखे से मेरे बेटे को बुलाया और जाके ही आ जाओ ईद मिलते हैं, ठीक है। फिर मेरे बेटे से कहा तुमने बकरा कटते हुए देखा है, मेरा बोला मैंने नहीं देखा है, ऐसे ही कहकर एकदम चक्कू उसके पेट में डाल। इन लोगों ने फोन करके धोखे से मेरे बेटे को बुलाया और जाके ही आ जाओ ईद मिलते हैं, ठीक है। फिर मेरे बेटे से कहा तुमने बकरा कटते हुए देखा है, मेरा बोला मैंने नहीं देखा है, ऐसे ही कहकर एकदम चक्कू उसके पेट में डाल के ऐसे घुमा दिया है।
3: सूर्या पर हमले के बाद मौके पर चीख पुकार मची, जिसे सुनकर सूर्या का भाई यश चौहान और उसकी माँ मौके पर पहुंचे। तब तक सभी आरोपी फरार हो चुके थे। जख्मी हालत में सूर्या को अस्पताल ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान उसने दम तोड़ दिया। हिंदू लड़के सूर्या की हत्या के बाद गाजियाबाद के खेड़ा में भारी तनाव है। हिंदूवादी संगठन प्रदर्शन कर रहे हैं। हालात को देखते हुए भारी पुलिस बल की तैनाती की गई है।
6: एक हिंदू परिवार के लड़के को बाहर बुलाया जाता है और उसे 5 से 6 लोग पकड़ते हैं और उसे बकरा बताकर काटने का काम करते हैं। उसके पेट में 6 से 7 वार करते हैं, उसकी अतड़ियां तक बाहर आ जाती है। किस तरह की स्थिति खोड़ा की हो गई है। हम लोग बार बार कह रहे हैं कि हिंदू सुरक्षित नहीं है, पलायन करने की स्थिति में है, क्योंकि तरुण खटिक की जो आग थी अभी तक नहीं बुझी, मगर खोड़ा में दोबारा से तरुण खटिक जैसी घटना हो चुकी है।
3: उधर सूर्या की मौत के बाद माँ का रो रो कर बुरा हाल है। परिवार वाले सूर्या के हत्यारों को सख्त से सख्त सजा की मांग कर रहे हैं।
7: किसी चीज के वाले बात नहीं हुआ था, जाके ईद मिलने के बाद बुलाया था।
8: अपने बेटे से कब मिली थी लास्ट टाइम?
7: मैं सुबह मिली थी 7 बजे, मैं ड्यूटी गई थी भैया।
3: मामले की गंभीरता को देखते हुए कुछ संदिग्धों को हिरासत में लिया गया है, पूछताछ हो रही है। पुलिस आरोपियों की धरपकड़ की कोशिश में लगी है। गाजियाबाद में हुई इस वारदात के बाद स्थिति तनावपूर्ण बनी हुई है। गाजियाबाद से मयंक गौर के साथ अंशुल सिंह, आज तक।
0: तो गाजियाबाद में हुई इस हत्या के मामले में 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। आरोपियों के घर पर ताला लगा है। तनाव को देखते हुए परिवार वाले कहीं और चले गए हैं।
1: कि दोपहर को जब पूरा देश जश्न मना रहा था, उसी वक्त एक ऐसा हादसा हुआ जिसने एक बार फिर से पूरे इलाके में और शायद देश भर में भी कहीं ना कहीं तनाव फैला दिया है। खोरा कॉलोनी में करीब 3:30 बजे सूर्या 17 वर्षीय जब यहां मौजूद था, तब उसे असद अपने पास बुलाता है और ये बोलकर बुलाता है कि जो उनके बीच में विवाद चल रहा है उसे कहीं ना कहीं सुलटा दिया जाए। और उसके बाद उसे बुलाते ही करीब 6 से 7 लोग इकट्ठा होते हैं और उसे बेरहमी से चाकू से गोद कर मार देते हैं। इस वक्त मैं असद के घर पे मौजूद हूं और अगर मैं आपको यहाँ की तस्वीरें दिखाऊं तो यही वो घर है जहां असद रहता था और यहां से कुछ ही मीटर दूर जो है वो सूर्या रहता था। वो सूर्या को अपने पास बुलाता है और सूर्या से ये कहता है कि जो पिछले दिन हमारे बीच में विवाद हुआ उसे कहीं ना कहीं सुलटा लेते हैं और फिर उसे मार देता है। अगर आप यहां तस्वीरों में देखें तो घर पर ये जो ताला लगा हुआ है, करीब उसी दिन पुलिस यहां आती है और असद के पिता को यहां से हिरासत में लेकर चली जाती है और उसके बाद जो असद की मां है वो घर पर ताला लगाकर यहां से चली जाती हैं। अभी तक करीब 36 से ज्यादा घंटे गुजर चुके हैं लेकिन गाजियाबाद पुलिस के हाथ अभी तक पूरी तरह से खाली हैं। 5 लोगों को हिरासत में लिया गया है लेकिन ये वो 5 लोग हैं जो इन 7 लोगों को, जो मेन अक्यूज्ड हैं, इन्हें जानते थे और उनसे ये जो 5 लोग हिरासत में लिए गए हैं इनसे गाजियाबाद पुलिस ये पता लगाना चाहती है कि ये बाकी के लड़के आखिर है कहाँ। गाजियाबाद पुलिस ने अभी काफी टीमें बना दी हैं, सीसीटीवी का डम भी ले लिया गया है और अब ये पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि ये 7 लड़के इस पूरे घटना को अंजाम देकर आखिर कहां फरार हुए हैं। अब ये देखना होगा कि गाजियाबाद पुलिस कितनी जल्दी इन सब के साथ न्याय कर सकती है ताकि यहां के लोगों में जो गुस्सा है वो गुस्सा कहीं ना कहीं शांत हो पाए। वीडियो जर्नलिस्ट रोहित के साथ अंशुल सिंह, आज तक।
0: और इसी पर ज्यादा बातचीत के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी अंशुल जुड़ गए हैं, क्योंकि पीड़ित के घर पर वो इस वक्त मौजूद हैं। अंशुल, परिवार की तरफ से क्या कहा जा रहा है, ऐसी क्या रंजिश थी कि इतने लड़कों ने मिलकर ताबड़तोड़ चाकुओं से वार किया सूर्या पर, क्या परिवार ने कुछ बताया है?
1: जी, परिवार का कहना है कि उन्हें कोई आइडिया नहीं है कि किस बात पर इनके बीच में रंजिश हुई थी। उन्हें बस ये पता लगा है कि असद और सूर्या के बीच में कुछ दिनों पहले कुछ कहा सुनी हुई थी, जिसके बाद असद उसे बुलाता है और चाकू उसे गोद कर मार देता है। अगर मैं आपको यहाँ तस्वीरों में दिखाऊं सूर्या के घर के बाहर, तो यहाँ काफी लोग इकट्ठा हो गए हैं और लगातार नारेबाजी भी चल रही है। यहाँ पे जय श्री राम के नारे लगाए जा रहे हैं। वहीं कहीं ना कहीं पूरे इलाके में जो माहौल है वो अभी भी काफी ज्यादा तनावपूर्ण बना हुआ है। पुलिस का ये कहना है कि उन्होंने 3 लोगों को अब अरेस्ट कर लिया है, जिसमें असद के पिता भी शामिल हैं, क्योंकि उनका नाम भी एफआईआर में था। इसके अलावा करीब 7 लोग हैं जिनको अब तक आइडेंटिफाई कर लिया गया है। ये 7 लोग वही हैं जो हमने उस वीडियो में देखा कि किस तरीके से सूर्या को घेर करके उसे धक्का मुक्की गाली गलौज करते हैं और उसके बाद उसे चाकुओं से मार देते हैं। अगर मैं आपको पूरे इलाके की तस्वीरों में दिखाऊं तो मेरे वीडियो जर्नलिस्ट रोहित आपको दिखाएंगे कि किस तरीके से यहां सैकड़ों की संख्या में लोग अब मौजूद इकट्ठा हो गए हैं। हिंदू रक्षा दल के लोग भी यहां पर आ गए हैं और लगातार नारेबाजी करने की कोशिश कर रहे हैं, कहीं ना कहीं पुलिस और प्रशासन के खिलाफ अपना गुस्सा व्यक्त करने की कोशिश कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ अगर आपको यहां सिक्योरिटी दिखाएं तो पुलिस के भी आला अधिकारी जो हैं, गाजियाबाद पुलिस के आला अधिकारी, वो भी यहां पर मौजूद है। लेकिन जिस तरीके से यहां पर भीड़ बढ़ रही है, कहीं ना कहीं हर मिनट के साथ, हर घंटे के साथ जो तनाव है पूरे इलाके में ये बढ़ रहा है। और अब गाजियाबाद पुलिस का सबसे बड़ा फोकस जो ये है कि जो मेन अक्यूज्ड है असद, उसे जल्दी से जल्दी हिरासत में लाया जाए, ताकि जो यहाँ के लोगों में गुस्सा है वो कहीं ना कहीं शांत हो पाए और इलाके में दोबारा जो ये तनावपूर्ण माहौल है ये खत्म हो पाए। तो ये कितनी जल्दी हो पाएगा ये देखना बाकी है, लेकिन गाजियाबाद पुलिस का ये कहना है कि उन्होंने सभी को आइडेंटिफाई कर लिया है, चिन्हित कर लिया है और जल्दी ही उन्हें पकड़ भी लेंगे।
0: बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए आपका अंशुल। तो आपको बता दें कि गाजियाबाद में सूर्या हत्या के मामले में डेप्यूटी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने बड़ा बयान दिया है। केशव प्रसाद मौर्य ने कहा है कि हत्यारा कोई भी हो उसे छोड़ा नहीं जाएगा, उसे खोज निकाला जाएगा। हत्या करने वालों को फांसी के तख्ते पर चढ़ाने के लिए जो कानूनी कार्रवाई होगी वो की जाएगी। तो केशव प्रसाद मौर्य की तरफ से बयान आ गया इस पूरे मामले में। उनकी तरफ से कहा गया है कि जो भी इस मामले में दोषी है, जो भी हत्यारा है, उसे छोड़ा नहीं जाएगा, खोज निकाला जाएगा। हत्या करने वालों को फांसी के तख्ते पर चढ़ाने के लिए जो भी कानूनी कार्रवाई होगी वो की जाएगी।
9: हत्यारा कोई भी हो वो बक्सा नहीं जाएगा, उसको खोज निकाला जाएगा और हत्या करने वाले को फांसी पर चढ़ाने के लिए जो कार्रवाई होती है कानूनी, वो कानूनी कार्रवाई की जाएगी। सरकार कानून व्यवस्था को लेकर के बहुत गंभीर है और जिन लोगों ने ऐसा अपराध किया उनके खिलाफ कठोर से कठोर कानूनी कार्रवाई की।
10: 17 साल के लड़के को बहला।
0: बता दें कि गाजियाबाद में हुई सूर्या चौहान की हत्या को बीएचपी नेता विनोद बंसल ने जिहादी मानसिकता का काम बताया है।
11: खतरनाक और बीभत्स कांड हुआ, ये बकरीद के दिन हुआ। भाई के नाम पर बुलाया, भाईचारे की हत्या कर दी और इतना ही नहीं, उन्होंने उसको ये कहा तू मेरा दोस्त है, तू जानता है बकरीद पर हलाल कैसे करते हैं, बकरीद पर कुर्बानी कैसे दी जाती है। इतना कहने के बावजूद, कहने के बाद तुरंत बाद उन्होंने चाकुओं से वार कर दिया। जिस तरह से बकरे को काटते हैं, मुझे लगता है कि वही मानसिकता उनके ऊपर हावी हो गई। जिस प्रकार से एक नहीं कई जिहादियों ने मिलकर के उस नाबालिग हिंदू युवक सूर्या की नृशंस हत्या गाजियाबाद के अंदर की, उसने कई सारे प्रश्न चिन्ह खड़े कर दिए। ये मानवता, मानवीयता का तो हत्या है ही है, साथ ही साथ उस विश्वास की भी हत्या है, उस कथन की भी हत्या है, उस मान्यता की भी हत्या है जो कहते हैं कि इस्लाम शांति का धर्म है।
0: और अब बात करेंगे दिल्ली के जहांगीरपुरी में हुई हत्या के मामले में, जहां बकरीद की रात मामूली सा विवाद एक युवक की मौत की वजह बन गया।
3: दिल्ली में सिगरेट को लेकर विवाद में युवक की हत्या। सिगरेट लाने से मना किया तो चाकू मार दिया। सुनने में भले ही यह हैरानी भरा लगे, लेकिन इस वारदात ने एक शख्स की जान ले ली। बकरीद के मौके पर जब 26 साल के अरबाज के घर त्योहार की खुशियां थी, इस वारदात के बाद चीख पुकार मच गई।
10: पुलिस के मुताबिक रात 11 बजे के करीब अरबाज अपने घर के पास ही मौजूद था। इसी दौरान इलाके के कुछ लड़कों के साथ उसकी कहासुनी हुई, जो देखते ही देखते हिंसक झड़प में बदल गई। इसके पीछे की जो वजह सामने आई है वो भी बेहद हैरानी भरी है।
12: उस टाइम पे कुछ नहीं हुआ था, एक सिगरेट मंगाने का विवाद था कि सिगरेट लाके दो। तो उन्होंने बोला तेरे बाप का नौकर हूँ क्या, तेरा क्या, तू जाके लिया, तू क्या बदमाश है क्या। तो उन्होंने बोला चल ठीक है। फिर इतने में उन्होंने अपने दोस्तों को फोन मिलाया, उस लड़के ने, 7-8 लोंडे आ गए। इस बात को लेकर उन्होंने उसको मार दिया कि तूने हमसे ऐसे क्यों कहा।
10: विवाद के बाद जब अरबाज को लड़कों ने घेरा तो उसने मदद के लिए अपने भाई को बुलाया। भाई के सामने ही आरोपियों ने अरबाज की हत्या कर दी।
13: अरबाज का बड़ा भाई था, अरबाज ने मेरे पास फोन करा रात में पूरे 10:59 पे कि भाई ऐसे ऐसे बात है, मेरे को लड़कों ने घेर रखा है, जल्दी से इधर आ जा गली के बाहर। मैं भागते हुए गया, जाके देखा तो उस टाइम पे ना इस पे सब सवार हुए पड़े थे लड़के, जो जो लड़के थे सब सवार हुए पड़े थे। ये 5-6 लड़के थे। उसी बीच में आवाज आती है कि चाकू निकाल, उसी बीच में आवाज आती है चाकू निकाल। अब जब चाकू निकालने की आवाज आती है तो मेरे भाई को ना गेट है हमारी गली के बाहर, उसमें घुसा दिया। तो मैं गया, मैंने पीछे से पकड़ के खींचा उसे, लड़कों को, 2-3 लड़के उस पर चढ़े पड़े थे। जैसे मैंने उन्हें खींचा तो एक लड़का साइड में से निकल के गया, वो इतने में जाके उसके चाकू मार।
10: अरबाज जहांगीरपुरी के सी ब्लॉक का रहने वाला था और इलाके में ही एक सुनार की दुकान पर काम करता था। युवक की मौत के बाद घर में मातम है और इलाके में तनाव। पुलिस ने स्थानीय लोगों और चश्मदीदों से पूछताछ के आधार पर 3 नाबालिगों को हिरासत में लिया है। उनसे पूछताछ की जा रही है और वारदात में उनकी भूमिका की जांच हो रही है। आज तक ब्यूरो।
0: और उधर यूपी के फतेहपुर में हनुमान मंदिर के पास मांस मिलने के बाद तनाव बढ़ गया है और मौके पर हिंदुवादी संगठनों ने कार्यकर्ता पहुंचे हैं, विरोध प्रदर्शन किया गया है, मंदिर में हनुमान चालीसा का पाठ भी किया गया। आरोप ये लगाया गया कि जानबूझकर ऐसी हरकत की गई है। तनाव के बीच पुलिस ने पास में लगे हुए सीसीटीवी फुटेज को जांचा है तो पता ये चला कि कुत्ता मांस लेकर मंदिर के पास पहुंच गया था, जिसके बाद जाकर इस विवाद को शांत कराया जा सका। तो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। आपको बता दें कि तमाम संगठनों ने पहुंचकर यहां पर हनुमान चालीसा का पाठ शुरू कर दिया था, तनाव बढ़ गया था, लेकिन सीसीटीवी फुटेज जब खंगाला गया तो पता चला कि कुत्ते ने यहां मांस फेंका था, जिसके बाद पूरा का पूरा मामला शांत हो सका। यह खबर है पुणे से। पुणे में जहरीली शराब से अब तक 15 की जान जा चुकी है, कई की हालत गंभीर बनी हुई है। सरकार ने इस पूरे मामले को सीआईडी जांच के आदेश दे दिए हैं। सीआईडी पुणे पिंपरी चिंचवाड़ में शराब से हुई मौतों की जांच करेगी, साथ ही साथ ये भी पता लगाएगी कि अवैध शराब के स्रोत और सप्लाई नेटवर्क का मालिक कौन है, कौन कौन इसमें शामिल है, नेटवर्क किस किस से जुड़ा हुआ है। तो पुणे जहरीली शराब के मौत के मामले में सीआईडी जांच के आदेश दे दिए गए हैं। 15 लोगों की अभी तक जान इसमें जा चुकी है, कई की हालत गंभीर बताई जा रही है। विपक्ष लगातार सवाल उठा रहा है कि इस तरीके से कैसे ये नेटवर्क सांठगांठ के साथ काम कर रहा था, प्रशासन पुलिस कहां थी जब इतने आसानी के साथ अलग अलग जगहों पर इस जहरीली शराब को बेचा जा रहा था। कई लोग अभी भी गंभीर रूप से, हालत उनकी नाजुक बताई जा रही है, जो अस्पताल में भर्ती हैं। कुल 15 लोगों की जहरीली शराब पीने की वजह से जान जा चुकी है। रुक करेंगे लखनऊ का, जहां जजों ने कोर्ट जाने के लिए साइकिल की सवारी की। हर शनिवार को इस तरह सभी जिला जज और न्यायिक अधिकारी गाड़ियों को छोड़कर साइकिल से दफ्तर जाया करेंगे। ईरान युद्ध से आई ऊर्जा संकट के बाद प्रधानमंत्री ने तेल और गैस बचाने की अपील की थी, उसके बाद से लखनऊ के जजों ने नई पहल शुरू की है। तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। फैसला यह किया गया कि हर शनिवार को इसी तरह से ये सभी लोग साइकिल से ही पहुंचेंगे अपने अपने ऑफिस।
14: आज शनिवार है। बीते सप्ताह जब लखनऊ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के तमाम जज और न्यायिक अधिकारी साइकिल से निकले तो बात की गई थी कि हर शनिवार को तमाम जजेस साइकिल से ही कोर्ट तक जाएंगे, और आज शनिवार है तो रियलिटी चेक में जब हम देखते हैं तो आज भी डिस्ट्रिक्ट जज मलकान सिंह सर और तमाम जो अधिकारी हैं, जजेस हैं, वो आज भी साइकिल से ही नजर आ रहे हैं, साइकिल से ही जाने वाले हैं। सर, पिछली बार जब आप लोग गए थे प्रधानमंत्री जी के आह्वान पर तो कहा गया शनिवार को जाएंगे, तो आज शनिवार है, आज हम लोग रियलिटी चेक कर रहे थे तो आप लोग आज जा ही रहे हैं।
15: हम सभी अधिकारीगण द्वारा यह सामूहिक निर्णय लिया गया था कि यह सिर्फ फोटो सेशन नहीं रहेगा और प्रत्येक शनिवार को सभी अधिकारी साइकिल से न्यायालय जाएंगे और जो अधिकारी साइकिल नहीं चला सकते वो ई रिक्शा के द्वारा न्यायालय जाएंगे। ये अभियान प्रत्येक शनिवार को जारी रहेगा।
14: डिस्ट्रिक्ट जज मलखान सिंह की अगुवाई में तमाम जजेस और न्यायिक अधिकारी साइकिल से निकले तो कहा गया हर शनिवार को भी ऐसे ही जाएंगे। और आज देखिए शनिवार है और तमाम अधिकारी डिस्ट्रिक्ट जज मलखान सिंह के आवास से अब लखनऊ कोर्ट पहुंच चुके हैं। ये रियलिटी चेक किस बात का था कि जब इस अभियान की शुरुआत हुई तो दावा किया गया कि ईंधन बचाने के लिए प्रधानमंत्री के आह्वान पर तमाम अधिकारी हर शनिवार को साइकिल से जाएंगे। सच्चाई क्या थी इसको ही जानने के लिए हमने आज ये रियलिटी चेक किया और तमाम न्यायिक अधिकारी जजेस साइकिल पर ही कोर्ट जाते नजर आए। कैमरा पर्सन संदीप के साथ संतोष कुमार, आज तक।
0: और इसी के साथ हम यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आज तक।
16: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच In association with
17: Bharat ki apni electric savari, Sokudo.
18: This is the sound of Jack buzz cutting his way to a small fortune. To Jack, every time he cuts his own hair, that's $50 right in his pocket. If Jack sees DIY buzz cuts as a saving strategy, Wells Fargo is right behind him. And with their mobile app, tracking his savings is easy.
19: Oh, ouch.
18: However you make money work, we can work with that.
20: Mobile carrier's message and data rates may apply. Wells Fargo Bank, N.A., member FDIC.
21: The biggest classic rock hits do just that. They hit hard. And on TuneIn's Classic Rock Hits, you'll find only the best in high-octane awesomeness. We're talking rock gods like Led Zeppelin, Kiss, AC/DC, Lynyrd Skynyrd, and so many more. So for those of you about to rock, search Classic Rock Hits or ask your smart device to play Classic Rock Hits on TuneIn.
22: The music you love is all right here on TuneIn, bringing you good vibes and the hottest hits. But are you ready to amp things up even more? Just upgrade to TuneIn Premium for all of our exclusive music channels, completely commercial free. So you get more of today's hits. More country roads. And everything else. Hear it all here, commercial free, on TuneIn.
23: Need a good laugh? We know a place. Just for Laughs Radio brings you nonstop stand-up bits by the best comics in the game. From all-timers to rising stars. And the punchline? It's all waiting for you on TuneIn. Head on over to Just for Laughs Radio today.

0: why and by whom was COAMPT given the CBSE contract? Second, which procedures were circumvented to give COAMPT this contract? If we could figure out in 30 seconds that this company earlier had a different name, why didn't the CBSE figure this out? And why were no background checks done? Third, and most important, what is the exact relationship between COAMPT management and the Modi government?
1: मैं उनकी एक आदत, उनको एक बीमारी आ गई है। भारत में कोई भी परिवर्तन को सज्ज नहीं कर पाते हैं। उन्होंने SIR को विरोध किया था, उन्होंने EVM को विरोध किया था, उन्होंने भारत की अनेकों व्यवस्था को, भारत की डिजिटल इंडिया को विरोध करते हैं। ये एक दिवालिया मानसिकता की लक्षण है। आपको मैं क्या कह पाऊंगा, उनकी एक अंडरस्टैंडिंग है विषयों के ऊपर। बाकी रहा कोई स्पेसिफिक कंपनी के बारे में वो कह रहे हैं, मेरे शाम तक मेरे पास जो जानकारी है उन्हीं के साथ सिद्ध दो राज्यों में, कर्नाटक और तेलंगाना में, वो संस्था 5 शिक्षानुष्ठान की OSM काम कर रहा है।
2: अच्छा,
1: उनकी वेबसाइट चला रहे, उनकी सॉफ्टवेयर पोर्टल चला रहे। इसलिए तो ये तो कोई, कभी राहुल गांधी कोई विषय कुछ बोलते हैं तो फैक्ट चेक तो करते ही नहीं, बेबुनियाद बातों पे वो एक दुनिया गढ़ बैठते हैं।

या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट, तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।

0: ये भोपाल के अर्बन एरियाज के फोटोग्राफ्स हैं जिनमें टाइगर का मूवमेंट है,
1: तो इसीलिए इन्हें अर्बन टाइगर्स कहा जाता है।
2: अलर्ट रहना भाई, कभी भी दिख सकता है।
1: वो पीछे पीछे पीछे पीछे पीछे बिल्कुल साइड में बैठा है।
3: हम हजार बार जाएंगे तो हम किसी को नहीं देख पाएंगे, लेकिन हजारों आके हमें देखते हैं।
4: Whatever you're in the mood for, tune in has the music to match, from today's hits
5: Somebody save me
4: to timeless favorites and new discoveries.
5: So much more than a history. Wake up.
4: It's all streaming in one place. Discover stations that fit your vibe and keep the music going all day long. Just search music or ask your device to play your favorite music station on TuneIn.
6: Presented by Patanjali Dant Kanti Toothpaste, complete oral health ka sach. In association with
7: Bharat ki apni electric sawari, Sokudo.
6: Hexa Organic, radiant skin and nourished hair, pure Ayurvedic beauty. Durable pipes, fittings and tanks, a complete range of sanitary solutions.

नवाब गिरफ्तार, बकरीद के दिन कुर्बानी दिखाने के बहाने बुलाकर सूर्या को मारा। केशव मौर्य बोले, बचेंगे नहीं हत्यारे। यूपी के लोगों को लगा महंगाई का करंट, बिजली बिल में 10% की बढ़ोतरी, फ्यूल सरचार्ज में इजाफा, जून से आएगा बढ़ा हुआ बिल। शाम 4 बजे कांग्रेस विधायक दल के नेता चुने जाएंगे, डीके शिव कुमार 3 जून को 8 से 10 मंत्रियों के साथ ले सकते हैं शपथ, सिद्धरमैया के करीबियों को मिल सकती है जगह।

0: 2005 में 21 वर्ष पहले रामलीला के आयोजन में व्यवधान पैदा करके निर्दोष हिंदुओं का कत्लेआम कर रहे थे। समाजवादी पार्टी तो माफिया और गुंडों के सामने नतमस्तक थी, नाक रगड़ती थी माफिया के सामने।
1: वो पेपर लीक नहीं रोक पा रही, पानी की टंकियों में पानी नहीं रोक पा रही है, बढ़ते हुए अपराध नहीं रोक पा रही है, बेरोजगारी नहीं रोक पा रही है, बढ़ती हुई महंगाई को नहीं रोक पा रही है।
0: किसी माफिया में दुस्साहस नहीं, किसी गुंडे में दुस्साहस नहीं कि किसी पर्व और त्योहार में व्यवधान पैदा कर दे। रावण और कंस जैसी दुर्गति उसकी तय है जो व्यवधान डालने वाला है।
1: एक ऐसी सरकार जो सभी मोर्चों पर विफल है, वो जब चुनाव नजदीक आता है तो उनका चश्मा वो धार्मिक हो जाता है।
0: माफिया पिस्तौल लहराते हुए कोई धमका करके खुली जीप में चल करके किसी हिंदू को धमका नहीं सकता है।
2: बोल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश में अगले साल यानी 2027 की पहली तिमाही में विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं और सरगर्मी तेज हो गई है। सूबे के मुखिया मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की जुबान अभी से आग उगल रही है। आग का मतलब यहां यह है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ समाजवादी पार्टी पर जमकर बरसने लगे। पूरा वाक्या क्या है आपको विस्तार से बताते हैं। दरअसल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज उत्तर प्रदेश में मऊ के दौरे पर थे, जहां 392 करोड़ से अधिक की 114 परियोजनाओं का उन्होंने लोकार्पण भी किया, शिलान्यास भी किया। इसी क्रम में योगी आदित्यनाथ ने विपक्ष और माफिया दोनों पर धुआंधार हमला बोलना शुरू किया। पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपनी सरकार के विकास कार्यों का लेखा जोखा दिया और लगे हाथी माफियाओं को दुस्साहस न करने की सख्त चेतावनी दी। और तो और अपने संबोधन में योगी आदित्यनाथ ने रावण और कंस का भी जिक्र कर दिया। पहले सुनिए उनका ये बयान।
0: किसी माफिया में दुस्साहस नहीं, किसी गुंडे में दुस्साहस नहीं कि किसी पर्व और त्योहार में व्यवधान पैदा कर दे और उपद्रव पैदा कर दे। इन आयोजनों में अगर किसी ने व्यवधान डाला तो पर्व तो मनाई लेगा, लेकिन उसके बाद ये तय है कि रावण और कंस जैसी दुर्गति उसकी तय है जो व्यवधान डालने वाला है। आज माफिया पिस्तौल लहराते हुए कोई धमका करके खुली जीप में चल करके किसी हिंदू को धमका नहीं सकता है।
2: तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ चुनावों के पहले, अभी वैसे समय है चुनाव में, लेकिन क्या वो चुनावी माहौल तैयार कर रहे हैं? क्या वो कानून व्यवस्था पर अपनी पीठ थपथपा रहे हैं या विपक्ष जैसा कह रहा है धार्मिक ध्रुवीकरण की पॉलिटिक्स खेल रहे हैं? इसी पर आज चर्चा करेंगे। सबसे पहले तालियों के साथ आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ जो यहाँ पर युवा बैठे हुए हैं जो आज इस चर्चा में शामिल होंगे, सवाल पूछेंगे, हमारे साथ सुधांशु त्रिवेदी जी, राष्ट्र प्रवक्ता और सांसद भारतीय जनता पार्टी के इस चर्चा में जुड़े हैं। तालियों के साथ आपका बहुत बहुत स्वागत है। अजय उपाध्याय जी, प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के, हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ रहे हैं। तालियों के साथ आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। राजकुमार भाटी जी, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के, मोहम्मद फैज खान साहब, नेशनल कन्वीनर MRM के, और मौलाना अंसार रजा साहब, गरीब नवाज फाउंडेशन के चेयरमैन, हमारे साथ चर्चा में जुड़ रहे हैं इस्लामिक स्कॉलर के तौर पर। लेकिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कुछ और बातें कही हैं जो आपको आज सुननी चाहिए। माफियाओं को उन्होंने सिर्फ चुनौती नहीं दी, चेतावनी नहीं दी, बल्कि समाजवादी पार्टी की पहले की अखिलेश जो सरकार है उससे लेकर 2005 की मुलायम सरकार के कार्यकाल का भी आज उन्होंने जिक्र किया। योगी आदित्यनाथ ने खुलकर कहा कि 21 साल पहले इसी मऊ में हिंदुओं के साथ कितना अत्याचार हुआ था। हम आपको ये भी बता दें कि वहीं अगर आप देखें तो मऊ जगह है जहां पर कभी मुख्तार अंसारी का दबदबा हुआ करता था। सुनिए क्या कहा।
0: 2005 में 21 वर्ष पहले इसी मऊ में कैसे भरत मिलाप कार्यक्रम के अवसर पर दंगा करके मऊ को जलाने का कुत्सित प्रयास हुआ था, कैसे सत्ता के संरक्षण में माफिया एक उत्सव भरे आस्था के केंद्र रामलीला के आयोजन में व्यवधान पैदा करके निर्दोष हिंदुओं का कत्लेआम कर रहे थे। सरकार

0: कौन थी?
1: तो मुलायम सिंह यादव को भी कटघरे में आज योगी आदित्यनाथ ने खड़ा किया और समाजवादी पार्टी सरकार के पूरे कार्यकाल पर प्रश्न चिन्ह लगाया, आरोप लगाया कि माफिया और गुंडों से गठजोड़ का, और इसी के साथ सवाल पूछा कि उनके राज्य में लाखों गरीबों को सरकार की ओर से आवास क्यों नहीं मिला।
0: समाजवादी पार्टी तो माफिया और गुंडों के सामने नतमस्तक थी, नाक रगड़ती थी माफिया के सामने, माफिया को देख करके पसीने छोड़ते थे इनको। बहनों और भाइयों, जो आज उपदेश देते फिरते हैं समाजवादी पार्टी के लोग, इनसे पूछा जाना चाहिए कि जो 65 लाख गरीबों को आज प्रदेश में आवास मिला है, ये 65 लाख आवास चार चार बार समाजवादी पार्टी की सरकार थी तब क्यों नहीं गरीबों को मिला है, ये प्रश्न इनसे पूछा जाना चाहिए।
1: तो मुख्यमंत्री ने जो आरोप लगाया उस पर जवाब समाजवादी पार्टी की तरफ से आया। प्रवक्ता फखरुल हसन चांद ने कहा कि बीजेपी असल मुद्दों से लोगों को भटका रही है, सुनिए।
2: देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार वो पेपर लीक नहीं रोक पा रही है, पानी की टंकियों में पानी नहीं रोक पा रही है, बढ़ते हुए अपराध नहीं रोक पा रही है, बेरोजगारी नहीं रोक पा रही है, बढ़ती हुई महंगाई को नहीं रोक पा रही। एक ऐसी सरकार जो सभी मोर्चों पर विफल है, वो जब चुनाव नजदीक आता है तो उनका चश्मा वो धार्मिक हो जाता है, वो धार्मिक आयोजनों की बात कर रहे हैं, हिंदू मुसलमान मंदिर मस्जिद भजन कीर्तन अजान की बात कर रहे हैं, बात नहीं कर रहे तो मुद्दों की बात नहीं कर रहे। इसलिए समाजवादी पार्टी भारतीय जनता पार्टी को मुद्दों से भागने नहीं देगी।
1: तो आइए चर्चा की शुरुआत करते हैं और इसी बात से करते हैं कि एक बड़े पैमाने पर अगर इस पूरी खबर को देखें तो ऐसा प्रतीत होता है सुधांशु जी, जो विपक्ष आरोप लगाता है कि धार्मिक ध्रुवीकरण बीजेपी फिर से करना चाहती है, वो कह चाहती है कि हिंदू एकजुट होकर उसके लिए वोट करें, इसीलिए मऊ को चुना गया, इसीलिए मुख्तार अंसारी की जगह को चुना गया, इसीलिए अखिलेश यादव मुलायम सिंह यादव पर हमला आप लोग कर रहे हैं, मुस्लिम तुष्टिकरण खत्म हो, हिंदू ध्रुवीकरण की शुरुआत यही कर रहे हैं योगी जी।
3: देखिए, ये मूलतः उन लोगों की सोच है जिनका कि जो वोट बैंक है वही माई है और उसमें एम बड़ा इंपॉर्टेंट है, एम भाई है, बाकी सब तो जो भी हैं वो अपनी जगह है। और यह मैं ये भी बताना चाहता हूँ, लोकसभा में जब ये विषय आया महिला आरक्षण का जो विधेयक चल रहा था, तो अखिलेश जी ने खड़े होकर क्या बोला, एक ही बोला ना, मुस्लिम महिलाओं के लिए प्रतिनिधित्व होगा कि नहीं। कौन लाया मुस्लिम विषय? उसमें तो कोई मुस्लिम विषय ही नहीं था, विषय ओबीसी तक का भी था, वो भी पिछली बार सर्वसम्मत से पास हो चुका था। अचानक ये मुस्लिम कौन लेके आता है? हम लोग नहीं लेके आते, वो लेके आते। और दूसरी बात, बहुत दुख की बात है कोई ये कहे 2005 का मऊ का दंगा लोगों को याद नहीं होगा, भयंकर नरसंहार हुआ और उसके बाद दंगे का आरोपी मुख्तार अंसारी खुली जीप में घूम रहा था। जो पुराने लोग होंगे उनको वो सीन याद होना चाहिए, नहीं तो जाके पुराने अखबारों में देखें, पुलिस को गाइड कर रहा है, पुलिस उसकी सुरक्षा में चल रही है, ऐसी भयानक स्थिति, उसकी तरफ उन्होंने याद दिलाया कि एक वो भी दौर था और एक वो भी दौर है। आज जब वो दौर आया, योगी जी की सरकार आई और मोदी जी के केंद्र में सरकार आई, तो वही मुख्तार अंसारी पंजाब में जाकर जेल में बैठ गया जहां कांग्रेस की सरकार थी। उसने हाई कोर्ट में अर्जी लगाई कि मुझे पंजाब में रहने दिया जाए, मुझे यूपी न जाने दिया जाए, क्योंकि पंजाब में कांग्रेस सरकार के दामने रहमत में बड़ा महफूज हूं। मैं ये कहना चाहता हूं, मैं लंबे समय तक दिल्ली में आता जाता रहा हूं, एक दौर था कि दिल्ली में लोग कहते थे भाई नोएडा के आगे हम यूपी में नहीं जाएंगे, बिजनेसमैन कहता था मैं नहीं जाऊंगा, व्यवसायी कहता था मैं नहीं जाऊंगा। आज स्थिति हो गई, कोर्ट में अर्जी लगाते हैं माफिया कि मैं यूपी नहीं जाऊंगा। कारण क्या है? योगी जी ने जानते क्या किया है? भगवान राम जब आए थे तो कहा जाता है कि उन्होंने एक संकल्प किया था कि निश्चरहीन करूं मही भुज उठाए प्रणकीन और सकल मुनिन के आश्रम जाहि सुखधीन। ठीक, तो योगी जी ने भी एक संकल्प किया है, माफियाहीन करूं यह यूपी और भुज उठाए प्रणकीन और पकड़ पकड़ के माफियन अंदर या ऊपर कीन।
1: भाटी जी मोर्चा उठाते हैं, अजय जी तो बुरा मत मानिएगा, समा उत्तर प्रदेश में थोड़े बड़े भैया हैं आपके, तो चलिए आप ही से भाटी जी शुरुआत करते हैं, इतनी अच्छी ईद मनी। सुनिए, सवाल तो सुन लीजिए सर, उनसे प्रश्न किया था। अरे तब मैं निकल जाती हूँ, फिर आप लोग बात कर लीजिए।
3: एक और बोल देता हूँ तब, सुनिए, ये मऊ दंगा 2005,
1: मौका दे दिया।
3: 2008 का दंगा आजमगढ़, वहां तो यादवों के साथ हुआ था और यादवों की बेटियों के साथ हुआ। उसके बाद मुलायम सिंह जी ने जाके ये कहा कि साहब उनसे माफी मांगो, तो कौन? रमाकांत यादव, जो इनके एकदम राइट हैंड थे, उन्होंने पहली बार पार्टी से बगावत की और वो छोड़ के बाहर आए और वो फिर बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़के जीत के आए। तो मैं इसलिए कहना चाहता हूं, इसलिए मैंने कहा एम में एम बड़ा है, बाकी सब किनारे हैं।
1: भाटी जी माइक उठा लीजिए, माइक उठाइए। सवाल ये है कि भाई माफियाओं के खिलाफ वो छेड़ रहे हैं अपना पूरा अभियान, मुख्तार अंसारी किस किस पार्टी से हो होकर कहां कहां पर क्या पोस्ट पर रहे, उन सबको भी दरकिनार कर दीजिए। कानून व्यवस्था तो आम आदमी से जुड़ा मुद्दा है, और अगर वो माफियाओं का, पहले भी योगी आदित्यनाथ ने हमारे इंटरव्यू में कहा था कि माफियाओं को मारे नहीं तो क्या उनकी आरती उतारे, तो ऐसे में तो लोग उनको लोकप्रिय होते हैं वो ऐसी बातों से।
4: 2005 में मऊ के अंदर दुर्भाग्यजनक दंगा हुआ था जिसमें 7 लोग मारे गए थे, 36 घायल हुए थे। जिस मुख्तार अंसारी का बार बार सुधांशु जी नाम ले रहे हैं हमें घेरने के लिए, वो मुख्तार अंसारी बसपा के विधायक थे, बहुजन समाज पार्टी के, और मुख्यमंत्री उस समय श्री मुलायम सिंह यादव जी थे। उन्होंने बहुत सख्त एक्शन लिया था, उस दंगे के लिए जांच समिति बनाई थी और कहा था किसी को बख्शा नहीं जाएगा। आपने कहा कि माफिया विहीन कर रहे हैं, अभी पिछले सप्ताह उत्तर प्रदेश हाई कोर्ट ने 19 माफियाओं के बाकायदा नाम लिख के दिए हैं उत्तर प्रदेश सरकार को, कि उत्तर प्रदेश सरकार से डिटेल मांगी गई थी, इन 19 दबंग लोगों की डिटेल क्यों नहीं दे रही हैं। कहें तो मैं सारे नाम पढ़ दूं, उन 19 में 15 एक ही जाति के हैं, और संयोग समझ लें या प्रयोग समझ लें, माननीय मुख्यमंत्री जी की जाति के हैं, उनके खिलाफ पुलिस कार्रवाई नहीं करती है। बात कानून व्यवस्था की आई, लेटेस्ट जो एनसीआरबी के आंकड़े आए हैं उसके अनुसार, मेरे अनुसार नहीं, एनसीआरबी नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के अनुसार जो सरकारी विभाग है, उत्तर प्रदेश में 9 मर्डर रोजाना हो रहे हैं और 10 रेप रोजाना हो रहे हैं, 9 मर्डर 10 रेप। अभी मुख्यमंत्री की बाइट आप सुनवा रही थी कि पहले तमंचा लहराते थे, तमंचा लहरा के डराते थे। खुद उत्तर प्रदेश सरकार ने आंकड़ा दिया है कि माननीय योगी आदित्यनाथ जी के 8 साल के शासन में 15,000 मुठभेड़ हुई है उत्तर प्रदेश में। मैंने हिसाब लगाया 8 साल में 2,920 दिन होते हैं, 5 मुठभेड़ रोजाना। मुठभेड़ का मतलब समझते हैं आप, गुंडा पुलिस के ऊपर गोली चलाए तो बदले में पुलिस गोली चलाए। तो ये गोली तमंचों से नहीं चल रही क्या, ये मुंह से दाएं दाएं करी जा रही है? अगर उस समय तमंचे थे, आज तमंचा नहीं है तो रोजाना। मुठभेड़ का मतलब समझते हैं आप, गुंडा पुलिस के ऊपर गोली चलाए तो बदले में पुलिस गोली चलाए। तो ये गोली तमंचों से नहीं चल रही क्या, ये मुंह से दाएं दाएं करी जा रही है? अगर उस समय तमंचे थे, आज तमंचा नहीं है तो ये तमंचा कौन सप्लाई कर रहा, क्या योगी आदित्यनाथ जी सप्लाई कर रहे हैं? कहना बहुत आसान है, आपने एक वाक बहुत अच्छा बोला कि जुबान आग उगल रही है। सच्चाई यही है, इनकी जुबान आग उगलना जानती है। ये जहां तक विकास की बात करते हैं, अखिलेश यादव जी ने 5 साल के शासन में जो विकास के मानक तय किए, अभी ये उनके नजदीक तक भी नहीं पहुंच सकते। उन्होंने 18,00,000 बच्चों को लैपटॉप दिए, स्टूडेंट्स को, किसानों की सिंचाई फ्री की, किसानों को 5,00,000 का। अखिलेश यादव जी ने 5 साल के शासन में जो विकास के मानक तय किए, अभी ये उनके नजदीक तक भी नहीं पहुंच सकते। उन्होंने 18,00,000 बच्चों को लैपटॉप दिए, स्टूडेंट्स को, किसानों की सिंचाई फ्री की, किसानों को 5,00,000 का बीमा दिया, 60,00,000 महिलाओं को समाजवादी पेंशन देते थे, महिला पेंशन, बेटियों को कन्या विद्यादान देते थे, 5 शहरों में मेट्रो चलाई, आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे जैसा शानदार एक्सप्रेसवे बनाया, यूरोप जैसा शानदार पुलिस मुख्यालय लखनऊ में बनाया, जनेश्वर मिश्र पार्क एशिया का सबसे बड़ा पार्क है, 50 जिलों को 4 लेन सड़कों से जोड़ा। तो ये अखिलेश जी ने
1: माफियाओं का एनकाउंटर कराया था, ये भी बताइए जरा।
3: एनकाउंटर मैंने बता तो दिया, 5 रोज हो रहे हैं योगी जी के शासन में।
1: हम आपका पूछ रहे हैं,
3: ये ऑपरेशन लंगड़ा कह के जो अट्ठास करते हैं, हाथ बांध के किसी जेब कतरे को गोली मार देना, कोई ये कानून का राज नहीं है। कानून और संविधान ताक पे रख दिया है, कहते हैं अब इस उत्तर प्रदेश में किसी हिंदू को कोई नहीं डरा सकता।
1: विकास दुबे पॉकेट मार था, विकास दुबे पॉकेट मार था। अरे सर, विकास दुबे पॉकेट मार था,
3: विकास दुबे बदमाश था, लेकिन खुशी दुबे क्या थी जिसकी 4 दिन पहले शादी हुई थी? खुशे दुबे भी जेल भेज दी और वो जेल से निकली, उसकी माँ बीमार थी, बेचारी का इलाज नहीं हो पा रहा था, अखिलेश यादव जी ने उनकी माताजी का इलाज कराया, उनकी जान बच गई। नेता के अंदर दिल होना चाहिए, सहानुभूति होनी चाहिए,
1: मतलब माफियाओं के परिवार के लिए
5: होना चाहिए, जात बिरादरी कोई भी हो,
3: नेता के अंदर नफरत नहीं होनी चाहिए,
1: माफिया के लिए दिल धड़कता है।
4: खुशी दुबे माफिया।
1: अरे खुशी दुबे क्यों, उनकी पत्नी की चिंता है, ऐसे अनेकों पत्नियां हैं, ऐसे अनेकों औरतें हैं, उनके लिए आवाज के लिए बुलंदी। क्या बात कर रहे हैं, क्या बात कर रहे
4: हैं,
1: क्या बात कर रहे हैं,
4: उसने पुलिस के ऊपर गोली चलाई थी।
1: बड़े तो संकोच से बदमाश कह रहे हैं, अरे घोर अपराधी था अपराधी जिसका एनकाउंटर हुआ, और वो तो धर्म विशेष से भी नहीं था। लेकिन आप जो एनकाउंटर्स की बात कर रहे हैं, माफियाओं की आज चर्चा हो रही है, तो ये बात सच है कि माफियाओं के एनकाउंटर्स को, जिसके बाद एक बार मैं आपसे भी अजय जी इसके बाद सवाल जवाब करूंगी, लेकिन अपराधियों के एनकाउंटर की संख्या अपने दर्शकों को बता देते हैं, जिससे आपको क्लियर हो जाएगा कि किसके समय में ज्यादा माफियाओं का एनकाउंटर हुआ है। 2012 से 2017 तक अखिलेश राज में इनका आंकड़ा कितना था, यह भी हम आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले योगी के दूसरे कार्यकाल में, योगी 2.0 की बात करें, तो साल 2022 में 14 अपराधियों की मुठभेड़ में मौत हुई, 2023 में 26, 2024 में 22, 2025 में 24 अक्टूबर तक 41 अपराधियों को पुलिस की गोली से मारा गया। अगर हम योगी सरकार के अब तक के कार्यकाल की बात करें, तो पिछले 9 साल यानी अभी तक के मार्च 2017 से अभी तक का अगर आप देखिए, तो 17,000 से ज्यादा तक बताया जा रहा है कि संख्या जा रही है अलग अलग जगहों पर छोटे बड़े एनकाउंटर्स की। वहीं अगर अखिलेश के कार्यकाल पर नजर डालें, 2012 से 13 तक 8 बदमाशों की मौत, 13 से 14 तक 4 अपराधियों का एनकाउंटर, 2014 से 15 तक 7, 2015 से 16 तक 5, 2016 से 17 तक 4 अपराधियों को पुलिस ने मारा था। तो ऐसा नहीं कि एनकाउंटर आप नहीं करते थे, आप भी करते थे, संख्या कम थी। आज सवाल है कि वो इस मुद्दे पर अजय उपाध्याय जी अपनी पीठ थपथपाते हैं, और इस मुद्दे पर हिंदू मुस्लिम करने का भी आरोप लगता है, लेकिन विकास दुबे जैसा जघन्य अपराधी जो है वो तो मुस्लिम था नहीं, उसको भी एनकाउंटर में मारा योगी सरकार ने, फिर इस पर आपका क्या जवाब होगा?
6: देखिए, अभी जो चर्चाएं हो रही है, सच पूछिए तो जो हिंदू मुस्लिम का कहीं ना कहीं चश्मा पहन करके आप अपराधियों को भी धर्म और जाति के रूप में देखते हैं, मुझे लगता है कहीं से भी उचित नहीं है। और सत्ता में बैठे हुए लोगों को, सियासत करने वाले लोगों को कम से कम इस पर ध्यान देना चाहिए, जो संविधान की शपथ लेकर संवैधानिक बाध्यता का भी ख्याल रखें। सुप्रीम कोर्ट ने बार बार यदि ऑब्जेक्शन दिया है, चाहे वो बुलडोजर पॉलिटिक्स पर या बाकी चीजों पर, तो ये कहीं ना कहीं एक करारा तमाचा है उत्तर प्रदेश सरकार के लिए कि आप जो है न्याय के शासन के अनुरूप न चल करके आप अपनी व्यक्तिगत हठधर्मिता का कहीं ना कहीं उपयोग करके और एक धर्म विशेष या एक जाति विशेष को आप टारगेट करते हैं। सच्चाई तो ये है कि यदि ये इनकाउंटर की बात आपने की है, इसमें एक इनकाउंटर होता हाथरस के उन बेटी के साथ जो बलात्कार किया, तो मैं ताली बजाता जोगी जी के लिए। एक इनकाउंटर होता यदि उन नाव की बेटी के साथ जो अत्याचार हुआ, उस पर यदि इनकाउंटर होता, तो हम सब मिलकर के जो योगी जी को हम जो है फूल लेकर के उन बेटी के साथ जो बलात्कार किया, तो मैं ताली बजाता जोगी जी के लिए। एक इनकाउंटर होता यदि उन नाव की बेटी के साथ जो अत्याचार हुआ, उस पर यदि इनकाउंटर होता, तो हम सब मिलकर के जो योगी जी को हम जो है फूल लेकर के देते कि आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। लेकिन आप कर क्या रहे हैं, आप अपना सिर्फ सियासी चश्मा देख रहे हैं। 4,30,000 अपराध दर्ज हुए हैं इस साल, ये कहां से आ गया? यदि अपराधी नहीं है तो अपराध किस पर दर्ज हो रहा है? क्या सामान्य नागरिक पर हो रहा है? इसका मतलब उत्तर प्रदेश में अपराध है। बलात्कारी यदि लगातार 9 प्रतिरोज 9 बलात्कार की घटनाएं हो रही हैं, तो अपराधी कहीं ना कहीं भयमुक्त होकर के घूम रहा है। यदि डाका और रोबरी हो रही है आए दिन, तो उत्तर प्रदेश सुरक्षित नहीं है। और सच पूछिए, आप बॉर्डर पर आ जाइए, कौशाम्बी नोएडा और इसी आसपास में रोज चेन स्केचिंग की सैकड़ों घटनाएं हो रही हैं, बेशक पुलिस उसको दर्ज नहीं करती है उस पर केस और मुकदमे। तो इन चीजों को ध्यान रखने की जरूरत है। आप हिंदू मुस्लिम का चश्मा जितना लगा लीजिए, सच पूछिए तो आप इससे ऊपर उठिए। देश में आपको यदि लोगों ने शासन करने को कहा है, राज्य में शासन करने को कहा है, तो जो मूल मुद्दे हैं, नौजवानों का आज मुद्दा, महंगाई बेरोजगारी का मुद्दा, नीट परीक्षा का मुद्दा, सीबीएसई के जो पेपर लीक और जिस तरह की घटनाएं हुई हैं, इन मुद्दों पर आइए आगे। और सुरक्षा सम्मान के साथ जीने का अधिकार जो नागरिकों का है, जो संविधान प्रदत्त अधिकार है, उसके साथ आप खिलवाड़
1: मत कीजिए। क्या नीट और सीबीएसई के एग्जाम्स में जो धोखाधड़ी हुई है, उससे नजर हटाने के लिए इस तरह के बयान दिए जाते हैं, ये उनका आरोप है, इसका जवाब? और साथ ही दूसरा सवाल ये है कि क्या आप लोग धर्म के ही चश्मे से हर चीज को देखते हैं?
7: मैं इनकी बात का बिल्कुल तथ्यात्मक उत्तर देता हूं। भाटी साहब ने कहा कि मुख्तार अंसारी से उनका संबंध नहीं था। अखिलेश यादव जी मुख्तार अंसारी के अंतिम संस्कार में गए, और उन्हीं दिनों के आसपास कल्याण सिंह जी की मृत्यु हुई थी, जो पूर्व मुख्यमंत्री थे, उनके अंतिम संस्कार में नहीं गए। ये दर्शाता है किसका दिल किसके साथ ज्यादा है। दूसरी बात, ये वो लोग हैं ना, मैं आपके दर्शकों को जो कहते हैं आतंकवादी का मजहब नहीं होता मगर अपराधी की जात होती है। सोचिए, आतंकवादी का मजहब नहीं होता, अपराधी की जात होती है। और अगर आपने कहा तो मैं ये भी बता देना चाहता हूं, अगर आपने बोला है तो हाँ ठीक है, जो लोग उसमें मारे गए हैं माफियाओं में उसमें 18 ब्राह्मण हैं, 16 ठाकुर हैं, 14 यादव हैं और 2 सिख हैं, 7 अन्य ओबीसी जातियों के हैं, 2 दलित हैं, 34 अन्य जातियों के हैं, अब बोलना नहीं चाहिए, और 20-21 के 18 या 19 के आसपास मुसलमान हैं। मगर छाती पीटी जाएगी एक ही के लिए। और इनके जमाने में होता क्या था मैं ये भी बताना चाहता हूं, विक्रम सिंह जी डीजीपी थे, उन्होंने बोला है ऑन रिकॉर्ड एक्स डीजीपी ने कि एक अपराधी के इनकाउंटर के लिए, आतंकवादी के इनकाउंटर के लिए उन पर 302 का मुकदमा दर्ज हुआ डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस पे मुलायम सिंह जी की सरकार के समय में। और ब्रजलाल जी जो कि दलित भी थे, शायद भारत यूपी के इतिहास के पहले जो डीजी लॉ एंड ऑर्डर थे, उनके ऊपर भी मुकदमा दर्ज हुआ क्योंकि आतंकवादी का इनकाउंटर हो गया था। और विक्रम सिंह जी ने, मेरा स्टेटमेंट नहीं है, उन्होंने ऑन एयर बोला इनको चाहिए जाके चैलेंज करें और उनके खिलाफ मानने का मतलब, उन्होंने कहा कि एक कोर्ट का आदेश तामील करने के लिए अतीक अहमद के पास सिपाही गए, एक तो काफी 22-23 सिपाही गए, सबको बंदी बना लिया कमरे में। उसके बाद मुलायम सिंह जी ने फोन करके कहा अतीक भाई छोड़ दो, अतीक भाई छोड़ दो, तब उन्होंने छोड़ा उन पुलिस वालों को। और उसके बाद जो तामील कराने गया था उसकी हत्या कैसे हुई ये सबको पता है, एक वो भी दौर था इस देश का। और देखिए उपाध्याय जी क्या बोले, कहते फला का इनकाउंटर कर देते, अभी बोला क्या इनकाउंटर कब होता है, भाटी जी ने सही, भाई छोड़ दो, तब उन्होंने छोड़ा उन पुलिस वालों को। और उसके बाद जो तामील कराने गया था उसकी हत्या कैसे हुई ये सबको पता है, एक वो भी दौर था इस देश का। और देखिए उपाध्याय जी क्या बोले, कहते फला का इनकाउंटर कर देते, अभी बोला क्या इनकाउंटर कब होता है, भाटी जी ने सही बोला, जब उधर से गोली चलती तो पुलिस इधर से गोली चलाती, अब उधर से गोली चलाते तो बिल्कुल कर देते इनकाउंटर, मगर आप जो कह रहे हैं उसका मतलब क्या है, उसका मतलब क्या है, यानी आप जिस इनकाउंटर की बात कर रहे हैं उसको आप कहने के बात करें। और लास्ट में मैं कहना चाहता हूं, जो इन्होंने बात कहा कि जो महिलाओं के विरुद्ध अत्याचार है तो उसमें कन्विक्शन रेट यानी किसको सजा दिलवाई, देश में एवरेज है 23%, यूपी में एवरेज है 50% से ऊपर, और बंगाल में पता है कितना था, 3.4%। यह दर्शाता है कि कौन किसको लेकर संवेदनशील है। और अंत में मैं कहूंगा, अरे भाई मुस्लिम अपराधी कहां होता है, अरे मुस्लिम अपराधी कहां है, वो तो बड़े प्यार और मोहब्बत का सबब होता है, जाकिर नायक शांति का मसीहा होता है, ओसामा जी होता है, हाफिज साहब होता है, बुरहान वानी भट्ट का नौजवान होता है, याकूब मेनन की जुडिशियल किलिंग होती है, इशरत जहां बेटी होती है, और हिंदू आतंकवादी होता है। इसीलिए
8: भाई साहब ने दो बातें, एक तथ्य पहले थोड़ा सा इन्होंने झूठ बोला है, पूरा नहीं झूठ है, आंशिक झूठ है। झूठ क्या है कि इन्होंने कहा कि अतीक अहमद को जो वहां जो भेजा गया था इसको मुख्तार अंसारी को, हाई कोर्ट के डिसीजन पर मुख्तार अंसारी चंडीगढ़ में थे, कांग्रेस के डिसीजन पर नहीं थे, पहली बात।
7: ये नहीं बोला था, मैंने ये कहा था उन्होंने हाई कोर्ट में अर्जी लगाई कि मुझे हाई कोर्ट ने दिया था,
8: हाई कोर्ट ने दिया था,
7: आपकी सरकार ने दिया, महसूस कर रहे थे आपके दामन
8: ने दिया था, हाई कोर्ट पर आप प्रश्न लगा रहे हैं इसका मतलब, पहली बात। दूसरी बात,
7: हाई कोर्ट ने दूसरी बात को भेज दिया,
8: देखिए बात वही आ जाती है, कैसे कैसे हैं रहमर हमारे, कभी हिंदू के सहारे कभी मुस्लिम के सहारे, यही इनका काम है, इसके अलावा राजनीति कुछ नहीं हो सकती, सिर्फ हिंदू मुस्लिम करना इनका यही मकसद है। सच पूछिए तो ये देश हिंदू मुस्लिम से ऊपर, आप उठिए इस देश में और भी बहुत सारे मुद्दे हैं, आप जवाब दीजिए ना भाई, 18 लाख जो है विद्यार्थी जो अभी सीबीएसई का एग्जाम दिए, क्यों उनको दोबारा इतना परेशान होना पड़ रहा है, क्यों नीट की परीक्षा फिर से आपको वायुसेना से करानी पड़ रही है, क्या ये इतिहास कभी आज तक इतने देश का स्वतंत्रता आंदोलन के बाद से आज तक स्वतंत्र भारत में कभी ऐसा हुआ कि वायुसेना को जाना पड़ेगा पेपर लेकर, ये सब नाटक नौटंकी हो रहा है, क्योंकि देश के मूल मुद्दों से आप सिर्फ भटकाना चाहते हैं, आपके पास हिंदू मुस्लिम घुसपैठिया और जो है तुष्टिकरण, यही सब कुछ मुद्दे रह गए हैं। सही पूछिए तो मानसिक स्तर पर सांप्रदायिकता के शिकार आप लोग हो चुके हैं और देश में भी ये कैंसर आप फैलाना चाहते हैं, लेकिन देश के लोग संविधान के दायरे में रहकर संविधान के साथ चलेंगे और देश का विकास करना उनका मकसद है, देश पहले है, आपकी ये राजनीति बाद में आएगी।
7: सुनिए इन्होंने जो बोला, कैसे कैसे हैं रहबर हमारे, कभी हिंदू के सहारे कभी मुस्लिम के सहारे, नहीं साहब आपके लिए तो ये है, ऐसे ऐसे हैं रहबर हमारे, सिर्फ मुस्लिम है जान से प्यारे, हिंदुओं में जात के बंटवारे। और अब मैं बताना चाहता हूं, जहां तक इन्होंने इसकी विषय की बात कही है,
3: इस विषय की बात कही तो मैं कहूं कि जो नीट परीक्षा के ऊपर सरकार पूरी तरीके से सतर्क है, सजग है, संवेदनशील है। गृह मंत्री जी ने आपके चैनल को, सॉरी शिक्षा मंत्री जी ने आपके चैनल को दिए गए इंटरव्यू में भी यह बात कही है कि जो हुआ वो दुर्भाग्यपूर्ण था। और इस बार एक अलग बात थी, लीक पेपर तब होता है जब पेपर छपके आने के बाद रास्ते में लीक हो जाए। इस बार एक अलग विचित्र घटना हुई कि पेपर सेटिंग करने वाले, यानी अब आप सोचिए अगर जज जिसको जजमेंट लिखना है वही प्रोनाउंस करने से पहले लीक कर दे, तो ये एक अलग विचित्र परिस्थिति बन गई। अब इसके लिए भी समाधान निकालने का प्रयास हो रहा है कि आप पेपर सेटिंग के लिए एक या दो व्यक्तियों या चार व्यक्तियों को ना दिया जाए, कुछ अलग अलग टॉपिक्स पे अलग अलग वो लेकर किया जाए। रक्षा मंत्री जी के यहां भी हुई है वो सारी बात, मगर मैं पूछना चाहता हूं जो धारवाड़ की में कौन कर रही है, बैंगलोर की यूनिवर्सिटी में कौन सी कर, इसलिए हुई है वो सारी बात, मगर मैं पूछना चाहता हूं जो राहुल गांधी जी ने ट्वीट किया है जिस कंपनी को लेके, ये तेलंगाना की यूनिवर्सिटी में कौन सी कंपनी कर रही है,
0: देखिए
3: धारवाड़ की यूनिवर्सिटी में कौन कर रही है, बैंगलोर की यूनिवर्सिटी में कौन सी कर, इसलिए
0: कहीं भी लीक नहीं हुई है। इसका मतलब
3: सबसे एक,
0: इसका मतलब सर कंपनी दोषी नहीं है, सरकार दोषी।
3: एक लाइन कह दूं सर, प्रॉब्लम क्या है, ये तो राहुल गांधी जी तो ऐसे बच्चे हैं जो मेहनत करता नहीं है, एग्जाम में कॉपी भरता नहीं है, फिर कहता मुझे पास कर दिया जाए। और ये लोग भी उनके साथ खड़े हैं, ये किन लोगों के साथ खड़े हैं, जिनसे कहो एनआरसी में कागज दिखाओ, नहीं नहीं हम तो कॉपी दिखाएंगे नहीं, मान लो हम पास हैं, फिर इनसे कहो वक्फ बोर्ड में कागज दिखाओ, नहीं नहीं कागज तो हम दिखाएंगे नहीं, हम तो पास हैं। तो अब ये इनके दिमाग जोड़ करके
9: 22 लाख बच्चों का,
1: जल्दी से आ जाइए, जल्दी से
9: आप राहुल गांधी
1: का, जल्दी से,
3: अरे रुक जाइए रुक जाइए रुक जाइए, राहुल गांधी का नाम लेके 22 लाख बच्चों का नाम, अरे सही बोला,
0: देखिए मुद्दों पर जब बात होगी तो वाकई राहुल गांधी जी इनके केंद्र में आते हैं। राहुल गांधी जी वाकई नौजवानों के इशू को उठाना चाहते हैं, विद्यार्थियों के इशू को उठाना चाहते हैं, इसलिए इनके पेट में दर्द है। पर सच्चाई ये है,
1: यूपी के चुनाव में, अरे गुरु खत्म नहीं हो रहा आपका,
0: अरे एक मिनट, अरे सीट आती जाती रहती है, लेकिन आज नीट का सीट जो जब बेच रहे हैं,
1: गुरु खत्म नहीं हो रहा आपका,
0: अरे 10 सेकंड लास्ट,
1: अरे इतना सीट भी ले आते हैं,
0: ये जो पूरा कहानी है ना, आजकल जो है आजकल मस्त राम, एक मिनट, अरे सीट आती जाती रहती है, लेकिन आज नीट का सीट जो जब बेच रहे हैं, बेचना बंद करें, मस्त राम मस्ती में और आग लगे बस्ती में, आजकल यही इनका नारा है, यही है मॉडल है इनका, यही मॉडल अपनाए हुए हैं नौजवानों के भविष्य को, में आग लग जाए इनको इससे कोई चिंता नहीं, इसे सिर्फ राहुल जी का चिंता है। राहुल जी की चिंता बंद कीजिए, देश के नौजवानों की चिंता कीजिए, विद्यार्थियों की चिंता कीजिए।
10: निशानी यफ कहू कौली बिरादरा ने हिंद, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू, भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय श्री राम। आदरणीय अंजना जी, स्वामी विवेकानंद ने एक बात कही थी, इस्लामी शरीर और वेदांती मस्तिष्क भारत के विकास की आशा है। मैं स्वामी विवेकानंद की उस भविष्यवाणी का मूर्त रूप हूँ, मेरा शरीर एक मुस्लिम परिवार से आया है किंतु मस्तिष्क में वेदांती विचार हैं। और ये सारी दुनिया जानती है अंजना जी कि मैं एक मुस्लिम परिवार में पैदा हुआ हूँ, हनुमान जी का भक्त हूँ, और इसलिए आपके प्रति मेरे मन में विशेष आदर होता है क्योंकि आपका नाम हनुमान जी की माता जी पर है। और
0: भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष आपको बनाने,
10: इन्होंने बहुत एक अच्छी बात कही कि योगी जी के मुंह से आग बरस रही है, तो विपक्ष के प्रवक्ताओं ने भी उसका समर्थन किया और मैं भी समर्थन करता हूं। वो कौन सी आग है पता है, सूक्ष्म रूप धरी सिंह दिखावा, विकट रूप धरी लंक जलावा, लंका को जलाने वाली वो आग है। उन्होंने स्पष्ट कह दिया है कि किसी रावण की लंका बचेगी नहीं, कोई कंस बचेगा नहीं, तो ये वो वाली आग है जो एक साल टोपी पहनकर आते थे, 5 साल मुसलमानों को टोपी पहनाते थे, अब समाजवादी पार्टी कांग्रेस पार्टी समझ ले कि टोपी पहनने पहनाने की राजनीति अब नहीं चलेगी, क्योंकि राहत इंदौरी ने बहुत अच्छी बात कही थी, सियासत में जरूरी है रवादारी समझता है, वो रोजा तो नहीं रखता पर अफतारी समझता है, क्योंकि मुसलमानों का वहां से वोट मिलने वाला है जी, अब वो चीज नहीं चलेगी। आदरणीय अंजना जी, कितना अच्छा माहौल रहा होगा, रघुपति कीनी बहुत बड़ाई, तुम मम प्रिय भरत ही संभाई, भारत मिलाप का कार्यक्रम चल रहा था, वहां दंगे फसाद किए गए, मंच जलाया गया, पंडाल जलाया गया, और सारी दुनिया जानती है कि मुख्तार अंसारी मुख्य भूमिका में बंदूक लेकर चल रहा था, जिसका अजय फिल्म में दिखाया भी गया कि किस तरीके से वो खुलेआम बंदूक लेकर चल रहा था। आप रोजगार की बात कर रहे हैं साहब, उस समय 2005 में जब मुलायम सिंह यादव जी की सरकार हुआ करती थी ना, बुनकरों का सबसे बड़ा केंद्र मऊ हुआ करता था और उनको बिजली नहीं मिलती थी। तब आपने रोजगारों का क्यों नहीं सोचा? तब आपने बिजली का क्यों नहीं सोचा? तब आपको मुख्तार अंसारी को डिफेंड करना था। वो समय हम सबने देखा है जब अपराधी मस्त थे और बहन बेटियां त्रस्त थी। आज की जो 35-40 साल की बहनें हैं यूपी की, वो अच्छे से जानती हैं कि वो उस समय स्कूल कॉलेज नहीं जा पाती थी। अच्छे से सब जानते हैं कि उस समय अयोध्या सुनी भगवान श्री रामचंद्र जी त्रिपाल में रहते थे और सैफई में रंगीन मस्तियां होती थी, करोड़ों रुपए खर्च होते थे, और आज अयोध्या में दीपक जल रहे हैं और सैफई सुना है। जिस संत को तुमने रुलाया, संसद में रुलाया, वो संत आज तुम्हारी छाती पर चलकर बैठा है और कहते हैं कि संत राजनीति क्यों कर रहा है। तो सुनिए, संत वो होता है जब माला की जरूरत होती है तो माला पकड़कर राम राम करता है, जब माला की जरूरत तो माला, और जब भाला की जरूरत तो भाला। यह संत होता है। वैसे संत हृदय नवनीत समाना, कहा कबीन परी कही न जाना, निज परिताप द्रवही नवनीता, पर दुख द्रवही संत सुपुनीता। अंजना जी बस आखिरी बात, अब समाजवादी पार्टी और कांग्रेस को समझ जाना चाहिए, मुस्लिम तुष्टिकरण की राजनीति अब नहीं चलने वाली।
1: चलिए इसी पर कर लेते हैं, क्या मुस्लिम तुष्टिकरण की राजनीति का अंत हो रहा? क्योंकि अखिलेश जी को भी हर मंगलवार पहले आप लोग कहते थे कि धर्म पब्लिक में दिखाने की जरूरत नहीं है, लेकिन अब अखिलेश जी भी हर मंगलवार को हनुमान जी की पूजा करने का वीडियो डालने लगे। मौलाना अंसार रजा साहब, आप अब जवाब दीजिए उनकी बातों का जो उन्होंने बात कही। आप मोर्चा संभालिए,
5: असली वाला वोट बैंक संभालिए,
1: और प्लीज एक दूसरे का अपमान मत कीजिए। अपनी बात इतनी कहिए कि तालियां आपके लिए गूंजे।
11: अंजना जी, मुझे ताली की जरूरत नहीं है, मुझे दुआओं की जरूरत है, और मैं वो बात कहूंगा जो हमारे देश की होगी। हम किसी का ना तो अपमान करेंगे।
5: साहब आप इधर आ जाइए थोड़ा, कांग्रेस के नजदीक,
11: वो कैमरे के हिसाब। मैं कांग्रेस के नजदीक रहूंगा, आपके नजदीक आऊंगा, लेकिन अभी टाइम लगेगा। सुनिए,
12: ये देखिए क्या बात करी है, मोहब्बत करेगी असर धीरे धीरे।
11: अंजना जी, एक शेर मैं पढ़ना चाहता हूं आज।
5: इरशाद
11: अंजना जी, इजाजत है?
1: इजाजत, इरशाद, इरशाद।
11: हाँ, नई जुबां नए बाजू निकाल लेता है। अब आप मेरी तरफ देखिएगा, फैज खान की तरफ मत देखिएगा, बस शेर सुनिए हमारा। नए बाजू नई जुबां नए बाजू निकाल लेता है, नई अदा नए गेसू निकाल लेता है, गमों पे इनके कभी एतबार मत करना, ये प्याज काट के आंसू निकाल लेता है। ये जिस महफिल में जाते हैं उसी हिसाब से हो जाते हैं ये, और हम कैमरा देख करके ईमान नहीं बदलते, हम कैमरा देख करके जुबान नहीं बदलते, जो कहने आए हैं वो कह के जाएंगे। हमें अपने मुल्क से प्यार है, हम ना मुख्तार अंसारी के मोहताज हैं, ना अतीक अहमद के मोहताज हैं, हम हिंदुस्तान के संविधान के मोहताज हैं। और मुख्तार अंसारी और अतीक अहमद का जो बार बार भाजपा और आरएसएस इल्जाम मुसलमानों पर लगाती है, हमने कभी उनको नेता नहीं माना, कभी नहीं। अगर माना होता तो आज हम ओवैसी के पीछे पीछे भाग रहे होते, वरना आज मैं ये चैनल पे कह के आया हूं, आज भी कह रहा हूं कि इस तरह की बयानबाजी जो 100 करोड़ हिंदुओं के लिए कोई मुसलमान करता है, धमकाने वाली, भड़काने वाली, ये गलत है। हम इसे बर्दाश्त नहीं करेंगे, ना देश का मुसलमान बर्दाश्त करेगा। हमें तालियों की जरूरत नहीं, हम थोड़ी देर के लिए हम खुश हो सकते हैं आप, लेकिन जो सच्चाई है, हमारे साथ योगी जी ने जो जुमले इस्तेमाल किए कि अब कोई हिंदू सताया नहीं जाएगा, यही जुमला उन्होंने कहा है ना, कि अब किसी पर ऐसा कुछ बोला है। देखिए,
1: यही बोला,
11: वो एक शासक है, उनके लिए हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जितनी कौमें हैं सब बराबर हैं। उनको ये कहना चाहिए था कि अब किसी भी इंसान पर जुल्म नहीं होगा। आप वोट के लिए खाली हिंदुओं को, मतलब मुसलमानों का चारा दिखा के आप हिंदुओं का शिकार करना चाहते हो? आपकी उपलब्धि क्या है 8-9 साल की, बोला करके बोल लो ना। अब आप ये कहो कि अब कोई माफिया कार पे नहीं बैठेगा, अरे साहब आप ये भी कहोगे अब कोई माफिया पार्लियामेंट में रोएगा नहीं, वो भी तो बोलो, क्यों नहीं बोलते हो? आपके लिए शासक हैं आप, आपके लिए सब बराबर होना चाहिए, तब तो कमाल है। और खाली वक्ती तौर पे हिंदुओं के वोट हासिल करने के लिए प्रभु श्री राम का मंदिर बना कोर्ट के आदेश से, बीजेपी का कोई एहसान नहीं है उसमें, कोर्ट के आदेश से बना है, और किसी मुसलमान ने कोर्ट के आदेश का कि अवहेलना नहीं की, बन गया खुशी की बात है। हम दुनिया में जाते हैं हमें खुशी होती है, हमको हिंदुस्तानी कहा जाता है, हमें अपने मुल्क पर नाज है, अपने देश पर नाज है, देश के कानून पर नाज है हमें। लेकिन जब नाइंसाफी होगी हमारे साथ तो हमें कहना पड़ेगा। आज अगर कहीं दो मुसलमान जीत जाते हैं तो उनको मिसाल बनाई जाती है, देखो साहब ये किसके साथ जीत गए, अरे यार हम भी तो भारत के नागरिक हैं, आप हमारी मिसाल क्यों नहीं देते हो?
1: ठीक है चलिए अब जल्दी से जवाब दीजिए सुधांशु जी उसके।
13: हिंदुस्तान में रहकर हिंदू हित की बात कर दी तो जान जल गई। यही लोग कहते थे कि देश के संसाधनों पर पहला हक मुसलमानों का है, और इतना ही नहीं राम भक्तों पर मैंने गोलियां चलवाई मुसलमानों को खुश करने के लिए,
11: वो चले
13: तब ठीक था। और जब यासीन मलिक जैसे आतंकवादी को प्रधानमंत्री आवास पर बुलाते थे मुस्लिम तुष्टीकरण के लिए, यह भी ठीक था। हिंदुओं के रामलीला के भरत मिलाप के मंच को जला दिया गया और योगी जी कह रहे हैं अब हिंदुओं के साथ ऐसा नहीं होगा, तो उसमें मिर्ची लग रही है। लेकिन जी यासीन मलिक को प्रधानमंत्री आवास में आप लोग बुलाते रहे, मैं हिंदुस्तान से मोहब्बत करता हूँ, इतनी मोहब्बत करता हूँ कि कभी वंदे मातरम नहीं बोलूंगा, मेरी गर्दन पर छुरी भी रख दो तो भारत माता की जय नहीं बोलूंगा। लेकिन मुझसे फिलिस्तीन की जय कहलवा लो, मुझसे ईरान की जय कहलवा लो, वो सारा बोलूंगा, लेकिन भारत माता की जय नहीं बोलूंगा, ये इनकी पॉलिसी है। और फिर कहता हूं और 50 बार कह चुका हूं, इस चैनल में देखो किसी चैनल में देखो, मैं क्या अपने सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के ट्रैक से भटका? मैंने कभी किसी का तुष्टीकरण किया?
1: ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं टॉपिक पे, टॉपिक पे टॉपिक पे आइए सर, हो गया
13: उस मंच पे,
1: अरे ये डिबेट आपके बारे में नहीं,
13: उस मंच में भी भारत माता की जय,
11: इतना बड़ा चैनल है आप, तुमको ये मुख्यमंत्री थोड़ी आगे कि तुम्हारे ऊपर डिबेट।
1: चलिए चलिए शुरू होइए, चलिए
13: मेरे ऊपर टारगेट और शेर सुना रहे हो कि भैया
14: अरे भाई रुक जाओ,
13: उस मंच पे वो बोला उस मंच पे,
14: रुक जाओ, टोपी अच्छी लग रही है आपकी, अच्छा
13: और बोलता
11: रहूंगा, तुम इतने बड़े नहीं हो कि तुम्हारे बारे में मुझे
1: बोले, सुनिए ना सुनिए,
14: भाजपा जल्दी राष्ट्रीय पदाधिकारी बनाएगी और राष्ट्रीय अध्यक्ष तक के पहुंचे, मेरी शुभकामना है इनके लिए, इतना अच्छा राष्ट्रवादी तो हमको लगता है भाजपा में आजकल बहुत कम लोग रह गए हैं। जब रोजगार पूछिएगा तो बात करेंगे घुसपैठिए का, जब आप महंगाई पे चर्चा कीजिएगा तो कहेंगे तुष्टिकरण का, जब बात कीजिएगा कि देश की अर्थव्यवस्था 12% एक साल में कैसे डॉलर के मुकाबले रुपया गिर गया, कैसे पेट्रोल डीजल आगे बढ़ गया है, तो कहा जाएगा कि खाओ मेलोडी खुद जान जाओगे। अब ये बताओ ना भाई, ये मुद्दा है, गंगा जमुनी तहजीब इस देश की विरासत रही है, आज की नहीं वर्षों की विरासत है, वहीं के रहने वाले हैं भाई साहब हमारे, क्या उस विरासत पर आप प्रश्न लगाकर सिर्फ सियासत करते हैं? महंगाई भी जो है वो भी अब महंगी हो गई है, उस पर प्रश्न पूछना आज के समय में कि महंगाई पर प्रश्न कैसे पूछा जाए, इतनी महंगाई हो गई, अरे इस पर बात कीजिए ना, आज पर जिए। 1947 में क्या हुआ, नेहरू जी ने क्या किया, गांधी परिवार ने क्या किया, वो बात का प्रश्न है, आज का प्रश्न है कि इस देश में पेट तड़प रहा है लोगों का, रोजी रोटी नहीं है, महंगाई से परेशान है घर घर का लोग, बच्चे का नीट का जो मामला चल रहा है, भविष्य बर्बाद हो रहा है, प्रश्न इस पर होना चाहिए और इस पर जवाब देना चाहिए, क्योंकि सरकार में आप 12 साल से हैं, घुसपैठिए चलाते हैं, क्या हुआ घुसपैठिया, सरकार आपकी है 12 साल से आप हैं, घुसपैठियों पर काम करने का किसने रोका था आपको? हर चुनाव आएगा, दिल्ली में चुनाव आया घुसपैठिया आया, बंगाल में चुनाव आएगा घुसपैठिया आया, बंगाल में आएगा घुसपैठिया, जहां चुनाव आएगा वहीं घुसपैठिया आएगा, जब चुनाव आएगा वहीं हिंदू मुसलमान आएगा, मंदिर मस्जिद आएगा, 80-20 आएगा, गर्मी चर्बी आएगा, ये क्या है भाई, इस देश अब इससे तंग आ गया है, देश को जो मुद्दा है आज का, उन मुद्दों पर अब बहस कीजिए और उसका जवाब दीजिए, आप सरकार में आपसे प्रश्न पूछना इस देश के एक आम नागरिक का भी अधिकार है, और उस नागरिक पूछ रहा है तो उसको क्या कहते हैं, वो पाकिस्तानी है, वो बच्चा जब पूछा तो उसको ट्रोल करने लगे आपके लोग, क्यों पाकिस्तानी एजेंडा हो गया है, जो CBSE का बच्चा पूछ रहा था प्रश्न, याद कीजिए कितना ट्रोमा में होगा आज, इन मुद्दों पर बात होनी चाहिए आज, देश का प्रश्न जो है उस पर बात कीजिए,
11: महंगाई की बात कीजिए
14: कि पेट्रोल डीजल का तेल का दाम जो आपने बढ़ाया है, इतना बढ़ाया है
15: इतने साल में एक आया रिपोर्ट 41% जो है सरकारी कंपनियां लाभ कमाई है पिछले 3 महीने में, वो पैसा कहां गया 15-16 हजार करोड़ रुपए जो कमाए, और जो प्राइवेट कंपनी को जिनको दिया था अपने रसा से तेल खरीद करके और यूरोपियन मार्केट में बेचने के लिए, वो लोग जो रुपया सस्ता तेल खरीद कर कमाए थे पिछले साल भर में, वो पैसा कहां है?
1: चलिए
15: हमारे आप पर क्यों वो खर्चा डाला जा रहा है? अभी तो कम से कम आप रोक सकते थे जब लाभ में है आपकी कंपनी। आए दिन वित्त मंत्री कहती है घाटा हो रहा है, घाटा हो रहा है, घाटा हो रहा है। एक सप्ताह में ज्यादा तेल बढ़ गया तो घाटा होने लगा। और इतने सालों से अपना सस्ता आपने लूटा है लोगों का जेब,
16: ये जोशो जुनून और खुमार में, भाई साहब जोशो जुनून और खुमार में डूबी हुई तहरीर। कितनी है इस समय महंगाई दर?
17: अब दर पर आके देखिए,
16: देख कुछ दर नहीं पता
17: आ जाते हैं,
16: इतना लंबा भाषण दे दिया है जनता नहीं पता। अच्छा चलिए
17: मत भटकाइए।
16: अब मैं इनको दूसरी बात बताना चाहता हूं, जो इन्होंने बात कही कि बड़ा गंगा जमनी तहजीब, भाई साहब गंगा जमनी तहजीब आती कहां से है? पहली बार इसका यूज कब हुआ? मौलाना साहब आप बताइए,
18: किसने बोला गंगा जमनी
16: तहजीब? इन्होंने बोला, आपके साथी ने। चलो मौलाना साहब ने एक्सेप्ट कर लिया कि गंगा जमनी तहजीब में वो कोई विश्वास नहीं करते। एक और आपको मैदान बताऊं, गंगा भी हमारी और मतलब जमुना भी हमारी और तहजीब किसी और की।
19: में ये हाल हो गया है कि हम चुप भी रहे हैं
16: तो बोल
19: तब भी बोल रहे हैं।
16: चलिए बोलिए, अच्छा बोलिए, जवाब दीजिए, कहां से आया? बोलिए ना कहां से आया?
19: सुधांशु जी ने देखिए बीजेपी,
16: अरे भाई एक लाइन में बताइए कहां से शुरू हुआ वर्ड गंगा जमनी तहजीब बजाय भाषण देने के?
19: सर मुझे
16: नहीं पता तो आप छोड़िए,
19: यूरोप
16: सुनिए ये
19: सुधांशु जी सुनिए ना, मुझे ये पता कि यूरोप में कितने का बिक रहा है, अमेरिका में कितने का बिक रहा है, हमें इतना पता है कि हमारे भारत भारतीयों के ऊपर 7 रुपए का बोझ आ गया,
16: बहुत अच्छा
19: हमको पता है।
16: इन्हें नहीं
19: और
16: पता,
19: कुछ नहीं।
16: आप सुनिए, आप सुनिए,
19: कमाल की बात है जुमलेबाजी में।
16: अरे भाई
19: 700 रुपया भी खूबी बताई जा रही है,
16: आप तो एक वर्ड बताए
19: खूबी बताई जा रही है। ये 7 रुपया देश में बढ़ाया है, 80 करोड़ लोगों को 5 किलो चना और गेहूं में उलझा के रखा हुआ है।
16: भाई साहब मौलाना साहब को ये नहीं पता था, ये कह रहे हैं यूरोप में क्या बिक रहा हमें क्या पता, मगर हिजबुल्ला मारा जा रहा है तो हमें पता, हमास मारा जा रहा हमें पता, गाजा के ऊपर हम छाती पीटेंगे, ईरान के लिए हम छाती पीटेंगे, फिलिस्तीन के लिए हम जय बोलेंगे, मगर जब कहो कि तेल यूरोप में कितना तो हमें नहीं पता। कैसे कैसे चेहरे
1: पे
16: बताना चाहता हूँ जो बात फैज खान भाई साहब ने कही थी, हकीकत में जो इन्होंने कहा कि वेदांत की आत्मा और मुस्लिम का शरीर, सबसे पहले अगर यह शब्द आया है तो औरंगजेब के बड़े भाई दारा शिकोह ने किताब लिखी मंजुबल बहरीन, यानी उस पे लिखा दो समुद्रों का मिलन, और उसने उपनिषदों का फारसी
19: में,
16: चुप रही है, चिल्लाई नहीं हो गया, बहुत बकवास हो रही लगातार, कुछ नहीं बोल रहे।
19: 2026 में आई है, औरंगजेब गया, अकबर गया, बाबर गया, 26 में आई है सर।
1: अरे
19: 26 की बात कीजिए, 26 की बात कीजिए, देश में क्या हो रहा है?
16: ए भाई मौलाना साहब, गंगा जमनी तहजीब 2026 में आई है, बोलो। अब मैं बताता हूँ गंगा जमनी तहजीब क्या है, सुनो, कान खोल के सुनो मौलाना साहब। जहाँ दजला फरात है वहाँ लड़ाई हो रही है, वांगो सिटी टैंक में वहाँ लड़ाई हो रही है, रशिया में जहाँ वोल्गा है वहाँ लड़ाई हो रही है, जहाँ यूरोप में डेन्यूब है वहाँ लड़ाई हो रही है। शांति से आप अगर नमाज अदा कर पा रहे हैं तो सिर्फ यहाँ, वरना रमजान के दौरे हुकूमत में। सुनिए, सऊदी अरब, कतर, ईरान, हर जगह का मुसलमान रमजान में डर के रह रहा था, हिंदुस्तान में वो पूरी तरह ईमानदारी से कर रहा था। बस अंतर क्या है, एक जमाने में मौलाना साहब का जो जलवाए जलाल था अब वो मलाल में बदलने लगा है, क्योंकि जो एक्स्ट्रा जलवाए जलाल था वो अब नहीं मिल रहा है, इसलिए इनको बड़ी शांति की बात। जहां तक मैं ये भी कहना चाहता हूं, देखिए साहब, इन्होंने एक बात कही थी कि मुल्ला जो है वो प्याज ज्यादा खाता, भाई साहब मुल्ला नहीं है, गैर मुल्ला ज्यादा प्याज खाता है, बहुत आंसू निकालता है, आपको बोलने की जरूरत नहीं रहती है। ये वाले जो ना गैर मुल्ला वाले, ये बहुत जबरदस्त प्याज खाते हैं आपके लिए और आंसू निकालते हैं जनता के। और इन्होंने कहा हिंदू मुसलमान, मैं पूछना चाहता हूं कांग्रेस मतलब मुसलमान, मुसलमान मतलब कांग्रेस, किसने बोला? इनके चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने, मुसलमान की ताकत कांग्रेस, कांग्रेस की ताकत मुसलमान। और रेवंत रेड्डी ने असली ऐसे नहीं बोला, ये बताइए दिल्ली में नगर निगम में कांग्रेस के कितने सभासद हैं? 9। मुस्लिम कितने? 7। असम में कितने एमएलए? 19। मुस्लिम कितने? 18। केरल में इनकी सरकार ने 5 मुस्लिम लीग के मिनिस्टर, भारत के इतिहास में पहली बार मुस्लिम लीग के 5 मंत्री। और ऐलानिया कहते हैं कांग्रेस की ताकत मुसलमान, मगर जब बचना होता है तो बगल से निकलने की कोशिश करते हैं। भाई
20: देखिए फिर वही बात आ गई ना, कि जब बात कहा जाएगा इनको कि वर्क फ्रॉम द होम तो चले जाएंगे वर्क फ्रॉम द रूम करने, और बात यहाँ की करेंगे, सच्चाई वही है। अभी भी मुद्दों पर चर्चा नहीं है। जिन मुद्दों पर हमने प्रश्न किया कि भाई विदेश नीति इतनी लड़खड़ा क्यों गई है, डिप्लोमेसी इतनी आपकी परेशान क्यों हो गई है, क्यों आज जो है हार्मुज से हमारा जो टैंकर अभी भी फंसा क्यों है चाइना का, जबकि निकल रहा है, क्योंकि हमने उस तरह की पॉलिसी अपनी नहीं बनाई।
18: न्यूट्रलिटी
20: के साथ जो हम विश्व में आज जो वैश्विक संकट इतना बड़ा है, भारत की निर्णायक भूमिका क्यों नहीं है, क्योंकि भारत के ही डिप्लोमेसी चली,
18: आ गले लग जा,
20: इससे कोई विदेश नीति चलती है। अभी गए थे ना यूएई में, चले गए इजराइल में, चले गए, युद्ध चल रहा है। सामान्य से आदमी को भी इस बात की समझ है कि विदेश नीति की अभी क्या जरूरतें हैं। एक सामान्य नागरिक को बता देगा, देश के प्रधानमंत्री को
1: नहीं, टाइम नहीं है ना, तो आप बोलते रहिए, अंत में कट जाएगा। आप बोल पाएंगे नहीं बोल पाएंगे, दो लाइन।
21: सुधांशु जी ने बहुत सारी बातें
1: कही, दो लाइन जल्दी।
21: अच्छा भाषण,
19: अच्छा आप जो दे रहे थे वो सुनना चाहिए हमें। बीजेपी जो बोले वो हम कान लगा के सुने के छूट ना जाए, और हम बोलेंगे तो दो लाइन में बोलिए, कमाल की बात।
1: नहीं नहीं, शो रोक देते हैं आपके लिए, आप बोलते रहिए, हम लोग चलते हैं। आइए
19: सर, एक चला
1: चलिए, छोड़िए,
19: क्या फर्क पड़ेगा।
1: बहुत अच्छी बात है।
22: देखिए कांग्रेस के प्रवक्ता ने जो बात कही, बंगाल में झालमुड़ी चली और फिर मेलोडी चॉकलेट भी दी गई, इनके कारण मीम बन रहा है कि मैं तो रास्ते से जा रहा था, मैं तो भेलपूड़ी खा रहा था, मैं तो टॉफी खिला रहा था, तुझको मिर्ची लगी तो मैं क्या।
1: ठीक है अजय जी, दो लाइन से।
20: देखिए सच्चाई तो यही है कि ये सिर्फ नफरती सोच के अलावा कुछ नहीं कर सकते। 12 साल में देश को जो है हिंदू मुस्लिम पर ही लाके खड़ा कर दिया है, विकास से कोई लेना देना नहीं, बच्चों के भविष्य से कोई लेना देना नहीं, देश में क्या होना चाहिए उस पर कोई लेना देना।
18: इन्होंने हिंदू मुस्लिम कहा, हम हिंदू मुस्लिम दोनों करते हैं, ये सिर्फ मुस्लिम मुस्लिम करते हैं। इनके लिए एक लाइन बोलना चाहता हूं, कश्ती भी नहीं बदली और दरिया भी नहीं बदला, पर इन डूबने वालों का जज्बा भी नहीं बदला, है शौक के सफर ऐसा, एक उम्र हुई हमने, मंजिल भी नहीं पाई, रास्ता भी नहीं बदला।
1: हल्ला बोल में इतना ही, तालियों के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। देश दुनिया के बाकी खबरों के लिए देखते रहिए।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: आपके पास दो ऑप्शंस हैं, या तो सुपरमैन बनकर फर्नीचर को भीगने से बचा लो, या E3 HDMR बोर्ड लगाकर फर्नीचर को लाइफटाइम के लिए वाटर और टर्माइट प्रूफ बना लो। E3 प्रोडक्ट्स, ये रिश्ता लंबा चलेगा।

0: feels like summer. Monte Carlo, it's the way you make me feel.
1: और भाई कहाँ गए थे घूमने?
2: जीके मैक्स।
3: वैसे रोहन पढ़ाई में कैसा है?
2: जीके मैक्स। बेस्ट पुट्टी?
4: जेके वॉल मैक्स।
2: बेस्ट पेंट?
5: जेके मैक्स।
2: बाकी सब सवालों का पता नहीं, लेकिन मोस्ट ब्यूटीफुल वॉल्स के लिए सिर्फ जेके मैक्स पेंट्स। जेके मैक्स पेंट्स, खुशियों के रंग।
6: टेबल को ऊपर से जब भी खाते हैं दबा के खाते हैं। ये भाई साहब सब पचा देते,
7: पर दिक्कत तो उन्हें आती है जो टेबल के नीचे से खाते।
8: मुल्तानी पश्मीना, अपने हक का खाओ, सब कुछ पचाओ।
9: ऊंचाई पर बने रहने के लिए जरूरी है इरादों का प्योर होना। गैलेंट एडवांस बनाते हैं ऐसा स्टील जो अंदर से है ज्यादा प्योर, ज्यादा मजबूत। गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो।
10: डायरेक्टर, द टेस्ट ऑफ सक्सेस।
11: दुनिया की सबसे बड़ी क्रिकेट लीग IPL, दुनिया के सबसे बड़े स्पोर्ट्स न्यूज प्लेटफॉर्म, 100 करोड़ से भी ज्यादा व्यूज के साथ फैंस ने जताया भरोसा। मैच एनालिसिस, मस्ती मजाक और बैंटर मेरे साथ सिर्फ स्पोर्ट्स तक। कोई नहीं है दूर दूर तक, मैदान में सिर्फ स्पोर्ट्स तक।

0: बड़ी और अहम खबर जो आ रही है वो आप बड़ी खबर सबसे पहले हम आपको बता दें, गाजियाबाद हिंदू शख्स की हत्या के मामले में पुलिस का एक्शन। साथ ही उससे पहले बड़ी और अहम खबर आपको बता दें, सीयूईटी और यूजी की परीक्षा में तकनीकी गड़बड़ी की खबर है। जानकारी है कि आज सुबह की परीक्षा में तकनीकी गड़बड़ी पाई गई है और इसके बाद बहुत सारे सवाल उठाए गए हैं। देरी से शुरू हुई है आज सुबह की परीक्षा, वैसे ही एनटीए के परीक्षा में देरी के लिए एनटीए की तरफ से माफी मांगी गई है और अब कहा जा रहा है कि 3 बजे जो एग्जाम होना था उसे 4 बजे कर दिया गया है, समय आगे बढ़ाकर 1 घंटे 4 बजे समय रखा गया है और साथ ही साथ सभी छात्रों को अतिरिक्त समय दिया गया है। परीक्षा में देरी के लिए एनटीए की तरफ से माफी भी मांग ली गई है। तो इस वक्त की बड़ी और अहम खबर हम आपको दिखा रहे हैं, सीयूईटी यूजी की परीक्षा में तकनीकी गड़बड़ी सामने आई है, इसके लिए एनटीए की तरफ से माफी मांगी गई है, 1 घंटे का ज्यादा समय रखा गया है, 3 बजे जो एग्जाम होने वाला था उस समय को अब 3 बजे से बढ़ाकर कर दिया गया है 4 बजे। ये टेक्निकल खामी बताई जा रही है, ज्यादा जानकारी इस खामी के बारे में नहीं पता चल पाई है, लेकिन एनटीए की तरफ से माफी जरूर मांगी गई है स्टूडेंट से। तो इस वक्त की बड़ी और अहम खबर हम आपको बता रहे हैं, सीयूईटी यूजी टेस्ट में गड़बड़ी को लेकर एनटीए ने माफी मांगी है, तकनीकी गड़बड़ी के कारण समय पर शुरू नहीं हो पाया एग्जाम। एनटीए ने दोपहर की शिफ्ट का टाइम बदल दिया है, 3 की जगह टाइम 4 बजे किया गया है। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ हमारे सहयोगी अंशुल जुड़ गए हैं। अंशुल, और क्या कहा गया एनटीए की तरफ से, क्या जानकारी है?
1: जी बिल्कुल, ये एक और बार ऐसा हुआ है जब एनटीए जो एग्जाम है जिसके लिए वो रिस्पॉन्सिबल है वो ढंग से नहीं करवा पाया है। नीट यूजी के बाद हमने देखा कि किस तरीके से एनटीए ने काफी बयान दिए और ये कहा कि सारे एग्जाम जो है बिल्कुल योजनाबद्ध तरीके से कराए जाएंगे और जीरो लीक पॉलिसी होगी। लेकिन वहीं दूसरी तरफ जो ये एनटीए करवाता है सीयूईटी का एग्जाम, इस एग्जाम में डीयू के छात्र जो होते हैं, जो डीयू में एडमिशन लेना चाहते हैं वो लोग बैठते हैं, तो ये एग्जाम आज सुबह 9 से 12 तक होना था, लेकिन टीसीएस का जो सर्वर था जिस पर ये ऑनलाइन एग्जाम पेपर आते हैं वो खराब होने की वजह से ये सुबह डिले हो गया, जिसके बाद छात्रों का जमावड़ा वहां पे लगने लगा और वहीं दूसरे शिफ्ट में जो एग्जाम होना था उसको भी इस वक्त डिले कर दिया गया है। हालांकि अब करीब 11:30 बजे जो ये एग्जाम 9 बजे शुरू होना था ये स्टार्ट हुआ है और ये अब 3:30 तक चलेगा और उसके बाद 4 बजे से सेकेंड शिफ्ट में जिन बच्चों का एडमिट कार्ड में टाइम है वो 4 बजे से इसे एग्जाम फिर से बड़ी गड़बड़ी सामने आते हुए दिख रही है, जहां एनटीए को ये एग्जाम बिल्कुल फुल प्रूफ तरीके से कराना चाहिए था लेकिन वो अभी तक।
0: अंशुल, और ये तो मुश्किलें बढ़ जाएंगी एनटीए जिस तरीके से, प्रधानमंत्री की इस पर बहुत बारीकी से नजर है, कोर्ट की तरफ से जिस तरीके से लताड़ लगाई गई है, साफ साफ पूछा गया है कि आखिर तह तक पहुंचा जाए, कौन इसके लिए जिम्मेदार है और ऊपर से एक और परीक्षा में ये देरी।
1: जी हाँ बिल्कुल, ये एनटीए के लिए बहुत सवाल खड़े करती है क्योंकि ये एक ऐसा पेपर था जो ऑनलाइन माध्यम से होता है, इसमें कोई क्वेश्चन पेपर प्रिंट नहीं होना होता, किसी भी तरीके की लॉजिस्टिक्स नहीं होती, उसके बाद एक बस सर्वर होता है जो सर्वर हर कंप्यूटर पर खुलता है जिसपे क्वेश्चन होते हैं, जिसपे ओएमआर शीट होती है और बच्चों को वही भरना होता है। लेकिन जिस तरीके से ये सर्वर आज फेल हो गया, ये सर्वर टीसीएस द्वारा ऑपरेट किया जाता है और एनटीए का ये कहना है कि टीसीएस के सर्वर में दिक्कत होने की वजह से जो है ये पूरा एग्जाम जो डिले हो गया है। लेकिन अब एनटीए का ये कहना है कि वो इस पूरे मामले के तहत जाएंगे और ये पता लगाने की कोशिश करेंगे कि वो क्या वजह थी जिसके वजह से जो टीसीएस का सर्वर है उसमें खराबी हो गई और बच्चों को एक बार फिर से काफी परेशानी का सामना करना पड़ा।
0: बहुत बहुत शुक्रिया अंशुल इस तमाम जानकारी के लिए आपका। आगे बढ़ेंगे और आपको दिखाएंगे नॉनस्टॉप 100।

गाजियाबाद हिंदू शख्स की हत्या के मामले में पुलिस का एक्शन, अब तक 3 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का बयान, दोषियों पर होगी सख्त कार्रवाई, पुलिस अपना काम कर रही है। गाजियाबाद हत्या पर बीएचपी का बड़ा बयान, विनोद बंसल बोले कुर्बानी दिखाने के बहाने हलाल कर दिया गया। हत्या के बाद हिंदू संगठनों में आक्रोश है, पुलिस को दिया गया 24 घंटे का अल्टीमेटम, कार्रवाई नहीं होने पर बदला लेने की धमकी। दिल्ली के जहांगीरपुरी में चाकूबाजी, 26 साल के युवक की हत्या, 3 नाबालिग लड़कों पर मर्डर के आरोप। फरीदाबाद के मस्जिद चौक इलाके में बुलडोजर एक्शन, प्रशासन

0: अवैध निर्माणों को ध्वस्त किया, पूरे इलाके में इंटरनेट बंद। यूपी वालों को महंगाई का झटका, बिजली के दामों में 10% बढ़ोतरी, 1 जून से लागू हो जाएंगी बढ़ी हुई कीमतें। मुंबई में महंगाई का झटका, 2 रुपए प्रति किलो महंगी हो गई है सीएनजी, ठाणे नवी मुंबई में 86 रुपए प्रति किलो कीमत। लखनऊ में शौर्य वाटिका का रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दौरा किया, सीएम योगी आदित्यनाथ भी मौजूद थे। बेंगलुरु के चित्रकूट में एक स्कूल में लगी थी आग, फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियों ने मौके पर पहुंचकर किसी तरह काबू पाया, किसी के हताहत होने की खबर नहीं। दिल्ली के पटपड़गंज में सीबीएसई के खिलाफ उठा लोगों का गुस्सा, ऑन स्क्रीन वार्निंग सिस्टम का, मार्किंग सिस्टम का विरोध किया गया। सीबीएसई मुख्यालय पर एनएसयूआई का धावा, नई मूल्यांकन व्यवस्था का विरोध किया गया, बोर्ड को प्रतीकात्मक तौर पर पिंजरे में दिखाया गया। उत्तर पुस्तिकाओं में गड़बड़ी और अदला बदली के आरोप, सीबीएसई की नई व्यवस्था पर छात्रों की शिकायतें बढ़ गई हैं। स्कैनिंग और मूल्यांकन में गड़बड़ी के आरोप में 13,000 से ज्यादा कॉपियां मैनुअल जांची गई। सीयूईटी यूजी परीक्षा में भी एनटीए की फजीहत, टीसीएस सर्वर में टेक्निकल ग्लिच से परेशानी, दूसरी पारी की परीक्षा के समय में बदलाव किया गया, एजेंसी ने माफी मांगी। नीट मामले पर राहुल गांधी के वीडियो के बाद गरमाई सियासत, प्रधानमंत्री मोदी पर जमकर हमला बोला। राहुल गांधी ने कहा, भारत का युवा प्रधानमंत्री मोदी पर भरोसा नहीं करता, नीट परीक्षा व्यवस्था पर भी सवाल उठाए। सोशल मीडिया पर राहुल गांधी के वीडियो को लेकर बीजेपी का पलटवार, कहा छात्रों के भविष्य पर राजनीति कर रहे हैं राहुल गांधी। नीट मामले में एनडीए ने सुप्रीम कोर्ट में दिया हलफनामा, पेन पेपर मोड में हुई थी परीक्षा, स्वास्थ्य मंत्रालय की योजना को लागू किया गया। प्रयागराज में लेखपाल भर्ती पेपर लीक के खिलाफ छात्रों का गुस्सा, दोबारा परीक्षा कराने की मांग, हजारों छात्रों ने कंपनी बाग तक निकाला था मार्च। कर्नाटक में आज कांग्रेस विधायक दल की बेंगलुरु में बैठक, डीके शिवकुमार को चुना जाएगा नेता। विधायक दल की बैठक से पहले दिल्ली में राहुल गांधी से मिले डीके शिवकुमार, 3 जून को ले सकते हैं मुख्यमंत्री पद की शपथ। दिल्ली में राहुल गांधी से मीटिंग में सिद्धरमैया ने कैबिनेट के लिए सौंपी थी सूची, सूत्रों के मुताबिक सिद्धरमैया ने अपने बेटे के लिए मांगा है पसंदीदा विभाग। सिद्धरमैया ने कांग्रेस हाईकमान को दिया समन्वय समिति बनाने का प्रस्ताव, सूत्रों से खबर, हाईकमान राजी नहीं। गुजरात दौरे पर अमित शाह ने भुज में पाकिस्तान बॉर्डर का दौरा किया, सीमा पर जवानों से मुलाकात भी की। बहराइच के प्रयागराज में अतिक्रमण पर एक्शन, सरकारी जमीन पर बने अवैध निर्माणों पर चलाया गया बुलडोजर। यूपी के जालौन में पुलिस और बदमाशों के बीच हुई मुठभेड़, गैंगस्टर शाहरुख के पैर में लगी थी गोली, 9 मुकदमों में वांछित था आरोपी। यूपी के गोंडा में पुलिस का बड़ा एक्शन, 41,60,00,000 के मादक पदार्थ नष्ट किए गए, एनडीपीएस एक्ट के तहत 898 मुकदमे दर्ज। झारखंड के धनबाद में प्रतिबंधित मांस मिलने पर बवाल हुआ, मौके पर पहुंची पुलिस पर पथराव, कई राउंड फायरिंग भी की गई। महाराष्ट्र के पुणे में जहरीली शराब से 15 लोगों की जान गई, सीआईडी को सौंपी गई है जांच, सप्लाई नेटवर्क पर नजर। पंजाब के पठानकोट में सुबह बदला मौसम का मिजाज, तेज बारिश के साथ ओले भी गिरे, गर्मी से मिली है राहत। हिमाचल के कुल्लू में पैराग्लाइडिंग के दौरान बड़ा हादसा, तेज हवाओं में फंस गया था ग्लाइडर, हाईवे पर इमरजेंसी लैंडिंग। लखनऊ के चारबाग रेलवे स्टेशन की शेड गिरने की वजह से एक्शन लिया गया, ठेकेदार पर 50,00,000 रुपए का जुर्माना, प्रोजेक्ट इंजीनियर सस्पेंड। जम्मू कश्मीर के राजौरी में सुरक्षा बलों का तलाशी अभियान, इलाके के कुछ आतंकवादियों के छुपे होने की आशंका। ओडिशा के सुब्रान में आंधी से उड़ी पेट्रोल पंप की शेड, कर्मचारियों ने भागकर अपनी जान बचाई, भारी बारिश के बाद गर्मी से राहत। सीडीएस के पद से रिटायर हुए जनरल अनिल चौहान, राष्ट्रीय महासमर स्मारक जाकर दी सैनिकों को श्रद्धांजलि, एनएस राजा होंगे नए सीडीएस। साइकिल से कोर्ट के लिए निकले लखनऊ जिला न्यायालय के जज, वैश्विक संकट के बीच ईंधन बचाने का संदेश। सहारनपुर के शाकुमुरी देवी मंदिर पहुंचे सांसद इमरान मसूद, श्रद्धालुओं से मुलाकात की, पहाड़ी चौकी एक्टिवेट करने की मांग। यूपी के झांसी में पेट्रोल पंप से कार लेकर भागा था बदमाश, टेस्ट ड्राइव के बहाने कार डीलर से मुलाकात की थी, मौका मिलते ही वाहन लेकर फरार हुआ। यूपी के कौशाम्बी में ट्रक से टकरा गई थी मोर्चरी वैन, हादसे में 6 लोग घायल हुए, शव को लेकर दिल्ली झारखंड जा रही थी मोर्चरी वैन। राजस्थान के जयपुर में धौलपुर में तेज बारिश और ओलावृष्टि से जनजीवन अस्त व्यस्त हुआ, कई इलाकों में जलभराव और बिजली आपूर्ति बाधित। उत्तराखंड में भारी बारिश और तूफान का कहर, टिहरी और धनौल्टी में फसलों को नुकसान पहुंचा, कई पेड़ भी गिरे। बागेश्वर में नदियां उफान पर हैं, बैराज के गेट्स खोले गए, प्रशासन ने सायरन बजाकर लोगों को अलर्ट रहने के लिए कहा। हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर में खराब मौसम से जनजीवन प्रभावित हुआ है, कई सड़कें बंद हैं, यातायात ठप। उत्तर प्रदेश के आगरा में आंधी बारिश में बड़ा नुकसान, पेड़ गिरे, टिनशेड उड़े और कई इलाकों में जलभराव। पश्चिम बंगाल के आसनसोल में भारी बारिश से सड़कें डूबी हुई हैं, जलजमाव से यातायात प्रभावित हुआ। छत्तीसगढ़ के बस्तर में आंधी और ओलावृष्टि से मकानों और फसलों को भारी नुकसान। प्रयागराज में भारी बारिश से कई जगहों पर जलभराव, पानी में मस्ती करते हुए नजर आए बच्चे। बिहार में तेज आंधी और बारिश का रेड अलर्ट जारी, कई जिलों में भारी बारिश की चेतावनी। मौसम विभाग ने लोगों से सतर्क रहने की अपील की, तेज हवाओं के साथ बिजली गिरने की भी आशंका जताई गई। पंजाब नगर निगम चुनाव में आम आदमी पार्टी का जबरदस्त दबदबा, 8 में से 5 नगर निगमों में भारी जीत दर्ज की। पंजाब निकाय चुनावों में आम आदमी पार्टी की सुनामी, 800 से ज्यादा सीटों पर जीत दर्ज की। मोहाली, बरनाला, बटाला, मोगा और बठिंडा में आम आदमी पार्टी ने बड़ी बढ़त के साथ जीत हासिल की है। कांग्रेस ने कपूरथला नगर निगम में बहुमत हासिल किया तो बीजेपी ने अबोहर में जीत दर्ज की। पंजाब निकाय चुनाव के नतीजों पर सियासी बयानबाजी तेज हुई, भगवंत मान ने इसे विकास की जीत बताया है। जमशेदपुर में मिठाई बनाने वाली मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में भीषण आग लगी, धुएं और लपटों से इलाके में हड़कंप मचा। जम्मू कश्मीर के रियासी में सलाल डैम के पास भीषण जंगल में आग लगी, इलाके में हड़कंप। महाराष्ट्र के भिवंडी में स्क्रैप गोदाम में लगी थी भीषण आग, मौके पर पहुंचकर फायर ब्रिगेड की गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। सूरत में पत्नी से प्रताड़ित होकर परेशान पति ने कलेक्टर ऑफिस में इच्छा मृत्यु की अपील की है, पत्नी पर लुटेरी दुल्हन होने का भी आरोप लगाया। सूरत के पॉश फ्लैट में चल रहे लेडीज जुआ क्लब पर पुलिस का छापा, फ्लैट मालिक की पत्नी के साथ 7 महिलाओं की गिरफ्तारी। अलवर में युवक ने आत्महत्या की, फेसबुक लाइव में आकर 6 लोगों को प्रताड़ित करने के भी आरोप लगाए, पुलिस इस पूरे मामले की जांच में जुटी। अलवर में करंट लगने से पति पत्नी की मौत, मौके पर मौत हुई, खेत में काम करने के दौरान यह हादसा घटा। बालोतरा में सड़क हादसे में घायल 2 युवकों की इलाज के दौरान मौत हुई, पुलिस की गाड़ी से टक्कर के बाद गई थी जान। मुजफ्फरपुर में लक्ष्मी चौक स्थित रेस्टोरेंट में किचन में लगी थी आग, शॉर्ट सर्किट से हादसा हुआ, फायर ब्रिगेड ने बड़ी मुश्किलों से काबू पाया। बेगूसराय में मॉर्निंग वॉक के दौरान लड़की को कार में जबरदस्ती बिठाकर अगवा किया गया, रेप को अंजाम दिया गया, एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया। करनाल हत्याकांड में एक आरोपी गिरफ्तार, 10 रुपए की सब्जी विक्रेता की 10 रुपए मांगने पर मारपीट कर डाली थी और हत्या कर दी गई थी। चुरू में ब्रेक फेल होने पर मोबाइल शॉप में घुस गया था ऑटो, सीसीटीवी कैमरे की तस्वीरें सामने आई। सहारनपुर में पुलिस बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई, 1 लाख का इनामी एहसान एनकाउंटर में ढेर किया गया, इंस्पेक्टर और सिपाही को गोली लगी। ग्रेटर नोएडा में पुरानी रंजिश में बदमाशों ने आधी रात घर के बाहर फायरिंग की, पुलिस ने 2 को गिरफ्तार किया। इंदौर में लॉरेंस बिश्नोई गैंग के मास्टरमाइंड राहुल सिंह राठौर को पुलिस ने किया गिरफ्तार, 25,000 रुपए का इनाम था। कानपुर के सचेंडी में गैंगरेप केस में आरोपी निलंबित दरोगा अमित मौर्य गिरफ्तार किया गया, 50,000 रुपए का इनाम था। जमशेदपुर के जुगसलाई में मिठाई की दुकान में मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में भीषण आग लगी थी, कड़ी मशक्कत के बाद इस आग पर काबू पाया गया। रांची में साइबर ठगी गैंग का भांडाफोड़, फ्लैट में चल रहा था फर्जी अकाउंट और आईडी बनाने का खेल, 5 की गिरफ्तारी। चरकीदादरी में पुलिस मुठभेड़ में टीचर ललित हत्याकांड के 2 मुख्य आरोपी गिरफ्तार किए गए, गिरफ्तारी के दौरान आरोपियों ने पुलिस टीम पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर डाली। जाला में दर्दनाक हादसा, दीवार गिरने से 2 मासूम बच्चों की मौत हुई। राजस्थान रॉयल्स को हराकर आईपीएल के फाइनल में पहुंचा गुजरात टाइटंस, रविवार को बेंगलोर से होगा खिताबी भिड़ंत। राजस्थान ने दिया था 215 रनों का लक्ष्य, गुजरात ने 8 गेंद बाकी रहते ही 3 विकेट गंवाकर हासिल किया लक्ष्य। गुजरात की जीत के हीरो बने कप्तान शुभमन गिल, 53 गेंदों पर जड़े 104 रन, पारी में जड़े 3 छक्के और 15 चौके। बेकार गई राजस्थान के वैभव सूर्यवंशी की धुआंधार 96 रनों की पारी, इनिंग्स में 7 छक्के और 8 चौके लगाए। गुजरात की ओर से रवाड़ा और होल्डर ने झटके थे 2-2 विकेट, सिराज और प्रसिद्ध कृष्णा के खाते में 1-1 विकेट। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के व्हाइट हाउस सिचुएशन रूम में ईरान डील पर अहम बैठक समाप्त हुई, 2 घंटे तक चली है बैठक। अंतिम फैसले पर अभी स्थिति साफ नहीं हो पाई है, ट्रंप बोले ईरान जल्द ही फैसला करेगा, सीज फायर बढ़ाने पर भी चर्चाएं। ईरान का आरोप, ट्रंप झूठी जीत दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, बातचीत अभी अधूरी है। ईरान अमेरिका डील पर मतभेद बरकरार है, परमाणु कार्यक्रम और हॉर्मुज को लेकर टकराव। यूएस नेवी और यूके एनटीओ ने जहाजों की जारी की है चेतावनी, हॉर्मुज में तनाव बढ़ा है, अमेरिका ने ईरान पर अवैध माइनिंग के भी आरोप लगाए। हॉर्मुज पर अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप का बड़ा फैसला, कहा हॉर्मुज में नाकेबंदी हटाएगा अमेरिका, ईरान पर जल्द किया जाएगा अंतिम फैसला। ट्रंप का यूरेनियम पर बड़ा बयान, कहा ईरान से ढूंढ निकाला जाएगा यूरेनियम, अमेरिका ईरान और आईएईए के समन्वय से यूरेनियम निकालकर किया जाएगा उसे नष्ट। ईरान के सर्वोच्च नेता मुज्तबा खामने का बड़ा बयान, कहा ईरान के दुश्मन देश अब देश में फूट डालने की कोशिश में है। अमेरिका ने ईरान से जुड़ी तेल बिक्री पर नए प्रतिबंध लगाए, दोनों ही देशों के बीच समझौते की कोशिशें जारी। हॉर्मुज पर बोली ईरान के पूर्व आईआरजीसी के प्रमुख, कहा हॉर्मुज स्ट्रेट व्यापार के लिए खुला रहेगा, हॉर्मुज को लेकर किसी भी तरह की बाधा नहीं होगी। हॉर्मुज में अमेरिकी नाकेबंदी पर बड़ा खुलासा, अमेरिकी सेना का दावा 111 जहाजों को बदलना पड़ा अपना रूट। यूएस सेंट्रल कमांड का दावा, ईरान के खिलाफ नाकेबंदी के दौरान हॉर्मुज में 20 से ज्यादा वॉरशिप तैनात की गई थी। इसराइल का बेरूत और दक्षिणी लेबनान पर भीषण हवाई हमला, इजरायली लड़ाकू विमानों से कई घरों को नुकसान। हमले से पहले इसराइल ने दक्षिणी लेबनान के कई गांवों को खाली करने का आदेश दिया, इलाके में तनाव बढ़ा। संजय दत्त की खलनायक रिटर्न्स में कमिश्नर राम के किरदार में नजर आएंगे, जैकी श्रॉफ एक्टर ने कंफर्म किया। रणवीर पर FWIC के बैन के बाद एक्टर के बचाव में सिनेमा एंड टीवी आर्टिस्ट एसोसिएशन यानी कि सिंटा संगठन की वाइस प्रेसिडेंट पद्मिनी कोलापुरी बोली हम रणवीर के साथ हैं। वरुण धवन की अपकमिंग फिल्म को दिया गया है UA 16+ सर्टिफिकेट। अभिनेता अनुपम खेर की फिल्म श्री रामभूमि की हुई आधिकारिक घोषणा, अयोध्या और राम जन्मभूमि के इतिहास पर आधारित इस फिल्म का मुहूर्त संपन्न हुआ। प्राइम वीडियो की नई वेब सीरीज द पिरामिड स्कीम का ट्रेलर रिलीज किया गया, धुरंधर दुर्ग में जस्सी का रोल निभाने वाले एक्टर परमवीर चीमा, रणबीर शौरी और शेखर सुमन मुख्य किरदार में।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा प्यार से परोस, इन एसोसिएशन विद
2: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोको।
0: और इस वक्त बड़ी और अहम खबर आपको बता दें, बेंगलुरु से जानकारी मिल रही है कि नागदेवनहल्ली के एक स्कूल में भीषण आग लगी है, चित्रकूट कौशल्य स्कूल के ऊपरी मंजिल में आग लगी है। भीषण आग लगने के बाद मौके पर हड़कंप मच गया है, आग पर काबू पाने के लिए मौके पर कई फायर टेंडर्स तैनात हैं, आग पर काबू पाने की कोशिशें लगातार जारी हैं। स्कूल की ऊपरी मंजिल पर बने ऑडिटोरियम में ये आग लगी है, गर्मी की छुट्टियों की वजह से स्कूल भवन खाली था, इसीलिए इस घटना में किसी के हताहत होने की या घायल होने की खबर नहीं है, लेकिन तस्वीरें वाकई में बहुत भयानक हैं। तस्वीरें काफी कुछ बयां करने के लिए काफी है कि कितना बड़ा हादसा होते होते टला है। शुक्र है कि छुट्टियां चल रही हैं बच्चों की, ऑडिटोरियम में आग लगने के बाद कैसे पूरे स्कूल की बिल्डिंग को इस आग ने अपनी चपेट में लिया है, तस्वीरें बयां कर रही हैं। अधिकारियों की माने तो शॉर्ट सर्किट की वजह से ये आग लगी है। कर्नाटक के बेंगलुरु की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, स्कूल के भीतर आग की भीषण तस्वीरें, दूर दूर से धुएं के गुबार और आग की लपटों को देखा जा सकता है, कई गाड़ियां फायर टेंडर्स यहां पर मौजूद हैं जो आग बुझाने की कोशिशों में लगे हुए हैं। कहा जा रहा है कि शॉर्ट सर्किट की वजह से ऊपरी मंजिल पर जो ऑडिटोरियम बना हुआ है वहां आग लगी और पूरी की पूरी बिल्डिंग को इस आग ने अपनी चपेट में ले लिया। अच्छी बात यह है कि बच्चों की अभी छुट्टियां चल रही हैं, समर वेकेशन शुरू हो चुका है, इसीलिए कोई हताहत इस अग्निकांड में नहीं हुआ। और बड़ी और अहम खबर एक और, सीएम योगी ने हिंसा को लेकर एक बड़ा बयान दिया है। लखनऊ में आपको बता दें कि शौर्य वाटिका के उद्घाटन के मौके पर उन्होंने कहा कि कोई नुकसानदायक तो हिंसा अपनानी पड़ती है। हिंसा को लेकर उन्होंने कहा कि अगर कोई नुकसानदायक है तो उसे निपटने के लिए हिंसा अपनानी पड़ती है। अहिंसा ही इंसान का सच्चा धर्म होना चाहिए। अगर समाज के लिए खतरा तो हिंसा अपनानी पड़ती है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह इस दौरान उनके साथ शौर्य वाटिका में मौजूद थे।
3: हमारी ऋषि परंपरा ने भी हमें इसी बात की प्रेरणा दी है। हम जब अधूरी बात कहते हैं तो वह अर्थ का अनर्थ करता है, लेकिन हम पूरी बात भी कहना सीखें। याद रखना, भारत की ऋषि परंपरा हमें इस बात की प्रेरणा देती है कि अहिंसा परमो धर्म, धर्म हिंसा तथैव च। यानी सामान्य जीवन में अहिंसा ही सर्वोच्च धर्म होना चाहिए, लेकिन अगर सामने वाला देश और समाज की सुरक्षा के लिए खतरा है तो उसके लिए अहिंसा नहीं चल सकती है, उसके लिए तो हिंसा ही हमें अंततः अपनानी पड़ेगी। और देश के दुश्मन के लिए यही हमारा धर्म भी है।
0: और सीबीएसई की ओएसएम नीति के खिलाफ दिल्ली में यूथ कांग्रेस का विरोध प्रदर्शन देखा गया। सीबीएसई के बाहर आपको बता दें कि एनएसयूआई के कार्यकर्ता नारेबाजी कर रहे हैं। प्रदर्शन को देखते हुए सीबीएसई कार्यालय के बाहर भारी संख्या में पुलिस बल को तैनात कर दिया गया है। वी रिजेक्ट ओएसएम, ये नारे लगाते हुए नीति को तुरंत ही वापस लेने की मांग की गई है प्रदर्शनकारियों की तरफ से। आरोप यह है कि नई व्यवस्था छात्रों के बीच भ्रम और मानसिक दबाव बढ़ा रही है। प्रदर्शन में शामिल कार्यकर्ताओं का कहना था कि ओएसएम प्रणाली से लाखों छात्रों और पेरेंट्स के बीच असमंजस की स्थिति पैदा हो गई है।
4: ओएसएम मुद्दे को लेकर एक तरफ विपक्षी दल का भारतीय जनता पार्टी और शिक्षा मंत्रालय के खिलाफ हमला जारी, उसी बीच में आपको तस्वीरें पड़पड़गंज स्थित सीबीएसई दफ्तर की दिखाना चाहूंगा, जहां बाहर देख सकते हैं कि दफ्तर के बाहर कैसे भारी संख्या में जो एनएसयूआई के कार्यकर्ता हैं यहां पर इकट्ठे हुए, हाथ में तख्तियां लेकर उनका बड़ा धरना प्रदर्शन है। क्योंकि अभी सीबीएसई के 12वीं के रिजल्ट आने के बाद देखा गया कि विद्यार्थियों में बहुत रोष था, सोशल मीडिया से लेकर सड़कों तक अब जो विद्यार्थी हैं इस मामले को लेकर उतर आए हैं। और विद्यार्थियों का कहना है कि उनको जितने उनकी उम्मीद से नंबर थे कम मिले, फिर उसके बाद जब पोर्टल रिवैल्यूएशन के लिए खोला गया उसमें भी बहुत सी दिक्कतें पाई गई, कई बच्चों की जो शीट थी वो ब्लर निकली, जिसके कारण देखा गया कि उनको बहुत कम नंबर मिले। उस सब को लेकर मैं आपको तस्वीरों में दिखाना चाहूंगा कि एनएसयूआई के जो कार्यकर्ता हैं यहां पर इकट्ठे हुए हैं। हमारे साथ विनोद जाखड़ है।
5: सर, जिस तरीके से सीबीएसई आज एक भ्रष्टाचार का अड्डा बन गई है और ये समझ नहीं आ रहा है, अभी तक देश के शिक्षा मंत्री छात्रों के सामने आके बात नहीं कर रहे हैं, केवल प्रिंसिपल्स को एक टूलकिट दिया गया है कि आप जाइए ओएसएम की प्रणाली कितनी अच्छी है इस पे वीडियो बनाइए और छात्र छात्राओं से भी वीडियो बनवाइए। मैं ये कहना चाहूंगा ओएसएम प्रणाली इसलिए लाई गई है कि कुछ शिक्षा मंत्री और उनके लोग शामिल हैं, क्योंकि ये प्रॉफिट और लॉस का काम था।
4: थे विनोद झाकड़ राष्ट्रीय अध्यक्ष एनएसयूआई, तस्वीरों में आपको दिखाना चाहूंगा कि हाथ में एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं ने तख्तियां पकड़ रखी हैं जिसपे आप पढ़ सकते हैं कि हेल्पलाइन नंबर भी एनएसयूआई ने जारी किया है, क्योंकि 18 लाख के आसपास देखा गया जो विद्यार्थी थे 12वीं का सीबीएसई की जो परीक्षा है उसमें बैठते हैं, फिर उसके बाद उनका सीधा आरोप सीबीएसई पर कि जो ओएसएम सिस्टम के कारण उनके नंबर कम हो गए, फिर इवैल्यूएशन के लिए जब पोर्टल खोला गया उसमें बहुत सी दिक्कतें पाई गई और उसके बाद अब विपक्ष का।
0: और इस प्रदर्शन को देखते हुए सुरक्षा के भी चाक चौबंद बंदोबस्त किए गए हैं ऑफिस के बाहर। एक छोटे से ब्रेक लिए रुकेंगे, आप बने रहे हमारे साथ, देखते रहे आज तक।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोस।
2: इन एसोसिएशन विद
6: भारत।
7: दिस इज द साउंड ऑफ जैक बज कटिंग हिज वे टू अ स्मॉल फॉर्च्यून। टू जैक, एवरी टाइम ही कट्स हिज ओन हेयर, दैट्स 50 बक्स राइट इन हिज पॉकेट। If Jack sees DIY buzz cuts as a saving strategy, Wells Fargo is right behind him. And with their mobile app, tracking his savings is easy.
8: Oh, ouch.
7: However you make money work, we can work with that.
9: Mobile carrier's message and data rates may apply. Wells Fargo Bank N.A. member FDIC.
10: Tune in's How To. A brief look at all the special functions and things you might not know we have.
11: Missed out on your latest podcast episodes? Don't worry, TuneIn has got you covered. Not only can you catch up and stream all the episodes you missed, but we can remind you when the next episode airs, so you don't miss a thing. Just favorite the podcast you love. All new episodes will appear on the homepage. Nice, right?
6: Call something classic, you've got to mean it. And that's why when we say TuneIn's exclusive classic hip-hop station is the real deal, we mean it. From golden age gems from OGs like Tupac and Biggie to chart-topping bangers from the biggest artists of all time like Jay-Z and DMX, there's a little something for every hip-hop fan on this station. Ready to find your flow?
8: It's your boy,
6: just
8: Jay-Z.
6: Search classic hip-hop or tell your device to play classic hip-hop on TuneIn to listen. The music you love is all right here on TuneIn, bringing you good vibes and the hottest hits. But are you ready to amp things up even more? Just upgrade to TuneIn Premium for all of our exclusive music channels, completely commercial-free. So you get more of today's hits. More country roads. And everything else. Hear it all here, commercial-free, on TuneIn.
1: Presented by Patanjali Gaay Ka Ghee. Lagaye swaad aur sehat ka tadka har maa ka bharosa, pyar se parosa.
12: In association with
2: Bharat ki apni electric sawari, Sokudo.
1: Hexa Organic, radiant skin and nourished hair, pure Ayurvedic beauty.
7: This is the sound of Jack buzz cutting his way to a small fortune. To Jack, every time he cuts his own hair, that's $50 right in his pocket. If Jack sees DIY buzz cuts as a saving strategy, Wells Fargo is right behind him. And with their mobile app, tracking his savings is easy.
13: Oh, ouch.
7: However you make money work, we can work with that.
9: Mobile carriers, message and data rates may apply. Wells Fargo Bank, N.A., member FDIC.
14: The biggest classic rock hits do just that. They hit hard. And on TuneIn's classic rock hits, you'll find only the best in high-octane awesomeness. We're talking rock gods like Led Zeppelin, Kiss, AC/DC, Lynyrd Skynyrd, and so many more. So for those of you about to rock, search classic rock hits or ask your smart device to play classic rock hits on TuneIn.
6: The music you love is all right here on TuneIn, bringing you good vibes and the hottest hits. But are you ready to amp things up even more? Just upgrade to TuneIn Premium for all of our exclusive music channels, completely commercial-free. So you get more of today's hits. More country roads. And everything else. Hear it all here, commercial-free, on TuneIn.
15: Looking for an app to hear all of your favorite music, news, sports, and more? We've got all of your audio all in one place, right here on TuneIn. Play your favorite stations like K Buena, ESPN Radio.
16: How they looked after game one.
17: I mean, they were frustrated.
15: The Daily.
18: I'm Sabrina Tavernisi, and this is The Daily from inside the Democratic National Convention Hall.
15: And so much more. Whatever you love listening to, you can hear it all on TuneIn.
19: शादी का किचन महके जहां गोल्डी किचन किंग मसाले हो वहां
20: गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश
21: डायरेक्टर द टेस्ट ऑफ सक्सेस
12: In association with
1: Samakul Cooler, hawa aisi chode, puri family ko thandak se jode. Samakul Cooler, life banaye wonderful.
12: Hint, bade aaram se.
2: Punjab National Bank, bharose ka prateek.
1: Cool, stylish fans, enhance home decor with beautiful fans. Sharda University, the world comes together at Sharda University. Where are you?
12: Vimal, bolo zuba kesri.
22: 11 मई आज तक पर पेपर लीक कनेक्शन का पर्दाफाश
23: नीट की परीक्षा से पहले एक गेस पेपर धड़ल्ले से मोबाइल पर बंटता है 135 सवाल उसी गेस पेपर से हूबहू मिलते हैं
24: 15 दिन पहले से पूरे देश में बंट रहा था एनटीओ को पता नहीं
22: 12 मई आज तक के खुलासे पर मुहर
25: जिम्मेदारी लेते हैं
3: कि जो हुआ गलत हुआ।
23: आज तक की खबर के बाद आज सरकार की तरफ से एक्शन हुआ, एनटीए जागी, पेपर रद्द हुआ। हमने आज तक पर लगातार दस्तक दी है, खबरदार किया है, हर दल की सरकार को जगाया है, बताया है कि पेपर लीक रोक लीजिए वरना बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ होता रहेगा।
5: जहां खबर वहां खबरदार।
8: इन एसोसिएशन विद E3 HDMR, ये रिश्ता लंबा चलेगा।
13: 25 सालों से जहां टिकी है देश की नजर, मेरे साथ फिर से शुरू हो रहा है वही सफर। ये है खबरें सात तक, देखते रहिए आज तक।
17: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाएं स्वाद और सेहत का तड़का हर माँ का भरोसा प्यार से।
25: इन एसोसिएशन विद
26: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
27: हेक्सा ऑर्गेनिक रेडियंट स्किन एंड नरिश्ड हेयर, प्योर आयुर्वेदिक ब्यूटी।

लखनऊ में एक कार्यक्रम में बोले सीएम योगी आदित्यनाथ, देश का मंत्र अहिंसा परमो धर्म, लेकिन कोई देश समाज के लिए खतरा हो तो हिंसा की नीति अपनानी पड़ती है। गाजियाबाद हत्याकांड में नामजद 3 आरोपी फरहान, आसिफ और नवाब गिरफ्तार, बकरीद के दिन कुर्बानी दिखाने के बहाने बुलाकर सूर्या को मारा, केशव मौर्य बोले बचेंगे नहीं हत्यारे।

0: आईटी टेस्ट में गड़बड़ी पर घिरा एनटीए। शिफ्ट में सर्वर में गड़बड़ी के कारण देरी से शुरू हुई परीक्षा, एनटीए ने मांगी माफी। दिल्ली में सीबीएसई मुख्यालय पर एनएसयूआई का प्रदर्शन। शाम 4 बजे कांग्रेस विधायक दल के नेता चुने जाएंगे। डीके शिव कुमार 3 जून को 8 से 10 मंत्रियों के साथ ले सकते हैं शपथ। सिद्धरमैया के करीबियों को मिल सकती है जगह। और उत्तर प्रदेश में आंधी तूफान की तबाही से अब तक 16 की मौत। अकेले बुंदेलखंड में 10 लोगों की गई जान। आज भी 40 जिलों में तेज हवा के साथ बारिश का अलर्ट।
1: हमारी दायित्व बनता है, मैं उस दायित्व से हम लोग तो मुंह छुपा नहीं सकते हैं। ये दुर्भाग्यपूर्ण घटना है, इसमें ये नहीं होनी चाहिए। हमारी मन में दुख है, खेद है, हमारे पास उसके लिए क्षमा याचना के अलावा विकल्प भी नहीं।
2: घर के भीतर के लोग हैं वो इसमें लिप्त पाए गए, जो पेपर सेट कर रहे थे वो इसमें इन्वॉल्व रहे।
1: हमने हाई लेवल इंक्वायरी कमेटी बिठाया है, अगर कोई गड़बड़ी हुई है किसी को बख्शा नहीं जाएगा। राहुल गांधी जी का एक कुंठा मन में है कि मैं क्यों प्रधानमंत्री नहीं बन पा रहा। ये एक दिवालिया मानसिकता की लक्षण है। जिस कंपनी के बारे में आप प्रश्न उठा रहे हो, आप ही के शासित राज्य में वो भी काम कर रहा है। एक भी सही विद्यार्थी के हक नहीं हनन होनी चाहिए शिक्षा माफियाओं के लिए।
2: नमस्कार, मैं हूँ श्वेता सिंह। देश के शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान हमारे साथ हैं और धर्मेंद्र प्रधान जी, मैं कह सकती हूँ कि इस समय जो शिक्षा मंत्री हैं और शिक्षा मंत्रालय है उसकी सबसे बड़ी परीक्षा चल रही है। नीट जो री एग्जाम होना है उसके लिए कैसी तैयारियां हैं आप लोगों की, किस तरह के आप लोग बंदोबस्त कर रहे हैं कि जो पिछले महीने हुआ वो दोबारा ना हो।
1: पिछले महीना जो हुआ वो दुर्भाग्यपूर्ण है, वो नहीं होनी चाहिए थी। हमारी चिंता बच्चों की मानसिक स्थिति के साथ जुड़ा हुआ है और हम जिम्मेदारी लेते हैं। तब भी मैंने कहा था, पिछले बार जब मैंने आप लोगों को मिला था और कहा था कि हम जिम्मेदारी लेते हैं, और हम जिम्मेदारी लेते हैं परीक्षा को निर्भुल करने के लिए। 21 जून को री नीट की तिथि तय हुई है। पिछले दिनों में भी नीट की एक प्रोटोकॉल है कैसे ये परीक्षा होगी, इसमें इस बार और मजबूती और स्पष्टता और सुरक्षा की व्यवस्था लाने की आवश्यकता है। इस सारे प्रबंधन के बाद इस बार जो घटना हुई या आगे कैसे ना हो उसकी जिम्मेवारी हम सभी के ऊपर है। हम पूरा सरकार की सभी घटक मिलकर होल ऑफ द गवर्नमेंट के एक अप्रोच से ये शुरू से नई अप्रोच कैसे प्रश्न पत्र तैयारी करने से लेकर परीक्षा होने तक और परीक्षा होने के बाद प्रश्न पत्र कैसे सुरक्षित केंद्र में लौट के आए, इस सारे की एक फुल प्रूफ व्यवस्था किया जा रहा है। राज्य सरकारों की मदद लिया जा रहा है, इसकी कोऑर्डिनेशन जिला स्तर तक होगी। ये स्टूडेंट सेंट्रिक एग्जामिनेशन हो, इसलिए हमने दायित्व लिया था कि बच्चों को थोड़ा तनाव मुक्त करने के लिए, बोझ मुक्त करने के लिए हमने पिछले बार की जो फीस था, जो परीक्षा कैंसिल हुई उसकी फीस हम लौटाएंगे, जो अभी की परीक्षा होगा उसको फीस माफ करेंगे, फीस नहीं लेंगे। और बच्चों को हमने अवसर दिया था, अगर वो अपना चॉइस बदलना चाहते हैं सेंटर, वो भी हमने बच्चों को दिया। लगभग अच्छे खासा 2.5-3 लाख बच्चे अपना सेंटर को भी बदले हैं, उसको भी हमने अकोमोडेट किया। एक राज्य सरकारों का मदद लेके जो 5,400 केंद्र होगा, ये कैसे सुरक्षित हो, सरकारी संस्थानों में हो, उसकी प्रोटोकॉल पूरा हो, उसकी SOP पूरा हो, उसकी सारे जिम्मेवारी उसके हम लोग पूरे अमूल चूल उसकी फिर नए सिरे से तैयारी कर रहे हैं।
2: सर, पर संभव कैसे होगा, क्योंकि जो हम देख रहे हैं उसमें तो जो घर के भीतर के लोग हैं वो इसमें लिप्त पाए गए, जो पेपर सेट कर रहे थे वो इसमें इन्वॉल्व रहे।
1: देखिए, ये दुर्भाग्यजनक घटना है, ये दुर्भाग्यपूर्ण घटना है, इसमें ये नहीं होनी चाहिए थी। ये हमारी कभी ये पिछले 24 की जो अनुभव आई, जिसके उपरांत राधाकृष्ण कमेटी बनी, राधाकृष्ण कमेटी ने जो रिकमेंडेशन किया, इसको हमने पूरा एंड टू एंड पालन करने जो शॉर्ट टर्म था उसको लगभग पूरा हमने पालन भी किया।
2: विपक्ष आरोप लगा रहे कि आपने नहीं पालन किया।
1: देखो तो सारे स्पष्ट है ना, राधा कृष्णन जी खुद एक लंबे इंटरव्यू में खुद कहा है कि लगभग जो शॉर्ट टर्म उन्होंने तीन प्रकार की रिकमेंडेशन किया था, शॉर्ट टर्म, मिड टर्म, लॉन्ग टर्म। लगभग शॉर्ट टर्म की 70 से ज्यादा रिकमेंडेशन हमने पूरा पालन किया, इसलिए
2: 70
1: से ज्यादा, इसलिए उनका 102 रिकमेंडेशन था। जो शॉर्ट टर्म रिकमेंडेशन था सारे उसको पालन किया गया, उसके बावजूद भी चूक हुई उसकी, इसके लिए हमारी मन में दुख है, खेद है, और हम बच्चों के प्रति दायित्व बांधे, बच्चों को बताते हम उत्तरदायी भी है, हम हमारे पास उसके लिए क्षमा याचना के अलावा कोई शब्द विकल्प भी नहीं है।
2: जिस पैमाने पर आप लोग तैयारियां कर रहे हैं उसमें हम देख रहे हैं कि पीएमओ की तरफ से भी कहा जा रहा है कि हमारी नजर रहेगी इस पर, मतलब देश के आपके बाकी जो कैबिनेट के सहयोगी हैं वो सब राजनाथ जी के साथ बैठकें हो रही हैं, तो यानी कि पूरा तंत्र इस समय लग गया है कि देश का भविष्य।
1: हमने कहा ना कि हम होल ऑफ गवर्नमेंट में, आप सरकार के कोई विभाग का दायित्व हो सकता है लेकिन दायित्व तो सभी के ऊपर है, इसलिए सरकार की पूरा नेतृत्व स्वयं हमारे प्रधानमंत्री, हमारे नेता है, उनकी निश्चित जानकारी में सभी चीज को किया जा रहा है, वो उसकी मॉनिटरिंग भी कर रहे हैं। लेकिन मैं आश्वस्त करना चाहता हूँ सरकार के सारे घटक, केवल केंद्र सरकार ने, राज्य सरकारों को, क्योंकि आखिर एक केंद्र तो 5400 केंद्र होगा, 1,00,000 क्लासरूम्स में परीक्षा होगी, 22,00,000 विद्यार्थी परीक्षा देंगे, ये सारे की एक कलेक्टिव अप्रोच से, सामूहिक उत्तरदायित्व से पूरा काम किया जाएगा।
2: एनटीए की भूमिका क्या चिंता का विषय बन रही है? इतनी सारी परीक्षाएं, मतलब उनकी जिम्मेदारियों का विस्तार हो रहा है, लेकिन नीट एक के बाद एक दूसरी बार, लाखों छात्रों का भविष्य।
1: देखिए एनटीए को एक बैकग्राउंड से बनाया गया था, सुप्रीम कोर्ट के आदेश पे एनटीए बनी थी, एनटीए विकसित हो ही रहा है, उसमें और भी काम बाकी है। अभी के जो एनटीए के नेतृत्व है, मेरे को भरोसा है वो लोग उसको बना पाएंगे। एनटीए एक स्वतंत्र ऑर्गेनाइजेशन है, एनटीए को हमने स्वतंत्रता दिया है अपने बिल्डअप करने के लिए, और मेरा पूरा भरोसा है जो अनुभव इन दिनों में हुई है, एनटीए भारत में एक टेक्नोलॉजी सा भी संस्था बनेगी। अभी भी एनटीए लगभग 1 करोड़ विद्यार्थियों का सालाना परीक्षा करती है, नीट हमारी एक चुनौती, इसलिए हमने इस बार शुरू से कहा था नीट को हम आने वाले सालों में कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट में कन्वर्ट करेंगे, ये पेन एंड पेपर ही एक नई चुनौती बन जाता है। इसके अलावा और भी एक मत चल रहा है कि भाई नीट को विकेंद्रीकरण किया जा सकता है, कि वो भी एक सोच समाज में है, देखते आगे आने वाले दिनों में क्या होगा। लेकिन एनटीए केवल नीट नहीं, अनेकों परीक्षा करती है, सीयूईटी करती है, जेई करती है, अनेक एग्जामिनेशन, जेआरएफ का, यूजीसी नेट का परीक्षा करती है, ये सारे परीक्षा निर्भुल भी कर रहा है, इसको आने वाले दिनों में और मजबूती करने का आवश्यकता है।
2: सर क्योंकि आपने कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम की बात की तो यहाँ पर सीबीएसई का जिक्र आ जाता है। इस बार जिस तरीके से परीक्षा हुई है, बताया जा रहा है कि 4 में से 1 छात्र को आपत्ति हुई है और रीटेस्ट के लिए उन्होंने
1: नहीं आपत्ति नहीं हुई। देखिए ये जो प्रक्रिया हुई है, इस बार उन्होंने एक मूलभूत परिवर्तन किया, सीबीएसई ने ऑन स्क्रीन मार्किंग की व्यवस्था किया। 17,00,000 विद्यार्थी परीक्षा देते हैं, 98,00,000 क्वेश्चन सेट से, आंसर शीट 98,00,000 से, इसको पारदर्शी तरीके से करने के लिए उसको डिजिटल करके ऑन स्क्रीन मार्किंग करने की व्यवस्था किया जा रही है, एक आधुनिक व्यवस्था है। अनेक यूनिवर्सिटी आज भारत में भी, अनेक संस्था अपने परीक्षा को ऑन स्क्रीन में कन्वर्ट कर चुके हैं, सीबीएसई ने उस प्रयोग को इस बार किया। आपत्ति उसमें आई है कि इसको थोड़ा और पूर्व तैयारी करनी चाहिए था, हम उसको देख रहे हैं कि इसकी इसमें तथ्य कितना, उसमें क्या किया जा सकता था, ये अभी आफ्टर थॉट ये चर्चा आ रही है उसमें। लेकिन जब इतने संख्या में विद्यार्थी परीक्षा, ऐसे भी सीबीएसई की एक पुराना प्रक्रिया है, परीक्षा के बाद विद्यार्थी को अवसर मिलता है वो अपनी पेपर्स को रिवैल्यूएशन कर सकता है, वो भी डिजिटली होता था, इसमें कोई पहली बार डिजिटल हो रहा है ऐसा नहीं। जब परीक्षा देने के बाद उनकी इसका इवैल्यूएशन इस बार ऑन स्क्रीन हुई है, लेकिन पहले भी उस पुराने पद्धति का ऑन स्क्रीन इवैल्यूएशन के बाद विद्यार्थी के मन में शंका आती थी कि मान लो मेरे और मार्क्स होने चाहिए था, वो अपना पेपर को देख पाता था। पिछले दिनों में भी लाखों की संख्या में लोग पेपर देखते थे, इस बार थोड़ा ज्यादा हुई है। लेकिन हमारी जो टेक्नोलॉजी की प्लेटफॉर्म अभी हमारी बनाई गई थी सीबीएसई की ओर से, उसमें थोड़ा ज्यादा संख्या होने से ग्लिच हुई, उसमें लोड बढ़ी, उसको संभाला गया। पेमेंट गेटवे की कुछ चुनौती था, लेकिन हमने उसमें हस्तक्षेप करके विभाग ने उसको 2 कदम हमने अभी तो आंसर शीट बच्चों के हाथ में चला गया है, 11 लाख आंसर शीट बच्चों के हाथ में गया है, 98 लाख में से 11 लाख आंसर शीट बच्चों में गया है। अमूमन उसमें हमको अनुमान है, जो ट्रेंड है, 15-20% बच्चे फिर रिवर्ट करेंगे कि मेरे को इस इम्प्रूवमेंट हो सकता है क्या, ये मेरा शंका है। इसलिए अभी भी हमारा मानना है कि एक संख्या 15-20% पहले भी आता था, इस बार भी 15-20% या 30% आ जाएगा। उसको लेने के लिए जो प्लेटफॉर्म की रोबस्टनेस है उसको बनाया जा रहा है, हमारी 4 पीएसयू बैंक को उसमें से जोड़ा गया है, वित्त मंत्री उसमें से अपना निर्देश दिए हैं, स्टेट बैंक, इंडियन बैंक, कनाडा बैंक और बैंक ऑफ बड़ौदा, ये 4 बैंक पूरा। आज मैंने भी शाम को उनके साथ बैठा था, उनका प्लेटफॉर्म और सीबीएसई की प्लेटफॉर्म दोनों की इंटीग्रेशन हो गया है, उनकी एक ड्राई रन भी हो गया है बच्चों के साथ, और उसमें आईआईटी को, 2 प्रेस्टिजियस आईआईटी को, कानपुर और मद्रास की आईआईटी को दायित्व दिया गया है कि उसकी रोबस्टनेस को चेक करना, उसकी सिक्योरिटी फीचर को चेक करना, उसकी लोड फैक्टर को चेक करना।
2: आपने आईआईटी मद्रास का नाम लिया तो एक आरोप ये भी लग रहा है कि वही तो उसके पीछे थे, मतलब जब उनके डायरेक्टर ही नए ओएसएम के पीछे थे तो उनको आखिर रिव्यू करने के लिए।
1: आप जैसे बड़े विद्वान पत्रकार श्वेता जी, थोड़ा तथ्य पे बोलना चाहिए।
2: मैं जो आरोप लग रहे हैं उनके बारे में,
1: आप आरोप पे क्यों बढ़ा रहे हो, आप तथ्य पे जाओ।
2: ये सही नहीं है,
1: ये बेबुनियाद और झूठी बात है।
2: दूसरी चीज सर, एक स्टूडेंट ने वार्निंग भेजा था हैक करके सिस्टम में, और बाद में जब ये बात सामने आई, ये फरवरी की बात थी, उसने कहा कोई एक्शन नहीं लिया गया। क्या आपको लग रहा है कि इस तरह के कंप्लेंट्स को
1: सीबीएसई को, मैंने जानकारी लिया सीबीएसई उसकी एक एक्सप्लेनेशन देता है, लेकिन उसके ऊपर भी मैंने एक आईआईटी की विशेषज्ञ टीम को लगाया, इसे सारे आरोपों को एंड टू एंड एक बार वेरिफिकेशन करना पड़ेगा। हमारी कोई भी नागरिक उस पर प्रश्न उठाते थे, हमारी प्रजातंत्र में हमारी दायित्व बनता है उसको संतुष्टि के उत्तर देना। ये जो विषय है उसमें से आगे चल के ग्लिच भी हुई, पेमेंट गेटवे में भी चैलेंज आया, ये सारे उसमें कोरिलेट करके हमने एक हाई लेवल इंक्वायरी कमेटी बिठाया है, उसको हम तहकीकात कर रहे हैं, उसको हम तह तक जाएंगे, उसकी जिम्मेवार लोगों को हम बात करेंगे।
2: अब राहुल गांधी जो आरोप लगा रहे हैं और रोज वो सीबीएसई के मुद्दे को उठा रहे हैं, वो कहते हैं कि जो सीबीएसई में कोएम्प्ट की भूमिका रही वो पहले से संदिग्ध थी, दूसरे नाम से वो संस्था रही और आप लोगों ने बिना बैकग्राउंड चेक किए उसको।
1: देखिए, मैं सीबीएसई की प्रक्रिया अपनाया है, उसमें भी मैंने आज सीबीएसई जब गया था सीबीएसई के अंदर मैं कह के आया हूँ, ये सारा विषय को पारदर्शी तरीके से दिखने की आवश्यकता है, इसकी प्रोक्योरमेंट पॉलिसी, उसकी प्रोक्योरमेंट की डिसीजन, ये सारे अभी पारदर्शी तरीका से होना चाहिए, हमारी अपेक्षा है। अगर कहीं आपत्ति आ रहा है, कहीं आरोप आ रहे, उसको भी अनुसंधान किया जाएगा, उसमें किसी को छोड़ा नहीं जाएगा, इसमें कोई भी जिम्मेवार होगा, वो कंपनी हो, सीबीएसई के अंदर से कोई हो, बाहर से कोई हो, या सरकार के अंदर से कोई होगा, जो इस प्रकार की अगर कोई गड़बड़ी हुई है किसी को बख्शा नहीं जाएगा। बाकी रहा राहुल गांधी जी के अप्रोच, मैंने आरोप के ऊपर, मैं उनकी एक आदत, उनको एक बीमारी आ गई है, भारत में कोई भी परिवर्तन को सज्ज नहीं कर पाते हैं। उन्होंने एसआईआर को विरोध किया था, उन्होंने ईवीएम को विरोध किया था, उन्होंने भारत की अनेकों व्यवस्था को, भारत की डिजिटल इंडिया को विरोध करते हैं। ये एक दिवालिया मानसिकता के लक्षण है, आपको मैं क्या कह पाऊंगा, उनकी एक अंडरस्टैंडिंग है विषयों के ऊपर। बाकी रहा कोई स्पेसिफिक कंपनी के बारे में वो कह रहे हैं, मेरे शाम तक मेरे पास जो जानकारी है, उन्हीं के शासित 2 राज्यों में, कर्नाटक और तेलंगाना में, वो संस्था 5 शिक्षानुष्ठान की ओएसएम काम कर रहा है।
2: अच्छा,
1: उनकी वेबसाइट चला रहे, उनकी सॉफ्टवेयर पोर्टल चला रहे। इसलिए तो ये तो कोई, कभी राहुल गांधी कोई विषय कुछ बोलते हैं तो फैक्ट चेक तो करते ही नहीं, बेबुनियाद बातों पे वो एक दुनिया गढ़ बैठते हैं। ये उनकी मिथ्या कहने का अभ्यास गति, उनका एक और एक प्रमाण मिला,
2: क्योंकि उन्होंने कहा कि आप चाहे उनके ऊपर जो भी आरोप लगा लें वो सवाल पूछते रहेंगे।
1: नहीं, और सवाल बुनियाद के आधार पे होनी चाहिए, आप इसकी तो उत्तर दो, जिस कंपनी के बारे में आप प्रश्न उठा रहे हो, आप ही के शासित राज्य में वो भी काम कर रहे हैं, आज भी है 28/5/26, आज भी वो काम कर रहा है।
2: अच्छा,
1: तो उसमें आप क्या उत्तर दोगे, कभी आपकी खुद की गरेबान में थोड़ा आपने झांक के देखा है क्या? राहुल गांधी जी का एक कुंठा मन में है कि मैं क्यों प्रधानमंत्री नहीं बन पा रहा हूं, प्रजातंत्र में आप नेता प्रतिपक्ष हो, आपकी प्रश्न पूछने का अधिकार है। हम उस प्रश्न से बिल्कुल नतमस्तक होकर उसको सुनना चाहेंगे, उसकी एक तार्किक उत्तर भी देने का कोशिश करेंगे अगर हमारे पास तथ्य है तो। लेकिन बेबुनियाद बात की, असभ्यता की कोई उत्तर नहीं।
2: ये जो तमाम मुश्किलें चल रही हैं, गड़बड़ियां आ रही हैं, एक शिक्षा मंत्री के तौर पर निजी रूप से आपको सबसे ज्यादा किस बात को लेकर चिंता हो रही है? हमने देखा कि बहुत जल्दी डेट आपने दिया नीट री एग्जाम के लिए, क्या व्यथा थी मन में? जिसके
1: मन में ये व्यथा भी तो थी और दायित्व भी था। हमने उसी दिन भी कहा था हमारा दायित्व बनता है, एक भी सही विद्यार्थी के हक नहीं हनन होनी चाहिए शिक्षा माफियाओं के लिए, परीक्षा माफियाओं के लिए। समाज में एक कुप्रथा आ चुकी है, कुछ लोगों की पैसे की ताकत में वो चाहते हैं, वो मन उनका मन में आ गया है, हम व्यवस्था को तोड़ पाएंगे, व्यवस्था का हमने गेम कर सकते हैं। उन्होंने किया, उसको मैं स्वीकार करता हूँ। ये कुप्रथा है, सोशल इविल है, उसमें एक बड़ा व्यापक जन जागृति करके आखिर इसमें पैसा कौन खर्चा करता है? कुछ पेरेंट्स तो खर्चा करते हैं, कुछ बच्चों के मन में लोभ तो आता है कि मेरी योग्यता हो ना हो लेकिन मैं एंट्री कर जाऊं, इसलिए वो इस शॉर्टकट और रास्ता ढूंढते हैं ना। इसलिए हमारी जिम्मेदारी था कि एक भी सही विद्यार्थी का हक मारी ना हो, इसलिए हमने इसको स्वीकार किया। नेतृत्व ने उसको तुरंत फैसला किया कि उसको री एग्जामिनेशन करे, सीबीआई को सौंप दिया जाए। सीबीआई तेजी से, मेरा सीबीआई पे पूरा भरोसा है। मैं तो सीबीआई से ये भी अपेक्षा करूं, मैं माननीय गृह मंत्री जी को ये भी अनुरोध किया हूं कि इसकी जो हमारी न्यायिक व्यवस्था में सीबीआई की एक स्पेशल कोर्ट के माध्यम से, सीबीआई ऐसे ही एक स्पेशल कोर्ट है लेकिन इसकी फास्ट ट्रैक ट्रायल हो, जो दोषी पाए जाए उसको दृष्टांत मूलक उनके ऊपर कार्रवाई होने से समाज में कुप्रथा बंद होने का थोड़ा प्रयास हम करेंगे। हमने हमारी आज की हमारी एक ही दायित्व है कि जो बच्चे जो मानसिक तनाव में, मैं आज कुछ बच्चों के साथ री नीट की जो सीबीएसई के जो री वैल्यूएशन की अप्लाई करने वाले बच्चों के साथ शाम को अभी एक बार थोड़ा अनुभव ले रहा था, उसके ट्रायल रन के बाद अनुभव ले रहा था, मैं चिंतित हो जाता था, मेरे दायित्व और मेरी जिम्मेदारी और बढ़ जाता है। हमारी दायित्व बनता है, मैं उस दायित्व से हम लोग मुंह छुपा नहीं सकते हैं, दायित्व हम लिए हैं, इसलिए त्वरित हमको व्यक्तिगत निंदा अपमान आलोचना ये कोई आपत्ति नहीं है, और उस आलोचना से हमको रास्ता मिलता है सुधार करने के लिए। हमारी दायित्व है एक सुधार की रास्ता स्थापित करना।
2: हो जाएगा सर, क्योंकि हमको लगता है ना कि देखिए देश हमारा कहां कहां नहीं, क्या क्या जो असंभव चीजें हैं वो संभव कर रहे हैं हम, लेकिन एक पेपर लीक से नहीं रुक पा रहा है। और मैं इसे नेगेटिव तरीके से नहीं, मैं एक उम्मीद से भरकर पूछ रही हूँ आपसे, वो दिन आएगा।
1: मैं आपको आश्वस्त करता हूँ, इस पेपर कंप्रोमाइज को हम खत्म करके रहेंगे। इस बार नीट हमको एक अवसर दिया है एंड टू एंड उसको और सुचारू रूप से व्यवस्थित करने के लिए, हम पूरा सरकार के सभी घटक उस काम पे लगे।
2: बहुत धन्यवाद सर हमसे बातचीत करने के लिए। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, जो कि एनटीए सीबीएसई नीट हर मुद्दे पर बोले हैं। अभी के लिए इतना ही, देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए आज तक।
3: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
4: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
5: ये भोपाल के अर्बन एरियाज के फोटोग्राफ्स हैं जिनमें टाइगर का मूवमेंट है,
2: तो इसीलिए इन्हें अर्बन टाइगर्स कहा जाता है।
6: अलर्ट रहना भाई, कभी भी दिख सकता है।
2: वो पीछे पीछे पीछे पीछे पीछे बिल्कुल साइड में बैठा है।
7: हम हजार बार जाएंगे तो हम किसी को नहीं देख पाएंगे, लेकिन हजारों आके हमें देखते हैं।
8: To 15-year-old Harper, buying an $80 vintage rock t-shirt is a great investment. To Harper's mom, this logic has a few holes in it. So she helped Harper open a Wells Fargo Clear Access banking account. With no overdraft fees and tools to track spending, Harper's learning, one heavy metal tee at a time. However you make money work, Wells Fargo can work with that.
9: Terms apply. Visit wellsfargo.com/deposit disclosures for fees and details.
10: The music you love is all right here on TuneIn, bringing you good vibes and the hottest hits. But are you ready to amp things up even more? Just upgrade to TuneIn Premium for all of our exclusive music channels, completely commercial-free. So you get more of today's hits. More country roads.
11: Thank God I get to wake
10: and everything else. Hear it all here, commercial-free, on TuneIn.
3: Presented by Patanjali Dant Kanti Toothpaste, complete oral health ka sach. In association with
4: Bharat ki apni electric sawari, Sokudo.
12: Hexa Organic, radiant skin and nourished hair, pure Ayurvedic beauty. Durable pipes, fittings and tanks, a complete range of sanitary solutions.

0: क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच,
2: इन एसोसिएशन विद
3: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो,
4: ड्यूरेबल पाइप्स, फिटिंग्स एंड टैंक्स, अ कंप्लीट रेंज ऑफ सैनिटरी सॉल्यूशंस।

लखनऊ में कार्यक्रम में बोले सीएम योगी आदित्यनाथ, अहिंसा ही इंसान का परम धर्म, लेकिन कोई देश समाज के लिए खतरा है तो हिंसा की नीति अपनानी पड़ती है। नीट सीबीएसई के बाद सीयूईटी टेस्ट पर घिरा एनटीए, शिफ्ट में सर्वर में गड़बड़ी की वजह से देरी से शुरू हुई परीक्षा, राहुल गांधी बोले पूरी परीक्षा व्यवस्था तबाह। शाम 4 बजे कांग्रेस विधायक दल के नेता चुने जाएंगे, डीके शिव कुमार 3 जून को आज से 10 मंत्रियों के साथ ले सकते हैं शपथ, सिद्धरमैया के करीबियों को मिल सकती है जगह। राबड़ी देवी के सरकारी आवास खाली कराने पर छिड़ी जंग, बिहार सरकार के अल्टीमेटम में पूर्व सीएम का खुली चुनौती, फोर्स बुलाकर खाली करा ले, डिप्टी सीएम बोले नियम मानना होगा।

0: से कहा जा रहा है और क्या परिवार की मांग है?
1: जी, परिवार की बस एक ही मांग है कि ये जो 7 के 7 आरोपी है, इनके साथ सबसे स्ट्रिक्ट एक्शन होना चाहिए। परिवार ये कह रहा है कि इनके साथ एनकाउंटर तक होना चाहिए और इसके ही नारे यहाँ पर जो है खोरा में इस वक्त लग रहे हैं। अगर मैं आपको तस्वीरों में दिखाऊं तो यहाँ हर मिनट जो भीड़ है वो बढ़ते जा रही है। एक के बाद एक हिंदू पक्ष के लोग जो है वो यहाँ पहुंच रहे हैं और एक के बाद एक नारेबाजी भी चलती जा रही है। लेकिन आप देखें जिस तरीके से पुलिस भी यहाँ मौजूद है, अभी इलाके के DCP भी वो यहाँ पहुंचे और उन्होंने मीडिया से बात करते हुए अभी ये हमें बताया है कि जो ये पूरा विवाद था, ये बाइक चलाने को लेकर के विवाद शुरू हुआ था, उसके बाद ये हत्या हुई। लेकिन जो 7 लोग हैं, 7ों को आइडेंटिफाई कर लिया गया है, लेकिन अभी तक इनमें से बस 3 को ही हिरासत में लिया गया है। तो परिवार का ये कहना है कि अभी भी कहीं ना कहीं जब तक ये सारे लोग अरेस्ट नहीं हो जाते, तब तक जो पार्थिव शरीर है उसका जो अंतिम संस्कार है वो ये लोग नहीं करेंगे, जिसके वजह से इलाके में एक बार फिर से तनावपूर्ण माहौल जो है वो बनता हुआ दिख रहा है। लगातार नारेबाजी हो रही है, लगातार पुलिस प्रशासन के खिलाफ लोग जो है वो नारे लगा रहे हैं, लेकिन अभी तक जो सफलता मिलनी चाहिए थी गाजियाबाद पुलिस को, वो सफलता कहीं ना कहीं मिलती हुई नहीं दिख रही। वहीं दूसरी तरफ अगर मैं आपको दिखाऊं तो जिस हिसाब से यहाँ पुलिस बल तैनात है, आपको ये देखकर लगेगा कि यहाँ जो सिचुएशन है वो कभी भी बिगड़ सकती है, क्योंकि जिस तरीके से लोग यहाँ पर नारेबाजी कर रहे हैं, जिस तरीके से लोगों में गुस्सा है, आक्रोश है, गर्मी है यहाँ पर, तो कहीं ना कहीं जो लोगों का गुस्सा है वो कभी भी भड़क सकता है। और अब ये देखना होगी गाजियाबाद पुलिस कितनी जल्दी से जल्दी जाकर के इन सारे जो आरोपी है इनको अरेस्ट कर पाए, ताकि यहाँ जो परिवार में जो गुस्सा है कम से कम वो कहीं ना कहीं ठंडा हो पाए और उसके बाद जो आम जनता में गुस्सा है वो कहीं ना कहीं शांत हो पाए।
0: बहुत शुक्रिया अंशुल इस तमाम जानकारी के लिए। तो लोगों में बहुत ज्यादा गुस्सा है और इस घटना से कुछ देर पहले का वीडियो भी सामने आया जिसमें कई लड़के सूर्या को घेरे हुए नजर आ रहे हैं। इस खास रिपोर्ट को देखिए आप।
2: गहरे नारंगी रंग की शर्ट पहने एक लड़के को 4 से 5 लड़कों ने पकड़ रखा है। सफेद शर्ट पहना लड़का उसे छुड़ाने की कोशिश कर रहा है। कुछ लड़के आसपास भी खड़े हैं। इन सब के बीच गुट में जुटे लड़के नारंगी रंग की शर्ट पहने लड़के को छोड़ नहीं रहे हैं। ये तस्वीरें गाजियाबाद के खेड़ा इलाके में बेरहमी से हुई हिंदू नाबालिग सूर्या की हत्या से ठीक पहले की बताई जा रही है, जहां मामूली विवाद में मुस्लिम दोस्तों ने चाकुओं से गोदकर 17 साल के सूर्या की जान ले ली।
3: हम लोग धूमधाम के आए थे, 2-4 लड़के खड़े थे, असद, आतिफ, फरहान, 3-4 लड़के और खड़े थे उनके साथ, उनका नाम नहीं मालूम। वो नशे वशे में थे, उन्होंने हमारे साथ गाली गलौज करी, गाली गलौज से बात मारपीट भी उतर आई, हाथापाई होने के बाद सब कुछ बातचीत खत्म होने के बाद हम लोग साइड चले गए। उसके बाद वो असद नाम का लड़का वो चक्कू लेके वापस आता है, कहता है कि बातचीत कर लेते हैं, लड़ाई झगड़े से कोई फायदा नहीं है। वो उसे बातचीत के बहाने वापस गली में लेके गया, गली में जाने और उसने चक्कू निकाला और सूर्य के पेट में मार दिया। उसके बाद हम लोग वहाँ से, वो तो भाग गया असद, हमने सूर्य उठाया, हॉस्पिटल लेके आया जल्दी, यहाँ पे इमरजेंसी में एडमिट कराया हमने।
2: बकरीद के मौके पर दिन दहाड़े हुई ये वारदात जितनी सनसनीखेज है, आरोप उतने ही संगीन। दावा हो रहा है कि सूर्या की हत्या से पहले आरोपियों ने उससे पूछा था कि कभी उसने बकरा कटते देखा है। इनकार करने के फौरन बाद उस पर चाकुओं से हमला बोल दिया।
4: इन लोगों ने फोन करके धोखे से मेरे बेटे को बुलाया और जाके ही आ जाओ ईद मिलते हैं, ठीक है। फिर मेरे बेटे से कहा तुमने बकरा कटते हुए देखा है, मेरा बोला मैंने नहीं देखा है, ऐसे कहकर एकदम चाकू उसके पेट में डाल के ऐसे घुमा दिया है।
2: सूर्या पर हमले के बाद मौके पर चीख पुकार मची, जिसे सुनकर सूर्या का भाई यश चौहान और उसकी मां मौके पर पहुंचे। तब तक सभी आरोपी फरार हो चुके थे। जख्मी हालत में सूर्या को अस्पताल ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान उसने दम तोड़ दिया। हिंदू लड़के सूर्या की हत्या के बाद गाजियाबाद के खेड़ा में भारी तनाव है। हिंदूवादी संगठन प्रदर्शन कर रहे हैं, हालात को देखते हुए भारी पुलिस बल की तैनाती की गई है।
5: एक हिंदू परिवार के लड़के को बाहर बुलाया जाता है और उसे 5 से 6 लोग पकड़ते हैं और उसे बकरा बताकर काटने का काम करते हैं, उसके पेट में 6 से 7 वार करते हैं, उसकी हथेलियां तक बाहर आ जाती हैं। किस तरह की स्थिति खोड़ा की हो गई है। हम लोग बार बार कह रहे हैं कि हिंदू सुरक्षित नहीं है, पलायन करने की स्थिति में है, क्योंकि तरुण खटक की जो आग थी अभी तक नहीं बुझी, मगर खोड़ा में दोबारा ऐसे तरुण खटक जैसी घटना हो चुकी है।
2: उधर सूर्या की मौत के बाद माँ का रो रो कर बुरा हाल है। परिवार वाले सूर्या के हथियारों को सख्त से सख्त

0: सजा की मांग कर रहे हैं।
1: किसी चीज के बोले बात नहीं हुआ था, आज आ गई करने के बाद बुलाया था।
2: बेटे से कब मिली थी लास्ट टाइम?
1: मैं सुबह मिली थी 7 बजे, मैं ड्यूटी नहीं थी भैया।
0: मामले की गंभीरता को देखते हुए कुछ संदिग्धों को हिरासत में लिया गया है, पूछताछ हो रही है, पुलिस आरोपियों की धरपकड़ की कोशिश में लगी है। गाजियाबाद में हुई इस वारदात के बाद स्थिति तनावपूर्ण बनी हुई है। गाजियाबाद से मयंक कौर के साथ अंशुल सिंह आज तक।
3: और गाजियाबाद में सूर्या हत्या के मामले में डेप्यूटी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने भी बड़ा बयान दे दिया है। केशव प्रसाद मौर्य ने कहा है कि हत्यारा कोई भी हो उसे छोड़ा नहीं जाएगा, उसे बख्शा नहीं जाएगा, उसे खोज निकाला जाएगा। हत्या करने वालों को फांसी के तख्ते पर चढ़ाने के लिए जो भी कानूनी कार्रवाई होगी वो की जाएगी।
4: हत्यारा कोई भी हो वो बख्शा नहीं जाएगा, उसको खोज निकाला जाएगा और हत्या करने वाले को फांसी पर चढ़ाने के लिए जो कार्रवाई होती है कानूनी, वो कानूनी कार्रवाई की जाएगी। सरकार कानून व्यवस्था को लेकर के बहुत गंभीर है और जिन लोगों ने ऐसा अपराध किया उनके खिलाफ कठोर से कठोर कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
3: गाजियाबाद में हुई सूर्या की हत्या पर सियासत भी अब गर्मा चुकी है।
5: अखिलेश यादव जी को उस पर बोलना चाहिए कि उनके वोटर हैं उन लोग ऐसी हत्या क्यों कर रहे हैं। कहीं मुसलमान मार रहा है तो कहीं यादव मार रहा है। उनका MOI जो फैक्टर है इस समय पूरे प्रदेश में आतंक मचाया हुआ है। जो PDA ये बोलते हैं PDA इनका असफल है सिर्फ MOI फैक्टर को दबाने के लिए, लोगों का दिमाग भटकाने के लिए कि हमको सिर्फ MOI कहा जाता था, इस नाते PDA चिल्ला रहे हैं।
6: देखिए समाजवादी पार्टी समझती है कि हिंदू मुसलमान शब्दों का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए और जिन लोगों ने भी अपराध किया है चाहे वो किसी धर्म किसी जात के हों उन पे कार्रवाई होनी चाहिए, सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, कानून के मुताबिक कार्रवाई होनी चाहिए। उत्तर प्रदेश में लगातार अपराध रुक नहीं रहे हैं, चाहे वो राजधानी लखनऊ की बात हो, अभी 3 दिन पहले प्रॉपर्टी डीलर को ही हत्या कर दी गई, अब ये गाजियाबाद की घटना है। लगातार उत्तर प्रदेश में हत्याएं हो रही हैं, लूट हो रहे हैं, बलात्कार हो रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी की सरकार कानून व्यवस्था देने में पूरी तरह से विफल है।
3: और आपको बता दें कि सीएम योगी ने हिंसा को लेकर एक बड़ा और प्रमुख बयान दिया है। लखनऊ में सेना शौर्य वाटिका के उद्घाटन के मौके पर सीएम ने साफ साफ कहा कि कोई नुकसानदायक अगर है तो उसके खिलाफ हिंसा अपनानी पड़ती है। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि अहिंसा ही इंसान का सच्चा धर्म होना चाहिए, लेकिन अगर सामने वाला देश और समाज के लिए खतरा हो तो उसके लिए अहिंसा नहीं फिर हिंसा अपनानी पड़ती है।
7: हमारी ऋषि परंपरा ने भी हमें इसी बात की प्रेरणा दी है। हम जब अधूरी बात कहते हैं तो वह अर्थ का अनर्थ करता है, लेकिन हम पूरी बात भी कहना सीखें। याद रखना, भारत की ऋषि परंपरा हमें इस बात की प्रेरणा देती है कि अहिंसा परमो धर्म, धर्म हिंसा तथैव च। यानी सामान्य जीवन में अहिंसा ही सर्वोच्च धर्म होना चाहिए, लेकिन अगर सामने वाला देश और समाज की सुरक्षा के लिए खतरा है तो उसके लिए अहिंसा नहीं चल सकती है, उसके लिए तो हिंसा ही हमें अंततः अपनानी पड़ेगी और देश के दुश्मन के लिए यही हमारा धर्म भी है।
3: आगे बढ़ेंगे, बिहार से खबर है क्योंकि बिहार सरकार ने पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी को 10 सर्कुलर रोड स्थित सरकारी बंगला खाली करने का अंतिम नोटिस दिया तो इस पर संग्राम छिड़ चुका है। राबड़ी देवी ने खुद चुनौती देते हुए कहा है कि वो किसी भी कीमत पर अपना आवास नहीं खाली करने वाली। राबड़ी देवी ने कहा कि मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी चाहे जितनी फोर्स बुला लें लेकिन वो बंगला खाली नहीं करेंगी। तो इस वक्त की बड़ी और अहम खबर, राबड़ी देवी की तरफ से साफ साफ कहा गया है कि वो अपना घर नहीं छोड़ने वाली हैं, चाहे सम्राट चौधरी कितनी भी फोर्स बुला लें लेकिन फिर भी वो किसी भी कीमत पर अपना आवास नहीं खाली करने वाली।
8: पर आते हुए हम तो चाहते हैं कि सम्राट चौधरी पूरा बिहार के फोर्स बुला के आ हमारा 10 नंबर खाली करा दे, हम नहीं खाली करेंगे, आवे हमारा सामने। पर आते हुए हम तो चाहते हैं कि सम्राट चौधरी पूरा बिहार के फोर्स बुला के आ हमारा 10 नंबर खाली करा दे, हम नहीं खाली करेंगे, आवे हमारा सामने।
9: अरे कहाँ इसमें वो कह रही, इसमें तो जो कानून है जो नियम है उसके हिसाब से काम होता है और सब लोगों को नियम कानून का पालन करना चाहिए।
10: फोर्स बुलवाकर खाली करवा दे ऐसा कह रही है, फोर्स भेजिए तब जाकर खाली करेंगे।
9: हम कह रहे हैं कि इसमें जो नियम कानून कहता है वही होता है और सब लोगों को नियम का पालन करना चाहिए।
3: बड़ी खबर, सीआईडी की एक टीम कोलकाता में अभिषेक बनर्जी के आवास पर पहुंची है और 4 सदस्यीय सीआईडी की टीम शांति निकेतन भवन स्थित अभिषेक बनर्जी के आवास पर मौजूद है। मुश्किलें वैसे भी टीएमसी की बढ़ना शुरू हो चुकी हैं, आपस में सिरफुटबल जारी है। उधर सीआईडी की टीम पहुंची है कोलकाता में अभिषेक बनर्जी के आवास पर। जानकारी मिल रही है कि ये 4 सदस्यीय टीम है सीआईडी की जो शांति निकेतन भवन स्थित अभिषेक बनर्जी के आवास पर इस वक्त मौजूद है। तो तृणमूल कांग्रेस की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं। लगातार जिस तरीके से मुख्यमंत्री की तरफ से आगाह किया गया था कि चाहे वो कटमनी हो, चाहे भ्रष्टाचार हो, जो जो कुछ तृणमूल कांग्रेस के शासनकाल में हुआ है तमाम चीजें सामने लाई जाएंगी, दोषियों को सलाखों के पीछे भेजा जाएगा। एक और बड़ी और अहम खबर आपको बता दें, कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट में गड़बड़ी को लेकर बड़ी खबर है। आपको बता दें कि सीयूईटी यूजी टेस्ट में गड़बड़ी को लेकर एनटीए ने माफी मांग ली है। तकनीकी गड़बड़ी के कारण समय पर शुरू नहीं हो पाया था एग्जाम। देश भर के कई केंद्रों पर तकनीकी खराबी की वजह से निर्धारित समय पर एग्जाम नहीं शुरू हो सका। सुबह 9 बजे शुरू होने वाली परीक्षा कई केंद्रों पर करीब 11:30 बजे के करीब शुरू हो पाई, जिसके चलते तो जो तमाम एस्पिरेंट्स थे, अभ्यर्थी थे और पेरेंट्स थे, उन्हें लंबा इंतजार करना पड़ा। एनटीए ने दोपहर की शिफ्ट का टाइम भी बदल दिया, जो समय 3 बजे का था पहले अब उसे बदलकर 4 बजे कर दिया गया है। सर्वर डाउन होना इसकी वजह बताया गया है और एनटीए की तरफ से इस पर माफी भी मांगी गई है। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ हमारे संवाददाता अनमोल बाली जुड़ गए हैं। अनमोल, पहले ही फजीहत कम नहीं हो रही थी और अब एक और एग्जाम में डीले, सर्वर डाउन होने की बात कही गई है, माफी बेशक मांग ली गई है लेकिन सवाल बहुत सारे हैं एनटीए पर।
11: शशि, आप जानते हैं कि पहली बार नहीं कि नेशनल टेस्ट एजेंसी सुर्खियों में आई। नीट यूजी एग्जाम को लेकर देखा गया कि बहुत फजीहत हुई और अब सीयूईटी के मामले को लेकर भी देखा जा रहा है कि सुबह से जो पेरेंट्स हैं, चाहे सोशल मीडिया से लेकर सड़क तक देखा जा रहा है, लोग नेशनल टेस्ट एजेंसी का विरोध कर रहे हैं क्योंकि आज सुबह 9 बजे जो एग्जामिनेशन सीयूईटी का शेड्यूल किया गया था वो तकरीबन 2 घंटे के लिए डिले हो गया। टीसीएस ने, माफ कीजिएगा, एक प्रेस स्टेटमेंट में एनटीए ने टीसीएस पर इसका ठीकरा फोड़ा। उन्होंने बोला कि किसी टेक्निकल ग्लिच के कारण जो एग्जामिनेशन था वो थोड़ा डिले हो गया, जिसका असर सीधा विद्यार्थियों पर पड़ा। साथ ही अब एनटीए का कहना है कि जो ये रिजॉल्व कर लिया गया है जो टेक्निकल ग्लिच था, और साथ ही जो विद्यार्थी सुबह की शिफ्ट में थे उनको और टाइम दे दिया गया है, और साथ ही जो इवनिंग शिफ्ट का एग्जामिनेशन था जिसका समय तकरीबन 1 घंटे पीछे हो गया, 3 बजे जिस एग्जामिनेशन ने शुरू होना था वो अब तकरीबन 4 बजे के आसपास शुरू होगा, जिसके कारण देश भर में हजारों ही लाखों ही जो मां बाप और विद्यार्थी हैं उनको मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। और शशि, मैं इस पर यह भी बताऊं कि राजनीति भी पूरी गर्मा गई है। लीडर ऑफ ओपोजिशन राहुल गांधी ने भी इस मामले को लेकर ट्वीट किया है। उन्होंने कहीं ना कहीं शिक्षा मंत्रालय सरकार के ऊपर बड़ा सवाल उन्होंने खड़ा किया है। नीट यूजी की बात भी की, सीबीएसई ओएसएम की बात भी की, एसएससी की बात भी की, और अब उन्होंने सीयूईटी को लेकर भी बोला कि 1 करोड़ विद्यार्थियों को आपने मुसीबत में डाल दिया। सभी जो अगली पिछली परीक्षाएं जो खबरों में आई उनको लेकर उन्होंने कहीं ना कहीं धर्मेंद्र प्रधान पर बड़े सवाल खड़े किए हैं, और ना केवल राहुल गांधी, आम आदमी पार्टी से चाहे आतिश मालीना, उन्होंने भी इस मामले को लेकर बहुत सी ट्वीट्स किए हैं और कहीं ना कहीं सरकार और शिक्षा मंत्रालय से इस मामले को लेकर सवाल किए हैं।
3: बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए आपका अनमोल वाली। आपको यह भी बता दें कि नीट पेपर लीक मामले को लेकर सीबीएसई परीक्षा में गड़बड़ी के आरोपों से सियासत तेज हो चुकी है। आज दिल्ली में एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया है, वही तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। दफ्तर के बाहर किस तरीके से तमाम ये कार्यकर्ता होर्डिंग और बोर्ड लेकर पहुंचे थे, नारेबाजी लगातार की गई।
11: ओ असम मुद्दे को लेकर एक तरफ विपक्षी दल का भारतीय जनता पार्टी और शिक्षा मंत्रालय के खिलाफ हमला जारी, उसी बीच में आपको तस्वीरें पड़पड़गंज स्थित सीबीएसई दफ्तर की दिखाना चाहूंगा, जहां आप बाहर देख सकते हैं कि दफ्तर के बाहर कैसे भारी संख्या में जो एनएसवाई के कार्यकर्ता हैं यहां पर इकट्ठे हुए, हाथ में तख्तियां लेकर उनका बड़ा धरना प्रदर्शन है, क्योंकि अभी सीबीएसई के 12वीं के रिजल्ट आने के बाद देखा गया कि विद्यार्थियों में बहुत रोष था, सोशल मीडिया से लेकर सड़कों तक अब जो विद्यार्थी हैं इस मामले को लेकर उतर आए हैं, और विद्यार्थियों का कहना है कि उनको जितने उनकी उम्मीद से नंबर थे कम मिले, फिर उसके बाद जब पोर्टल रिवैल्यूएशन के लिए खोला गया उसमें भी बहुत सी दिक्कतें पाई गई, कई बच्चों की जो शीट्स थी वो ब्लर निकली जिसके कारण देखा गया कि उनको बहुत कम नंबर मिले। उस सब को लेकर मैं आपको तस्वीरों में दिखाना चाहूंगा कि एनएसवाई के जो कार्यकर्ता हैं यहां पर इकट्ठे हुए हैं। हमारे साथ विनोद जाखड़ है,
12: सर जिस तरीके से सीबीएसई आज एक भ्रष्टाचार का अड्डा बन गई है और ये समझ नहीं आ रहा है, अभी तक देश के शिक्षा मंत्री छात्रों के सामने आके बात नहीं कर रहे हैं, केवल प्रिंसिपल्स को एक टूलकिट दिया गया है कि आप जाइए ओएसएम की प्रणाली कितनी अच्छी है इस पे वीडियो बनाइए और छात्र छात्राओं से भी वीडियो बनवाइए। मैं ये कहना चाहूंगा ओएसएम प्रणाली इसलिए लाई गई है कि कुछ शिक्षा मंत्री और उनके लोग शामिल हैं, क्योंकि ये प्रॉफिट और लॉस का काम था।
11: थे विनोद झाकड़ राष्ट्रीय अध्यक्ष एनएसवाई, तस्वीरों में आपको दिखाना चाहूंगा कि हाथ में एनएसवाई के कार्यकर्ताओं ने तख्तियां पकड़ रखी हैं जिसपे आप पढ़ सकते हैं, हेल्पलाइन नंबर भी एनएसवाई ने जारी किया है, क्योंकि 18 लाख के आसपास देखा गया जो विद्यार्थी थे 12वीं का सीबीएसई की जो परीक्षा है उसमें बैठते हैं, फिर उसके बाद उनका सीधा आरोप सीबीएसई पर कि जो ओएसएम सिस्टम के कारण उनके नंबर कम हो गए, फिर रिवैल्यूएशन के लिए जब पोर्टल खोला गया उसमें बहुत सी दिक्कतें पाई गई, और उसके बाद अब विपक्ष का सड़कों पर विरोध प्रदर्शन जारी। से पहले नीट यूजी मामले को लेकर भी देखा गया था कि एनएसओए के कार्यकर्ता सड़कों पर धरना प्रदर्शन कर रहे थे, और अब सीबीएसई ओएसएम के मुद्दे को लेकर भी अब जो एनएसओए के कार्यकर्ता यहां पड़पड़गंज सीबीएसई के दफ्तर के बाहर पहुंचे, और साफ तौर पर उनकी बड़ी मांग है कि धर्मेंद्र प्रधान जो शिक्षा मंत्री हैं इस मामले को लेकर अपना इस्तीफा दे। कैमरामैन आलोक दास के साथ अनमोल नाथ बाली की दिल्ली से रिपोर्ट।
3: तो नीट पेपर लीक की लेकर जिस तरह से हंगामा हुआ है, सियासी संग्राम उस पर लगातार बढ़ता जा रहा है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने पेपर लीक के बहाने प्रधानमंत्री मोदी को घेरा तो जंग और ज्यादा तेज हो गई।
13: पेपर अवेलेबल है टेलीग्राम,
14: किसी को ट्रस्ट हो ही नहीं रहा ये पेपर लीक नहीं होगा, हमें तो लग रहा है ये भी हो जाएगा।
0: नीट पेपर लीक की जांच जारी है, अब तक 13 आरोपियों पर शिकंजा कस चुका है, शीर्ष अदालत सख्त है, री एग्जाम को लेकर सरकार सुरक्षा का भरोसा दे रही है, लेकिन इस पर सियासत थम नहीं रही। एक दिन पहले सुप्रीम कोर्ट में नीट पेपर लीक की सुनवाई के बाद लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने छात्रों से बातचीत का वीडियो साझा किया और पेपर लीक को लेकर सीधे पीएम मोदी को घेर लिया। नीट छात्रों से मुलाकात में एक बात बिल्कुल साफ हो गई, भारत का युवा नरेंद्र मोदी पर भरोसा नहीं करता। उन्होंने मुझे बताया कि पेपर व्हाट्सएप और टेलीग्राम पर खुलेआम बिक रहे हैं, किस कीमत पर बिक रहे हैं, कौन खरीद रहा है, माफिया कैसे काम कर रहे हैं, यह सब इन बच्चों को पता है। उनका एक ही सवाल था जो हमें पता है, वो सरकार और संस्थाओं को क्यों नहीं। राहुल का हमला सिर्फ यही नहीं थमा, उन्होंने पेपर का कॉन्ट्रैक्ट लेने वाली कंपनी और उसके बैकग्राउंड को लेकर भी तल्ख सवाल किए।
15: There are certain people who are controlling the medical colleges. There are certain people who are controlling the exam system. These guys are friends with each other. There is huge money. This is a method to suck money out of you people. This is not a system to educate you about medicine. This is a system to suck money out of you people. You people, your parents are in the middle class. It is the way to take their money away from them and give you a dream. That yes, you will become a doctor. That's the system. The problem is with the system.
0: उधर नीट पेपर लीक को लेकर राहुल का हमला सीधे पीएम मोदी पर हुआ तो पलटवार होते देर नहीं लगी। अमित मालवीय ने राहुल पर जवाबी हमला बोलते हुए लिखा, ये कहना बेतुका, अपमानजनक और तर्कहीन है कि पीएम मोदी ने व्यक्तिगत रूप से नीट परीक्षा के पेपर लीक की निगरानी की। यही कारण है कि राहुल गांधी राष्ट्रीय महत्व के मामलों पर गंभीरता से विचार करने में असमर्थ रहते हैं। एक दिन पहले नीट पेपर लीक पर सुनवाई के दौरान शीर्ष अदालत ने भी सख्त सवाल किए थे। और इस बीच सियासी हमले लगातार तेज हो रहे हैं। आज तक ब्यूरो।
3: और इसी के साथ हम यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आज तक।
16: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परो इन एसोसिएशन विद भारत की अपनी इलेक्ट्रिक।
17: To 15-year-old Harper, buying an $80 vintage rock t-shirt is a great investment. To Harper's mom, this logic has a few holes in it. So she helped Harper open a Wells Fargo Clear Access banking account. With no overdraft fees and tools to track spending, Harper's learning, one heavy metal tea at a time. However you make money work, Wells Fargo can work with that.
18: Terms apply. Visit wellsfargo.com/deposit-disclosures for fees and details.
19: Hey, sports fans, TuneIn is bringing you live games, nonstop sports talk, and coverage from every angle. Follow your teams all season long with live games and never miss a single highlight. Listen to stations like ESPN Radio.
20: Swing and a foul out of play off to the left.
19: Big 12 Radio.
21: Levitt's playing stronger back there. Oh, he found Tyson.
19: Talk Sport.
22: Yes, Talk Sport listeners, when we win tomorrow evening, oh, you're going to feel all right.
19: And more. Search sports to find the stations covering your teams.
23: The biggest classic rock hits do just that. They hit hard. And on TuneIn's classic rock hits, you'll find only the best in high-octane awesomeness. We're talking rock gods like Led Zeppelin, Kiss, AC/DC, Lynyrd Skynyrd, and so many more. So for those of you about to rock, search Classic Rock Hits or ask your smart device to play Classic Rock Hits on TuneIn.
24: The music you love is all right here on TuneIn, bringing you good vibes and the hottest hits. But are you ready to amp things up even more? Just upgrade to TuneIn Premium for all of our exclusive music channels, completely commercial-free. So you get more of today's hits. More country roads. And everything else. Hear it all here, commercial-free, on TuneIn.
16: Savari, Sokudo.
25: आपके पास दो ऑप्शंस हैं, या तो सुपरमैन बनकर फर्नीचर को भीगने से बचा लो, या E3 HDMR बोर्ड लगाकर फर्नीचर को लाइफटाइम के लिए वाटर और टर्माइट प्रूफ बना लो। E3 प्रोडक्ट्स, ये रिश्ता लंबा चलेगा।
26: ऊंचाई पर बने रहने के लिए जरूरी है इरादों का प्योर होना। कैलेंट एडवांस बनाते हैं ऐसा स्टील जो अंदर से है ज्यादा प्योर, ज्यादा मजबूत। कैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो।

0: feels like summer. Monte Carlo, it's the way you make me feel.
1: और भाई कहाँ गए थे घूमने?
2: GK Max.
3: वैसे रोहन पढ़ाई में कैसा है?
2: GK Max. Best putty?
4: JK Wall Max.
2: Best paint?
5: JK Max.
2: बाकी सब सवालों का पता नहीं, लेकिन most beautiful walls के लिए सिर्फ JK Max paints. JK Max paints. खुशियों के रंग.

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: टेबल को ऊपर से जब भी खाते हैं दबा के खाते हैं भाई साहब, सब पचा देते।
3: पर दिक्कत तो होने आती है जो टेबल के नीचे से।
4: मुल्तानी पश्मीना, अपने हक का खाओ, सब कुछ पचाओ।
5: शादी का किचन महके जहां, गोल्डी किचन किंग मसाले हो वहां।
6: गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश।
7: डायरेक्टर, द टेस्ट ऑफ सक्सेस।
8: 25 सालों से जहां टिकी है देश की नजर, मेरे साथ फिर से शुरू हो रहा है वही सफर। ये है खबरें सात तक, देखते रहिए आज तक।
9: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा।
10: इन एसोसिएशन विद
11: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
12: हेक्सा ऑर्गेनिक रेडियंट स्किन एंड नरिश्ड हेयर, प्योर आयुर्वेदिक ब्यूटी।
13: This is the sound of Claire cooking dinner at home. And that's the sound of a fraud alert from Wells Fargo flagging a charge for a pricey restaurant in Paris. Considering Claire isn't in Paris right now, that seemed odd to the bank and to Claire. Two taps later, Claire says nope to the charge and Wells Fargo is on the case. However you make money work, Wells Fargo can work with that.
14: Wells Fargo Bank, N.A., member FDIC.
9: Presented by पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा।
10: In association with
11: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
12: Hexa Organic रेडियंट स्किन एंड नरिश्ड हेयर, प्योर आयुर्वेदिक ब्यूटी।

0: लखनऊ में एक कार्यक्रम में बोले सीएम योगी आदित्यनाथ, अहिंसा ही इंसान का परम धर्म, लेकिन कोई देश समाज के लिए खतरा है तो हिंसा की नीति अपनानी पड़ती है। नीट सीबीएसई के बाद सीयूईटी टेस्ट पर घिरा एनटीए, शिफ्ट में सर्वर में गड़बड़ी के कारण देरी से शुरू हुई परीक्षा। राहुल गांधी बोले पूरी परीक्षा व्यवस्था तबाह। शाम 4 बजे कांग्रेस विधायक दल के नेता चुने जाएंगे। डीके शिव कुमार 3 जून को 8 से 10 मंत्रियों के साथ ले सकते हैं शपथ। सिद्धरमैया के करीबियों को मिल सकती है जगह।
1: नमस्कार, मैं हूं श्वेता सिंह, आप देख रहे हैं आज तक। और आज हम एक राजनेता से एक तरीके से बुक रिव्यू करने के लिए बातचीत कर रहे हैं, क्योंकि शिवराज सिंह चौहान हमारे देश के कृषि मंत्री, उन्होंने राजनीति के एक ऐसे पहलू पर एक किताब लिखी है जो सामान्य नहीं है, यानी अपनापन। और जिस चीज के साथ मैं शुरुआत शिवराज जी आपके सवालों में करना चाहती हूं, ये तस्वीर आपने चुनी कि इसका बुक कवर बनेगा।
2: बिल्कुल,
1: इस तस्वीर को चुनने के पीछे की वजह क्या थी?
2: अपनापन। ये तस्वीर ही दिखाती है।
1: हाँ।
2: दरअसल ये तस्वीर है यहीं की, पूसा की।
1: अच्छा।
2: हमने 129 नई किस्मों को हमको रिलीज करना था, तो मैंने प्रधानमंत्री जी को निमंत्रण दिया। नई जो किस्में बीजों की थी उनको रिलीज करना था, तो प्रधानमंत्री जी का ही ये आइडिया था कि हॉल में नहीं होना चाहिए।
1: अच्छा।
2: अगर बीज की किस्में रिलीज करनी है तो बाहर खेत में होना चाहिए, खेत में किसान हो, वैज्ञानिक हो, किसानों को वैज्ञानिक बताएं, किसान सवाल पूछें, तो एक तरह से एजुकेट करने का काम भी हो जाएगा। और वो केवल उतने किसानों को नहीं होगा, वो फिर मीडिया के माध्यम से बाकी किसानों तक भी पहुंचेगा। तो ये हमारा जिस दिन कार्यक्रम था उस दिन बारिश होने लगी।
1: अच्छा।
2: तो प्रधानमंत्री जी वैसे में ही आए और जाहिर है छाता उन्होंने अपने हाथ में ले लिया।
1: अच्छा।
2: तो उसी समय की ये अपनेपन की तस्वीर है।
1: मुझे लगता है ये तस्वीर अपने आप में बहुत कुछ कहती भी है कि लोग आमतौर पर एक जो होता है ना कि अपना रसूख अगर दिखाना है तो आप छाता कभी अपने हाथ से नहीं पकड़ते हैं, आप चाहते हैं कि कोई दूसरा आपके सर पर उसे थामे, लेकिन उन्होंने थामा है और उस छाते के
2: मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं थामूं।
1: आपकी पहली मुलाकात, पहली भेंट का जो पूरा प्रकरण है शिवराज जी नरेंद्र मोदी से?
2: मैं मध्य प्रदेश में काम करता था, लेकिन युवा मोर्चे का अध्यक्ष था और मैं विदिशा लोकसभा क्षेत्र से चुनाव जीता था बाय इलेक्शन। अटल जी ने सीट खाली की थी, माननीय श्रद्धेय अटल जी 2 सीटों से लड़े थे 91 में, एक लखनऊ और एक विदिशा। तो विदिशा उन्होंने खाली की थी और बाद में पार्टी ने, तब मैं एमएलए था और 1.25 साल पहले मैं एमएलए बना था मध्य प्रदेश की विधानसभा के लिए।
1: आपकी उम्र बहुत कम थी उस समय।
2: हाँ, मेरी उम्र होगी उस समय लगभग 28 साल।
1: 28 साल जी।
2: मुझे पार्टी ने फिर कहा, तो पहले तो मेरी इच्छा नहीं थी कि अभी एमएलए बनाऊं, कुछ दिन एमएलए के रूप में काम करें, लेकिन श्रद्धेय कुशाभा ठाकरे जी जिनके भाषण नहीं आचरण बोलते थे, उनने कहा कि शिवराज लड़ना पड़ेगा, इस समय पार्टी को जरूरत है, क्योंकि मध्य प्रदेश संयुक्त था उस समय और हम 40 में से 28 सीट हार गए थे 91 में, केवल 12 सीट जीते थे, उनमें से एक अटल जी वाली सीट थी, तो लगा कि ये जीतना बहुत जरूरी, क्योंकि सरकार थी बीजेपी की वहां पटवा जी के नेतृत्व में, तो उन्हें आदेश दिया, मैं लड़ा, लड़के में जीता, यहां आया तो मुझे स्वर्गीय प्रमोद जी का फोन आया कि एकता यात्रा की जानकारी मुझे थी, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष तत्कालीन डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी जी के नेतृत्व में पूरे देश को एक संदेश देने और देशभक्ति का ज्वार जगाने, क्योंकि तब आतंकवाद चरम पे था और श्रीनगर के लाल चौक में तिरंगा फहराना लगभग अकल्पनीय और कठिन था, लेकिन तब पार्टी ने तय किया कि डॉक्टर जोशी जी के नेतृत्व में यात्रा निकलेगी और तिरंगा फहरेगा श्रीनगर के लाल चौक पर। माननीय मोदी जी उस समय तक गुजरात का काम देख रहे थे और दिल्ली आए ही आए थे, उनको उस यात्रा का प्रमुख संचालक नियुक्त किया गया था और मुझे कहा गया कि तुम उस यात्रा से युवाओं को जोड़ने के लिए केसरिया वाहिनी बनानी है, तो उसके तुम संयोजक हो। पहली मुलाकात मेरी उसी दौरान आदरणीय मोदी जी से हुई, वो संचालक थे यात्रा के, और मुझे केसरिया वाहिनी के रूप में लोगों को, यूथ को जोड़ने का काम करना था। और पहली जो बैठक एक हुई जिसमें यात्रा को प्रभावी बनाने के लिए क्या क्या किया जाए, तो मुझे लगा कि वो तो मैन ऑफ आइडियाज है। इतने तरीके थे उनके पास जनता को जोड़ने के कि मैं आश्चर्यचकित रह गया। वो मेरी पहली मुलाकात थी।
1: आपने नोटिस कर लिया, देख लिया, और आपने आपने परखा भी, मतलब ऐसा नहीं था कि ध्यान नहीं रहा, बस ये मुलाकात रही।
2: नहीं, पूरी तरह से मुझे ध्यान था। जिस तरह से, जैसे अब एक यात्रा निकलती,
1: हाँ,
2: तो एक यात्रा एक रूट से होकर निकल जाती,
1: हाँ,
2: लेकिन तय हुआ कि एक यात्रा नहीं, पूरे देश को अगर जोड़ना तो उप यात्राएं निकालो जगह जगह से, जहां ये यात्रा जाए वहां से दूसरी जगह से उस प्रदेश में उप यात्राएं आए और इसमें मिले, और रास्ते में वो जनता के बीच जागरण करती हुई आए। क्योंकि मेरे मन में मुझे ये लगा कि मोदी जी ये चाहते हैं कि तिरंगा केवल श्रीनगर के लाल चौक पर नहीं, देश की जनता के मन में लहराना चाहिए, हर युवा के दिल में लहराना चाहिए, तो जोड़ो सबको। उसके जो आइडियाज देखे तो मैंने पहचाना कि ये तो अलग ही पर्सनालिटी है और अलग ढंग से काम करते हैं। फिर दूसरी चीज जो मुझे आज तक याद है, क्योंकि मैं खुद भी भावना में बह के काम करता हूं अपने देश के लिए, जनता के लिए, एकता यात्रा को जाना था श्रीनगर, लेकिन बीच में आतंकवादी हमला हुआ फगवाड़ा में 23 जनवरी को
1: जी।
2: उसमें 6 एकता यात्री शहीद हो गए, तो लगा कि अब यात्रा रोकेंगे, और तत्कालीन सरकार भी, नरसिम्हा राव जी उस समय प्रधानमंत्री थे, सबकी कोशिश ये थी कि ऐसे ना जाए यात्रा। बीच में फिर तय हुआ कि यात्रा तो रुकेगी नहीं, डॉक्टर जोशी जी, उनके साथ मोदी जी और 3 लोग और जाएंगे, लेकिन जाना चाहते थे हम सब। जम्मू में लाखों लोग इकट्ठा थे और हम सब तो ये सपने देख रहे थे कि हमारा संकल्प पूरा होगा श्रीनगर के लाल चौक में तिरंगा फहराने का, लेकिन बाकी लोग रोक दिए गए, और वो लोग भी जो यात्रा में कई महीनों से तैयारी में लगे हुए थे, वो रात भर सोए नहीं, रात भर रोते रहे कि हम उस दृश्य के साक्षी नहीं बन पाएंगे। और जब तिरंगा फहरा के मोदी जी लौटे, जोशी जी लौटे, तो एक सभा जम्मू में हुई, और उस सभा में ये वर्णन करते करते मोदी जी कि वो लोग रात भर रोते रहे, सोए नहीं, और खुद उनका गला रुंध गया, कार्यकर्ताओं के हृदय की व्यथा उनकी आंखों से बह निकली, कुछ क्षण बोल नहीं पाए, तब मुझे दूसरी चीज पता चली कि ऊपर से काम के लिए कठोर दिखने वाले अंदर से कितने संवेदनशील हैं।
1: वो एक कश्मीर और उसके बाद पहलगाम, जब वो आतंकी हमला वहां पर होता है, मतलब सब विक्षुब्ध हुए थे, लेकिन एक प्रधानमंत्री जिसको मालूम है कि भावनाएं भी हैं लेकिन आपको पलटवार भी करना है,
2: वो दृश्य भी जैसा का तैसा मुझे आज दिखाई देता है। पूरा देश आक्रोशित भी था, मन व्यथित भी थे, और हर एक को लगता था कि नहीं, अब कुछ होना चाहिए। मेरे मन में भी तकलीफ भी थी और निर्णायक कुछ कदम उठने चाहिए। प्रधानमंत्री जी उस समय थे सऊदी अरब में, उन्होंने दौरा निरस्त किया, लौट के आए और एक के बाद एक कई निर्णायक कदम उठाए, लेकिन कैबिनेट की बैठक उस हमले के बाद, पहली कैबिनेट की बैठक 30 तारीख को थी। मेरे मन में उत्सुकता थी कि मोदी जी आएंगे तो इस समय उनकी मनोदशा क्या होगी। ऐसा नृशंस हत्याकांड हुआ है तो उनका मन भी दुखी होगा या गुस्से में होंगे, भाव चेहरे पे क्या होंगे, तो मैं देख रहा था। जब वो आए तो बिल्कुल शांत स्थिर, एकदम ऐसा लगा नहीं कि उद्वेलित हैं, आए बैठे, और आज तक मुझको उनकी बोलते हुए वो आंखें और वो चेहरा वैसा का वैसा याद है। बिना किसी उद्वेग के, गुस्से के, उन्होंने कहा कि इस बार का ऑपरेशन अलग होगा, सर्जिकल स्ट्राइक से अलग होगा, एयर स्ट्राइक से अलग होगा, आतंकवादी और उनके मुखिया आकाश, शब्द एग्जैक्ट में वो नहीं बता पा रहा हूं, लेकिन भावना यही थी कि जहां भी होंगे हम ढूंढेंगे और उनको सबक सिखाएंगे, छोड़ेंगे नहीं। लेकिन एक बार मैं भी इतने साल मुख्यमंत्री रहा हूँ, कई बार ऐसी घटनाएं व्यथित कर देती थी, गुस्से में ला देती थी, लेकिन कोई चेहरे पर भाव नहीं थे। मुझे गीता का वो श्लोक याद आ गया, यो न रुष्यति न द्वेष्टि न सोचती न कांक्षति सुभाषो परित्यागी। तो कोई चेहरे पे, लेकिन मन में संकल्प, निर्णायक कदम, और आप उसमें भी दृष्टि देखिए, गुस्से में कोई कदम उठाता तो निर्दोष नागरिक भी पाकिस्तान में मारे जा सकते थे और कहीं भी हमला हो सकता था, लेकिन नहीं, टारगेटेड, जिनने ये कुकृत्य किया है आतंकवादी और उनके आका, उनको छोड़ेंगे नहीं, और उनके अड्डे को मलबे का ढेर बना दिया गया। दूसरे दिन सवेरे लोगों ने देखा पाकिस्तान की फौज के अफसर आतंकवादियों की लाशें उठाते हुए दिखाई दे रहे थे, जनाजा ले जा रहे थे। कोई गुस्सा नहीं, कोई हड़बड़ी नहीं, एक निष्काम कर्मयोगी के भाव से, सबक सिखाना है छोड़ना नहीं है, लेकिन चेहरे पे कोई भाव नहीं। मैं वो दृश्य मैं भूला नहीं हूं, और अगर आप किताब लिखने की बात कहें तो ऐसी कई चीजें मेरे दिमाग में आई, तो मुझे लगा कि ये देश के सामने आनी चाहिए।
1: ये टोटल जो टाइम है आपका, तो आप डायरी लिखते हैं रोज?
2: नहीं, डायरी तो लोग रोज नहीं लिखता,
1: याद रहता है,
2: ये तो केवल यही फीड हो जाता है
1: क्योंकि बहुत पुरानी पुरानी कहानियां आपने इसमें लिखी हुई हैं, और वहां से होते हुए जब हम अभी तक के दौर के लिए, और मुझे लगता है कि इसमें अपनापन में तो आपको एक पार्ट टू ऐड कर देना पड़ेगा आगे के दौर का, लेकिन यही वो इतनी सारी चीजें जो आपको इसमें ध्यान रह गई, जो आपने सारी लिख कर दी है, ये बताइए कि कौन सी वो याद है जो, हालांकि ज्यादातर चीजों के लिए तो मैं लोगों से कहूंगी कि वो पढ़ें इस किताब को, ताकि वो सारी चीजें पढ़ें सुनने से बेहतर, लेकिन कौन सी एक ऐसी चीज जो उनके साथ के उस अपनापन में सबसे ज्यादा अपना लगता है आपको?
2: एक तो उनका जो पर्सनल टच है। अब देखिए, मेरे पिताजी का स्वर्गवास हुआ, फोन आया तत्काल
1: जी,
2: कैसे थे, क्या हुआ, कहां करेंगे अंतिम संस्कार।
1: अच्छा, जैसे उनको खबर लगी वैसे हाँ, फोन,
2: एक एक चीज की चिंता, और बाद में सब ठीक से हो गया क्या। मुझे कोविड हो गया, मैं मुख्यमंत्री था, कोविड में ही मुख्यमंत्री बना, और मैं तो ऐसा मुख्यमंत्री था जिसका मंत्रिमंडल ही नहीं था, क्योंकि तब तक कोविड पैर पसार चुका था, दूसरे को शपथ दिलाने का मौका ही नहीं मिला, मैं अकेला था, और एक के बाद एक मेरे काम करने वाले अधिकारी सारे के सारे कोविड के कारण अस्पतालों में भर्ती हो रहे थे। मेरी पीएस हेल्थ भर्ती हुई, उसके बाद फिर मेरे कमिश्नर हेल्थ एडमिट हो गया अस्पताल में, फिर मेरे सीएस को ही हो गया, तो उस समय फिर कहां विचार विमर्श करें, तो एक ही सहारा मुझे दिखता था, प्रधानमंत्री जी, तब मोदी जी प्रधानमंत्री जी थे, आपको पता ही है, तो सीधे उनसे बात करते थे। मुझे कोविड हुआ तो तत्काल फोन आया उनका, मुझे भी इन्फेक्शन हो गया काम करते करते, ये ध्यान रखना, प्राणायाम करना,
1: अच्छा
2: हाँ, परिवार के बाकी लोगों को इन्फेक्शन ना हो जाए इसकी चिंता करना। अब ये बिल्कुल अलग तरह की चीजें, और केवल इतने ही नहीं, कुछ घटनाएं तो मन को एक तरह से भावुक जैसे कर देती है। जैसे मुझे 2023 के विधानसभा के चुनाव के समय
1: जी,
2: एक दो बयान मेरे ऐसे आए जो सोच के उस दिशा में नहीं थे, लेकिन अखबारों ने, मीडिया ने, और कांग्रेस के लोगों ने कहा कि मामा का तो कांग्रेस के लोगों ने कहा मामा का तो श्राद्ध हो गया, अब गए मामा, क्योंकि मैंने एक सभा में कह दिया था जब हम चले जाएंगे तो याद बहुत आएंगे, और वो अलग संदर्भ में कहा था। बहुत से विकास के काम हुए थे जिस सभा में गया, लेकिन कुछ काम और मांग रहे थे, तो उस संदर्भ में कहा कि इतने काम हुए हैं, लेकिन उनने मुझे फोन किया और फोन करके कहा कि आज मैं मुख्यमंत्री से बात नहीं कर रहा, आज मैं चुनाव की बात नहीं कर रहा, चुनाव जबकि लगभग एकदम आ ही गए थे, मुख्यमंत्री से बात नहीं कर रहा, चुनाव की बात नहीं कर रहा, आज मैं अपने शिवराज से बात कर रहा हूं।
1: अच्छा,
2: आप दो तीन दिन के लिए सब छोड़ छाड़ के एकांत में शांति से बैठो, ध्यान करो, किसी संत को अगर मानते हो तो उसके पास जाओ, और फिर ऊर्जा से भर के और फिर काम करो, थोड़ा शांति से बैठो। अब ये मैंने कभी किसी राजनेता को ऐसा कहते हुए नहीं सुना, लेकिन इतनी चिंता करना और इतना ध्यान रखना कि अगर कोई बयान भी है तो क्या मन कहीं अशांत तो नहीं है, व्यथित तो नहीं है, उद्वेलित तो नहीं है, तो उसकी चिंता भी करना और समय समय पे फिर अलग अलग समय सलाह देना।
1: अच्छा नहीं, क्योंकि आपके विरोधी तो ये तक कहते रहे कि प्रतिस्पर्धा है भाई दोनों में, लेकिन आपने जब अपनापन एक किताब लाई तो मेरे मन में तो ये सवाल आया कि वो प्रतिस्पर्धा फिर कहाँ है। अगर
2: प्रतिस्पर्धा किस बात की,
1: क्योंकि दोनों सेम टाइम में आप लोग सीएम सर्व कर रहे थे ना,
2: मतलब आप हर चीज को देखिए, मेरे जीवन का भी लक्ष्य है कि अंतिम सांस तक अपने देश की और जनता की सेवा करते रहूं, क्योंकि इसी में मानव जीवन की सार्थकता है। मोदी जी के पूरे जीवन को आप देखिए, 24 घंटे सिवाय देश के और जनता के लिए और अब दुनिया के लिए भी कई कदम ऐसे, मतलब मैं ये कहूं तो अतिशयोक्ति नहीं होगी कि उनकी हर सांस देश की जनता के लिए चलती है, रोम रोम में देश और देश की जनता रमी है। और केवल अब देश के लिए नहीं, दुनिया के लिए भी सोचते हैं। अब वैक्सीन मैत्री क्या थी, या पर्यावरण के लिए काम कर रहे हैं तो क्या, तो इसमें प्रतिस्पर्धा हो ही नहीं सकती। मैं मेरे लिए सोचूंगा तो प्रतिस्पर्धा होगी। मैं इस मानसिकता में सदैव से काम करता रहा हूं कि मुझे जो काम पार्टी दे देगी वो काम मुझे करना है। दिखने के लिए प्रतिस्पर्धा किसी को दिखती रही हो, लेकिन प्रतिस्पर्धा जैसा भाव कोई अलग ढंग से कोई निकाल ले, कोई सोच ले, तो वो अलग है, कभी नहीं रहा। मुझे लगा कि वो जो सोचते हैं देश के लिए परफेक्ट सोचते हैं, और उनके साथ काम करके हम अपने देश के लिए और बेहतर काम कर पाएंगे।
1: कभी एमपी से निकालकर दिल्ली बुला लिया उन्होंने, तो ये चीज भी मन को नहीं लगी।
2: आपको पता, पहले दिन ही मैंने, अगर आपको ध्यान हो, प्रेस में ये कहा था कि 4 बार मैं मुख्यमंत्री रहा, उस समय 6 बार विधायक, 6 बार सांसद। पार्टी के पद अगर आप देख लें तो मैं नगर के दायित्व से लेके प्रदेश का मंत्री, युवा मोर्चे का, फिर प्रदेश का महामंत्री, फिर प्रदेश का अध्यक्ष, फिर पार्टी का प्रदेश का अध्यक्ष, फिर राष्ट्रीय महामंत्री युवा मोर्चे का, उसके बाद फिर राष्ट्रीय अध्यक्ष युवा मोर्चे का, फिर पार्टी का राष्ट्रीय मंत्री, फिर राष्ट्रीय महामंत्री, फिर राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, फिर हमारा जो सबसे बड़ी जो निर्णय लेने वाली संस्था है उसका भी मैं सचिव रह चुका। कौन सी चीज छोड़ी पार्टी, और इसके बाद भी अगर मेरे मन में ये आए तो इससे बड़ा दुर्भाग्य कोई हो नहीं सकता। भाई पार्टी को तय करने देना कि अब कहाँ काम करना है, और मुझे लगता है कि ये पहले से तय हो चुका था कि अब यहाँ काम हो गया। एक सभा में फिर जब मोदी जी ने कहा कि शिवराज को मुझे दिल्ली ले जाना है, तो मुझे ये लगा कि पहले से ही मन में योजना स्पष्ट थी कि अब यहाँ काम हो गया, अब देश के लिए वहां बैठ के काम करें। तो इसमें कहीं, इसमें केवल स्नेह है, केवल प्रेम है, केवल आत्मीयता है, क्योंकि मैंने उनको लगातार काम करते हुए देखा, तो मैं कह सकता हूं कि वो एक साधक, एक कर्मयोगी है। 5 देशों की अभी अभी यात्रा करके आ, उसके बाद कैबिनेट की, हमारी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की मीटिंग, एक क्षण भी विश्राम नहीं, ये एक साधारण मनुष्य नहीं कर सकता।
1: मतलब अच्छा, जैसे उन्होंने अपने काफिले का साइज सबसे पहले छोटा कर लिया, उन्होंने केवल कहा नहीं कि अपनी कटौती करो, उन्होंने खुद कहा कि मैं अपनी कटौती कर रहा हूं। आप लोग के ऊपर भी आप पर प्रेशर की?
2: कोई प्रेशर नहीं, कई चीजें कह के नहीं होती, आचरण सिखा देता है। जो प्रधानमंत्री छोटा कर रहे हैं तो मंत्री को क्यों छोटा नहीं करना चाहिए, तो ये समझने की चीज है। और कई बार वो भाव व्यक्त भी करते हैं, भाई अगर हम अमल करेंगे तो जनता हमसे सीखेगी।
1: उन्होंने पढ़ी किताब?
2: मैंने उनको भेंट की।
1: उनके रिव्यू का इंतजार है आपको?
2: हाँ, मुझे लगता है कि वो हर चीज बहुत गहराई से देखते हैं, तो मेरा विश्वास है कि उन्हें या तो पढ़ ली होगी या पढ़ेंगे।
1: शिवराज सिंह चौहान एक ऐसे नेता हैं जो जनता से भी, एक वोटर के रूप में नहीं बल्कि रिश्ते गढ़ लेते हैं। उसमें अगर मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से आपके रिश्ते को समझना चाहूं, तो वो आपके लिए क्या मायने रखते हैं? क्या वो केवल आपके पार्टी के एक कुलीग हैं, क्या वो केवल आपके प्रधानमंत्री हैं या फिर उससे बढ़कर?
2: केवल मैं नहीं
1: जी,
2: मेरे जैसे लाखों कार्यकर्ता हैं जिनसे उनके भावनात्मक रिश्ते हैं। आप वो माखन सरकार वाली घटना देखिए, ये जो डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के सहयोगी थे पश्चिम बंगाल के चुनाव जीतने के बाद, उनको गले लगाया और उनका कंठ रुंध गया। ऐसी भावनाएं, एक मध्य प्रदेश के लक्ष्मीनारायण गुप्ता जी 100 साल से ज्यादा उम्र थी
1: जी।
2: तो कमल पुष्प उनको कहा, जो पुराने कार्यकर्ता, उनके चरणों का स्पर्श किया कार्यक्रम के पहले। ये रिश्ते राजनीति से बहुत हटके होते हैं और बहुत ऊपर होते हैं। तो मैं मानता हूं कि हमारे रिश्ते भी, और मेरे अकेले के नहीं है, क्योंकि मैं इस गलत फहमी में ना रहूं कि बस मेरे ही हैं
1: जी।
2: मेरे जैसे लाखों लाख कार्यकर्ताओं के रिश्ते माननीय मोदी जी से ऐसे ही हैं, जो राजनीति से हटके हैं। कोई उनको गाइड मान सकता है, फिलासफर मान सकता है, मार्गदर्शक मान सकता है। ये किताब लिखने के पीछे भी मेरा भाव यही था कि उनके साथ काम करते करते मैंने जो अनुभव किया है, जो सीखा है, जो प्रेरणा प्राप्त की है, वो हर एक के लिए उपयोगी है। कोई भी व्यक्ति हो, चाहे वो राजनीतिक कार्यकर्ता हो, नेतृत्वकर्ता हो, प्रशासक हो, स्टूडेंट्स हो, महिला सशक्तिकरण का पक्षधर हो, इवन सोशल रिफॉर्मर हो, एक के बाद एक जैसे रिफॉर्म सुनने सामाजिक क्षेत्र में भी किए। स्वच्छता अभियान ही एक अपने आप में रिफॉर्म है। कोई सोचता नहीं था कि प्रधानमंत्री झाड़ू उठाएगा तो पूरा देश झाड़ू उठा लेगा। ऐसी एक नहीं, समय की सीमा है हमारे पास। तो सोशल रिफॉर्मर भी उनसे सीख सकते हैं, किसान भी उनसे सीख सकते हैं, नीति निर्माता भी उनसे सीख सकते हैं,
1: वैज्ञानिक आपकी किताब, जेन जी आपकी किताब पढ़ के क्या सीख सकता है, क्यों उन्हें पढ़ना चाहिए आपको लगता है?
2: मैं ये मानता हूं कि जिस ढंग से मोदी जी का जीवन है, वो जैन जी को भी आत्मविश्वास से भरेगा और उनमें यह भाव भरेगा, उत्तिष्ट जागृत प्राप्य वारिण्य बोधता। वो बाकी रास्ता अपने आप ढूंढ लेंगे। वो सब तरह की चीजें, स्टार्टअप्स वाले भी अगर इसको पढ़ेंगे तो उनको भी रास्ता मिलेगा। तो हर एक के लिए इसमें काफी कुछ चीजें हैं। तो मुझे लगा कि देश में जाना चाहिए, मेरे पास तक ही क्यों रहे, इसलिए मैंने ये किताब लिखी।
1: किसी भी राजनेता को समझने के लिए, किसी प्रधानमंत्री को समझने के लिए बहुत तरह की किताबें हो सकती हैं जो उनके पूरे जीवन को दिखाएं, लेकिन रिश्तों के जरिए किसी व्यक्ति को समझना, मुझे लगता है कि ये प्रयास आपका है। और ये किताब जो है, अभी मैंने थोड़ी सी पढ़ी है, मैं आगे और पढ़ रही हूँ। बहुत शुभकामनाएं आपको शिवराज जी।
2: जी ये अपनापन है श्वेता जी, केवल मेरे और मोदी जी के बीच नहीं, मोदी जी का अपनापन अपने देश की जनता के लिए, इसलिए देश मोदी जी का परिवार बन गया। मोदी जी का अपनापन केवल देश की जनता के लिए नहीं, वसुधैव कुटुंबकम के माध्यम से दुनिया के बाकी लोगों के लिए भी। मोदी जी का अपनापन केवल मनुष्य मात्र से नहीं, आप प्राणियों में भी, आप कूनो होके अगर आए हैं तो चीता पुनर्स्थापित करने का काम किया, इससे कोई वोट मिलते हैं क्या चीता लाने से? लेकिन पुनर्स्थापित करने का काम किया हमने, साथ साथ काम किया। तो नदियों की चिंता की, नर्मदा सेवा यात्रा निकाली, अब गंगा जी के लिए काम हो रहा है, जमुना जी के लिए काम हो रहा है। तो नदियों के प्रति भी अपनापन, पहाड़ों के प्रति भी अपनापन, नदियों, पर्वत, पहाड़ों में, ग्रह नक्षत्र, तारों में एक ही चेतना देखते हुए सबके प्रति अपनापन का जो भाव है, सचमुच में वही देश को भी आगे बढ़ाएगा और विश्व का भी कल्याण करेगा और भौतिकता की अग्नि में दग्ध विश्व मानवता को शाश्वत शांति के पथ का दिग्दर्शन भी कराएगा। इस अपनेपन को देखते हुए ये किताब लिखी है और सचमुच में ये ही मूल मंत्र है विश्व शांति का भी।
1: बहुत बहुत धन्यवाद आपसे।
2: आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मौका दिया मुझे कुछ आज तक के माध्यम से लोगों तक अपनी बात पहुंचाने का।
1: धन्यवाद। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।
3: Presented by पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
4: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
5: To 15-year-old Harper, buying an $80 vintage rock t-shirt is a great investment. To Harper's mom, this logic has a few holes in it. So she helped Harper open a Wells Fargo Clear Access banking account. With no overdraft fees and tools to track spending, Harper's learning one heavy metal tee at a time. However you make money work, Wells Fargo can work with that.
6: Terms apply. Visit wellsfargo.com/deposit disclosures for fees and details.
7: Jack FM is now streaming commercial-free on TuneIn Premium.
8: Jack, you're killing me.
7: Upgrade to TuneIn Premium and get Jack FM commercial-free.
9: The biggest classic rock hits do just that. They hit hard. And on TuneIn's classic rock hits, you'll find only the best in high-octane awesomeness. We're talking rock gods like Led Zeppelin, Kiss, AC/DC, Lynyrd Skynyrd, and so many more. So for those of you about to rock, search Classic Rock Hits or ask your smart device to play Classic Rock Hits on TuneIn.

परम धर्म, लेकिन कोई देश समाज के लिए खतरा है तो हिंसा की नीति अपनानी पड़ती है। नीट सीबीएसई के बाद सीयूईटी टेस्ट पर घिरा एनटीए। शिफ्ट में सर्वर में गड़बड़ी के आदेश, देरी से शुरू हुई परीक्षा, राहुल गांधी बोले पूरी परीक्षा व्यवस्था तबाह। शाम 4 बजे कांग्रेस विधायक दल के नेता चुने जाएंगे। डीके शिव कुमार 3 जून को 8 से 10 मंत्रियों के साथ ले सकते हैं शपथ। सिद्धारमैया के करीबियों को मिल सकती है जगह। राबड़ी देवी के सरकारी आवास खाली कराने पर अब जंग छिड़ी। बिहार सरकार के अल्टीमेटम पर पूर्व सीएम की खुली चुनौती, फोर्स बुलाकर खाली करा रो। डिप्टी सीएम बोले कि नियम तो मानना ही होगा। और गाजियाबाद हत्याकांड में नामजद 3 आरोपी फरहान आसिफ नवाब गिरफ्तार। बकरीद के दिन कुर्बानी दिखाने के बहाने बुलाकर सूर्या को मारा। केशव मौर्य बोले बचेंगे नहीं हत्यारे।

0: नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं राजीव ढोंडियाल। शुरुआत करते हैं बुलेटिन की बड़ी खबर से। कोलकाता से इस वक्त ये बड़ी खबर है, टीएमसी नेता अभिषेक बैनर्जी को सीआईटी की टीम ने नोटिस सौंपा है। अभिषेक बैनर्जी के घर पर जाकर सीआईटी की टीम ने ये नोटिस थमाया है, ये नोटिस सौंपा है। विधानसभा हस्ताक्षर विवाद को लेकर सीआईडी की टीम ने अभिषेक बैनर्जी को नोटिस सौंपा है। नेता प्रतिपक्ष के चयन का पूरा मामला है। हाल ही में पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनावों के बाद टीएमसी ने शोभन देव चट्टोपाध्याय को नेता प्रतिपक्ष बनाने का प्रस्ताव रखा था। इसी दरमियान ये हस्ताक्षर को लेकर विवाद शुरू हुआ।
1: उनको एक नोटिस देना था, वो नोटिस मुझे खुद रिसीव करना था, इसलिए वेट कर रहे थे। वो दूसरा जगह गलती से चले गए थे।

0: जानकारियां देने के लिए कहा गया है अभिषेक बैनर्जी को, और क्या वाकई जो सिग्नेचर थे वो मिसमैच हुए थे?
1: स्पष्ट नहीं कि नोटिस में क्या दिया हुआ है, लेकिन सूत्रों के मुताबिक जो हमें पता चल रहा है कि यहां पर अभिषेक बनर्जी थे, पहले उनके एक और घर है पास में, वहां गए थे सीआईडी की टीम। मूलतर जो इन्वेस्टिगेशन है वो एक हस्ताक्षर को लेकर इन्वेस्टिगेशन सीआईडी की टीम कर रही है, और उस इन्वेस्टिगेशन के तहत लगातार कुछ विधायकों से भी पूछताछ की गई जिनके सिग्नेचर मिसमैच हुआ था विधानसभा के ऑफिशियल रिकॉर्ड के साथ। और उसके बाद अभिषेक बनर्जी ने जबकि चिट्ठी भेजी थी, उस चिट्ठी के आधार पर उनसे कुछ सवाल पूछना चाहते हैं सीआईडी के अफसर, और इसी वजह से वो यहां पर आ पहुंचे थे। और आखिरकार अभिषेक बनर्जी मिलके वो रिसीव भी किए, और रिसीव करने के बाद उन्होंने साफ कहा कि वो अभी डिटेल्स में ये नोटिस पढ़े नहीं है, लेकिन वो पढ़ेंगे, अपने जो कानूनी सलाहकार है उनसे वो सलाह लेंगे, और अगर अपीयर करने के लिए कहा जाए तो वो अपीयर करेंगे। ये कहा जा रहा है सूत्रों के मुताबिक कि सोमवार सीआईडी दफ्तर जाने के लिए कहा है। अब देखना ये होगा कि आगे जाकर अभिषेक बनर्जी क्या कुछ फैसला लेते हैं, वो कानूनी सलाह लेने के बाद अकॉर्डिंगली वो अपना फैसला लेंगे।
0: ठीक है तापस, आप नजर बनाए रखें, अपडेट्स के लौटेंगे। फिलहाल शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। आगे बढ़ते हुए शुरुआत करेंगे 100 शहर 100 खबर की। पटना के सरकारी आवास को लेकर राबड़ी देवी ने सीएम सम्राट चौधरी को दी चुनौती, बोली कि चाहे जो कर लो घर तो खाली नहीं करूंगी। पटना के 10 सर्कुलर रोड पर राबड़ी देवी का आवास है, सरकार ने दिया है खाली करने का नोटिस। राबड़ी देवी बोले कि खूब फोर्स बुला लो, घर तो नहीं छोड़ूंगी। राबड़ी की चुनौती पर बोले डिप्टी सीएम विजय चौधरी, नियम का पालन करना होगा, कानून के मुताबिक ही काम होगा। लखनऊ में नौसेना शौर्य वाटिका का लोकार्पण 19 करोड़ की लागत से हुआ है निर्माण, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और सीएम योगी ने वाटिका देखी। लखनऊ में बोले सीएम योगी, अहिंसा हिंसान का सच्चा, लेकिन कोई समाज और देश के लिए कोई खतरा हो तो फिर हिंसा अपनानी पड़ती है। सीबीएसई मुख्यालय में एनएसयूआई का धावा कि नई मूल्यांकन व्यवस्था का जबरदस्त विरोध, बोर्ड को प्रतीकात्मक तौर पर पिंजरे में बंद दिखाया। दिल्ली के बड़बड़गंज में सीबीएसई के खिलाफ फूटा लोगों का गुस्सा, ऑन स्क्रीन मार्किंग सिस्टम का विरोध। सीयूईटी यूजी परीक्षा में भी एनटीए की अफवाहें, नए केंद्रों पर टेक्निकल ग्लिच की वजह से छात्रों को हुई परेशानी। पहली पाली में परीक्षा में समस्या के बाद से दूसरी पाली में भी समय बदला, अब टीसीएस के सर्वर में खराबी आई थी, एनटीए ने छात्रों से माफी मांगी है। नीट परीक्षा में एयरफोर्स के इस्तेमाल पर भड़के अरविंद केजरीवाल, बोले कि अनपढ़ों जैसी बात कर रही है सरकार, माफिया के चंगुल में शिक्षा व्यवस्था। नीट मामले पर राहुल गांधी के वीडियो के बाद से गरमाई सियासत, पीएम मोदी पर जमकर बोला हमला। राहुल गांधी ने कहा कि भारत का युवा प्रधानमंत्री मोदी पर भरोसा नहीं करता, नीट परीक्षा व्यवस्था पर उन्होंने उठाए सवाल। सोशल मीडिया पर राहुल गांधी के वीडियो को लेकर बीजेपी का पलटवार, कहा कि छात्रों के भविष्य पर राजनीति कर रहे हैं राहुल। नीट मामले में एनटीए ने सुप्रीम कोर्ट में दिया हलफनामा, पेन पेपर मोड में हुई थी परीक्षा, स्वास्थ्य मंत्रालय की योजना को लागू किया गया। प्रयागराज में लेखपाल भर्ती पेपर लीक के खिलाफ छात्रों का गुस्सा, दोबारा परीक्षा करवाने की मांग, हजारों छात्रों ने कंपनी बाग तक मार्च निकाला। गाजियाबाद हिंदू शख्स की हत्या के मामले में पुलिस का एक्शन, अब तक 3 आरोपियों को पुलिस ने किया गिरफ्तार, परिजन बोले कि पहले एनकाउंटर फिर करेंगे अंतिम संस्कार। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का बयान, दोषियों पर होगी सख्त कार्रवाई, पुलिस अपना काम कर रही है। गाजियाबाद हत्या पर वीएचपी का बयान, विनोद बंसल बोले कुर्बानी दिखाने के बहाने हलाल कर दिया। हत्या के बाद हिंदू संगठनों का गुस्सा, पुलिस को 24 घंटों का अल्टीमेटम, कार्रवाई नहीं तो बदला लेने की धमकी है। दिल्ली के जहांगीरपुरी में चाकूबाजी हुई, 26 साल के युवक की हत्या, 3 नाबालिग लड़कों पर मर्डर का आरोप है। फरीदाबाद के मस्जिद चौक इलाके में बुलडोजर एक्शन, प्रशासन ने अवैध निर्माण किया ध्वस्त, पूरे इलाके में इंटरनेट सेवाएं बंद। यूपी वालों को महंगाई का अब झटका, बिजली के दामों में 10% तक बढ़ोतरी, 1 जून से लागू होंगी बढ़ी हुई कीमतें। मुंबई में भी महंगाई का यह झटका, 2 रुपए प्रति किलो महंगी हुई सीएनजी, ठाणे नवी मुंबई में 86 रुपए हुई कीमत। बेंगलुरु के चित्रकूटा में स्कूल में लगी भीषण आग, फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियां मौके पर पहुंची, कोई हताहत की खबर नहीं।

पाकिस्तान के स्लीपर सेल पर दिल्ली पुलिस का बड़ा एक्शन। आईएसआई के लिए काम करने वाले 9 लोगों को गिरफ्तार किया गया। कर्नाटक में आज कांग्रेस विधायक दल की बेंगलुरु में बैठक। डीके शिव कुमार चुने जाएंगे नेता। विधायक दल की बैठक से पहले दिल्ली में राहुल गांधी से मिले डीके शिव कुमार। 3 जून को मुख्यमंत्री पद के ले सकते हैं शपथ। दिल्ली में राहुल से मीटिंग में सिद्धारमैया ने कैबिनेट के लिए सूची सौंपी है। सूत्रों के मुताबिक सिद्धारमैया ने अपने बेटे के लिए पसंदीदा विभाग मांगा है। सिद्धारमैया ने कांग्रेस हाईकमान को दिया है समन्वय समिति बनाने का भी प्रस्ताव। सूत्रों के मुताबिक हाईकमान राजी नहीं है। बहराइच के पयागीपुर में अतिक्रमण पर एक्शन। सरकारी जमीन पर बने हुए अवैध निर्माण पर बुलडोजर एक्शन दिखा। यूपी के जालौर में पुलिस और बदमाशों में मुठभेड़। गैंगस्टर शाहरुख के पैर में लगी गोली। 9 मुकदमों में वांछित था आरोपी। यूपी के गोंडा में पुलिस का बड़ा एक्शन। 41,60,00,000 के मादक पदार्थ किए गए नष्ट। एनडीपीएस एक्ट में 898 मुकदमे। झारखंड के धनबाद में प्रतिबंधित मांस मिलने पर हुआ बवाल। पुलिस मौके पर पहुंची। पथराव भी हुआ। कई राउंड फायरिंग। महाराष्ट्र के पुणे में जहरीली शराब से 15 लोगों की मौत। सीआईडी को सौंपी गई है जांच। सप्लाई नेटवर्क पर अब नजर। पंजाब के पठानकोट में सुबह बदला मौसम का मिजाज। तेज बारिश के साथ ओले भी गिरे। अब गर्मी से लोगों को राहत मिली है। हिमाचल के कुल्लू में पैराग्लाइडिंग के दौरान हादसा टल गया। तेज हवाओं के चलते ग्लाइडर फंस गया और हाईवे पर इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई। लखनऊ के चारबाग रेलवे स्टेशन के शेड गिरने के मामले में एक्शन। ठेकेदार पर 50,00,000 का जुर्माना और प्रोजेक्ट इंजीनियर भी सस्पेंड। जम्मू कश्मीर के राजौरी में सुरक्षा बलों का तलाशी अभियान। इलाके में कुछ आतंकियों के छिपे होने की आशंका। ओडिशा के सुब्रानपुर में आंधी में पेट्रोल पंप की शेड उड़ गई। कर्मचारियों ने भागकर बचाई अपनी जान। भारी बारिश के चलते ये हाल हुआ। सीडीएस के पद से रिटायर हुए जनरल अनिल चौहान राष्ट्रीय महासमर स्मारक जाकर सैनिकों को दी श्रद्धांजलि। और अब एनएस राजा होंगे नए सीडीएस। साइकिल से कोर्ट के लिए निकले लखनऊ जिला न्यायालय के जज। वैश्विक संकट के बीच में ईंधन बचाने का यह संदेश। सहारनपुर के शाकंभरी देवी मंदिर पहुंचे सांसद इमरान मसूद। श्रद्धालुओं से की मुलाकात। पहाड़ी चौकी एक्टिवेट करने की मांग की। यूपी के झांसी में पेट्रोल पंप से कार लेकर भागा एक बदमाश। टेस्ट ड्राइव के बहाने कार डीलर से मुलाकात। मौका मिलते ही वाहन लेकर फरार। यूपी के कौशाम्बी में ट्रक से टकरा एक मोर्चरी वैन। हादसे में 6 लोग घायल हैं। शव लेकर दिल्ली से झारखंड जा रही थी मोर्चरी वैन। राजस्थान के जयपुर और धौलपुर में तेज बारिश और ओलावृष्टि के चलते जनजीवन अस्त व्यस्त। कई इलाकों में जलभराव और बिजली आपूर्ति पर असर। उत्तराखंड में भारी बारिश और तूफान का कहर। टिहरी और धनौल्टी में फसलों को बड़ा नुकसान और कई पेड़ भी गिरे। बागेश्वर में नदियां उफान पर है। बैराज के गेट खोले गए हैं। प्रशासन ने सायरन बजाकर लोगों को अलर्ट किया। हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर में खराब मौसम से जनजीवन प्रभावित। कई सड़कें हैं बंद। यातायात भी ठप। उत्तर प्रदेश के आगरा में आंधी बारिश के चलते बड़ा नुकसान। कई जगह पर पेड़ गिरे। टिन शेड उड़ गए और कई इलाकों में जल भरा। प्रयागराज में भारी बारिश के चलते कई इलाकों में जल भरा। हालांकि इस बीच में बच्चे मस्ती करते दिखे। 29 मई को आए आंधी तूफान के चलते यूपी में 16 लोगों की मौत। आज भी कई जिलों के लिए अलर्ट है और बारिश के बाद तापमान जरूर गिरा। पश्चिम बंगाल के आसनसोल में भारी बारिश के चलते सड़कें डूबी। जल जमाव के चलते यातायात पर असर। छत्तीसगढ़ के बस्तर में आंधी और ओलावृष्टि से मकान और फसलों को बड़ा नुकसान। बिहार में तेज आंधी और बारिश का रेड अलर्ट। कई जिलों के लिए भारी चेतावनी जारी की गई। पंजाब नगर निगम चुनाव में आम आदमी पार्टी का जबरदस्त दबदबा। 8 में से 5 नगर निगमों में जीत। नगर निकाय चुनाव में आपकी सुनामी। 800 से ज्यादा सीटों पर जीत दर्ज की। मोहाली बरनाला बटाला मोगा और बठिंडा में आम आदमी पार्टी ने बढ़त के साथ जीत की है हासिल। कांग्रेस ने कपूरथला नगर निगम में बहुमत हासिल किया। बीजेपी ने अबोहर में जीत दर्ज की। पंजाब नगर निकाय चुनावों पर सियासी बयानबाजी तेज। भगवंत मान ने से विकास की जीत बताया। लखनऊ के दुबग्गा में कार ने बाइक को जबरदस्त टक्कर मारी। हादसे में बाइक सवार 25 साल के युवक की मौत। जम्मू कश्मीर के रियासी में सलाल डैम के पास में भीषण लगी जंगलों में आग लगी है और इलाके में से हड़कंप भी है।
महाराष्ट्र के भिवंडी में स्क्रैप गोदाम में भीषण आग, मौके पर फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियां पहुंची, आग पर पाया काबू। सूरत में पत्नी की प्रताड़ना से परेशान पति ने कलेक्टर ऑफिस में इच्छा मृत्यु की अर्जी दी, पत्नी पर लुटेरी दुल्हन का आरोप लगाया। सूरत के पॉश फ्लैट में चल रहे लेडीज जुआ क्लब पर पुलिस का छापा, फ्लैट मालिक की पत्नी समेत 7 महिलाएं गिरफ्तार। अलवर में युवक की आत्महत्या, फेसबुक लाइव पर 6 लोगों पर प्रताड़ना के आरोप लगाए हैं, पुलिस मामले की जांच कर रही है। अलवर में करंट लगने से पति पत्नी की मौत, खेत में काम करने के दौरान यह हादसा। बालोतरा में सड़क हादसे में घायल 2 युवकों के इलाज के दौरान मौत, पुलिस की गाड़ी से टक्कर के बाद गई जान। मुजफ्फरपुर में लक्ष्मी चौक स्थित रेस्टोरेंट के किचन में आग लगी, शॉर्ट सर्किट के चलते हादसा, फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर पाया काबू। बेगूसराय में मॉर्निंग वॉक के दौरान लड़की को कार सवार बदमाशों ने अगवा करके किया रेप, एक आरोपी गिरफ्तार। करनाल हत्याकांड में एक आरोपी गिरफ्तार, 10 रुपए मांगने पर सब्जी विक्रेता को पीट पीट कर मार डाला था। चुरू में ब्रेक फेल होने से मोबाइल शॉप में जाकर घुसा ऑटो, घटना सीसीटीवी में कैद। सहारनपुर में पुलिस बदमाशों के बीच में मुठभेड़, 1 लाख का इनामी एहसान एनकाउंटर में ढेर, इंस्पेक्टर और सिपाही को भी गोली लगी। ग्रेटर नोएडा में पुराने रंजिश में बदमाशों ने आधी रात घर के बाहर कर दी फायरिंग, पुलिस ने 2 को किया गिरफ्तार। इंदौर में लॉरेंस बिश्नोई गैंग के मास्टरमाइंड राहुल सिंह राठौर को पुलिस ने किया गिरफ्तार, 25,000 का इनाम था। कानपुर के सचेंडी गैंगरेप केस में आरोपी और निलंबित दारोगा अमित मौर्य गिरफ्तार, 50,000 का इनाम था। जमशेदपुर के जगसलाई मिठाई की दुकान मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में अचानक लगी आग, कड़ी मशक्कत के बाद आग बुझाई गई। रांची में साइबर ठगी गैंग का भंडाफोड़ हुआ और फ्लैट में चल रहा था फर्जी अकाउंट और आईडी बनाने का भी खेल, 5 गिरफ्तार। चरखी दादरी में पुलिस मुठभेड़ में टीचर ललित हत्याकांड के 2 मुख्य आरोपी गिरफ्तार और आरोपियों ने पुलिस की टीम पर फायरिंग भी की थी। जालना में दर्दनाक हादसा, दीवार गिरने से 2 मासूम बच्चों की मौत हो गई। गाजियाबाद में हिंदू शख्स की हत्या के मामले में एक्शन, पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया, परिजन बोले कि पहले एनकाउंटर फिर करेंगे अंतिम संस्कार।

0: राजस्थान रॉयल्स को हराकर अब आईपीएल के फाइनल में पहुंची गुजरात टाइटंस की टीम। अब रविवार को बैंगलोर के साथ होगा मुकाबला। राजस्थान ने दिया था 215 रनों का लक्ष्य। गुजरात ने 8 गेंद शेष रहते 3 विकेट गंवाकर हासिल कर लिया लक्ष्य। गुजरात की जीत के हीरो बने कप्तान शुभमन गिल। 53 गेंदों पर 104 रनों की पारी खेली और इसमें 3 छक्के और 15 चौके जड़े। बेकार गई राजस्थान के वैभव सूर्यवंशी की धुआंधार 96 रनों की पारी। इनिंग में 7 छक्के और 8 चौके लगाए। एशियन गेम्स के ट्रायल के लिए कुश्ती संघ ने विनेश फोगाट को मौका दिया। 53 किलोग्राम कैटेगरी के प्रैक्टिस मुकाबलों में शानदार प्रदर्शन। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की व्हाइट हाउस सिचुएशन रूम में ईरानी डील पर अहम बैठक खत्म। 2 घंटों तक ये बैठक चली है। अंतिम फैसले पर अभी स्थिति साफ नहीं है। ट्रंप बोले कि ईरान डील पर जल्दी होगा फैसला। सीज फायर बढ़ाने पर भी चर्चा जारी है। ईरान का आरोप है कि ट्रंप झूठी जीत दिखाने की कोशिश कर रहे हैं और बातचीत अभी अधूरी है। ईरान अमेरिका डील पर मतभेद बरकरार है और परमाणु कार्यक्रम और होर्मुज को लेकर टकराव बरकरार है। यूएस नेवी और यूके एमटीओ ने जहाजों के लिए चेतावनी जारी की। होर्मुज में तनाव बढ़ा। अमेरिका ने ईरान पर अवैध माइनिंग के भी आरोप लगाए। होर्मुज पर अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप का बड़ा फैसला। कहा कि होर्मुज से नाकेबंदी हटाएगा अमेरिका। ईरान पर जल्द ही होगा अंतिम फैसला। ट्रंप का यूरेनियम पर बड़ा बैन। कहा कि ईरान से ढूंढकर निकाला जाएगा ये यूरेनियम। अमेरिका ईरान और आईएईए के समन्वय से ये यूरेनियम निकलवाकर नष्ट किया जाएगा। ईरान के सर्वोच्च नेता मुज्तबा खामेनेई का बड़ा बयान। कहा कि ईरान के दुश्मन अब देश में फूट डालने की कोशिश कर रहे हैं। अमेरिका ने ईरान से जुड़ी हुई तेल बिक्री के नए प्रतिबंध उस पर लगाए और दोनों ही देशों के बीच में किसी भी समझौतों की कोशिशें अभी भी जारी है। होर्मुज पर बोले ईरान के पूर्व आईआरजीसी प्रमुख। कहा कि होर्मुज व्यापार के लिए खुला रहेगा और होर्मुज को लेकर किसी भी तरह की बाधा नहीं होगी। संजय दत्त के खलनायक रिटर्न में कमिश्नर राम के किरदार में दिखाई देंगे जैकी श्रॉफ। एक्टर ने किया कंफर्म। रणबीर पर फाइज के बैन के बाद से एक्टर के बचाव में सिनेमा एंड टीवी आर्टिस्ट एसोसिएशन यानी कि सिड्डा संगठन के वाइस प्रेसिडेंट पद्मिनी कोल्हापुरी बोले कि हम तो रणवीर के साथ हैं। वरुण धवन की अपकमिंग फिल्म है जवानी को इश्क होना है को सीबीएफसी ने दिया है यूए 16 प्लस कैटेगरी का सर्टिफिकेट और रिपोर्ट्स के मुताबिक फिल्म का रन टाइम। अभिनेता अनुपम खेर को फिल्म श्रीराम भूमि की आधिकारिक उन्होंने घोषणा की। अयोध्या और श्रीराम जन्मभूमि के इतिहास पर आधारित इस फिल्म का मूर्त संपन्न। मौसम पूरी तरह से बदला हुआ है और अब राजस्थान के चुरू से एक दिलचस्प तस्वीर सामने आई है जहां पर यह रेत का बवंडर देखने को मिला है। आप चुरू से ये तस्वीरें देख रहे हैं और जब ये बवंडर उठा तो अब आप इन हैरान कर देने वाली तस्वीरों को देखिए। बहुत ही रेयर इस तरह की तस्वीरें भारत में देखने को मिलती हैं। राजस्थान में आप देखेंगे कि ये रेतीला तूफान और कितने बड़े हिस्से में ये उठता हुआ दिखाई दिया। आंधी तूफान का इम्पैक्ट हमें पूरा नॉर्थ बेल्ट में ही देखने को मिला है। पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हुआ था लेकिन ये रेतीले बवंडर की बिल्कुल हैरान कर देने वाली तस्वीर है। ये रेत का गुबार छा गया। जब ये तेज हवा आंधी चली तो फिर वो रेत साथ में लेकर आए और उसके बाद से पूरे इस चुरू शहर को ऐसा लग रहा था कि अपने आगोश में इस रेत के बवंडर ने ले लिया। एक बहुत बड़े हिस्से पर हरियाली तक को इसने कवर कर लिया। रिहायशी इमारतों को इसने कवर कर लिया। हमारे संवाददाता शरद कुमार हमारे साथ जुड़ गए। शरद, ये बड़ी अलग तस्वीरें कह सकते हैं, बहुत ही रेयर तस्वीरें जो हमें राजस्थान से नहीं दिखती हैं, लेकिन इस बार देखिए क्या इसमें कोई नुकसान भी हुआ है?
1: हाँ देखिए, अंदर आंधी तूफान है, बहुत सारे पेड़ उग रहे हैं। पाकिस्तान की तरफ से तेज हवाएं आई हैं और ये चूंकि रेतीला इलाका है इसलिए ये आंधी काफी धूल भरी आंधी थी और पहले भी मौसम विभाग ने चेतावनी दे रखी थी कि ये 2-3 जिलों में तेज आंधियां चल सकती है, ओले पड़ सकते हैं, तो सावधानी लोगों ने बरती थी। कुछ पेड़ उखड़े हैं, कुछ गाड़ियों का नुकसान हुआ है मगर कोई जान का नुकसान नहीं हुआ है। हालांकि राजस्थान में जिस तरह से नौतपा में पूरा राजस्थान तप रहा था और श्री गंगानगर में देश में सबसे ज्यादा तापमान चला गया था 48 डिग्री का और मौसम पलटा है और अचानक से उस इलाके में हनुमानगढ़ श्री गंगानगर और चूरू का जो एक बेल्ट है पूरा उस बेल्ट में ये तेज आंधी आई है और ओले पड़े हैं और मौसम विभाग ने कहा है कि कल तक इस तरह के मौसम बना रहेगा।
0: और इन तस्वीरों को लेकर मतलब हवाएं चल रही, तेज हवा चल रही है लेकिन ये पहले भी चलती है, लेकिन इस तरह से रेतीला तूफान पहले कब देखने को मिला था?
1: काफी समय पहले बाड़मेर के जैसलमेर के इलाके में ये आया था, मगर ये पाकिस्तान की तरफ से तेज हवाएं आई है और गर्म हवाएं चल रही थी, मगर इस तरह से तूफान जो है वो कल मौसम विभाग ने कहा था और आज का मौसम अचानक से बदला है और इस इलाके में अंधेरा जैसे हालात हो रखे हैं पूरी तरह से।
0: बहुत शुक्रिया शरद आपका इस तमाम जानकारी के लिए। और बात करते हैं दिल्ली के जहांगीरपुरी में हुई हत्या की, जहां पर बकरीद की रात मामूली सा विवाद एक युवक की मौत की वजह बन गया। तो ये बड़ी खबर आपको देते हैं, देश की राजधानी दिल्ली और यहां का लॉ एंड ऑर्डर लगातार सवालों में है कि देश की राजधानी है और उसके बावजूद भी सेफ नहीं है। जहांगीरपुरी में यह कत्ल कर दिया गया और बहुत मामूली सा विवाद था, कोई बहुत बड़ा विवाद नहीं था और उसमें चाकू से गोद कर कत्ल कर दिया गया।
2: दिल्ली में सिगरेट को लेकर विवाद में युवक की हत्या, सिगरेट लाने से मना किया तो चाकू मार दिया। सुनने में भले ही यह हैरानी भरा लगे लेकिन इस वारदात ने एक शख्स की जान ले ली। बकरीद के मौके पर जब 26 साल के अरबाज के घर त्योहार की खुशियां थी, इस वारदात के बाद चीख पुकार मच गई। पुलिस के मुताबिक रात 11 बजे के करीब अरबाज अपने घर के पास ही मौजूद था। इसी दौरान इलाके के कुछ लड़कों के साथ उसकी कहासुनी हुई जो देखते ही देखते हिंसक झड़प में बदल गई। इसके पीछे की जो वजह सामने आई है वो भी बेहद हैरानी भरी है।
3: उस टाइम पे कुछ नहीं हुआ था, एक सिगरेट मंगाने का विवाद था कि सिगरेट लाके दे, तो उन्होंने बोला तेरे बाप का नौकर हूँ क्या, तेरा क्या, तू जाके लिया, तू क्या बदमाश है क्या, तो उन्होंने बोला चल ठीक है। फिर इतने में उन्होंने अपने दोस्तों को फोन मिलाया, उस लड़के ने, 7-8 लोंडे आ गए, इस बात को लेकर उन्होंने उसको मार दिया कि तूने हमसे ऐसा क्यों कहा।
2: विवाद के बाद जब अरबाज को लड़कों ने घेरा तो उसने मदद के लिए अपने भाई को बुलाया। भाई के सामने ही आरोपियों ने अरबाज की हत्या कर दी।
4: अरबाज का बड़ा भाई था, अरबाज ने मेरे पास फोन करा रात में पूरे 10:59 पे कि भाई ऐसे ऐसे बात है, मेरे को लड़कों ने घेर रखा, जल्दी से इधर आ जा गली के बाहर। मैं भागते हुए गया, जाके देखा तो उस टाइम पे ना इस पे सब सवार हुए पड़े थे लड़के, जो लड़के थे सब सवार हुए पड़े थे। ये 5-6 लड़के थे। उसी बीच में आवाज आती है कि चाकू निकाल, उसी बीच में आवाज आती है चाकू निकाल। अब जब चाकू निकालने के बाद आती है तो मेरे भाई को ना गेट है हमारी गली के बाहर उसमें घुसा दिया, तो मैं गया, मैंने पीछे से पकड़ के खींचा उसे, लड़कों को, 2-3 लड़के उस पर चढ़े पड़े थे। जैसे मैंने उन्हें खींचा तो एक लड़का साइड में से निकल के गया, वो इतने में जाके उसके चाकू मार दिए।
2: अरबाज जहांगीरपुरी के सी ब्लॉक का रहने वाला था और इलाके में ही एक सुनार की दुकान पर काम करता था। युवक की मौत के बाद घर में मातम है और इलाके में तनाव। पुलिस ने स्थानीय लोगों और चश्मदीदों से पूछताछ के आधार पर 3 नाबालिगों को हिरासत में लिया है। उनसे पूछताछ की जा रही है और वारदात में उनकी भूमिका की जांच हो रही है। आज तक ब्यूरो।
0: और अब रुक रहे छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन होंगे हाजिर, आप देखते रहिए आज तक।
5: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा प्यार से परोस, इन एसोसिएशन विद
6: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी।
7: दिस इज द साउंड ऑफ क्लेयर कुकिंग डिनर एट होम एंड दैट्स द साउंड ऑफ अ फ्रॉड अलर्ट फ्रॉम वेल्स फार्गो फ्लैगिंग अ चार्ज फॉर अ प्राइसी रेस्टोरेंट इन पेरिस। कंसीडरिंग क्लेयर इजंट इन पेरिस राइट नाउ, दैट सीम्ड ऑड टू द बैंक एंड टू क्लेयर। 2 टैप्स लेटर क्लेयर सेज नोप टू द चार्ज एंड वेल्स फार्गो इज ऑन द केस। However you make money work, Wells Fargo can work with that.
8: Wells Fargo Bank, N.A., member FDIC.
9: TuneIn is bringing together your music, news, sports, and more all in one place. Whether you love music, want to stay in the know with top news,
10: continue to face political pressure to reach a peace deal,
9: or hear your favorite teams with live sports. Plus, you can listen to TuneIn on over 200 devices, at home, in the car, or on the go. So you'll never miss a beat. Just sit back and listen.
11: The music you love is all right here on TuneIn, bringing you good vibes and the hottest hits. But are you ready to amp things up even more? Just upgrade to TuneIn Premium for all of our exclusive music channels, completely commercial free. So you get more of today's hits. more country roads.
12: Thank God I get to wake
11: and everything
12: up
11: else. Hear it all here, commercial free, on TuneIn. Call something classic, you've got to mean it. And that's why when we say TuneIn's exclusive classic hip-hop station is the real deal, we mean it. From golden age gems from OGs like Tupac and Biggie to chart-topping bangers from the biggest artists of all time like Jay-Z and DMX, there's a little something for every hip-hop fan on this station. Ready to find your flow?
13: It's your boy,
11: just
13: Jay-Z.
11: Search classic hip-hop or tell your device to play classic hip-hop on TuneIn to listen.
14: Sokudo.

0: feels like summer. Monte Carlo, it's the way you make me feel.
1: शादी का किचन महके जहां गोल्डी किचन किंग मसाले हो वहां
2: गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश
3: और वही कहां गए थे घूमने
4: जीके मैक्स
5: वैसे रोहन पढ़ाई में कैसा है
4: जीके मैक्स बेस्ट पुट्टी
6: जेके वॉल मैक्स
7: बेस्ट पेंट
8: जेके मैक्स
9: बाकी सब सवालों का पता नहीं लेकिन मोस्ट ब्यूटीफुल वॉल्स के लिए सिर्फ JK Max Paints.
10: JK Max Paints. खुशियों के रंग.
11: Director, the taste of success.
12: In association with
13: Samakul Cooler, hawa aisi chhode, puri family ko thandak se jode. Samakul Cooler, life banaye wonderful.
12: Hint, bade aaram se.
14: Punjab National Bank, bharose ka prateek.
15: Cool, stylish fans, enhance home decor with beautiful fans. Sharda University, the world comes together at Sharda University. Where are you?
12: Vimal, bolo zuba kesri.

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा,
1: इन एसोसिएशन विद
2: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
3: हेक्सा ऑर्गेनिक रेडियंट स्किन एंड नरिश्ड हेयर, प्योर आयुर्वेदिक ब्यूटी।
4: The music you love is all right here on TuneIn, bringing you good vibes and the hottest hits. But are you ready to amp things up even more? Just upgrade to TuneIn Premium for all of our exclusive music channels, completely commercial free. So you get more of today's hits. More country roads. And everything else. Hear it all here, commercial free, on TuneIn.
0: Presented by पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा,
1: इन एसोसिएशन विद
2: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
3: हेक्सा ऑर्गेनिक रेडियंट स्किन एंड नरिश्ड हेयर, प्योर आयुर्वेदिक ब्यूटी।

में बोले सीएम योगी आदित्यनाथ, अहिंसा ही इंसान का परम धर्म है, लेकिन कोई देश समाज के लिए कोई खतरा हो तो हिंसा की नीति अपनानी पड़ती है। नीट सीबीएसई के बाद सीयूईटी टेस्ट पर घिरा एनटीए, शिफ्ट में सर्वर में गड़बड़ी के चलते देरी से शुरू हुई परीक्षा। राहुल गांधी बोले पूरी व्यवस्था तबाह हो गई। थोड़ी देर में कांग्रेस विधायक दल के नेता चुने जाएंगे। डीके शिव कुमार 3 जून को 8 से 10 मंत्रियों के साथ ले सकते हैं शपथ। सिद्धारमैया के करीबियों को मिल सकता है मौका। बंगाल विधानसभा हस्ताक्षर विवाद में एक्शन तेज। सीआईडी की टीम ने टीएमसी नेता अभिषेक बैनर्जी को सौंपा नोटिस, बोले वकीलों से बात कर जवाब देंगे। राजस्थान के कई शहरों में बिगड़ा मौसम, तेज आंधी तूफान से भारी आफत।

0: राजस्थान के कई शहरों में इस समय मौसम बिगड़ा हुआ है, भारी आंधी तूफान भी जारी है। कुछ हैरान कर देने वाली तस्वीरें भी आई हैं। चूरू, श्रीगंगानगर, बीकानेर में ये रेतीले पवंडर से आफत है और क्षितिज पर ये विशाल रेतीला तूफान एक दीवार की तरह खड़ा हुआ नजर आया और धीरे धीरे आगे बढ़ता हुआ पूरा शहर को और एक शहर ने कई शहरों को अपनी चपेट में लेता हुआ दिखाई दिया। हम आपको तीन तस्वीरें दिखा रहे हैं। आप जयपुर की तस्वीरें देखें, चूरू की तस्वीरें देखें। मौसम बदला हुआ है, आंधी चल रही, तेज हवाएं चल रही हैं, बारिश भी हो रही है। और श्रीगंगानगर में आप ये तस्वीरें देखिए रेतीले तूफान की, और रेतीले तूफान के बीच से गुजरते हुए कुछ वाहनों से भी लोगों ने तस्वीरें बनाई हैं। तो पूरे शहर में घुप अंधेरा दोपहर के समय, जहां टेम्परेचर अभी तक लगातार 45 डिग्री के पार बना हुआ था, वहां एक टेम्परेचर तो गिरा है, लेकिन इस बीच में इस दृश्य ने लोगों को डराया है। हमारे संवाददाता शरद कुमार भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। शरद, हम राजस्थान के अलग अलग हिस्सों की तस्वीरें दिखाएं, मौसम पूरी तरह से बदला हुआ है, लेकिन जो चूरू की खास तौर पर तस्वीरें है, रेतीले तूफान का जो इम्पैक्ट है उसने कितना नुकसान पहुंचाया, क्या कोई जानमाल का नुकसान तो नहीं हुआ?
1: देखिए, जानमाल के नुकसान की खबर नहीं है, लेकिन हाँ, जो रेतीला तूफान होता है काफी ज्यादा वहां पर लोगों के जीवन को अस्त व्यस्त कर देता है। आप देखिएगा तो सड़कों पर धूल भरी इतनी आंधियां चलती है, हालांकि दो तीन दिन से बना हुआ था, आज काफी तेज हो गया है। पाकिस्तान की तरफ से आंधियों का यह सिलसिला शुरू हुआ है, तो उस तरफ भी रेगिस्तान है, इस तरफ भी रेगिस्तान है। रेगिस्तानी इलाके में इन धूल भरी आंधियों ने शहरों को अपने चपेट में ले लिया है। ऐसा लग रहा है कि शहर दर शहर जो है वो गर्द के गुब्बार में बैठा हुआ है। पहले के जमाने में हम सुना करते थे किस तरह के आंधियां आया करती थी, बहुत सालों बाद इस तरह की आंधी आई है। जैसलमेर में दो तीन साल पहले आई थी, मगर ये श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़ और चूरू एक ही सीध में है ये तीनों जिले, तो इन तीनों जिलों में इस तरह से रेतीला आंधियां चल रही हैं। जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त है, खास करके अंधेरा हो जाने से ट्रैफिक की समस्या होती है। लोग अपने घरों में दुबके रहते हैं, जिनके घर खुले हैं उनके लिए काफी मुश्किल का सामना करना पड़ता है। उस इलाके में इस तरह से मौसम विभाग ने पहले अलर्ट दे रखा था, आज धूल भरी आंधियां चल सकती है, कुछ इलाकों में कहा गया है कि ओले भी पड़ सकते हैं, मगर फिलहाल जिस तरह के दृश्य हैं, ये दृश्य अपने आप में काफी हैरान करने वाला है कि किस तरह से धूल भरी आंधियों से पूरा इलाका जो है।
0: जो दृश्य हम इस समय दिखा रहे हैं शरद, क्या इस समय भी ये बना हुआ है, ये आंधी के साथ धूल आगे बढ़ गई है या एक ही जगह पर स्थिर है, क्योंकि इससे फिर दिक्कतें परेशानियां भी लोगों को होंगी?
1: देखिए, आगे बढ़ती जा रही है। मैं आपसे कहा राजीव कि ये पाकिस्तान की तरफ से आई है और पाकिस्तान की तरफ से श्रीगंगानगर बॉर्डर से शुरू हुई है, श्रीगंगानगर बॉर्डर से हनुमानगढ़ की तरफ, हनुमानगढ़ से चूरू की तरफ आई है, तो ये आगे बढ़ते हुए आई है। लेकिन जैसे जैसे धीरे धीरे आगे बढ़ती है तो ये आंधियों का जो स्पीड होती है वो कमजोर हो जाती है। ये शुरुआत हुई थी भारत में इंटर हुई थी श्रीगंगानगर से, उस इलाके में अभी स्थिति बनी हुई है। दो तीन दिन से आंधियां चल रही थी धूल भरी, और काफी तेज धूल भरी आंधियां चल रही थी, मगर आज ये धूल का जो गुब्बार है काफी ज्यादा हो गया है, जिसकी वजह से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है उस इलाके में।
0: और आप बता रहे हैं कि धूल के संबंधित समस्याएं तो है, अब वैसे में बारिश का इंतजार रहेगा, लेकिन कुल मिलाकर अगर हम राजस्थान के मौसम की बात करें तो वो कितना बदला है, टेम्परेचर में कितना डिप आया है इससे?
1: देखिए, ये इलाका जो है राजीव, देश में सबसे ज्यादा तापमान परसों था, 48 डिग्री था, जहां पर सड़कों पर हम पानी का छिड़काव करते हुए देखे थे, लेकिन अचानक से 7 से 8 डिग्री तापमान गिरा है। तो मौसम के लिहाज से तो लोगों को राहत मिली है, मगर ये जो धूल भरी आंधियां हैं दूभर कर देती है जीना, कहीं आ जा नहीं सकते हैं, कहीं बैठ के रेस्टोरेंट में होटल में खा नहीं सकते हैं, तो ये पूरी तरह से जनजीवन को अस्त व्यस्त कर देती है और इसको सेटल होने में टाइम लगता है। अगर ये धूल भरी आंधियां सुबह शुरू हो गई है तो आप ये मान के चलिए कि पूरी रात लग जाती है इसको धीरे धीरे सेटल होने में और पूरे इलाके से धूल को निकलने में, तो ये जनजीवन को काफी प्रभावित करती है राजीव। हाँ, तापमान में जरूर गिरावट आई है, मगर मौसम विभाग ने कहा है कि एक दो दिनों बाद वापस से तापमान बढ़ेगा।
0: अब शरद, एक और चीज बताएं, क्या दिल्ली के लिए तो खतरा नहीं है, राजस्थान तक ही ये सेटल हो जाएगा ये रेतीला तूफान? और इस बीच में शरद, आप जवाब इसमें जवाब दें, मैं आपके पास लौटूंगा, लेकिन इस बीच में डरा देने वाली तस्वीर, एक हैरान कर देने वाली तस्वीर, आप अमूमन इस तरह की तस्वीर आप फिल्मों में देखते हैं सर, चाहे बॉलीवुड अब तो और हॉलीवुड में इस तरह की आप दृश्य देखते हैं, और बिल्कुल ऐसी तस्वीर हम इस समय दिखा रहे, ये विजुअल देखिए, मकान बिल्कुल सटे सटे बने हुए हैं, के ऊपर से ये धूल भरी आंधी पड़ती चली जाती है और कैमरे में सब रिकॉर्ड हो रहा है और फिर अंधेरा से छा जाता है। ये रेतीले प्रहार बिल्कुल फिल्मी, आपने फिल्मों में ही ऐसा देखा होगा और VFX के जरिए इस तरह से क्रिएट की जाती चीजें, लेकिन एक्चुअल में ऐसा हुआ है, राजस्थान में ऐसा हुआ है और हो रहा है। शरद हमारे साथ हैं। शरद, मेरे सवाल है कि ये वहीं पर ठहर जाएगा, सीमित रहेगा या आगे तक बढ़ेगा? दिल्ली के लिए तो खतरा नहीं है?
1: नहीं, फिलहाल मौसम विभाग ने कोई खतरे की आशंका नहीं जताई है, उसी इलाके में जताई है। और ये रेतीला तूफान है क्योंकि धूल इलाके में है राजीव, और पाकिस्तान के इलाके में पूरा इलाका रेतीला है, जहां पर मरुस्थल है, इस इलाके में भी मरुस्थल है, आप देखेंगे चूरू के इलाके में, तो धूल आगे से भी आया है और यहां से भी है, इसलिए धूल का पूरा एक गुबार बना हुआ है आंधियों में। मगर जैसे जैसे सेटल आगे की तरफ बढ़ेगा ये सेटल होगा। दिल्ली के लिए फिलहाल कोई खतरा ऐसा नहीं है राजीव।
0: बहुत शुक्रिया शरद आपका इस तमाम जानकारी के लिए। और अब आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश में अगले साल विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं और उससे पहले जमकर तैयारियां चल रही हैं।
2: किसी माफिया में तो साहस नहीं, पर्व और त्योहार में व्यवधान पैदा कर दो। रावण और कंस जैसी दुर्गति उसकी तय है। सामान्य जीवन में अहिंसा ही सर्वोच्च धर्म होना चाहिए, लेकिन अगर सामने वाला देश और समाज की सुरक्षा के लिए खतरा है तो उसके लिए अहिंसा नहीं चल सकती है, उसके लिए तो हिंसा ही हमें अंततः अपनानी पड़ेगी।
0: तो 2021-27 की तैयारियां शुरू कर दी गए हैं, हर दल जोर आजमाइश कर रहा है। लखनऊ में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अहिंसा और हिंसा को लेकर एक बड़ा बयान दिया है। कहा, अहिंसा ही इंसान का सच्चा धर्म होना चाहिए, पर अगर सामने वाला देश और समाज के लिए खतरा हो तो उसके लिए अहिंसा नहीं फिर हिंसा ही अपनानी पड़ती है। और इससे पहले कल मऊ में भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि पहले माफिया खुली जीप में बंदूक लहराते हुए धमकाता था, अब कोई हिंदू को धमका नहीं सकता। तो सबसे पहले बात करते हैं लखनऊ में सेना शौर्य वाटिका के उद्घाटन के मौके से। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हिंसा और अहिंसा को लेकर जो बड़ा संदेश दिया, सीएम योगी ने कहा कि अहिंसा ही इंसान का सच्चा धर्म होना चाहिए, पर अगर सामने वाला सोसाइटी के लिए यानी समाज और देश के लिए खतरा हो तो उसके लिए अहिंसा नहीं फिर हिंसा ही अपनानी पड़ती। वो अहिंसा ही इंसान का सच्चा धर्म होना चाहिए, लेकिन ऐसे व्यक्ति जो देश के लिए, जो हमारे समाज के लिए खतरा हो, तो ऐसे लोगों के लिए जो हिंसा है अपनानी पड़ती है।
2: याद रखना, भारत की ऋषि परंपरा हमें इस बात की प्रेरणा देती है कि अहिंसा परमो धर्म, धर्म हिंसा तथैव च। यानी सामान्य जीवन में अहिंसा ही सर्वोच्च धर्म होना चाहिए, लेकिन अगर सामने वाला देश और समाज की सुरक्षा के लिए खतरा है तो उसके लिए अहिंसा नहीं चल सकती है, उसके लिए तो हिंसा ही हमें अंततः अपनानी पड़ेगी।
0: यूपी के सियासी पिच पर योगी आदित्यनाथ अपने विरोधियों से बहुत आगे निकल गए हैं और खासतौर पर यूपी के इस मिशन में सबसे ऊपर है पूर्वांचल। वही पूर्वांचल जहां बीजेपी की परफॉर्मेंस कमजोर है, वही पूर्वांचल जो अपने माफियाओं की वजह से सबसे ज्यादा बदनाम था। आज योगी ने पूर्वांचल वालों को माफियाओं से हिसाब किताब की याद दिलाई है।
2: किसी माफिया में तो साहस नहीं, किसी गुंडे में तो साहस नहीं कि किसी पर्व और त्योहार में व्यवधान पैदा कर दे और उपद्रव पैदा कर दे। आज माफिया पिस्तौल लहराते हुए, कोई धमका करके, खुली जीप में चल करके किसी हिंदू को धमका नहीं सकता है। समाजवादी पार्टी तो माफिया और गुंडों के सामने नतमस्तक थी, नाक रगड़ती थी माफिया के सामने। समाजवादी पार्टी तो माफिया और गुंडों के सामने नतमस्तक थी, नाक रगड़ती थी माफिया के सामने। माफिया को देख करके पसीने छोड़ते थे इनको, इनके मुंह से कोई बोली नहीं निकलती थी।
3: क्या योगी आदित्यनाथ ने 2027 जीतने की तैयारी शुरू कर दी? योगी आदित्यनाथ ताबड़तोड़ पूर्वांचल के दौरे क्यों कर रहे हैं? क्या योगी उन सीटों को साध रहे हैं जो 2022 में छूट गई थी?
2: आज माफिया पिस्तौल लहराते हुए कोई धमका करके खुली जीप में चल करके किसी हिंदू को धमका नहीं सकता है, अब नहीं धमका सकता है।
3: योगी आदित्यनाथ ने पूर्वांचल के मऊ से आज खुली जीप वाले माफिया को याद किया। खुली जीप वाला माफिया यानी कि मुख्तार अंसारी। साल था 2005, मऊ में भीषण दंगा हुआ था, मुख्तार अंसारी विधायक था। बताते हैं कि एक महीने तक मऊ जलता रहा। आज भी जब मुख्तार अंसारी की दबंगई की बात होती है तो ये वीडियो अक्सर वायरल होता है। खुली जीप में मऊ के दंगाग्रस्त इलाके में हथियार और हथियारबंदों के साथ चलता मुख्तार अंसारी। आज योगी ने मऊ पहुंचकर मुख्तार अंसारी का नाम लिए बिना मऊ वालों को याद कराया कि वो भी दौर था जब खुली जीप में माफिया चलते थे, अब उनकी सरकार में यूपी में ये संभव नहीं है।
2: मऊ जनपद के लोग भूले नहीं होंगे, जिनकी उम्र 30-35 वर्ष से ऊपर है वे याद करें, 2005 में 21 वर्ष पहले इसी मऊ में कैसे भारत मिलाप कार्यक्रम के अवसर पर दंगा करके मऊ को जलाने का कुत्सित प्रयास हुआ था, कैसे सत्ता के संरक्षण में माफिया एक उत्सव भरे आस्था के केंद्र रामलीला के आयोजन में व्यवधान पैदा करके निर्दोष हिंदुओं का कत्लेआम कर रहे थे। सरकार मौन थी क्योंकि सरकार ने उन माफियाओं के सामने घुटना टेका हुआ था, सरकार उन माफिया के सामने नतमस्तक थी और यहां की सुरक्षा खतरे में थी। आज माफिया पिस्तौल लहराते हुए कोई धमका करके खुली जीप में चल करके किसी हिंदू को धमका नहीं सकता है, अब नहीं धमका सकता है।
3: योगी आदित्यनाथ ने मऊ पहुंचकर मुख्तार अंसारी की याद यूं ही नहीं दिलाई। उत्तर प्रदेश के चुनावों में अब ज्यादा वक्त नहीं बचा है, विपक्ष अभी सिर्फ रणनीति ही बना रहा है और योगी ने अपने विजन को अंजाम देना भी शुरू कर दिया है। मिशन है 2027 में तीसरी बार बीजेपी की सरकार बनाना। पश्चिम बंगाल में योगी आदित्यनाथ बीजेपी के स्टार प्रचारक थे, बंगाल का मिशन कामयाब रहा। पश्चिम बंगाल में बीजेपी की सरकार बनी और योगी के पैर छूने वाले शुभेंदु अधिकारी मुख्यमंत्री बन गए। अब योगी के सामने अपना किला बचाने की चुनौती है, इसीलिए बंगाल से लौटने के तुरंत बाद योगी ने मिशन यूपी शुरू कर दिया है। पिछले 22 दिनों में योगी आदित्यनाथ लखनऊ से जब भी बाहर निकले तो सहारनपुर को छोड़कर हर बार पूर्वांचल गए। गोरखपुर उनका गृह जिला है, वहाँ वो जाते रहते हैं, लेकिन इस बार योगी का फोकस पूर्वांचल के बाकी जिलों पर है क्योंकि यहाँ बीजेपी समाजवादी पार्टी के मुकाबले कमजोर है। योगी आदित्यनाथ 29 मई को मऊ पहुंचे, 26 मई को प्रयागराज गए थे, 22 मई को देवरिया, 15 मई को महाराजगंज और 7 मई को सहारनपुर के दौरे पर गए थे। योगी का ज्यादा फोकस इस वक्त पूर्वांचल पर है। पूर्वांचल इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि देश के पीएम और यूपी के सीएम दोनों पूर्वांचल से हैं। पूर्वांचल अति पिछड़ी जातियों वाला इलाका भी है जहां राजभर और निषाद जातियां हैं। गाजीपुर, जौनपुर, मऊ और आजमगढ़ जैसे जिलों में बीजेपी काफी कमजोर है। 2017 में यूपी में एनडीए का स्ट्राइक रेट 81% था जबकि पूर्वांचल में 77% था, जबकि 2022 में एनडीए का स्ट्राइक रेट 68% था जबकि पूर्वांचल में 59% था। 2022 में पूर्वांचल के 3 जिलों में बीजेपी का खाता नहीं खुला था, गाजीपुर, कौशाम्बी और आजमगढ़। इसीलिए योगी का फोकस पूर्वांचल पर ज्यादा है। किसी जमाने में पूर्वांचल का मतलब होता था माफिया राज। यूपी के तमाम बड़े माफिया इसी पूर्वांचल से थे, अतीक अहमद, मुख्तार अंसारी और भी बड़े बड़े माफिया। योगी राज में सारे माफिया ठिकाने लगे हैं। मुख्तार और अतीक तो आज जीवित भी नहीं हैं। इसीलिए योगी पूर्वांचल में जाकर खास तौर पर माफियाओं को याद कर रहे हैं।
4: अब मैं कह सकता हूं, किसी माफिया में दुस्साहस नहीं, किसी गुंडे में दुस्साहस नहीं कि किसी पर्व और त्योहार में व्यवधान पैदा कर दे और उपद्रव पैदा कर दे। अगर कोई किसी रामलीला में, किसी यज्ञ और कथा में, किसी धार्मिक आयोजन में रामनवमी हो, शिवरात्रि हो, जन्माष्टमी हो, रक्षाबंधन हो, इन आयोजनों में अगर किसी ने व्यवधान डाला तो पर्व तो मनाई लेगा, लेकिन उसके बाद ये तय है कि रावण और कंस जैसी दुर्गति उसकी तय है जो व्यवधान डालने वाला है। यह तय है कि अगर बेटी और व्यापारी की सुरक्षा में सेंध लगाई तो सेंध लगाने वाले का इंतजार तो फिर यमराज ही करेगा, बाकी किसी को नहीं करना चाहिए।
3: पूर्वांचल के 21 जिलों में विधानसभा की कुल 130 सीटें हैं। 2022 में बीजेपी को यहां से समाजवादी पार्टी ने मजबूत टक्कर दी थी। इन 130 में से एनडीए के खाते में 77 तो समाजवादी पार्टी और उसके सहयोगियों के खाते में 53 सीटें आई थी। लेकिन 2024 के लोकसभा चुनावों ने बीजेपी को अंदर तक हिलाकर रख दिया। पूर्वांचल में लोकसभा की कुल 26 सीटें हैं। 2014 में जब मोदी को बंपर जीत मिली तो बीजेपी ने पूर्वांचल की 26 में से 25 सीटें जीती थी, लेकिन 10 साल के बाद 2024 में यहां बीजेपी 26 में से 16 सीटें हार गई। 15 सीटें समाजवादी पार्टी जीती और एक सीट कांग्रेस। बीजेपी को 2027 में भी यही डर लग रहा है कि अगर पूर्वांचल ने 27 में भी 24 जैसा रंग दिखा दिया तो बीजेपी के लिए तीसरी बार सरकार बनाना मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए योगी आदित्यनाथ पूर्वांचल वालों को उनके वोट की ताकत बता रहे हैं।
4: और याद करना, जब किसी देव स्थल का पुनरुद्धार होता है और अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण होता है तो इसका पुण्य भी आप ही के खाते में जाता है, आपके खाते में इसलिए जाता है क्योंकि आपका एक वोट 500 वर्षों की गुलामी के कलंक को धो करके अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण कर देता है। ये वोट की ताकत है। आपका एक वोट काशी में काशी विश्वनाथ धाम का निर्माण कर देता है। आपका एक वोट बेटी और व्यापारी की सुरक्षा कर देता है। आपका एक वोट माफिया को मिट्टी में मिला करके सदैव के लिए उपद्रव मुक्त, कर्फ्यू मुक्त प्रदेश बनाने में सफल हो जाता है।
3: आज तक ब्यूरो।
0: योगी को अखिलेश टक्कर दे तो रहे हैं लेकिन सोशल मीडिया और कॉन्फ्रेंस के जरिए, जबकि योगी आदित्यनाथ ग्राउंड पर उतरकर अपना नैरेटिव सेट कर रहे हैं। अखिलेश यादव सोशल मीडिया से नैरेटिव बनाते हैं। यह भी संभव है कि अखिलेश यादव को यह लग रहा हो कि वो आखिरी समय में अपने पाले में यूपी की बाजी पलट सकते हैं, जैसा कि उन्होंने 2024 में किया था।
3: योगी चुनावों में उतर चुके हैं, तनादन ताबड़तोड़ रैलियां कर रहे हैं और उनके विरोधी प्रेस कॉन्फ्रेंस और सोशल मीडिया तक ही सीमित दिख रहे हैं। योगी ने मऊ से कहा कि समाजवादी पार्टी की सरकार माफियाओं के आगे नतमस्तक रहती है, तो अखिलेश ने इसका जवाब भी सोशल मीडिया से ही दिया।
4: समाजवादी पार्टी तो माफिया और गुंडों के सामने नतमस्तक थी, नाक रगड़ती थी माफिया के सामने, माफिया को देख करके पसीने छोड़ते थे इनको, इनके मुंह से कोई बोली नहीं निकलती थी।
3: अखिलेश ने जवाब दिया कि जनता पूछ रही है कि कोर्ट द्वारा मांगी गई असलहों की सूची माफियाओं के नाम के साथ भेजी है या बिना नाम के। असल में यूपी में 27 के बड़े युद्ध से पहले नैरेटिव की पूरी लड़ाई चल रही है। योगी 80-20 की बात करते हैं तो अखिलेश 95-5 की। 95% वो जिन्हें अखिलेश पीडीए कहते हैं, पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यक और पीडीए की इस परिभाषा को अखिलेश जातियों से परे रखते हैं। इसीलिए तो जब योगी बुलडोजर की याद दिलाते हैं तो अखिलेश इसमें भी जाति और धर्म डाल देते हैं।
4: अब कोई किसी गरीब की जमीन पर कब्जा नहीं कर सकता है, अब नहीं कर सकता है। अगर करेगा तो उसे पता है कि कब्जा करेगा पहले माफिया और गुंडे, पार्टी विशेष के गुंडे जबरन कब्जा करते थे गरीब की जमीन पर, व्यापारियों की प्रतिष्ठान पर। अब नहीं कर सकते, अब करेंगे तो उसे मालूम है कि बुलडोजर आएगा, संपत्ति को फिर से जब्त करवाएगा, अवैध कब्जे को तो हटाएगा ही हटाएगा, बाप दादों की अर्जित संपत्ति को भी एक कब्जे में लेकर के गरीब का मकान बना करके गरीब को वितरित कर देगा।
0: और अब वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का, फौरन होंगे हाजिर, आप देखते रहिए आज तक।
5: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच, इन एसोसिएशन विद
6: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो,
5: हेक्स ऑर्गेनिक रेडिएंट स्किन एंड नरिश्ड हेयर, प्योर आयुर्वेदिक ब्यूटी, ड्यूरेबल पाइप्स, फिटिंग्स एंड टैंक्स, अ कंप्लीट रेंज ऑफ सैनिटरी सॉल्यूशंस।
7: The biggest classic rock hits do just that. They hit hard. And on TuneIn's Classic Rock Hits, you'll find only the best in high-octane awesomeness. We're talking rock gods like Led Zeppelin, Kiss, AC/DC, Lynyrd Skynyrd, and so many more. So for those of you about to rock, search Classic Rock Hits or ask your smart device to play Classic Rock Hits on TuneIn.
8: Hi, I'm Kingston Bagpuse. Some people say Talk Sports is possessed by the Premier League, but that's just not cricket. We're also charmed by the Champions League, fanatical about the FA Cup, and rampantly rabid about rugby, Formula One, and boxing. Talk Sports, the brashest, boldest, best soccer and sports opinion anywhere in the known universe. Live from London, England, Europe on TuneIn.
9: The music you love is all right here on TuneIn, bringing you good vibes and the hottest hits. But are you ready to amp things up even more? Just upgrade to TuneIn Premium for all of our exclusive music channels, completely commercial free. So you get more of today's hits. More country roads. And everything else. Hear it all here, commercial free, on TuneIn.

0: why and by whom was COAMPT given the CBSE contract? Second, which procedures were circumvented to give COAMPT this contract? If we could figure out in 30 seconds that this company earlier had a different name, why didn't the CBSE figure this out? And why were no background checks done? Third, and most important, what is the exact relationship between COAMPT management and the Modi government?
1: मैं उनकी एक आदत, उनको एक बीमारी आ गई है. भारत में कोई भी परिवर्तन को सहज नहीं कर पाते हैं. उन्होंने SIR को विरोध किया था, उन्होंने EVM को विरोध किया था, उन्होंने भारत की अनेकों व्यवस्था को, भारत की डिजिटल इंडिया को विरोध करते हैं. ये एक दिवालिया मानसिकता की लक्षण है. आपको मैं क्या कह पाऊंगा, उनकी एक अंडरस्टैंडिंग है विषयों के ऊपर. बाकी रहा कोई स्पेसिफिक कंपनी के बारे में वो कह रहे हैं, मेरे शाम तक मेरे पास जो जानकारी है, उन्हीं के साथ सिद्ध दो राज्यों में, कर्नाटक और तेलंगाना में, वो संस्था 5 शिक्षानुष्ठान की OSM काम कर रहा है.
2: अच्छा.
1: उनकी वेबसाइट चला रहे, उनकी सॉफ्टवेयर पोर्टल चला रहे. इसलिए तो ये तो कोई, कभी राहुल गांधी कोई विषय कुछ बोलते हैं तो फैक्ट चेक तो करते ही नहीं, बेबुनियाद बातों पे वो एक दुनिया गढ़ बैठते हैं.

या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट, तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।

0: भोपाल के अर्बन एरियाज के फोटोग्राफ्स हैं जिनमें टाइगर का मूवमेंट है।
1: टाइगर, टाइगर।
2: ओ, ओ, ओ, ओ, पीछे पीछे पीछे पीछे पीछे बिल्कुल साइड में बैठा है।
3: Call something classic, you've got to mean it. And that's why when we

लखनऊ में एक कार्यक्रम में बोले सीएम योगी, अहिंसा ही इंसान का परम धर्म, लेकिन जब कोई देश समाज के लिए खतरा तो अपनानी पड़ती है हिंसा की नीति।

बोले पूरी परीक्षा व्यवस्था ही तबाह। थोड़ी देर में कांग्रेस विधायक दल के नेता चुने जाएंगे डीके शिव कुमार। 3 जून को 8 से 10 मंत्रियों के साथ ले सकते हैं शपथ। सिद्धरमैया के करीबियों को भी मिल सकती है जगह।

0: बोले वकीलों से बात कर कर देंगे जवाब। राजस्थान के कई शहरों में बिगड़ा मौसम, धूल भरी आंधी से दिन में ही छाया अंधेरा।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच, इन एसोसिएशन विद
2: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुड।
0: नमस्कार, रणभूमि स्पेशल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सौम्य चौधरी। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की हालत कुछ इस तरीके की हो गई है कि कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन है, सोल्यूशन क्या है पता नहीं। ट्रंप इस बात का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं कि ईरान के साथ संघर्ष खत्म हो और वो इससे बाहर निकले, वो भी एक विजेता के तौर पर। लेकिन ईरान है कि मानता नहीं। हर बार ट्रंप ऐलान करते हैं कि ईरान कुछ ही देर में उसका खंडन कर देता है। आलम यह है कि ट्रंप बनना तो चाहते थे दुनिया भर के सुपर प्रेसिडेंट, लेकिन इस समय उन्हें दुनिया के सबसे कमजोर राष्ट्रपति के तौर पर देखा जा रहा है। आलम यह भी हो चुका है कि अब अमेरिकी सेना भी डोनाल्ड ट्रंप के वादों को या उनके ऐलानों का सीरियसली आपको उसका एतबार नहीं करती है। रणभूमि स्पेशल में आज हम दुनिया भर के तमाम युद्ध मोर्चों की तमाम बड़ी खबरें आपको बताएंगे जो इस सप्ताह सुर्खियों में बनी रही, जिन पर पूरे दुनिया भर की निगाहें हैं, जिसे जानना आपके लिए भी बेहद जरूरी है। रणभूमि स्पेशल में आज की पहली खबर हम आपको बताएंगे कि अमेरिका और ईरान के बीच में डील को लेकर आखिरकार इतनी कंफ्यूजन क्यों है। अमेरिका कभी समझौते का दावा करता है तो ईरान उसे तुरंत खारिज कर देता है। रणभूमि स्पेशल में दूसरी खबर में हम आपको बताएंगे, ट्रंप के दिमाग को पढ़ने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार ट्रंप की जुबान तो समझौते की बात करती है लेकिन मन में कहीं कुछ और ही चल रहा है। युद्ध से ईरान को तबाह करने की बर्बाद

आजादी को लेकर भी प्लान तैयार किया जा रहा है। रणभूमि स्पेशल की तीसरी बड़ी खबर, हम आपको बताएंगे कि अभी भी हॉर्मूज ही अमेरिका और ईरान के बीच डील का सबसे बड़ा रोड़ा या डेडलॉक बना हुआ है। रणभूमि स्पेशल की चौथी खबर हम आपको दिखाएंगे कि युद्ध के दूसरे मोर्चे पर लिए चलेंगे, जहां पर आपको बताएंगे कि जेलेंस्की ने दावा किया है कि पुतिन यूक्रेन पर भीषण हमले करने की तैयारी कर रहे हैं। रणभूमि स्पेशल में आखिरी बड़ी खबर, हम आपको बताएंगे कि ईरान से अमेरिका के समझौते में लेबनन में युद्ध को रोकने वाले मुद्दे

0: भी हमारे साथ जुड़े होंगे। हमारे साथ होंगे मेजर जनरल रिटायर्ड AK सिवास सर और हमारे साथ होंगे ग्रुप कैप्टन रिटायर्ड DK पांडे सर। इनसे भी लगातार हम तमाम बड़ी खबरों को पहलुओं को जानेंगे, लेकिन सबसे पहले रुख करते हैं मिडिल ईस्ट का। अगर अमेरिका और ईरान डील के इतने करीब है तो दोनों के सुर अलग अलग क्यों है? आखिर क्यों अमेरिका लगातार कह रहा है कि वो समझौते के बेहद करीब पहुंच चुका है, जबकि दूसरी तरफ लगातार ये कहा जा रहा है कि ईरान आधिकारिक तौर पर इसका खंडन कर देता है। इतना नहीं, अमेरिका इस बीच ईरान को डील होने की सूरत में नतीजा या फिर डील ना होने की सूरत में नतीजा भुगतने की धमकियां भी दे रहा है। तो क्या समझौते की शर्तें छिपाई जा रही हैं या फिर समझौता का पूरा सस्पेंस है, इसको लेकर सबसे पहले आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं।
1: डील पर अमेरिका और ईरान के जुदा हैं बयान, सुर अलग है तो फैसला कैसे एक होगा? सस्पेंस भारी, आ रही है बम बरसाने की बारी। क्या अमेरिका और ईरान में सच में कुछ ही घंटों में डील होने वाली है या फिर महायुद्ध पार्ट 2 जल्द शुरू होने वाला है? कहने को तो अमेरिका की टॉप लीडरशिप हर दिन ये उम्मीद जगा रही है कि वो डील के बेहद करीब है।
2: Look at what we've already accomplished here, assuming that we're able to get to a final agreement here. We're reopening the Straits of Hormuz, we've already decimated their conventional military, and we're in a position where we could substantially step back their nuclear program, not just during the term of this president, but over the long term. That's a very, very good thing for the American people. So we're not there yet, but we're very close, we're going to keep on working at it. Thank you guys, have a good evening.
1: Rashtrapati aur Uprashtrapati hi nahi, रक्षा मंत्री भी हर जगह जाकर यही कह रहे हैं कि डील जल्द ही होने वाली है और ये एक शानदार डील होगी। लेकिन सिंगापुर जाने से पहले रक्षा मंत्री ईरान को धमकी भी देकर गए हैं, यानी अमेरिका को भी ये अंदेशा तो है कि हो सकता है कि डील उनके मुताबिक ना हो और एक बार फिर रणभूमि में उतरना पड़े।
3: And when you do your job, the adversaries know what's coming for them. And that's when they either step up and meet the fury of the American military or back down, and you create a whole bunch of options for America and the president with what he wants to execute on behalf of the American people. So right now, hey, Iran has a choice: meet at the table with the president and give up their nuclear program. And as the president said, I'm lost on time, 2 days ago now, in the cabinet meeting, I'm sitting right next to him. He looks in the camera and says, well, Iran can either do it the right way with a deal across the table, or they can deal with my guy on the left. That happened to be me. But it's not me. It's you guys. It's what you're ready to do.
1: लेकिन ईरान की तरफ से कोई ऐसे संकेत नहीं मिल रहे हैं। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल भगाई ने सरकारी मीडिया से बातचीत में कहा है कि हॉर्मुज पर फैसला ईरान और ओमान को लेना चाहिए और इसे खोलने का फैसला भी अमेरिका नाकेबंदी हटने के बाद ही होना चाहिए। जो भी हो, डील को लेकर हलचल तो लगातार बढ़ रही है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सिचुएशन रूम में 2 घंटे तक अहम मीटिंग की है। इस मीटिंग में ईरान के साथ डील को लेकर कई पहलुओं पर बात की गई। मीटिंग में ट्रंप ने साफ कहा कि किसी भी कीमत पर ईरान को परमाणु बम बनाने की इजाजत नहीं दी जा सकती। उसके अलावा उसे हॉर्मुज को बिना टोल बंदी के खोलना ही पड़ेगा। ईरान की न्यूज एजेंसी फोर्स के मुताबिक ईरान का मानना है कि ट्रंप मनगढ़ंत जीत को दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। इसके अलावा ईरानी अधिकारियों के हवाले से ये भी दावा किया गया है कि डील में एटमी मुद्दे का जिक्र नहीं है। लेकिन ईरान की 12 बिलियन अमेरिकी डॉलर की फीस संपत्ति छोड़ने का समझौता जरूर है। अभी ट्रंप ने डील के बारे में अंतिम फैसला नहीं लिया है। अगर ट्रंप ने समझौते पर मुहर लगा दी तो 60 दिन के लिए सीजफायर का ऐलान किया जा सकता है ताकि हॉर्मुज को खोलने की प्रक्रिया शुरू की जा सके। आज तक ब्यूरो।
0: अभी आपने हमारी ये रिपोर्ट देखी, लेकिन अब आपको बताते हैं कि इस वॉर फ्रंट पर 10 बड़े अपडेट क्या हैं। आखिरकार पिछले 24 घंटे में क्या कुछ बड़ा अपडेट हुआ है, क्या कुछ गुजरा है, इसको लेकर आपको बड़ी स्क्रीन पर हम दिखाने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले आपको दिखाते हैं कि दुनिया में युद्ध के मोर्चों से अलग अलग खबरें जो मिल रही है वो भी आप एक बार नजर मार लीजिए। ईरान को अमेरिकी धमकी मिली है, युद्ध शुरू करने से भी ज्यादा तैयारियां की जा चुकी है। देखिए, ईरान को अमेरिका लगातार धमकी दे रहा है। ट्रंप का बड़ा बयान सामने आया, तुरंत खुले हॉर्मुज।

कोई टोल नहीं लेगा, यानी लगातार ईरान को कहा गया हॉर्मुज को आपको खोलना पड़ेगा और आपको कोई टोल नहीं लेना। फिर तीसरा बड़ा अपडेट क्या है, अमेरिका के डील पर दावों को ईरान ने तुरंत खारिज कर दिया। डोनाल्ड ट्रंप कह रहे थे मैं सिचुएशन रूम में जा रहा हूं, 15 मिनट के बाद आया, ईरान ने कहा कि ऐसी कोई डील होने वाली नहीं है। मिडिल ईस्ट में अमेरिका के फाइटर जेट्स की पेट्रोलिंग जारी है, मिडिल ईस्ट में लगातार अपने एयर सर्वेलेंस को अमेरिका और पुख्ता करता जा रहा है। अमेरिका को उम्मीद है कि देखिए अगर ईरान नहीं माना तो फिर क्या कुछ करना होगा, उसको लेकर भी तैयारियां की जा रही हैं। पांचवा बड़ा अपडेट क्या है, देखिए कुवैत में यूएस बेस पर ईरान के मिसाइल हमलों में 5 अमेरिकी सैनिक घायल हुए हैं। इसे लेकर ब्लूमबर्ग ने रिपोर्ट दी है कि देखिए ईरान के हमलों में अमेरिका को नुकसान अब भी हो रहा है। इसके बाद अमेरिका ने ईरान से सैन्य तकनीक खरीदने वाली कंपनियों पर प्रतिबंध लगा दिया है। इसराइल की सेना का लेबनन में लेटानी नदी पार करने का दावा किया जा रहा था।

ने कहा कि ऐसी कोई डील होने वाली नहीं है। मिडिल ईस्ट में अमेरिका के फाइटर जेट्स की पेट्रोलिंग जारी है। मिडिल ईस्ट में लगातार अपने एयर सर्वेलेंस को अमेरिका और पुख्ता करता जा रहा। अमेरिका को उम्मीद है कि देखिए अगर ईरान नहीं माना तो फिर क्या कुछ करना होगा, उसको लेकर भी तैयारियां की जा रही हैं। पांचवा बड़ा अपडेट क्या है, देखिए कुवैत में यूएस बेस पर ईरान के मिसाइल हमलों में 5 अमेरिकी सैनिक घायल हुए। इसे लेकर ब्लूमबर्ग ने रिपोर्ट दी है कि देखिए ईरान के हमलों में अमेरिका को नुकसान अब भी हो रहा है। इसके बाद अमेरिका ने ईरान से सैन्य तकनीक खरीदने वाली कंपनियों पर प्रतिबंध लगा दिया है। इसराइल की सेना का लेबनन में लेटानी नदी पार करने का दावा किया जा रहा था, हालांकि इसे इसराइल ने बाद में खारिज किया। उत्तरी इसराइल के शहरों पर हिजबुल्लाह ने दागे हैं 15 रॉकेट। पिछले 24 घंटे में नॉर्दर्न इसराइल के इलाकों में ये रॉकेट दागे गए। अब यूक्रेन पर मार गिरा है ड्रोन, ये ईरान का दावा है। देखिए केशमदीप वो इलाका है जहां पर लगातार ईरान की तरफ से अपने एयर डिफेंस यूनिट्स को और ज्यादा रिवाइव करने, उनको दोबारा से तैयार करने की कोशिश की जा रही थी। इसको लेकर ईरान ने कुछ तस्वीरें भी साझा की जहां उन्होंने कहा कि हमारे एयर डिफेंस यूनिट्स लगातार एक्टिव हैं और केशमदीप के ऊपर लगातार अमेरिका के ड्रोन सर्वेलेंस कर रहे थे जिन्हें हमने मार गिराया, और उसके मलबे की तस्वीर भी ईरान की तरफ से उनके सरकारी मीडिया ने जारी किया, जो उसके टुकड़े जो हैं उनके उसके आपके आप उसके पुर्जे आप उसके टुकड़े लगातार देख सकते हैं। उसकी तस्वीरें भी ईरान के मीडिया हाउसेस ने जारी की है। और देखिए इसी बीच एक और बड़ी जानकारी सामने आ रही है कि 2 दिन पहले कुवैत में अमेरिकी बेस पर ईरान के मिसाइल हमलों में 5 अमेरिकी सैनिक घायल हुए हैं। ये जानकारी अभी आ रही है कि ईरान की फतेह 110 बैलिस्टिक मिसाइलों ने कुवैत पर अली अल साले हवाई अड्डे पर निशाना बनाया था और हवाई रक्षा द्वारा मिसाइल को रोकने के बावजूद इसके मलबे में लगभग 5 अमेरिकी सैनिक घायल हो गए, और ये रिपोर्ट खुद अमेरिकी अखबार और अमेरिकी मीडिया हाउसेस दे रहे हैं। खबर है कि MQ-9 ग्रिपर ड्रोन नष्ट कर दिया गया, एक अन्य ड्रोन बुरी तरीके से क्षतिग्रस्त भी हुआ है।

और चलिए अब आपको एक बार फिर समझाने की कोशिश करते हैं कि पिछले 5 दिनों में अमेरिका और ईरान में झड़प हुई है, इसमें आपको बिग वॉल पर लिए चलते हैं और आखिरकार दिखाते हैं कि पिछले 5 दिनों के घटनाक्रम क्या रहा है, कैसे लगातार एक दूसरे पर अटैक किए गए। 25 मई की बात हम कर रहे हैं। सबसे पहले आपको दिखाएं, ईरान के मिसाइल लॉन्च साइट पर हमले किए गए। ये अमेरिका का दावा था कि देखिए हम पर अटैक करने की कोशिश की गई थी। ईरान ने कहा कि अमेरिकी जेट पर ड्रोन अटैक किए गए। ये देखिए ये ईरान का दावा था। अब ईरान कभी ईरान की 2 स्पीड बोट डुबाने का दावा अमेरिका की तरफ से किया गया। वहीं ईरान ने कहा अमेरिकी नेवल बेस पर भी हमने अटैक किया है। उसके बाद 27 मई की हम बात कर रहे हैं। 27 मई को कहा कि बंदर अब्बास के ग्राउंड स्टेशन पर भी बमबारी हमने की है। अब इसके बाद कुवैत में यूएस बेस के ऊपर हमने हमला किया, जिसकी रिपोर्ट हम आपको इससे पहले थोड़ी देर पहले दिखा रहे थे। 27 मई को ईरान के 4 ड्रोन हमले किए गए नाकाम, यानी ईरान की तरफ से जो ड्रोन हमले किए जा रहे थे उसको अमेरिका ने कहा कि हमने उसे नाकाम कर दिया है। कुवैत सिटी में 6 किलोमीटर दूर अटैक करने की बात ईरान की तरफ से कही गई। इसके बाद क्या हुआ, देखिए अमेरिका ने कहा कि ईरान के 4 ड्रोन हमले में हमने नाकाम कर दिया है। ईरान ने कहा कि देखिए हमने लगातार उनके ड्रोन को निष्क्रिय कर दिया। लेकिन इस समय अगर आप देखें कि आखिरकार अमेरिका और ईरान की डील में कौन कौन से रोड हैं, कौन कौन से ऐसे डेडलॉक हैं, सिर्फ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज नहीं बाकी कौन कौन से इलाके हैं। देखिए हॉर्मुज पर अधिकार की जंग को लेकर ज्यादा आप कह सकते हैं कि डेडलॉक क्रिएट हुआ है। दूसरी बड़ी अपडेट क्या है, हॉर्मुज पर टोल लेने को लेकर भी अमेरिका बहुत ज्यादा एडमिट है, कह रहता है कि देखिए ना तो ईरान ना ही ओमान या कोई देश इस पर टैरिफ या फिर इस पर वसूली कर सकता है। ईरान के सर्वाधिक यूरेनियम यानी इंडिच यूरेनियम को लेकर भी डेडलॉक है। ईरान की फ्री संपत्ति, जो ईरान मांग कर रहा है कि देखिए आपको डीफ्रीज करना होगा उन सभी संपत्तियों को जो मिडिल ईस्ट में अमेरिका के पास मौजूद है। अब ईरान अमेरिका में ताजा झड़प भी हुई है, ये भी आप कह सकते हैं एक बड़ा डेडलॉक क्रिएट कर सकती है हाल ही के दौर के अंदर। लेबनन पर हमले रुक नहीं रहे, ईरान कह रहा है कि देखिए आपको लेबनन से वापस आना पड़ेगा, इसराइल मानने को तैयार नहीं। ओमान को अमेरिका की ताजा धमकी ने भी कहीं कह सकते हैं कि माहौल को बहुत ज्यादा गड़बड़ा दिया है। और ये माना जा रहा है कि मिडिल ईस्ट के तमाम देश जो अमेरिका के साथ खड़े हुए शांति वार्ता की बात कर रहे थे वो भी अब अमेरिका के रुख से बहुत ज्यादा नाराज है। इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है कि ट्रंप ने ईरान के साथ समझौते पर अभी तक कोई फैसला नहीं किया है। न्यूयॉर्क टाइम के हवाले से खबर आ रही है कि डोनाल्ड ट्रंप ईरान के साथ समझौते पर कोई फैसला लिए बिना ही सिचुएशन रूम में लगभग 2 घंटे बैठे रहे और उसके बाद कोई फैसला लिए बगैर वहां से चले गए। अधिकारी ने यह भी बताया, जो न्यूयॉर्क टाइम्स को बताया जा रहा है कि समझौते की दिशा में प्रगति हो रही है, लेकिन ईरान की जब्त संपत्ति, रिहाई समेत कई मुद्दों पर

0: असहमति हुई है।
1: देखिए कल डोनाल्ड ट्रंप ने सिचुएशन रूम में जाने से पहले ये दावा किया था, ऐलान किया था कि देखिए बहुत जल्दी हम ब्लॉकेट को खोल देंगे और ईरान के साथ हमारी डील पूरी लगभग तय है। लेकिन उसी के बाद 15 मिनट के बाद ही ईरान ने दावा किया कि कोई डील नहीं होने वाली है। और इन बड़ी खबरों पर हमारे साथ हमारे दोनों खास मेहमान भी हमारे साथ जुड़े हैं। हमारे साथ जनरल सिवाज भी हैं और हमारे साथ डीके पांडे सर भी हैं। जनरल सिवाज, डोनाल्ड ट्रंप बार बार इस बात को लेकर ऐलान करते हैं कि देखिए डील हो गई है, सहमति बन गई है, अनाउंसमेंट अब थोड़ी देर में हो जाएगा। ईरान उसके 15 मिनट के बाद ही ऐलान कर देता है कोई डील नहीं होगी। दोनों पॉइंट हमारे बहुत ज्यादा क्लियर हैं। तो क्या लगता है कि सिचुएशन जा कहां रही है? क्या डोनाल्ड ट्रंप एक ब्लफ खेल रहे हैं? वो अपनी सैन्य कार्रवाई में लगे हुए हैं, वो चाहते हैं कि देखिए ईरान इस मुखालते में रहे कि देखिए यहां बातचीत हो रही है, उसी बीच वो एक बड़ा अटैक करते हैं ईरान के ऊपर।
2: हाँ मेरे को देखो सुबह देख तो बात है कि कहीं ना कहीं डील इतनी नजदीक है नहीं, क्योंकि रेड लाइन जो है अमेरिका की और ईरान की उसमें बहुत फर्क है। अमेरिका बिल्कुल चाहता है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुल जाए जिसके अंदर कोई टोल नहीं लगेगा, जैसे 28 फरवरी से पहले था। उसके बाद वो कहता है कि जो यूरेनियम प्रोग्राम है उसके ऊपर नकल कसी जाए जो कि ईरान का, और दूसरा जो एनरिच यूरेनियम है वो वापस दे दिया जाए, ईरान के अंदर नहीं रहेगा। इन तीन रेड लाइन में वो बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज करने के लिए तैयार नहीं। और जबकि ईरान है वो चाहता है कि कहीं ना कहीं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में उसकी सॉवरेंटी रहे, वो टोल ले पाए। और दूसरा वो ये कह रहा है कि जो बातचीत होगी न्यूक्लियर के ऊपर वो बातचीत 60 दिन का जो सीज फायर होगा उसमें होगी। और वो दूसरा बड़ा इंपॉर्टेंट चीज जो बार बार कह रहा है कि जो $24 बिलियन उसकी जो एक प्रकार से एसेट्स डी फ्रीज करके हैं उसको रिलीज किया जाए, उसमें से एटलीस्ट 50%। तो मुझे लगता नहीं कि इतनी जल्दी डील होगी क्योंकि अभी तक सहमति नहीं हुई है। दूसरी बात आप बता रहे हैं कि कहीं ना कहीं डोनाल्ड ट्रंप एक प्रेशर टैक्टिक्स के इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहे हैं, अपनी डोमेस्टिक कॉन्स्टिट्यूएंसी पे प्ले कर रहे हैं, वो दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई हम बहुत तैयार हैं डील करने के लिए अगर ईरान नहीं। ये भी सच्चाई है, अगर ये डील नहीं होती तो फिर ये लड़ाई दोबारा शरा स्टार्ट होगी, और अगर होती है तो मैं यही कहूंगा सुमित ये बहुत ही भयानक होगी। इसमें फिर पलटा ईरान का भारी होने के चांसेस हैं क्योंकि उसके पास जो मिसाइल रॉकेट ड्रोन हैं वो 60% अभी भी बरकरार है, जबकि अमेरिका के पास जो हथियार है स्पेशली पेट्रोइड मिसाइल सिस्टम और थॉर मिसाइल सिस्टम उसमें भारी कमी आई है।
1: सर हमारे साथ ग्रुप कैप्टन डीके पांडे सर भी मौजूद है। ग्रुप कैप्टन डीके पांडे सर, इस समय डोनाल्ड ट्रंप जो है डेस्परेट नजर आते हैं। डेस्परेट इसलिए मिड टर्म आने वाले हैं, लगातार नाटो देश लगातार उन पर दबाव बना रहे हैं, यहां तक कि मिडिल ईस्ट के देश भी लगातार उन पर ये दबाव बना रहे हैं कि आपने जो सिक्योरिटी शील्ड हमें प्रोवाइड की थी आखिरकार वो निष्क्रिय साबित हो रही है। तो डोनाल्ड ट्रंप एक्ट ऑफ डेस्परेशन में कहीं ऐसा ना हो कि ईरान पर बड़े अटैक करते जैसा जनरल सिवाज भी बता रहे थे, लेकिन हासिल क्या होगा क्योंकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज और एनरिच यूरेनियम तो अभी भी ईरान के हाथ में।
3: बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं कि जो समीकरण है थोड़ा सा जो है गबड़ाया हुआ है। गबड़ाया हुआ किस दृष्टि से कि डोनाल्ड ट्रंप बिल्कुल दो बातों की घोषणा उन्होंने कर दी कि जो रिच यूनियम है वो ले लेंगे और परमाणु बम के कोई भी उम्मीद नहीं किया जाती ईरान के साथ, ईरान को हक नहीं है परमाणु बम बनाने का रखने का, और दूसरी बात कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को टोल फ्री करके खुलवा दिया जाएगा। ये दो बातें अगर सच्ची नहीं होती तो जो डोनाल्ड प्रेसिडेंट है जो कि पूरे दुनिया के माने हुए प्रेसिडेंट हैं उनके शब्दों की गहराई जो खत्म हो जाएगी, क्रेडिबिलिटी दांव पर लगी है निश्चित रूप से अपने जो खुद की अमेरिकन पॉपुलेशन है उसके सामने भी काफी जो है उनका प्रेशर आ रहा है कि चीजें बड़ महंगी होती जा रही हैं, आउट ऑफ रीच हो रही हैं। तीसरा जो है मिडिल ईस्ट के जो कंट्रीज हैं उनका उनके अंदर एक क्रेडिबिलिटी थी कि उनको सिक्योरिटी मिलेगी वो हासिल नहीं होगी। इसराइल और अमेरिका के बीच में दूरियां बढ़ती जा रही हैं क्योंकि इसराइल के ऑब्जेक्टिव थे वो कुछ लग रहा है कि उसमें उससे जो है अमेरिका दूर हट रहा है, तो ऐसी दशा में मुश्किल है कि डील हो। लेकिन साथ में जो संगारी जो डायलॉग में भी जो है ने कहा कि अमेरिका तैयार है लड़ने के लिए, यानी कि अभी भी देखिए आप जब जाते हैं बात करने के लिए नेगोशिएशन टेबल पर तो एक माहौल रखते हैं पॉजिटिव जो कि दोनों तरफ से बताता है कि हाँ हम शांति के लिए तैयार हैं। लेकिन आप जब धमकी वाले शब्दों का और उकसाने वाले शब्दों का प्रयोग करते हैं तो साफ जाहिर होता है कि एजेंडा कुछ और है और हम आपको नीचा दिखाना चाहते हैं, ऐसी भावना रहेगी तो निश्चित डील होना लगभग असंभव है। मजेदार चीज यह है कि 50% यानी कि $12 बिलियन का छूट अगर देते हैं तो कुछ उसके पास राशि तो आ जाएगी, लेकिन ईरान के लिए चिंता यह है कि उसकी इकोनॉमी जो है बहुत खस्ता हालत में उसको कैसे वो
1: सर एक और बात बताइए क्योंकि देखिए ये बात तो हम भी मानते हैं कि देखिए अमेरिका इस समय बहुत ज्यादा दबाव में है, लेकिन ओमान जैसे देशों को धमकाना, ओमान जब ये टोल की बात कहता उसने कहा कि हमने तो ये बात ही नहीं कही, अमेरिका की तरफ से चेतावनी दे दी गई कि हम बूम बूम कर देंगे उड़ा देंगे पूरी तरीके से, डोनाल्ड ट्रंप आखिरकार ये धमकी क्यों दे रहे हैं? क्या उनको लगता है कि बाजी उनके हाथ से निकलती जा रही है और अब तो मिडिल ईस्ट के वो देश जो एक तरीके से उनके संरक्षण में रहते थे वो भी उनके ऊपर सवाल खड़े कर रहे हैं?
3: निश्चित रूप से जो क्रेडिबिलिटी है वो नीचे, जैसा कि मैंने पहले भी जिक्र किया, क्रेडिबिलिटी जो है वो सिक्योरिटी जो एक उनको अम्ब्रेला मिल रहा था मिडिल ईस्ट कंट्रीज को, उसमें कहीं छेद नजर आ रहे हैं। लेकिन अगारची और ओमान की जो किंग है उनके बीच में बातचीत हुई और ये हुआ था कि दोनों देश मिलकर टोल ले लेंगे। शायद ये बात अमेरिका तक पहुंची और उन्होंने कहा भाई एक तरफ से वो प्रयास कर रहे हैं कि भाई टोल समाप्त करें और ओमान जो है उस पर वो ईरान के साथ जा रहा है। तो ऐसे हालात में इसके पहले की बात बढ़े उस पर रोक लगाना जरूरी है, और इसलिए जो है उनका डोनाल्ड ट्रंप का जो बहुत ही जबरदस्त रिएक्शन आया कि ओमान को वो लगभग समाप्त कर देंगे, वो बुरे दिन उनके आ रहे हैं। तो अब वहां थोड़ा सा बैक स्टेप में हुआ, लेकिन मुख्य देखिए मुख्य प्रॉब्लम तो है कि भाई टॉल के साथ अगर जाता है तो पूरे विश्व की जो अर्थव्यवस्था है उस पर सभी देशों को चोट पहुंच रही है, उसको किस प्रकार से समाप्त किया जाए, कितना जल्दी समाप्त किया जाए, यह एक बहुत बड़ा प्रश्न है। देखना होगा कि किस प्रकार से कूटनीति चालों द्वारा करते हैं। और अंत में मैं ये कहना चाहूंगा कि कोई भी बड़ा युद्ध नवंबर के पहले होगा इसकी मेरे आकलन के हिसाब से उसकी संभावना बहुत कम नजर आती है, क्योंकि नवंबर तक इसको इस हालात को चाहते हैं कूटनीतिक तौर पर वो हल करें, उसके बाद ही कोई आक्रमण का पक्ष ले सकते हैं।
1: बिल्कुल, हमारे साथ जनरल सिवाज भी दोबारा से जुड़ गए। जनरल सिवाज एक बात बताइए, नवंबर तक डीके पांडे सर कह रहे हैं कि खींचना चाहते हैं, 60 दिन का एक्सटेंशन की भी बात हो रही है देखिए सीज फायर को लेकर, क्या आपको लगता है कि ये कोई स्थायी समाधान होगा? क्योंकि देखिए ऐसा नहीं है कि ये लिमिटेड हो गया सिर्फ ईरान से अमेरिका और इसराइल तक, ये तो बढ़ता जा रहा है, पूरी दुनिया पर इसका असर पड़ रहा है। तो क्या माने कि ये 6-8 महीने नहीं कई सालों तक इसका प्रभाव रहेगा?
2: हाँ बिल्कुल, इसका प्रभाव बहुत बड़ा रहेगा, इसमें कोई शक नहीं कि जिस प्रकार से सिचुएशन अभी बिल्डअप हो रही है, और मुझे लगता है ये बात भी ठीक है क्योंकि जो मिड टर्म इलेक्शन है नवंबर में ये बहुत इंपॉर्टेंट है डोनाल्ड ट्रंप के लिए, क्योंकि उनकी जो अप्रूव रेटिंग है वो गिरती जा रही है। इसको मद्देनजर रखते हुए मुझे लगता है कि अब कहीं ना कहीं डोनाल्ड ट्रंप बहुत प्रेशर में है, मगर उनको ये पता है कि ये डील इतनी आसान नहीं है, क्योंकि ईरान इस डील को नहीं मानेगा जब तक उसको लगेगा कि दो चीजें जब तक उसकी उसके पक्ष में नहीं आएंगी, एक तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेके उसको टोल लेने की, और दूसरा वो कहीं ना कहीं जो न्यूक्लियर वेपन की बात कर रहा है एनरिचमेंट यूरेनियम उसमें वो कॉम्प्रोमाइज करने के मूड में नहीं है। जो JCPO जो ज्वाइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन था 2015 में जो बैरक ओबामा ने डील की थी, उससे बहुत कमजोर डील होगी अगर ये होगी भी तो। मुझे लगता है डोनाल्ड ट्रंप को बहुत ऐसा लगता है उसको कि आने वाले टाइम में उनकी जो स्थिति है वो और कमजोर होगी, वो इस चाहते हैं कि ये लंबा हो। ये क्या लड़ाई दोबारा शुरू हो सकती है, इसके चांसेस इसलिए कम है क्योंकि अमेरिका लड़ाई नहीं चाहता है, अमेरिका को पता है कि वो इतने तैयारी नहीं करे हैं, अभी ईरान की कैपेबिलिटी और भी बड़ी है और ईरान भी इस लड़ाई को दोबारा नहीं चाहता क्योंकि वहां इंटरनल डिसेंट बहुत हो रहा है, वहां की इकोनॉमिक कंडीशन बहुत हालात खराब है, वहां पर भी काफी हद तक नुकसान हुआ है, इसके बाद इकोनॉमिक सैंक्शन है उनके एसेट्स फ्रीज है, तो वो भी चाहता है, मगर दोनों चाहते हैं मगर वो अपने टर्म्स एंड कंडीशन में चाहते हैं, इसीलिए ये प्रॉब्लम आ रही है। ये वक्त ही बताएगा क्या होगा, मगर आज की तारीख में इतना लग नहीं रहा कि इतनी जल्दी ये डील होगी।
1: बिल्कुल, क्योंकि ऐसा उम्मीद तो देखिए ऐसे ही की जा रही है कि देखिए अब ये कहीं ऐसा ना हो कि सालों सालों तक ये परिस्थितियां बरकरार रहे। आप हमारे साथ बने रहिए दोनों हमारे एक्सपर्ट, दोनों हमारे मेहमान। लेकिन इस बीच एक और बड़ी खबर अपने दर्शकों को बताया कि ना सिर्फ डोनाल्ड ट्रंप के फैसलों को लेकर बल्कि उनकी हेल्थ को लेकर, उनके स्वास्थ्य को लेकर भी अमेरिका में सवाल खड़े हो रहे हैं। दरअसल अमेरिका की ओर से जहां पर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के सवाल स्वास्थ्य को लेकर लगातार तरह की बातें हो रही है, अमेरिकी मीडिया में कई तस्वीरें भी सामने आई जिसमें डोनाल्ड ट्रंप के हाथों पर नीले निशान देखे गए, कहा गया ये चोट के निशान है। हालांकि उसके बाद व्हाइट हाउस की तरफ से स्पष्ट कर दिया गया कि ये लगातार हाथ मिलाने से, बार बार हाथ मिलाने की वजह से मामूली उनके जो आप कह सकते हैं नीले निशान उनके हाथों पर पड़ गए हैं। लेकिन अब उसको लेकर भी, व्हाइट हाउस के उन दावों को लेकर भी सवाल खड़े होने लग गए हैं। दरअसल जॉर्ज वॉशिंगटन विश्वविद्यालय में मेडिकल के प्रोफेसर डॉक्टर रेनन ने कहा है कि इस रिपोर्ट में उन्होंने कहा कि व्हाइट हाउस की रिपोर्ट पर ही सवाल खड़े किया। उन्होंने कहा कि देखिए अगर उनके हाथों पर निशान है तो सीधे हाथ पर निशान होने चाहिए, लेकिन उनके दूसरे हाथ पर भी आखिरकार ये निशान क्यों उठ रहे हैं और ये निशान क्यों है? तो ऐसे में उनके खिलाफ या फिर उनके स्वास्थ्य को लेकर भी कई बड़े सवाल खड़े होने शुरू हो गए हैं और व्हाइट हाउस के उन दावों का भी विरोधाभास सामने आ रहा है। और देखिए इस खबर पर व्हाइट हाउस ने ट्रंप की ताजा मेडिकल रिपोर्ट भी जारी की है और घोषणा की है कि करीबन 79 साल के राष्ट्रपति अच्छे स्वास्थ्य में है, उनके फेफड़े, उनके आपके सिस्टम, उनके उनके आप कह सकते हैं जो स्वास्थ्य है वो पूरी तरीके से ठीक है। उनका हृदय उनकी उम्र से 14 वर्ष छोटा है, यानी वो अच्छे तरीके से एक्टिव है, वो बहुत तेजी से या फिर बहुत अच्छे तरीके से काम कर रहा है। और देखिए, मैं आपको बता दें कि डोनाल्ड ट्रंप की हाल ही में कई तस्वीरें एक बार फिर से सार्वजनिक हुई। उनकी तस्वीरों में उनके अस्वस्थ होने की बातें की गई, जिसको लेकर व्हाइट हाउस ने एक आधिकारिक स्टेटमेंट भी जारी किया और ये कहा कि वो पूरी तरीके से स्वस्थ है। और चलिए, रणभूमि में वक्त है छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद आपको बताएंगे युद्ध के दूसरे मोर्चे पर कैसे वो युद्ध और ज्यादा भीषण और ज्यादा विध्वंसक होता जा रहा है। आप देख रहे हैं आज तक
0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोस, इन एसोसिएशन विद भारत की अपनी इलेक्ट्रिक।
4: As a truck driver, I've learned how important road safety is. I know that large trucks need more time and room to stop. That's why I always hang back and follow other vehicles at a safe distance. Everyone can help keep our roads safe. Next time you're driving, try to remember to always give trucks extra space when you merge in front of them. Let's all plan to share the road safely. Learn how at www.sharetheroadsafely.gov.
5: You can stream all the podcasts you already love right on TuneIn, available on your smartphone, on your tablet, and even on your connected devices. There's so much to explore, like mind-blowing facts about your world.
6: So they were disallowed from speaking their language.
5: In-depth conversations with A-list celebrities.
7: No, I was ready to go. You know, after I wanted to fulfill my contract.
5: True crime podcasts you just can't stop listening to.
8: Others escape justice to live and die in infamy. These
5: plus the news and sports content you crave in podcast form.
9: Couldn't run in a straight line very quickly and didn't have much of an arm. His arm is stronger now.
5: So whether you want to save your go-to shows for later by subscribing and listening offline, or you want to discover a whole slate of new podcasts to be obsessed with, TuneIn is your destination. True crime, sports, lifestyle, culture, news, and so much more. TuneIn is Podcast Central. Hear them all here. The music you love is all right here on TuneIn, bringing you good vibes and the hottest hits. But are you ready to amp things up even more? Just upgrade to TuneIn Premium for all of our exclusive music channels, completely commercial free. So you get more of today's hits. More country roads. And everything else. Hear it all here, commercial free, on TuneIn.
10: Feeling a bit nostalgic for the 90s? TuneIn has got you covered with 90s hits. Jam out to your favorite artists from the 90s, like pop stars NSYNC and Britney Spears. Or rock artists like Sublime and Third Eye Blind. Reminisce about the good old days of the 90s. Just search 90s hits or ask your device to play 90s hits on TuneIn.
0: Presented by पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा, इन एसोसिएशन विद
11: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
12: हेक्सा ऑर्गेनिक रेडियंट स्किन एंड नरिश्ड हेयर, प्योर आयुर्वेदिक ब्यूटी।
5: You can stream all the podcasts you already love right on TuneIn, available on your smartphone, on your tablet, and even on your connected devices. There's so much to explore, like mind-blowing facts about your world.
6: So they were disallowed from speaking their language?
5: In-depth conversations with A-list celebrities.
7: No, I was ready to go. You know, after I wanted to fulfill my contract.
5: True crime podcasts you just can't stop listening to.
8: Others escape justice to live and die in infamy.
5: Plus the news and sports content you crave in podcast form.
9: Couldn't run in a straight line very quickly and didn't have much of an arm. His arm is stronger now.
5: So whether you want to save your go-to shows for later by subscribing and listening offline, or you want to discover a whole slate of new podcasts to be obsessed with, TuneIn is your destination. True crime, sports, lifestyle, culture, news, and so much more. TuneIn is Podcast Central. Hear them all here.
13: Hop on board and settle in for an easygoing cruise with Sailing on TuneIn. Let the breeze roll in and the rhythm carry you along. Enjoy yacht rock classics from artists like Hall & Oates, oh, yeah, you make my dreams come. Steely Dan, Loggins and Messina, and much more. Only smooth sailing ahead with songs that help you get away. Just search Sailing. Tell your device to play Sailing on TuneIn.
14: The music you love is all right here on TuneIn, bringing you good vibes and the hottest hits. But are you ready to amp things up even more? Just upgrade to TuneIn Premium for all of our exclusive music channels, completely commercial free. So you get more of today's hits. More country roads. And everything else. Hear it all here, commercial free, on TuneIn.
15: साल से इंडिया टुडे मीडिया इंस्टीट्यूट देश को दे रहा है बेहतरीन पत्रकार। अगर आपका लक्ष्य भी है पत्रकारिता, तो फिर सोचना क्या? रजिस्टर करने के लिए विजिट करें www.indiatodaymediainstitute.in या 9560065465 पर कॉल करें।
16: The action never stops and neither do we. From breaking updates to match analysis, from big moments to bigger conversation. This is where sports comes alive. Fast, sharp, unfiltered. For the fans who want every update, every story, every headline first, welcome to Sports Today, your destination for everything sports. Press that bell icon and subscribe now.
17: कोटा मेडिकल कॉलेज के सरकारी अस्पतालों में 5 प्रसूताओं के मौत के मामले में नया खुलासा हुआ है कि मरने वाली 5 महिलाओं को ऑक्सीटोसिन का जो इंजेक्शन लगाया गया था दरअसल वो नकली था। अब बड़ा सवाल है सरकारी अस्पताल में नकली इंजेक्शन कैसे पहुंचा? राजस्थान सरकार के तरफ से आज तक कुछ भी नहीं बताया गया है इन महिलाओं की मौत कैसे हुई थी। शरद कुमार, जयपुर, आज तक।

क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाएं स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा, इन एसोसिएशन विद
1: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो,
0: हेक्सा ऑर्गेनिक रेडियंट स्किन एंड नरिश्ड हेयर, प्योर आयुर्वेदिक ब्यूटी।

लखनऊ में एक कार्यक्रम में बोले सीएम योगी, अहिंसा ही इंसान का परम धर्म, लेकिन जब कोई देश समाज के लिए खतरा तो अपनानी पड़ती है अहिंसा की नीति।

0: बोले वकीलों से बात कर कर दूंगा जवाब। राजस्थान के कई शहरों में बिगड़े मौसम, धूल भरी आंधी से दिन में ही छाया अंधेरा।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोस इन एसोसिएशन विद
2: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक।
0: रणभूमि स्पेशल में आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। हॉर्मूज को लेकर बातें कितनी भी की जा रही हो, लेकिन सच तो यही है कि अमेरिका और ईरान में इस मुद्दे को लेकर कोई सहमति नहीं और एक दूसरे पर अड़े हुए हैं। कहने को तो अमेरिकी नाकेबंदी चरणबद्ध तरीके से लगातार हटाई जानी है, लेकिन यूएस नेवी ने ताजा चेतावनी देकर हालातों को और ज्यादा भयानक बना दिया। उधर तेहरान में हजारों लोगों ने प्रदर्शन किया है और अमेरिका को जमकर कोसा और हॉर्मूज से लेकर यूरेनियम तक ईरान की लीडरशिप की नीतियों का समर्थन भी किया।

0: डील पर काम तेज, कहां फंसा है पेच? हॉर्मुज में यूएस का प्रण, ईरान के खिलाफ आखिरी रण। जहाजों को चेताया, समंदर में आने वाला है बवंडर। इस चेतावनी को ध्यान से पढ़िए, इसे यूएस नेवी सेंट्रल कमांड ने जारी किया है। यह हॉर्मुज में मौजूद सारे जहाजों के लिए है। अमेरिकन नेवी ने चेतावनी जारी की है कि ईरान के खतरनाक और गैर कानूनी कामों को रोकने के लिए जल्द ही बड़ा ऑपरेशन शुरू होने वाला है। हो सकता है कि जवाब में ईरान भी हमला करे, लिहाजा हॉर्मुज में जहाजों को मुश्किल हालातों के लिए तैयार रहना चाहिए। चेतावनी में जिन इलाकों में सतर्क रहने की बात कही गई है, उनमें अरब की खाड़ी, हॉर्मुज, ओमान की खाड़ी और उत्तरी अरब सागर शामिल है। संकेत साफ है, हॉर्मुज की लहरें अंदर से भी अशांत है और अब ऊपर से भी एक बार फिर शांति भंग होने के आसार बढ़ गए हैं। ईरान हर हाल में अमेरिका की नाकेबंदी को जल्द से जल्द हटाने की मांग कर रहा है और अमेरिका की मांग है कि टोल वसूली बंद की जाए और जहाजों की आवाजाही शुरू की जाए। इस बीच डील को लेकर अभी भी सस्पेंस बना हुआ है। ना तो हॉर्मुज को लेकर अभी कोई फैसला हुआ है और ना ही यूरेनियम को लेकर। अब आपको दिखाते हैं ईरान के लोग इस डील को लेकर क्या कह रहे हैं। यह है तेहरान का इनकलाब स्क्वाड। अमेरिका के खिलाफ और ईरान की लीडरशिप के साथ अपनी भावनाओं के इजहार के लिए हजारों लोग यहां इकट्ठा हुए हैं। हाथों में झंडे हैं, जुबां पर देशभक्ति के नारे हैं। जगह जगह ईरान के नेताओं की तस्वीरें हैं। इस भीड़ में सिर्फ उन्माद नहीं है, बल्कि अमेरिका को कोसने के लिए तथ्यों पर आधारित इनके अपने तर्क।
1: اگر این حرفی که میزنه درست باشه نشان دهنده اینه که محاصرش شکست خورده و اون چیزی که تو ذهنش بوده به وقوع نپیوسته، از پس ما نتونست بر بیاد و برای اینکه بیش از این ضایع نشه میگه که ما محاصره رو پایان میدیم. حالا بعد ببینیم چقدر داره درست میگه. اصلا من حتی میگم ما همون سال 2015 هم اشتباه کردیم، اون اورانیوم ها رو چند تن اورانیوم تحویل دادیم، بسیار اشتباه بود. اورانیوم غنی سازی شده ارزش مادی بالایی داره، هم معنوی هم مادی، حکم بخشی از خاک ماه. چرا باید بدیم به اون؟ هیچ ربطی نداره، برای ماه، برای ملت یونانه و ما تصمیم میگیریم نه نخواهیم داد.
0: هرمز کو لیکر بھی لوگ ایک مت ہیں، یعنی هرمز فلال بند ہی رہے تو ایران کے لیے اچھا ہے.
2: حرف رهبرمونه، تنگه باید بسته بمونه تا وقتی که رهبرمونه اعلام کنن، ما هم همین میگیم.
0: هرمز پر خود ایران مشکلوں میں گھرا ہوا ہے. امریکی ناکےبندی کی وجہ سے اس کا لاکھوں ٹن تیل نریات نہیں ہو پا رہا ہے، لیکن یہ اکلوتا ایسا ہتھیار ہے جو 28 فروری سے شروع ہوئے مہا یدھ میں اس کی طاقت بڑھاتا رہا ہے. ظاہر ہے وہ کسی بھی قیمت پر اس کا نینترن امریکی شرطوں پر نہیں چھوڑے گا. آج تک پیرول.
3: اور دیکھیں سٹیٹ آف ہرمز کو لے کر ایک بار پھر سے ایران نے ایک بڑا بیان جاری کیا ہے. ایران کی فارس نیوز ایجنسی کے مطابق امریکہ کی ناکے بندی ہٹنے کے بعد ہی ایران اس پر کوئی فیصلہ لے گا. وہیں اپنی پور نردارت ویوستہ کے انوسار ہرمز سٹیٹ کو پھر سے کھول دے گا. یہ ایران کی طرف سے کہا گیا، یعنی جو یتھا استھتی تھی 28 فروری سے پہلے وہ تبھی ہوگی جب امریکہ اپنی طرف سے پورے بلاکیٹ کو ہٹا دے گا. और इस बीच एक और बड़ी खबर मिल रही है जिसमें अमेरिकी वित्त मंत्री ने कहा है कि यह दावा किया गया है कि अमेरिका ने ईरान की लगभग $1 अरब की क्रिप्टो करेंसी संपत्ति को जब्त कर लिया गया है. यह ईरान के लिए एक बड़ा झटका माना जा रहा है. पहले से ही ईरान पर आर्थिक बोझ लगातार बढ़ता जा रहा है और इसी बीच ये बड़ी खबर आ रही है जिसमें कहा जा रहा है कि अमेरिका ने एक बार फिर से बड़े आर्थिक प्रतिबंध या बड़े कदम उठाए. $1 अरब की क्रिप्टो करेंसी संपत्ति जब्त कर ली गई है. देखिए ईरान बातचीत के लिए कई पेशकश या कई शर्तें रखे हुआ है जिसमें सबसे महत्वपूर्ण शर्त यह भी थी कि ईरान की डीफ्रीज की हुई सारी संपत्ति को अमेरिका डीफ्रीज करेगा. लेकिन अमेरिका की तरफ से और कड़े प्रतिबंध या फिर बड़े फैसले लिए गए. और वहीं अमेरिका के दावों पर ईरान का भी पलटवार हुआ है. ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बघेई ने कहा है कि परमाणु मुद्दे पर कोई बातचीत नहीं हो रही है और फिलहाल उनका ध्यान युद्ध खत्म करने पर है। साथ ही इस्माइल बगई ने कहा है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खोलने पर सिर्फ ईरान और ओमान मिलकर फैसला लेंगे, अमेरिका के साथ इसको लेकर कोई समझौता नहीं होगा। और हमारे साथ हमारे दोनों खास मेहमान भी जुड़े हैं। जनरल सिवाज, अगर ये बार बार मान लिया जाए कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर बात ही नहीं करना चाहता ईरान, तो फिर ये हल निकलेगा कैसे?
4: हाँ बिल्कुल, देखो सुमित, एक बात तो माननी पड़ेगी, ईरान को भी सिचुएशन इतनी अच्छी है नहीं कि जब से अमेरिका ने नेवल ब्लॉकेड लगाया है तो ईरान के पोर्ट से जो शिप आती थी, टैंकर आते थे और एक प्रकार से उसका ऑयल जाता था वो बंद है, और खर्क आइलैंड में 90% ऑयल इसका एक्सपोर्ट होता था वहां पर। अब जितनी भी इनके पास स्टोरेज फैसिलिटी थी वो भर चुकी है, अब इनके जो ऑयल कंपनीज हैं वो ऑयल प्रोड्यूस करना बंद करना पड़ेगा। तो यह समझना कि ईरान की सिचुएशन अच्छी वो नहीं है, क्योंकि जब से नेवल ब्लॉकेड लगाया है अमेरिका ने तो उस ईरान को भी तकलीफ हो रही है। यह सच्चाई है कि स्ट्रेट हॉर्मुज को बंद करने से 20% ऑयल और 35% जो गैस है पूरे वर्ल्ड की अब बंद है। 150 के करीब तरफ जहाज जाते थे, अभी करीब करीब 15-20 जहाज जा रहे, तो यह सच्चाई है। दोनों को नुकसान है, मगर यह ऐसा लगता है कि दोनों जो है एक पोस्चरिंग कर रहे। अमेरिका चाहता है कि किसी तरीके से दबाव डाला जाए ईरान पे, ईरान इनरिच यूरेनियम की बात करे, ईरान बोले कि वो न्यूक्लियर प्रोग्राम नहीं करेंगे, और जो स्टेट ऑफ हॉर्मुज को ऐसे खोला जाए जैसे कि 28 फरवरी से पहले था। जबकि ईरान ये कहने की कोशिश कर रहा है कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज में अमेरिका का कोई लेना देना नहीं, ईरान और ओमान डिसाइड करें। ये पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर ऐसा हुआ तो फिर ये जितने भी इंटरनेशनल वाटर हैं, मलक्का स्ट्रेट होगी है जिस प्रकार से बाकी भी हैं, उनके ऊपर हर देश अपना एक प्रकार से चाहेगा कि उसका इंपोर्टेंस बढ़े, वहां पर इंडोनेशिया मलेशिया कहेंगे, तो ये हो नहीं सकता और ईरान को समझना चाहिए। मगर जिस प्रकार से हालात जा रहे हैं, दोनों अपने कॉन्स्टिट्यूंसी को एड्रेस कर रहे हैं, और ईरान ये चाह रहा है कि क्योंकि आज लोग उनके साथ खड़े हैं वो मानने को तैयार नहीं, मगर ईरान की इकोनॉमिक कंडीशन बहुत ज्यादा खराब है। वहां पर जितने भी उसकी एसेट थे वो अभी तक फ्रीज हैं, उसके ऊपर ये क्रिप्टो करेंसी $1 बिलियन के करीब उसको भी इन्होंने एक प्रकार से फ्रीज कर दिया है। तो मुझे लगता है ईरान की सिचुएशन इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से इतनी अच्छी नहीं है,
3: बिल्कुल।
4: तो इसलिए वो भी चाहते।
3: सर हमारे साथ डीके पांडे सर भी है। पांडे सर एक बात बताइए, देखिए हम सारे एस्पेक्ट्स की बात कर रहे हैं, हर एंगल की बात कर रहे हैं, लेकिन इसराइल का एंगल, क्योंकि देखिए अमेरिका किसी को भी मना ले लेकिन इसराइल तो मानने को तैयार नहीं हो रहा। लेबनन की शर्त भी समझौते में रखी गई है, लेबनन पर अब भी अटैक हो रहे हैं, यहां तक कि लितानी रिवर को क्रॉस करने की बात भी की गई। तो इन तमाम चीजों के बीच में आप इसराइल के मोर्चे पर कैसे देखते हैं कि क्या इसराइल मानेगा अगर अमेरिका और ईरान के बीच में सहमति बन भी गई, क्या इसराइल दोबारा से कोई बड़े एक्शन नहीं लेगा?
5: देखिए इसराइल आप बड़ा इसराइल का रुख बड़ा क्लियर है, चाहे आप कोई समझौता हो, कोई सीज फायर हो, उसके जो मिलिट्री ऑब्जेक्टिव्स हैं उस पर वो लगा रहेगा, उसके उसमें कहीं उसको किसी पूरे विश्व को पता है कि बात होकर रहेगी, इसमें कोई दोराई नहीं, क्योंकि वो अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं। अगर वो नहीं लड़ेंगे तो समाप्त हो जाएंगे, उनको बहुत क्लियर पता है। अब बात यह है कि आगे जो जिस प्रकार से चीजें बढ़ रही हैं उसमें इसराइल ने जो जो रोल है वो कितना इंपॉर्टेंट है कितना नहीं है। देखिए पहली बात सबसे महत्वपूर्ण जो है, इसराइल चाहता था कि रिजीम परिवर्तन हो और कुछ आगे बढ़े, लेकिन अमेरिका की वजह से कुछ आगे नहीं बढ़े जैसा कहा जा रहा है, उनका आकलन है, और तो इससे इसराइल जो है बहुत खुश नहीं हुआ, क्योंकि अगर वो कुछ आगे बढ़ जाते जो पूरा प्लान था इसराइल का वो जो है पूरा डिस्टर्ब हो गया। तो इसके बदौलत जो है आपने देखा भी होगा कि कुछ खबरें भी आ रही हैं मीडिया में भी, ये वेस्टर्न मीडिया भी है, कि डोनाल्ड ट्रंप और नेतन्याहू के बीच में कुछ दूरियां बढ़ रही हैं, उसका मुख्य कारण यही है। लेकिन आगे जो है अगर इसराइल के उद्देश्य, देखिए इसराइल दो ही बातें चाहता है कि ईरान के पास,
3: बिल्कुल देखिए माफ कीजिएगा आपको बीच में रोक रहा हूं, क्योंकि देखिए बात यही कही जा रही है कि देखिए इसराइल को रोक पाना क्या अमेरिका के लिए बहुत आसान होगा, यह भी एक बड़ा सवाल है। अब चलिए रुख करते हैं युद्ध के एक और मोर्चे की तरफ, जहां पर रूस और यूक्रेन को लेकर युद्ध और ज्यादा भीषण होता जा रहा और खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। यूक्रेन के खुफिया जानकारी पर भरोसा करें तो यह सामने आ रहा है कि कुछ ही घंटों में रूस उसके ऊपर एक बड़ा हमला करने वाला है। जेलेंस्की की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही है, और एक तरफ रूस अपने शहरों के अंदर तबाही मचा रहा है, वहीं दूसरी तरफ अगर आप कह सकते हैं कि यूक्रेन के पास हथियारों की भारी कमी पैदा होती जा रही है।

0: यूक्रेन पर ताबड़तोड़ हमले करने वाला है रूस। रोमानिया से भी पंगे ले रहा है रूस। यूक्रेन में तबाही का दौर थमा नहीं है। अभी ज्यादा वक्त नहीं हुआ जब रूसी हमलों ने यूक्रेन की राजधानी कीव को दहला कर रख दिया था। अब यूक्रेन पर फिर बड़ा हमला होने वाला है, ये दावा किया है खुद यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने।
1: Шановні українці, українки, сьогодні кілька важливих речей. Перше, ми маємо інформацію від розвідки щодо підготовки Росією нового масованого удару. Будь ласка, зважайте на повітряні тривоги, бережіть життя. Наші служби оперативні, підготовлені, повітряні сили та інші захисники неба працюватимуть 24/7, як і завжди. Тематика ППО, необхідність і надалі допомагати Україні захистом неба – це ключовий пріоритет наш. Вдячний кожному партнеру, всім лідерам, всім державам, які готові допомагати, хто повністю виконує домовленості. Програма «Пьорл» має працювати, це стосується…
0: यूक्रेन की मुश्किलें लगातार बढ़ रही हैं। एक तरफ उसके कई इलाकों पर रूस का कब्जा हो रहा है, दूसरी तरफ ईरान युद्ध में उलझे अमेरिका से उसे मदद मिलनी कम हो गई है। हालांकि जेलेंस्की ने हथियार जुटाने की कोशिशें छोड़ी नहीं है। वो रूस से मिसाइल हमलों का मुकाबला करने के लिए अमेरिका पर पेट्रियट मिसाइलें देने का लगातार दबाव बना रहे हैं। उन्होंने पिछले हफ्ते ही ट्रंप को एक चिट्ठी भी लिखी थी जिसमें उन्होंने पेट्रियट PAC-3 मिसाइलों की सख्त जरूरत बताई थी। उधर रोमानिया में ड्रोन हमले के बाद से रूस पूरे यूरोप के निशाने पर आ गया है। दरअसल रोमानिया के यूक्रेन सीमा के पास लगे एक इलाके के रिहायशी अपार्टमेंट पर ड्रोन से भारी नुकसान की खबर है। इस हमले में दो लोग घायल भी हो गए हैं। इस हमले से नाटो बुरी तरह भड़का हुआ है। ब्रिटेन से लेकर कनाडा तक के प्रधानमंत्रियों ने भी रूस को इस हमले के लिए काफी लताड़ा है। उधर रूस ने इस हमले में अपना हाथ होने की पुष्टि नहीं की है। पुतिन सफाई दे रहे हैं कि इस ड्रोन के रूसी होने का दावा जल्दबाजी का नतीजा हो सकता है। पुतिन का तो साफ कहना है कि रूस यूरोप के खिलाफ कोई साजिश नहीं कर रहा है और कुछ ताकतें रूस को बदनाम करने के लिए ऐसा कर रही हैं।
2: делается это якобы в связи с агрессивными планами России в отношении западноевропейских стран. Это вранье. Это грубая, наглая ложь. И как говорил Геббельс в свое время, чем невероятнее ложь, тем быстрее в нее поверят. Именно такими стандартами и такие стандарты и внедряют западные политики, средства массовой информации в свою практическую ежедневную практику. В России никогда не было никаких...
0: रूस और यूक्रेन के बीच जंग पिछले 4 साल से भी ज्यादा वक्त से चल रही है। सीज फायर की तमाम कोशिशें की गई लेकिन तबाही का मंजर अभी जारी है जिसका असर यूरोप के कई देशों में देखने को मिल रहा है। आज तक ब्यूरो।
3: और देखिए इस युद्ध के मोर्चे पर भी बहुत ज्यादा घटनाक्रम तेजी से बदल रहा है। हमारे साथ हमारे दोनों खास मेहमान हैं। सर, हम आपसे जल्दी जल्दी अगर मैं पूछूं रूस को लेकर जनरल सिवाज, आखिरकार पुतिन करना क्या चाहते हैं यूक्रेन को लेकर?
4: यह है, रूस चाहता है यूक्रेन जो है हाथ खड़े करें और कहीं ना कहीं रूस का पलड़ा भारी होता जा रहा है। जिस प्रकार से उसने 20% तो जमीनी ले ली है डोनबास के इलाके में, कहीं ना कहीं जापोरिजिया का कुछ इलाका खैरोसन, मगर सच्चाई यह है कि जिस प्रकार वो हमले करने लगा है, अब तैयारी कर रहा है कीव, खार्किव, ओडिशा, तो पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर, सप्लाई चेन, कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम बर्बाद कर दिया उसने यूक्रेन का। और यूक्रेन के पास हथियारों की बहुत कमी है, अमेरिका के हथियार आने से बंद हो गए, पेट्रॉइड मिसाइल सिस्टम थार नहीं आ रहा है, नाटो भी कोई ज्यादा हेल्प नहीं कर पा रहा है, तो वाकई कहीं ना कहीं यूक्रेन के लिए हालात अच्छे नजर नहीं है। मगर एक चीज माननी पड़ेगी सुमित, कि यूक्रेन ने भी कुछ हमले किए हैं जो कि रूस के सेंटर तक जाए हैं, वो उसने ड्रोन से किए हैं, वो ड्रोन उसने खुद बनाए हैं यूक्रेन ने, वो मुझे लगता है एक प्रकार से अचंभे वाली बात है। बाकी ऐसा लगता है कि रूस का पलटा बहुत भारी है और वो यूक्रेन।
3: हमारे साथ ग्रुप कैप्टन पांडे भी है। ग्रुप कैप्टन पांडे, एक बात बताइए कि अगर इन ताजा हालातों को समझा जाए तो नाटो देशों के लिए भी कंसर्न है, क्योंकि अगर पूरी तरीके से यूक्रेन बर्बाद हो गया या इस तरीके के हालात हो गए तो फिर नाटो देशों का क्या होगा?
5: जैसे रोमानिया का भी आपने उल्लेख किया, रोमानिया में जो ड्रोन गए और रशिया क्लेम कर रहा है कि ड्रोन उनके नहीं है, हालांकि रोमानिया ने वो सारे एहतियात जो है लगा लिए हैं, जो कि किसी घटना अगली घटना का क्रम अगर होता है तो F-16 वहां पर अब आकाश में है। लेकिन बाकी जो देश है वो भी परेशान है कि आगे क्या हो रहा है। इसके लिए अमेरिका जो डोनाल्ड ट्रंप को अप्रोच किया गया, डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं भाई कि मैं अभी बहुत ज्यादा दबाव दिया जाता रूस पर क्योंकि शांति वार्ता बहुत करीब है, यानी कि चाहते जानते हैं कि रशिया और कोई समझौता हो सकता है। और एक और मजा चीज है कि रशिया ने भी पहल की है कि इस्तांबुल जो टॉक्स हुए थे।
3: सर बात तो देखिए ये की जा रही है, देखिए माफ कीजिएगा आपको दोनों को बीच में रोकना पड़ रहा है, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन वक्त की कमी थी। लेकिन हम अपने दर्शकों को बता रहे थे कि आखिरकार रूस और यूक्रेन की जंग भी कैसे भीषण होती जा रही है। चलिए रणभूमि स्पेशल में आखिरी में आपको कुछ खास खबरें भी दिखाते हैं। एक खास खबर ये भी जहां पर भारतीय सेना प्रमुख यानी जनरल उपेंद्र त्रिवेदी ने ड्रोन के इस्तेमाल पर जोर दिया। एक कार्यक्रम के दौरान उन्हें संबोधित करते हुए अपने नए कैडेट्स को कहा कि आज ड्रोन को सीखने की या उसको मॉनिटर करने की बहुत ज्यादा जरूरत है, हर जवान को ड्रोन उड़ाना आना चाहिए।
6: और आपने ध्यान दिया होगा जब से मैंने आर्मी चीफ टेक ओवर किया है, मैंने बोला है ईगल ऑन दी आर्म, मतलब हर जवान के हाथ में ईगल होना चाहिए। जब मैं बोल रहा हूं तो वो ईगल पक्षी नहीं, ईगल मैं ड्रोन की बात कर रहा हूं। इसका मतलब ये है कि हर जवान को एक ड्रोन उड़ाने की काबिलियत होनी चाहिए। आपने देखा है जो भी हमारे एकेडमीज या बाकी जगह हैं वहाँ पे इनकी ट्रेनिंग हो रही है, वहाँ पे सिमुलेटर्स हैं। और जब मैं दिसंबर महीने में यहाँ पर आया था तो मैंने खुद कमांडेंट साहब से बातचीत करके यहाँ पे आर्मी ट्रेनिंग टीम को करीब 4 से 6 बड़े ड्रोन और सिमुलेटर यहाँ पे उनको प्रदान किया था। और उसके बाद कमांडेंट साहब ने उस पर काफ़ी आगे कार्रवाई की और बहुत सारे ड्रोन यहाँ पे लाए गए हैं। तो कहने का ये मतलब है कि ड्रोन्स है, काउंटर ड्रोन इक्विपमेंट है, इसके बारे में जानकारी हर को होनी जरूरी है।
3: जनरल त्रिवेदी ये बात बिल्कुल सही कह रहे हैं कि जिस तरीके से युद्ध का स्वरूप बदल रहा है, लगातार चीजें बदल रही है, ऐसे में अपनी अपने आदतों को या फिर नई तकनीक को सीखना बेहद जरूरी है। और शायद इसी वजह से आर्मी लगातार अपने ट्रांसफॉर्मेशन पे भी बहुत तेजी से काम कर रही है। आज रणभूमि में इतना ही, वक्त एक छोटे से ब्रेक का, देश और दुनिया की खबरों के लिए आप देखते रहे आज तक।
7: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
8: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
9: भोपाल के अर्बन एरियाज के फोटोग्राफ्स हैं जिनमें टाइगर का मूवमेंट है।
10: टाइगर, टाइगर।
11: ओ, ओ, ओ, ओ, पीछे पीछे पीछे पीछे पीछे बिल्कुल साइड में बैठा है।
7: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
8: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
12: Hexa Organic, Radiant Skin and Nourished Hair, Pure Ayurvedic Beauty. Durable pipes, fittings and tanks, a complete range of sanitary solutions.
13: Discover your new favorites on TuneIn. With over 100,000 music, news and sports stations to choose from, there's always something to listen to. Even podcasts and audiobooks for you to enjoy. Stay connected for all new recommendations and follow us on social media at TuneIn on Facebook, Instagram, and X. And start listening today. Just ask your device to play TuneIn.
14: You can stream all the podcasts you already love right on TuneIn. Available on your smartphone, on your tablet, and even on your connected devices. There's so much to explore, like mind-blowing facts about your world.
15: So they were disallowed from speaking their language.
14: In-depth conversations with A-list celebrities.
16: No, I was ready to go. You know, after I wanted to fulfill my contract.
14: True crime podcasts you just can't stop listening to.
17: Others escape justice to live and die in infamy. These
14: plus the news and sports content you crave in podcast form.
18: Couldn't run in a straight line very quickly and didn't have much of an arm. His arm is stronger now.
14: So whether you want to save your go-to shows for later by subscribing and listening offline, or you want to discover a whole slate of new podcasts to be obsessed with, TuneIn is your destination. True crime, sports, lifestyle, culture, news, and so much more. TuneIn is Podcast Central. Hear them all here.
19: The music you love is all right here on TuneIn, bringing you good vibes and the hottest hits. Yeah, I try to. But are you ready to amp things up even more? Just upgrade to TuneIn Premium for all of our exclusive music channels, completely commercial-free. So you get more of today's hits. More country roads. And everything else. Hear it all here, commercial-free, on TuneIn.
10: The biggest classic rock hits do just that. They hit hard. And on TuneIn's Classic Rock Hits, you'll find only the best in high-octane awesomeness. We're talking rock gods like Led Zeppelin, Kiss, AC/DC, Lynyrd Skynyrd, and so many more. So for those of you about to rock, search Classic Rock Hits or ask your smart device to play Classic Rock Hits on TuneIn.
20: ममता के शासन में हर रोज घुसपैठ होती थी, अब घुसपैठ करने वाले अपने आप वापिस जाने लगे हैं, अपने आप जाने लगे। शुभेंदु जी ने, भाजपा बंगाल सरकार ने डिटेंशन सेंटर बनाए हैं, मगर हम सब लोग चाहते हैं कि जो घुसपैठ कर अवैध तरीके से आए हैं वो अपने आप जहां से आए हैं वहां वापिस चले जाए। अगर वो अपने आप चले जाते हैं तो बंगाल सरकार भी उन पर कोई केस नहीं करेगी, जाने के लिए उनकी सहायता भी करेगी। और मैं आशा रखता हूं कि जब अभियान चले पहचान का, उसके पहले ही ढेर सारे लोग अपने आप चले जाए। हमने चुनाव में कहा था आप हमें शासन की धुरा दे दीजिए, हम बांग्लादेश सीमा पर सीमा की बाड़ बनाने का काम, फेंसिंग का काम कुछ ही दिनों में शुरू करेंगे। और मैं बंगाल के मुख्यमंत्री श्री शुभेंदु अधिकारी जी को बधाई देना चाहता हूं कि साथ ही दिन में उन्होंने 600 हेक्टर भूमि बीएसएफ के हाथ में सौंपने का काम कर दिया। चिकन नेक की भी 121 हेक्टर भूमि भारत सरकार को दे दी।
21: क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
1: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।

0: लखनऊ में एक कार्यक्रम में बोले सीएम योगी, अहिंसा ही इंसान का परम धर्म, लेकिन जब कोई देश समाज के लिए खतरा है तो अपनानी पड़ती है हिंसा की नीति। नीट सीबीएसई के बाद सीयूईटी टेस्ट में गिरा एनटीए सर्वर में गड़बड़ी के कारण देरी से शुरू हुई परीक्षा। राहुल गांधी बोले, पूरी परीक्षा व्यवस्था तबाह। कर्नाटक में कांग्रेस विधायक दल की बैठक जारी, डीके शिव कुमार चुने जाएंगे कांग्रेस विधायक दल के नेता। 3 जून को 8 से 10 मंत्रियों के साथ ले सकते हैं शपथ। बंगाल विधानसभा हस्ताक्षर विवाद में एक्शन तेज, सीआईडी की टीम ने टीएमसी नेता अभिषेक बैनर्जी को सौंपा नोटिस, बोले वकीलों से बात करके जवाब देंगे। और राजस्थान के कई शहरों में बिगड़ा मौसम, धूल भरी आंधी से दिन में छाया अंधेरा, दिल्ली एनसीआर में बारिश से तापमान में गिरा।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
2: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।

0: नमस्कार, मैं हूं राजीव ढोंडियाल। समय है दंगल का, लेकिन उससे पहले बंगाल के सोनारपुर से और एक बड़ी खबर का रुख करते हैं। सोनारपुर में अभिषेक बैनर्जी पर हमला हुआ है। अभिषेक बैनर्जी टीएमसी कार्यकर्ता के घर पर गए थे, जहां पर अचानक उन पर हमला हुआ है। ये बहुत बड़ी खबर है, अभिषेक बैनर्जी पर हमला हुआ है। बीजेपी कार्यकर्ताओं पर आरोप है। अभिषेक बैनर्जी के खिलाफ नारेबाजी भी बताया जा रहा है कि की गई है। हम आपको तस्वीर भी दिखा रहे हैं, फिर हेलमेट पहनाकर उनको मौके से निकाला गया। उन पर हमले की खबर मिल रही है। पश्चिम बंगाल में सोनारपुर में अभिषेक बैनर्जी पर हमला हुआ है। सरकार नहीं बनी है, बीजेपी की सरकार बनी है। अनुपम मिश्रा हमारे संवाददाता हमारे से जुड़े। ये हमलावर कौन थे और क्या वो सुरक्षित है? क्या अभिषेक सुरक्षित है? अनुपम,
1: ये देखिए, सोनारपुर जाते वक्त सोनारपुर में वो टीएमसी कार्यकर्ताओं के घर पहुंचे थे, जहां पर उन पर हमला हुआ था टीएमसी कार्यकर्ताओं पर इससे पहले। तो जब वो पहुंचे तभी से विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया। बीजेपी के कार्यकर्ता वहां विरोध प्रदर्शन कर रहे थे, काले झंडे दिखा रहे थे। ऐसे में जब वो निकल रहे थे बीजेपी टीएमसी कार्यकर्ता के घर से, तब उन पर अंडे फेंके गए, उनके साथ हाथापाई करने की कोशिश की गई, पत्थर भी फेंके गए हैं। हालांकि इस दौरान पुलिस ने उनको हेलमेट पहनाया और जो सुरक्षाकर्मी थे वो किसी तरह उनको बाहर निकालने की कोशिश इस वक्त कर रहे हैं। अभिषेक को देखकर काफी विरोध प्रदर्शन हुआ है पूरे इलाके में। बीजेपी कार्यकर्ताओं पर आरोप है और निकलते वक्त अभिषेक ने कहा है कि अगर मैं हेलमेट नहीं पहना होता तो अब तक मेरा माथा फट गया होता, सिर फट गया होता। इस तरह की के बयान अभिषेक बनर्जी की ओर से आए हैं जिस वक्त उनको निकाला जा रहा था। तो सैकड़ों की संख्या में यहां पर जब अभिषेक निकल रहे थे तब भीड़ जुट गई, काफी विरोध प्रदर्शन देखने को मिला और इस विरोध प्रदर्शन के बीच में ही उन पर अंडे फेंके गए, उन पर पत्थर भी फेंके गए। लेकिन किसी तरह जो पुलिस और सुरक्षा कर्मी है वो उनको लेकर बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं, उनको लगभग लेकर निकल

0: স্ক্রিনশট রেখে দাও এই পুরো ভিডিওগ্রাফির পরেও, যেখানে সংবাদ মাধ্যমে টিভির ক্যামেরায় সব ধরা পড়েছে, তারপর প্রশাসনের একজন প্রতিনিধি এই মুহূর্তে ঘটনাস্থলে নেই। আর যতক্ষণ না এসে এদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেবে, আমি এলাকা এখান ছেড়ে যাব না। রাত্রির 12টা বাজলেও আমি এখানে থাকব, দেখি এদের কত ক্ষমতা।
1: अभिषेक बैनर्जी ने अपनी मीडिया के साथ बातचीत करते हुए बात कही, बहुत गंभीर सवाल उन्होंने उठाए हैं, कोर्ट भी जाने की बात कर रहे हैं। हमारे साथ अनुपम हमारे संवाददाता हैं। अनुपम, चूंकि बंगाली में बोल रहे थे, बांग्ला में बोल रहे थे, तो आप ज्यादा स्पष्ट हिंदी में समझाएं, बताएं कुछ व्हाट्सएप चैट्स क्या क्या बोल रहे थे, क्या क्या आरोप लगा रहे हैं वो बताएं।
2: ये देखिए, अभिषेक बनर्जी का साफ कहना है कि यहाँ पर कोई सुरक्षा कर्मी नहीं है, कोई पुलिसकर्मी नहीं है। ऐसे में हमारे कार्यकर्ता, जिस घर में मैं मौजूद हूँ वहां पर उसको तोड़ने की कोशिश हो रही है, उसकी खिड़कियां तोड़ने की कोशिश हो रही है, सारा वीडियोग्राफी हम लोग कर रहे हैं, लेकिन कोई पुलिसकर्मी तैनात नहीं है। हमने पुलिस को सूचना दी है लेकिन तब भी पुलिस नहीं आ रही है। व्हाट्सएप पर हम रिकॉर्ड रख रहे हैं जो भी सूचना दी गई है, लेकिन
1: ठीक अनुपम आपको माफी के साथ रोक रहा हूँ। तापस सिंह हमारे संवाददाता हमारे साथ हैं, जो इस समय ग्राउंड पर ही मौजूद है, वहीं पर मौजूद है। तापस इस समय क्या सिचुएशन है वहां पर?
3: देखिए, यहाँ पर सिचुएशन जो है वो काफी तनावपूर्ण है। यहाँ देख सकते हैं कि अभिषेक बनर्जी यहाँ आ पहुंचे हैं और आते ही उन्हें पहले घेर कर लोगों ने नारेबाजी की, अंडा फेंका। आखिरकार उन्हें हेलमेट पहन के अंदर बाइक में बकायदा अंदर पहुंचना पड़ा। और यहाँ देख सकते हैं कि बड़े पैमाने पे यहाँ पे स्थानीय जो लोग हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं और यहाँ पर बेहाली इतनी है कि लोग यहाँ पे विरोध प्रदर्शन करने लगे हैं। अभिषेक बनर्जी इस समय अंदर मौजूद हैं और लगातार ये सवाल उठाया जा रहा है कि 15 साल ये सरकार थी और ये जहाँ पर हम मौजूद है यहाँ तक गाड़ी तो क्या अब मोटरसाइकिल में पहुंचना भी काफी ज्यादा मुश्किल है। हम लोगों से बात करते हैं और उनकी बात सुनते हैं। ये बताइए कि यहाँ पर अभिषेक बनर्जी आने के बाद क्या हुआ?
4: चोर एक चोर दुर्नीति पलायन चोर नय डाकात मानुषेर शिक्षा मानुषेर कर्मसंस्थान মানুষের চাকরি বাকরি সমস্ত কিছু শেষ করে দিয়েছে, পশ্চিমবঙ্গকে 15 বছরে তলা নিতে নেমে দিয়েছে, সেই জায়গা থেকে দাঁড়িয়ে মানুষের মেরুদণ্ডটাকে।
1: তাপস হিন্দি में उनको बोले, हिंदी में अपनी बात रखें।
3: यहां पहुंचे थे आप लोग, नारेबाजी कर रहे थे, क्यों?
4: चोर को कैसे नारे, उसको क्या फूलों से स्वागत करेंगे? चोर को अंडा फेंक के मारेंगे? अभी तो हाँ, वो भी बहुत कम हो गया। वो ये राम जी की धरती है, वो राम जी की नाराबाजी करने के माना किया था बांग्लादेश से, वो खुद है, उसका जो मुख्यमंत्री पीसी है वो भी वो एक बांग्लादेशी है।
3: आप या जी बताइए,
5: आप एक बार देख लीजिए, फेसबुक है ये संजू कर्मकार का फेसबुक है, ठीक है, ये मोदी जी को हम लोग का भगवान को क्या क्या लिखा था देखिए। चोर इसी घर में आ गए सर, ये कोई उन्नयन तो किसी किस टाइम कभी काम नहीं किए सर, फिर भी एक बार सब कुछ देख लीजिए सर। इसका नाम है संजू कर्मकार है सर, चोर के घर में चोर ही आया है, इनको यहाँ से बाहर निकाल दीजिए।
4: अभी कौन चोर मारा गया उसके घर में आया, जब
1: आरजी क्या वो स्थानीय लोग हैं या बीजेपी कार्यकर्ता है?
4: अत्याचार हुआ था, कहाँ गए थे लोग?
3: हाँ, क्या आप लोग, क्या आप लोग बीजेपी से हैं या यहाँ के आम लोग हैं?
4: हम हिंदुत्ववादी से हैं, हम हिंदू हैं।
3: पार्टी के
4: ना? कोई पार्टी के नहीं है, हम हिंदुत्ववादी के लिए आए हैं।
3: आप बताइए आप कहाँ के रहने वाले?
6: यहाँ रहने वाले।
3: आप तो पार्टी करते हैं यहाँ?
6: नहीं नहीं, हम लोग आम पब्लिक है, कोई पार्टी नहीं।
3: क्या शिकायत उनको देखिए, आप लोगों ने नारेबाजी शुरू किया क्यों?
6: वो लोग अभय मारने का टाइम तो वहाँ भेजा नहीं, वहाँ भेजा है एक तो डॉक्टर को मारा है वहाँ, उस टाइम वो भेजा नहीं, अभी एक तो चमचा मर गया इसलिए भेजा है यहाँ। किसके लिए भेजा है? हमारा रास्ता देखते है आज 15 मधु में, ये रास्ता कैसे चलता है? हम लोग बाल बच्चा कर लिए,
0: আমার মেল করে দেওয়া হয়েছিল গত কালকে বা পরশু দিন, মেল করে দেওয়া হয়েছিল আজকে সকাল থেকে। আমার অফিসের আমার আত্মসহায়ক এসপি কে ফোন করেছে, মেসেজ করেছে, হোয়াটসঅ্যাপে ফোন করেছে, মেসেজ পাঠিয়েছে, তারা ফোনই ধরেনি। সাক্ষী রাখার জন্য আমি হোয়াটসঅ্যাপে মেসেজ পাঠিয়ে তার স্ক্রিনশট রেখে দিয়েছি, পরে যাতে বলতে না পারে আমাদের জানায়নি। আর আপনারা খবর করছেন প্রায় এক ঘন্টা ধরে, এখনো পর্যন্ত কোনো পুলিশের দেখা নেই।
1: বয়ান সুনা রে, কে রে কি হামারে পাস স্ক্রিনশট ভি হ্যায়, হমনে মেল কিয়া, হমনে বাকায়দা হোয়াটসঅ্যাপ পর কিয়া হ্যায়, তো উসকে বাওজুদ ভি এক ভি পুলিশকর্মী উনকে সাথ কিউ নাহি ভেজা গিয়া।
3: जी देखिए, अभी पुलिस की तरफ से इसी कोई पुष्टि नहीं की गई है कि वो इस तरीके के इन्फॉर्मेशन को प्राप्त किए थे कि नहीं, लेकिन यहाँ पर जो है अभिषेक बनर्जी बतौर एमपी उनके साथ जो सिक्योरिटी रहते हैं उन सिक्योरिटी के साथ वो यहाँ पहुंचे थे। और ये जो जहाँ हम इस समय खड़े हैं सोनारपुर में, ये मेन सड़क से कम दो ढाई किलोमीटर अंदर है, तो यहाँ तक गाड़ी मतलब फोर व्हीलर आने का कोई गुंजाइश था नहीं, तो बाइक पे उन्हें सवार होकर आना पड़ा। और जैसे ही वो यहाँ पर पहुंचे, यहाँ अलग अलग जगहों पर हमने सोनारपुर में एंटर करते हुए भी देखा था कि कुछ लोगों ने ब्लैक फ्लैग दिखाया था, तो एक लोगों में आक्रोश था, और उसके बावजूद यहाँ अभिषेक बनर्जी
1: उन पर झपटे, उनके साथ मारपीट की, क्योंकि वो कह रहे हैं कि मेरी शर्ट देखो, मेरी घड़ी देखो, मेरी बेल्ट देखो, मेरी हालत देखो। क्या उनके साथ मारपीट भी हुई?
3: जी देखिए, एक धक्का मुक्की वाली स्थिति बन गई थी जब वो बाइक पे सवार हो रहे थे, और जब बाइक उस भीड़ से सीधा आगे निकलने की कोशिश कर रहे थे, तभी जाकर लोग उन्हें रोकने की कोशिश कर रहे थे, लगातार नारेबाजी कर रहे थे, और तभी जो स्थिति है काफी नाजुक बन गई थी, अंडे फेंके गए उन पर, लेकिन फिर वो यहाँ पर आ गए थे। इसमें अभिषेक बनर्जी का ये कहना है कि उनके कपड़े कुछ हद तक फटे हैं, और उनको घेर के बहुत लोगों ने घेर कर उनसे उन्हें नारेबाजी की उनके खिलाफ। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे लोगों का ये कहना है कि जब अभिषेक बनर्जी बाहर आएंगे तब भी वो इसी तरीके से
1: उस समय वही थे। आप ये बताएं, क्या अभिषेक बनर्जी के साथ एक भी पुलिसकर्मी नहीं था? मतलब सांसद भी हैं, बड़े नेता भी हैं, आमतौर पर होते हैं पूरे के पूरे लाओ लश्कर के साथ चलते हैं, उनके साथ कोई भी सिक्योरिटी कर्मी नहीं था क्या?
3: नहीं, उनके साथ देखिए, उनके साथ बतौर सांसद जो दो या तीन या चार पांच सिक्योरिटी ऑफिसर्स जो थे, जो कोलकाता पुलिस के थे, वो मौजूद थे, लेकिन यहाँ पे भीड़ इतनी ज्यादा थी और भीड़ का तादाद इतना बढ़ता गया इतने कम समय में, तो कि सिचुएशन को हैंडल करना मुश्किल हो गया था। और अभिषेक बनर्जी अकेले एक बाइक में सवार होकर आ रहे थे, तो उनके सिक्योरिटी उनके ही साथ पीछे वाले बाइक पर आ रहे थे, तो तभी आगे पीछे होने के वजह से लोगों ने इनको घेर लिया, और फिर इन्हें घेर के विरोध प्रदर्शन जैसे ही कर रहे थे, पुलिस उन्हें हटाने की कोशिश कर रही, तो एक जद्दोजहद दोनों तरफ के बीच हो रहा था, एक धक्का मुक्की की स्थिति हो गई थी, और उसके बाद अभिषेक बनर्जी यहाँ पर आकर पहुंचे।
1: आप ग्राउंड पर हैं, लोगों से भी बात करें, और ये भी कहें कि वो आरोप लगा रहे हैं, अभिषेक बनर्जी आरोप लगा रहे हैं कि ये बीजेपी करवा रही, थोड़ा लोगों से भी पूछे नाराजगी की इतनी वजह।
3: जी मैं जरूर बात करता हूँ। अभिषेक बनर्जी ये कह रहे हैं कि वो जब अंदर आ रहे थे तो आप लोगों ने उन पर हमला किया और नारेबाजी किया, तो क्या आप लोग बीजेपी के पार्टी के लोग?
7: नहीं, नौकर आदमी है हम लोग नौकर आदमी है, हम लोग को रास्ता काट नहीं दिया, जितना पैसा लिया खा लिया पार्टी लोग, हम लोग अभी भी देखिएगा क्या है, इसलिए गुस्सा है। अभी हम लोग को जो मंत्री गठन में आशुमेंदु आदमी दादा आया है, वो लोग का हम लोग चाहिए।
3: क्या आप बीजेपी करते हैं?
7: नहीं, हम कोई नहीं,
3: यहाँ के ही रहने वाले,
7: ये अभी यहाँ का है, हम दीघा का आदमी है, यहाँ दो कट्टा जमीन लेके इधर देखिए क्या है।
3: असल में मैं आपको दिखाता हूँ जो बोन ऑफ कंटेंशन रहा है, यहाँ पे देखिए कि ये जो सड़क है, ये सड़क का हाल जो है इतना बुरा है, बदहाली है, और ये सड़क सिर्फ इतना सा नहीं है, ये सड़क तकरीबन आपके एक किलोमीटर के आसपास सड़क की स्थिति काफी ज्यादा खराब है, बारिश होने पे यहाँ पे पानी जम जाता है, और लोगों का ये कहना है कि जब ममता बनर्जी मुख्यमंत्री रही हैं तब लगातार ये गुजारिश किया गया था, उनके पास दरखास्त किया गया था कि ताकि इन जगहों के रास्तों को ठीक किया जाए, पानी का जो सप्लाई है वो ठीक किया जाए, लेकिन इनका आरोप है कि कभी नहीं ये हुआ उनके तरफ से, उनके बारे में कभी किसी ने नहीं सोचा, इस वजह से जब सांसद होने के नाते वो यहाँ पर पहुंचे, और उनके ही पार्टी जब पावर में थे 15 साल, क्यों इस इलाके का डेवलपमेंट नहीं हुआ, इन तमाम चीजों को लेके लोगों का गुस्सा उमड़ पड़ा उन पर, और लगातार नारेबाजी की गई, उन पर अंडे भी फेंके गए।
1: बिल्कुल तापस, जो आप सिचुएशन दिखा रहे हैं, जो हालात बयां कर रहे हैं, और जो आम लोगों से आप बातचीत कर रहे हैं, वो तो ऐसा लगता है कि एक स्वतः निकली हुए गुस्सा है जो अभिषेक बनर्जी को देखते हुए उनका निकल गया।
3: जी बिल्कुल, क्योंकि ये एक ये किसी प्लान के तहत किसी का भी नहीं था, क्योंकि अभिषेक बनर्जी आएंगे यहाँ पे ये सबको पता था, और ना यहाँ पे किसी पार्टी का झंडा हमने देखा है, ना पार्टी के तरफ पार्टी की कोई नारेबाजी की गई थी। यहाँ पर महिलाएं भी बढ़ चढ़कर यहाँ पे काफी तादाद में, हम उनसे भी पूछते हैं आपका नाम क्या है?
8: पुष्पिता मंडल।
3: आप कहाँ रहती हैं?
8: अभी मंडल पड़ा था कि
3: वार्ड
8: नंबर 9।
3: अच्छा, तो यहाँ पर अभिषेक बनर्जी आए हैं तो आप लोगों ने सब मिलकर यहाँ पर नारेबाजी की, क्यों?
8: এখানে এসেছি অভয়বালা কেউ গিয়েছিল সেটাই প্রথম প্রশ্ন। অভয়বালা যে অত বড় ঘটনা, নিদারুণ ঘটনা ঘটলো, এটা প্রত্যেকটা বাড়িতে অভয়া আছে, তাহলে ও কি গিয়েছিল? তাহলে যে নিজে কয়লা চোর, যার 17 বাড়ি থাকে বেআইনি, আমাদের একটাও ঘর জোটে না, আজকে 260 আমাদের কলের জন্য জল এনে সে জল পাই না, লক্ষ্মীর ভাণ্ডার।
3: কে রে কি অভয়া কাণ্ড জব হুয়া থা, অভয়া কাণ্ড কে সময় অভিষেক ব্যানার্জি উনকে ঘর নেই গয়ে থে, লেকিন আপনে পার্টি ওয়ার্কার কে ঘর ইয়াহ পর ও আয়ে হ্যায়। ইয়াহ পর ইয়াহ পর বতাইয়ে কি ইয়াহ পর আপ লোগো কা ইতনা গুসসা কিউ রাহা উনকো দেখনে কে বাদ?
4: আরে গুসসা কানে কা বাত হাই তো, কিসকে লিয়ে আয়ে ও গাজাখোর পাতাখোর उसके लिए आया है, लेकिन उस टाइम अवा का टाइम गया नहीं, काय नहीं गया, काय नहीं गया बोलिए। अभी आया किसके लिए? वो पार्टी वर्कर भी नहीं है, कॉमन पीपल है, उसको पार्टी वर्कर बना दिया।
3: और यहाँ पे कुछ लोग कह रहे थे कि आप लोग यहाँ पे रास्ता वगैरह सड़क बना नहीं।
4: देखिए देखाइए ना कैमरा, देखाइए कैमरा, देखाइए ना क्या
9: गरम चलते, हिंदी नहीं जानता, एन गरम चलते, গরমের সময় ও রাস্তা অবস্থানে জলে কাদায় রাস্তা পুরো ভেসে গেছে, মানে এই সরকারটা এসে শুধু খাওয়া খাইছে আর কিচ্ছু করেনি, কিভাবে পকেট ভরবে? সাধারণ গরিব খেটে খাওয়া মানুষের অধিকার এরা কে নিয়েছে?
10: দেখিয়ে পিছলে 15 সে পেলে যে আম জনগণ সিপিএম গভর্নমেন্ট হটাকার টিএমসি গভর্নমেন্ট লাই থে, কিউকি ভ্রষ্টাচার গভর্নমেন্ট হটানা চাই, লেকিন ভ্রষ্টাচার সে উপর আগার কোই ডিকশনারি মে শব্দ হ্যায় মুঝে মালুম নেই হ্যায়, এ গভর্নমেন্ট আ গিয়া। ये जो भतीजा आए हैं ये तो दुनिया भर जानते हैं कौन है, बाली चोर, कोयला चोर, गाय चोर, हर एक चोरी या काटमनी इसके घर में। आज भी दोपहर में सीआईडी गए थे, हम लोग न्यूज में देखे हैं सीआईडी गए थे, और ये जो आए हैं ये पॉलिटिकल इशू लेकर आए
1: कि आपको नाराजगी थी, आपने वोट में नाराजगी दिखा दी, आपने उनको सत्ता से हटा दिया, अब आप बीजेपी सत्ता में आ गए, तो हिंसा तो उचित नहीं है ना? हिंसा
10: जो इनको जो पारा प्रतिवेशी जो लोग जो है उनके
3: अच्छा,
10: पास
3: ये बताइए आप लोगों को गुस्सा था, आप लोगों ने तृणमूल कांग्रेस के खिलाफ आपने बोला, वोट उनके खिलाफ गया सबका, सत्ता परिवर्तन हुआ, लेकिन एक सांसद जब अकेले यहाँ पहुँचे हैं तो क्या ये लाजमी लगता है कि उनको घेर के जिस तरीके से आज प्रदर्शन हुआ, उनको हैकल किया गया, ये नहीं करने से भी बेहतर होता?
10: अच्छा सुनिए एक बात, सुनिए बात, ये जो महाराज आए हैं, ये महाराज गाड़ी का ऊपर उठ चढ़ के बोला था कि 4:12 के बाद डीजे बजेंगे, इसका धमकी के वजह से पारा का
1: तापस लौट रहा हूं आपके पास। पुलिस को इस बीच में फोन किया गया है लेकिन पुलिस ने कॉल नहीं उठाई। अभिषेक बनर्जी कह रहे हैं अब सुरक्षा मिलने तक यहां से मैं हटूंगा नहीं। अभिषेक बनर्जी ये भी कह रहे हैं यहां पर लोग मुझे तो मारना चाहते हैं। हमने स्थानीय लोगों से बातचीत की और हमने लाइव आपको दिखाया है स्थानीय लोग क्या कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हम किसी पार्टी से नहीं है, हम लेकिन खफा हैं, हम तृणमूल कांग्रेस के कार्यकाल से खफा हैं, हम अभिषेक बनर्जी ममता बनर्जी के कार्यकाल से खफा हैं, हम उनके काम करने के तरीके से खफा हैं, उन्होंने काम नहीं किया। वो वहां के हालात दिखा रहे हैं, वहां की समस्याओं को दिखा रहे हैं और वो कह रहे हैं कि ये हमारी नाराजगी है किसी पार्टी, हमें विवश, हमें मजबूर किया गया इतने समय से, हम बहुत ज्यादा गुस्से में, उनसे आज से पहले आए नहीं और आज वहां अचानक दिखे तो लोगों ने कुछ ये किया। तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, ये इस समय के विजुअल्स भी जो हम दिखा रहे हैं कि एकाएक एक भीड़ से उन पर टूट पड़ती है, ये उस समय के विजुअल्स है। तापस हमारे साथ वहां पर इस समय ग्राउंड जीरो पर है। तापस तो आप क्या अभिषेक बनर्जी वहां से तब तक नहीं हटेंगे जब मैं आपके पास तापस लौट रही हूं, अभिषेक बनर्जी ने क्या कहा एक बार सुना देते हैं।
0: दे वांट टू किल मी, দে ওয়ান্ট টু কিল মি, এরা আমাদের প্রাণে মারতে চায়, মেরে দিক, মেরে দিক, আমার মৃতদেহ উদ্ধার হোক এখান থেকে, কিন্তু আমি জায়গা ছেড়ে যাব না। দে ওয়ান্ট টু কিল মি, দে ওয়ান্ট টু কিল মি, এরা আমাদের প্রাণে মারতে চায়, মেরে দিক, মেরে দিক, আমার মৃতদেহ উদ্ধার হোক এখান থেকে, কিন্তু আমি জায়গা ছেড়ে যাব না।
1: हमारे साथ तापस जुड़े, तापस 20 मिनट तो हमें ही इस पर प्रोग्राम करते हुए हो गए हैं, तो कोई फोर्स, कोई पुलिस वहां पर पहुंची? अभिषेक कह रहा कि मैं जाऊंगा नहीं तब तक।
11: जी अभी तक कोई पुलिस फोर्स यहाँ पर नहीं पहुंची है और अभिषेक बनर्जी अभी अंदर हैं और परिवार के सदस्यों से बातचीत कर रहे हैं। लेकिन ये देखिए जो मंसर हमें देखने को मिल रहा है, अभी भी हम उस घर के बाहर की चित्र को दिखाते हैं, काफी तादाद में लोग हैं, महिलाएं हैं काफी तादाद में जो लगातार नारेबाजी करते जा रहे हैं। तो ऐसे में वो कब तक निकलेंगे ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि लोग यहाँ कह रहे हैं कि वो निकलेंगे तो उनको घेर कर फिर वो विरोध प्रदर्शन करेंगे। और अभिषेक बनर्जी ने साफ कह दिया कि जब तक यहाँ पर पुलिस नहीं आएगा, उन्हें पुलिस को बोलने के बावजूद भी वो नहीं आए हैं, तो वो यहाँ पर एक इंच जमीन नहीं छोड़ेंगे। यानी वो अंदर अब इंतजार कर रहे हैं और परिवार से बातचीत कर रहे हैं। तो अभी स्थिति यहाँ पर काफी तनावपूर्ण और नाजुक बनी हुई है। अब देखना यह होगा कि पुलिस की ओर से कोई ठोस कदम उठाया जाता है या नहीं और अभिषेक बनर्जी को यहाँ से बाकायदा एस्कॉर्ट करके लेकर जाया जाता है या नहीं।
1: ठीक है तापस, आप हमारे साथ बने रहे, आपके पास हम लौटते हैं। लेकिन ये बहुत हैरान कर देने वाली तस्वीर सामने आ रही है और इस पर खास मेहमान भी हमारे साथ जो है बातचीत करने के लिए जुड़ गए हैं। हमारे साथ राजेश चौधरी जुड़े हैं जो कि बीजेपी के एमएलए भी हैं और प्रवक्ता भी। हमारे साथ अजय वर्मा भी जुड़े हैं, कांग्रेस प्रवक्ता है। हमारे साथ विक्रम सिंह जी भी हैं जो कि फॉर्मर डीजीपी भी हैं। लेकिन राजेश चौधरी जी, मतलब टीएमसी हट गई है, पश्चिम बंगाल में आपकी सरकार है, आपने कहा भयमुक्त माहौल देंगे, लेकिन क्या ये टीएमसी के लिए भय वाला समय? अब अभिषेक बैनर्जी के लिए सिक्योरिटी नहीं दिख रही, उनको पीट दिया गया वहां।
12: लेकिन ये बहुत हैरान कर देने वाली तस्वीर सामने आ रही है और इस पर खास मेहमान भी हमारे साथ जो है बातचीत करने के लिए जुड़ गए हैं। हमारे साथ राजेश चौधरी जुड़े हैं जो कि बीजेपी के एमएलए।
1: राजेश जी मेरी आवाज मिल रही है आपको? उन तक आवाज शायद नहीं पहुंचे। अब राजेश अगर मेरी आवाज मिल रही है अभी आपको?
13: हाँ हाँ मिल रही है।
1: हाँ, आप अभिषेक बैनर्जी के साथ मारपीट हो गई, आप कह रहे हैं कि पश्चिम बंगाल को आप बदल देंगे, भयमुक्त हो जाएगा पश्चिम बंगाल, यहाँ अभिषेक बैनर्जी के साथ मारपीट हो गई है।
13: देखिए, पश्चिम बंगाल के अंदर सबसे बड़ा कोई गुंडा था तो वो अभिषेक बैनर्जी थे, जिन्होंने अन्याय किया, अत्याचार किया, व्यभिचार किया, निर्दोष लोगों की हत्याएं करवाई, लोगों को मार मार कर पेड़ पर टांग दिया गया, कटमनी की, लूट की, डकैती की। ऐसा कोई कुकर्म नहीं बचा होगा जो अभिषेक बनर्जी के संरक्षण में बंगाल के अंदर नहीं हुआ होगा। वो जनता की प्रतिक्रिया दिख रही है। मैं भी बहुत देर से आपका कार्यक्रम आज तक पे देख रहा हूं, ऐसा लग रहा है पूरा गांव उमड़ आया है, चोर चोर चोर चोर हल्ला मचा रहे हैं सब लोग। एक कह रहा है चोर नहीं है तो डकैत है, तो ये जनता की प्रतिक्रिया है।
1: तो पश्चिम बंगाल में आप एक सांसद को पिटने देंगे? आप तो जस्टिफाई कर रहे हैं भीड़ के आक्रोश को, भीड़ का गुस्सा हो सकता है, लेकिन क्या आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है?
13: पूरी बात होने दीजिए ना भाई, मेरी पूरी बात होने दीजिए, उसी में से पा रहा हूँ मैं। पर कानून का राज आज हुआ है, कानून व्यवस्था इन्होंने ही खराब की है, इन्हीं के समय के सब ज्यादातर अधिकारी होंगे अभी तो। पर किसी भी प्रकार की इस तरह की किसी घटना को बढ़ावा नहीं दिया जा सकता है। वो सांसद है या सामान्य व्यक्ति है, कानून अपना काम करेगा और घटना की पूरी जांच की जाएगी।
1: कब करेगा,
13: क्या नहीं है?
1: राजेश जी 20 मिनट से ज्यादा तो हमें शो करते हुए हो गया, इस 20 मिनट में कोई पुलिस नहीं पहुंची वहां पर, कोई नहीं आया। एसपी कह रहे हैं फोन नहीं उठा रहे, एसपी फोन नहीं उठा रहे, व्हाट्सएप में चैट का जवाब नहीं दे रहे।
13: जो सांसद को सुरक्षा मिलती है वो वीडियो में तो नजर आ रहे हैं, पुलिस वाले वो दिख रहे हैं,
1: इतनी भीड़ को टैकल कर लेंगे वो।
13: अब भीड़, अब ये तो किसी को इलम नहीं था, पता नहीं सूचना प्रशासन को दे के गए थे या नहीं दे करके गए थे, किसी को जानकारी थी या नहीं थी, लोकल प्रशासन को पता थी या नहीं पता थी, ये तो अब जांच का विषय है। जैसे जैसे सामने आएगा मालूम पड़ेगा। कोई कार्यक्रम इन्होंने दिया था, अनुमति ली थी नहीं ली थी। अब पूरे बंगाल के अंदर जहां भी जा रहे हैं, पश्चिम बंगाल में सब हल्ला मचा रहे हैं, चोर चोर चोर, डकैत आ गए, चोर आ गए, तो इनके कुकर में। पर कानून के साथ किसी को खिलवाड़ नहीं करने दिया जाएगा।
1: हमारे साथ विजय शंकर तिवारी जी भी जुड़े हैं जो कि बीजेपी से जुड़े हुए। लेकिन अजय वर्मा जी, मतलब आपने अभी राजेश जी की बात सुनी, वो इस घटना को कैसे जस्टिफाई करते हुए दिख रहे हैं? वो कह रहे हैं कि हाँ हिंसा जायज नहीं है, लेकिन जो उन्होंने किया है ये तो जनता का आक्रोश है, ये कितना उचित बयान है?
14: देखिए राजेश ढोंडियाल जी, देशवासियों को नमस्कार। अब तो उत्तर प्रदेश में और देश में न्यायालयों की और जजों की जरूरत नहीं है राजेश जी के बयान सुनने के बाद और बीजेपी के नेताओं के बयान। अभी नई जज बना दीजिए, यही वकीलें, यही अपीलें, यही दलीलें, चूंकि यही कह रहे हैं साहब, अब तो गुंडे हैं और साहब चोर हैं, डकैत हैं। अरे भाई आप तय करेंगे क्या? आप जज हो गए क्या सुप्रीम कोर्ट के? फिर सूर्यकांत जी की जरूरत क्या है? और किस तरह से, मतलब आप देखे घमंड, घमंड ना रावण कर रहा, ना कंस का रहा, ना दुर्योधन का रहा। लेकिन चूंकि मैं इनसे पूछना चाहता हूं, सिक्योरिटी के नाम पर ये कह रहे हैं, सिक्योरिटी देंगे या कंगना रनौत को देंगे? सिक्योरिटी देंगे ये अंबानी साहब को देंगे, सिक्योरिटी देंगे अडानी साहब को देंगे, लेकिन जिसको जरूरत है, जिसके तीन टर्म सरकार रही, मुख्यमंत्री के वो रहे, एमपी रहे, वर्कर हैं, ठीक है आप जीत गए सरकार बनाइए,
1: लेकिन आप देश लेकिन वो ये दलील दे रहे हैं कि हमें नहीं मालूम कि वहां किसी को बताकर गए थे कि नहीं बताकर गए थे, उनके साथ जो सिक्योरिटी सांसद को मिलती है वो तो दिख रही है, वो तो थी।
14: ढोंडियाल साहब, ढोंडियाल साहब, मैं यही बताना चाह रहा हूं कि देश की जनता जो है चारों तरफ त्रस्त है, और ये लोग देखिए नीट के, सीबीएसई के, एसएससी के, और आज सीयूईटी के, और एकेटीयू यानी अब्दुल कलाम टेक्निकल यूनिवर्सिटी उत्तर प्रदेश की जो सबसे सीक्योर है, उसके पेपर भी लीक हो रहे हैं, तो देश के युवा का बेरोजगार खत्म हो जा रहा है, बिल्कुल भविष्य खत्म हो जा रहा है। और देखिए आज हमीरपुर में एक पुल गिरा है जो अभी बन रहा था 92-95 करोड़ की लागत से, वहां एक एमएलसी है मानवेंद्र सिंह, उनके इलाके में वहां के एमपी निषाद लाए थे, 6 लोग मर गए और तभी 3-4 लोग वहां गायब हैं। उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष ब्रजलाल खावरी जी, राहुल जी के निर्देश पर वहां प्रतिनिधिमंडल लेके गए 20 लोगों का, लोगों से मिले, घटिया सामग्री, पराकाष्ठा हो रही है भ्रष्टाचार की, लेकिन सरकार सब चंगा सी, सब कौन जिम्मेदार है छात्रों के भविष्य के, जो मर गए हैं लोग, इनकी आत्माएं तड़फ रही है, इनका इस अब लोगों के ऊपर गुंडे हमले कर रहे हैं, तो ये बेशरम पार्टी के बेशरम लोग हैं, यहाँ बैठकर फेस सेव करते हैं, लेकिन
1: मैं राजेश बोलेंगे, लेकिन राजेश आप इसका जवाब दें, आपने तो कहा कि आप अलग राजनीति करते हैं, आप तो टीएमसी पर इसी तरह की राजनीति करने का आरोप लगाते थे कि वो आपके बॉक्स को मारते हैं, आपके कार्यकर्ताओं के साथ मारपीट करते हैं, लेकिन अब आप जब अभिषेक बैनर्जी के साथ मारपीट हो रही है आप रोक नहीं पा रहे और तमाम दूसरी दलीलें दे रहे हैं उसके लिए।
13: राजीव जी पूरी भीड़ में आपको कहीं किसी पार्टी का झंडा नजर आ रहा है, किसी नेता के पक्ष में नारेबाजी नजर आ रही है, कोई पॉलिटिकल कार्यक्रम आपको नजर आ रहा हो तो बताइए कि इसमें कहीं भी आपको लगता हो राजनीति को, एक आपका ही चैनल दिखा रहा है, आपके पत्रकार जहां हैं वो ही पूछ रहे हैं कि आप क्या बीजेपी करते है, बोले नहीं नहीं हम बीजेपी नहीं करते, हम तो लोकल है, हम तो सामान्य आदमी है, उन्होंने शब्द लेकर के कहा कि बीजेपी करते हैं आप, बीजेपी के कार्यकर्ता है क्या, पूछने का भाव ये था, उन्होंने नहीं थे, ये जनता है। अभिषेक बनर्जी सांसद है, मुझे लगता है दूसरी या तीसरी बार सांसद रहे होंगे जहां तक मेरी जानकारी में है, तो लोकल प्रशासन को सूचना दे करके जाना चाहिए,
1: हमें जो जानकारी मिली वो सूचना पहले से कार्यक्रम तय था उनका, पहले से कार्यक्रम निर्धारित था उनका, जानकारी थी,
13: अत्याचार किए हैं लोगों के साथ, अब ये जनता है, पर जनता को टैकल करना हम लोग जानते हैं, सबको समझाएंगे और कानून अपना काम करेगा, अब ये जांच का विषय है, घटना कैसे घटी है कैसे नहीं घटी है ये तो जांच का विषय, मैं यहाँ बैठ करके नहीं कह सकता, आप स्टूडियो में बैठ करके नहीं कह सकते, तो ये इन्होंने तो बहुत अत्याचार किए हैं, बहुत ये देश के साथ गद्दारी की है, देश के गद्दार हैं जिन्होंने बांग्लादेशियों को लाकर के देश में बसाने का काम किया है, ये वो लोग हैं, इन्होंने अपनी राजनीति करने के लिए, अपने वोट बैंक को साधने के लिए देश के भारत माँ के साथ गद्दारी करने वाले लोग हैं, ये कोई सामान्य लोग नहीं है।
1: एक छोटी सी वसूली,
14: देखिए मैं फिर आपको राजीव ढोंडियाली बचाऊं, राजेश चौधरी साहब विधायक हैं, एक सदन के सदस्य हैं, लेकिन जब ये संसदीय भाषा और किस तरह की भाषा करते हैं तो मुझे लगता है कि इनकी विषय पर सोचना पड़ेगा। अब भाई कोर्ट ये तय करेंगे, सुप्रीम कोर्ट के भी जस्टिस हो गए, हाई कोर्ट के भी जस्टिस हो गए, न्यायमूर्ति हो गए हैं क्या
13: साहब, ये गुंडे हैं
14: परिभाषा, उन गुंडों को तय नहीं करेंगे जो
13: पब्लिक है, 100 बार राहुल गांधी को चुनाव हराया,
14: मैं बीच में नहीं बोला था भैया, मैं परमिशन लेके बोल रहा हूँ, परमिश जनता तो एपिस्टन फाइल के अपराधियों को भी ढूंढ रही है, जनता तो महंगाई ढूंढने वालों को ढूंढ रही है, जनता तो ढूंढ रही है पहलवान महिलाओं पर अत्याचार करने वाले नेताओं को, जनता ढूंढ रही है जो बनारस में 3 आईपीएस के बलात्कारी, जनता ढूंढ रही है अंकिता भंडारी के अत्याचारों को, जनता ढूंढ रही है प्रज्वल रेवन्ना के समर्थकों को, जनता ढूंढ रही है उत्तर प्रदेश में
13: प्रियंका गांधी जी प्रभारी थी पश्चिमी बंगाल की, कितने
14: विधायक हैं,
13: देश की जनता को बजा दो, कितना आकर्षण है
14: जहां से आप विधायक हैं,
13: नहीं कितना आकर्षण है प्रियंका गांधी के चेहरे में, राहुल गांधी के व्यक्तित्व में कितना आकर्षण है, जरा जनता जानना चाहती है, बताइए ना कितने एमएलए जीते आपके, बताइए कितने परसेंट वोट कांग्रेस को मिला है, बताइए ना बंगाल के अंदर कहाँ है आप,
14: और प्रदेश
1: बड़ी खबर इसमें दे दें, अभिषेक बैनर्जी से मारपीट पर टीएमसी का बयान आ गया, तृणमूल कांग्रेस की तरफ से बयान आया है कि क्या ये लोकतंत्र है, ऐसे हमलों से हम डरेंगे नहीं, बीजेपी समर्थकों ने उन पर हमला किया है, ये टीएमसी खुले में कह रहे, सीधा कह रहे हैं, वो बीजेपी पर आरोप लगा रहे हैं। और सुरक्षा को लेकर भी उन्होंने सवाल राज्य से के साथ साथ केंद्र से भी पूछा है। अभिषेक बैनर्जी से मारपीट के बाद से वो पूछ रहे हैं कि क्या ये लोकतंत्र है। विजय शंकर तिवारी जी, पश्चिम बंगाल में नई नई सरकार बनी है, आप कुछ नया नया करना चाह रही थी वहां पर बीजेपी, लेकिन क्या इस तरह की घटना हो जाना, क्या इससे सरकार की छवि धूमिल नहीं होती है? विजय जी, विजय जी मेरी आवाज मिल रही है आपको? लगता है उन तक
15: बात कर रहे हैं क्या?
1: जी जी जी जी जी जी जी विजय जी आपसे।
15: हाँ हाँ हाँ राजीव जी, मैं तो ये कह रहा हूं कि 70 साल का जो कुशासन बंगाल में रहा है और लगभग 70% समाज का जो दमन हुआ है और खास तौर से हिंदुओं का जो दमन हुआ है, जो बड़ी मैंने कहा 70% है वहां का, और ये केवल ममता बनर्जी नहीं, इसके पहले कम्युनिस्ट रहे, उसके पहले कांग्रेस रही, सब ने लगभग एक जैसा व्यवहार किया, उस समाज का शोषण किया है। पहली बार उस समाज को लगा कि अब मैं हम लोग शोषण मुक्त हो गए हैं, और चूंकि अभिषेक बनर्जी का ताजा मामला है, ये जनता कितनी आक्रोशित रही होगी राजीव जी, इससे आप ये समझ सकते हैं। ये तो अभी जांच का मामला है कि इनके अपने समर्थकों ने इनको मारा है, अभिषेक ने अपने ऊपर आक्रमण खुद करवाया है, जनता ने कर किया है, ये सारी चीजें हैं। लेकिन एक चीज देखिए, 70 साल तक जो पुलिस यही इसी प्रकार करती रही है, हमें लगता है वहां की पुलिस का एक प्रशिक्षण देना पड़ेगा, क्योंकि ये अभ्यास तो है, लेकिन ये जनता का प्रमाण है, जनता कर रही है ये। तो आप पिछले वाले जो हुआ है वहां पर बंगाल में, इसका आप प्रणाम समझ सकते हैं कितना लेकिन भयावह परिस्थिति वहां रही हो।
1: जनता कर रही है, लेकिन सवाल यह है कि रोकने वाला भी तो कोई होना चाहिए था। स्वयं प्रकाश पुरोहित भी समय हमारे साथ जुड़ गए हैं, जो कि प्रवक्ता है। स्वयं प्रकाश पुरोहित, बीजेपी कह रहे हैं कि जांच करेंगे, कार्रवाई भी करेंगे, अगर मतलब वैसे वो कह रहे हैं कि ये तो जनता का आक्रोश है, लोग गुस्से में, वो उसमें कोई भी बीजेपी का कार्यकर्ता नहीं है।
2: नहीं, बीजेपी का कार्यकर्ता नहीं है, बहुत अच्छी बात है, लॉ एंड ऑर्डर किसके हाथ के अंदर? तृणमूल कांग्रेस की सरकार होती है और भारतीय जनता पार्टी के एमपी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के ऊपर अगर अटैक होता तो आप ही लोग सवाल करते थे पश्चिम बंगाल के अंदर कि ये ऐसा क्यों हो रहा है। यहाँ पे कोई बीजेपी और टीएमसी की बात नहीं है, टारगेट किलिंग करने की चेष्टा की जा रही है अभिषेक बनर्जी को, इनको इनके जो नेता है अभिषेक बनर्जी के खिलाफ किस तरह के बयान दे रहे हैं, उनको चोर चोर बोलते हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता बोलते हैं, जो मुख्यमंत्री है वो खुद बोलते हैं, अगर वो खुद ऐसा बोलेंगे और कानून को अपने हाथ में लेंगे तो इसको तालिबान बना दीजिए, लोगों को जंगल में जंगल
1: तो क्या जानबूझ के कानून हाथ में लेने दिया जा रहा है, कह रहे हैं
2: एकदम। अरे ये उनके ही लोग हैं, ये भारतीय जनता पार्टी के जो लोग हैं, जो लोग जब भारतीय जनता पार्टी के नेता टीवी चैनल में बैठ करके या मंचों पर खड़ा होकर के अभिषेक बनर्जी को गाली देते हैं, और आज वही लोग उतर करके रस्ते में एक व्यक्ति जो मर गया तृणमूल कांग्रेस का कर्मी, उनके घर अगर वो जा रहे हैं और उसको उसके खिलाफ ये अटैक कर रहे हैं उनके ऊपर में, ये कैसी लोकतांत्रिक व्यवस्था में हम जी रहे हैं? ये आपको सोचना है कि हम भारतवर्ष के अंदर में एक ऐसा लोकतंत्र स्थापित करना चाहते हैं जहां पर सत्तासीन आने के बाद में
1: स्वयं प्रकाश जी जो भी हिंसा है वो इसमें कोई दो राय नहीं है कि गलत है, लेकिन हमारे संवाददाता ने भी लोगों से बातचीत की वहां पर, वो कह रहे हैं कि आप आज से पहले नहीं आए, आपने सड़कें नहीं बनाई, हालात हमें बहुत बुरी स्थिति में छोड़ गया, हम किसी पार्टी के कार्यकर्ता नहीं है लेकिन हम गुस्से में, हम नाराज हैं टीएमसी से।
2: सुनिए ना सुनारपुर में जिस जगह में वो गए हैं, जिस तरह से आपको पता है कि राजीव गांधी की सिक्योरिटी हटा ली गई, उसी तरह से षड्यंत्र कर करके अभिषेक बनर्जी की सिक्योरिटी किसने हटाई? इसी मुख्यमंत्री ने हटाई ना, शुभेंदु अधिकारी ने, जो टीवी चैनल में रुपये लेते हुए पकड़ा गया था और दूसरों को चोर चोर बोलता है, इन लोगों को लज्जा नहीं आती है? ये खुद चोरी किए हुए हैं और दूसरों को चोर बोलते हैं, इनके खुद के नेता बोलते हैं, इनके खुद के कार्यकर्ता बोलते हैं।
1: मैं स्वयं प्रकाश आपके पास लौट रहा हूँ, सारे मेहमान हमारे साथ जुड़े, एक बार क्या कहा है अभिषेक बैनर्जी ने, एक बार बयान उनका सुना देते हैं।
16: মুখোপাধ্যায় যতই উদার হোক আরামবাগের স্টিয়ারিং আমার হাতে থাকবে, ডিজে তো বাজবেই, এমন জোরে বাজবে কান ঝালাফালা করে দেব, চার তারিখ মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় যতই উদার হোক আরামবাগে স্টিয়ারিং আমার হাতে থাকবে। ডিজে তো বাজবেই, এমন জোরে বাজবে কান ঝালাফালা করে দেবো।
1: ये लीजिए आपको हम पुराना बयान हमने सुना दिया स्वयं प्रकाश पुरोहित जी, इसमें तो अभिषेक बैनर्जी खुद धमकी दे रहे हैं और बीजेपी को दे रहे हैं।
2: सुनिए ना वो क्या कह रहे हैं कि ये अब ये जो बयान दे रहे हैं, देखिए ये जो बयान है ये राजनीतिक बयान, मगर क्या ये ऐसा अटैक करना ये क्या लोकतंत्र में सही है? क्या मुझे इस बात का जवाब दीजिए? कैसे इनकी सिक्योरिटी को विड्रॉ किया गया? इनकी सिक्योरिटी को विड्रॉ किया गया पूरी सोशल सर्विस साजिश के तहत है कि वो घर से निकले और उनके पीछे अटैक किया जाए। कलकत्ता में उनके घर के बाहर में जाकर के लोग उनके घर के बाहर में क्या क्या नहीं कर रहे हैं और सारे टीवी चैनल ने दिखाया। उनकी बच्ची के बारे में, उनकी बेटी के बारे में कहा जाता है कि उनका बलात्कार कर दिया जाएगा। उनके छोटे से बच्चों के बारे में जो जो अभी जिनके मतलब जो 12-14 साल के बच्चे हैं उनके बारे में ये कैसी मानसिकता की सत्ता है?
1: ये बताइए जब यहाँ स्वयं प्रकाश पुरोहित जी, क्या अभिषेक बैनर्जी प्रशासन को सूचित करने के बाद पहुंचे थे? क्या बताया गया था कि हम वहां पर आ रहे हैं, हमें सिक्योरिटी दीजिए, और नहीं दी प्रशासन ने?
2: नहीं नहीं सिक्योरिटी तो उनकी हटा ली गई, उनके पास पे जो सिक्योरिटी थी हटा ली गई। आज का उनका जो निर्धारण था, उन्होंने बेलेघाटा में जिनका खून हुआ है, विश्वजीत पटनायक उनका मतलब ब्रूटल मर्डर हुआ है भारतीय जनता पार्टी के गुंडों के द्वारा, कोई सीबीआईडी को मानव अधिकार कमेटी नहीं आई है पश्चिम बंगाल के अंदर में। और आज जो वो सोनारपुर में जब जा रहे हैं वहीं पर वही भारतीय जनता पार्टी के गुंडे उनके ऊपर में ईंट पत्थर मारा जा रहा है, उनके ऊपर में उनका कस्बा उनकी आंख का ऑपरेशन हुआ, वो आपको पता है। इसके पहले भी उनकी गाड़ी पर हमला हुआ है, उनकी गाड़ी पर हमला हुआ, उनकी एक आंख के अंदर में अटैक किया गया है। इतना क्यों डरते हैं?
1: मैं ठीक है, बीजेपी नेता हमारे साथ जुड़े हैं राजेश जी, क्या पश्चिम बंगाल में अब टीएमसी के नेता अपने आप को सेफ ना समझे? मतलब एक ऐसा माहौल है कि चलिए मान लिए कि लोगों में गुस्सा ही क्यों ना हो, लेकिन वो सेफ तो रहे ना पश्चिम बंगाल में, क्या वो सुरक्षित महसूस नहीं करेंगे पश्चिम बंगाल में?
13: देखिए सबसे पहले तो ये जानलेवा हमला नहीं है, स्पष्ट कर लीजिए। अंडा फेंक रहे हैं, अंडा से कोई हत्या हो सकती है क्या? अंडा मारे जा रहे हैं उनके ऊपर, अंडा कौन मारता है? विरोध व्यक्त करने वाला। विरोध व्यक्त करने का एक गलत तरीका है वो, उसको मैं सही नहीं कह रहा, पर जिसके मन के अंदर पीड़ा होगी ना, जो पीड़ित होगा, जिसके साथ अन्याय अत्याचार हुआ होगा, वो भाव प्रकट कर रहा है कम से कम, जिन्होंने अन्याय झेला होगा। दूसरी बात, सुरक्षा की जहां तक बात रही वो एक सांसद है, इसके अलावा तो कुछ है नहीं। जो सांसद को
1: गुस्सा जाहिर करें, हमारे साथ टीएमसी सांसद सौगत रॉय जुड़ गए। सौगत जी, जानलेवा हमला नहीं है वो कह रहे हैं कि सिर्फ अंडे फेंके जा रहे हैं, और ये नाराजगी है, ये लोगों का गुस्सा है जो अंडे फेंकने के रूप में दिखाई दे रहा है?
17: ये कोई जनता का गुस्सा नहीं है, ये बीजेपी को लफंगा लुम्पेन गुंडा लोग ये कर रहे हैं, उनको अंडा खरीद के दिया जा रहा है कि तुम इसको मारो और बोलो कि जानलेवा हमला, ये नहीं है, ये सब बोगस बात है। बीजेपी का प्लान है कि तृणमूल का नेता कहीं न जाए, जहां पर हमला भी हुआ है वहां भी तृणमूल के नेता लोग न जाए, लेकिन हम जाते रहेंगे। अभिषेक पर अंडा ईटा भी फेंका गया और उनको कपड़े फाड़ दिया गया, ये सब निंदा की बात है। उसको बीजेपी एक तो अनकंट्रोल पार्टी है, इनडिसिप्लिन पार्टी है, उसका ऊपर का नेता लोग भाषण देते हैं, उसको कोई कंट्रोल है नीचे का गुंडा पर, तो हमारा लड़ाई चलेगा।
1: लेकिन स्वागत राज जी, टीएमसी पर भी तो ये आरोप लगते रहे ना पहले भी, और टीएमसी के नेताओं के बयान, हमने तो थोड़ी देर पहले अभिषेक बैनर्जी का खुद का बयान सुना, वो खुद नहीं धमकी दे रहे थे क्या?
17: अरे ये तो चुनाव के पहले का बात है,
1: वो ऐसे मतलब हवा में दिया गया बयान था।
17: आप लोग क्या बीजेपी का प्रवक्ता है कि संवाद माध्यम है?
1: मतलब आपसे सवाल ना पूछे, सवाल पूछे तो बीजेपी के प्रवक्ता हो जाए।
17: चुनाव के पहले कोई कुछ बोला है तभी तो उसको हाथ में सरकार है, वो ठीक से चलाए, पुलिस काम करे।
1: सौगत राय जी, मैं हिंसा का विरोध कर रहा हूं, लेकिन मेरा सवाल यह है कि जनता अपना गुस्सा भी तो व्यक्त कर रही है, हमने लोगों से पूछा, वो कह रहे हैं कि हम बीजेपी के नेता नहीं, हमने एक से नहीं महिलाओं पुरुषों से बात की, वो कह रहे हैं सड़क दी आपने, पानी दिया आपने, हमारे हमारी सुध ली आपने, नहीं लिया आपने।
17: बीजेपी अभी हुकूमत में है, वो सड़क दे वो पानी दे, ये कोई गुस्सा दिख? आपको याद रखने पड़ेगा कि पश्चिम बंगाल के सब लोग बीजेपी को वोट नहीं दिया, 2,60,00,000 वोट टीएमसी को मिला, 2,90,00,000 वोट बीजेपी को मिला। इसी बात नहीं है, हमें भी 80 सीट विधानसभा में मिला है। ये सब होता है और आप बोलेंगे कि जनता का रोष है, कुछ जनता का रोष नहीं है, ये सब बनाया हुआ रोष बीजेपी के गुंडा उधर पहुंचते हैं।
1: स्वागत जी, आप एक लंबे समय से आप पॉलिटिक्स में हैं, आप ये जानते हैं कि हाँ लोग विरोध करते हैं, अलग अलग समय पर लोग नाराजगी जाहिर करते हैं, अगर ये वो बीजेपी के कार्यकर्ता होते तो वहां से चले जाते, वो अब भी वहीं पर हैं, वो जा भी नहीं रहे वहां से, वो हटे भी नहीं थे वहां से।
17: आपका उम्र कम है, आप नहीं जानते हैं, मैं पश्चिम बंगाल में 60 साल से राजनीति करता हूँ, मैं जानता हूँ पश्चिम बंगाल में क्या रिएक्शन होता है। मैं 67 में कांग्रेस का हार देखा, मैं 77 में इंदिरा जी का हार देखा, मैं 2004 में जब टीएमसी को केवल 300 सीट मिला तब देखा, तब ये सब नहीं हुआ। बीजेपी एक अनकंट्रोल पार्टी है, उसके नेता लोग को कोई कंट्रोल नहीं है नीचे वाले गुंडों पर, इसीलिए।
1: ठीक है, स्वागत रॉय साहब, थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए। एक बार सुना देते हैं अभिषेक बैनर्जी ने इस हमले के बाद क्या कहा है।
0: मैंने माथाटा बेचे गेचे खाली हमारे एक हेलमेट पड़ेছিলাম বলে আমার এখানে যারা সহকর্মীরা ছিল এরা বুদ্ধি খাটিয়ে একটা হেলমেট দুটো হেলমেট জোগাড় করে রেখেছিল, বললো দাদা এটা মাথায় পড়ে নিন। আপনি দেখুন আমার জামা কাপড়ের অবস্থা, 15 বছর চশমা ভেঙে দিয়েছে, ঘড়ি টড়ি প্রায় একদম ছিঁড়ে, বেল্ট টেল সব ছিঁড়ে দিয়েছে।
1: ডক্টর বিক্রম সিং স্যার, আপ তো পূর্ব ডিজিপি রয়ে হ্যাঁ, লোকতন্ত্র মে এসি তসবীর, ইস তসবীর পর আপ কিয়া কহেঙ্গে, और यहां पर पुलिस की भूमिका क्या सवालों में नहीं है?
18: राजीव जी, सभी विद्वान परिसर, आपको मेरा नमस्कार। राइट टू लाइफ एक मौलिक अधिकार है, फंडामेंटल राइट है, और वो सभी के लिए। राजनीतिक मतभेद हो सकते हैं, और हमने अजमल कसाब को भी जीवित रखा, ट्रायल करियर ट्रायल करने के बाद उसको फांसी दी गई। तो ये समझ लें कि कानून क्या कहता, संविधान क्या कहता है, राजनीति होती रहती है, लेकिन अभेद्य सुरक्षा व्यवस्था अभिषेक बनर्जी को मिलनी चाहिए थी, नहीं मिली। लेकिन अभिषेक बनर्जी के जो जीवन भय का आकलन है उसमें बड़ी त्रुटि हुई है। सांसद को एक दो या तीन कर्मचारी मिलते हैं सुरक्षा के लिए नियमानुसार, लेकिन जो उनका जीवन भय था, तदा कदाचित बंगाल पुलिस को उनको और अधिक कर्मचारी देने चाहिए थे। लेकिन जिन लोगों ने आक्रमण किया, अगर आप देखें, उसमें कोई पेशेवर अपराधी या हत्यारा नहीं था, सामान्य जन जो कि बीपीएल वाले थे, उन्होंने आक्रोश में आकर के किया, और जन आक्रोश उसके विरुद्ध स्वाभाविक है। जो कह दे कि भारत के गृह मंत्री को हम लटका देंगे, हम प्रधानमंत्री को ये कर देंगे, हम यूनियन ऑफ इंडिया को देख लेंगे, तो जनता में आक्रोश तो था, लेकिन बंगाल पुलिस को इसका मूल्यांकन करके एक सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करनी चाहिए। और मैं पुलिस के दृष्टिकोण से कह रहा हूं, उन्होंने कहा कि हमारी बेल्ट छीन ली, हमारी घड़ी छीन ली, लेकिन सोने की जंजीर तो वही मौजूद है, सोने की जंजीर कैसे छोड़ दिएगा, जबकि सबसे आसानी से वही छीनी जा सकती थी। ये एक पुलिस पूर्व पुलिस अधिकारी होने के मारे, ये जरूर मेरा प्रश्न मेरे मन में उठा है, इसकी भी व्याख्या होने चाहिए। आरोप सोच समझ के लगाया करें, मनगढ़ंत आरोप भी न लगाया करें। पुलिस का काम है सुरक्षा देना, और अभिषेक बनर्जी का जो जीवन भय है, जो उन्होंने बीज बोए हैं, उसके आधार पर उनकी सुरक्षा व्यवस्था,
1: लेकिन उनकी सुरक्षा सिक्योरिटी हटा ली गई, टीएमसी तो ये आरोप लगा, लेकिन राजेश जी अब तो सीधा आरोप लग रहा है बीजेपी पर, क्या आप बदले की भावना के तहत काम कर रहे हैं, आप सिक्योरिटी ले लेते हैं और खतरे में डाल दिया अपने अभिषेक बनर्जी की जान?
13: देखिए, अभिषेक बनर्जी ने कोई एप्लीकेशन दी क्या, मुझे एक्स्ट्रा सुरक्षा चाहिए? जो सांसद को मिलती है प्रोटोकॉल के अनुरूप, वो तो उन्हें मिल रही है। यदि उन्होंने कोई ऐसी एप्लीकेशन दी हो तो वो जनता के बीच में आकर के दिखा दें, आपके चैनल पे
1: कार्यकर्ता
13: उनका आके दिखा
1: दें। हटा लेना,
13: आवश्यकता नहीं थी, आवश्यकता नहीं थी, इसलिए हटाई। एक सांसद को जेड प्लस में नहीं रखा जा सकता है, देश का हर नागरिक मांगेगा सुरक्षा तो नहीं दी जा सकती है। अब पता नहीं है, खुद ही हमला करा रहे होंगे उसी सुरक्षा के लिए, ये हो सकता है कि उन्होंने खुद ही हमला करा लिया, हेलमेट लेकर के गाड़ी में बैठ करके गए। तो मैं तो यही सोच रहा हूँ, तब से मैं टेंशन में आ गया, मैं हेलमेट कहां से आ गया? वो तो लग्जरी गाड़ी में, मर्सिडीज में या बीएमडब्ल्यू में चलने वाले, 5 करोड़ की गाड़ी में चलने वाले लोग हैं, तो ये हेलमेट पहन के गाड़ी में बैठ करके गए थे क्या? और कोई मारपीट उनसे नहीं हुई है? नहीं, कोई मारपीट उनसे नहीं है। राजीव जी, राजीव जी मेरी बात को पूरी होने दिया, उनके साथ कोई मारपीट नहीं हुई है, नारेबाजी हुई है, अंडे फेंके गए,
1: और अंडे सोने की चेन वही है, हो सकता खुद पर हमला करवाया।
19: देखिए राजीव जी, ये कह रहे हैं कि कोई घटना नहीं हुई है,
14: अंडेबाजी फेंकी गई है। इनसे मैं पूछना चाहता हूं कि सबसे सुरक्षित गाजियाबाद कमिश्नरेंट है और नोएडा कमिश्नरेंट है। खोड़ा में एक सूर्या युवक 20 साल का हत्या कर दी गई, ये
13: मुसलमानों ने मार दिया उसको। हो
14: उसके बाद
13: बकरे की तरह काट दिया है।
14: अरे भाई किसी हिंदू ने मारा
13: उनको अभी सजा देंगे।
14: आत्मा की हत्या हुई है, मानवताओं की हत्या हुई है,
13: लॉ की हत्या हुई है।
1: मुझे के साथ आपको रोकना पड़ रहा क्योंकि समय अभी इतनी ही ज्यादा दे रहे, लेकिन पश्चिम बंगाल में अभिषेक बैनर्जी के साथ मारपीट ये बहुत बड़ा मुद्दा बना हुआ है और टीएमसी लगातार हमलावर है। अब रुक रहे छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन होंगे हाजिर। आप देखते रहिए आज तक।
19: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच In association with
20: Bharat ki apni electric savari Sokudo.
21: There's just something about classic soul music that gets you moving. And TuneIn's exclusive Soul Groove station has all the right moves. Hit play on the grooviest 70s selection. Get your masters in melody with Motown Classics. Or just set the right tone with smooth, soulful vibes from Marvin Gaye and more. It's all right here on TuneIn, ready to set the perfect 70s tone. Search Soul Groove or tell your device to play Soul Groove on TuneIn now to listen.
22: The music you love is all right here on TuneIn, bringing you good vibes and the hottest hits. But are you ready to amp things up even more? Just upgrade to TuneIn Premium for all of our exclusive music channels, completely commercial free. So you get more of today's hits. More country roads.
23: Thank God I get to wait.
22: And everything else. Hear it all here, commercial free, on TuneIn.
24: Every city has hidden stories. The building you pass every day. The park where history was made. The person no one remembers who changed everything. Audio brings those stories to life. And now we're on TuneIn. Explore 15 unique cities. Discover what you've been missing. Audio, now on TuneIn. Search Audio on TuneIn to start exploring.
25: नहीं, इस घर में कुछ है जो टूटता नहीं।
26: ये पिलर कभी नहीं टूटेगा। रुंगटा स्टील टीएमटी से बना।
27: रुंगटा नहीं तो घर स्ट्रॉन्ग नहीं। रुंगटा स्टील टीएमटी बार एकदम सॉलिड।
28: और वही कहाँ गए थे घूमने?
29: जीके मैक्स।
30: वैसे रोहन पढ़ाई में कैसा है?
29: जीके मैक्स बेस्ट पुट्टी
30: जेके वॉल मैक्स
29: बेस्ट पेंट
30: जेके मैक्स।
29: बाकी सब सवालों का पता नहीं, लेकिन मोस्ट ब्यूटीफुल वॉल्स के लिए सिर्फ जेके मैक्स पेंट्स। जेके मैक्स पेंट्स खुशियों के रंग।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल बोलो जुबान केसरी।
1: ऊंचाई पर बने रहने के लिए जरूरी है इरादों का प्योर होना। गैलेंट एडवांस बनाते हैं ऐसा स्टील जो अंदर से है ज्यादा प्योर ज्यादा मजबूत। गैलेंट एडवांस TMT रीबार निर्माण का रियल हीरो।
2: इन एसोसिएशन विद
3: समकूल कूलर हवा ऐसी छोड़े पूरी फैमिली को ठंडक से जोड़े समकूल कूलर लाइफ बनाए वंडरफुल।
2: हिंट बड़े आराम से
4: पंजाब नेशनल बैंक भरोसे का प्रतीक।
5: कूल स्टाइलिश फैंस एनहांस होम डेकोर विद ब्यूटीफुल फैंस।
6: शारदा यूनिवर्सिटी द वर्ल्ड कम्स टुगेदर एट शारदा यूनिवर्सिटी वेयर आर यू।
2: विमल बोलो जुबां केसरी।
7: आज तक ला रहा है वीडियो वाला पेपर हर सुबह आपके मोबाइल में, वो भी आपके पुराने न्यूज़पेपर से पहले। पढ़ने के लिए अपने डिवाइस पर टाइप करें epaper.aajtak.in या स्क्रीन पर दिए गए QR कोड को अभी स्कैन करें।
8: Why and by whom was COAMPT given the CBSE contract? Second, which procedures were circumvented to give COAMPT this contract? If we could figure out in 30 seconds that this company earlier had a different name, why didn't the CBSE figure this out? And why were no background checks done? Third, and most important, what is the exact relationship between COAMPT management and the Modi government?
9: मैं उनकी एक आदत, उनको एक बीमारी आ गई है। भारत में कोई भी परिवर्तन को सहज नहीं कर पाते हैं। उन्होंने SIR को विरोध किया था, उन्होंने EVM को विरोध किया था, उन्होंने भारत की अनेकों व्यवस्था को, भारत की डिजिटल इंडिया को विरोध करते हैं। ये एक दिवालिया मानसिकता की लक्षण है। आपको मैं क्या कह पाऊंगा, उनकी एक अंडरस्टैंडिंग है विषयों के ऊपर। बाकी रहा कोई स्पेसिफिक कंपनी के बारे में वो कह रहे हैं, मेरे शाम तक मेरे पास जो जानकारी है उन्हीं के साथ सिद्ध दो राज्यों में कर्नाटक और तेलंगाना में वो संस्था 5 शिक्षानुष्ठान की OSM काम कर रहा है।
10: अच्छा,
9: उनकी वेबसाइट चला रहे, उनकी सॉफ्टवेयर पोर्टल चला रहे। इसलिए तो ये तो कोई, कभी राहुल गांधी कोई विषय कुछ बोलते हैं तो फैक्ट चेक तो करते ही नहीं, बेबुनियाद बातों पे वो एक दुनिया गढ़ बैठते हैं।

0: क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच
2: इन एसोसिएशन विद
3: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो
4: हेक्सा ऑर्गेनिक रेडिएंट स्किन एंड नरिश्ड हेयर प्योर आयुर्वेदिक ब्यूटी ड्यूरेबल पाइप्स फिटिंग्स एंड टैंक्स अ कंप्लीट रेंज ऑफ सैनिटरी सॉल्यूशंस।
5: ये भोपाल के अर्बन एरियाज के फोटोग्राफ्स हैं जिनमें टाइगर का मूवमेंट है।
6: टाइगर टाइगर ओहो वो पीछे पीछे पीछे पीछे पीछे बिल्कुल साइड में बैठा है।
7: To 15-year-old Harper, buying an $80 vintage rock t-shirt is a great investment. To Harper's mom, this logic has a few holes in it. So she helped Harper open a Wells Fargo Clear Access banking account. With no overdraft fees and tools to track spending, Harper's learning, one heavy metal tee at a time. However you make money work, Wells Fargo can work with that.
8: Terms apply. Visit wellsfargo.com/deposit disclosures for fees and details.
9: You've always believed in students, their potential, and what they can become. At WGU School of Education, we help current and aspiring educators become great teachers with bachelor's and master's degree programs that are flexible, accredited, and built for real life. With personal support and your pathway to the classroom in any of the 50 states, WGU is where your love for education meets a path to impact. Because teaching isn't just a career, it's a calling. Learn more at wgu.edu.
10: The music you love is all right here on TuneIn, bringing you good vibes and the hottest hits. But are you ready to amp things up even more? Just upgrade to TuneIn Premium for all of our exclusive music channels, completely commercial free. So you get more of today's hits. More country roads. And everything else. Hear it all here, commercial free, on TuneIn.
11: TuneIn's How To, a brief look at all the special functions and things you might not know we have.
12: TuneIn is your MVP for everything sports audio. With live sports and a full lineup of podcasts and sports talk shows, you'll get all the sports action you'll ever need. Get updates on your favorite sports teams and alerts when they play. Just follow your favorite teams on TuneIn and you'll receive notifications. Plus, you'll also get recommendations based on your favorite teams. Start following your team and stay in the loop.
10: Call something classic, you've got to mean it. And that's why when we say TuneIn's exclusive classic hip-hop station is the real deal, we mean it. From golden age gems from OGs like Tupac and Biggie to chart-topping bangers from the biggest artists of all time like Jay-Z and DMX, there's a little something for every hip-hop fan on this station. Ready to find your flow? Just search classic hip-hop or tell your device to play classic hip-hop on TuneIn to listen.
13: ईरान के जुदा हैं बयान, सुर अलग हैं, तो फैसला कैसे एक होगा? सस्पेंस भारी, आ रही है बम बरसाने की बारी। क्या अमेरिका और ईरान में सच में कुछ ही घंटों में डील होने वाली है, या फिर महायुद्ध पार्ट टू जल्द शुरू होने वाला है? कहने को तो अमेरिका की टॉप लीडरशिप हर दिन ये उम्मीद जगा रही है कि वो डील के बेहद करीब है।
14: Look at what we've already accomplished here, assuming that we're able to get to a final agreement here. We're reopening the Straits of Hormuz. We've already decimated their conventional military, and we're in a position where we could substantially set back their nuclear program, not just during the term of this president, but over the long term. That's a very, very good thing for the American people. So we're not there yet, but we're very close. We're going to keep on working at it. Thank you, guys. Have a good evening.
13: राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति ही नहीं, रक्षा मंत्री भी हर जगह जाकर यही कह रहे हैं कि डील जल्द ही होने वाली है और ये एक शानदार डील होगी। लेकिन सिंगापुर जाने से पहले रक्षा मंत्री ईरान को धमकी भी देकर गए हैं, यानी अमेरिका को भी ये अंदेशा तो है कि हो सकता है कि डील उनके मुताबिक न हो, और एक बार फिर रणभूमि में उतरना पड़े।
8: And when you do your job, the adversaries know what's coming for them. And that's when they either step up and meet the fury of the American military or back down and you create a whole bunch of options for America and the president with what he wants to execute on behalf of the American people. So right now, hey, Iran has a choice. Meet at the table with the president and give up their nuclear program. And as the president said, I'm lost on time, 2 days ago now, in the cabinet meeting, I'm sitting right next to him. He looks in the camera and says, well, Iran can either do it the right way with a deal across the table, or they can deal with my guy on the left. That happened to be me. But it's not me, it's you guys. It's what you're ready to do. It's what the-
13: लेकिन ईरान की तरफ से कोई ऐसे संकेत नहीं मिल रहे हैं। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल भगाई ने सरकारी मीडिया से बातचीत में कहा है कि होर्मुज पर फैसला ईरान और ओमान को लेना चाहिए और इसे खोलने का फैसला भी अमेरिका नाकेबंदी हटने के बाद ही होना चाहिए। जो भी हो, डील को लेकर हलचल तो लगातार बढ़ रही है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सिचुएशन रूम में 2 घंटे तक अहम मीटिंग की है। इस मीटिंग में ईरान के साथ डील को लेकर कई पहलुओं पर बात की गई। मीटिंग में ट्रंप ने साफ कहा कि किसी भी कीमत पर ईरान को परमाणु बम बनाने की इजाजत नहीं दी जा सकती। उसके अलावा उसे होर्मुज को बिना टोल बंदी के खोलना ही पड़ेगा। ईरान की न्यूज एजेंसी फोर्स के मुताबिक ईरान का मानना है कि ट्रंप मनगढ़ंत जीत को दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। इसके अलावा ईरानी अधिकारियों के हवाले से ये भी दावा किया गया है कि डील में एटमी मुद्दे का जिक्र नहीं है। लेकिन ईरान की 12 बिलियन अमेरिकी डॉलर की पीस संपत्ति छोड़ने का समझौता जरूर है। अभी ट्रंप ने डील के बारे में अंतिम फैसला नहीं लिया है। अगर ट्रंप ने समझौते पर मुहर लगा दी तो 60 दिन के लिए सीजफायर का ऐलान किया जा सकता है ताकि होर्मुज को खोलने की प्रक्रिया शुरू की जा सके। आज तक ब्यूरो।
0: क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।

0: क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।

0: हरकतों को रोकने में कामयाब रही। या जोर जबरदस्ती से हिंदू मुस्लिम राजनीति को साध रही है बीजेपी?
1: समाजवादी पार्टी तो माफिया और गुंडों के सामने नतमस्तक।
0: 2027 में यूपी का चुनाव बीजेपी का एजेंडा तय।
1: रगड़ती थी माफिया के सामने, माफिया को देख करके पसीने छोड़ते थे इनको।
0: क्या यूपी में भी घुसपैठ बनेगा बड़ा मुद्दा?
2: एक ऐसी सरकार जो सभी मोर्चों पर विफल है, वो जब चुनाव नजदीक आता है तो उनका चश्मा वो धार्मिक हो जाता है।
0: यूपी में माफिया को योगी का अल्टीमेटम।
1: आज माफिया पिस्तौल लहराते हुए कोई धमका करके खुली जीप में चल करके किसी हिंदू को धमका नहीं सकता है।
0: अब की बार ईद पर कायदे कानून को लेकर बीजेपी सख्त। क्या अब की बार फिर से चुनाव में हिंदू मुसलमान?
3: तो आइए चर्चा की शुरुआत करते हैं। और सिद्धार्थ यादव जी, पहला प्रश्न आप ही से है कि भारतीय जनता पार्टी इस बात पर अपनी पीठ थपथपा रही है कि देखो कानून का पालन करके भी हो सकता है, बकरीद मनाई जा सकती है, हमने सड़क पर नमाज नहीं पढ़ने दी, उन्होंने मैदान में पढ़ी। लेकिन कई ऐसे लोग हैं जो ये कह रहे हैं कि भाई जिस तरह से वो अब तक कुर्बानी देते थे वैसा वो नहीं कर पाए। हालांकि लॉ ऑफ द लैंड कहता है कि आप पब्लिक प्लेसेस में नहीं कर सकते, इंडिया में ही नहीं, यूएई, सऊदी, कहीं नहीं कर सकते, लेकिन अब तक किया जाता था, आपने रोका, तो आप जानबूझकर मुस्लिम्स को तंग करते हैं देश में। क्या ये यूपी के चुनाव की तैयारी है आपकी?
4: देखिए अंजना जी, देश को कानून से चलाना किसी वर्ग को, किसी पंथ विशेष को तंग करना नहीं हो सकता, ना ही देश को कानून संगत चलाना हिंदू मुसलमान करना हो सकता है। 21वीं सदी का भारत कानून के आधार पर ही चलेगा, किसी को कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। और जिन लोगों ने वर्षों तक अपने वोट बैंक की पॉलिटिक्स के लिए सही और गलत जानते हुए उसको कानून के संगत नहीं चलने दिया, उनको गिरबान में झांकना चाहिए कि वास्तव में तुष्टिकरण या फिर पंथ विशेष की राजनीति कौन कर रहा था। भारतीय जनता पार्टी अगर ये बात कहती है कि इस देश के अंदर कानून के आधार पर जो अधिकार जिसको मिलने चाहिए वो अधिकार उसको मिलेंगे, क्या गलत है? अगर हम कहते हैं कि घुसपैठ इस देश के अंदर रुकनी चाहिए, क्या गलत है? अगर जो काम 15 साल में टीएमसी नहीं कर पाई, 15 दिनों में हमने बंगाल में करके दिखा दिया, क्या गलत है? सुप्रीम कोर्ट कह दे और उसके बाद आप जमीन ना दे बांध बनाने के लिए, और भारतीय जनता पार्टी आते ही वो जमीन दे दे, तो ये भारतीय जनता पार्टी का पीठ थपथपाने वाला ही विषय है। इसमें कोई और दूसरी बात नहीं हो सकती। भारतीय जनता पार्टी ने इस देश के अंदर 21वीं सदी की डेवलपमेंट पॉलिटिक्स को परिभाषित किया है, जो ना किसी दबाव में है, ना किसी पंथ विशेष की अपीजमेंट में है, वो देश के साथ खड़ी हुई, देश को आगे ले जाने वाली पॉलिटिक्स है। ये किसी एक चुनाव के लिए नहीं है, 27 का चुनाव हो या 29 का चुनाव हो, हम बहुत चुनाव वंजना जी यही बात को कहते कहते हारे हैं। और हमारा फर्क है इनमें और हमने, हमने लंबे सालों तक कहा कि हम राम मंदिर बनाएंगे, 370 हटाएंगे, कभी जनता ने हमारा साथ नहीं दिया होगा, और आज लगातार जनता हमारा साथ दे रही है। पर हम कभी भी समाजवादियों की तरह, जैसे 2012 के मैनिफेस्टो में इन्होंने लिखा था कि मुसलमानों पर दर्ज केस को हम वापस लेंगे, केसेस रजिस्टर्ड ऑन मुस्लिम यूथ, ये भाजपा के मैनिफेस्टो में आपको कभी नहीं मिलेगा, क्योंकि भाजपा भारत की बात कर सकती है, सबकी बात कर सकती है, विकास की बात कर सकती है, इनकी तरह तुष्टिकरण करके पंथ विशेष की बात नहीं कर सकती।
3: भदौरिया जी, थोड़ी समाजवादी पार्टी वहां बड़ी है तो उनसे पहले सवाल पूछ लेते हैं। भदौरिया जी, प्रश्न सुनिए। प्रश्न ये है कि पिछली बार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का लॉ एंड ऑर्डर, वो ये कहते थे कि भाई इससे पहले गुंडई होती थी, आरोप लगाती थी बीजेपी कि समाजवादी पार्टी में गुंडई होती थी, लॉ एंड ऑर्डर उनका सबसे बड़ा आधार बना लगातार जीतने का। पहली बार हालांकि उनके चेहरे पर चुनाव नहीं आता, लेकिन दूसरी बार बुलडोजर एक बड़ा फैक्टर बना उनके कार्यकर्ताओं का, उनके समर्थकों के लामबंदी का। ऐसे में लॉ एंड ऑर्डर पर जब वो माफियाओं के मुद्दे पर आपको घेर रहे हैं, तो लॉ एंड ऑर्डर में आप कैसे, जो ये नैरेटिव गढ़ रहे हैं आपके खिलाफ, उसको आप कैसे काउंटर करेंगे, क्या है आपके पास?
5: देखिए, ये तो आप भी अच्छी तरह जानती हैं कि बुलडोजर कभी न्याय का प्रतीक नहीं हो सकता है, और बुलडोजर से न्याय नहीं मिलता है, डिस्ट्रॉय करने की कोशिश होती है। अब आपने माफिया की बात की, उत्तर प्रदेश में आजकल कानून का राज है ही नहीं, लखनऊ तो राजधानी मानी जाती है ना। 28 मई को आपने देखा किस तरह से सरेआम हत्या कर दी गई, और किस तरह से शूट आउट होता है रोड पे, आता है एक व्यक्ति, उतरता है संदीप सिंह नाम का, आके उसको दनादन गोलियों से मार जाते हैं। 28 मई नहीं, 9 मई को ही आप देखो, लखनऊ के अंदर में पीजीआई वहां पे चेतन नाम के व्यक्ति को गोली मारी जाती है। फिर आप चले जाओ 28 मई को शिवम को गोली ईंट से मार के हत्या कर दी जाती है। 29 मई को इटावा में हत्या हो जाती है।

0: 27 मई को जिस तरह से यहाँ पे बांध के जिंदा जला दिया गया एक व्यक्ति को, फिर आप चले जाओ 9 मई को, तो मैंने बताया आपको 11 आप अंबेडकर में आ जाओ मई को, अंबेडकर में क्या करते हैं, किस तरह से मोहल्ले में लाठी डंडे चलते हैं। 11 अप्रैल को मिर्जापुर में किस तरह से वहां पे अधिवक्ता को गोली मार के हत्या कर दी जाती है। अभी 2 दिन पहले कानपुर में किस तरह सरेआम चाकुओं से वार करके किस तरह से लोगों को यहां पे घायल करके छोड़ दिया गया। झांसी में लोकगीत का झांसी के अंदर में वहां पे जो लोक गायिका है उसकी हत्या कर दी गई। औरैया में किस तरह से व्यक्ति को बुरी तरह से पीट पीट के उसको अधमरा कर दिया गया। हापुड़ में किस तरह से सरेआम लाठियां डंडे चल रहे थे। जौनपुर में किस तरह से आपने देखा, बरगामा निवादा में किस तरह से सरेआम लाठी डंडे से औरतों को पीटा जा रहा था। ये कानून व्यवस्था है, मैं पूछना चाहता हूं, जहां सरेआम गोलियां चल रही हो ये भारतीय जनता पार्टी नहीं बताना चाहती। एनसीआर का डाटा मैं आपको बता दूं तो उत्तर प्रदेश के अंदर में 2025-26 में जो राष्ट्रीय महिला आयोग का सबसे ज्यादा केस उसमें रजिस्टर्ड हुए 27,672, ये उत्तर प्रदेश के, सिर्फ उत्तर प्रदेश से आते हैं। दूसरा आपको देखो 2025 में 60,000 वहां पे मामले दर्ज हुए, 60,000 वहां पे 2024 में एनसीआरबी का डाटा है 64,000। इसी तरह से आप जाते जाओगे तो इनके हत्याओं के अगर आप ले लोगे तो अगर आप 22, 21, 22, 23, 24 तो आप देखोगे 3,500 से 4,000 हत्याएं के बीच में आपको डाटा में दे सकता हूं। 2024 में 3,000, 2025 में 2,994, 2022 में 3,491 और 2023 में 3,380। तो आप हत्याएं हो रही हैं, सरेआम यहाँ पे गोलियां चल रही हैं और आप कह रहे हो उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था बहुत अच्छी है।
1: आप ठीक है, जवाब दीजिए।
2: देखिए अभी एनसीआरबी के डेटा का उल्लेख कर रहे थे, आज मैं सामने अपने एनसीआरबी का डेटा ही लेकर के आया हूँ जान के। 2016 की बेसलाइन को मानकर रॉबरी उत्तर प्रदेश में 84% कम, लूट 77% कम, मर्डर 41% कम, हीनियस क्राइम 85% कम। एनसीआरबी के डेटा में 23वें नंबर पे रेप में और 24वें नंबर पे मर्डर में है उत्तर प्रदेश। कितना बड़ा राज्य है। और आपके समय में, आपके समय में मुख्तार अंसारी अतीक अहमद को गोद में बैठा करके खिलाने वाली पार्टियां, वो बड़े से बड़ा क्राइम कर दें और उनको प्रोटेक्शन देने वाली पार्टियां, वो तुष्टिकरण नहीं था तो क्या था? उत्तर प्रदेश का बच्चा बच्चा बता सकता है कि आज उसके मन में जो भय समाजवादी पार्टी के समय में था वो है या नहीं है। बहन बेटियां घर से नहीं निकल पाती थी, जो जमीनें हुआ करती थी दलितों की, वंचितों की, शोषितों की, पीड़ितों की, उनको कब्जा लिया करते थे। यही अतीक अहमद और मुख्तार अंसारी, और आपकी पार्टियां उनको ढूंढ ढूंढ कर लाती थी, चुनाव लड़वाती थी, मंत्री बनवाती थी, सिंहासनों पर बैठवाती थी। नहीं चलता है आज ये। कोई अगर क्राइम कर रहा है, आपने 5 घटनाओं का उल्लेख किया, 5 में सजा होगी, 8 की नहीं 8 में सजा होगी। जितने क्राइम होंगे सब में सजा होगी। क्राइम कम भी है, सजा ज्यादा भी है, यह उत्तर प्रदेश की हकीकत है आज, जो समाजवादी पार्टी मुझे नहीं लगता कभी समझ पाएगी, क्योंकि जिन्होंने क्रिमिनल्स का साथ दिया वो कभी क्राइम नहीं समझ
0: पाएगी। इसलिए नहीं समझ पाएगी क्योंकि आप सिर्फ 2 व्यक्ति जो इस दुनिया में नहीं उनका नाम लेकर राजनीति करना चाहते हो। आप नहीं बताना चाहते किस तरह से हत्या उत्तर प्रदेश के अंदर हुई। मैंने सरेआम बताया, गोली मार दी गई सरेआम संदीप सिंह को, क्या जवाब हुआ उसका? कोई जवाब है? इतना डर खत्म हो गया। आप चंदौली में समाजवादी पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष, सॉरी वहां की जो जिलाध्यक्ष है, उस महिला के घर में लोग घुस गए, उसको उस परिवार के साथ मारपीट की। क्या कानून व्यवस्था आपकी? महिलाएं सुरक्षित नहीं है? किसी घर में कोई घुस के मारपीट कर देगा? कहीं भी लाठी डंडा चलना शुरू हो जाता है, कहीं भी गोली चलना शुरू हो जाता है, और आपके पास जवाब क्या है? मुख्तार अंसारी, अतीक अहमद,
2: प्रश्न पूछूं, मुख्तार अंसारी, आपने कितने केस दर्ज किए?
0: ये आपका जवाब है? ये जवाब है
2: भदौरिया जी, गैंगस्टर एक्ट में कितने केस दर्ज किए जब सत्ता में रहे आपने?
0: मैं बता रहा हूँ,
2: कितने
0: गैंगस्टर एक्ट में कितने केस दर्ज किए? अब आपको जवाब दे रहा हूँ। ये समाजवादी पार्टी की जब सरकार थी ना तो न्याय की बात होती थी।
2: अरे आंकड़ा पूछ रहा हूँ, न्याय की बात होती थी, ऐसी बात होती थी, वैसी बात होती थी।
1: ठीक है, डॉली जी,
2: गैंगस्टर एक्ट में कितने, हमने 20,000 मुकदमे दर्ज किया,
0: मेट्रो बंद की थी, लैपटॉप दिए जाते,
2: 66,000 को अरेस्ट कर लिया, हमने कितने किए,
0: लैपटॉप दे रहे हैं।
1: बारी बारी से, आप बारी बारी से
0: तब भी लैपटॉप देते हैं। हम वहाँ भी स्टेडियम बनाते थे, हमने लोगों के विकास के लिए मेडिकल कॉलेज बनाए, वहाँ बच्चों के पढ़ने के लिए यूनिवर्सिटीज बनाई। आपने क्या बनाया?
2: और वो अतीक अहमद को देते थे,
0: अतीक अहमद मुख्तार अंसारी का नाम लेकर राजनीति करना चाहते हो देश के अंदर, यूनिवर्सिटी नहीं बनाओगे, मेडिकल कॉलेज नहीं बनाओगे, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बनाओगे,
1: रोजगार नहीं दोगे। अब डॉली जी, एनकाउंटर्स का पूरा डेटा है हमारे पास, और एनकाउंटर्स का ये डेटा बताता है, और अगर आप देखिए तो जितने लोगों का एनकाउंटर हुआ है उसमें मुस्लिम धर्म का पालन करने वाले 18 से 20 है, बाकी अन्य धर्मों के सारे लोग हैं। तो ऐसा भी नहीं कि माफियाओं को भी उसी चश्मे से देखा जा रहा है, लेकिन सबसे ज्यादा एनकाउंटर्स योगी राज में हो रहे हैं। अब इस पर वो अपनी पीठ थपथपाते हैं और उनके जो समर्थक है वो इस बात से उत्साहित होते हैं कि भाई कानून व्यवस्था चल रहा है, जो माफियाओं का एक दौर चलता था, उनका राज चलता था कई इलाकों में,
0: झूठ
1: वो खत्म हुआ है।
3: देखिए अंजना जी, पहली बात तो माफिया का कोई धर्म नहीं होता, अपराधी अपराधी होता है और धर्म देखकर कार्रवाई नहीं होती। अपराधी चाहे किसी जात का हो, धर्म का हो, उस पर होनी चाहिए कार्रवाई और मजबूती से होनी चाहिए। हमने बहुत सारे ऐसे लोग देखे जो कहीं ना कहीं आरएसएस से जुड़े थे या और संगठनों से भाजपा से रिलेटेड जो पाकिस्तान को इन्फॉर्मेशन भेज रहे थे, बहुत सारे ऐसे नाम है। इसके अलावा मैं आपको एक और बात बता देना चाहती हूँ कि देखिए, ये बात करते हैं धर्म की, जात की, अगर आप इतना अच्छा काम कर रहे हैं तो आपको धर्म और जाति का नाम ही नहीं लेना चाहिए, क्योंकि आप तो कहते हैं ना सबका साथ सबका विकास सबका सम्मान। नहीं तो फिर योगी जी का आज का बयान सिद्धार्थ जी सुन लीजिए, हिंदू हिंदू हिंदू हिंदू करते करते आप सत्ता में आए, लेकिन मैं ये साफ कह देना चाहती हूँ, जो 22 लाख बच्चे नीट के हैं उनमें भी हिंदू हैं, जो सीबीएसई के लिए आज रो रहे हैं बच्चे जिनके पेपर, वो भी हिंदू हैं। उसके अलावा वो सिर्फ 22 लाख बच्चे नहीं है, 15 लाख 18 लाख बच्चे नहीं है, वो 22 लाख परिवार है, 18 लाख परिवार है, वो किसी धर्म और जाति के चश्मे से नहीं बंधे हुए। उन्हें आज सम्मान चाहिए, उन्हें उनके अधिकार चाहिए। आज हर सिस्टम ध्वस्त है और आप हिंदू मुस्लिम करने में लगे हैं। आज देश का भविष्य खतरे में है। आज वो बच्चे जो दिन रात पढ़ते हैं और आत्महत्या करते हैं, जब उन पर चर्चा ना होकर ये चर्चा ऐसे मुख्यमंत्री, एक देश के सबसे बड़े प्रदेश के मुख्यमंत्री जो नीट पे बात नहीं करते, जो सीबीएसई में जो हो रहा है उस पर बात नहीं करते, जो एसएससी जीडी आप ही के उत्तर प्रदेश में जब बच्चे पेपर देने पहुंचे तो क्या हुआ, सर्वर फिर धर्म और जात करना शुरू कर दिया। अगर आप आंकड़ों की बात करें तो उठा लीजिए आंकड़े और देख लीजिए, जब खुलेआम लड़कियों को जलाया जाता है केरोसिन छिड़क कर, आप ही के राज में हुआ ना, उसके परिवार को अंतिम संस्कार का अधिकार नहीं दिया गया। जब खुलेआम बेटियां कानपुर में फंदे पर लटकी पाई जाती हैं, तो क्या होता है, किसका सिस्टम था, किसका सिस्टम
1: जो इन्होंने योगी जी को किया, तो मैं कोट कर देती हूँ, मऊ में उन्होंने क्या कहा, आज कोई माफिया पिस्तौल लहराकर खुली जीप से चलकर किसी हिंदू को धमका नहीं सकता है, अब नहीं धमका सकता है। मतलब जितनी भी उनके बातें थी उनमें विकास के कार्य तो नहीं होते थे पहले, गरीब को कोई सुविधा नहीं मिलती, लेकिन चंदा जुटा जुटा करके भी अगर वह कहीं पर अपना कोई आयोजन करना चाहते, रामलीला का आयोजन, यज्ञ का आयोजन, रामनवमी, जन्माष्टमी, शिवरात्रि, तो उसके नहीं होने दिया जाता था, उसमें व्यवधान पैदा किया जाता था। आपको हिंदू वोट चाहिए इसलिए क्या ऐसे मुद्दों को चुनाव के पहले उठाते हैं सीधा?
2: नहीं, किसने कहा अंजना जी, अगर हिंदू सबसे ज्यादा प्रताड़ित होगा तो बोलिए मत, हिंदू के लिए मत बोलिए, बोलते ही कम्युनल हो जाएंगे आप, मतलब वो जाकर के हिंदू के घर में घुसे भी, लूटे भी, सब कुछ करे, आप बोलिए मत, मैं नहीं बोला था आपके बीच में आपको सुनना पड़ेगा, मैं आपके बीच में नहीं बोला था, आपको सुनना पड़ेगा,
4: हिंदू थे,
2: बोल चुकी है,
4: हिंदू थे, बोलो आप,
2: सच्चाई है, सच्चाई है,
4: हिंदू थे कि नहीं थे,
2: एक्चुअली हिंदू
4: थे कि नहीं थे, लखीमपुर का बच्चा हिंदू,
2: बहुत बड़ी बड़ी बात कर रही थी कांग्रेस पार्टी की,
1: बोलो बारी बारी बारी बारी डॉली जी और इनको दिखा दो,
2: आप टीवी क्यों बंद कर, बोलने का मौका मिला उसके बाद भी चुप नहीं होंगे,
4: करता तो उसके बाद
2: भी चुप नहीं होंगे, बोलने का मौका मिला फिर भी बोलते रहेंगे, स्क्रीन टाइम चाहिए। देखिए, अभी कांग्रेस पार्टी की प्रवक्ता बात कर रही थी, मैं आपको एक उदाहरण से पूरे उत्तर प्रदेश की घटना आप समझ जाएंगे। मुख्तार अंसारी, डेडली क्रिमिनल, जेल की प्रेफरेंस कहां आई, कांग्रेस वाला पंजाब, उसने कहा मुझे जेल में रखिए कहां पर, जहां कांग्रेस की सरकार हो, पंजाब के अंदर, क्यों, प्रोटेक्शन।
3: अंजना जी, सबसे
2: माफिया हमारे देश के, हमारे प्रदेश के बच्चों की जिंदगी पर असर डालते हैं,
3: जनता पार्टी के सांसदों पर है,
4: अपराधी
1: बारी बारी बारी बारी
3: और निकाले
1: जैसे पूरा करते हैं।
2: मैंने जब चुपचाप सुना आपकी पूरी बात,
1: जल्दी बोलिए,
2: बच्चों की जिंदगी पर, पढ़ने वाले बच्चों की जिंदगी पर, देश के आमजनों पर, गरीबों पर, शोषितों पर वो असर डालते हैं माफिया, आप उनके घरों को लूट ले, बच्चों की आबरू को लूट ले, और कहे माफिया की बात मत करिए, डबल हो गई है यूपी की जीडीपी, डबल हो गई है, 33 लाख करोड़ के प्रपोजल एमओयू इन्वेस्टमेंट के, आप बात करिए ना जीडीपी पर, बात करिए इन्वेस्टमेंट पर, जवाब दे
1: दीजिए,
2: हर क्षेत्र में बड़ा है उत्तर प्रदेश,
3: आप माफियाओं को खत्म कर रहे हैं ना, तो शिक्षा माफिया खत्म कर दीजिए,
2: खत्म
3: कर दीजिए,
2: खत्म करेंगे,
3: आपने शिक्षा माफिया को
2: अंदर का व्यक्ति, ऊपर का व्यक्ति, नीचे का व्यक्ति,
4: 2024 में पर्चा लीक हुआ,
0: 2026 में लीक हुआ और ये कह रहे हम खत्म कर देंगे, खत्म कर देंगे 2024 में, आपने कहा था खत्म कर देंगे, 26 में लीक हुआ कि नहीं हुआ, रद्द हुआ कि नहीं हुआ,
5: पीएमटी का पेपर लीक नहीं हुआ,
0: कर रहे हो
5: लगातार एसएससी का पेपर लीक नहीं हुआ,
0: 52 परीक्षा
5: के समय में मास लीक चल रहा था,
0: 52 पेपर लीक हुए
5: थे, लोगों का पेपर लीक करवाया करते थे,
1: जवाब डॉली जी
5: मास चीटिंग करवाया करते थे,
0: पेपर लीक हुए हैं क्या बात करोगे,
5: शर्म
0: नाम की कोई चीज बची है क्या,
5: राजनीति करना चाहते
0: हैं, दुखद है हर बार पर्चा रद्द हो जाएगा,
5: आपको छात्रों पे भी राजनीति करनी है,
0: कमाल की बात कर रहे हो, पर्चा रद्द
1: हमारी सरकारों में जो हुआ नहीं हुआ हमें जनता ने रिजेक्ट किया, हम आज सरकार में नहीं है, आज
5: आप राजनीति क्यों कर रहे हैं आज,
1: दूसरी बात नहीं नहीं
5: कुछ जिम्मेदारी निभाइए ना, छात्रों पे राजनीति करेंगे
1: आप, निभाइए
5: जिम्मेदारी करना चाहते
1: हैं, लेट हर कंप्लीट प्लीज, जिम्मेदारी आप निभाइए और शिक्षा मंत्री का इस्तीफा ले लीजिए, 87 से ज्यादा पेपर लीक हो चुके हैं, वो भी शिक्षा माफिया कर रहा है, आप जम्मू कश्मीर
5: में
1: लेके कन्याकुमारी में छोड़ दीजिए आप ये बातें, अरे 40 की तो जिम्मेदारी लीजिए और दीजिए इस्तीफा, 40 की जिम्मेदारी लीजिए और दीजिए इस्तीफा,
0: लीजिए जिम्मेदारी,
5: हम व्यवस्था बदलवा रहे हैं, हम चाह रहे हैं कि ये देश में व्यवस्था ऐसी हो कि कोई पेपर लीक ना हो, आपकी तरह राजनीति नहीं करना चाहते,
0: सरकारों जिम्मेदारी नहीं ले पा रहे,
1: 13 साल होने जा रहे हैं,
0: 13 साल होने जा रहे हैं, जिम्मेदारी नहीं ले पा रहे तो शर्म आनी चाहिए ना, क्या 13 साल में कुछ नहीं कर पा रहे,
1: ठीक है सूर्या मैथिल जी, क्या बुलडोजर माफियाओं का हिंदुओं को हम ही सुरक्षा दे सकते हैं, ये सब प्लैंक है असल मुद्दों से भटकाने के लिए, क्योंकि ये मुद्दा सबसे बड़ा है इस वक्त, नीट से लेकर मतलब हम सब कुछ कर लेंगे दुनिया में, ये हम एग्जाम नहीं करा पाएंगे,
0: धन्यवाद अंजना जी, तो आपको
1: एग्जाम के लिए हमें सेना को बुलाना पड़ेगा, पेपर पहुंचाने के लिए सिस्टम फेलियर, सरकार फेलियर,
5: आपके बीच में नहीं बोला 20 सेकंड मुझे भी दे दीजिए, बदोरे साहब
0: क्या बात आपने उठाई,
5: अब यहाँ तो कम से कम माफियागिरी मत चलाइए, अरे साहब यहाँ तो कम से कम माफियागिरी मत चलाइए, फैक्ट पे बात कर लेते हैं ना, फैक्ट पे बात करते हैं,
0: पर्चा लीक हुआ फैक्ट नहीं है क्या,
5: अब फैक्ट पे बात करेंगे हम लोग,
0: पर्चा लीक फैक्ट नहीं,
5: हम फैक्ट पे बात करेंगे, आपके शासन काल में चारों अधीनस्थ चयन सेवा आयोगों के चेयरमैन कौन थे, चलो आप बताइए नाम बताइए, चारों अधीनस्थ चयन सेवा आयोग के चेयरमैन कौन थे,
1: अनुराग जी मैं जो पूछ रहा हूँ बताइए, निकल जाएगा
5: आपके शासन काल में चारों अधीनस्थ चयन सेवा आयोगों के चेयरमैन जो थे वो एक ही समुदाय से आ रहे थे,
0: होते वो होते हैं, आपकी सरकार इसका जवाब दीजिए,
5: और यह कहानी बात तो सुन लेंगे आप
0: नहीं सुनेंगे, क्योंकि आप बच्चों ने सुसाइड किया, आप
5: केवल अपनी आगे जाएंगे,
0: जब सुसाइड करता है
5: मतलब अपनी आगे जाएंगे, जब आप सत्ता में होंगे तो आप बूथ अध्यक्ष का सर कलम करवा कर और लखनऊ बुला लेंगे, क्योंकि उन्होंने आपको बूथ में नहीं घुसने दिया, और यहाँ खड़े होकर आप न्याय व्यवस्था की बात करेंगे, आपके शासन काल के अंदर आपके मंत्री नाबालिग बच्चों के साथ बलात्कार करेंगे, फिर वो मंच पे पहुंच जाएंगे, अखिलेश यादव उनको बचाएंगे, और उसके बाद आप यहाँ पर बैठ के बातें बनाएंगे, सुनिए ना
0: नीट पे,
5: अरे सुनिए तो सही साहब, अब हम नीट पे आ जाएंगे, पहली बात मैं अंजना जी आपको बताता हूँ,
0: मेरे भाई मेरे
1: बहुत बोलते हो आप अनुराग जी, प्लीज सर प्लीज, यू हैव टू वेट फॉर योर टर्न सर,
5: देखिए अंजना जी देखिए अभी इनको परेशानी किस बात से मैं आपको बताता हूँ, जब से बाबा जी की सरकार आई है उसके बाद से अपराधियों का लगातार एनकाउंटर हुआ, 289 से ज्यादा नामी अपराधियों का एनकाउंटर हुआ, उसके अलावा 10,990 से ज्यादा अपराधी जो है घायल हुए, 30,000 से ज्यादा अरेस्ट हुए, और विकास दुबे, गौरी यादव, बलराज भाटी, अदिल दुजाना, उस्मान चौधरी, अरबाज मुख्तार, अतीक अशरफ, हाजी इकबाल, सुंदर भाटी जैसे बड़े बड़े माफिया जिनको समाजवादी पार्टी ने पाल रखा था, पोस रखा था, एक एक जिले में एक एक माफिया को बांट रखा था हिस्सा, उन माफियाओं का इलाज किया गया, तो आज उत्तर प्रदेश वन डिस्ट्रिक्ट वन माफिया की जगह वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट हुआ, यही कारण है कि 33 लाख करोड़ से ज्यादा के आज एमओयू साइन हुए, आज उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था जो है भारत में दूसरी बड़ी अर्थव्यवस्था है। एक बात और अंजना जी, बाबा जी ने जो कहा ना वो बिल्कुल सही कहा, मैं आपको कुछ इंसिडेंट याद दिलाना चाहता हूं, आप देखिए 2005 का वो समय जिस समय की बाबा जी ने बात की, उसी समय में भाजपा के विधायक कृष्णानंद राय को बीच रोड पर 300 से ज्यादा गोलियां मारकर AK-47 से छलनी छलनी कर दिया जाता है, उसी समय में आप मानेंगे कि राजू पाल वो भी एक विधायक था बसपा का, उनको भी छलनी छलनी किसने किया, समाजवादी पार्टी के गुंडों ने किया, लगातार गेस्ट हाउस कांड भी उसी समय में हुआ, अच्छा। उसके अलावा लगातार ये ऐसी मोडस ऑपरेंडी अपराधियों की इन्होंने ऐसी एक लाइन बना रखी थी कि उत्तर प्रदेश मतलब उत्तम प्रदेश नहीं ऊत प्रदेश था,
1: जवाब दे दो, चलिए तो जनता ने उनको बाहर कर
0: दिया,
5: इनसे पूछिए, आज ये चिल्ला रहे हैं नॉयन ऑर्डर के ऊपर, मुझे ये बताइए नीरज मिश्रा याद है आपको? आप बहुत ब्राह्मणों की बात याद करते हैं। मुझे बताइए कन्नौज के अंदर उस बूथ एजेंट को याद करेंगे आप, जिनको आप
0: अंजना जी हमें बोल
5: लखनऊ लेके
0: अच्छा मैं बोल लूं। देखिए सवाल इनसे हमने सीधा सीधा नीट के बारे में पूछा कि नीट में बच्चों ने सुसाइड किया, वो बच्चे ने बच्चे ज्यादातर सनातनी थे लेकिन उस पर नहीं बोलेंगे। दूसरी बात इन्होंने बोला राजूपाल की पत्नी को मेरी बात सुनो चुप रहिए आप, उसमें आपके बीच में नहीं बोला अंजना जी, ये तो कमाल की बात है। ज्यादा आप बात कर रहे हो सनातन की इसलिए चुप रहिए। मैंने आपको बोला ज्यादातर बच्चे हिंदू थे सनातनी थे उन्होंने इन्होंने राजूपाल की बात बोली। मैं इनसे पूछता हूँ पूजा पाल को सम्मान दिलाने का काम समाजवादियों ने किया, उनको विधानसभा पहुंचा इसलिए हमारी बात मत कीजिए। एमयू आपने साइन किए, कितने एमयू साइन कर दिए, कितने पैसे वहां पे लग गए फील्ड पे, कितने पैसे आ गए, कहीं देखा आपने फैक्ट्री लगते हुए?
1: एमयू ने एमओयू
0: नहीं एमयू इन्होंने साइन किया। तो एमयू जो आपने साइन किए
2: एमयू के बाद
0: एमयू एक मिनट को एमयू जो आपने साइन किए कैसे कैसे एमयू साइन किए पता है आपको? आपने देखा है एमयू जो आपने साइन किए? जरा देख लीजिए उसमें क्या हालत है। दूसरा आपने कहा वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट कौन सा, एक आध डिस्ट्रिक्ट का प्रोडक्ट नाम बता दीजिए। जौनपुर में कौन सा प्रोडक्ट होता है? आजमगढ़ में कौन सा प्रोडक्ट है?
5: सीतापुर में कौन सा है? अरे सीतापुर के अंदर हक्कर का काम होता है, क्या बात करते हैं आप?
0: जो नाम बताओ नहीं पता है ना?
5: आप बताइए जुमला
0: माजी बंद कर दो,
5: जियो टैगिंग का क्या प्रोडक्ट है आप बताइए?
0: गाजीपुर बलिया देवरिया कौन सा प्रोडक्ट होता है?
1: गुलाम सर्वर साहब
0: हो गया ना बस, आवाज बंद हो गई प्रोडक्ट के नाम पे, झूठ बोलना बंद कीजिए, जुमलेबाजी बंद कीजिए।
1: गुलाम सरवर साहब माइक उठाइए। ये वो कह रहे हैं कि वन डिस्ट्रिक्ट वन माफिया से वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट हुआ है, क्या ये हिंदू मुस्लिम पॉलिटिक्स है या ये लॉ एंड ऑर्डर इश्यू है?
6: नहीं, ईश्वर करे कि ये हो जाए वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, क्योंकि प्रोडक्ट होगा तो सभी को रोजगार मिलेगा और रोजगार में धर्म नहीं, भूख सबको लगती है, प्यास सबको लगती है। लेकिन असल मुद्दा जो है वो ये है कि पहले तो मेरे नाम के आगे इस्लामिक स्कॉलर की जगह पे मुस्लिम स्कॉलर लिखिएगा। मैं समाज की बात करता हूँ,
1: अच्छा।
6: इस्लाम की बात नहीं करता हूँ,
1: अच्छा।
6: इस्लाम की बात तो बड़े बड़े लोग हैं जो इस्लामिक स्कॉलर है वो करेंगे, मैं मुस्लिम समाज की बात करूंगा।
1: ठीक है सर।
6: मुस्लिम समाज को ये समझना पड़ेगा कि आपका असली मुद्दा क्या है।
1: क्या है?
6: देखिए हमारा मुद्दा आज भी वही है जो हिंदुओं का है, जो सिखों का है, जो ईसाइयों का है, जो बौद्धिस्टों का है। रोजी रोटी, पढ़ाई लिखाई, दवाई कमाई, सड़क बिजली पानी, अच्छा स्वास्थ्य व्यवस्था, अच्छी यात्रा की व्यवस्था, ये सारी जो हिंदुओं का मुद्दा वही मुसलमानों का मुद्दा।
1: बीजेपी सरकार टारगेट करती है आपको?
6: मैं वही ला रहा हूं।
1: अच्छा,
6: लेकिन दुर्भाग्य से यहां के मुस्लिम लीडरों ने जो ट्रेडिशनल लीडर है, थोपे गए लीडर जो अब भी है मौजूद,
1: कौन
6: जो भी है,
1: कौन
6: भी लीडर नहीं है,
1: कौन थोपा गया है?
6: जमीन को जानता ही नहीं है। मुसलमानों के माने सीमांचल में क्या स्थिति है, आसाम में क्या स्थिति है, दिल्ली से बैठकर लोग फतवे देते हैं कि इसको वोट दे दो। अरे भाई वहाँ स्थिति क्या है, बिहार की क्या स्थिति है, दक्षिण की क्या है, उत्तर की क्या है, बाढ़ कहाँ है, सुखाड़ कहाँ है, का मुद्दे अलग अलग हैं। लेकिन होता क्या रहा, अब जैसे CANRC आपने कहा
1: फरमान पर वोटिंग करती है मुस्लिम कम्युनिटी?
6: नहीं करती। माइंड सेट असल मुद्दा है आपके शो पर मैं क्यों आ रहा हूँ, मैं चाह रहा हूँ बोलते बोलते बोलते माइंड सेट बने। और मैं एक बात कह सकता हूँ कि बदलाव आने लगा, इसके संकेत मिलने लगे। अब जैसे CANRC अब पूरे सड़क पर लोगों को बैठाया गया, न NRC को किसी ने समझा न CA को। कुछ लीडर जिधर हमको आपने खड़ा कर रखा उन्होंने भी मजे लिए, लेकिन किसी को पता नहीं कि 18 फरवरी 1983 से बीमारी, हालांकि 1969 से चला था जो आसाम स्टूडेंट फेडरेशन का, 1983 में नेल्ली में आपने सरेआम काटा मारा, 5000 से ज्यादा मुसलमान मरे। मुद्दा क्या था? मुद्दा वही था घुसपैठिया, असमिया मुसलमान और नॉन असमिया मुसलमान, बंगाली मुसलमान। मुद्दा खत्म नहीं हुआ। 1985 में आसाम अकाउंट साइन हुआ था, क्या था आसाम अकाउंट? आपने मुसलमानों को क्यों नहीं बताया? आज भाजपा उसी मुद्दे को उठा रही, मुद्दा कुछ नया नहीं है, बस उसको तबक, ये जो नहीं चांदी सोने का तबक जो मिठाई पे लगाते हैं, ये तबक बदलते। देखो भाजपा तो एकदम निकाल के और कालर पकड़ के बाहर ही कर देगी, कुछ कोई बाहर नहीं करेगा। हमारे साथ छल कपट पहले भी हुआ, ट्रिपल तलाक हमारा इश्यू नहीं था, अगर था तो वो मुसलमानों के फेवर में था, सीधी बात मैं तब भी बोला था आज भी बोल रहा हूं। रही बात नज्म नस्क कानून व्यवस्था, माइनॉरिटी तो चाहता है कि भारत में बेहतरीन माने लॉ एंड ऑर्डर हो, शांति हो, अमन हो, माइनॉरिटी के फेवर में जाता है ये। अगर अशांति होती है तो इफेक्टेड माइनॉरिटी होता है, ये माने रूल है। इसलिए अगर कोई भी सरकार, किसी की भी सरकार कानून व्यवस्था की बात करती है, मुसलमानों को समर्थन करना चाहिए, सड़क पर नमाज नहीं पढ़ने दूंगा, दूसरी पार्टियों के बयान पे मत जाइए, आप मरते रहेंगे। 1000 मॉब लिंचिंग की बात की जाती है, बताइए कोई कांग्रेस का लीडर मॉब लिंचिंग करते वक्त आया क्या मुसलमानों को बचाने रोड पर? ए खबरदार बजरंग दल वालों मत मारो, ये मेरा वोटर है, सपोर्टर है, तुम इसको क्यों मार रहे हो? एक वीडियो दिखाइए, कोई सपा वाले आए हो तो एक वीडियो दिखाइए, कोई बसपा वाले आए हो तो एक वीडियो दिखाइए, कोई आरजेडी वाले आए हो तो एक वीडियो दिखाइए, कोई टीएमसी वाले आए हो तो एक वीडियो दिखाइए। मुसलमानों किसके चक्कर में पड़ने जा रहे हो? बिल्कुल लाइन रेखा सीधी कर लो, हम किसी के नहीं, हम देश के हैं, समाज के हैं। जो देश का मुद्दा वही मेरा मुद्दा, जो समाज का मुद्दा वही मेरा मुद्दा। हम कांग्रेस इनके तमाम पार्टियों के बहकावे में नहीं जाएंगे, ये निमटे उनसे हम नहीं निमटने वाले।
1: आप ही भदौरिया जी, सवाल तो सुनिए, वो कह रहे हैं कि आप उनको टोपी पहनाते रहे हैं इतने दिनों तक मुस्लिम कम्युनिटी को।
0: देखिए
1: यही था ना सवाल आपका,
6: इसे लंबी टोपी हो गई।
0: बात सुन लीजिए, देखिए सवाल ये है कि भारतीय जनता पार्टी इस देश के अंदर में जिस तरह की राजनीति कर रही है, जिस तरह का माहौल देश के अंदर बिगाड़ने की कोशिश करती है, मैं आ रहा हूं आपके बीच में नहीं बोला, जिस तरह का देश के और एक प्रदेश के मुख्यमंत्री अगर इस तरह की बातें करेंगे कि हिंदू अगर मुस्लिम की बात करने लग जाएंगे, क्योंकि हम लोग तो आज तक बचपन से यही सुनते आए, हम सब हिंदुस्तानी है, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, और हमने तो बचपन से सब लोग रामलीला करते आ रहे हैं, यज्ञ करते आ रहे हैं, नवरात्रे मनाते आ रहे हैं, दुर्गा पूजा भी हुई है यहाँ पे, लेकिन पहली बार हमने सुना है कि आजकल बोला जाता है, आज एक मिनट रुकिए, परेशान मत होइए, आजकल बोला है, जब सिखा का अपमान हो रहा था तो समाजवादी खड़े थे, आपकी आवाज बंद थी, शंकराचार्य जी के साथ अपमान हो रहा था तो समाजवादी गए थे वहाँ पे, समाजवादी पीड़ितों के साथ खड़े होते हैं, समाजवादी सामाजिक न्याय की बात करते हैं, समाजवादी जो पीड़ितों का शंकराचार्य के साथ नहीं खड़े थे आप, शंकराचार्य के साथ नहीं खड़े थे आप, समाजवादी नहीं हो सकते, सिखा का अपमान नहीं कर सकते, आप राजनीति कर रहे हो
5: हिंदुओं के साथ,
0: पीड़ित व्यक्ति को हिंदू हो मुस्लिम हो सिख ईसाई हो आगड़ा हो पीछा हो, अगर पीड़ित होगा तो समाजवादी पार्टी खड़ी होगी, ये हमारा नारा है।
1: हो गया नारा, हो गया,
0: इनको बता रहा हूँ मैं कि पीड़ितों के साथ खड़ा होना,
5: घोषणा कीजिए ना,
1: सुधार
0: क्या पीड़ितों के साथ खड़ा हूँ।
1: कृष्ण जन्मभूमि के साथ खड़े हैं, वो कह रहे हैं कि आप टीवी पे बोलिए,
0: किसके
5: बोल दीजिए कृष्ण जन्मभूमि पे साथ खड़े हैं,
0: कृष्ण जन्मभूमि हमारी है,
5: आप भी साथ खड़े हैं, बोल दीजिए सामने,
0: वो हम तो मानने वाले
1: हैं,
0: आपको प्रूफ करना पड़ता है, हमें प्रूफ नहीं करना पड़ता है,
2: खड़े होने की कोई जरूरत नहीं है,
0: हमारे साथ आदर्श आचरण को अपनाते हैं, आप राजनीति करो, टीवी पे बोलिए, भगवान को मानते हो नहीं, टीवी पे बोलिए, टीवी पे बोलिए, शर्म आती है कुछ, भगवान टीवी बोलने का विषय,
1: पर सोशल मीडिया पर तो आप अखिलेश जी भी वीडियो डालते हैं हनुमान जी की पूजा का,
0: तब आप देखते नहीं थे,
1: अच्छा
0: पहले भी देख लीजिए,
1: नहीं आपने कहा कि सार्वजनिक तौर पर नहीं दिखाना चाहिए था,
0: से 12 साल की उम्र में मुझे आपको घटना बता सकता हूँ, इटावा में हम लोग खड़े थे एक पेड़े की दुकान में, तो हम लोग सब पेड़ा खाने लगे, तो उनको हमारे साथी ने पेड़ा दिया, उन्होंने पेड़ा नहीं लिया, तो हमने कहा वो कह रहे अखिलेश भाई साहब नहीं खाएंगे, हमने कहा क्यों, कि उनका नवरात्र का उपवास है, वो नवरात्र का उपवास कब से कर रहे हैं ये हमें बताने की जरूरत नहीं थी, वहां पे बजरंग बली की मूर्ति कब से उनके घर में, हमें बताने की जरूरत नहीं थी, नेताजी बजरंग बली के भक्त हुआ करते थे, आप मुझे मत बताइए, नेताजी बजरंग बली के भक्त हुआ करते थे, आप सोशल मीडिया का उपयोग करते हैं, हम लोग दिल से मानते हैं।
1: वीडियो क्या सवाल पूछा था मैंने, वीडियो पहले नहीं डालते थे, वीडियो
0: क्या उनका सब कुछ, आप सेफ चले जाइए घर में, आपको मंदिर मिलेगा, डालते वो है जिनको दिखाना है, जिनको बताना है,
1: अखिलेश जी ने डाला है,
0: हाँ तो अब आप बताया कि भाई हम लोग किस जमाने से जानते हैं,
1: ठीक है चलिए सिद्धार्थ जी,
2: मतलब चापलूसी की भी कोई हद होगी,
0: चापलूसी कहते हैं इसको,
2: अरे मैं उत्तर दे रहा हूँ,
0: प्रभु का नाम लेना,
1: बारी बारी से
2: ये बात तो
1: डॉली जी और इनको दिखा दे,
2: देखिए चापलूसी की भी कोई हद होगी, 10 साल के थे अखिलेश जी, उनको मिठाई ऑफर करी, किसी ने आकर के कहा भाई साहब मिठाई नहीं खाएंगे, भाई साहब है 10 साल का बच्चा, 8 साल का बच्चा,
0: अरे भाई उनसे भाई छोटा होगा तो भाई साहब,
2: अरे ठीक लगा लो यार भदौरिया जी, भाई साहब मिठाई नहीं खाएंगे, कमाल हो गया, मतलब भाई साहब 10 साल का बच्चा मिठाई नहीं खा रहा, भाई साहब उपवास में है, हद हो गई, भाई साहब उपवास में गए हैं,
0: अरे नहीं 12 साल
2: आपके घर में भी कोई 8 साल का 10 साल का बच्चा होगा, उसको आप 10 साल के बच्चे को क्या
1: खाएंगे, तो ये लड़ाई नहीं तो बंद नहीं,
2: 10 साल के बच्चे
1: जो अपनी बारी में बोलते हैं,
2: भाई साहब ही आपके बीच में ये शब्द नहीं बोला, 10 साल के बच्चे को आपके भी घर में होगा, उसको भाई साहब बुलाया करिए, बहुत बढ़िया बात,
0: हमारे यहाँ
2: दूसरी बात मैं बोलता हूँ, देखिए इसमें लॉ एंड ऑर्डर या देश का विकास इसमें कोई चश्मा नहीं हो सकता, आज प्रश्न केवल इतना है, अगर पहले की सरकारें, और मैं ऑन रिकॉर्ड आपके शो पर बोलता हूं, अभी मेरे को पता है इनमें से किसी को आपत्ति होगी तो मैं खबर भी साथ लेके आया हूं, एक सरकार ने यह तय कर दिया कि दंगों में हम केवल मुसलमानों का केस वापस लेंगे, कोर्ट ने उसको फटकार लगाई, यह देश के लिए ठीक है या गलत है, यह नासूर है, ये चीजें माफियाओं को पालना, ऐसे क्रिमिनल्स को पनाह देना, ऐसे लोग जो अत्याचार करते हैं उनको सिस्टम में रखना, यह नासूर है, और उन नासूरों को बचाने के लिए आप ऐसे निर्णय ले, आपका इतिहास ऐसा रहा हो, आज आपकी बातें बदल जाएंगी, बड़ी बड़ी बातें करेंगे, ऐसे नहीं होता है, जो मुद्दा मिले आप राजनीति करेंगे से नहीं चलेगा। उत्तर प्रदेश ने जो प्रगति की राह पकड़ी है वो बच्चा बच्चा जानता है। आपके समय का दौर नहीं है, ना ही आपसे सर्टिफिकेट चाहिए। उत्तर प्रदेश की जनता सर्टिफिकेट देने लग रही है, और आपके काले कारनामे थे इसलिए आपको बाहर का रास्ता दिखाया। पर समस्या इनकी यह है, क्रिमिनल्स के हाथ में हाथ रखने वाले लोग, उनको अपनी जेलों में बुला के मेहमान नवाजी कराने वाले लोग, मुझे नहीं लगता कि कभी प्रदेश की और देश की विकास की बात कर सकते हैं, और इसलिए जनता इनको पसंद।
1: मेरा प्रश्न आपसे यह है कि बीजेपी में तो कोई कंफ्यूजन है नहीं, अगर योगी आदित्यनाथ जी खुलकर कह रहे हैं कि हिंदुओं के साथ अब कोई गलत व्यवहार नहीं कर सकता, अगर वो कहते हैं कि बटेंगे तो कटेंगे, उनकी फिलॉसफी क्लियर है, क्या ये बीजेपी का साइड इफेक्ट है कि अब समाजवादी पार्टी हो कांग्रेस पार्टी हो उनको भी सॉफ्ट हिंदुत्व की तरफ जाना पड़ रहा है अगर आपको हिंदू वोट चाहिए?
3: अंजना जी, सीधी और साफ बात है, इन्होंने अभी माफिया की बात करी। हमारा ना कोई ऐसा ध्येय, हम हमेशा से कहते आए हैं कि मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है हम वतन है हिंदुस्तान हमारा। एक और बात बहुत अहम, मैंने अभी भी कहा शिक्षा माफिया हटा दीजिए, वो भी बहुत बड़ा माफिया है, और आप कर सकते हैं, अगर आप कह रहे हैं ना तो आप कर सकते हैं, लेकिन आप करना नहीं चाहते। आपने कहा कांग्रेस के शासन के 40 थे, चलिए इंडिया टुडे की अंजना जी एक एनालिसिस रिपोर्ट बता देती हूँ, वो एनालिसिस रिपोर्ट कहती है 19 से 24 के बीच में 65 बड़े एग्जाम पेपर लीक केसेस सामने आए, उसके बाद 5 सालों में 43 रिक्रूटमेंट एग्जाम प्रभावित हुए, उसके बाद 2015 से 24 तक सरकारी भर्ती परीक्षाओं में 50 से ज्यादा पेपर लीक केसेस दर्ज हुए। एक मिनट, आप एक मिनट,
2: जब मैं उत्तर दूंगा तो।
3: हाँ बिल्कुल, उसके बाद मैं नाम बता देती हूँ, नीट यूजीसी 2024, यूजीसी नेट 2024, यूपी पुलिस कांस्टेबल रिक्रूटमेंट 2024, बीपीएससी 70 सीसीई एग्जाम, बिहार सीएचओ रिक्रूटमेंट एग्जाम, राजस्थान आरपीएससी एसआई रिक्रूटमेंट लीक एग्जाम, छत्तीसगढ़ पुलिस स्टेशन कांस्टेबल रिक्रूटमेंट एग्जाम, और ये फेरिस लंबी है अंजना जी, मैं बहुत सारे नाम ले सकती हूँ, लेकिन आप ये माफिया क्यों नहीं खत्म करते जहां हमारे देश के 22 लाख 18 लाख बच्चे नहीं है, परिवार है, परिवार मतलब करोड़ों इस देश के लोग जो किसी धर्म और जात में नहीं बटे, जो आज भुगत रहे हैं शिक्षा माफिया को जो आपने पाला हुआ है उसका नतीजा है। आप बार बार एक ऐसी एजेंसी को लाते हैं जो फेल है, सीबीएसई, आप देखिए ऐसी ऐसी एजेंसीज आपने हायर की है जो ब्लैकलिस्टेड है, वो नाम बदलती है अपना और फिर देश में उन्हें आदेश दे दिया जाता है कराओ पेपर। अरे कितना बड़ा फेलियर है कि आज आर्मी, आज हमारे देश की सेना एयरफोर्स वो पेपर लेकर जाएगी। अरे आपका तो ये तो सीधा और साफ बताता है सरकार के बस की नहीं हो रहा है और शिक्षा मंत्री पर नहीं चल रही है शिक्षा, जब इतने पेपर लीक हो रहे हैं। अरे लाखों लाखों पद उत्तर प्रदेश में खाली पड़े, क्यों नहीं भरते, भरे ना, ये काम है आपके, ना कि दिन रात
1: जवाब दीजिए
3: जनता को बरगलाना।
1: 22 लाख बच्चे मतलब 1 करोड़ लोग परिवार के नजरिए।
2: मैं बिल्कुल खासकर इस विषय पर कोई राजनीतिक टिप्पणी नहीं करना चाहता, ना ही पुराना कुछ गिनाना चाहता हूं, पर इनने आरपीएससी का उल्लेख कर दिया, गलती हो गई डॉली जी से। 2013 का पेपर लीक था, कांग्रेस की सरकार थी, अपने मत गिनाइए। आप खड़े होकर के सबसे बड़ा पेपर लीक आरपीएससी का जब राजस्थान में हुआ, आप सरकार में।
3: नीट
2: समस्या ये है, देश के अंदर ये एक सामाजिक कुरीति है, सरकार ने जिम्मेदारी ली है, जीरो टॉलरेंस पॉलिसी है। अगर कोई पब्लिक एग्जामिनेशन एक्ट लेकर के आया तो हम लेकर के आए, कोई नहीं लेकर आया। क्या थी सजा? उससे पहले मास चीटिंग का नेक्सस चलता था, रैकेट चलता था, मास पेपर लीक चलता था।
3: क्यों हो रहा है?
2: एक करोड़ रुपए का
3: क्यों हो रहा है?
2: बोला था
1: सामाजिक कुरीति कैसे है, मतलब ये एडमिनिस्ट्रेशन फेलियर है, ये एनटीए का फेलियर है, ये सीबीएसई का फेलियर है।
2: देखिए अंजना जी, आप मेरे को 10 सेकंड दीजिए गंभीरता से उत्तर देने का। जिन लोगों को, जिन शिक्षकों को पेपर सेट करने के लिए बुलाया जाए, जो शिक्षक जगत से आए हों, अगर वो ही पेपर लीक कर रहे हो, जिनका पुराना प्रूवन ट्रैक रिकॉर्ड हो कि बहुत अच्छी परफॉर्मेंस,
3: अंजना जी कोई भाजपा के
2: उनको सिलेक्ट करके बुलाया गया
3: तो
2: और वो कोई भाजपा के लोग नहीं है,
3: कोई संघ के लोग नहीं है, तो
2: उनको बुला लिया जाए
3: और वो वहां से पेपर लीक हो तो उनका सोशल मीडिया।
2: मेरे को मेरी आपत्ति केवल अंजना जी इसमें है, ये राजनीतिक विषय नहीं है, संवेदनशील विषय है और सरकार संवेदनशीलता से इसको डील कर रही है। पर आप जो राजनीति कर रहे हैं, आप जो राजनीति कर रहे हैं, मैं 10 सेकंड ले रहा हूँ, जिस एक कंपनी का नाम आप ले रहे हैं, जिस एक कंपनी का नाम आप ले रहे हैं तेलंगाना में, जब उससे पेपर करवाते हैं कोई दिक्कत नहीं है, ये राजनीति है आपकी। आप तेलंगाना में पेपर कराएंगे सेम कंपनी से, कोई दिक्कत नहीं, पर नीट का पेपर वहां से हो गया तो आप राजनीति करना चाहते हैं, ये दुखद है।
1: मैं रोक रही हूँ, सबको रोक रही हूँ। सिद्धार्थ जी, मेरा प्रश्न आपसे ये है कि टीचर, ठीक है इस मामले में आ रहा है कि टीचर ने, जिसने पेपर बनाया उसी ने लीक किया, लेकिन उस टीचर ने बाकायदा सारे सवालों को अपनी हैंडराइटिंग में नोट किया, फिर वो पेपर लेके वहां से निकलता है। बच्चों की इतनी चेकिंग होती है, जो क्वेश्चंस बना रहे हैं, क्वेश्चन पेपर्स बना रहे हैं, वो कॉपी करके फिर वहां से पेपर लेकर जा रहे हैं। क्या वहां पर कोई सिक्योरिटी और चेकिंग नहीं है? ये मेरा सीरियस प्रश्न है, जिससे मैं बच्चों के प्रॉब्लम का एड्रेसल चाहती हूं। ये पॉलिटिकल बॉयनी के लिए नहीं है,
2: बड़ा
1: एक वैलिड क्वेश्चन
2: है। बिल्कुल वैलिड उत्तर दे रहा हूं। देखिए, आपको आपको ध्यान होगा, जानकारी भी होगी, हमने राधा कृष्ण जी की अध्यक्षता में कमिटी का गठन किया, पूर्व इसरो चीफ की, जितने स्टेप्स पूरे नीट के पेपर में हर स्टेप को आइडेंटिफाई किया गया, कहां कहां से लीक हो सकता है।
1: हाँ।
2: उन्होंने जो सुझाव दिए, जितने शॉर्ट टर्म सुझाव थे, शत प्रतिशत अक्षरशः लागू किए गए, उसके बाद भी लीक हुआ। सरकार जिम्मेदारी ले रही है, सरकार कह रही है इसको हमको लड़ना पड़ेगा, ये राजनीति का विषय नहीं हो सकता, इनके लिए हो सकता है, हमारे लिए नहीं है। सरकार हर हद तक जाकर के छात्रों के भविष्य को सुरक्षित करेगी। आप लोग जिस राजनीति को करना चाहते हैं उससे बाहर जाइए, ये राजनीति का विषय नहीं है, ना बनने देंगे।
7: आप हिंदू मुस्लिम करेंगे,
1: अनुराग जी अगर बोले, अनुराग जी जल्दी
7: बात करूंगी। अरे आप हिंदू मुस्लिम करेंगे, मैं बच्चों के भविष्य की बात,
0: जहां बच्चों के भविष्य की बात आती है, जहां देश के राष्ट्र की बात आती है, बीजेपी से गलती हो जाती है।
2: देश के
0: इतना संवेदनशील मामला है, इसमें राजनीति नहीं करेंगे तो आप राजनीति नहीं करते तो क्या करेंगे? हर बात में मुख्तार अंसारी, अतीक अहमद, मुख्तार अंसारी, अतीक अहमद, अरे जो इस देश में नहीं है, जो इस दुनिया में नहीं है, उनका नाम लेके राजनीति करना चाहते हो आप, लेकिन नीट में बच्चों की मौत होगी उसके बारे में नहीं बोलना चाहते, उसके बारे में एक शब्द नहीं बोलना चाहते। और एक बात, लास्ट बात आपके बीच में नहीं बोला, लास्ट बात शायद भारतीय जनता पार्टी को संस्कृति संस्कार का अंदेशा नहीं है। हम लोग गांव में एक साल भी हम लोग छोटे होते हैं तो दद्दा बोलते हैं, या भाई भैया बोलते हैं, या भाई साहब बोलते हैं, लेकिन आप बीजेपी में नहीं होगा ना, हम लोग छोटे भी होते हैं तो दद्दा बोलते हैं। दद्दा मतलब समझते हो? नहीं समझोगे, देखिए आप नहीं समझ में आओगे। भारतीय जनता पार्टी के लिए प्रभु के नाम पे राजनीति करना आसान होता है, हम उनके आदर्श आचरण को अपनाते हैं।
1: एक्सक्यूज हो नहीं सकता है, उसको कैप करना भी सरकार की ही जिम्मेदारी है। बोलिए, ये इशू यूपी में बड़ा बनेगा, मैं बता रही हूँ आपको।
5: देखिए अंजना जी, जैसा कि सरकार ने निर्णय लिया है कि हर पॉइंट पर क्रॉस चेक किया जाएगा, और अगर कोई गलती हुई है उसको सुधारा जाएगा, और साथ में आपने बयान सुना होगा शिक्षा मंत्री जी का कि उन्होंने कहा अगले साल से हम जो है इसको ऑनलाइन कराएंगे। तो सरकार अपनी तरफ से प्रिकॉशन ले रही है। आप, मैं पूछता हूं, कांग्रेस की प्रवक्ता बहुत नाराज हो रही है, मैं भी एक स्टूडेंट रहा हूं, मैंने भी बहुत सारे एग्जाम्स को क्रैक किया है, और मैं समझता हूं स्टूडेंट की परेशानी क्या होती है, लेकिन आप मुझे ये बताइए 2024 से पहले अगर कोई पेपर लीक के मामले में पकड़ा जाता था तो आपकी सरकार तो 60 साल रही।
7: देखिए,
5: आपके बीच में नहीं बोला, आप मुझे ये बताइए आपकी नीयत यदि साफ थी तो आपने उनके लिए क्या कानून बनाया था? ये 2024 में नरेंद्र मोदी जी ने कानून बनाया, ये सोचा कि इस प्रकार की चीजें जो हैं,
1: दो लाइन का जवाब सबसे लेने डॉली जी आपसे जल्दी से।
7: अंजना जी, फेल्ड सिस्टम है, जवाबदेही। मैंने कहा ना, शिक्षा मंत्री शिक्षा पे बात नहीं करते, रेल मंत्री रेल पर बात
5: मैं
7: नहीं
5: तो
7: करते।
5: आपसे प्रश्न
7: और एक और बात, एक मिनट,
5: मैं आपसे पूछ रहा हूँ, हमें इतने साल काम किया,
7: अब अंजना जी
5: मैं
7: से बोलिए,
5: पूछ रहा हूँ कि आपने क्या कानून बनाया, देखिए इतना बता दीजिए।
7: हमारे टाइम में सीबीएसई के साथ कभी ऐसा नहीं हुआ, इतिहास गढ़ा है आपने,
5: मेरे पास पूरी लिस्ट है, इतिहास गढ़ा है आपने। अगर आप कहेंगी मैं अभी लिस्ट पढ़ना शुरू कर दूंगा आपकी,
7: एक और बात,
5: नहीं मेरे पास पूरी लिस्ट है,
7: देखिए
0: लिस्ट पढ़ना, लेकिन नीट में सुधार मत,
2: 2006 का
1: सीबीएसई का बात, दो दो लाइन का जवाब, गुलाम सरवर साहब जल्दी से आपसे शुरू कर, जल्दी से आपसे शुरू, उत्तर प्रदेश के चुनाव के एंगल पे जल्दी से,
7: झूठ बोलो
1: गुलाम सरवर साहब जल्दी से, दो दो लाइन
7: सच लगने लगे, ये है इनका इतिहास,
1: दो दो लाइन जल्दी।
6: केवल एक शब्द कहूंगा के देश की जो असल समस्या है, जैसे नीट पर कह रहे हैं इस पर राजनीति नहीं कीजिए, मैं डिसएग्री करता हूं। राजनीति का असल विषय है, मैंने राहुल गांधी जी के आवास को, वो 24 अकबर रोड को, 2024 वाला जो पंगा हुआ था नीट में, जो अनियमितताएं आई, तो मैं घेरा था कि विपक्ष की भूमिका आप क्यों नहीं निभा रहे हो, और अभी पिछले हफ्ते भी मैंने विपक्ष को ही घेरा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि सत्ता पक्ष ये कहे कि इस पर राजनीति न कीजिए,
1: कैसे न करें। अनुराग जी दो लाइन जल्दी से,
0: यहाँ पे हत्याओं पे मत करो, राजनीति मत करो, मतलब हम उठाए नहीं, विपक्ष की जिम्मेदारी ना निभाएं, हम विपक्ष की जिम्मेदारी बाखूबी से निभा रहे हैं, आप सत्ता की जिम्मेदारी।
7: अंजना जी, सीधी और साफ बात है, आज अगर करोड़ों परिवारों का भविष्य खतरे में है तो सरकार को जिम्मेदारी लेनी चाहिए।
2: सरकार ने जिम्मेदारी,
5: देखिए अभी यहाँ पर कह रहे थे ना कि हम तो कानून व्यवस्था के लिए कुछ भी करेंगे, आपको मैं एक याद दिला रहा हूँ, आपके दर्शकों को भी एक बात बताना चाहता हूँ, ये जो अनुराग भदौरी जी खड़े हैं ना, इनकी पार्टी बांके बिहारी मंदिर शाहपुर में है, छाता में, उसका पूरा का पूरा प्लॉट का रेवेन्यू रिकॉर्ड चेंज कर दिया, उस रेवेन्यू रिकॉर्ड को अल्ट्रेशन करके उसमें कब्रिस्तान बना दिया समाजवादी पार्टी की सरकार में, और ये यहाँ बैठ के
2: अंजना जी सरकार की जिम्मेदारी है और सरकार ने जिम्मेदारी ली है। विषय उठाना और राजनीति करना बहुत अलग है। अगर आप ये कहना चाहते हैं कि हम राजनीति कर रहे हैं तो सरकार को देश को आपकी मंशा पता है, विषय उठाइए। सरकार मुस्तैदी के साथ छात्रों के साथ खड़ी है और छात्र
1: इसी के साथ समय समाप्त होता है। आप सभी का बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। देश दुनिया के बाकी खबरों के लिए देखते रहिए आज तक।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: आपके पास दो ऑप्शंस हैं, या तो सुपरमैन बनकर फर्नीचर को भीगने से बचा लो, या E3 HDMR बोर्ड लगाकर फर्नीचर को लाइफटाइम के लिए वाटर और टर्माइट प्रूफ बना लो। E3 प्रोडक्ट्स, ये रिश्ता लंबा चलेगा।
3: और भाई कहाँ गए थे घूमने?
4: जीके मैक्स।
5: वैसे रोहन पढ़ाई में कैसा है?
4: जीके मैक्स बेस्ट पुट्टी,
5: जेके वॉल मैक्स
4: बेस्ट पेंट,
5: जेके मैक्स।
4: बाकी सब सवालों का पता नहीं, लेकिन मोस्ट ब्यूटीफुल वॉल्स के लिए सिर्फ जेके मैक्स पेंट्स। जेके मैक्स पेंट्स, खुशियों के रंग।
6: लायन ओज फैमिली, सुपर एक्शन फैमिली।
7: इसमें है फाइबर, बीटा ग्लूकोन, प्रोटीन, मैग्नीशियम तत्व, इसलिए ये शारीरिक संतुलन के साथ साथ शरीर को स्वस्थ रखता है। लायन ओट्स फैमिली, सुपर एक्शन फैमिली।
8: टेबल के ऊपर से जब भी खाते हैं दबा के खाते हैं, ये भाई साहब सब पचा देते।
9: पर दिक्कत तो होने आती है जो टेबल के नीचे से खाते।
10: मुल्तानी पश्मीना, अपने हक का खाओ, सब कुछ पचाओ।
11: विक्रम चाहे जितना भी फड़फड़ा ले, ढूंढ नहीं पाएगा।
12: ए प्रिया, कैसा लगा मेरा स्टंट?
13: विक्रम, एक हिंट तो देते।
14: विक्रम!
13: हिंट
12: बड़े आराम से।
15: Director, the taste of success.

0: feels like summer. Monte Carlo, it's the way you make me feel.
1: ऊंचाई पर बने रहने के लिए जरूरी है इरादों का प्योर होना। गैलेंट एडवांस बनाते हैं ऐसा स्टील जो अंदर से है ज्यादा प्योर, ज्यादा मजबूत। गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो।
2: इन एसोसिएशन विद
3: समकूल कूलर, हवा ऐसी छोड़े पूरी फैमिली को ठंडक से जोड़े। समकूल कूलर, लाइफ बनाए वंडरफुल।
2: हिंट, बड़े आराम से
4: पंजाब नेशनल बैंक, भरोसे का प्रतीक।
5: कूल स्टाइलिश फैंस, एनहांस होम डेकोर विद ब्यूटीफुल फैंस।
6: शारदा यूनिवर्सिटी, द वर्ल्ड कम्स टुगेदर एट शारदा यूनिवर्सिटी, वेयर आर यू।
2: विमल, बोलो जुबां केसरी।
7: 25 सालों से जहां टिकी है देश की नजर, मेरे साथ फिर से शुरू हो रहा है वही सफर। ये है खबरें साथ तक, देखते रहिए आज तक।
8: तक डिजिटल फर्स्ट चैनल्स, 11 बिलियन व्यूज, 85 मिलियन यूनिक व्यूअर्स, वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर योर ब्रांड, रीजनल और हाइपर लोकल रीच। हर शहर हर कस्बे तक एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल करें

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
1: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो
0: हेक्सा ऑर्गेनिक रेडिएंट स्किन एंड नरिश्ड हेयर प्योर आयुर्वेदिक ब्यूटी ड्यूरेबल पाइप्स फिटिंग्स एंड टैंक्स अ कंप्लीट रेंज ऑफ सैनिटरी सॉल्यूशंस

प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच ड्यूरेबल पाइप्स फिटिंग्स एंड टैंक्स अ कंप्लीट रेंज ऑफ सैनिटरी सॉल्यूशंस।

0: आज माफिया पिस्तौल लहराते हुए कोई धमका करके खुली जीप में चल करके किसी हिंदू को धमका नहीं सकता है। जन्माष्टमी हो, रक्षाबंधन हो, इन आयोजनों में अगर किसी ने व्यवधान डाला तो पर्व तो मनाई लेगा, लेकिन उसके बाद ये तय है कि रावण और कंस जैसी दुर्गति उसकी तय है जो व्यवधान डालने वाला है।
1: उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का यह बयान ऐसे समय आया जब 17 साल के हिंदू युवक की हत्या कर दी गई। गाजियाबाद के खोड़ा थाना क्षेत्र में सूर्या की बकरीद की शाम चाकुओं से गोद कर बेरहमी से हत्या कर दी जाती है और इल्जाम लगा सूर्या के ही मुस्लिम दोस्तों पर। हत्या के बाद गाजियाबाद के खोड़ा इलाके में तनाव है, पुलिस अलर्ट पर है। इस बीच लखनऊ में मुख्यमंत्री ने यूपी की कानून व्यवस्था पर अपनी सरकार के मॉडल का जिक्र एक बार फिर किया।
0: अहिंसा परमो धर्म, धर्म हिंसा तथैव च, यानी सामान्य जीवन में अहिंसा ही सर्वोच्च धर्म होना चाहिए, लेकिन अगर सामने वाला देश और समाज की सुरक्षा के लिए खतरा है तो उसके लिए अहिंसा नहीं चल सकती है, उसके लिए तो हिंसा ही हमें अंततः अपनानी पड़ेगी।
1: तो फिर गाजियाबाद की घटना कैसे हो गई? योगी सरकार के अपराध नियंत्रण के दावों पर यह घटना कितना बड़ा सवाल है। क्या यूपी की राजनीति में 2027 विधानसभा चुनाव के लिए नया नैरेटिव तैयार हो रहा है? गाजियाबाद में जिस शख्स पर 28 मई को चाकुओं से वार किया गया उसने 29 मई को दम तोड़ा। इसी दिन यानी 29 मई को मऊ में मुख्यमंत्री ने दावा किया कि उनके राज में कोई हिंदुओं को धमका नहीं सकता। यूपी की कानून व्यवस्था पर मुख्यमंत्री योगी के 48 घंटे में दो बड़े बयान आए हैं। 29 मई को मुख्यमंत्री ने कहा कि आज माफिया किसी हिंदू को खुलेआम धमका नहीं सकता। 30 मई को मुख्यमंत्री ने कहा कि खतरा हो तो हिंसा भी अपनानी पड़ती है। एक तरफ अपराध पर सख्त कार्रवाई का दावा, दूसरी तरफ हिंसा पर राजनीतिक बहस। समाजवादी पार्टी कह रही है कि गाजियाबाद की घटना को हिंदू मुसलमान से ना जोड़ा जाए। 2027 का रास्ता लखनऊ से नहीं बल्कि ऐसी घटनाओं पर जनता की प्रतिक्रिया से भी तय होगा, इसलिए चुनावी नैरेटिव को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष अपने अपने हिसाब से परिभाषा गढ़ते हैं। क्या अपराध का धर्म होता है या फिर हर बड़ी वारदात के बाद राजनीति धर्म का चश्मा पहन लेती है? इस बीच उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य कहते हैं कि हत्या करने वालों को फांसी के तख्ते पर चढ़ाने के लिए कानूनी कार्रवाई की जाएगी। योगी सरकार में सहयोगी पार्टी के मंत्री अखिलेश यादव से चुभते हुए सवाल पूछते हैं, उनके पीडीए समीकरण पर वार करते हैं।
2: अखिलेश यादव जी को उस पे बोलना चाहिए कि उनके वोटर हैं, उन लोग ऐसी हत्या क्यों कर रहे हैं? कहीं मुसलमान मार रहा है तो कहीं यादव मार रहा है। उनका MOI जो फैक्टर है इस समय पूरे प्रदेश में आतंक मचाया हुआ है। बोलते हैं पीडीए इनका असफल है सिर्फ MOI फैक्टर को दबाने के लिए, लोगों का दिमाग भटकाने के लिए कि हमको सिर्फ MOI कहा जाता था, इस नाते पीडीए चिल्ला रहे हैं।
1: गाजियाबाद की घटना उत्तर प्रदेश की राजनीति को उस चौराहे पर लाकर खड़ा कर देती है जहां सरकार अपने दावे गिनाती है और विपक्ष जमीन की हकीकत दिखाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन सवाल है, क्या यूपी में जनता सुरक्षित महसूस करती है?
3: Presented by पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच, ड्यूरेबल पाइप्स, फिटिंग्स एंड टैंक्स, अ कंप्लीट रेंज ऑफ सैनिटरी सॉल्यूशंस। Presented by पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच, ड्यूरेबल पाइप्स, फिटिंग्स एंड टैंक्स, अ कंप्लीट रेंज ऑफ सैनिटरी सॉल्यूशंस।

0: नमस्कार, मैं हूं राजीव ढोंडियाल। शाम के 7 बजने वाले हैं आज तक इस खास शो में। अगले आधे घंटे दिन भर की बड़ी खबरें होंगी, लेकिन खबरों की शुरुआत करें उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। बंगाल के सोनारपुर में अभिषेक बैनर्जी पर हमला, गुस्सा है, लोगों ने कपड़े फाड़े, पत्थर अंडे फेंके। टीएमसी सांसद बोले, मुझे मारने की साजिश थी। अखिलेश यादव ने भी उठाए सवाल। कर्नाटक के अगले मुख्यमंत्री होंगे डीके शिवकुमार। बेंगलुरु में कांग्रेस विधायक दल की बैठक में चुने गए नेता, 3 जून को 8 से 10 मंत्रियों के साथ ले सकते हैं शपथ। लखनऊ में कार्यक्रम में बोले सीएम योगी, अहिंसा ही इंसान का परम धर्म, लेकिन जब कोई देश समाज के लिए खतरा हो तो अपनानी पड़ती है हिंसा की नीति। दिल्ली मुंबई को दहलाने की साजिश नाकाम, हथियार के साथ राजधानी में 9 आतंकी गिरफ्तार। आज और कल रात हमले का था प्लान, दाऊद आईएसआई गठजोड़ का सनसनीखेज खुलासा। राजस्थान के कई शहरों में बिगड़ा मौसम, धूल भरी आंधी के साथ दिन में ही छाया अंधेरा। दिल्ली एनसीआर में बारिश के चलते मौसम में गिरा। अब शो की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ करते हैं। दक्षिण 24 परगना में अभिषेक बैनर्जी गए और हमला उन पर हुआ, और हमले के बाद पुलिस और केंद्रीय सुरक्षा बल अभिषेक बैनर्जी के रेस्क्यू के लिए पहुंचे हैं। सोनारपुर में अभिषेक बैनर्जी पर स्थानीय लोगों ने ही हमला कर दिया, अंडे उनकी तरफ फेंके गए, और इसके बाद सुरक्षा बल अभिषेक बैनर्जी को निकालने के लिए वहां पर पहुंचे हैं। आज अभिषेक बैनर्जी के साथ क्या वो तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं। अभिषेक बैनर्जी ने आरोप लगाया, मुझे मारने की साजिश थी, एक सुनियोजित तरीके से मुझे मारने की प्लानिंग थी। आज हेलमेट पहने वो खुद को बचाते हुए दिखाई दिए जब उन पर अंडे फेंके जा रहे थे। उनका आरोप था कि उनके साथ जो है हाथापाई हुए।
1: जो अभिषेक बनर्जी पश्चिम बंगाल में सत्ता का केंद्र होते थे, आज उन्हें बीच सड़क पर पीटा जा रहा है। ये पश्चिम बंगाल की सियासत का रक्त चरित्र है। सत्ता बदली लेकिन नहीं बदली तो पश्चिम बंगाल में सियासी रंजिश की तस्वीर, जिसकी चपेट में ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी आ गए। बीच सड़क पर लोगों ने अभिषेक को जमकर पीटा, गुस्साई भीड़ ने अभिषेक बनर्जी पर अंडे फेंके, कपड़े फाड़ दिए। हालात इतने बिगड़ गए कि अभिषेक को हेलमेट पहनकर वहां से निकलना पड़ा।
2: दे वांट टू किल मी एरा आमादेर प्राणे मारते चाहे, मेरे दिख अमर मृतदेह उद्धार होके खान थे के, किंतु मैं जाएगा छेड़े जाबो ना।
1: अभिषेक बनर्जी विधानसभा चुनाव के बाद हुई हिंसा के पीड़ित लोगों और उनके परिवारों से मिलने के लिए सोनार गए थे, जहां उन पर यह हमला हुआ। अभिषेक ने इसे बीजेपी की साजिश बताया।
2: मैंने माथाटा बेचे गेछे खाली आमार एकटा हेलमेट पड़ेछिलाम बोले। आमार एखाने जारा सहकर्मीरा छिलो एरा बुद्धि खाटिये एकटा हेलमेट दुटो हेलमेट जोगाड़ करे रेखेछिलो, बोलो दादा एटा माथाय पड़े नीन, आपनि देखुन आमार जामा कापड़ेर अवस्था, 15 बछर चशमा भेंगे दियेछे, घड़ी टड়ি প্রায় একদম ছিড়ে, বেল্ট টেল সব ছিড়ে দিয়েছে।
1: उधर स्थानीय लोगों का दावा कि ये हमला किसी राजनीति से प्रेरित नहीं है, बल्कि ये उनका गुस्सा टीएमसी सरकार के खिलाफ है। इलाके में सरकार ने कोई विकास का काम नहीं किया, तो वहीं टीएमसी के कार्यकर्ताओं ने कई सालों तक गुंडागर्दी की, जिसे लेकर ये गुस्सा फूटा।
3: चोर को कैसे नाड़े, उसको क्या फूलों से स्वागत करेंगे, चोर को अंडा फेंक के मारेंगे। अभी तो हाँ वो भी बहुत कम हो गया, वो ये राम जी की धरती है, वो राम जी की नाराबाजी करने के माना किया था बांग्लादेश से, वो खुद है, उसका जो मुख्यमंत्री पीसी है वो भी वो एक बांग्लादेशी है।
4: वो लोग अभय मारने का टाइम तो वहाँ भेजा है, एक

0: हमने सूर्य उठाया, हॉस्पिटल लेके आया जल्दी, यहाँ पे इमरजेंसी में एडमिट कराया हमने।
1: परिवार का आरोप है कि सूर्या को बकरीद में बकरा काटते दिखाने के लिए बुलाया गया, लेकिन इनकार करने पर उसकी जान ले ली।
2: इन लोगों ने फोन करके धोखे से मेरे बेटे को बुलाया और जाके ही आ जाओ ईद मिलते हैं, ठीक है। फिर मेरे बेटे से कहा तुमने बकरा कटते हुए देखा है, मेरा बोला मैंने नहीं देखा है, ऐसे कहकर एकदम चक्कू उसके पेट में डाल के ऐसे घुमा दिया है।
1: अब मामले में इलाके में तनाव फैला हुआ है, जहां परिवार इंसाफ की गुहार लगा रहा है।
3: करीब 24 घंटे बाद पार्थिव शरीर जो है वो अब यहां पर आ गया है। अगर मैं आपको तस्वीरों में दिखाऊं तो पूरी तरीके से इस इलाके में एक बार फिर से तनावपूर्ण माहौल जो है वो बन गया है। बताया ये जा रहा है कि पोस्टमार्टम के बाद जो है बॉडी अब परिवार को हैंडओवर कर दी गई है। वहीं परिवार का ये कहना है कि जब तक 7 के 7 लोगों के खिलाफ कार्रवाई नहीं होती, जब तक उनके खिलाफ पुलिस एनकाउंटर नहीं करती, तब तक इस पार्थिव शरीर का जो है अंतिम संस्कार नहीं होगा। तो ये
1: पुलिस का दावा है कि बाइक को लेकर दोनों पक्षों के बीच विवाद हुआ था। अब तक की जांच में ये सोची समझी साजिश नहीं लग रही है। गाजियाबाद से अंशुल सिंह के साथ आज तक ब्यूरो।
4: अब गाजियाबाद खोड़ा हत्याकांड मामले से जुड़ी हुई बड़ी खबर आपको देते हैं। इस मामले में पुलिस ने अब तक 5 लोगों को गिरफ्तार किया है, 2 अन्य आरोपियों की तलाश जारी है। हालांकि अब तक पुलिस को हत्या में इस्तेमाल चाकू बरामद नहीं हुआ है। वहीं इलाके में जबरदस्त तनाव है, जिसे देखते हुए सुरक्षा बल की तैनाती की गई है। इसी मामले में यूपी में सियासत भी गर्म हो गई है।
1: गाजियाबाद में सूर्या की हत्या में हिंदू मुस्लिम का रंग चढ़ा तो तस्वीरें हंगामे में बदल गई। इलाके में तनाव फैल गया तो वहीं भारी सुरक्षा बल की तैनाती करनी पड़ी।
3: इस पूरे इलाके में जो है माहौल एक बार फिर से तनावपूर्ण बनता हुआ दिख रहा है। वहीं दिल्ली गाजियाबाद पुलिस ने जो सिक्योरिटी लगाई है वो सिक्योरिटी बाहर की तरफ है, लेकिन फिर भी सैकड़ों की संख्या में लोग यहां मौजूद हैं और लगातार नारेबाजी चल रही है। अब ये देखना होगा कि गाजियाबाद पुलिस किस तरीके से जल्द जा करके इन 7 के 7 लोगों को हिरासत में लेती है और कहीं ना कहीं इन लोगों में जो गुस्सा है, जो आक्रोश है, इसको शांत कराने के लिए काम करती है।
1: हिंदूवादी संगठनों ने मोर्चा संभाल लिया है।
5: एक हिंदू परिवार के लड़के को बाहर बुलाया जाता है और उसे 5 से 6 लोग पकड़ते हैं और उसे बकरा बताकर काटने का काम करते हैं। उसके पेट में 6 से 7 वार करते हैं, उसकी अतड़ियां तक बाहर आ जाती है। किस तरह की स्थिति खोड़ा की हो गई है। हम लोग बार बार कह रहे हैं कि हिंदू सुरक्षित नहीं है, पलायन करने की स्थिति में है, क्योंकि तरुण खटक की जो आग थी अभी तक नहीं बुझी, मगर खोड़ा में दोबारा से तरुण खटक जैसी घटना हो चुकी है।
1: उधर मामले में सियासत भी तेज हो गई है। सरकार सख्त एक्शन का भरोसा दे रही है।
6: प्यारा कोई भी हो वो बक्सा नहीं जाएगा, उसको खोज निकाला जाएगा और हत्या करने वाले को फांसी पर चढ़ाने के लिए जो कार्रवाई होती है कानूनी, वो कानूनी कार्रवाई की जाएगी। सरकार कानून व्यवस्था को लेकर के बहुत गंभीर है और जिन लोगों ने ऐसा अपराध किया उनके खिलाफ कठोर से कठोर कानूनी कार्रवाई की
5: जाएगी।
1: विपक्ष सरकार पर धर्म की सियासत का आरोप लगा रहा है तो वहीं सरकार के नेता समाजवादी पार्टी को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं।
7: अखिलेश यादव जी को उस पे बोलना चाहिए कि उनके वोटर हैं, उन लोग ऐसी हत्या क्यों कर रहे हैं। कहीं मुसलमान मार रहा है तो कहीं यादव मार रहा है। उनका MOI जो फैक्टर है इस समय पूरे प्रदेश में आतंक मचाया हुआ है।
8: देखिए, समाजवादी पार्टी समझती है कि ये हिंदू मुसलमान शब्दों का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए और जिन लोगों ने भी अपराध किया है चाहे वो किसी धर्म किसी जात के हों उन पर कार्रवाई होनी चाहिए, सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, कानून के मुताबिक कार्रवाई होनी चाहिए।
9: गाजियाबाद की जो घटना हुई है उस घटना की जांच चल रही है और निश्चित तौर पे जो भी इस घटना के पीछे है उसके ऊपर सख्त से सख्त कड़ी कानूनी कार्रवाई होगी।
1: बहरहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है जिसके बाद तय होगा कि आखिर सूर्या की मौत की असली वजह क्या थी। गाजियाबाद से अंशुल सिंह के साथ आज तक ब्यूरो।
4: एक तरफ ये हत्या और उधर आज लखनऊ में योगी आदित्यनाथ ने अहिंसा की वकालत की, लेकिन साफ भी क्या कि समाज के भलाई के लिए अगर जरूरी हो तो हिंसा का रास्ता अपनाना पड़ता है।
10: याद रखना, भारत की ऋषि परंपरा हमें इस बात की प्रेरणा देती है कि अहिंसा परमो धर्म, धर्म हिंसा तथैव च। यानी सामान्य जीवन में अहिंसा ही

0: सर्वोच्च धर्म होना चाहिए, लेकिन अगर सामने वाला देश और समाज की सुरक्षा के लिए खतरा है तो उसके लिए अहिंसा नहीं चल सकती है, उसके लिए तो हिंसा ही हमें अंततः अपनानी पड़ेगी।
1: बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन उत्तराखंड के दौरे पर है, जहां पर उन्होंने साफ किया कि धामी के नेतृत्व में एक बार फिर बीजेपी की सरकार बनने जा रही है।
2: मां गंगा की भी भूमि है और मैं भी गंगा के तट से आता हूं, तो मुझे भी लगता है कल मैं जब ऋषिकेश में आरती कर रहा था तो मैंने कहा हम बिहार के लोगों के लिए छठी मैया और गंगा मैया अपने आप में एक अलग संबंध है। और मैं आज जब गंगा के रिवर फ्रंट के रूप में आपने जिस प्रकार से काम शुरू किया है और जिस प्रकार से हरिद्वार के कॉरिडोर को आपने आगे विकसित करने का काम कर रहे हैं, निश्चित रूप से माँ गंगा मैया का भी आपको पूरा आशीर्वाद मिलेगा और आपके नेतृत्व में निश्चित रूप से 2027 में भी हम एक अच्छी सरकार यहाँ देंगे।
1: अब खबर बिहार से, जहां पर बिहार पुलिस राबड़ी देवी के आवास पर पहुंची, जहां पर राबड़ी देवी से उन्होंने बातचीत की। राबड़ी देवी को भवन निर्माण विभाग की तरफ से नोटिस जारी होने और आवास खाली करने के बारे में जानकारी दी गई है। अब सूत्रों के मुताबिक राबड़ी देवी ने फिलहाल आवास खाली करने से इनकार कर दिया, मना किया। राबड़ी देवी ने पदाधिकारियों को स्पष्ट किया कि वो अभी जल्दबाजी में आवास तो खाली नहीं करेंगे। आवास खाली करने के लिए समय सीमा खत्म होने के बाद भवन निर्माण की तरफ से उनको दो बार नोटिस भेजा गया।
3: पर आते हुए हम तो चाहते हैं कि सम्राट चौधरी पूरा बिहार के फोर्स बुला के आ, हमारा 10 नंबर खाली करा दे, हम नहीं खाली करेंगे, आवे हमारा सामने।
4: बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी ने बिहार सरकार को खुली चुनौती दी है कि वो अपना सरकारी आवास नहीं खाली करेंगी। पिछले 6 महीने से 10 सर्कुलर रोड आवास को खाली कराने के लिए नोटिस दिया जा रहा है, लेकिन राबड़ी के तेवर बताते हैं कि ये आवास बिहार की सियासत का नया अखाड़ा बनता जा रहा है।
5: अरे कहाँ, इसमें वो कह रही, इसमें तो जो कानून है, जो नियम है, उसके हिसाब से काम होता है और सब लोगों को नियम कानून का पालन करना चाहिए।
4: बिहार विधानसभा चुनाव खत्म होने के बाद 25 नवंबर 2025 को राबड़ी देवी को नया आवास 39 हार्डिंग रोड पर आवंटित किया गया। उस वक्त राबड़ी देवी को लेटर भी भेजा गया, लेकिन 6 महीना बीत जाने के बाद भी राबड़ी देवी ने 10 सर्कुलर रोड घर को खाली नहीं किया है। ये बंगला पशु संसाधन मंत्री नंद किशोर यादव का आवंटित है, जिसे लेकर राबड़ी देवी को 29 मई को नया नोटिस भेजा गया।
6: मैं तो कह रहा हूँ कि वो मुख्यमंत्री रही हैं, 1-2 साल नहीं 7 साल रहे हैं, तो उनको तो कानून का पालन करना ही चाहिए। बयान निंदनीय है, ये टकराव का बयान है, आपत्तिजनक है, और क्या बात करते हैं, पूरे बिहार के फोर्स की जरूरत है, एक दरोगा जाके निकाल देगा।
4: राबड़ी देवी करीब 20 वर्षों से 10 सर्कुलर रोड आवास में रहती आई हैं। यह आवास काफी बड़ा है, इससे लालू परिवार की यादें भी जुड़ी हैं।
7: राबड़ी देवी जी, ये जंगल राज नहीं है, ये कानून का राज है, एनडीए की सरकार है। आपको इलाज कराना होता है तो सिंगापुर जाते हैं, पोता का जन्मदिन मनाना होता है तो दिल्ली नोएडा भागते हैं, और जब लूटने की बारी आती है तो आप बिहार में रहना चाहते हैं।
4: नवंबर 2005 में चुनाव हारने के बाद राबड़ी देवी को यह आवास आवंटित किया गया था। उस समय पूर्व मुख्यमंत्री को भी आवास आवंटित होता था, लेकिन जब 2019 में अपने आवास के मामले को लेकर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव पटना हाईकोर्ट गए, तब कोर्ट ने सख्त निर्देश दिया था कि कोई भी पूर्व मुख्यमंत्री या पूर्व उप मुख्यमंत्री पद से हटने के बाद सरकारी बंगला नहीं रख सकता। इसके बाद से 10 सर्कुलर रोड राबड़ी देवी को बिहार विधान परिषद के नेता प्रतिपक्ष के रूप में आवंटित किया गया, जिसे अब उन्हें खाली करना होगा। शशि भूषण, पटना आज तक।
1: तो बीजेपी नियम कानूनों का हवाला दे रहे राबड़ी देवी को, कह रहे हैं कि आप तो मुख्यमंत्री रही हैं, आपको तो जानकारी होनी चाहिए नियमों की, आप बंगला क्यों नहीं खाली कर रहे जब किसी और को आवंटित हो चुका है, आपको दूसरा आवंटित हो चुका है, वहां पर जाए। लेकिन इस बीच में आप पुलिस भी पहुंची राबड़ी देवी को समझाने के लिए, और जानकारी मिल रही कि अगर आवास खाली नहीं किया जाएगा तो एक्शन लिया जाएगा।

0: बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी के आवास पर अभी मौजूद है और कुछ देर पहले राबड़ी देवी के आवास 10 सर्कुलर रोड के अंदर जो है पटना की SDPO अनु सिंह पहुंची थी और ADM लॉ एंड ऑर्डर पहुंचे थे, क्योंकि राबड़ी देवी के इस आवास को खाली करने के लिए नोटिस भेजा गया है, 2 नोटिस फिलहाल भेजा गया है और उसी को लेकर आज जो है SDPO सचिवालय और ADM लॉ एंड ऑर्डर राबड़ी देवी के आवास पहुंचे थे और उनसे बात किया, उनसे जाना कि आखिर वो कब खाली कर रहे हैं। तो राबड़ी देवी ने साफ तौर पर कहा कि अभी वो खाली नहीं करेंगी, कम से कम 1-2 महीने का समय लेंगे, उसके बाद ही वो इस आवास को खाली करेंगे। लेकिन भवन निर्माण विभाग की ओर से 2 नोटिस जा चुका है और जो साफ तौर पे ये आवास भी नंदकिशोर जो हैं मंत्री नंदकिशोर राम उन्हें अलॉट कर दिया गया है और इस आवास को खाली करने का 3रा नोटिस कुछ ही दिन के बाद राबड़ी देवी को मिलेगा और उसके बाद जो है देखने वाली बात होगी क्या राबड़ी देवी इस आवास को खाली करती है कि नहीं। क्योंकि
1: तो कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार में बड़ा बदलाव हो गया है और कर्नाटक में नए कप्तान का चयन भी हो गया। DK शिव कुमार को नई कमान सौंप दी गई है और सिद्धारमैया ने कुर्सी छोड़ भी दी है, उनके नाम का प्रस्ताव यानी कि DK शिव कुमार के नाम का प्रस्ताव भी उन्होंने रखा। तो कर्नाटक में अब DK शिव कुमार नए मुख्यमंत्री होंगे। विधायक दल की बैठक में उनको नेता चुन लिया गया है और अब शपथ ग्रहण करेंगे। तो पार्टी में अब नया मुख्यमंत्री DK शिव कुमार, जो कि अब तक डिप्टी CM थे, अब वो राज्य के मुख्यमंत्री होंगे नए। उनकी शपथ 3 जून को होगी। हालांकि सिद्धारमैया की राजनीतिक भूमिका को लेकर अभी तस्वीर साफ नहीं है, जिसे लेकर अटकलों का बाजार गर्म। संवाददाता सगे राज इस खबर पर हमारे साथ जुड़ गए। सगे राज, DK शिव कुमार नए मुख्यमंत्री होंगे, शपथ ग्रहण को लेकर अब क्या क्या तैयारियां और कैबिनेट को लेकर क्या चर्चाएं हैं?
2: देखिए, DK शिव कुमार ने कन्फर्म किया था कि 3 तारीख को, और KC वेणुगोपाल ने भी कन्फर्म किया था 3 तारीख को DK शिव कुमार चीफ मिनिस्टर का शपथ लेंगे। अभी ये तैयारी बेंगलुरु पे होगा और फिलहाल सूत्रों के अनुसार वो राजभवन के अंदर होगा, जहाँ पे एक लास्ट हाउस है, जहाँ पे एक स्टेज है, वहाँ पे DK शिव कुमार और उनके साथ जो भी कैबिनेट मिनिस्टर्स है उनके साथ वो शपथ लेंगे। उसके अलावा अभी जो बातचीत होगा 3 तारीख तक, क्या बातचीत होगा पूरा दिल्ली में होगा, जब DK शिव कुमार यहाँ से दिल्ली जाएंगे और सिद्धारमैया भी दिल्ली जाएंगे, जहाँ पे डिस्कशन होगा कौन कौन मंत्री बनेंगे, कौन कौन उप मुख्यमंत्री बनेंगे और किस किस को कैबिनेट बर्थ मिलेगा, कौन कौन डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनेंगे, ये पूरे का बातचीत होगा, डिस्कशन होगा। बाद में हमको पता चलेगा कौन होगा और कितने लोग DK शिव कुमार के साथ उस दिन शपथ लेंगे।
1: सगे राज, बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। इस बीच में एक तस्वीर सामने आई है, वो हम आपको इस समय दिखा रहे हैं। DK शिव कुमार और वो अब नए मुख्यमंत्री होंगे। राज्यपाल को ये जानकारी भी दी गई है, आप उनको देखेंगे पत्र सौंपते हुए, ये तस्वीर सामने आई है। अब बात करते हैं NTA की, जिसकी भूमिका पर एक बार फिर सवाल खड़े हो रहे हैं। NTA की ओर से आयोजित CUET परीक्षा, UG परीक्षा में एक बार फिर से तकनीकी खराबी का मामला सामने आया है।
3: अभी निकल के आना 2 घंटे।
4: परीक्षा केंद्र के बाहर मचा ये हंगामा एक बार फिर NTA के कामकाज पर सवाल खड़े कर रहा है। आज CUET UG परीक्षा के केंद्रों पर तकनीकी खराबी की शिकायत आई, जिसके बाद सुबह 9 बजे शुरू होने वाली परीक्षा कई केंद्रों पर करीब 11:23 पर शुरू हुई। वहीं NTA ने दोपहर की शिफ्ट का टाइम भी बदल दिया, जिसके चलते अभ्यर्थियों और अभिभावक परेशान नजर आए। अब NTA इस पर माफी मांग रहा है, तो वहीं विपक्ष एक बार फिर NTA की भूमिका पर सवाल खड़े कर रहा है। 4 परीक्षाएं, 1 करोड़ बच्चे, एक भी ईमानदारी से नहीं हो पाई। दावे विश्व गुरु के, मगर देश में 1 परीक्षा नहीं करवा सकते। मोदी जी ने पूरी शिक्षा व्यवस्था तबाह कर दी है। जिस पीढ़ी का भविष्य आप बर्बाद कर रहे हैं, वही पीढ़ी आपका हिसाब करेगी।
5: ये देखने में आ रहा है कि NTA ने CUET टेस्ट का भी मजाक बना के रख दिया है। CUET टेस्ट में करीब 18 लाख बच्चे अलग अलग यूनिवर्सिटीज में बैठने के लिए टेस्ट देते हैं। आज सेंटर पे पहुंचे, उनका टाइम बदल दिया गया, किसी का सेंटर बदल दिया जा रहा है, किसी की डेट बदल दी जा रही है, ऐसी डेट पे एग्जाम दे दिए जाते हैं जिसमें वो सेंटर फ्री नहीं है, पूरा का पूरा मिसमैनेजमेंट है।
4: उधर सरकार के नीट पेपर में सेना की मदद के फैसले पर भी विपक्ष सवाल खड़े कर रहा है।
3: कल हमारे देश की सरकार ने ऐलान किया है कि अब नीट के पेपर को लीक होने से बचाने के लिए एयरफोर्स के जहाज से उसको ट्रांसपोर्ट करेंगे, एयरफोर्स के बुलेट प्रूफ ट्रकों से उसको ट्रांसपोर्ट करेंगे। मजाक बना रखा है, हमें बेवकूफ समझ रखा है। पूरी दुनिया में इतने बड़े बड़े पेपर होते हैं, कहीं सुना है कि एयरफोर्स से उनको ट्रांसपोर्ट किया जाता है?
4: बहरहाल परीक्षाओं को लेकर एनटीए पूरी तरह फेल नजर आ रहा है, जहां उसकी नाकामी एक बार फिर आज सीयूईटी यूजी के पेपर में खुलकर सामने आ गई। आज तक ब्यूरो।
1: अब एक बड़ी खबर आपको देते हैं। दिल्ली पुलिस ने पाकिस्तान ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में बने 4 ग्रेनेड बरामद किए हैं। इन ग्रेनेड को एनएसजी की मदद से मेहरौली के सुनसान इलाकों में नष्ट किया गया है। देश की राजधानी दिल्ली में ये ग्रेनेड मिले हैं और दिल्ली पुलिस ने इनको ध्वस्त भी किया है एनएसजी की मदद से। 29 मई की रात को दिल्ली को दहलाने की साजिश थी, ये पूछताछ में पता चला है, ये साजिश का खुलासा हुआ है। आज तक को मिली जानकारी के मुताबिक दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल की ओर से ये पकड़े गए कथित आईएसआई अंडरवर्ल्ड आतंकी मॉड्यूल ने 29 और 30 मई की रात को दिल्ली को दहलाने की हमलों की योजना बनाई थी और सूत्रों के मुताबिक आरोपी साजिश को अंजाम देने के अंतिम चरण में थे।
6: ये एक बहुत बड़ा मॉड्यूल था जो कि दिल्ली में और मुंबई में इनकी पूछताछ और इनकी सर्वेलेंस एक्टिविटीज से ये पता चला है कि मुंबई में इन्होंने कई ठिकानों के वीडियोज बनाए हैं, जिसके बीच में दादर रेलवे स्टेशन, कुछ ब्रिजेस और कुछ पार्क्स का सर्वे किया है और रेकी की है। दिल्ली में भी इन्होंने कुछ स्ट्रेटेजिक बिल्डिंग्स की वीडियो बनाई है, उनके कोऑर्डिनेट्स एक दूसरे से शेयर किए हैं और ये जो पंजाब में 3 लड़कों को पकड़ा है, इनके पास से वो कोऑर्डिनेट्स भी मिले हैं हमारे को जहां पर इनको अटैक करना था।
1: तो हिमांशु मिश्रा इस खबर पर हमारे साथ जुड़ गए। हिमांशु, कैसे इसका खुलासा हुआ? ये जो 9 आतंकी अभी पकड़े गए हैं, इनके बारे में डिटेल से जानकारी दी, ये कौन है, कहां के रहने वाले हैं?
7: देखिए, जो ये पूरे पकड़े गए हैं, ये एक लंबा चौड़ा मॉड्यूल है और ऑपरेशन चल रहा था पिछले 1 महीने से। सबसे पहले जो पहली गिरफ्तारी होती है वो पुणे से होती है, क्योंकि पुलिस लगातार खुफिया एजेंसियों के साथ मिलकर के नजर बना के रखी थी। पूरी साजिश रची जा रही थी कराची में बैठकर और अंजाम देना था दिल्ली और मुंबई सहित देश के 5 बड़े शहरों में। अब आप सोचिए, रिक्रूटमेंट की जाती है, रिक्रूटमेंट में उन लड़कों को टारगेट किया जाता है जो कहीं ना कहीं जो अंडरवर्ल्ड से जुड़े, जो पूरा नेटवर्क है, उन लड़कों को सर्च किया जाता है, उनको रिक्रूट किया जाता है और उसके बाद बकायदा अलग अलग शहरों की, जिसमें दिल्ली और मुंबई की इंस्टॉलेशन, आप सोचिए क्रिटिकल पॉइंट्स के जो जगह है उनको टारगेट करने की तैयारी थी। और आप देखिए, जब पुलिस ने पकड़ा उनको, आखिरी जो पहले की गिरफ्तारियां 5 हो चुकी थी, लेकिन जो 3 जिन्हें एग्जीक्यूट करना था, जब वो दिल्ली पहुंचते हैं और जब पकड़ा गया तो उनके पास से 4 पाकिस्तानी ऑर्डिनेंस।
1: ये जानकारी हैरान करती है। बहुत शुक्रिया हिमांशु आपका इस तमाम जानकारी के लिए। अब आगे बढ़ते हैं। राजस्थान रॉयल्स के हार के साथ ही वैभव सूर्यवंशी का इस सीजन में शानदार सफर खत्म हो गया। 96 रनों की पारी खेलने के बावजूद उनकी टीम फाइनल तक नहीं पहुंच सकी। जाहिर है वैभव के लिए ये दिल तोड़ने वाला लम्हा था। अब सबकी नजरें हैं रविवार को होने वाले बेंगलुरु बनाम गुजरात फाइनल पर।

0: आंसू तो बस बहाना थे, रो तो दिल रहा था वैभव का। क्या नहीं किया था इस बेबी बॉस ने, गुजरात के खिलाफ तो कंडीशंस के हिसाब से बल्लेबाजी भी की थी। टीम जब मुश्किल में थी तो पहली बार इतना धैर्य दिखाया वैभव ने। इस सीजन की पांचवी हाफ सेंचुरी जमाने वाले वैभव का ये सबसे धीमा लेकिन अहम अर्धशतक था। अर्धशतक क्या था, 4 रन से बस शतक ही रह गया था। आईपीएल करियर में पहली बार उन्होंने 200 के कम स्ट्राइक रेट से हाफ सेंचुरी जमाई। आईपीएल में सबसे तेज 1000 रन बनाने वाले वैभव सूर्यवंशी के सीजन के ये आंकड़े साबित करते हैं कि अकेले दम तक राजस्थान को यहां तक पहुंचाने के बाद फाइनल न खेलना उन्हें कितना खलेगा। गुजरात के खिलाफ 96 रन की पारी खेलने वाले वैभव बेशक मायूस हों, लेकिन भारत को इस सीजन में एक ऐसा हीरा मिला है जिसकी चमक ने T20 के इतिहास और भूगोल को बदल कर रख दिया है। पूरी दुनिया वैभव पर फिदा है। देर रात अमिताभ बच्चन ने अपने एक्स अकाउंट पर एक पोस्ट साझा करते हुए लिखा, सूर्यवंशी 15 साल का अद्भुत सूर्या, इस उम्र में तो हम कंचे और गुल्ली डंडा भी ठीक से नहीं खेल पा रहे थे। अब सबकी नजरें होंगी रविवार को होने वाले फाइनल पर। विराट की टीम लगातार दूसरे साल खिताब जीतने में कामयाब होगी या फिर शतक जमाकर गुजरात को फाइनल में पहुंचाने वाले शुभमन गिल उठाएंगे विजेता की ट्रॉफी। आज तक ब्यूरो।
1: और अब वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का, कुछ और खबरों के साथ होंगे हाजिर, आप देखते रहिए आज तक।
2: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा प्यार से परोस, इन एसोसिएशन विद भारत।
3: This is the sound of Jack buzz cutting his way to a small fortune. To Jack, every time he cuts his own hair, that's 50 bucks right in his pocket. If Jack sees DIY buzz cuts as a saving strategy, Wells Fargo is right behind him. And with their mobile app, tracking his savings is easy.
4: Oh, ouch.
3: However you make money work, we can work with that.
5: Mobile carrier's message and data rates may apply. Wells Fargo Bank N.A. member FDIC.
6: The music you love is all right here on TuneIn, bringing you good vibes and the hottest hits. But are you ready to amp things up even more? Just upgrade to TuneIn Premium for all of our exclusive music channels, completely commercial free. So you get more of today's hits. More country roads.
7: Thank God I get to wake up.
6: And everything else. Hear it all here, commercial free, on TuneIn.
8: There's just something about classic soul music that gets you moving. And TuneIn's exclusive soul groove station has all the right moves. Hit play on the grooviest 70s selection. Get your masters in melody with Motown Classics. Or just set the right tone with smooth, soulful vibes from Marvin Gaye and more. It's all right here on TuneIn, ready to set the perfect 70s tone. Search Soul Groove or tell your device to play Soul Groove on TuneIn now to listen.
9: Hey, this is Harry Douglas from Freddie and Harry. Stay on top of the MLB season with ESPN Radio. Get daily sports talk covering every big moment from around the league.
10: Right field, and it will.
9: From the first pitch of the season to the stretch run.
10: And that's the ball game.
9: We've got you covered with analysis, storylines, and insider perspective. And all season long, catch selective live games so you can tune in for key matchups and hear the action unfold. Search ESPN Radio or tell your device to play ESPN Radio on TuneIn to listen.
11: अपनी इलेक्ट्रिक सवारी।
12: जब अपना कोई मूव किसी को मूव करता है ना यार, फील आ जाती है।
13: भाई, भाई तू अपना है, तेरा सफर मुझे भी करना है। तूने प्रूफ कर दिखाया यार, एनीबॉडी कैन ड्रीम।
12: मुझे लगा मैं नहीं, पूरा का पूरा मूवमेंट चल रहा है।
14: ब्रीदेबल फैब्रिक्स, ऑसम कंफर्ट, एफर्टलेस स्टाइल, एडी फ्रॉम द हाउस ऑफ अरविंद।
15: इसमें है फाइबर, बीटा ग्लूकोन, प्रोटीन, मैग्नीशियम तत्व, इसलिए ये शारीरिक संतुलन के साथ साथ शरीर को स्वस्थ रखता है। लायन ओट्स फैमिली, सुपर एक्शन फैमिली।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: मौसम विभाग ने कहा है कि इस साल भारत में गर्मी का असर बहुत ही ज्यादा होने वाला है।
3: रामराज व्हाइट शर्ट्स इस समर को कूल बना दे।
4: और वही कहाँ गए थे घूमने?
5: जीके मैक्स।
6: वैसे रोहन पढ़ाई में कैसा है?
5: जीके मैक्स बेस्ट पुट्टी,
7: जेके वॉल मैक्स
5: बेस्ट पेंट,
8: जेके मैक्स।
9: बाकी सब सवालों का पता नहीं, लेकिन मोस्ट ब्यूटीफुल वॉल्स के लिए सिर्फ
5: जेके मैक्स पेंट्स।
9: जेके मैक्स पेंट्स, खुशियों के रंग।
10: हनी, इस घर में कुछ है जो टूटता नहीं।
11: ये पिलर कभी नहीं टूटेगा। रुंगटा स्टील TMT से बना।
12: रुंगटा नहीं तो घर स्ट्रॉन्ग नहीं। रुंगटा स्टील TMT बार एकदम सॉलिड।
13: टेबल को ऊपर से जब भी खाते हैं दबा के खाते हैं भाई साहब, सब पचा देते।
14: पर दिक्कत तो होने आती है जो टेबल के नीचे से खा।
15: मुल्तानी पश्मीना, अपने हक का खाओ, सब कुछ पचाओ।
16: आपके पास दो ऑप्शंस हैं, या तो सुपरमैन बनकर फर्नीचर को भीगने से बचा लो, या E3 HDMR बोर्ड लगाकर फर्नीचर को लाइफटाइम के लिए वाटर और टर्माइट प्रूफ बना लो। E3 प्रोडक्ट्स, ये रिश्ता लंबा चलेगा।
17: विक्रम चाहे जितना भी फड़फड़ा ले ढूंढ नहीं पाएगा।
18: प्रिया, कैसा लगा मेरा स्टंट?
19: विक्रम, एक हिंट तो देते।
2: विक्रम!
19: हिंट।
18: बड़े आराम से।
13: डायरेक्टर, द टेस्ट ऑफ सक्सेस।

0: feels like summer. Monte Carlo, it's the way you make me feel.
1: ऊंचाई पर बने रहने के लिए जरूरी है इरादों का प्योर होना। गैलेंट एडवांस बनाते हैं ऐसा स्टील जो अंदर से है ज्यादा प्योर, ज्यादा मजबूत। गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो।
2: 11 मई आज तक पर पेपर लीक कनेक्शन का पर्दाफाश।
3: नीट की परीक्षा से पहले एक गेस पेपर धड़ल्ले से मोबाइल पर बंटता है। 135 सवाल उसी गेस पेपर से हूबहू मिलते हैं।
4: 15 दिन पहले से पूरे देश में बंट रहा था, NTO को पता नहीं।
2: 12 मई आज तक के खुलासे पर मुहर।
5: जिम्मेदारी लेते हैं कि जो हुआ गलत हुआ।
3: आज तक की खबर के बाद आज सरकार की तरफ से एक्शन हुआ, NTA जागी, पेपर रद्द हुआ। हमने आज तक पर लगातार दस्तक दी है, खबरदार किया है, हर दल की सरकार को जगाया है, बताया है कि पेपर लीक रोक लीजिए वरना बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ होता रहेगा।
2: जहां खबर वहां खबरदार।
6: In association with E3 HDMR, ये रिश्ता लंबा चलेगा।
7: SIR की प्रक्रिया से भयभीत होकर बांग्लादेशी जो पिछले कई सालों में भारत वर्ष में आए हैं, खास तौर पर दलालों को पैसा देकर, पिछले 2-3 दिनों से यही प्रक्रिया दोबारा देखने को मिल रही है। एक पैनिक क्रिएट हो गया है, इसलिए अब वो वापस बांग्लादेश जाने के लिए इसी हाकिमपुर बॉर्डर पर एकत्रित हो रहे हैं।
8: ये माना जा रहा है कि यह होल्डिंग सेंटर बनाने की खबर फैलने के बाद लोगों में, खासकर इन घुसपैठियों में, एक आतंक बैठ गया है कि अगर उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया तो फिर आगे क्या होगा। तो आने वाले दिनों में ये तादाद और कितना बढ़ता है कि उन्हें उस पार यानी बांग्लादेश भेजा जाए। वीडियो जर्नलिस्ट लेसन लोध के साथ तपस सिंह गुप्ता, आज तक, हाकिमपुर।
6: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा। इन एसोसिएशन विद
9: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
10: हेक्सा ऑर्गेनिक रेडिएंट स्किन एंड नरिश्ड हेयर, प्योर आयुर्वेदिक ब्यूटी।

पर अंडे फेंके, टीएमसी सांसद बोले मुझे मारने की साजिश थी। अखिलेश यादव ने भी उठाए सवाल। कर्नाटक के अगले मुख्यमंत्री होंगे डीके शिवकुमार। बेंगलुरु में कांग्रेस विधायक दल की बैठक में चुने गए नेता 3 जून को 8 से 10 मंत्रियों के साथ ले सकते हैं शपथ।

तो अपनानी पड़ती है हिंसा की नीति। दिल्ली मुंबई को दहलाने की साजिश नाकाम, हथियारों के साथ राजधानी में 9 आतंकी गिरफ्तार। आज और कल रात हमले का प्लान था, दाऊद आईएसआई गठजोड़ का खुलासा। राजस्थान के कई शहरों में बिगड़ा मौसम, धूल भरी आंधी से दिन में ही छाया अंधेरा। दिल्ली एनसीआर में बारिश से तापमान में गिरावट।

0: नमस्कार, विशेष में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं राजीव ढौंडियाल। विशेष में आज हम बात करेंगे आजब गजब मौसम की, जो कि अपने अलग अलग अंदाज से कहीं पर डरा रहा है तो कहीं पर राहत बरसा रहा है। देश के पश्चिमी हिस्से में रेतीले बवंडर ने खौफ पैदा किया तो दिल्ली एनसीआर में मौसम बदला हुआ है। बारिश की बूंदों ने चिलचिलाती गर्मी से दिल्ली एनसीआर वासियों को राहत दी है। देश के पूर्वी हिस्से की बात करें तो ओडिशा में आंधी ने कोहराम मचाया तो उत्तर में बर्फबारी ने मई में हर किसी को चौंकाया, हैरान किया। आपके सामने देश के अलग अलग हिस्सों के 8 इलाकों की तस्वीरें जो आज मौसम के बदले बदले मिजाज को बयां कर रहा है। सबसे चौंकाने वाला मंजर राजस्थान से आया, जहां पर चुरू से श्रीगंगानगर और बीकानेर तक रेतीले तूफान ने दहशत पैदा कर दी। दिल्ली एनसीआर और केरलम में बारिश ने तपिश को कम किया। अब हम कुछ और तस्वीरें भी आपको दिखाते हैं। वही हेमकुंड साहिब, दो तस्वीरें हेमकुंड साहिब और रोहतांग पास से आई हैं। यहां बर्फबारी ने मौसम को बेहद ठंडा कर दिया तो मैदान से लेकर पहाड़ तक मौसम बिल्कुल बदला बदला और सबको हैरत में डालता हुआ दिखाई दिया। बदला हुआ है मौसम और सबसे पहले बात करते हैं राजस्थान की, जहां पर आज मौसम की खौफनाक तस्वीर देखने को मिली। रेतीले तूफान ने राजस्थान के 5 जिलों को अपनी चपेट में ले लिया। आसमान में चारों तरफ धूल का गुबार नजर आया। पूरे शहर में दिन के समय अंधेरा छा गया।
1: एक आम रिहायशी इलाका और सामने से आया रेत का बवंडर मानो पूरे शहर को अपने आगोश में ले लेना चाहता हो। यह हैरान करने वाली तस्वीरें राजस्थान के चुरू की है। रेत का गुब्बार धीरे धीरे शहर की ओर बढ़ता है। आसमान में सिर्फ धूल ही धूल नजर आती है। फिर शहर की गलियां, सड़क, घर, छत, हर कहीं ये धूल कब्जा करने लगती है। दिन में अंधेरा छाने लगता है। तूफान के कारण दिन में लोगों को वाहनों की हेडलाइट जलानी पड़ गई।
2: इस सीजन का जबरदस्त आंधी तूफान भयंकर आया, उसमें मेरे हिसाब से लाखों करोड़ों का सरकार का नुकसान हुआ है और उसके बाद में जबरदस्त बारिश और पेड़ों का गिरना, बिजली का नुकसान होना बहुत ही जबरदस्त, मतलब इस मौसम में जो आंधी आई है बहुत ही जबरदस्त आई है।
3: और इस तूफान में आज आपको देखने को मिला कि मतलब कि तूफान की में आंधी काफी भयंकर थी, धूल भरी आंधी थी, जिसके कारण पेड़ है और भी बहुत सारे पक्षियां वगैरह काफी इनका नुकसान हुआ।
1: इसके कई वीडियो सामने आए हैं। इनमें लोग भागकर घरों में जाते दिखे और घरों को बंद कर दिया। इस दौरान 60 से 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आंधी चली, जो करीब 30 मिनट तक इलाके में कोहराम मचाती रही। हालांकि तूफान की ऊंचाई का आधिकारिक आंकड़ा सामने नहीं आया है। इस रेतीले तूफान ने राजस्थान के 5 जिलों को अपनी चपेट में ले लिया। श्रीगंगानगर, बीकानेर, चुरू, हनुमानगढ़ और सीकर के आसमान में रेत का गुब्बार देखने को मिले। करीब 200 वर्ग किलोमीटर का इलाका इससे प्रभावित नजर आया।
4: रेत का बाउंडर बहुत भारी और बहुत खतरनाक था। मैंने अपनी जिंदगी 15-20 सालों में कभी ऐसा माहौल नहीं देखा था और दिन में एकदम आंधी आई, ऐसे तो मानो शाम हो गई। ये कहीं न कहीं अपने प्रकृति से जो पर्यावरण पौधे अपने काट रहे हैं और ये खिलवाड़ कर रहे हैं, इसके लिए अपने सजग रहने की जरूरत है।
5: और एकदम से बिल्कुल काला काला हो गया सिस्टम, जैसे रात हो गई होती है एकदम से। इतनी तेज अंधेरी थी, उसका जो किलोमीटर के हिसाब से बताया गया था वो 80-90 किलोमीटर के हिसाब से उसका विंड का बताया गया था और एकदम से फुल अंधेरी थी। और जहाँ पर जो दरख्त है छोटे छोटे वो इन्हें लगे, कुछ दरख्त है वो टूट भी गए थे।
1: पाकिस्तान से उठे इस तूफान ने रेगिस्तान का मौसम पूरी तरह से बदल दिया। आज तक ब्यूरो।
0: राजस्थान के कई शहरों में आज शाम रेतीले तूफान ने हाहाकार मचा दिया। राजधानी जयपुर में भी आसमान रेत से मानो पीला ही पड़ गया हो, गुलाबी नगरी का रंग फीका पड़ गया। जयपुर से हाल बता रहे हैं आज तक संवाददाता शरद कुमार।
6: राजस्थान में अचानक मौसम ने करवट ली है और आधा राजस्थान धूल भरी आंधियों के चपेट में है। श्रीगंगानगर से शुरू हुई धूल की आंधी हनुमानगढ़, सीकर, झुंझुनू, जयपुर, डिडवाना, नागौर, कुचामन, करीब करीब आधे राजस्थान को अपने आगोश में ले लिया है। शहर गर्द के गुबार में समाये हुए हैं। ऐसी आंधियां हाल फिलहाल में राजस्थान के लोगों ने नहीं देखी थी, जहां पर आसमान से रेतीला तूफान उठ रहा है और पूरे शहर को अपने आगोश में लेता हुआ जा रहा है। मौसम विभाग ने चेतावनी दी थी, मगर इस तरह की चेतावनी नहीं दी थी कि इतना बड़ा तूफान आएगा। कहा जा रहा है पाकिस्तान की तरफ से रेतीली आंधियों का तूफान भारत में प्रवेश किया है, जो आधे राजस्थान को अपने चपेट में ले लिया है। सबसे पहले श्रीगंगानगर में ये आंधी घुसी है, जहां पर दो तीन दिनों से इस तरह का माहौल बना हुआ था। बुधवार को देश में सबसे ज्यादा 48 डिग्री तापमान श्रीगंगानगर का था। अचानक से 7 से 8 डिग्री तापमान में कमी आई है। गर्मी से राहत तो मिली है, मगर आंधी की वजह से जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो गया है। शहर में दुकानें बंद हैं, लोग दरवाजा बंद करके अपने घरों में हैं, रास्ते में निकलना मुश्किल हो गया है, गाड़ियों की लाइटें जलाकर जयपुर में भी लोग चल रहे हैं, इस तरह के हालात हैं। अचानक से दिन में अंधेरा हो गया है। मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि देर रात तक आज आंधी चल सकती है, कई इलाकों में ओले पड़ सकते हैं। अचानक से नौतपा में राजस्थान में आसमान से आग बरस रही थी और इसी बीच मौसम ने करवट ली है और धूल भरी आंधियों के अलावा तेज तूफान और बारिश का दौर जारी है। दौसा में तो ऐसा लग रहा है कि बाढ़ जैसे हालात हो गए हैं। तो समझिए मौसम किस तरह से अनएक्सपेक्टेड टर्न ले रही है, जहां पर अचानक से गर्मी का दौर होता है और फिर आंधी पानी का दौर शुरू हो जाता है। तेज आंधी की चलने की वजह से शहरों की स्थिति काफी खराब है, जहां पर कई शहरों में बिजली गुल हो गई है, पेड़ गिर गए। हालांकि जान माल के नुकसान की कोई खबर नहीं है, फिर भी राजस्थान में एक डरावना सा माहौल अचानक से पैदा हो गया।
0: अब राजस्थान का असर देश की राजधानी दिल्ली में भी देखने को मिला, एनसीआर में भी देखने को मिला। आज शाम रेड और ऑरेंज अलर्ट के बाद दिल्ली के कई हिस्सों में धूल भरी आंधी और तेज हवा चली। मौसम विभाग के मुताबिक तेज आंधी तूफान और बारिश का अनुमान था। दिल्ली के आर के पुरम, चाणक्यपुरी, फिरोज शाह रोड, एपीजे अब्दुल कलाम रोड, इंदिरा गांधी स्टेडियम की आप तस्वीरें से मैं देख रहे हैं। तेज हवाओं और घने बादलों के कारण कई इलाकों में तापमान में गिरावट दर्ज की गई है, जिससे लोगों को गर्मी से जरूर राहत मिली है। दिल्ली में आंधी तूफान और बारिश से मौसम बदल गया है, तापमान में गिरावट है और आज दूसरे दिन लगातार हल्की बारिश से लोगों को झुलसा देने वाली गर्मी से राहत मिली है। और इस पर हमारे संवाददाता अनमोल बाली दिल्ली एनसीआर के मौसम की जानकारी दे रहे हैं।
7: चिलचिलाती गर्मी के बीच उत्तर भारत और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में रहने वाले लोगों के लिए घने बादल सौगात बनकर आए। इस समय मैं दिल्ली के कनॉट प्लेस में खड़ा हूं और आपको मैं अपने पीछे तस्वीरों में दिखाना चाहूंगा कि कैसे बादलों ने इस समय दिल्ली के आसमान में घेरा डाल रखा है। और वहीं मौसम विभाग की माने तो उन्होंने दिल्ली के कई इलाकों के लिए ऑरेंज और जो येलो अलर्ट है वो इशू किया हुआ है और साथ ही तेज हवाएं भी चल रही हैं। अगर मौसम विभाग की मानी जाए तो उनके अनुमान मुताबिक 40 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं रही है, जिससे देखा जा रहा है कि गर्मी से तो लोगों को निजात मिली रही है, साथ ही साथ प्रदूषण पर भी इसका असर देखने को मिल रहा है। अभी देखा गया था कि गर्मी के कारण जो तापमान था वो 40 डिग्री पार चले गया था। रोज देखा जा रहा था जो राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में तापमान नोट किया जा रहा था वो 42-44 डिग्री के आसपास नोट किया जा रहा था। और वहीं मैं अगर अभी के तापमान की बात करूं तो अभी राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली का जो तापमान है वो 30 से 33 से 35 डिग्री तक अलग अलग जगह पर नोट किया जा रहा है, जिससे साफ तौर पर दिखता है कि बादलों का जो असर है वो गर्मी पर तो पड़ा और साथ ही आज छुट्टी का दिन था, शनिवार का दिन था, तो कहीं ना कहीं लोगों के लिए बढ़ती गर्मी से ये राहत बनकर आया। और मौसम विभाग के अनुमान के मुताबिक आने वाले एक दो दिन ऐसा ही मौसम बना रहेगा, जहां घने बादल राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली को घेर के रखेंगे, जहां तापमान में भी गिरावट दर्ज की जाएगी और प्रदूषण में भी गिरावट दर्ज की जाएगी। और वहीं प्रदूषण पर भी इसका असर पड़ता दिख रहा है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली मौसम विभाग का अगर मैं आपको नाउकास्ट इस समय का दिखाऊं, मौसम विभाग के मुताबिक उत्तर भारत के आपको कई जो शहर और जो राज्य हैं वो दिख रहे होंगे, चाहे मैं बात करूं हिमाचल की, जम्मू की, पंजाब की, उत्तराखंड की, राजस्थान की और पश्चिमी उत्तर प्रदेश और उत्तर प्रदेश के कई इलाके में आपको दिखाना चाहूंगा कि इस समय रेड में मार्क कर रखें, यानी कि उन इलाकों के लिए बारिश को देखते हुए रेड अलर्ट इशू किया गया है और कई इलाकों के लिए ऑरेंज और येलो अलर्ट इशू किया गया है। और पूरे उत्तर भारत में आप देख सकते हैं इस समय कि बादलों का साया है और जहां लोगों को बढ़ती गर्मी, चिलचिलाती गर्मी से राहत मिल रही और साथ ही बढ़ते प्रदूषण से भी।
0: तो मौसम पूरी तरह से बदल गया है और मौसम विभाग के पूर्व डायरेक्टर आनंद शर्मा इस समय हमारे साथ खास बातचीत के लिए जुड़े हैं। आनंद जी, आज हमने राजस्थान के कई शहरों में धूल भरी आंधी देखी है जो कि विकराल थी, अब ऐसा पहली बार देखा गया, इसकी वजह क्या है?
8: देखिए, आंधी आना जिसे हम डस्ट स्टॉर्म कहते हैं या अंधड़, वो अक्सर आते हैं प्री मानसून सीजन यानी कि हॉट वेदर सीजन में, मार्च अप्रैल मई में, और कभी कभी यदि पर्याप्त मात्रा में आपके कहते हैं नमी ना हो एटमॉस्फेयर में और इंस्टेबिलिटी ज्यादा हो, जैसा कि इस समय जो है पश्चिमी विक्षोभ जो है एक्टिव हो रखा है, तो उसके चलते जो होता है जो आपके क्यूमुलोनिम्बस बादल बनते हैं और उस तेज हवाएं चलती हैं उसके चलते, तो वो जो है आपकी डस्ट को उड़ा के दूर तक ले जाती है और आपको ऐसा लगता है 20-30 कई बार मीटर के एकदम बिल्कुल दीवार की तरह ये धूल उड़ती हुई आती है। और ये अक्सर होता है जैसलमेर, बीकानेर और इवन चूरू के आसपास का जो इलाका है, जहाँ एकदम बिल्कुल थोड़ा आगे जाएं तो एकदम डेजर्ट शुरू हो जाता है। तो मगर हाँ, हर साल ऐसा नहीं दिखता, बट कभी कभार ये देखने को मिलता है ज़रूर, और ये वहाँ का एक टिपिकल फीचर है राजस्थान का। और मैंने जैसा कि बताया कि जिन बादलों में से आपको हेल स्टॉर्म होता है या थंडर स्टॉर्म यानी बहुत बड़ी बड़ी बूंदें मिलती हैं और जबरदस्त बारिश एकदम हो जाती है, उन्हीं बादलों से जब कई बार नमी नहीं होती है तो ये जो अप ड्रॉप डाउन ड्रॉप होते हैं उसके अंदर वो पर्याप्त मात्रा में मतलब मॉइस्चर नहीं है, उस समय ये तेज हवा जो है डस्ट को उठा के एक जगह से दूसरी जगह पटकती है, तो ये इस तरह का डस्ट स्टॉर्म आता है।
0: आनंद जी, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। लेकिन इसी बीच में थोड़ी देर पहले मौसम विभाग ने धूल भरी आंधी और गरज चमक और बारिश की चेतावनी जारी भी की है। यूपी के नोएडा, गाजियाबाद, हापुड़, अलीगढ़, बागपत, बुलंदशहर, मथुरा के लिए मौसम विभाग ने मोबाइल पर ही इमरजेंसी अलर्ट भेजा है, जिसमें जानकारी दी है कि लगभग 90 किलोमीटर तक तेज रफ्तार से हवाएं चलेंगी। मौसम विभाग वक्त वक्त पर लोगों को जागरूक कर रहा है, अलर्ट कर रहा है और अब तो मोबाइल के जरिए संदेश भेजे जा रहे हैं। तो बीते दो दिनों से बदले हुए मौसम से उत्तर भारत के लोगों को प्रचंड गर्मी से बड़ी राहत मिली है। कई इलाकों में तेज हवा चली है, आंधी आई है, कई इलाकों में भारी बारिश हुई है, ओले पड़े हैं। अब मौसम विभाग की माने तो अभी एक दो दिन मौसम में बदलाव जारी रहेगा, कई इलाकों में बारिश की संभावना बनी है।
9: राजस्थान से लेकर उत्तराखंड, हिमाचल से लेकर कश्मीर, यूपी, बंगाल और छत्तीसगढ़ तक मौसम का ऐसा रौद्र रूप देखने को मिला कि जनजीवन पूरी तरह अस्त व्यस्त हो गया। सबसे पहले बात राजस्थान की, यहां जयपुर में तेज बारिश और ओलावृष्टि ने शहर की रफ्तार पर ब्रेक लगा दिया। धौलपुर में डेढ़ घंटे की मूसलाधार बारिश ने हालात बिगाड़ दिए, सड़कें, कॉलोनियां और गली मोहल्ले पानी में डूब गए। अब बात उत्तराखंड की, यहां देहरादून में तेज बारिश ने मौसम बदल दिया लेकिन शहर की रफ्तार थम गई। टिहरी गढ़वाल में बारिश और भारी ओलावृष्टि ने किसानों की कमर तोड़ दी। वहीं धनौल्टी में देर रात आए तूफान ने भारी तबाही मचाई, 20 से 30 देवदार के पेड़ गिर गए, इको पार्क की टिन शेड उड़ गई और बर्मा ब्रिज पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। बागेश्वर में लगातार बारिश के बाद नदियां उफान पर आ गईं, गोमती नदी पर बने बैजनाथ बैराज के गेट खोलने पड़े और प्रशासन ने सायरन बजाकर लोगों को अलर्ट किया। जम्मू कश्मीर की श्रीनगर गुलमर्ग रोड पर तेज आंधी से कई पेड़ उखड़ गए, सड़कें बंद करनी पड़ी और ट्रैफिक रोक दिया गया। बात उत्तर प्रदेश की करें तो आगरा में तेज आंधी और तूफान के साथ झमाझम बारिश हुई, पेड़ गिर गए, टिन शेड उड़ गए और कई इलाकों में जलभराव से ट्रैफिक थम गया। मौसम विभाग ने आने वाले दिनों में और आंधी बारिश की चेतावनी दी है। आज तक ब्यूरो।
0: मैदानी इलाकों में कई शहरों में फिलहाल तो बारिश से मौसम थोड़ा सा राहत भरा हुआ है, लेकिन भारी गर्मी से निजात पाने के लिए लोग पहाड़ों की तरफ रुक कर रहे हैं। मनाली और रोहतांग में पर्यटकों की भारी भीड़ है और लोगों को वहां घंटों जाम में ही समय बिताना पड़ रहा है। हमारे संवाददाता मंजिंदर अरोड़ा की एक रिपोर्ट आप देखिए।
10: मैदानी इलाकों में गर्मी का पारा चढ़ने के बाद भारी संख्या में पर्यटकों ने कुल्लू मनाली का रुख करना शुरू कर दिया है। लॉन्ग वीकेंड के चलते पिछले दो दिनों में भारी तादाद में जो पर्यटक हैं वो मनाली पहुंचे हैं। मैं इस समय 13,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित रोहतांग दर्रे पर हूं। आप मेरे पीछे तस्वीरें देख सकते हैं, आज सुबह से ही भारी संख्या में जो पर्यटक थे उन्होंने रोहतांग दर्रे का जो रुख करना शुरू किया था, लेकिन करीब पिछले 2 घंटों से यहाँ जो वाहन लंबे ट्रैफिक जाम में लोग फंसे हुए हैं और करीब 5 से 6 किलोमीटर जो अब लंबा ट्रैफिक जाम लग चुका है। हालांकि भी कहीं ना कहीं इंतजाम किए थे, सुरक्षा कर्मी भी जगह जगह तैनात किए गए हैं, पुलिस कर्मी तैनात किए गए, लेकिन वो कहीं ना कहीं कम दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से जो पर्यटकों की भीड़ जो भारी संख्या में कुल्लू मनाली पहुंची है, तो इस तरह से जो लोग अब खासे जो परेशान हो रहे हैं, क्योंकि ज्यादातर उन्हें अब ट्रैफिक में ही ज्यादा समय जो अब बिताना पड़ रहा है, हालांकि डेस्टिनेशन के लिए पहुंचने तक के लिए उन्हें खासा इंतजार करना पड़ रहा है। हमारे पीछे कुछ पर्यटक हैं जो काफी देर से ट्रैफिक निकलने का इंतजार कर रहे हैं। आप कहाँ से आए हैं, क्या नाम है आपका?
11: मेरा नाम इंद्रजीत कुमार, मैं बिहार का रहने वाला हूँ। मेरे यहाँ 45 डिग्री टेम्परेचर है, इसलिए यहाँ घूमने आया हूँ। क्या बोले तो 4 से 5 घंटा हो गया है सब यहाँ आने के लिए।
12: सोचे थे
11: कि मतलब थोड़ा घूमेंगे रोहतांग में, रोहतांग से 5-6 किलोमीटर पहले पूरा ट्रैफिक लगा हुआ है।
10: तो आप कब चले थे मनाली से, कब चले थे आप लोग? तो
13: सुबह चले थे 7 बजे,
14: 6:45
13: चले थे, तो वहाँ से आए यहाँ आए, फिर सोचे घूमेंगे अच्छा से, लेकिन घूम नहीं पाए, ट्रैफिक में फंसे हुए हैं सुबह से ही। सोचे घर पे थे कि अच्छा से घूमेंगे, लेकिन हो नहीं पाया।
10: तो बिल्कुल देखिए, कहीं ना कहीं जाहिर तौर पर जो लोग हैं वो यहाँ घूमने के लिए आते हैं, तो ऐसे लंबे ट्रैफिक जाम में अगर वो फंसेंगे तो किस तरह वो घूम पाएंगे, और क्योंकि लिमिटेड बजट रहता है कईयों का, और कई जगह जो है कुछ समय की दिक्कत रहती है, तो ऐसे में जो लोग हैं वो कहीं ना कहीं परेशानी का सामना जरूर कर रहे हैं।
0: उधर बिगड़े मौसम के हैरान कर देने वाले एक तस्वीर कुल्लू से आए हैं, जहां पर एडवेंचर गेम पर अब सवाल खड़े हो रहे हैं। डोभी क्षेत्र में खराब मौसम और तेज हवाओं के चलते एक पैराग्लाइडर को चंडीगढ़ मनाली राष्ट्रीय राजमार्ग पर इमरजेंसी लैंडिंग करनी पड़ी। राहत की बात यह रही कि पायलट की सूझबूझ और सतर्कता के चलते बड़ा हादसा टल गया और पैराग्लाइडर में सवार सभी लोग सुरक्षित बच गए। ये बताया जा रहा है कि डोभी पैराग्लाइडिंग साइट से उड़ान भरने के दौरान मौसम सामान्य था, लेकिन कुछ ही देर बाद मौसम अचानक बदल गया, तेज हवा चलने लगी, मौसम बेजाज बदला, हवा का रुख बदला, दबाव बढ़ने लगा, इसके चलते पैराग्लाइडर ने निर्धारित लैंडिंग स्थल तक वो पहुंच नहीं सका, तो अपनी दिशा बदली और उसके लिए यूं तो मुश्किल था दिशा नियंत्रित करना, लेकिन किसी तरह से उसने सेफ लैंडिंग कराई। पायलट ने तुरंत सुरक्षित स्थान का चयन किया और वहां पर लैंड करवा दिया। और विशेष में आज के लिए बस इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।
15: Presented by Patanjali Dant Kanti Toothpaste Complete Oral Health का सच in association with
16: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
17: ये भोपाल के अर्बन एरियाज के फोटोग्राफ्स हैं जिनमें टाइगर का मूवमेंट है।
18: टाइगर टाइगर
19: ओहो वो पीछे पीछे पीछे पीछे पीछे बिल्कुल साइड में बैठा है।
20: There's just something about classic soul music that gets you moving. And TuneIn's exclusive Soul Groove station has all the right moves. Hit play on the grooviest 70s selection. Get your masters in melody with Motown Classics. Or just set the right tone with smooth, soulful vibes from Marvin Gaye and more. It's all right here on TuneIn, ready to set the perfect 70s tone. Search Soul Groove or tell your device to play Soul Groove on TuneIn now to listen.
15: Presented by Patanjali Dant Kanti Toothpaste Complete Oral Health ka Sach. In association with
16: Bharat ki apni electric sawari, Sokudo.
15: Hexa Organic, Radiant Skin and Nourished Hair, Pure Ayurvedic Beauty. Durable pipes, fittings and tanks, a complete range of sanitary solutions.

0: presented by Patanjali Dant Kanti Toothpaste, complete oral health ka sach.
1: In association with
2: Bharat ki apni electric sawari, Sokudo.
3: The music you love is all right here on TuneIn, bringing you good vibes and the hottest hits. But are you ready to amp things up even more? Just upgrade to TuneIn Premium for all of our exclusive music channels, completely commercial free. So you get more of today's hits. More country roads. And everything else. Hear it all here, commercial free, on TuneIn.
4: TuneIn's How To, a brief look at all the special functions and things you might not know we have.
5: Get into the game with your favorite teams and never miss a game. Follow your teams on TuneIn and get live updates. Just select teams you want to follow on TuneIn and you'll get notifications like when the games start. Enjoy all the recommended stations, sports talk, and podcasts. Just favorite your teams and start listening.
3: Call something classic, you've got to mean it. And that's why when we say TuneIn's exclusive classic hip-hop station is the real deal, we mean it. From golden age gems from OGs like Tupac and Biggie to chart-topping bangers from the biggest artists of all time like Jay-Z and DMX, there's a little something for every hip-hop fan on this station. Ready to find your flow?
6: It's your boy,
3: just
6: Jay-Z.
3: Search classic hip-hop or tell your device to play classic hip-hop on TuneIn to listen.
7: जब अपना कोई मूव किसी को मूव करता है ना यार, फील आ जाती
8: है। भाई, भाई तू अपना है, तेरा सफर मुझे भी करना है। तूने प्रूव कर दिखाया यार, एनीबडी कैन ड्रीम।
7: मुझे लगा मैं नहीं, पूरा का पूरा मूवमेंट चल रहा है।
9: ब्रीदेबल फैब्रिक्स, ऑसम कंफर्ट, एफर्टलेस स्टाइल, एडी फ्रॉम द हाउस ऑफ अरविंद।
10: मौसम विभाग ने कहा है कि इस साल भारत में गर्मी का असर बहुत ही ज्यादा होने वाला है।
11: रामराज व्हाइट शर्ट्स इस समर को कूल बना दे।
12: 11 मई आज तक पर पेपर लीक कनेक्शन का पर्दाफाश।
13: नीट की परीक्षा से पहले एक गेस्ट पेपर धड़ल्ले से मोबाइल पर बंटता है। 135 सवाल उसी गेस्ट पेपर से हूबहू मिलते हैं।
14: 15 दिन पहले से पूरे देश में बट रहा था, एनटीए को पता नहीं।
12: 12 मई आज तक के खुलासे पर मुहर।
15: जिम्मेदारी लेते हैं कि जो हुआ गलत हुआ।
13: आज तक की खबर के बाद आज सरकार की तरफ से एक्शन हुआ, एनटीए जागी, पेपर रद्द हुआ। हमने आज तक पर लगातार दस्तक दी है, खबरदार किया है, हर दल की सरकार को जगाया है, बताया है कि पेपर लीक रोक लीजिए वरना बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ होता रहेगा।
12: जहाँ खबर वहाँ खबरदार।
1: इन एसोसिएशन विद
16: E3 HDMR, ये रिश्ता लंबा चलेगा।
17: क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।

0: तो अभी आपने देखा विशेष, अब आगे देखिए अद्भुत अविश्वसनीय अकल्पनीय श्वेता सिंह के साथ।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
2: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो
1: हेक्सा ऑर्गेनिक रेडिएंट स्किन एंड नरिश्ड हेयर प्योर आयुर्वेदिक ब्यूटी ड्यूरेबल पाइप्स फिटिंग्स एंड टैंक्स अ कंप्लीट रेंज ऑफ सैनिटरी सॉल्यूशंस।

बंगाल के सोनारपुर में अभिषेक बैनर्जी पर हमला, गुस्साए लोगों ने कपड़े फाड़े, पत्थर अंडे फेंके। टीएमसी सांसद बोले, मुझे मारने की थी साजिश। अखिलेश यादव ने भी उठाए सवाल। कर्नाटक के अगले मुख्यमंत्री होंगे डीके शिवकुमार। बेंगलुरु में कांग्रेस विधायक दल की बैठक में चुने गए नेता 3 जून को 8 से 10 मंत्रियों के साथ ले सकते हैं शपथ। लखनऊ में कार्यक्रम में बोले सीएम योगी, अहिंसा ही इंसान का परम धर्म, लेकिन जब कोई देश समाज के लिए खतरा हो तो अपनानी पड़ती है हिंसा की नीति। दिल्ली मुंबई को तहलाने की साजिश नाकाम। हथियार के साथ राजधानी में 9 आतंकी गिरफ्तार। कल और आज रात हमले का था प्लान। दाऊद आईएसआई गठजोड़ का सनसनीखेज खुलासा। राजस्थान के कई शहरों में बिगड़ा मौसम, धूल भरी आंधी से दिन में ही छाया अंधेरा। दिल्ली एनसीआर में बारिश से तापमान में गिरावट।

0: एक जंगल जहां कैमरा जैसे जैसे आगे बढ़ता है सभ्यताएं और सदियां पीछे छूटती जाती हैं।
1: ये जो पूरा वन क्षेत्र है ये किसी समय में गोंडकालीन राजाओं का गढ़ रहा है, गिन्नौरगढ़ फोर्ट। इस फोर्ट में हमें कई अवशेष मिलते हैं जो परमारकालीन के भी हैं।
0: ऊंचे ऊंचे पेड़ों और पहाड़ों के घने अंधेरों में से निकलकर सामने आता है वो हजारों हजार साल पुराना इतिहास जिसमें अद्भुत बाघ है।
2: कोई भी ह्यूमन डेड टाइगर अटैक से नहीं हुई।
0: अविश्वसनीय मंदिर है।
3: पानी इसमें से पहाड़ में से आता, कभी खत्म नहीं होता।
0: अकल्पनीय कहानियों से घिरा किला है और हैं वो दावे जो अद्भुत, अविश्वसनीय, अकल्पनीय है।
2: गुप्ता जी से कई बार हमारा पैदल भी सामना हुआ, हम खड़े रहे, हम चुपचाप वो अपना रास्ते निकल गए।
4: जंगल में जब हम घूमते हैं तो हजारों आंखें हमें देखती हैं लेकिन हम किसी को नहीं देख पाते।
0: रहस्य और रोमांच के एक अद्भुत, अविश्वसनीय, अकल्पनीय सफर पर आज हम आपको लेकर चलने वाले हैं। नमस्कार, मैं हूं श्वेता सिंह और आप देख रहे हैं आज तक। गिन्नौरगढ़ का ये किला जहां से एक लंबा इतिहास जुड़ा हुआ है, रातापानी का ये टाइगर रिजर्व जो देश का सबसे नए टाइगर रिजर्व्स में से एक है। लेकिन यहां की कहानियां इतनी प्राचीन है, यहां के रहस्य इतने गहरे हैं कि पल पल आपको रोमांच से भर देगा।

दुनिया में जब अधिकांश सभ्यताएं या तो थी ही नहीं, अगर थी तो उनका इतिहास अस्तित्व की लड़ाई के लिए जानवरों के साथ टकराव का रहा। लेकिन तब मध्य प्रदेश के बीचों बीच 10,000 साल पहले से बाघों और इंसानों के बीच रिश्ता कुछ और था। तब एक जंगल में इंसान और बाघ सह अस्तित्व की

हमारे इस सफर में बेहद अद्भुत व्यवहार करने वाले बाघ हैं। बाघ के क्षेत्र के बीचों बीच अविश्वसनीय आस्था के प्रमाण देता महादेव मंदिर है। और आज बाघ का घर बन चुका रहस्यमयी किला है, जो कभी बाघ के कलेजे से अकल्पनीय हिम्मत वाली रानी का महल था,

0: कहने को रातापानी टाइगर रिजर्व शहर से लगा हुआ एक जंगल क्षेत्र है, लेकिन हमने सुन रखा था कि यहाँ के चप्पे चप्पे में प्राचीन इतिहास उकेरा हुआ है। गुफाओं की दीवारों पर, पहाड़ों की चोटियों पर, घने पेड़ों के बीच, कुछ ऐसे जैसे शहर में विकास की दौड़ से बेपरवाह हजारों साल पुरानी एक पूरी की पूरी सभ्यता ही यहाँ अपने मूल रूप में रह गई, जिसे आज भी देखा और महसूस किया जा सकता है।
1: अगर आप एक रिजर्व एरिया में जाते हैं तो आप उस जंगल को समझने, उस जंगल को जीने, उस पूरे माहौल को समझने के लिए आप जाते हैं। अभी देखिए, अभी सनराइज हुआ नहीं है, सूर्योदय हुआ नहीं है, और इस समय हम बस निकलने की अपनी तैयारी कर रहे हैं। गर्मी इतनी ज़्यादा हो जाती है कि दिन के समय साइटिंग बहुत ज़्यादा मुश्किल होगी। ये वो समय होता है जब मुमकिन है पानी पीने के लिए, या फिर जंगल में आराम से विचर रहे हों ये बाघ, और इसीलिए अपने चांसेस को ज़्यादा सुधारने के लिए हम इस समय का इस्तेमाल कर रहे हैं।
0: भारत को दुनिया का टाइगर कैपिटल कहा जाता है। दुनिया के लगभग 75% बाघ भारत में पाए जाते हैं और मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट के नाम से जाना जाता है। रातापानी उसके टाइगर मैप का नया हिस्सा बन चुका है।
2: रातापानी टाइगर रिजर्व में आप सभी का स्वागत है। यहाँ से कोर एरिया चालू हो जाता है। ये 12 किलोमीटर का अपना कोर एरिया रहेगा, जिसमें केरी महादेव तक अपने को टाइगर, तेंदुआ, भालू, ये तीन बड़े एनिमल्स दिखने की भी ज्यादा संभावना है।
0: ये भारत का नया टाइगर रिजर्व है, जिसे 2024 में भारत का 57वां टाइगर रिजर्व घोषित किया गया था। बाद में 2025 में मध्य प्रदेश के माधव टाइगर रिजर्व के जुड़ने के बाद भारत में कुल 58 टाइगर रिजर्व हो गए। रातापानी का जंगल विंध्य और सतपुड़ा के बीच फैला हुआ ड्राई और मॉइस्ट डेसिड्यूअस फॉरेस्ट, यहाँ सागौन यानी टीक के घने जंगल, बांस के झुरमुट, पहाड़ियाँ, छोटे जल स्रोत और प्राकृतिक कॉरिडोर बाघों के लिए बेहतरीन आवास बनाते हैं। और जब आप ये सोचते हैं कि बस पहाड़ी के उस पार घनी आबादी वाला इंसानी शहर है, तो रातापानी का रहस्य और बढ़ जाता है। और इसी घने जंगल में हम निकल पड़े थे एक ऐसे शिकारी की तलाश में जो दिखता कम है, महसूस ज्यादा होता है।
1: ये पगमार्क्स है
3: सर, मेल फीमेल दोनों ही लग रहा। लंबा होता है,
1: लंबा होता है।
0: हमें बताया जा रहा था कि एक बाघ और बाघिन के पैरों के निशान हैं, जो कुछ दूरी तक धूल भरे रास्ते में नजर आ रहे थे। हम उस ओर ही चल निकले।
4: ये फर्स्ट सुमसर में अभी ज्यादातर टाइगर, भालू, इसके ज्यादा साइटिंग चल रही है। पानी पी के गया हुआ यहाँ से भी।
0: आगे बंदरों का झुंड था, मोरों का शोर था। जंगल बता रहा था शिकारी शिकार पर है, लेकिन सवाल है कि वो है कहाँ। हमें पता चला कि 2 दिन पहले एक किले के आसपास बाघ को कई लोगों ने देखा था। हम उस किले की ओर बढ़ चले।
1: ये गिन्नौरगढ़ किला, इसका पूरा इतिहास यहाँ पर लिखा हुआ है। 18वीं शताब्दी में प्रमुखता में आया था, और जो गोंड राजा निज़ाम शाह का शासन था, उनकी पत्नी, जो बहुत अलग अलग जगह आप मध्य प्रदेश में अगर देखेंगे तो आपको ध्यान आएगा, रानी कमलापति, उनका महल भोपाल में बड़ा तालाब की पाल पर आज भी है। और ये किला जो गोंडकालीन स्थापत्य कला का नमूना है।

0: करीब 700 फीट की ऊंचाई पर बना यह विशाल किला गोंड राजाओं के वैभवशाली साम्राज्य का प्रतीक हुआ करता था। ये क्या है?
1: क्लॉकवियर की विस्तार है। उसने लगभग तेंदू शायद खाए थे जो हाँ। उसने विस्टा में अपने पॉटी में अच्छा। बाहर निकाले।
2: तो यहाँ पर स्लॉटवेयर कुछ देर पहले आप कह रहे हैं
1: जी
2: हो सकता है।
0: यानी इस वक्त यहाँ जंगली जानवरों का संपूर्ण वर्चस्व है, पर 15वीं से 18वीं शताब्दी तक करीब 300 साल के अंतराल में गिन्नौर गढ़ के इस किले से गोंड राजाओं ने शासन किया। इस किले में दो वीर रानियों ने भी राज किया, 1524 से 1564 तक रानी दुर्गावती ने और फिर 18वीं शताब्दी में रानी कमलापति ने। रानी कमलापति गोंड वंश की अंतिम हिंदू महारानी थी। जंगल में फुट पेट्रोल वन विभाग के कर्मियों की ड्यूटी का हिस्सा होता है। इसके जरिए वो जंगल और टाइगर्स की सुध लेते रहते हैं। इसके लिए पग मार्क से लेकर उनके मलमूत्र तक हर चीज का निरीक्षण करते हैं। इस किले में उन्हें टाइगर के निशान साफ नजर आ रहे थे।
2: ये टाइगर का है?
1: हाँ।
2: पर पुराना?
1: हाँ, पुराना।
2: पर यहाँ तक रहे हैं टाइगर्स?
1: हाँ।
2: सबसे ज्यादा जो तरीका अपनाया जाता है जानने का वो तो मार्क्स हैं पैरों के हाँ। या फिर ये जो
1: ट्रैप कैमरा भी एक उसमें
2: ट्रैप कैमरा
1: ट्रैप कैमरा उसमें ट्रैप कैमरा में क्या होता है मैडम, जो टाइगर्स होते हैं उनकी जो स्टेप्स होती हैं
2: हाँ?
1: वो प्रत्येक टाइगर की अलग अलग होती हैं। जैसे
2: अच्छा।
1: हमारे फिंगरप्रिंट्स अलग अलग होते हैं
2: हाँ?
1: ऐसे प्रत्येक टाइगर की स्टेप्स भी अलग अलग होती हैं
2: अच्छा।
1: जिससे उनकी अलग अलग अलग अलग फोटो से गिनती की जा सकती
2: अच्छा।
1: है।
2: अच्छा, पर ऐसे कहीं भी जो सामान्य जो पेट्रोलिंग टीम है उसके लिए ये सब बहुत बड़े साइन होते हैं।
1: एक साइन होते हैं कि मतलब हमारे क्षेत्र में
2: हाँ?
1: टाइगर की मौजूदगी है,
2: है?
1: और उसकी दिन रात जो है गश्ती करके मूवमेंट पर नजर रखी जाए कि हमारा टाइगर एक क्षेत्र से किस क्षेत्र में जा रहा है।
2: अच्छा
1: जी,
2: तो टाइगर वैसे भी इतनी शांति से रहता है कि अगर अभी देख भी रहा हो तो पता नहीं
1: नहीं पता चलेगा,
2: वो छुप कर देख रहा हो।
1: जंगल की एक खास बात रहती है कि हम हजार बार जाएंगे
2: हाँ।
1: तो हम किसी को नहीं देख पाएंगे लेकिन हजारों आके हमें देखती है।
0: मन में भय और रोमांच दोनों था ये सोचकर कि जिस रास्ते पर टाइगर चला था अभी हम उसी पर चल रहे थे।
3: यहाँ पे नीचे एक खदान है हाँ। जिसे पहले के जमाने में किसी गुप्ता जी नामक बिल्डर थे उनकी थी
2: हाँ।
3: वो टाइगर अक्सर उसी खदान के आसपास देखा गया टूरिस्टों को, तो उसका नाम पड़ गया गुप्ता खदान और गुप्ता खदान में रहने वाले टाइगर का नाम गुप्ता जी तो इसलिए उसे गुप्ता टाइगर कहा जाता है।
2: भले ही ऑफिशियली अलग अलग पहचान हो सबकी
3: जी, जी।
2: लेकिन लोकल्स अपने हिसाब से प्यार से नाम को
3: जी जी उसकी एक अलग पहचान है। मैं उसकी जो है आप लेफ्ट हैंड की मैं आपको पिक्स दिखाऊंगा तो उसमें स्ट्राइप नहीं है। टाइगर्स की जो पहचान होती है कि दोनों लेफ्ट और राइट की स्ट्राइप से होती है, लेकिन गुप्ता जी जो हम कहेंगे तो वो स्ट्राइपलेस टाइगर हैं
2: अच्छा।
3: जो उनको एक अलग टाइगर बनाती है। और इसके अलावा वो अल्फा मेल हैं
2: हाँ।
3: अल्फा मेल ये कहेंगे कि काफी सारी मेल यहाँ पे हैं टाइगर्स, उनमें वो डोमिनेंट है
2: हाँ।
3: और काफी ज्यादा वेट और उसने काफी लंबी टेरिटरी, क्योंकि वो यहाँ से लेके वो कम से कम टाइगर रिजर्व की 6 या 7 बीटे कवर करता है
2: अच्छा।
3: जी औसतन उसका नॉर्मली एक टाइगर का एरिया 17-18 स्क्वायर किलोमीटर का हम मानते हैं, पर
2: हाँ।
3: गुप्ता जी जो जिनका हम नाम ले रहे हैं
2: हाँ।
3: तो वो 25 से 30 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया तो आसानी से उन करते। बहुत अच्छी पॉसिबिलिटी है कि हम आगे बढ़े और गुप्ता जी हमारे दीदार के लिए।
0: भोपाल के उदय के साथ गिन्नौरगढ़ रियासत का अस्तित्व खत्म होता चला गया। बाद में गोंड साम्राज्य का एक हिस्सा मध्य प्रदेश में रह गया और अधिकांश हिस्सा अब छत्तीसगढ़ में शामिल हो चुका है। लेकिन रियासत के जाने के बाद भी बाग बाकी रह गए जो आज भी इस किले और जंगल में अपनी रियासत चला रहे हैं।
2: रातापानी में रहस्य और रोमांच की कहानी का एक सिरा जमीन के नीचे से भी जुड़ता है। ये एक सुरंग है और ये सुरंग जो है ये जोड़ती है इस बावड़ी को जिस किले में हम गिन्नौरगढ़ की तस्वीरें हमने आपको दिखाई। तो यहाँ पर लोक कथाओं के अनुसार जो रानी कमलापति थी वो इसका इस्तेमाल किया करती थी आने के लिए। और अब अगर यहाँ पर आप इस बावड़ी को देखेंगे तो ये गर्मी के इस महीने में भी आपको पूरी तरीके से लबालब भरे हुए, ये और इसके साथ एक छोटा सा हिस्सा जलाशय का जो आपको नज़र आ जाता है। और केवल इतना नहीं है, वहाँ पर थोड़े थोड़े कुछ रुकावट है उसमें, लेकिन अगर हम पूरा नीचे की तरफ देखते हैं इसको, तो इसके नीचे दो मंजिल और हैं, दो मंजिल और इसके नीचे, और देखिए कितना सुंदर निर्माण यहाँ पर जंगल के बीचों बीच, ये चोर बावड़ी।
0: किले के ऐतिहासिक महत्व को बताते हुए अब भी कई अवशेष वहां मौजूद हैं। उनमें से एक है चोर बावड़ी। बताया जाता है कि चोर बावड़ी जैसे करीब 25 जल स्रोत किले में पानी की व्यवस्था के लिए पहाड़ों पर बनाए गए। अद्भुत है वो इंजीनियरिंग जो सैकड़ों साल पहले भी पानी को इतनी ऊंचाई पर पहुंचा देती थी। पर इतिहास की इन खूबसूरत धरोहरों के बीच भी हम प्रकृति के सबसे लाजवाब प्राणी को देखने को आतुर थे और उन्हें ढूंढने के सफर के दौरान कई रोमांचक कहानियां सुन रहे थे।
2: यहाँ जो रातापानी टाइगर्स हैं
4: जी,
2: वो बाकी एरिया के टाइगर्स से आपको क्यों डिफरेंट लगते हैं?
4: रातापानी टाइगर रिजर्व के टाइगर्स बाकी एरिया के टाइगर से मुझे लगता है ज्यादा हेल्दी है, ज्यादा स्वस्थ हैं और फिजिकल खाना उपलब्ध है। फिजिकल अपीयरेंस में भी आप देखेंगे इनका इनका हेल्थ ज्यादा है।
2: टाइगर की वो कौन सी ट्रेट्स होती हैं जो बाकी वाइल्ड कैट से बिग कैट से उसको अलग बनाती हैं?
4: सबसे ज्यादा पावरफुल है, सबसे ज्यादा फुर्तीला है और उसका अपना एक टेरिटरी होता है। जहाँ भी टाइगर टेरिटरी बनाता है, नया टाइगर नई टेरिटरी के लिए उसको कई जगह तरह से मार्क करता है, उसमें यूरिनेशन करेगा, खरोच का निशान बनाएगा और वो दूसरे टाइगर्स के लिए इंडिकेशन होता है ये मेरा टेरिटरी है। वो तब तक उसका टेरिटरी होगा जब तक कि कोई उससे पावरफुल टाइगर वहाँ ना आ जाए, फिर दोनों में लड़ाई होती है। और हमेशा सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट का फॉर्मूला यही लागू होता आकर, जिस जो टेरिटरी जिसका होगा वो सबसे पावरफुल होगा।
2: आपका वो कौन सा अनुभव है जो आपके साथ रह गया यहाँ पे टाइगर्स के साथ?
4: एक बार हम लोग जंगल में ही थे तो एक मादा उनके साथ तीन टाइगर के बच्चे थे, वो हमारी गाड़ी को चेस करने लगे।
2: अच्छा,
4: बच्चे उनके कारण उनकी माँ को साथ में चलना पड़ा, आना पड़ा। हमने फिर अपनी गाड़ी को काफी पीछे तक लेकर गए, तब भी हमने देखा कि वो जो उनकी माँ थी वो बच्चों को खरेड़ के एक साइड लेके गई।
2: अच्छा।
4: नहीं तो वो हमारे तरफ ही चले आ रहे थे, वो उनको इंस्टिंक्ट है, बच्चे हैं।
0: वैसे जंगल में बाघ को देखना आसान नहीं होता क्योंकि बाघ सिर्फ ताकतवर शिकारी ही नहीं छिपने में भी माहिर होता है। घने जंगल में वो इंसानों से दूर रहना पसंद करता है। अक्सर बाघ ही पहले इंसान को देख लेता है। उसकी चाल इतनी शांत होती है कि सूखे पत्तों पर चलते हुए भी आवाज नहीं होती। बाघ कैमोफ्लाज का मास्टर होता है। उसके शरीर की काली पीली धारियां जंगल की घास, झाड़ियों और पेड़ों में ऐसे घुल जाती हैं कि वो आंखों के सामने होकर भी नजर नहीं आता।
5: टाइगर के ऊपर जो स्ट्राइप्स होती हैं वो अपने आप में यूनिक होती है। एक टाइगर से दूसरे टाइगर की स्ट्राइप्स कभी भी मिलती जुलती नहीं होती है। उसी से टाइगर का आइडेंटिफिकेशन होता है और जो एस्टिमेशन अभी चल रहा है उसमें भी टाइगर की धारियों से, उनके चेहरे के मार्क से हम उनको पहचानते हैं। और धारियों का विशेषकर कारण होता है उनका कैमोफ्लाज। वो एक प्रेडेटर होता है, शिकारी है, शिकारी प्राणी है वो, तो उसको सबसे जरूरी होता है अपनी स्टेल्थ मोड को। स्टेल्थ मोड के लिए वो छुपना होता है, छुप के ही शिकार करता है, तो इसलिए वो छुपने के लिए वो धारियां सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होती है। जंगल आप जैसे ही देख रहे हैं वो छुपा रहता है लेकिन दिखता नहीं।
0: हमने बाघ को अब तक नहीं देखा था, इसका ये मतलब कतई नहीं कि बाघ ने हमको नहीं देखा था। गर्मी बढ़ रही थी और कुछ देर को सुस्ताने के लिए हम जंगल के बीचों बीच वन विभाग के कैंप ऑफिस पहुंचे।
2: ये जो दस्तावेज, मैं कहूँ कि ये रिकॉर्ड्स जो यहाँ पर हैं, टाइगर्स ऑफ भोपाल लैंडस्केप, इसमें काफ़ी मतलब खजाना है ये, मुझे लगता है कि यहाँ की जानकारियों का।
4: ये भोपाल राजधानी भोपाल के आसपास के तीन डिवीजन है, फॉरेस्ट डिवीजन भोपाल, सीहोर और अब्दुलगंज, ये मिलाकर भोपाल लैंडस्केप कहलाता है। ये देखिए, ये भोपाल शहर दिख रहा है, भोपाल शहर से लगा हुआ टाइगर का मूवमेंट हुआ है।
2: अच्छा, मतलब ये पूरा पीछे शहर है?
4: जी, भोपाल शहर है।
2: और इतना करीब टाइगर?
4: इतना करीब है। भोपाल में कलियासोत डैम है और जो भोपाल से लगे हुए शहरी क्षेत्र हैं, हाँ, वहाँ तक टाइगर का मूवमेंट होता है।
2: अच्छा
4: जी,
2: तो इसीलिए इन्हें अर्बन टाइगर्स कहा जाता है,
4: इनको इसीलिए कहा जाता है। ये भोपाल के अर्बन एरियाज के फोटोग्राफ्स हैं, हाँ, जिनमें टाइगर का मूवमेंट है। जो भोपाल के नजदीक लगे हुए फॉरेस्ट एरियाज हैं, हाँ, इन फोटोज में वही दिखाएगा।
2: तो किसी तरह का कॉन्फ्लिक्ट
4: तो ऐसे नहीं हुआ है, क्योंकि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की मॉनिटरिंग पर्याप्त काफी होती है, और जैसे ही मूवमेंट होता है, हाँ, तो लोगों को फॉरेस्ट डिपार्टमेंट हरकत में आता है और फिर लोगों को उस हिसाब से जागरूक किया जाता है, समझाइश दिया जाता है। भोपाल, हाँ, के लोग भी काफी जागरूक हैं।
2: अच्छा।
4: वो एरिया को बंद कर देते हैं, हाँ, पब्लिक मूवमेंट बंद कर देते हैं, तो टाइगर को अपने आप मूव करके, क्योंकि जंगल का जानवर है, वो फिर वापस जंगल में चला जाता है।
2: अच्छा।
4: लेकिन मॉनिटरिंग और लोगों को समझाइश बहुत जरूरी है। हमारे यहाँ जंगल अच्छा है, सुरक्षा के इंतजाम पर्याप्त हैं, टाइगर्स को जिंदा रहने, सर्वाइव करने के लिए बहुत अच्छा पर्यावरण और वातावरण मिल रहा है, इसलिए यहाँ पर टाइगर्स की संख्या बढ़ रही है।
0: जब तक हम वापस निकले, तापमान थोड़ा कम हो रहा था, यानी अगर हम किसी वाटर होल के नजदीक जाकर इंतजार करें तो टाइगर देख पाने की संभावनाएं बढ़ सकती हैं। पर चुनौती अब भी ये थी कि बाघ की मौजूदगी उसके पगमार्क अलार्म कॉल या शिकार के निशानों से ही पता चल सकती है। हमारी उम्मीद बढ़ी और जब हम आगे बढ़े तो हमारा उत्साह कुछ और बढ़ा।
2: दोनों तरफ बैम्बू इस तरह के हैं कि आपको एक बैम्बू टनल, एक नेचुरल बैम्बू टनल की तरह दिख रहा है। ये कुछ और निशान हमें दिख रहे हैं, पर ये सिंगल टाइगर के हैं। अभी जैसे हमने एक पैर देखा था, यानी एक टाइगर और टाइग्रेस को देखा था, लेकिन यहाँ पर और पैरों के निशान हैं। अब हम इस दिशा में जाकर इसको फॉलो करने की कोशिश करते हैं। चलिए, टाइगर के पगमार्क्स हमने देखे हैं, फ्रेश पगमार्क्स हैं, इसीलिए क्योंकि गाड़ी के पहिए के निशान थे, उसके ऊपर वो पगमार्क्स हैं। और इमरान भाई बता रहे हैं कि यहाँ पर अभी चीतल की कॉल उन्हें सुनाई पड़ी है। हम लोगों को चूंकि आदत नहीं है, इसलिए समझ में नहीं आता है, लेकिन हम अब आगे की तरफ जा रहे हैं। चलें।

0: आगे इधर क्या?
1: सर यहाँ पे अपने को ताजे पगमार्क तो मिले हैं, ये जंगल भी आप देख रहे हैं तो काफी घना है। हाँ। और ये ठंडा वाला एरिया है, आगे सूसर भी है, तो गर्मी में टाइगर को पानी पसंद रहता है और वो मतलब
0: अच्छा, पानी पीने की जगह है यहाँ पे।

0: देखिए बहुत ज्यादा छांव होती नहीं है, लेकिन अगर थोड़ा घने पेड़ वाला हिस्सा आपको दिख रहा है तो वहां पर छाया है और पानी के पास थोड़ी सी, थोड़ा तो एक दो डिग्री। अच्छा ओहो, पीछे पीछे पीछे पीछे पीछे, थोड़ा सा पीछे, बिल्कुल साइड में बैठा है।
1: जैसे अगर टाइगर बड़ा है और उसको शिकार करने में भी क्या ज्यादा समय लगता है, वो तो वो बड़े शिकार ढूंढता है, जैसे नील गाय हुई।
0: अच्छा,
1: मतलब उसको हफ्ते में मतलब एक बार शिकार करना है तो 4 दिन तक वो भोजन करेगा। पहले दिन वो शिकार करके थोड़ी देर ऐसे जब सोसर पर बैठा हुआ है तो ये शिकार करके आके बैठेगा थोड़ी देर, फिर 2-1 दिन तक खाएगा।
0: क्या कहा जाता है, धीरे ही बोलना चाहिए।
2: जी बिल्कुल, क्योंकि क्या गाड़ी से या इनसे डिस्टर्ब नहीं होते, वो अपन लोगों की आवाज़ से ज़्यादा डिस्टर्ब होते। कोई भी ड्राइवर अब जैसे ये बैठा मान लो, फिर बैठा रहेगा शांत, अपन है तो बैठा रहेगा, अपन बोलेंगे ना तो फिर वो उठ के चल जाएगा। इसलिए बोलते हैं साफ पानी, ज़्यादा हल्ला नहीं करने, चुपचाप से देखते और बस शांति से।
0: वैसे भी हम लोग मेहमान हैं,
2: हम मेहमान हैं, सही है, घर उसका है।
0: अच्छा, जितनी देर वो यहाँ बैठा रहेगा
2: जी,
0: कोई नहीं आएगा और जानवर नहीं आएगा,
2: दूसरा कोई जानवर नहीं आएगा। जैसे बाई चांस कोई आएगा भी उसे देख के वापस हो जाएगा या कुछ चिल्ला के भूल जाएगा, लेकिन आएगा नहीं यहाँ पर। लंगूर भरी ऊपर आ जाएंगे पेड़ों पर, पेड़ों पर से कॉलिंग करते रहेंगे, चिल्लाते रहेंगे, लेकिन नीचे नहीं उतरेंगे। बहुत से लोग ऐसे कहते हैं ना कि हमें कुछ नहीं दिखा, कुछ नहीं दिखा, तो उससे निराश होने की वजह उनको ये सोचनी चाहिए कि उनके टाइगर के चांस और बढ़ गए। हाँ, क्योंकि टाइगर अगर हर भी बोर नहीं दिख रहा, मतलब टाइगर मूवमेंट है आसपास। अगर टाइगर मूवमेंट है तो कोई भी शाकाहारी जानवर आसपास आपको नहीं दिखेगा।
0: दुनिया के सबसे खतरनाक शिकारी होते हैं टाइगर। इतनी ताकत और इतनी फुर्ती, इन्हें जंगल का इतनी फुर्ती किसी और में देखने को नहीं मिलती है। हाँ, अभी आप सुस्ताते हुए जरूर देख रहे हैं क्योंकि इस समय उसे शिकार करने की जरूरत नहीं है, लेकिन जब ये शिकार करने पर आते हैं तो आपको समझ में आ जाएगा कि आखिर इन्हें जंगल का राजा क्यों कहा जाता है। जितनी बड़ी संख्या में भारत में टाइगर्स मौजूद हैं, पूरी दुनिया में जो फ्री फॉरेस्ट्स होते हैं उसमें आपको और कहीं नहीं मिलेंगे। कंजर्वेशन की जो एफर्ट्स भारत में आपको दिखते हैं वो आपको पूरी दुनिया में और कहीं नहीं दिखेंगे। हमारे जो बंगाल टाइगर्स हैं, हमारे जो रॉयल बंगाल टाइगर्स हैं, वो आपको भारत के अलग अलग प्रदेशों में, अलग अलग जंगलों में अगर दिखेंगे, जैसे रातापानी के इस जंगल में इस समय हमें नज़र आ रहा है।

0: बाघ सिर्फ एक बड़ी जंगली बिल्ली नहीं है, ये प्रकृति की सबसे परफेक्ट किलिंग मशीन है। इसे केवल ताकत के लिए नहीं बनाया गया, बल्कि शांत, सटीक और बेहद असरदार शिकार के लिए तैयार किया गया।
1: टाइगर एक टेरिटोरियल एनिमल होता है, अकेला रहता है और उसके क्षेत्र में वो इकलौता रहता है, वो सबसे टॉप प्रेडेटर। यदि उसके क्षेत्र में दूसरा टाइगर आता है जो उसी के बराबर का होता है, तो वो उसको मारता है, उसको फाइट करता है, तो या तो उनमें से एक टाइगर मर जाते हैं या वो टाइगर भाग जाता है।
0: बाघ के शरीर का हर हिस्सा शिकार करने के लिए बिल्कुल फिट है। उसकी मांसपेशियां इतनी शक्तिशाली होती हैं कि वो अपने से 3 से 4 गुना भारी शिकार को भी अकेले गिरा सकता है। उसके पैरों में इतनी ताकत होती है कि 250 किलो के इस शिकारी को एक छलांग में 10 से 12 मीटर तक उछाल देती है। उसका एक पंजा हिरण की गर्दन तोड़ सकता है और उसके जबड़े की ताकत 1050 PSI से भी ज्यादा है। इतनी ताकत कि हड्डियां कागज की तरह फट जाएं। बाघ झुंड में शिकार नहीं करता, वो योजना बनाता है, समय का इंतजार करता है, हर कदम की गणना करता है। एक गलती का मतलब है भूखे रह जाना। कोई बैकअप नहीं, कोई दूसरा मौका नहीं। कम रोशनी में उसकी आंखें इंसानों से 6 गुना बेहतर देख सकती हैं। उसके कान पत्तियों की सबसे हल्की सरसराहट तक सुन लेते हैं। बाघ आक्रामक नहीं होता, वो सिर्फ अपने इलाके को लेकर सतर्क होता है। वो तब मारते हैं जब जरूरी हो। और सबसे चौंकाने वाली बात, उसकी दहाड़ 3 किलोमीटर दूर तक सुनी जा सकती।
2: टाइगर को लेकर दरअसल बहुत सारी चीजें हैं जो कही जाती हैं। हम आपको ऐसी ही कुछ दिलचस्प बातें और दिखाते हैं।
0: बाघ दुनिया का सबसे बड़ा वाइल्ड कैट है। उसका वजन 350 किलो के पार जा सकता है। रातापानी के टाइगर भी बाकी टाइगरों की तुलना में काफी सेहतमंद होते हैं।
1: वेट तो अगर पाउंड्स में पूछेंगे तो मोर देन 400 पाउंड्स, एंड वेट अगर किलोज में पूछेंगे तो 230 टू 250 केजी का तो उसका वेट होता है। और उसकी जो हाइट रहती है फ्रॉम ग्राउंड से अगर उसकी हाइट देखेंगे तो वो 3.5 फीट के लगभग होता है, और उसकी लंबाई हेड टू टेल बोन तक जो उसकी लंबाई है 6 फीट से भी ऊपर है।
0: कैट फैमिली के बाकी सदस्यों से अलग टाइगर्स अच्छे तैराक होते हैं और उन्हें पानी में रहना काफी पसंद है।
3: पानी बहुत पसंद करता है टाइगर। आप देखेंगे सुंदरवन में तो आपको तैरते हुए टाइगर वहां पे दिखते ही हैं। यहाँ पे भी हमारे सोर्सर्स में आपको टाइगर, आप गर्मी के समय में अगर दोपहर में आएंगे तो आपको नहाते हुए और एंजॉय करते हुए टाइगर, मतलब बहुत अच्छा तैराक भी होता है। तो जब बाढ़ के पानी में आप देखेंगे तो वो कई कई किलोमीटर तैर जाते हैं।
0: फुल स्पीड पर टाइगर की रफ्तार 65 किलोमीटर प्रति घंटे तक हो सकती है, यानी औसत गाड़ियों को वो अपनी रफ्तार से पछाड़ सकते हैं। आज पूरी दुनिया में टाइगर के 5 सब स्पीशी हैं। साउथ चाइना टाइगर, इंडो चाइनीज टाइगर, सुमात्रन टाइगर, साइबेरियन टाइगर और बंगाल टाइगर। 100 साल पहले तक टाइगर पूरे एशिया में मिला करते थे, लेकिन शिकार और इंसानी अतिक्रमण की वजह से अब वो उस समय की तुलना में केवल 7% हिस्से में बच गए। तसल्ली भर बाघ को देखने और समझने के बाद हम वापसी की ओर निकल रहे थे, पर जरा रुकी, इस रहस्यमय जंगल का एक और पड़ाव बाकी है।
2: तो यहाँ बहुत मान्यता है,
4: हाँ, केरी महादेव की। इसको केरी महादेव भी बोलते हैं। यहाँ पे आम के पेड़ और पहले बहुत पुराने जो लोग रहते थे ना, मतलब टाइगर का भी यहाँ पे कहर था, इसलिए दोनों को मिला के केरी का पेड़ और महादेव, हाँ। का मंदिर को मिला के इसको केरी महादेव बोलते हैं।
2: अच्छा,
4: जो आदिवासी लोग रहते हैं ना, उनका बहुत मान्यता है यहाँ पे
2: जलधारा के नीचे महादेव।
4: 14 किलोमीटर से ज्यादा की सफारी करके यहाँ तक पहुँच चुके हैं, तो जिसमें अपने को कोई सा भी नेचुरल वॉटरफॉल या नदी वगैरह कुछ भी नहीं मिली, पर यहाँ पे ये 12 महीने चलता रहता है, बस थोड़ी गर्मी के कारण थोड़ा कम हो जाता है। और यहाँ पे
2: लेकिन जल आना कभी भी खत्म नहीं होता है,
4: जल आना कभी भी खत्म नहीं होता। और यहाँ का जो जल है ना, अपन कभी अपने शरीर में भार वगैरह जाता है, बुखार वगैरह जाता है, या जो बोलते हैं किसी का छाया वगैरह जाता है यहाँ पे नहाने मात्र से दूर हो जाता है।
2: ऐसा नहीं है कि अभी बारिश का मौसम है, अभी बहुत भीषण गर्मी है, आप समझेंगे कहीं पर अगर पानी हो भी तो वो भी सूख गया हो, लेकिन यहाँ पर कभी भी पानी आना बंद नहीं होता है। ये इस पेड़ के जड़ों से होते हुए प्राकृतिक रूप से यहाँ पर महादेव का अभिषेक निरंतर चलता रहता है, 12 महीने चलता रहता है, और ये टाइगर टेरिटरी ही है, लेकिन उस सब के बीच में ये एक अद्भुत रहस्य अपने आप में ये भी।

0: यहाँ बियावान जंगल में विराजमान महादेव का जलाभिषेक करने के लिए बारहों महीने जल की सहस्त्र धाराएं गिरती रहती हैं। चाहे जितनी भी गर्मी पड़े लेकिन जलाभिषेक का क्रम कभी नहीं टूटता।
1: चलो आगे चलते। प्रणाम बाबा जी, हर हर महादेव।

0: ये कहाँ से आता है पानी?
1: जी, पानी इसमें से पहाड़ में से आता है।
0: अच्छा, और कभी खत्म नहीं होता है?
1: कभी खत्म नहीं होता। ये तो जय अखंड भूमि धार जा रही
0: जी।
1: तुम नहाते जैसा संकरी बजा रही। बहुत मोह तो पार्वती मैया बाबा काल भैरव बाबा गुफा
0: जी
1: पार्वती, और जो जिंद बाबा को धूना जो जल रहा है सामने, जो जिंद बाबा को धूना है
0: जी,
1: वो पीर निशान लग रहा, वो पीर बाबा को स्थान है।
0: अच्छा,
1: ये शनि महाराज को स्थान, कालका मैया को, पार्वती मैया, पूरे 64 योगनी का मंदिर है वो 64 योग। फिर इसके बाद में महाशिवरात्रि फागुन आता, फागुन में महाशिवरात्रि को 3 दिन को मेला भरता
0: जी।
1: 3 दिन का महाशिवरात्रि, जो धार्मिक लोग आते हैं यहाँ भंडारे करते हैं।
2: कुछ लोगों का दावा है कि महादेव के जलाभिषेक के लिए पहाड़ों के ऊपर से पार्वती, गंगा, नर्मदा, जमुना, गोमती, क्षिप्रा और सरयू नदी का जल अपने आप आता है। यहाँ जो शिव स्थान है, वहाँ एक आम का पेड़ है जिसे कैरी भी कहा जाता है, जो सैकड़ों साल पुराना है, जिसकी वजह से लोगों ने इस मंदिर को कैरी महादेव का मंदिर कहना शुरू कर दिया।
0: ऊपर का हिस्सा यहाँ पर हम आपको दिखाते हैं। यहाँ जैसे नीचे, अब हम उससे काफी ऊपर आ चुके हैं, लेकिन चूंकि ये एक पूजनीय स्थान है, इसीलिए अपने जूतों को उतार कर हम ऊपर की ओर आगे बढ़े हैं। यहाँ से होता हुआ ये झरना नीचे की तरफ जा रहा है, जहाँ पर जलाभिषेक हो रहा है। ये पूरा पर्वत आप देखिए, मतलब ये चट्टान देखिए, और उन चट्टानों के बीच गुथे हुए वो जड़ देखिए, आपको ऐसा लगेगा कि स्वयं जटाशंकर महादेव, यहाँ पर जो शिव जी के जटाएँ हैं, वो आपको यहाँ पर ऐसा लगता है जैसे कि प्रतीत होती है, और स्वयं साक्षात महादेव एक रूप में दिखते हैं, क्योंकि वो जटाएँ, उनमें से निकलती हुई गंगा की धारा, और यहाँ पर एक प्राकृतिक जलाभिषेक का दृश्य अपने आप में अलौकिक है, अद्भुत है, अविश्वसनीय है, अकल्पनीय है।
2: ये ऐसे था जैसे एक पेड़ ने पहाड़ की शक्ल ले ली, या फिर जैसे पूरा पहाड़ ही पेड़ बन गया। कैरी महादेव सामने थे और उन पर गिरती प्राकृतिक जलधाराएं, जरा सोचिए। आज जिस तरह हम इस जंगल में आए हैं, उस तरह सैकड़ों साल पहले जब ना रास्ते होते होंगे और कदम कदम पर बाघों सहित जंगली जानवरों का खतरा रहता होगा, तब कैसे पूजा संभव हो पाती होगी। टाइगर रिजर्व बनने के बाद अब यहाँ साल में 2 बार ये मंदिर खोला जाता है, एक शिवरात्रि को और दूसरा भूत अमावस्या के दिन। तब यहाँ मेला लगता है और खूब भक्त जुटते हैं। रातापानी के अनगिनत रहस्यों में ये भी एक अद्भुत रहस्य ही है, पर सबसे सुंदर पहलू वो कहानी है जो भारतीय परंपरा में सह अस्तित्व की है, बाघों और इंसानों की कहानी, कभी गिन्नौर गढ़ के किले से निकलती हुई, आज भोपाल की सीमाओं से लगती हुई।
0: रातापानी के जंगलों में एक अद्भुत, अविश्वसनीय, अकल्पनीय सफर के बाद अब हम वापस निकल रहे हैं इंसानी जंगलों की ओर, लौट रहे हैं इंसानी जंगलों की ओर। अभी के लिए इतना ही। अभिषेक सिंह, कैमरा पर्सन हितेश कुमार और मनीष झा के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।

0: और अब बड़ी खबर कोलकाता से आपको देते हैं। सोनारपुर में अभिषेक बैनर्जी के साथ मारपीट के बाद अब उन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। ये बड़ी खबर इस समय मिल रही है अभिषेक बैनर्जी से। ममता बैनर्जी ने अस्पताल पहुंचकर मुलाकात भी की है अभिषेक बैनर्जी के साथ। आज मारपीट का वाकया सोनारपुर में सामने आया, उसमें खूब राजनीति भी हो रही है, इस बीच में उनको अस्पताल में भर्ती करवाया गया। अस्पताल में भर्ती कराए जाने की जानकारी मिल रही है और ममता बैनर्जी भी जानकारी मिल रही है कि अस्पताल पहुंचकर उन्होंने अभिषेक बैनर्जी से मुलाकात की है। अब आप एक ही तस्वीर देखिए, अभिषेक बैनर्जी जब सोनारपुर में जब उनके साथ मारपीट हुई थी और हेलमेट पहनकर वो टीएमसी कार्यकर्ता के घर पर भी पहुंच गए थे, तब उन्होंने मीडिया से भी बातचीत की थी और उसके बाद अब एकाएक ये तस्वीर दिख रही है।
1: फेलो हॉस्पिटल में जो ममता बैनर्जी है तृणमूल सुप्रीमो, वो यहाँ पे आए थे क्योंकि जो आज अभिषेक बैनर्जी जिसके ऊपर हमला हुआ था वो इस वक्त इमरजेंसी में मौजूद है यहाँ पर। और यहाँ पर यहाँ सामने देखा जा रहा है कि ये जो गाड़ी है ममता बैनर्जी का गाड़ी, ये गाड़ी निकल रहा है, ये गाड़ी निकल रहा है अभी। ममता बैनर्जी वो गाड़ी में आ रही है, अभिषेक बैनर्जी वो एपोलो पर आए थे, उसके ऊपर हमला हुआ था आज सोनारपुर में, जो पब्लिक ने उनके ऊपर जो उसके ऊपर अटैक हुआ था, उसके बाद ममता बैनर्जी यहाँ पर मौजूद है। ममता बैनर्जी वो खुद यहाँ पे देखने के लिए आए थे। अभिषेक बैनर्जी वो गाड़ी में मौजूद है, अभिषेक बैनर्जी वो खुद गाड़ी में मौजूद है। अभी जो अपोलो हॉस्पिटल से वो निकल के यहाँ से जा रही है। ममता बैनर्जी यहाँ पे मौजूद थे गाड़ी में, शोभन देव चट्टोपाध्याय है, ये ममता बैनर्जी वो भी गाड़ी में आ चुकी है, ये गाड़ी लेके अभिषेक बैनर्जी ममता बैनर्जी वो सब लोग यहाँ से जा रहे हैं। अभी वो लोग ट्रीटमेंट करा के यहाँ से निकल रहे हैं। ये अपोलो हॉस्पिटल से ये बाहर निकल रहे हैं। अभी यहाँ पे ममता बैनर्जी है गाड़ी में, अभिषेक बैनर्जी है गाड़ी में, शोभन देव चट्टोपाध्याय है गाड़ी में, ये गाड़ी अभी निकल रहा है यहाँ से। जैसा कि देखा जा रहा है कि ये सभी लोग यहाँ से निकल रहा है और ये गाड़ी अभी अपोलो हॉस्पिटल से निकल के जा रहा है। सामने ही गाड़ी है, उस गाड़ी में ही ममता बैनर्जी, अभिषेक बैनर्जी और शोभनदेव चटर्जी वो सब लोग मौजूद थे।
0: हमारे साथ हमारे संवाददाता तापस सेन गुप्ता भी इस समय जुड़ गए। तापस, जब झड़प मारपीट हुई थी उस समय तो सामान्य लग रहे थे, उसके बाद उन्होंने मीडिया से बातचीत भी की, अब क्या रूटीन चेकअप के लिए अस्पताल में ले जाया गया उनको? ममता बैनर्जी भी वहां पर पहुंची या फिर कुछ गंभीर चोट आ गई उनको?
2: जी देखिए, सूत्रों के मुताबिक जो खबरें मिल रही है कि अभिषेक बैनर्जी को उनके गर्दन पे, उनके कंधों पे और हाथ में काफी ज्यादा चोट लगी है और उनके पीठ में भी चोट लगा है, ये अभिषेक बैनर्जी की तरफ से बताया गया था अस्पताल में। लेकिन जो जिस अस्पताल में पहली बार लेकर जाया गया था वहां से ये सूचना मिल रही है कि उनको एग्जामिन किया गया था। एग्जामिन करने के बाद डॉक्टरों का ये ऑब्जर्वेशन था कि जो चोट की बात वो कर रहे हैं वो ना कोई एक्सटर्नल ब्लीडिंग है, लेकिन अगर इंटरनल भी कुछ होता तो एग्जाम करने के बाद डॉक्टरों को लगा कि बहुत गंभीर कोई चोट नहीं है, तो ऐसे में वो अपने घर पे रहकर कुछ दवाइयों के ले सकते हैं और घर पे रेस्ट कर सकते हैं, उनको अस्पताल में एडमिट होने की जरूरत नहीं है। और ये सुनने के बाद
0: हमने देखा वो व्हील चेयर पर बैठे हुए दिखाई दिए
2: ममता बनर्जी थी वो जी अमूमन देखिए, जब इमरजेंसी में कोई पेशेंट को ले जाया जाता है तो उसे जब बाहर, चाहे वो उसको अगर डिस्चार्ज भी किया जाता है तो अमूमन व्हीलचेयर में लेकर लाया जाता है। तो जैसा मैं बता रहा था कि ममता बैनर्जी निकल के साफ बताए कि वो यहाँ पे उनका ट्रीटमेंट नहीं होगा तो हम उन्हें कहीं और लेकर जा रहे हैं। अब वो मिंटो पार्क में एक प्राइवेट हॉस्पिटल में लेकर गए हैं, लेकिन अभी भी उनका एग्जामिनेशन चल रहा है, एग्जामिन किया जा रहा
0: है कि उनको घर पर रेस्ट करने के लिए कहा गया है। तापस, बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। और दिल्ली से एक बड़ी खबर इस समय मिल रही है। महरौली इलाके में एक 5 मंजिला इमारत के गिरने की जानकारी मिल रही है। ये बहुत बड़ी खबर इस समय देश की राजधानी दिल्ली और वहां महरौली इलाके में जानकारी मिल रही है 5 मंजिला इमारत गिरी है। मलबे में कई लोगों के दबे होने की समय आशंका है। साउथ दिल्ली का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इलाका महरौली इलाका, यहां 5 मंजिला इमारत के गिरने की जानकारी मिल रही है और जानकारी ये भी कि कुछ लोग वहां पर दबे हुए हो सकते हैं। हमारे संवाददाता अरविंद ओझा हमारे साथ जुड़ गए। अरविंद, किस जगह पर एग्जैक्टली महरौली में ये बिल्डिंग है और कितने लोगों के दबे होने की आशंका है, कैसे गिरी ये बिल्डिंग?
3: देखिए, सैदुल्ला जहाँ भी इलाका है साउथ दिल्ली इलाके में, और यहाँ पर ये 3 मंजिला इमारत ऐसा बताया जा रहा है वो भरभरा कर गिर गई। रेस्क्यू ऑपरेशन का काम चल रहा है, राहत और बचाव का काम चल रहा है। 4 से 5 लोगों को सुरक्षित निकाल लिया गया है। कुछ और लोगों के दबे हुए की जानकारी है। फायर डिपार्टमेंट की टीम, लोकल पुलिस की टीम और साथ ही साथ जो स्थानीय लोग हैं वो राहत और बचाव के काम में जुटे हुए हैं। अभी जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक 4 से 5 लोगों को सुरक्षित रेस्क्यू किया गया है। वो घायल हैं, उन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया है, जबकि कुछ और लोग दबे हुए हैं ऐसी जानकारी मिल रही है, उनको बचाने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। राजीव,
0: थोड़ा सा और इस बिल्डिंग के बारे में जानकारी दें, अलग अलग फ्लोर से या एक ही परिवार का पूरा मकान था, कितने लोग उस समय रह रहे थे जब ये गिरा?
3: देखिए, 7:45 पर जो फायर डिपार्टमेंट की टीम है उसको ये कॉल मिली, जिसमें बताया गया कि जो महरौली इलाके में सैदुल्ला जाब इलाका वहां पर एक 3 मंजिला इमारत गिर गई है और वो रिहायशी बिल्डिंग जिसमें सभी फ्लोर पे लोग रह रहे थे। जो ये पूरा फ्लोर है 10 से ज्यादा लोगों के इसमें होने की जानकारी मिली थी। ये शुरुआती जानकारी है राजीव, साथ में यही भी बता दूं, उसके बाद फिर राहत और बचाव का काम हुआ और जो तस्वीरें आई उसमें भी साफ दिख रहा है कि कुछ लोगों को रेस्क्यू कराया गया, जिसमें हमें जो जानकारी मिली उसके मुताबिक 4 से 5 लोगों को रेस्क्यू कराया गया है और तस्वीरों में ये भी साफ को साफ दिखाई दे रहा होगा कि रेस्क्यू ऑपरेशन का काम जारी है। जो लोकल पुलिस है, जो फायर डिपार्टमेंट की टीम है वो वहां पर पहुंच गई है, मलबा हटाकर उसको रेस्क्यू किया जा रहा है।
0: बहुत शुक्रिया अरविंद आपका इस तमाम जानकारी के लिए। और अब रुकने छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन होंगे हाजिर, आप देखते रहिए आज तक।

0: feels like summer. Monte Carlo, it's the way you make me feel.
1: आपके पास दो ऑप्शंस हैं, या तो सुपरमैन बनकर फर्नीचर को भीगने से बचा लो, या E3 HDMR बोर्ड्स लगाकर फर्नीचर को लाइफटाइम के लिए वाटर और टर्माइट प्रूफ बना लो। E3 प्रोडक्ट्स, ये रिश्ता लंबा चलेगा।
2: इसमें है फाइबर, बीटा ग्लूकोन, प्रोटीन, मैग्नीशियम तत्व, इसलिए ये शारीरिक संतुलन के साथ साथ शरीर को स्वस्थ रखता है। लायन ओट्स फैमिली, सुपर एक्शन फैमिली।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: और भाई कहाँ गए थे घूमने?
3: जीके मैक्स।
4: वैसे रोहन पढ़ाई में कैसा है?
3: जीके मैक्स बेस्ट पुट्टी।
5: जेके वॉल मैक्स
3: बेस्ट पेंट।
6: जेके मैक्स।
3: बाकी सब सवालों का पता नहीं लेकिन मोस्ट ब्यूटीफुल वॉल्स के लिए सिर्फ जेके मैक्स पेंट्स। जेके मैक्स पेंट्स। खुशियों के रंग।
7: टेबल को ऊपर से जब भी खाते हैं दबा के खाते हैं। ये भाई साहब सब पचा देते।
8: पर दिक्कत तो होने आती है जो टेबल के नीचे से।
9: मुल्तानी पश्मीना, अपने हक का खाओ, सब कुछ पचाओ।
10: मौसम विभाग ने कहा है कि इस साल भारत में गर्मी का असर बहुत ही ज्यादा होने वाला है।
11: रामराज व्हाइट शर्ट्स इस समर को कूल बना दे।
12: डायरेक्टर, द टेस्ट ऑफ सक्सेस।
13: जब अपना कोई मूव किसी को मूव करता है ना यार, फील आ जाती है।
14: भाई तू अपना है, तेरा सफर मुझे भी करना है। तूने प्रूव कर दिखाया यार, एनीबॉडी कैन ड्रीम।
13: मुझे लगा मैं नहीं, पूरा का पूरा मूवमेंट चल रहा है।
15: ब्रीदेबल फैब्रिक्स, ऑसम कंफर्ट, एफर्टलेस स्टाइल, एडी फ्रॉम द हाउस ऑफ अरविंद।
16: वेयर द सॉफ्टवेयर इंजीनियर मीट्स द कूल यूआई यूएक्स डिजाइनर मीट्स द गिफ्टेड कंटेंट राइटर टू क्रिएट द बिग ड्रीम। द वर्ल्ड कम्स टुगेदर एट शारदा यूनिवर्सिटी। So where are you?
17: Kent से पानी होता है 100% प्योर।
18: Kent RO प्योरिटी दिखाता भी है।
17: Kent देता है सबसे शुद्ध पानी।
19: ऊंचाई पर बने रहने के लिए जरूरी है इरादों का प्योर होना। गैलेंट एडवांस बनाते हैं ऐसा स्टील जो अंदर से है ज्यादा प्योर, ज्यादा मजबूत। गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो।
20: आपके पास दो ऑप्शंस हैं, या तो सुपरमैन बनकर फर्नीचर को भीगने से बचा लो, या E3 HDMR बोर्ड्स लगाकर फर्नीचर को लाइफटाइम के लिए वाटर और टर्माइट प्रूफ बना लो। E3 प्रोडक्ट्स, ये रिश्ता लंबा चलेगा।

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
1: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो
0: हेक्सा ऑर्गेनिक रेडिएंट स्किन एंड नरिश्ड हेयर प्योर आयुर्वेदिक ब्यूटी ड्यूरेबल पाइप्स फिटिंग्स एंड टैंक्स अ कंप्लीट रेंज ऑफ सैनिटरी सॉल्यूशंस

0: feels like summer. Monte Carlo, it's the way you make me feel.
1: आपके पास दो ऑप्शंस हैं, या तो सुपरमैन बनकर फर्नीचर को भीगने से बचा लो, या E3 HDMR बोर्ड्स लगाकर फर्नीचर को लाइफटाइम के लिए वाटर और टर्माइट प्रूफ बना लो। E3 प्रोडक्ट्स, ये रिश्ता लंबा चलेगा।
2: मौसम विभाग ने कहा है कि इस साल भारत में गर्मी का असर बहुत ही ज्यादा होने वाला है।
3: रामराज व्हाइट शर्ट्स इस समर को कूल बना दें।

0: पेपर अवेलेबल है टेलीग्राम।
1: किसी को ट्रस्ट हो ही नहीं रहा, ये पेपर लीक नहीं होगा, हमें तो लग रहा है ये भी हो जाएगा।
2: नीट पेपर लीक की जांच जारी है। अब तक 13 आरोपियों पर शिकंजा कस चुका है। शीर्ष अदालत सख्त है। री एग्जाम को लेकर सरकार सुरक्षा का भरोसा दे रही है, लेकिन इस पर सियासत थम नहीं रही। सुप्रीम कोर्ट में नीट पेपर लीक की सुनवाई के बाद लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने छात्रों से बातचीत का वीडियो साझा किया और पेपर लीक को लेकर सीधे पीएम मोदी को घेर लिया। नीट छात्रों से मुलाकात में एक बात बिल्कुल साफ हो गई, भारत का युवा नरेंद्र मोदी पर भरोसा नहीं करता। उन्होंने मुझे बताया कि पेपर व्हाट्सएप और टेलीग्राम पर खुलेआम बिक रहे हैं। किस कीमत पर बिक रहे हैं, कौन खरीद रहा है, माफिया कैसे काम कर रहे हैं, यह सब इन बच्चों को पता है। उनका एक ही सवाल था जो हमें पता है, वो सरकार और संस्थाओं को क्यों नहीं। राहुल का हमला सिर्फ यही नहीं थमा, उन्होंने पेपर का कॉन्ट्रैक्ट लेने वाली कंपनी और उसके बैकग्राउंड को लेकर भी तल्ख सवाल किए।
3: There are certain people who are controlling the medical colleges. There are certain people who are controlling the exam system. These guys are friends with each other. There is huge money. There is a method to suck money out of you people. This is not a system to educate you about medicine. This is a system to suck money out of you people. You people, your parents are in the middle class. It is the way to take their money away from them and give you a dream. That yes, you will become a doctor. That's the system. The problem is with the system.
2: उधर नीट पेपर लीक को लेकर राहुल का हमला सीधे पीएम मोदी पर हुआ तो पलटवार होते देर नहीं लगी। अमित मालवीय ने राहुल पर जवाबी हमला बोलते हुए लिखा, ये कहना बेतुका, अपमानजनक और तर्कहीन है कि पीएम मोदी ने व्यक्तिगत रूप से नीट परीक्षा के पेपर लीक की निगरानी की। यही कारण है कि राहुल गांधी राष्ट्रीय महत्व के मामलों पर गंभीरता से विचार करने में असमर्थ रहते हैं। एक दिन पहले नीट पेपर लीक पर सुनवाई के दौरान शीर्ष अदालत ने भी सख्त सवाल किए थे और इस बीच सियासी हमले लगातार तेज हो रहे हैं। आज तक ब्यूरो

या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट, तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
1: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।

साथ मैं हूँ अंजना ओम कश्यप। छात्रों का बहुत स्वागत इस तरफ जो नीले गमछे के साथ बैठे हुए हैं, जो मोशन के पक्ष में आज बोलने वाले हैं। मोशन हम आपको बताएंगे, बड़ा ही दिलचस्प आज का मोशन है, लेकिन तालियों के साथ आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है नीले गमछे वाले। और ये है बीच में, ये लोग कम मात्रा में पाए जाते हैं, ये सफेद गमछे वाले लोग हैं, ये शांति प्रिय लोग हैं, इनको मोक्ष मिल चुका है जीते जी। ये किसी बात पर, किसी मुद्दे पर अपनी कोई राय नहीं रखते, दोनों पक्षों को सुनते हैं। मैं आपको आदर्श मानती हूँ, गुस्से में मत देखो, मैं तुमको सही मानती हूँ। ये लोग हंस रहे हैं, ये जो लाल और नीला लिए हुए हंस रहे हैं। मैं तो मानती हूँ कि ऐसा ही होना चाहिए, दोनों पक्षों को सुनना जरूरी है। और तालियों के साथ स्वागत लाल गमछे वालों का, जो आज इस मोशन के पक्ष में। आज आपके लिए एक पहेली है, एक ऐसी पहेली है भारतीय पॉलिटिक्स की जो सबसे दिलचस्प पहेली है, और वो ये है कि कुछ मुद्दे इस पार्टी के होते हैं, कुछ मुद्दे उस पार्टी के होते हैं, और इधर वाले उसको नहीं छूते और उधर वाले इसको नहीं छूते। ये इसको अपना कोर बैंक बनाते हैं और ये अपने कोर पॉलिटिक्स पे रहते हैं। जैसे राम मंदिर का मुद्दा, अब कांग्रेस वाले भी कहते थे हाँ भाई बनना चाहिए, नहीं बनना चाहिए, कभी राम मंदिर को मानते थे नहीं मानते, लेकिन बीजेपी अड़ी रही, मैनिफेस्टो में डालती रही राम मंदिर बनेगा, राम मंदिर वहीं बनाएंगे, और फिर तारीख भी आ गई और राम मंदिर वहां पर बन गया। लेकिन इस मुद्दे पर बीजेपी अड़िग रही, धारा 370 बीजेपी ने अपना कोर इसको मुद्दा बनाया। ट्रिपल तलाक को, जो इंस्टेंट तलाक के बिद्दत है, जो इंस्टेंट तलाक होता है उसको खत्म करना, कि कोई किसी को बोलकर मौखिक रूप से तलाक नहीं दे सकता है, उसको खत्म करना। यूसीसी, अवैध घुसपैठ का मुद्दा आजकल आप सुन रहे होंगे, अवैध घुसपैठ के मुद्दे पर चाहे वो झारखंड हो, बिहार हो, असम हो, पश्चिम बंगाल हो, इस मुद्दे को अब बीजेपी जोर शोर के साथ उठा रही है। कहती कांग्रेस और विपक्ष की पार्टियां भी हैं कि हाँ भाई घुसपैठिए हटना चाहिए, लेकिन वो घुसपैठ पर कोई आंदोलन नहीं करते हैं। मतलब कोई अवैध नागरिक किसी दूसरे देश का भारत के अंदर आकर रहे, उस पर आंदोलन या विरोध करने के लिए विपक्ष सड़कों पर नहीं निकलता है। लेकिन जहां सरकार में भी बीजेपी है, वहां पर घुसपैठ के खिलाफ वही बोलते हुए आपको नजर आएंगे। तो घुसपैठ का भी एक ऐसा ही मुद्दा है जो बीजेपी अपना कोर मुद्दा बना रही है, लेकिन विपक्ष इस मुद्दे को जोर शोर से उठाता नहीं है, लेकिन कहता है हाँ भाई घुसपैठ नहीं होना चाहिए। आज ये सवाल हम पूछेंगे इस अपने बहसबाजीगर के डिबेट में कि घुसपैठ राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा है या बीजेपी का एजेंडा है? क्या बीजेपी के लिए ये सिर्फ वोट पाने का तरीका है या ये वाकई राष्ट्रीय सुरक्षा की बात है? अगर 40, 50, 60 फीसदी तक आबादी असम के कई जिलों में हो चुकी है घुसपैठियों की, मुस्लिम आबादी, तो ऐसे में क्या ये मुद्दा देश के लिए नहीं उठना चाहिए कि ऐसे जगहों पर 40, फिर धीरे धीरे 50, फिर धीरे धीरे 60 फीसदी आबादी कैसे हो गई है? ऐसा ही बहुत सारे पश्चिम बंगाल के जिले हैं जो कि बांग्लादेश से लगे हुए हैं, वहां पर भी अगर आप देखेंगे तो आश्चर्यजनक रूप से जो मुस्लिम वोट है उसकी आबादी बढ़ती जा रही है, कई जगहों पर 50-60 फीसदी से ज्यादा हो चुकी है। तो इसकी वजह क्या है? क्या इस पर आंखें बंद कर ली गई थी पॉलिटिक्स के लिए? और बीजेपी क्या इस मुद्दे पर कुछ करेगी या सिर्फ वोट बटोरेगी? यही मुद्दा है आज जिस पर आज हम चर्चा करेंगे। विपक्ष कहता है ये हिंदू मुस्लिम वोट करने का तरीका है, बीजेपी कहती है राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा है। इसीलिए आज हमने जो मोशन रखा है उस पर आज हम चर्चा करेंगे। और आज का मोशन जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले के प्राचीर से कहा था कि घुसपैठियों भारत छोड़ो, गृहमंत्री अमित शाह बार बार कह रहे हैं कि हर हाल में घुसपैठियों को निकालेंगे, तो आज का मोशन है क्या घुसपैठियों को बीजेपी ने चुनावी हथियार बना लिया है? एक बार फिर से मोशन सुनिए, क्या घुसपैठियों को बीजेपी ने चुनावी हथियार बना लिया है? इस बार दिलचस्प ये है कि चुनावी हथियार बना लिया है मोशन के पक्ष में वोट करने वाले इस तरफ है। आप लोग यही मानते हैं ना कि बीजेपी ने हथियार बना लिया है? कितने लोग मानते हैं, हाथ उठाइए। नीला गमछा लेके बैठे हो, मानते नहीं है मैडम? नहीं, वहां बैठते हैं अभी से पाला बदल लिया आपने? अब अल्लाह भाई, यहाँ पे डिबेट होने के पहले ही पाला बदल रहे हैं। लीजिए गमछा, लीजिए, जाइए जाइए, गमछा लीजिए, आपको ही बदलना है, उधर ही जाना है आपको भी। आइए मैडम लीजिए, हम कैसे रोक सकते हैं आपको, आइए। नहीं, आप यहाँ पे भी बैठ सकती है लाल गमछा लेकर, आइए आइए, बढ़ा दीजिए, कहाँ उठेंगी उस उम्र में, रुकिए हम ही आपको दे देते हैं। एकदम आपने पहले ही सोच लिया है। और कोई है नीला गमछा वाला? आप लोगों भी लाल लाले हैं तो जाइए वहां से लीजिए। अभी बहस शुरू नहीं हुई है, लाल गमछा लेने के लिए सब तैयार हो गए।

0: जब बोलते हैं तो ज्यादा सुर संगीत दिखता नहीं है। संगीत रागी जी बहुत स्वागत है आपका। आशुतोष जी पॉलिटिकल एनालिस्ट के तौर पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। एक वो दौर भी था जब टीवी पर यहाँ पर वो रहते थे जहाँ पर मैं हूँ, लेकिन यहाँ से पहुंचते पहुंचते आज कुर्सी में उस छोर पर बैठे हैं। हम तो आपका हित चाहते हैं, आप अपना क्या चाहते हैं हमें पता नहीं। चलिए इस बहस की हम शुरुआत करें। क्या घुसपैठियों को भारतीय जनता पार्टी ने चुनावी हथियार बना लिया है? पहले ये रिपोर्ट देखिए।
1: आज की बहस का मकसद और आधार बना है बीजेपी की केंद्र और राज्य की सरकारों का घुसपैठियों के खिलाफ महा एक्शन। जैसे ही बंगाल में बीजेपी को सत्ता मिली, घुसपैठ और घुसपैठियों के खिलाफ एक्शन शुरू हो गया। ये एक्शन सिर्फ बंगाल में नहीं बल्कि देश भर में शुरू हो गया।
2: गुंडागर्दी, हिंसा, सिंडिकेट, भ्रष्टाचार, कट मनी, ये जो त्रास था बंगाल की जनता पर, हमारे नए मुख्यमंत्री के चार्ज लेते ही कुछ ही महीनों में सारा समाप्त हो जाएगा।
1: घुसपैठियों के खिलाफ एक्शन पर विपक्ष सरकार पर बेवजह हल्ला मचाने का आरोप लगा रहा है।
3: एक दो तीन लगातार तीन दफे हिंदुस्तान की सरकार आप लोग ही बनाए हैं, आप लोग ही चलाते हैं, देश की प्रधानमंत्री आपका पार्टी के ही है। तो इतने दिन बांग्लादेशियों को भगाने के लिए किसने आपको रोका था? किसने रोका था? अजीब सी लग रहा है कि अचानक
1: बीजेपी घुसपैठियों को देश के लिए दीमक बता रही है, तो विपक्ष इसे बीजेपी का चुनावी एजेंडा। इसीलिए आज हम पूछेंगे कि क्या घुसपैठियों को बीजेपी ने चुनावी हथियार बना लिया है।
0: आइए तालियों के साथ पहले दो वक्ताओं का स्वागत करते हैं। रोहन गुप्ता जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। अनिल यादव जी तालियों के साथ आपका भी बहुत बहुत स्वागत। आप दोनों मुझे लगता है पहली बार शामिल हो रहे हैं।
4: नहीं, मैं पहले
0: आया। आप आ चुके हैं यादव जी, आज गुप्ता जी पहली बार आ रहे हैं। रोहन जी, तो आज का विषय है कि क्या घुसपैठियों को भारतीय जनता पार्टी ने चुनावी हथियार बना लिया है। आपका समर्थन करने वाले लोग यहाँ हैं जो मानते हैं कि राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा है, ये आपके हाथ का हथियार नहीं है। ये नीले गमछे वाले लोग जिसमें पहले ही डिबेट इंट्रोड्यूस करते ही कुछ लोगों ने गमछा बदल लिया है, तो आज आपके लिए पिच अनुकूल दिखाई दे रहा है मुझे। लेकिन यहां पर नीले गमछे वाले लोग मानते हैं कि आपने इसको सिर्फ पॉलिटिकल एजेंडा बना लिया है। तो इस मोशन पर बोलने का आपका 1.5 मिनट का समय शुरू होता है अब।
5: देखिए, मुझे लगता है अंजना जी, एक कहावत से शुरुआत करूंगा कि सरहदें चीखती हैं, सुरक्षा रोती है, जब देश में घुसपैठियों के नाम पे राजनीति होती है। देखिए, घुसपैठ का मुद्दा है, मुझे नहीं लगता है कोई ये डिबेट का मुद्दा है। जैसे आपने सही कहा कि कोई भी आदमी यहाँ पे, कोई भी भारत का नागरिक युवा बैठा है, घुसपैठ के मुद्दे पे तो बात ही नहीं है, ये तो राष्ट्र की नीति की बात है। जब राष्ट्र की नीति की मुद्दे को राजनीति में तब्दील किया जाए तब ये होता है। 60 साल तक तुष्टिकरण की राजनीति करके कांग्रेस और उनके साथी दलों ने तुष्टिकरण के नाम पे घुसपैठ की राजनीति का उपयोग किया। मुझे बताइए, कोई भी नागरिक, आप भी यहाँ पे बैठे हैं, क्या आप चाहेंगे देश के अंदर घुसपैठी हो? कोई भी नहीं चाहेगा। तब आप घुसपैठियों के नाम पर राजनीति करके उनके साथ में रह के जब राजनीति करते हैं तब देश की जनता उसके सामने खड़ी होती है। और उसका पर्चा आपने देखा होगा, पश्चिम बंगाल में जनता ने करके दिखाया, जो इतने 60 साल में नहीं हुआ, जनता ने 20 दिन में करके दिखाया। क्या सारे घुसपैठी हकीमपुर बॉर्डर पर खड़े? देश के प्रधानमंत्री को किसी ने गद्दार कहा? देश के गृहमंत्री को किसी ने गद्दार कहा? क्या मुझे बताइए कि देश को घुसपैठिया मुक्त बनाना इससे गद्दारी है? क्या मुझे बताइए कि 600 किलोमीटर, 600 हेक्टेयर जमीन BSF को देना, क्या यह गद्दारी है? देश को नक्सल मुक्त करना क्या ये गद्दारी है? मैं बताता हूं गद्दारी क्या होती है। गद्दारी वो होती है तब बार बार गृह मंत्री के बोलने के बावजूद भी आप 550 किलोमीटर की जमीन बॉर्डर के लिए नहीं देते। गद्दारी वो होती है कि जब भी आपको मौका मिलता है कब घुसपैठियों के सहारे पे आप अपनी राजनीति करते हैं। गद्दारी वो होती है जब SIR जैसी प्रक्रिया जो घुसपैठियों को आइडेंटिफाई करता है इनिशियली, उसके सामने भी आप खड़े रहते हैं। आपको शर्म आनी चाहिए, ये देश की राजनीति का मुद्दा नहीं है, राष्ट्र नीति का मुद्दा है। और जब भी देश में जिस प्रकार की राजनीति होती है जनता उसका प्रतिकार करती है। जिन्होंने भी घुसपैठियों को जिन्होंने भी घुसपैठियों खिलाई मलाई, जनता ने की उसकी धुलाई। और अब सारे घुसपैठे जाएंगे बॉर्डर पार, अगली बार भाजपा सरकार।
0: भाई ओपनिंग बैट्समैन ने इधर से बॉर्डर संभाल लिया है, धुआंधार बल्लेबाजी हुई है। और ऐसी ही धुआंधार बल्लेबाजी हमें उम्मीद है अनिल यादव भी करेंगे। आपका इस विषय पर बोलने का 1.5 मिनट का समय शुरू होता है अब।
4: देखिए, मैं समझता हूं कि घुसपैठ जो है वो किसी भी देश के लिए हानिकारक है और हर सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि घुसपैठ को रोके और जो घुसपैठिए आए हुए हैं उनको वापस उनके जगह पे पहुंचाए। इसी कड़ी में जब कांग्रेस की सरकार थी तो हम लोगों ने अपने कार्यकाल

0: में लगभग 90,000 घुसपैठियों को वापस पहुंचाया। वहीं भारतीय जनता पार्टी का, और मैं सरकारी आंकड़ों की बात कर रहा हूं, मैं अपने साथी की तरह शेर व शायरी नहीं बताऊंगा, मैं तथ्यों की बात करूंगा और वही आंकड़े जो सरकार ने दे रखे हैं। इनकी सरकार आई है तो 2019 तक कुल 2600 लोगों के वापस कर पाए। और बातें देखिए, डींगे देखिए कितने बड़े बड़े हांक रहे हैं। देश के गृहमंत्री कहते हैं कि भाई आज मैंने हाई लेवल कमेटी बना दी है। अरे भैया, 12 साल से सरकार थी आपकी, क्या कर रहे थे आप? 7 साल उसमें गृहमंत्री रहे, 5 साल पहले राजनाथ सिंह थे, किसी और की जिम्मेदारी थोड़ी थी। बीएसएफ आपके अंडर आता है, आपका फुल कंट्रोल है, उसके बाद आपसे घुसपैठियां नहीं रुक रहे हैं, तो ये आपकी नाकामयाबी है। और मैं समझता हूं, देखिए पूरे देश का इन्होंने मजाक बना दिया है। घुसपैठ जैसे मुद्दे को चुनावों में इन्होंने वोट के लिए इस्तेमाल किया, और आज इस्तेमाल पता है किस लिए कर रहे हैं? इसलिए क्योंकि आज जगह जगह पर लोग पेट्रोल डीजल की मार झेल रहे हैं, उनकी चेहरे दिख रहे हैं, परेशान दिख रहे हैं, और वो कांग्रेस के शासन को याद कर रहे हैं। तो उन लोगों का ध्यान भटकाने के लिए वापस से घुसपैठ का मुद्दा ले आए हैं। अरे भाई, मुद्दा क्यों बताना क्या है, ये आपका काम है। किस बात के लिए ताली बजाएं हम आपकी कि हाई लेवल कमेटी बना दी है? आपका काम है, जिम्मेदारी है, निभाइए उसको। आपको इसमें भवावाई क्यों चाहिए? मैं समझता हूं कि आज पूरे देश का इन्होंने हर विभाग का, आप शिक्षा मंत्री को देखिए, वो कहते हैं कि भाई सीबीएसई के पेपर लीक की मार्कशीट खराब हो गई, नीट के पेपर लीक हो गए, लेकिन
1: समय से
0: आप बस 10 सेकंड दे दीजिए, पूरी बात हो जाए, लेकिन उसके बाद कहते हैं कि कार्रवाई करेंगे। अरे कार्रवाई तो आप पे होनी चाहिए, आप जिम्मेदार है, किस पे करेंगे कार्रवाई? मजाक बना दिया है सरकार, थोड़ी मजाक चल रहा है।
1: दोनों तरफ से धुआंधार ओपनिंग हुई है, धुआंधार ओपनिंग हुई है। चलिए, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। अगले राउंड में देखते हैं आप लोगों को कितना कन्विंस करते हैं। अब दो वकीलों को आपस में बहस करते हम देखेंगे। अश्विनी उपाध्याय जी आ जाइए और विकास गुप्ता जी आ जाइए, आप यहीं खड़े हो जाइए। लीजिए भाई, उधर से गमछा बदला जा रहा है, सफेद। दो प्यार के शांति के पक्षी, अच्छा नहीं, दो नीले ले रहे हैं, नीले ले रहे हैं, वाह। आइए, इधर बैठेंगे, उधर बैठेंगे, उधर। पहन लो बाबू, गले में पहन लो। हाँ, या अब लग गए हो पूरे हीरो। चलिए, अब इस विषय पर बोलने का दो वकीलों को वक्त दिया जा रहा है, कानून के नजरिए से वो क्या बोलते हैं, आपका इस विषय पर बोलने का। अश्विनी उपाध्याय जी, 1.5 मिनट का समय शुरू होता है अब।
2: भारत में 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश होंगे, टोटल होगा 36। 36 में से 9 राज्यों की डेमोग्राफी बदल चुकी है, यानी 25% राज्यों की डेमोग्राफी बदल चुकी है। भारत में 800 जिले हैं, उसमें से 200 जिलों की डेमोग्राफी बदल गई है, इसका मतलब 25% जिलों की डेमोग्राफी बदल चुकी है। भारत में 6000 तहसीलें हैं, उसमें से 1500 तहसीलों की डेमोग्राफी बदल गई, इसका मतलब 25% तहसीलों की डेमोग्राफी बदल चुकी है। भारत के बॉर्डर पर टोटल 300 तहसीलें हैं, उनमें 300 की 300 तहसीलों की डेमोग्राफी बदल चुकी है, यानी 25 बॉर्डर की 100% तहसीलों की डेमोग्राफी बदल चुकी है। घुसपैठ में मैंने 2017 में पीएल फाइल किया था और राज्यवार मैंने आंकड़े दिए थे कि भारत में 5 करोड़ घुसपैठिए हैं। 2026 चल रहा है, किसी राज्य सरकार ने, चाहे वो लेफ्ट की सरकार हो या राइट की सरकार, किसी ने सुप्रीम कोर्ट में ये नहीं आके कहा कि जो मैंने आंकड़े दिए हैं गलत दिए हैं। तो भारत की डेमोग्राफी बदलने का 5 कारण है, लब जिहाद, लैंड जिहाद, घुसपैठ जिहाद, धर्मांतरण जिहाद, जनसंख्या जिहाद। भारत में प्रतिवर्ष 5 लाख बहन बेटियां गायब हो रही हैं, 5 लाख में से 1.5 लाख वापस मिल जाती हैं पुलिस के प्रयास के बाद, 3.5 लाख बहन बेटियां साल में मिली नहीं रही हैं, इसका मतलब प्रतिदिन 1000 बेटियां लब जिहाद का शिकार हो रही हैं। भारत में प्रतिदिन 1500 परिवारों का धर्मांतरण हो रहा है, एक परिवार में 7 आदमी मान के चलिए तो प्रतिदिन 10,000 हिंदुओं का धर्मांतरण हो रहा है, यानी साल में 40 लाख हिंदुओं का धर्मांतरण हो रहा है। 5 करोड़ घुसपैठिए आके बैठे हुए हैं। 90,000 बच्चे रोज पैदा हो रहे हैं, यानी साल में 3.25 करोड़ बच्चे पैदा हो रहे हैं। 1 पंचवर्षीय योजना में लगभग 17 करोड़ बच्चे पैदा हो रहे हैं। डेमोग्राफी बदलने का मूल कारण है लब जिहाद, लैंड जिहाद, धर्मांतरण, घुसपैठ, जनसंख्या विस्फोट, और घुसपैठ का मूल कारण है घुसखोरी। घुसपैठिए बॉर्डर पे 2000 रुपए दे के अंदर आते हैं, अंदर आके 2000 में राशन कार्ड, 2000 में ड्राइविंग लाइसेंस, 2000 में बर्थ सर्टिफिकेट, 2000 में ऐसे 8 से 10 हजार रुपए खर्च करते हैं डॉक्यूमेंट बनवाने।
1: बहुत अच्छा, मिडिल ऑर्डर ने इधर से भी अच्छा संभाला है, ठीक खेल रहे हैं। उधर से रागी जी कह, हाँ हाँ, ठीक मारा है, ठीक मारा। चलिए, आपका समय शुरू होता है 1.5 मिनट का, विकास जी आप।
3: घुसपैठ एक समस्या है और जिस समस्या का निवारण करने के लिए केंद्र सरकार जिम्मेवार है, तो सरकार का काम है, लेकिन क्या इसे एक चुनावी मुद्दा बनाना चाहिए? मुझे याद आता है 2014 गुजरात से एक आदमी उठा जिसने कहा कि मुझे 60 महीने दीजिए, मैं आपको प्रतिवर्ष 2 करोड़ नौकरियां दूंगा। और इस संदर्भ में मैं इस बात को अवश्य कहना चाहूंगा क्योंकि आप सब यूथ यहां पे हैं, जनधन की योजना आई, अकाउंट तो खुले लेकिन उसमें धन नहीं है। 100 स्मार्ट सिटी का निर्माण हुआ और मैं आपको एक बात कहना चाहूंगा कि अगर देश में 100 स्मार्ट सिटी होती तो 40 करोड़ लोग मिडिल क्लास में आ गए होते, उन्हें दर दर नौकरी के भटकने के लिए आवश्यकता नहीं करनी पड़ती। आपने जल स्रोतों को स्वच्छ बनाने की बात करी, स्वच्छ भारत की बात करी, किसानों की आय को दुगना करने की बात करी। मैं इन सबको तो इलेक्शन का मुद्दा मान सकता हूं, लेकिन जब आप पिछले 12 साल में इन सारी बातों पे विफल हो गए, तो अब आप आज लाल किले की प्राचीर से कह रहे हैं कि हमें घुसपैठ को हटाना है और उसे चुनावी मुद्दा जो बनाना है, मुझे लगता है वो कहीं ना कहीं सही नहीं है, क्योंकि चुनाव मुद्दों पे होने चाहिए। घुसपैठ देश की सुरक्षा की बात है, जिसे सरकार को अपने आप बिना किसी के कहे पूछे उसका निवारण करना चाहिए। तो मुझे लगता है कि चुनावी मुद्दा इसको बनाया जा रहा है और आप सबको सचेत होना चाहिए। आप सब कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स हैं, स्कूल गोइंग स्टूडेंट्स हैं, आपको अपने अधिकारों की मांग करनी चाहिए।
1: वाह, बहुत अच्छा। कोई सवाल आप लोगों के जजेस के इन दोनों में से?
4: जी, मेरे सवाल आप दोनों विद्वान अधिवक्ता गणों से हैं। मैं देखता हूं कि आपके ओजस्वी वक्तव्य के बाद वचनम किम दंडिता बातों से कब तक खुश करेंगे आप दोनों। क्या आपने किसी सरकारी अफसर, किसी राजनेता के ऊपर यूएपीए का मुकदमा लिखा? ये वैक्यूम में तो नहीं आ जाते हैं, ये लाए जाते हैं, बसाए जाते हैं और हमारे देश को धर्मशाला बनाया इन्होंने।
1: क्या बात, क्या
2: बिल्कुल
1: बात?
2: जहां तक सर आपकी बात है, आपने जो नेताओं पे इशारा किया, मैंने पूरे पीआईएल के माध्यम से पूरे देश में एमएलए एमपी कोर्ट बनवाया और अब तक 500 सांसदों विधायकों की सदस्यता जा चुकी है। वो सारे जेल के बाहर हो चुके हैं, दोबारा चुनाव भी नहीं लड़ पाएंगे, वो मेरी पीआईएल के माध्यम से हुआ है। जहां तक ये घुसपैठ की,
1: कौन से सांसद?
2: 500 सांसद विधायक,
1: नाम बताइए।
2: आजम खान, अब्दुल्ला आजम, मुख्तार अंसारी। नहीं, नहीं लड़ सकते अब
1: इस मुद्दे पे।
2: इसी नहीं, नहीं इस मुद्दे पे नहीं, टोटल एमएलए एमपी कोर्ट के माध्यम से उनके मुकदमे चलते नहीं थे।
1: अलग अलग
2: एमएलएमपी के मुकदमे चलते नहीं थे, लेकिन उनके ऊपर और भी आरोप हुए तो उनके सजा हो गई। जहां तक सर इसकी बात है, मैंने अपनी जो पीआईएल फाइल किया उसमें कहा है कि आप घुसपैठ को राष्ट्र की सुरक्षा के लिए खतरा घोषित करिए, जिससे कि पुलिस एनएसए लगाए। अभी एनएसए लग नहीं रहा है। घुसपैठ को आप अनलॉफुल एक्टिविटी डिक्लेयर करिए, जिससे यूएपीए लगना शुरू हो जाए। अभी लग नहीं रहा।
1: उनको मान लीजिए, काउंटर क्वेश्चन मेरा है, फिर एनएसए लगा दिया आपने, उनको जेल में बंद कर दिया
2: जी,
1: फिर क्या करेंगे? कितने जेलों में रखेंगे?
2: नहीं, ऐसा होता है रंजना जी,
1: डिटेंशन सेंटर्स हमारे तैयार
2: हैं। मैं आपको बता रहा हूँ, आपके घर में अगर 20 मच्छर आ जाएं तो आप एक मच्छर को मारिए, 19 मच्छर अपने आप भाग जाएंगे। आपके घर में 20 चूहे आ जाएं, एक चूहे को मारिए, 19 चूहे अपने आप भाग जाएंगे। ऐसे ही घुसपैठियों को जेल में भेजने से पहले ज्यादा जरूरी है घुसपैठियों का आधार बनाने वालों को, घुसपैठियों का राशन कार्ड बनाने वालों को, घुसपैठियों का बर्थ सर्टिफिकेट बनाने वालों को, घुसपैठियों का ड्राइविंग लाइसेंस बनाने वालों का, घुसपैठियों को वोटर आईडी। केवल जो भारत में घुसपैठियों की मदद करते हैं, पार्षद, प्रधान, सांसद, विधायक, इनको जेल में डालिए, घुसपैठी अपने आप भाग जाएंगे, एनआरसी की जरूरत ही नहीं पड़ेगी।
1: माफिया तोड़ना होगा।
5: मेरा प्रश्न तो पूरी पॉलिटिकल क्लास से है हमारे देश की, क्योंकि ये जो घुसपैठ का मुद्दा है, ये एक नेशनल सिक्योरिटी का मुद्दा है, जो हमारे देश के लिए इस समय सबसे बड़ा खतरा इन सब बच्चों के लिए है, क्योंकि हम लोग की तो नौकरी लग गई, इनकी नौकरी में समस्या आएगी, क्योंकि वो घुसपैठिए वो नौकरी खाएंगे, वो घुसपैठिए इनकी जगह लेंगे, और ये इस देश के लिए बड़ी समस्या है। इस पर कांग्रेस, बीजेपी, टीएमसी तो होना ही नहीं चाहिए। ये जो वोट बैंक की राजनीति है, इस पर हमारे पॉलिटिकल क्लास को एक होना चाहिए। अनफॉर्चुनेटली वो नहीं हो पा रहा है।
1: मतलब आप ये कह रहे हैं कि इस मुद्दे पर अनिल यादव की पार्टी सड़कों पर निकले विरोध करने,
5: अनिल यादव की पार्टी,
1: आंदोलन छेड़े बीजेपी के खिलाफ,
5: रोहन गुप्ता की पार्टी, सबको एकमत होना पड़ेगा। क्यों? मेरे को मालूम है कि वोट बैंक की राजनीति होती है, लेकिन वोट बैंक की राजनीति में हमारे देश का नुकसान होता है।
1: अनिल जी नहीं बोलेंगे,
5: वो अनिल जी को सोचना होगा।
1: क्योंकि
5: अनिल जी अगर बोल रहे हैं, अगर ये 5 करोड़ का आंकड़ा है, 5 करोड़ आ गए, आपने 90,000 भेज दिया, तो आपने सागर में से एक बाल्टी निकाल के वापस भेज दी। सागर तो आपके देश में आ रखा है ना, आपके बॉर्डर बेल्ट में,
1: डेमोग्राफिक प्रोफाइल।
5: और ये आज की बात नहीं है।
1: एक सेकंड, ये 5 करोड़ कहां से आया आपके पास?
2: 5 करोड़ आया, 2 करोड़ तो बताया था लोकसभा में, बताया था उस समय के गृह राज्य मंत्री जी ने, कांग्रेस के समय में, वो जायसवाल जी थे कानपुर वाले,
1: श्री प्रकाश
2: जायसवाल जी। उसके बाद किरण रिजिजू जी ने दोबारा उसको 2 करोड़ बताया था। मैंने उस पर और रिसर्च किया, राज्यवार मैंने आंकड़े दिए कि कितना यहाँ पे,
1: 11 के सेंसस के आधार पे उन्होंने बताया,
2: उन्होंने 11 के सेंसस बताया था।
5: जनरल एस के सिन्हा की जो रिपोर्ट थी असम पर,
2: 1971 की रिपोर्ट,
5: कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट, जनरल एस के सिन्हा गवर्नर थे असम के, जनरल एस के सिन्हा ने अपनी रिपोर्ट में कहा था बॉर्डर बेल्ट में आई कांट रिकॉग्नाइज वर्ड्स टू दैट इफेक्ट, कि ये भारत है या ये बांग्लादेश है, इतनी डेमोग्राफिक प्रोफाइल बदल गई है। तब से अब तक हम 90,000 लोगों की बात या 2,000 लोगों की बात कर रहे हैं।
1: आपका दोनों का बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। चलिए संगीत रागी जी, इस विषय पर बोलने का शुरुआती 1.5 मिनट का आपका समय शुरू होता है अब। क्या घुसपैठियों को बीजेपी ने चुनावी हथियार बना लिया है? टॉपिक पर रहिएगा 90 सेकंड।
6: देखिए बिल्कुल नहीं, मुझे लगता है ये राष्ट्रीय महत्व का मुद्दा है, देश की सुरक्षा का मुद्दा है, और हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि 1947 में देश का विभाजन जो है वो धर्म के आधार पर हुआ। अभी यहाँ पर कहा गया कि 85,000 कांग्रेस पार्टी के समय आए। आपको जानकारी में बता दूं कि हितेश्वर साकिया थे जो उन्होंने मुख्यमंत्री थे आसाम के, और कांग्रेस के मुख्यमंत्री थे, उन्होंने कहा कि 3 मिलियंस यानी 30 लाख बांग्लादेशी घुसपैठिए सिर्फ आसाम में आ गए हैं। इंद्रजीत गुप्ता जो कांग्रेस पार्टी के साथ सरकार में थे केंद्र के अंदर, और वो सीपीआई के थे, ऐसा नहीं था कि बीजेपी और बीजेपी रिलेटेड पार्टियों से थे, सीपीआई के गृह मंत्री रहते हुए केंद्र में रहते उन्होंने कहा कि 1 करोड़ घुसपैठी है। आसाम के एक मंत्री हुआ करते थे देवकांत बरुआ, कांग्रेस से हुआ करते थे, वो कहते थे हमारे यहाँ घुसपैठिए इतने आ गए हैं, अली और कुली के सहारे हम देश में ये करते हैं, हम शासन चलाते हैं। ये आसाम के बारे में देवकांत बरुआ ने कहा था। अब जरा आ जाते हैं शिवप्रकाश जायसवाल के बाद, 2000 में पिटीशन फाइल किया था सर्बानंद सोनोवाल ने आसाम के अंदर, तब जाकर के आपको पता लगा 2005 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आपने 1983 के अंदर जो IMDT एक्ट लाया था वो घुसपैठियों को बचाने के लिए कांग्रेस पार्टी ने लाया है, घुसपैठियों को बाहर निकालने के लिए नहीं, क्योंकि जो सिटीजनशिप का एक्ट है, जो फॉरनर्स एक्ट 1946 था, वो दो प्रकार का है। यहाँ पर ओनस किसको दिया गया? जो बगल के पड़ोसी को जताना पड़ेगा, बताना पड़ेगा कि ये आदमी घुसपैठिया है, और उसको साबित भी करना पड़ेगा, यानी कांग्रेस पार्टी ने उनको सुरक्षा दे करके इस देश में बसाया है घुसपैठियों को।
1: 26 से आए ही नहीं सर, उधर ही रह गए, 11 में ही फंस के रह गए।
7: 1 मिनट का आपने टाइम दिया, पहले 2 मिनट होता था।
1: हाँ, तो हमने इसीलिए 1.5 मिनट किया है, क्योंकि आप लोग जितना समय दीजिए उतना ही दाएं बाएं खिसकने लगते हैं।
6: मास्टर को तो बैकग्राउंड बनाने में ही लग जाता है।
1: यही प्रॉब्लम है मास्टर के साथ, बच्चे कब सो जाते हैं उनको पता भी नहीं चलता। आशुतोष जी, आपका इस विषय पर बोलने का टाइमर लगा दूं, 90 सेकंड का टाइम शुरू होता है अब।
7: मैं आज कोई तकरीर नहीं करूंगा, मैं सिर्फ इतनी सी बात कहूंगा कि हमारे जो साथी हैं इन्होंने दरअसल मेरे उस मिथ को तोड़ दिया जब मैं मानता था कि नरेंद्र मोदी की सरकार इस देश की सबसे कॉम्पिटेंट सरकार है। इन लोगों ने साबित कर दिया कि सबसे कॉम्पिटेंट सरकार नहीं है, क्योंकि जो कुछ गिना रहे हैं उन 12 सालों में उसका निराकरण होना चाहिए। तो मैं सिर्फ आपको 5 साल का डेटा 2004 से लेकर 2009 और 2014 से 2019, अगर वाकई में घुसपैठियों के प्रति ईमानदार सरकार होती तो उनकी पहचान करके उनको अब तक देश के बाहर निकाल दिया गया होता, ये दर्शक तय करेंगे। 2005 में मनमोहन सिंह की सरकार ने 14,916 लोगों घुसपैठियों को बाहर भेजा, 2006 में 13,692, 2008 में 12,135, 2009 में 10,602। अब आप इसका तुलना करिए, 2014 989, 2015 474, 2016 308, 2017 सोच नहीं सकते सिर्फ 51, और 2018 445, 2019 299। अगर यह सरकार ईमानदार होती घुसपैठिए के मुद्दे को लेकर, तो मनमोहन सिंह की सरकार में अगर 50,000 के आसपास 5 साल के लोगों को घुसपैठियों को बाहर भेजा गया, तो नरेंद्र मोदी जी की सरकार में वह आंकड़ा 2000 पर भी नहीं आता, 2500 पे आके रुक जाता है। क्यों? अगर आप वाकई में आपके लिए चुनाव में मुद्दा नहीं है, और आपने कहा झारखंड में बड़े बड़े घुसपैठिए थे, चुनाव के बाद कितनों की पहचान हुई, SIR की कितनी पहचान हुई।
1: क्लोजिंग दोनों तरफ से जबरदस्त है, जबरदस्त है, जबरदस्त, बहुत अच्छा, दोनों ने बहुत अच्छा बोला। हाँ, बीच में बहुत परेशान हो रहे थे जब ये कुछ कुछ कह रहे थे, तो हमारे कान में फुसफुसा रहे, हमें कहीं जजेस नहीं सुन रहे, तो कोई फायदा नहीं। अब हो गया, अब हो गया, अब सवाल पूछेंगे।
4: ध्यान से सुने, उसका उत्तर बिंदुवार दीजिएगा। ये कोई रॉकेट साइंस नहीं, अगर हम गंभीर होते और इच्छा शक्ति होती, सबसे पहले इनको लाइन में खड़ा करके वोटिंग राइट समाप्त आपके हाथ से, दूसरे जो भी सरकारी संसाधन आपको मिल रहे हैं, उज्ज्वला योजना, गैस योजना और फ्री राशन, ये बंद आज से। आपको केवल एक अधिकार होगा, नागरिकता समाप्त हो ही गई, केवल जो बेसिक ह्यूमन राइट्स आपके हैं वही रहेंगे, बाकी आपके तमाम राइट्स। लेकिन राजनीतिक तुष्टिकरण को हम किस पराकाष्ठा पे ले गए कि हमने उनको वो सब सुविधाएं दी जो हमारे नागरिकों के नहीं है, और एक प्रधानमंत्री के सबसे पहले संसाधन ये इन लोगों को दिए जाएंगे।
1: देखिए विनोद जी, एक साथ ले लेते हैं। विनोद जी,
8: ये घुसपैठ का मुद्दा जो है चुनाव के समय ही आता है, जब किसी भी राज्य में चुनाव होते हैं, बिहार में चुनाव हो तो घुसपैठ, झारखंड में चुनाव हो तो घुसपैठ, पश्चिम बंगाल में हो चुनाव हो तो घुसपैठ। अभी हाल में एक होम मिनिस्ट्री ने एक कमेटी बनाई है डेमोग्राफिक चेंजेस को स्टडी करने के लिए और उस पर रिपोर्ट देने के लिए। उस कमेटी का अगर आप टर्म्स ऑफ रेफरेंस देखें तो उसमें खाली घुसपैठ की वजह से जो डेमोक्रेटिक चेंजेस वही नहीं है, उसमें जो माइग्रेशन है मतलब देश के अंदर भी वो भी उसमें शामिल है। तो कुल मिलाकर के डेमोग्राफी खाली घुसपैठ से बदल रही हो ऐसा नहीं है, डेमोग्राफी राज्यों की बदल रही तमाम सारे कारणों से। इस पर क्या कहना है आप लोग?
5: गौरव, एक प्रश्न अगर मैं भी, और क्योंकि प्रश्न हमेशा सत्ता पक्ष से पूछा जाता है, मैं सत्ता और विपक्ष दोनों से, क्योंकि ये राष्ट्र नीति का प्रश्न है, तो इसमें सत्ता और विपक्ष को एक मत हम क्यों नहीं कर पाते हैं कि सत्ता और विपक्ष मिलकर इस एक मुद्दे को डिसाइड करें कि तुमने नहीं किया और तुमने नहीं किया, बिल्कुल दोनों ने नहीं किया, लेकिन नुकसान किसका है? नुकसान आपकी भावी पीढ़ी का है, तो उस भावी पीढ़ी के आगे के नुकसान को रोकने के लिए क्या वो कारगर कदम अब एक राष्ट्र नीति के तौर पर उठाए जाने की आवश्यकता है?
6: देखिए, मुझे लगता है विनोद जी ने भारतीय जनता पार्टी के नेशनल एग्जीक्यूटिव का रेजोल्यूशन नहीं पढ़ा है। यदि 1971 से बाद से जितने भी रेजोल्यूशन है भारतीय जनता पार्टी के, 92, 93, 94, एक एक उठा करके देखिए, बांग्लादेशी घुसपैठियों का मुद्दा हर नेशनल एग्जीक्यूटिव में रेजोल्यूशन में भारतीय जनता पार्टी है। 2011 में भी, अभी तक की मैं बात कर रहा हूं, जब नरेंद्र 2014 में नरेंद्र मोदी चुनाव में लेकर के आए, 2011 में भी था, और यही बात राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के जितने भी रेजोल्यूशंस हैं, यदि 1971 के बाद से आप निकाल करके देखेंगे, बांग्लादेशी घुसपैठियों का मुद्दा हमेशा बनाए रखा है। दूसरी बात जिक्र कर देना चाहता हूं, अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी, बांग्लादेशी को घुसपैठियों को बाहर
9: नहीं,
6: बांग्लादेशी घुसपैठियों को बाहर भेजने के लिए कवायद की, महाराष्ट्र से बांग्लादेशी घुसपैठियों को ट्रेन में रख करके बांग्लादेश बॉर्डर की तरह, कौन विरोध करने आ रहा है? समाजवादी पार्टी विरोध करने आई। कौन विरोध करने आ रहा है? कांग्रेस पार्टी विरोध करने आई। कौन विरोध करने आ रहा है? ये जितने विपक्षी गिरोह के लोग थे, ये जितने गिरोहबंद नेता हैं, उसमें ये भी चंद्रबाबू नायडू भी जो आज भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं, वो भी उस समय उनका विरोध करने के लिए आ गए। आज के दिन में यदि सीएए की बात की जाती है, एनआरसी की बात की जाती है, तो इसीलिए आप कहते हैं एक इंस्टीट्यूशनल व्यवस्था करने की बात थी। ये 2000, 4000 और 5000 जब आप करते हैं ना कि हमारी कांग्रेस पार्टी ने ये किया और भारतीय जनता पार्टी ने किया, मैं उसको नहीं मानता। इंस्टीट्यूशनल व्यवस्था करने की जरूरत है, जहां आपको पांच
9: मानेंगे
6: नहीं, इसलिए मानेंगे क्योंकि
9: वो वक्त में ज्यादा लोग भेजे गए। एंड गोल क्या है? घुसपैठियों को वापस भेजना? अरे आप ही का मौका है घुसपैठियों को भेजना। अरे भाई, तो तुलना तो की जाएगी ना कि उन्होंने ज्यादा भेजा जो नंबर्स इन्होंने, आपने कम भेजा, इस पर कोई तो जवाब होगा।
6: हाँ, मैं आपको बताता हूँ। हाँ। सुप्रीम कोर्ट ने इसका बढ़िया अच्छा जवाब दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने 2012 में कहा कि जिस रफ्तार से कांग्रेस पार्टी ने और जिस तरीका लगाया है IMDT एक्ट, 300 साल लग जाएंगे बांग्लादेशी घुसपैठियों को डिटेक्ट करने में और उनको बाहर घसाने में। ये सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट में बता रहा हूँ।
7: मैं संगीत रागी जी की भावनाओं से 100% नहीं, 1000% सहमत हूँ। दिक्कत क्या है कि भारतीय जनता पार्टी इतनी कॉम्पिटेंट पार्टी है कि सिर्फ रिजोल्यूशन ही पास करती रहती है, सिर्फ रिजोल्यूशन पास कर रही। और अमित शाह ने
6: जनता पार्टी केंद्र में सत्ता में नहीं थी सर,
7: मैंने नहीं माना था, मैं
6: मनमोहन सिंह जी सत्ता में थे।
7: देखो, ये तो काउंटर हो
9: गया, ये गलत बात है।
7: अमित शाह जी पार्टी के अध्यक्ष थे 2016 में, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में माना था कि अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार घुसपैठियों के मसले पर नाकामयाब रही। अभी गूगल करके आपको मिल जाएगा, कारण भी बता दूंगा। इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क की बात करते हैं, असम के अंदर इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क था, घुसपैठियों की पहचान की जा रही थी, शुरुआत में 45 लाख, फिर फिल्टर किया गया, 19.6 लाख घुसपैठिए पहचान किए गए, फिर फिल्टर किया गया, 16 लाख लोगों की पहचान हो चुकी है।
9: जल्दी जल्दी, जल्दी, जल्दी, जल्दी
7: 16 लाख लोगों की पहचान हो चुकी है, उनमें से 7 लाख मुसलमान है, 9 लाख के आसपास उसमें हिंदू है। अब चलिए, मैं मान सकता हूं भारतीय जनता पार्टी को हिंदुओं से उसको प्रेम है, मुसलमानों से प्रेम नहीं, तो कम से कम जो 7 लाख घुसपैठियों की पहचान आपने कर रखी असम के अंदर, उसके 10% को तो बाहर कर देते, क्यों नहीं किया आपने? इसका मतलब आपके लिए सिर्फ चुनावी मुद्दा। और तब जब देश के प्रधानमंत्री चुनाव के दौरान कहते हैं ये घुसपैठिए हमारी मां बहनों के मंगल सूत्र को छीन लेंगे, जब देश का प्रधानमंत्री ये कहता है और सिर्फ कहता है और उसके बाद वो अमल में नहीं होता है, तो क्यों ना माना जाए कि ये सिर्फ और सिर्फ चुनावी मुद्दा है।
9: बहुत धन्यवाद लोगों को भटकाने के लिए। आइए भाई, जल्दी से आइए, जल्दी बैठिए, जल्दी से रिपोर्टिंग राउंड की शुरुआत करते हैं। गुरु जी, गुरु जी, टाइम कम है। रोहन जी आइए फटाफट, अनिल यादव जी जल्दी से, रिपोर्टिंग राउंड है, एक एक मिनट का समय मिलेगा। जो आपका कोई प्रश्न था आप पूछ सकते हैं, जिसको हम लोग अभी शामिल कर ले। पूछे,
5: मेरा प्रश्न इस समय बॉर्डर और बंगाल के बॉर्डर को लेकर है, और मैं क्योंकि इसमें सत्ता और विपक्ष की बात नहीं कर रहा हूं, मैं देश की बात कर रहा हूं। अगर बंगाल में 450 किलोमीटर भूमि की आवश्यकता है और भारत की जो सीमा सुरक्षा बल है वो 10 सालों से मांग कर रही है, 10 सालों से, 2013 के एक्ट को लागू करने के लिए वो 2015 में रिक्वेस्ट करती है स्टेट गवर्नमेंट से, 2016 में रिक्वेस्ट करती है सेंट्रल गवर्नमेंट से, 2026 में जाकर उनको ये लैंड क्यों मिलता है? ये पूरे देश के लिए आज के लिए सबसे बड़ा सवाल क्यों नहीं है? कांग्रेस के लिए बड़ा सवाल क्यों नहीं है?
9: आपका इस विषय पर जवाब देने का गौरव के सवाल का 60 सेकंड का समय शुरू होता है।
0: देखिये, मैं गौरव जी की बात से सहमत हूँ कि राष्ट्र नीति जो है उसमें पक्ष हो या विपक्ष हो दोनों को एक साथ आ जाना चाहिए, लेकिन सवाल यही है कि क्या राष्ट्रनीति जो है वो चुनाव की रैलियों में बनेगी? क्या जब आप वोट मांग रहे होंगे जनता से तब आपको घुसपैठियों का मुद्दा याद आएगा? आखिरकार आपने कब लीडर ऑफ अपोजिशन को या विपक्ष को कहा कि भाई हम एक कमेटी बना रहे हैं, हाई लेवल कमेटी बना रहे हैं, इसमें आप अपने सुझाव दीजिए? नहीं, क्योंकि आपको सिर्फ सिर्फ वोट बटोरना है। जहां तक बंगाल की बात है, क्या सिर्फ घुसपैठियां बंगाल में? दिल्ली के अंदर करोड़ों लोगों की संख्या है, दिल्ली के अंदर आपके सामने घुसपैठियां बैठे हुए आपकी नाक के नीचे, तब आपको नहीं समझ आता कि ये घुसपैठियां हैं? तब अमित शाह जी कहां चले जाते हैं? आप मुझे बताइए, महाराष्ट्र में यही स्थिति है, क्योंकि समस्या यह है कि आपको सिर्फ सिर्फ वोट चाहिए घुसपैठियों से, और इन बच्चों के भविष्य से आपको कोई मतलब नहीं है, आपको सिर्फ वोट चाहिए। जहां तक बंगाल की बात है, छोटी सी बात कहूंगा, वहां तो ये भी कहते थे कि हमें चुनाव नहीं कराने दिया जाता, लेकिन आपने कराया ना, इलेक्शन कमीशन ने कराया ना, कोर्ट की भी मदद ली ना, तो जब अगर आपकी नियत थी जमीन लेने की तो आप कोर्ट क्यों नहीं गए? क्योंकि सिर्फ और सिर्फ चुनाव में इस्तेमाल करना है, सिर्फ और सिर्फ वोट बटोरने और जनता को मूर्ख बनाना
9: है। समाप्त हुआ, वाह, रिबटल राउंड में अब आपका 1 मिनट का समय शुरू होता है। अब
2: देखिए, अभी जो सवाल पूछा उसका कोई जवाब नहीं आया कि ये पहली बार हुआ है कि कोई राज्य सरकार 10 साल तक बीएसएफ ने जगह मांगी और नहीं दे रही है। मुझे लगता नहीं कि इससे बड़ा धोखा देश के साथ हो सकता है। आशुतोष जी ने बहुत बड़ी बड़ी बातें की कि भाजपा ने क्या किया। आपको क्या हकीमपुर बॉर्डर पे दिखा नहीं आपको क्या हो रहा है? 2 दिन से शायद आप लोग आराम में है चुनाव हारने के बाद में, वहां जो भीड़ है आशुतोष जी, आपको बोल के जाता हूं, ये अभी ट्रेलर है, अभी तो मेरे दोस्त पूरी पिक्चर बाकी है। जो छेद आपने पश्चिम बंगाल में छोड़ा था वो अब भर चुका है, अब भाजपा आपको दिखाएगी कि क्या करना है। आपने बहुत बड़े आंकड़े दिए, 2000 5000, भाई जिन लाखों दामादों को आपने यहाँ पे करा था और 2000 को वापस भेज के आप क्या साबित करना चाहते हैं? लाखों करोड़ों में दामाद इकट्ठे किए थे आपने, मैं आपकी सरकार का बताता हूँ, वो दामाद बाहर गए। IMDT एक्ट, मैं आपको बता रहा हूँ क्या धोखा होता है देश के साथ में। इलीगल माइग्रेंट डिटेक्शन एक्ट 1983, सुप्रीम कोर्ट ने उसको 2005 में स्ट्राइक डाउन किया कि अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। उसमें यह कहा गया कि माइग्रेंट नहीं, सामने वाले को साबित करना पड़ेगा ये माइग्रेंट है। किसने किया था? कांग्रेस सरकार ने। श्री प्रकाश जायसवाल को जब संसद में पूछा गया कितने घुसपैठिए, तब उन्होंने आंकड़े दिए 2 राज्य के, आसाम में 50 लाख, बंगाल में 1 मिनट, बंगाल में 57 लाख। उनको आंकड़ा अपना वापस लेना पड़ा क्योंकि तुष्टिकरण की राजनीति चल रही
9: है। दोनों ने भी माइक रख दिया है, एकदम टाइम फिक्स्ड एकदम। अब 60 सेकंड्स के ऊपर नहीं मिलेगा, जल्दी से आए अश्विनी जी, विकास जी, जल्दी से, दोनों लॉयर्स आमने सामने, सबको 1.5 मिनट, 1-1 मिनट का टाइम दिया गया है, उसी में इतना धुआंधार बल्लेबाजी कीजिए और उसमें सेकंड जितने सवाई नहीं किए कि क्लाइम के बीच में रुक गए सोचने लगे। चलिए अश्विनी जी, आपका 1 मिनट का रिबटल राउंड का समय शुरू होता है। अब
2: सवाल यह है अंजना की, चीन में घुसपैठ क्यों नहीं होती, दुबई में घुसपैठ क्यों नहीं होती, इसराइल में घुसपैठ क्यों नहीं होती? जिन देशों ने सठे साठम समाचारे सिद्धांत अपनाया, लोहा लोहे को काटता है सिद्धांत अपनाया, वहां पे घुसपैठ नहीं होती। भारत में घुसपैठियों को मानवाधिकार की बात की जाती है, इसलिए यहाँ भारत में घुसपैठ होती है। सबसे बड़ा देशद्रोह किया गया 2012 में, भारत की सरकार ने, मनमोहन सिंह जी ने बांग्लादेश के साथ एक नॉन लीथल TT किया जो BSF पहले देखते ही गोली मार देता था। 2012 में उसके हाथ पर बांध दिए गए, उसको छड़ी पकड़ा दी गई, डंडा पकड़ा दिया गया कि घुसपैठिया आएगा तुम केवल हवाई फायर करना, गोली मत मारना। ये 2012 में हुआ है, दुर्भाग्यवश वो नॉन लीथल TT आज भी चल रही है, अभी तक खत्म नहीं हुई है। दूसरा, घुसपैठ का मूल कारण है घुसखोरी। चीन में और इसराइल में घुसपैठ करने पर आजीवन कारावास है और घुसपैठियों की मदद करने पर फांसी है। तो जब तक हम घुसपैठियों की मदद करने को जघन्य अपराध नहीं बनाएंगे, जो यहाँ कॉमन सर्विस सेंटर पे 2000 में आधार बन रहा है, जो यहाँ RTO ऑफिस में 3000 रुपए में ड्राइविंग लाइसेंस बन रहा है, जो यहाँ नगर निगम में 2000 रुपए में बर्थ सर्टिफिकेट बन रहा है, जब तक ये घुसखोरी को जघन्य अपराध घोषित नहीं करेंगे।
5: अश्विनी जी जो कह रहे हैं कि अगर रिश्वत दे दे करके हो रहा है, तो मुझे लगता है सबसे पहले तो सरकार को इस बात का संज्ञान लेना चाहिए। अगर घुसपैठिया सिर्फ एक मुद्दा है और इलेक्शन का ही मुद्दा है, तो मुझे लगता है कि उसमें क्या किया गया है, सरकार ने अभी तक क्या कदम उठाए हैं, वो एक बहुत महत्वपूर्ण बात है।
3: यहाँ स्टूडियो में चर्चा या लाल किले के प्राचीर से कहना से बात का समस्या का समाधान नहीं होगा। सरकार ने अभी तक कोई रोड मैप नहीं दिया, 12 साल से सरकार है, कि घुसपैठियों को कैसे रोका जाए, कैसे उनके उन्हें चिन्हित किया जाए और कैसे उन्हें बाहर भेजा जाए। उस ठीक उसी तरह जिस तरह से 2014 में 19 में 24 में जिस तरह से इलेक्शन के मुद्दों में प्रोमिसेस किए गए और वो प्रोमिसेस अनफुलफिल्ड रहे, सिर्फ एक नारे बनकर के रह गए, वो भले ही आपकी 2 करोड़ नौकरियां हो, भले ही वो किसान की आय को दुगना करना हो, भले ही वो 100 स्मार्ट सिटी बनानी हो। अगर मैं ये अवश्य आपको 2 टुक कह सकता हूं कि अगर 100 स्मार्ट सिटीज देश में बन गई होती तो 40 करोड़ मिडिल क्लास पॉपुलेशन खड़ी हो गई होती, गरीबी से जो लोग नीचे।
9: वाह बहुत अच्छा, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद और एकदम अनुशासन से चलने के लिए डबल धन्यवाद। आइए फटाफट आइए संगीत रागी जी, और अब मैं तीनों हिस्सों से लाल गमछे से कोई एक सवाल, लड़की को प्रेफरेंस। आइए
10: मैम, मेरा सवाल यह है कि विपक्ष ने जैसे कहा कि घुसपैठ जो है वो एक मुद्दा नहीं है, लेकिन देश की सुरक्षा क्या वो एक मुद्दा हो सकता है इलेक्शन के टाइम पे? वहाँ पे जो संसाधन है जिसकी विपक्ष खुद कहता है कि कमी पड़ रही है, उस संसाधन की जो कमी है उसे खत्म करने की कोशिश के लिए घुसपैठ हटाए गए, तो इसे इलेक्शन पे एक मुद्दा क्यों नहीं रखा जा सकता?
9: सफेद गमछे वाले शांति प्रिय लोग आइए, मैम आइए। कहाँ
11: मेरा सवाल विपक्ष से है कि जब देश की सुरक्षा, अवैध घुसपैठ और डेमोग्राफिक इम्बैलेंस जैसे मुद्दे सामने हैं, तो फिर क्यों विपक्ष सरकार से वोट बैंक की राजनीति पर सवाल करता है? मुझे लगता है कि ये राष्ट्रीय सुरक्षा का विषय है और पक्ष और विपक्ष को एक होकर काम करना चाहिए।
9: बहुत अच्छा, और आपने ये अच्छा किया है, लाल शर्ट पहन ली है और फिर ऊपर से सफेद गमछा ले लिया है, कुछ तो डेस्टिनी फिक्स था आपका, बहुत अच्छा। चलिए इसका भी जवाब लेंगे नीले गमछे से। कोई लड़की प्रश्न नहीं करना चाहती है, पूछिए मैम।
12: क्या ये घुसपैठ का मुद्दा
9: यहाँ पर तो हो सकता है ना आरक्षण?
12: घुसपैठ का मुद्दा नया तो नहीं है, अचानक से जब 2027 में चुनाव आने वाले हैं तो ये इतना मतलब ऊपर क्यों आ रहा है, मेरा ये क्वेश्चन है।
9: 4 चुनाव से चल रहा है मैम, कहाँ है आप? चलिए अब जवाब लेते हैं। अब हाँ, हमने 100% कर दिया है, आप लोग 33% करने से डरते हैं, इसीलिए हम कहते हैं कि आप लोग डरपोक हैं सारे नेता। चलिए हमको घुसने तो दीजिए वहां पे, सब ठीक कर देंगे। 60 सेकंड्स आपका समय शुरू हो रहा है जवाब देने का, जो प्रश्न आया उनका कि चुनाव में काहे उठाते हैं ये मुद्दा। रागी जी
6: देखिए, मुझे
9: 26 में रहिएगा सर, 26 2026 साल तारीख बताइए इनको एक बार फिर से, तो हम लोग फिर इतिहास में ले जाएंगे प्रोफेसर साहब।
6: देखिए मैं इतना ही कह रहा हूं कि राष्ट्रीय सुरक्षा का यह मुद्दा है तो इसे हमेशा चुनाव का भी विमर्श बनना चाहिए। लोग सोचे तो सही, सेंसिटिव तो हों कि इस मुद्दे पर कितना हमको गंभीरता से इस बात को आगे ले चलनी है। इसका विरोध कौन करता है? जब SIR का मुद्दा था, SIR का मुद्दा एक बहुत अच्छा मुद्दा था, बंगाल के अंदर घुसपैठिए बाहर निकाल दें, कौन लोग जाकर के सुप्रीम कोर्ट लड़ने चला गया? कांग्रेस के गिरोह के सारे वकील लड़ने चले गए, कांग्रेस पार्टी लड़ने चले गई और सारे विपक्षी देना गैर भारतीय जनता पार्टी के लोग वहां बचाने के लिए चले गए थे। CAA लेकर के आया था ना, एक वहां से आइडेंटिफिकेशन का इनडायरेक्टली हो सकता था ना, कौन विरोध शाहीनबाग कौन खड़ा किया? कांग्रेस पार्टी और सारे विपक्षी मिलकर के देश में शाहीनबाग खड़ा कीजिए। तो अपने दुश्मनों को पहचानिए, कौन इन घुसपैठियों को शरण दे करके पिछले 70 साल में दामाद बना करके रखा है, ये देश के दुश्मन है। मैं फिर आपको बताऊं, आपके कई हिस्से कश्मीर बन जाएंगे यदि इन घुसपैठियों को आपने बाहर नहीं निकाला तो।
9: बार बार उनको दामाद कह रहे, कितने दामाद निकाले इन्होंने ये बताइए ना।
13: हम घुसने नहीं देते, अब वही पे रहते अंदर।
14: चलिए मैं बोलूं
9: आशुतोष जी, अब आपका टाइमर 60 सेकंड का रिबटल राउंड शुरू होता है। अब
14: बहुत अच्छा हुआ कि हमारे संगीत रागी जी ने कहा कि 70 साल में, यानी उसमें नरेंद्र मोदी की सरकार भी शामिल है इस मुद्दे को ना टैकल करने
6: को, इसी में खुशी।
14: अरे आपने कहा 70 साल में, तो
6: इसी में खुशी।
14: दूसरी बात, मैं एक बात तमाम दर्शकों से पूछना चाहता हूं, आप सब मानते हैं प्रधानमंत्री जी ने कहा कि ये घुसपैठिए हैं, हमारी मां बहन की मंगलसूत्र छीन के लेके जाएंगे, कहा ना? तो अगर ये है तो युद्ध स्तर पर काम होना चाहिए, पहचान होनी चाहिए, डिटेक्ट होने चाहिए, बाहर किए जाने चाहिए, क्यों नहीं किए गए?
6: विरोध कौन किया?
14: NRC
6: पर विरोध कौन किया? कांग्रेस पार्टी, जिसका ये समर्थन करने आते हैं।
14: नहीं, नहीं, नहीं।
6: कौन विरोध करता है घुसपैठियों को बाहर निकालने के? विरोध कौन करता है?
9: आपका चलिए दीजिए माइक दीजिए।
14: हमारा 25 मिनट गायब हुआ,
9: जल्दी जल्दी 25 सेकंड आपको दे दूंगी मैं।
14: और मुझे अब ये गलतफहमी हो गई है कि 2014 से अभी तक सिर्फ मेरी सरकार है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार नहीं है। और मुझे यह भी गलतफहमी हो गई कि दरअसल ये इस देश की सबसे कमजोर सरकार है, क्योंकि ये कानून नहीं बना पाती, ये राज्य सरकारों से बॉर्डर पे फेंसिंग नहीं करवा पाती। अरे जिस मुद्दे की वजह से हमारी मां बहनें सुरक्षित नहीं है, वैसी सरकारों को बर्खास्त करने की हिम्मत इस सरकार के अंदर क्यों नहीं है? बर्खास्त करिए उन सरकारों को, बर्खास्त करिए उन सरकारों को, बर्खास्त करिए, कानून बनाइए।
9: समाप्त हो गया, समय समाप्त हो गया।
14: ये कह रहे हैं कानून नहीं बना दीजिए, अरे कानून क्यों नहीं बनाते आप?
9: अगर एक भी चुनी हुई सरकार को सरकार ने बर्खास्त कर दिया तो पता नहीं आप क्या कर दीजिएगा।
14: राष्ट्रीय
9: ताली बजाइए भाई, बहुत धन्यवाद।
14: सुरक्षा का सवाल है, उसमें कोई कम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए। जो सरकार जो नेता इसके आड़े में है वो जेल की सलाखों के पीछे, वो सरकार बर्खास्त।
9: गुरु जी समय समाप्त हुआ, चलिए बहुत अच्छा, चलिए हाथ धोइए।
15: ये लग रहा है भाषण वैसा ही है जब आम आदमी पार्टी में हुआ करते थे, जब निकल करके भागे तब।
9: जो लोग संविधान की दुहाई देते हैं वो कम से कम किसी भी बात पर देश में संविधान को दरकिनार करके चुनी हुई सरकार को सरकार बर्खास्त कर दे ऐसा ना ही कहें तो अच्छा होगा। हम मैं अपनी तरफ से बोल रही हूँ, इट्स कम्प्लीटली योर थॉट, योर कोर्ट, आप उसके लिए जिम्मेदार हैं। हम चैनल के तौर पर कह रहे हैं कि सिरे से गलत है और इसकी वकालत कोई नहीं करता है। अब बारी है आपकी, जवाब डालेंगे वोट हमारे तमाम दर्शक जो घर पर इस वक्त मौजूद हैं। अगर आप भी इस पर अपना वोट डालना चाहते हैं तो स्क्रीन पर QR कोड है, उसे स्कैन करके आप अपनी राय डाल सकते हैं। और इस बीच यहां पर ऑडियंस में जितनी भी जनता बैठी है, क्या घुसपैठियों को बीजेपी ने चुनावी हथियार बना लिया है? जो लोग मानते हैं हाँ वो वोट करेंगे टीम अनिल यादव के लिए, तो टीम अनिल यादव को वोट जाएगा अगर आप हां पर वोट करेंगे। और जो लोग मानते हैं कि ये देश की सुरक्षा से जुड़ा मुद्दा है, सिर्फ चुनावी हथियार नहीं है, वो टीम रोहन गुप्ता जी को वोट करेंगे। और टीम रोहन गुप्ता के लिए आपको नहीं पर वोट करना है। लाल गमछे वाले और सफेद गमछे वाले, मुझे पता नहीं है कि आप लोगों का किधर दिल पिघल रहा है। जैसे मैडम ने लाल शर्ट पहनी थी, सफेद ले लिया था गमछा। हाँ, सफेद गमछों के लिए ऑल ऑप्शन आर ओपन। आप जोड़ लीजिए जितना हाथ जोड़ना है जोड़ लीजिए, लेकिन हम ये मानते हैं कि जो लोग आते हैं सफेद गमछे वाले भी वोट वहीं डालते हैं जहां उनका मन है। दिखते हैं 15-20 लेकिन 3-4% ही उनका वोट आता है। मोर और लेस दे आर डिसाइडेड बट दे डोंट वॉन्ट टू ओपनली टेक साइड्स। तो चलिए वोटिंग की शुरुआत करते हैं और आपके स्क्रीन पर इस वक्त दिखेगा क्या घुसपैठियों को बीजेपी ने चुनावी हथियार बना लिया है। अगर आप मानते हैं नहीं बनाया है तो नहीं पर वोट करेंगे, हां मानने वाले हां पर और कह नहीं सकते वाले जीरो पर। आपका वोटिंग शुरू होता है अब, वोट डालिए। अभी तो कांटे की टक्कर चल रही है, 50% उनचास फीसदी नहीं कह रहे हैं, 50%, 45% कह नहीं सकते वाले, 5%। आज मुझे लगता है कि जो सफेद गमछे वाले हैं वो ईमानदारी से कह नहीं सकते पर वोट डाल रहे हैं। पूरी डिबेट में आप लोगों का कोई राय नहीं बनी इस पर। 48 और 45 आखिरी के 25 सेकंड बचे हैं, 20 सेकंड, 49% नहीं वाले और 48 हो गया है, 46 है हां वाले और कह नहीं सकते वाले 6%, उनमें भी इजाफा हुआ है। इस बार राय बटी हुई निकली है और इसी के साथ समय समाप्त हुआ। 48% के साथ रोहन गुप्ता की टीम जीत गई है, 49% हो गया, लेकिन टीम अनिल यादव भी ज्यादा पीछे नहीं है 46% वोट्स के साथ, वो भी बहुत करीब है और कह नहीं सकते वाले तो 5% है ही।
16: कांटे की टक्कर रही इस बार,
9: हाँ कांटे की। और अब
16: ऐसी ही कांटे की टक्कर बहसबाजी कर चुनने में भी हुई है।
9: हाँ, आप लोगों को भी दिक्कत हुई होगी।
16: गौरव अनाउंस करेंगे रिजल्ट को।
9: गौरव बताइए आज का इन 6 वक्ताओं में से सबसे अच्छा वक्ता कौन है?
5: तो हम तीनों ने काफी इस पर मंथन किया, सब बहुत अच्छा बोले।
9: हाँ।
5: और दिल से बोले।
9: हाँ।
5: उम्मीद हमारी यह है कि एक राष्ट्र नीति बने।
9: हाँ।
5: और विपक्ष और सत्ता पक्ष ना हो, देश का मत हो कि घुसपैठियों को हाँ। बाहर किया जाए।
9: हाँ।
5: तो बहसबाजीगर में तीनों की राय
9: हाँ।
5: हमारी यह है कि अश्विनी उपाध्याय जी, क्योंकि इस मुद्दे को काफी टंके की चोट पर उठाते हैं, और अनिल यादव जी क्योंकि अनिल यादव जी बहुत दिल से बोले, अपना मत रखा,
9: जॉइंट विनर,
5: टाई जॉइंट
9: विनर अनिल यादव जी भी, वाह वाह बहुत। तो भाई अश्विनी उपाध्याय और अनिल यादव इस सप्ताह में दो बहस बाजीगर चुने गए हैं। अगले सप्ताह आपसे फिर होगी मुलाकात। तालियों के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।

0: summer hits. Blends old school jams with fresh favorites so you can get the party started. Listen to your summer soundtrack made for sunshine, vibes, and summer heat. Hear all your favorites and more right here on TuneIn. Explore the new Stingray Music Collection with stations like this. Just search Summer Hits and start listening now.
1: The music you love is all right here on TuneIn, bringing you good vibes and the hottest hits. But are you ready to amp things up even more? Just upgrade to TuneIn Premium for all of our exclusive music channels, completely commercial-free. So you get more of today's hits. More country roads. And everything else. Hear it all here, commercial-free, on TuneIn.
2: विक्रम चाहे जितना भी फड़फड़ा ले ढूंढ नहीं पाएगा।
3: ए प्रिया, कैसा लगा मेरा स्टंट?
4: विक्रम, एक हिंट तो देते।
5: विक्रम!
4: हिंट।
3: बड़े आराम से।
6: केंट से पानी होता है 100% प्योर।
7: केंट आरो प्योरिटी दिखाता भी है।
6: केंट देता है सबसे शुद्ध पानी।
8: मैं करता हूँ ना,
9: मैं करूँगा।
10: ओए कार्ड्स की दुकान, इतने कार्ड्स कौन रखता है?
8: ये ग्लोबल लग्जरी होटल्स के लिए, ये स्टे स्पा फाइन डाइनिंग के लिए, वर्ल्ड क्लास गोल्फ प्रिविलेजेस के लिए।
10: पंजाब नेशनल बैंक का लग्जरा मेटल क्रेडिट कार्ड लो एंड गेट अनलिमिटेड डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल लाउंज एक्सेस, अनलिमिटेड स्टे, डाइनिंग एंड मच मोर।
8: क्रिकेट में आप और बैंकिंग में PNB, दोनों ही चैंपियन है।
10: PNB लग्जरा मेटल क्रेडिट कार्ड, PNB मेरा अपना बैंक।
11: जब अपना कोई मूव किसी को मूव करता है ना यार, फील आ जाती
12: है। भाई, भाई तू अपना है, तेरा सफर मुझे भी करना है। तूने प्रूव कर दिखाया यार, एनीबॉडी कैन ड्रीम।
11: मुझे लगा मैं नहीं, पूरा का पूरा मूवमेंट चल रहा है।
13: ब्रीदेबल फैब्रिक्स, ऑसम कंफर्ट, एफर्टलेस स्टाइल, AD फ्रॉम द हाउस ऑफ अरविंद।
14: ऐसा कूलर दिखा, पूरी फैमिली बोले वाह।
15: फैमिली कितनी बड़ी है चाचा?
14: ज्यादा बड़ी ना है,
15: छोटे ऑन कर दे।
14: पैक कर दे समर कूल।
15: समर कूल कूलर, हवा ऐसी छोड़े पूरी फैमिली को ठंडक से जोड़े। समर कूल, लाइफ बनाए वंडरफुल।

0: हर पल बनाओ केसरी त्योहार विमल, बोलो जुबान केसरी।
1: जिंदगी में हम सबका एक सपना होता है, सपना अपनी दुनिया बसाने का, अपना एक घर बनाने का। और जब इस सफर में कोई अपना साथ दे तो सपने साकार हो ही जाते हैं।
2: भरोसे से ही बनता है आपके अपने सपनों का आशियाना। ऐसा ही आपका अपना साथी पंजाब नेशनल बैंक, जो बरसों से जीत रहा है देश का भरोसा। PNB, मेरा अपना बैंक।
3: कूल फैंस के स्टाइलिश डिजाइन से घर की शान बढ़ाएं।
4: कूल फैंस जो दे आधी बिजली में ज्यादा हवा कम आवाज की है।
3: कूल फैंस स्मार्ट भी स्टाइलिश भी।
5: इन एसोसिएशन विद
6: समकूल कूलर, हवा ऐसी छोड़े पूरी फैमिली को ठंडक से जोड़े। समकूल कूलर, लाइफ बनाए वंडरफुल।
5: हिंट, बड़े आराम से
7: पंजाब नेशनल बैंक, भरोसे का प्रतीक।
8: कूल स्टाइलिश फैंस, एनहांस होम डेकोर विद ब्यूटीफुल फैंस।
9: शारदा यूनिवर्सिटी, द वर्ल्ड कम्स टुगेदर एट शारदा यूनिवर्सिटी। वेयर आर यू?
5: विमल, बोलो जुबां केसरी।

0: presented by Patanjali Dant Kanti Toothpaste, complete oral health ka sach.
1: In association with
2: Bharat ki apni electric sawari, Sokudo.
3: Feeling a bit nostalgic for the 90s? TuneIn has got you covered with 90s hits. Jam out to your favorite artists from the 90s, like pop stars, NSYNC, and Britney Spears. Or rock artists, like Sublime and Third Eye Blind. Reminisce about the good old days of the 90s. Just search 90s hits or ask your device to play 90s hits on TuneIn.
4: The music you love is all right here on TuneIn, bringing you good vibes and the hottest hits. But are you ready to amp things up even more? Just upgrade to TuneIn Premium for all of our exclusive music channels, completely commercial free. So you get more of today's hits. More country roads. And everything else. Hear it all here, commercial free, on TuneIn.
5: विक्रम चाहे जितना भी फड़फड़ा ले ढूंढ नहीं पाएगा।
6: ए प्रिया, कैसा लगा मेरा स्टंट?
7: विक्रम, एक हिंट तो देते।
8: विक्रम,
7: हिंट।
6: बड़े आराम से।
9: कोई ऐसा कूलर दिखा, पूरी फैमिली बोले वाह।
10: फैमिली कितनी बड़ी है चाचा?
9: ज्यादा बड़ी ना है।
10: छोटे ऑन कर दे,
11: ऑन कर दे, ऑन कर दे,
9: पैक कर दे समर कूल।
10: समर कूल कूलर, हवा ऐसी छोड़े पूरी फैमिली को ठंडक से जोड़े। समर कूल, लाइफ बनाए वंडरफुल।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार।
1: विमल बोलो जुबान केसरी।
2: Why and by whom was COAMPT given the CBSE contract? Second, which procedures were circumvented to give COAMPT this contract? If we could figure out in 30 seconds that this company earlier had a different name, why didn't the CBSE figure this out? And why were no background checks done? Third, and most important, what is the exact relationship between COAMPT management and the Modi government?
3: मैं उनकी एक आदत, उनको एक बीमारी आ गई है। भारत में कोई भी परिवर्तन को सहज नहीं कर पाते हैं। उन्होंने SIR को विरोध किया था, उन्होंने EVM को विरोध किया था, उन्होंने भारत की अनेकों व्यवस्था को, भारत की डिजिटल इंडिया को विरोध करते हैं। ये एक दिवालिया मानसिकता की लक्षण है। आपको मैं क्या कह पाऊंगा, उनकी एक अंडरस्टैंडिंग है विषयों के ऊपर। बाकी रहा कोई स्पेसिफिक कंपनी के बारे में वो कह रहे हैं, मेरे शाम तक मेरे पास जो जानकारी है उन्हीं के साथ सिद्ध दो राज्यों में, कर्नाटक और तेलंगाना में, वो संस्था 5 शिक्षानुष्ठान की OSM काम कर रहा है।
4: अच्छा,
3: उनकी वेबसाइट चला रहे, उनकी सॉफ्टवेयर पोर्टल चला रहे। इसलिए तो ये तो कोई, कभी राहुल गांधी कोई विषय कुछ बोलते हैं तो फैक्ट चेक तो करते ही नहीं, बेबुनियाद बातों पे वो एक दुनिया गढ़ बैठते हैं।

नौकरी पेशा लोगों के लिए अप्रेजल यानी इंक्रीमेंट का वक्त किसी त्योहार से कम नहीं होता। साल भर की मेहनत के बाद जब सैलरी बढ़ती है तो चेहरे पर मुस्कान आना लाजमी है, लेकिन इस बार कहानी थोड़ी अलग है क्योंकि हाथ में लेटर आने के बावजूद भी लोग उतने खुश नहीं हैं। दरअसल दफ्तरों में चर्चा है कि कागजों पर तो 10% तक का इजाफा दिख रहा है, लेकिन जब सैलरी बैंक अकाउंट में आई तो उम्मीद से कम निकली। इस मायूसी के पीछे की वजह कोई मंदी या कंपनी की कंजूसी नहीं है, ये तो देश के नए लेबर कोड सिस्टम का असर है। नए नियमों के गणित को अगर समझें तो न्यू लेबर कोड के तहत अब कुल CTC का 50% हिस्सा बेसिक सैलरी होना जरूरी है, यानी अगर किसी की मंथली सैलरी 50,000 रूपए है तो उसकी बेसिक सैलरी सीधे 25,000 रूपए तय हो जाएगी, जबकि पहले कंपनीज बेसिक सैलरी कम रखकर मोबाइल बिल या हाउस अलाउंस जैसे भत्तों में ज्यादा पैसा देती थी और पुराने सिस्टम में कर्मचारियों को घर ले जाने के लिए टेक होम सैलरी ज्यादा मिल जाती थी। अब कंपनीज के इस नए सैलरी स्ट्रक्चर की वजह से टेक होम अमाउंट भले ही कम हुआ हो, लेकिन इसके पीछे कर्मचारियों का एक बड़ा फायदा भी छुपा हुआ है। दरअसल कर्मचारियों के PF और ग्रेच्युटी का पैसा हमेशा उनकी बेसिक सैलरी के आधार पर ही तय किया जाता है। नियमों के अनुसार बेसिक सैलरी का 12% हिस्सा हर महीने PF अकाउंट में जमा कर दिया जाता है, यानी बेसिक सैलरी का ग्राफ ऊपर जाने से कर्मचारी के साथ साथ कंपनी का PF योगदान भी बढ़ जाएगा, जिसका सीधा फायदा रिटायरमेंट के समय दिखेगा जब कर्मचारियों के हाथ में एक बहुत बड़ा सेविंग फंड आएगा। इसके साथ ही जो लोग किसी एक कंपनी में लंबा समय बिताते हैं उन्हें मिलने वाली ग्रेच्युटी की रकम भी पहले के मुकाबले काफी ज्यादा बढ़कर मिलेगी। आसान शब्दों में कहें तो सरकार के इस कदम का मकसद नौकरी पेशा लोगों के भविष्य को सुरक्षित बनाना है। फिलहाल जेब में आने वाले पैसे में थोड़ी कटौती जरूर खल रही है, लेकिन लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिहाज से ये बेहद फायदेमंद सौदा है। कागजों पर सैलरी का बढ़ना और अकाउंट में कम आना आने वाले दिनों में एक बड़ी बचत के तौर पर सामने आने वाला है। आज तक ब्यूरो।

बंगाल के सोनारपुर में अभिषेक बैनर्जी पर हमले से बवाल गुस्साए लोगों ने कपड़े फाड़े, फेंके पत्थर, अंडे। टीएमसी सांसद ने कहा मुझे मारने की थी साजिश। ममता, राहुल, अखिलेश ने बीजेपी पर उठाए सवाल। कर्नाटक के अगले मुख्यमंत्री होंगे डीके शिवकुमार। कांग्रेस विधायक दल की बैठक में चुने गए नेता 3 जून को 8 से 10 मंत्रियों के साथ ले सकते हैं शपथ। लखनऊ में सीएम योगी का बड़ा बयान, अहिंसा ही इंसान का परम धर्म, लेकिन जब कोई देश समाज के लिए खतरा है तो अपनानी पड़ती है हिंसा की नीति। गाजियाबाद में अंतर्राष्ट्रीय लेवल के पैरा एथलीट चिराग त्यागी की हत्या, साय उपवन इलाके में मिला शव। अगले महीने जापान में खेलने वाले थे टूर्नामेंट। राजस्थान के कई शहरों में रेतीले तूफान से दहशत, धूल भरी आंधी से दिन में ही छाया अंधेरा। दिल्ली एनसीआर में बारिश से गिरा तापमान।

0: नमस्कार, मैं हूं श्वेता सिंह और आप देख रहे हैं वॉर रूम। वॉर रूम बिग ब्रेकिंग में आज हम आपको दिखाएंगे कि पश्चिम एशिया में क्यों कहा जा रहा है कि फिर युद्ध का खतरा मंडरा रहा है। ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को लेकर अमेरिका और इजराइल आक्रामक हैं। दावा किया जा रहा है कि यूरेनियम की आग में अब खुद ईरान जलने लगा है। ट्रंप की टीम ईरान को झुकाने के लिए नए प्लान पर काम कर रही है। उधर नेतन्याहू की नई चेतावनी से लेबनन में तनाव बढ़ गया है। अमेरिका इजराइल के लिए एब्राहम अकॉर्ड वाला तैयार कर रहा है। वहीं एक समझौते पर हस्ताक्षर न करने के कारण पाकिस्तान अमेरिका के निशाने पर आ गया है। जाफर एक्सप्रेस हमले के बाद पाकिस्तान की सुरक्षा व्यवस्था पर भी बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं। क्यों आतंकियों को पालने वाला पाकिस्तान खुद घिरता जा रहा है? लेकिन सबसे पहले वॉर अपडेट।
1: कुवैत में यूएस बेस पर ईरान का हमला, 5 सैनिक घायल। ईरान की फतेह 110 बैलिस्टिक मिसाइल ने कुवैत के अली अल साले हवाई अड्डे पर मौजूद अमेरिकी बेस को बनाया निशाना। एयर डिफेंस से तबाही के बावजूद मिसाइल के मलबे से 5 अमेरिकी सैनिक घायल हो गए, जबकि एक MQ-9 रीपर ड्रोन पूरी तरह नष्ट और दूसरा भारी क्षतिग्रस्त हो गया। ईरानी सेना का दावा, नष्ट किया ड्रोन। ईरान की सेना की तरफ से कहा गया है कि उसकी एयर डिफेंस सिस्टम ने दक्षिणी ईरान के केशम द्वीप के आसमान में एक ड्रोन को मार गिराया। ईरान का दावा है कि केशम में दुर्घटनाग्रस्त ड्रोन का मलबा भी बरामद हुआ है। ट्रंप की सिचुएशन रूम में बड़ी बैठक, नहीं बन पाई अंतिम सहमति। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के साथ युद्ध विराम को 60 दिनों के लिए बढ़ाने के फ्रेमवर्क पर फैसला लेने के लिए व्हाइट हाउस के सिचुएशन रूम में टॉप अधिकारियों के साथ 2 घंटे तक अहम बैठक की। हालांकि ये बैठक बिना किसी अंतिम नतीजे या स्पष्टता के समाप्त हो गई। ईरान का परमाणु कार्यक्रम पर बातचीत से इनकार। ईरान के विदेश मंत्रालय ने साफ किया है कि अमेरिका के साथ समझौता अभी अंतिम रूप नहीं ले पाया है। ईरान का कहना है कि वो अपने परमाणु कार्यक्रम पर कोई बातचीत नहीं करेगा, क्योंकि उसका ये कार्यक्रम पूरी तरह से नागरिक उद्देश्यों के लिए है। ट्रंप का अल्टीमेटम, ईरान कभी न बनाए परमाणु बम। राष्ट्रपति ट्रंप ने युद्ध विराम के विस्तार के लिए ईरान के सामने कड़ी शर्तें रखी हैं। ट्रंप का कहना है कि ईरान को कभी भी परमाणु हथियार न बनाने की गारंटी देनी होगी। हॉर्मुज स्ट्रेट को पूरी तरह खोलना होगा और वहां बिछाई गई बारूदी सुरंगों को नष्ट करना होगा। अमेरिकी रक्षा मंत्री की चेतावनी, ईरान पर दोबारा हमले के लिए यूएस तैयार। सिंगापुर डिफेंस समिट में अमेरिकी रक्षा मंत्री पीट हेक्सेथ ने कड़ा रुख अपनाते हुए कहा है कि अगर बातचीत नाकाम होती है तो अमेरिका ईरान पर दोबारा हमले शुरू करने के लिए पूरी तरह सक्षम और तैयार है। ईरान के कट्टरपंथियों ने समझौते के खिलाफ खोला मोर्चा। ईरान के भीतर एक राजनीतिक जंग छिड़ गई है। वहां के कट्टरपंथी गुटों ने सरकारी मीडिया, रैलियों और बयानों के जरिए अमेरिका के साथ संभावित समझौते और बातचीत को नाकाम करने के लिए अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। हॉर्मुज स्ट्रेट में अमेरिका ईरान के बीच गतिरोध बरकरार। अमेरिकी नौसैनिक नाकेबंदी और हॉर्मुज स्ट्रेट पर ईरान के नियंत्रण ने एक ऐसी स्थिति पैदा कर दी है जो ना तो पूरी तरह शांति है और ना ही खुला युद्ध। दोनों देश पानी के रास्ते एक दूसरे की आर्थिक घेराबंदी करने में जुटे हैं। लेबनान में और अंदर घुसी इजरायली सेना, लिटानी नदी को किया पार। एक तरफ अमेरिका की मध्यस्थता में युद्ध विराम की बातचीत चल रही है, तो दूसरी तरफ इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने दावा किया है कि उनकी जमीनी सेना लेबनान की रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण लिटानी नदी को पार कर आगे बढ़ चुकी है। गाजा के 70% हिस्से पर नियंत्रण करेगा इजराइल, प्रधानमंत्री बेंजामिन

0: किया जाए। ट्रंप ने साफ कर दिया है, या तो एक बहुत बड़ी डील होगी या फिर कोई डील नहीं होगी।
1: समझौता तो मुझे लगता है होगा और होना भी चाहिए, पूरा विश्व इस परेशानी से दुखी है, लेकिन इसका समझौता होगा कैसे? इसको समझौता कराने के लिए मेरे विचार में एक अच्छा मीडिएटर चाहिए, और वो मीडिएटर ऐसा होना चाहिए जिसके पास कुछ काबिलियत हो। पाकिस्तान का क्या मीडिएशन करेगा? पाकिस्तान के पास क्या ताकत है जो मीडिएशन कराएगा? मे बी चाइना कैन हेल्प इन दिस। सो मीडिएशन इज द ओनली आंसर, फाइटिंग अगेन इज नॉट द आंसर।
0: पर असली सवाल यह है कि क्या ईरान इतनी आसानी से मान जाएगा, वो ईरान जिसने पहले भी अपने न्यूक्लियर प्लांट को जमींदोज होते देखा है, जिसने अपने सुप्रीम लीडर से लेकर पूरे शासन तंत्र को हमले के पहले मिनट में ही मिट्टी में मिलते देखा है, क्या वो इसके लिए तैयार होगा?
2: इसमें दो तीन बातें हैं। पहली बात है कि ये देखना पड़ेगा कि ये यूरेनियम, एनरिच यूरेनियम जो ईरान के पास है, उसका उसके लिए क्या महत्व है। वो उसको इस्तेमाल कर रहा है एज डिटरेंट, उसके एक डिटरेंस के लिए काम होता है, डिप्लोमेसी में काम हो रहा है, और दूसरा उसकी अपनी डिग्निटी के लिए भी काम हो रहा है। जो सुप्रीम कमांडर, सुप्रीम लीडर हैं वहाँ के, उनको अपने डोमेस्टिक ऑडियंस को ये भी दिखाना है कि वो ना हारे हैं ना झुके हैं। तो अपने आप में एक ये मुद्दा बन चुका है, ट्रंप चाहते हैं इसको विक्ट्री ट्रॉफी की तरह, और ईरान इसको अपनी डिग्निटी से जोड़ के देख रहा है। तो मैं नहीं समझता हूँ कि इतनी आसानी से बिना किसी खास मुद्दे को लिए हुए ईरान अपने एनरिच यूरेनियम को सौंप देगा यूएस को।
0: पर्दे के पीछे का सच बेहद खौफनाक है। रिपोर्ट्स के अनुसार बातचीत के बीच भी अमेरिका के पास ईरान के इस्फहान न्यूक्लियर साइट को बंकर बस्टर बमों से उड़ाने का पूरा प्लान तैयार है। इसी साइट पर पिछले साल जून में अमेरिका ने मिसाइलें भी दागी थी। यानी पेंटागन और लैंगली ने पूरी तैयारी कर ली। ट्रंप को ईरान के परमाणु ठिकानों पर हमले के कई प्लान और उनका पूरा लेआउट दिखा दिया है। माना जा रहा है कि ईरान का ज्यादातर परमाणु भंडार इस्फहान के न्यूक्लियर प्लांट में रखा है। अब बस ट्रंप की हरी झंडी मिलना बाकी है।
1: इस समय जो युद्ध चल रहा है अमेरिका के बीच में और ईरान के बीच में, उसके तकरीबन 40-45 दिन होने वाले हैं सीज फायर के। थ्रू आउट द सीज फायर एक तरीके से धमकी चल रही है। एक तरफ से ट्रंप साहब धमकी देते हैं, दूसरी तरफ से उसका जवाब देता है ईरान। बीच में मीडिएशन की कोशिश होती है, पाकिस्तान उसमें एक जोकर की तरह ऊपर नीचे भागता रहता है, कुछ उसका नतीजा तो निकला नहीं है। सो ये समझ के चलिए आप कि दिस इज सम काइंड ऑफ अ थ्रेट, कि अगर तुम नहीं मानोगे मेरी बात तो मैं तुम्हें बर्बाद कर दूँगा। कोशिश होती है, पाकिस्तान उसमें एक जोकर की तरह ऊपर नीचे भागता रहता है, कुछ उसका नतीजा तो निकला नहीं है। सो ये समझ के चलिए आप कि दिस इज सम काइंड ऑफ अ थ्रेट, कि अगर तुम नहीं मानोगे मेरी बात तो मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगा, यह अमेरिकन प्रेसिडेंट का कहना है। उसके जवाब में ईरान कहता है कि आप मार के तो देखिए, हम आपको और मारेंगे। ईरान इस समय काफी डैमेज सफर कर चुका है, उसकी रेजिलियंस बहुत ज्यादा है, वो ही इज प्रिपेयर टू एक्सेप्ट मोर डैमेज बट ही विल नॉट सरेंडर। सो ये धमकी दे रहे हैं ट्रंप साहब, मेरे ख्याल से तो ये काम नहीं करेगी।
0: इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के अनुसार ईरान के पास इस वक्त 60% तक एनरिच किया हुआ करीब 970 पाउंड यूरेनियम का स्टॉक है। खबरें ये भी हैं कि ईरान इस यूरेनियम को चीन भेजने के फिराक में है, और चीन इसके लिए तैयार भी है, लेकिन ट्रंप प्रशासन इसके लिए कभी राजी हो ये मुश्किल है। अमेरिका चाहता है कि ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम पर अगले 20 साल का बैन लगे। दावा है कि ईरान का यूरेनियम भंडार अब ओबामा न्यूक्लियर डील से पहले वाले स्तर से भी ज्यादा हो गया है। IAEA के अनुसार 2008 से ईरान का यूरेनियम स्टॉक लगातार बढ़ता गया, तब ओबामा राष्ट्रपति थे। 2015 में JCPOA परमाणु समझौता हुआ, जिसके बाद स्टॉक अचानक बहुत कम हो गया। 2018 में ट्रंप के पहले कार्यकाल में अमेरिका इस समझौते से बाहर निकल गया। उसके बाद ईरान ने फिर से

0: यूरेनियम जमा करना शुरू किया और मात्रा तेजी से बढ़ने लगी। 2025 तक स्टॉक करीब 9,875 किलो पहुंच गया, जो समझौते से पहले के स्तर से भी ज्यादा है। 2025 में यूरेनियम की मात्रा एनरिचमेंट के हिसाब से देखिए, 2% एनरिच यूरेनियम की मात्रा 2,391 किलो है, 5% 6,024 किलो, 20% 184 किलो, 60% 441 किलो। ईरान का दावा है कि अमेरिका बार बार अपना स्टैंड बदल रहा है, जिससे मामला उलझ गया है। ईरान के सर्वोच्च नेता मुज्तबा खामनेई का तो साफ कहना है कि यूरेनियम ईरान से बाहर नहीं जाएगा।
1: खाड़ी देशों का भी डर सही है और ईरान का पॉइंट ऑफ व्यू यह है कि उसके पास चारों तरफ से घिरा हुआ है। वहां पर अमेरिकन बेसिस हैं जीसीसी कंट्रीज में, इसराइल अपने आप में एक न्यूक्लियर आर्म्ड कंट्री है, डिक्लेयर्ड नहीं है बट न्यूक्लियर एम्बिग्विटी है और बहुत पावरफुल कंट्री है, यूएस के खिलाफ है। तो अगर आप ईरान के पर्सपेक्टिव से देखेंगे तो ईरान के पास सिर्फ दो लीवर्स हैं, एक लीवर हॉर्मुज का जो उसने अभी डिस्कवर किया, जिससे वो पूरे विश्व की व्यवस्था को, अर्थव्यवस्था को अपने उसमें चंगुल में ला सकता है, और दूसरा उसके पास न्यूक्लियर थ्रेशोल्ड का लेवल होना है। अगर वो न्यूक्लियर थ्रेशोल्ड में हो जाता है तो जैसे नॉर्थ कोरिया को कोई टच नहीं करता है और जितने भी न्यूक्लियर कंट्री उनको कोई टच नहीं करता, तो ईरान के अंदर जो सोच होगी वो इसी बात को लेके होगी। इसलिए वहाँ के सुप्रीम लीडर जो हैं अपने एनरिचमेंट को कम्प्लीटली ख़त्म नहीं करना चाहते।
0: कूटनीति के बीच ग्राउंड जीरो पर क्या चल रहा है। मंगलवार की सुबह ईरान ने हॉर्मुज स्ट्रेट में ड्रोन उड़ाए तो अमेरिकी सेना ने ईरान की मिसाइल साइट्स पर ताबड़तोड़ हमले कर दिए। हमले के बाद आईआरसीसी ने धमकी दी कि वो इसका करारा जवाब देगी। खामनेई ने भी वार्निंग दी है कि वेस्ट एशिया में अब अमेरिकी बेस सुरक्षित नहीं है। तो क्या ये सिर्फ टेबल पर चलने वाली धमकियां हैं या फिर किसी महाविनाश से पहले का सन्नाटा। ट्रंप का स्टैंड क्लियर है, या तो यूरेनियम सरेंडर करो या फिर अमेरिकी बमों का सामना करो। फैसला ईरान को करना है, शांति चाहिए या युद्ध की आग।
2: सवाल सीधा है और बेहद खतरनाक भी। अगर ईरान नहीं झुका तो ट्रंप के पास क्या है आखिरी विकल्प, और उससे भी बड़ा सवाल ये कि क्या वो आखिरी जवाब ईरान को पसंद आएगा। दुनिया इस वक्त बारूद के ढेर पर बैठी है। अगर आप डोनाल्ड ट्रंप के बयानों और फैसलों का विश्लेषण करें तो एक बात बिल्कुल साफ हो जाती है कि ट्रंप अपने से पहले के सभी अमेरिकी राष्ट्रपतियों से वेस्ट एशिया के मामले में सिर्फ अलग ही नहीं, बिल्कुल अलग है। वो लीक से हटकर फैसला लेते हैं और उनका यही अंदाज इस वक्त ईरान की रातों की नींद उड़ाए हुए है।

0: सुनिए ट्रंप का यह बयान जो बताता है कि उनके दिमाग में ईरान को लेकर आखिर क्या चल रहा है।
1: Essentially, I did what no other president was willing to do. They made mistakes, and I am correcting them.
0: ट्रंप जिस कन्विक्शन के साथ बात करते हैं वो दुनिया को डराता भी है और चौंकाता भी है। जून 2025 में हुई 12 दिन की वो भीषण जंग हो या फिर अमेरिका इसराइल और ईरान के युद्ध की शुरुआत में ही सुप्रीम लीडर समेत पूरे के पूरे ईरानी सुप्रीम काउंसिल को नेस्तनाबूद करना, ट्रंप ने अपने हर फैसले से दुनिया के होश उड़ाए।
2: ये सच्चाई है, वो कहीं ना कहीं ये दिखा रहे हैं अपनी डोमेस्टिक कॉन्स्टिट्यूएंसी को कि अमेरिका का पलड़ा भारी है और अमेरिका कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगा। ईरान जो शर्तें अमेरिका ने रखी हैं उन पे साइन करने के लिए तैयार है, मगर असलियत जो है वो काफी अलग है। ईरान की जो रेड लाइन है, स्पेशली स्टेट ऑफ हॉर्मुज को ऊपर टोल लेने की, और कहीं ना कहीं जो बात है कि यूरेनियम प्रोग्राम और एनरिचमेंट यूरेनियम देने की, उस पर ईरान अड़ा हुआ है। और ऐसे में ऐसा लगता है कि यूं तो कहा जा रहा है कि ये डील साइन होने के बहुत नजदीक है, मगर ऐसा नजर नहीं आ रहा। अगर ये डील साइन नहीं होती तो ऐसा लगता है लड़ाई दोबारा स्टार्ट हो जाएगी।
0: अब एक तरफ जहां पीस टॉक यानी शांति की बातचीत चल रही है, वहीं दूसरी तरफ ट्रंप लगातार ईरान को अल्टीमेटम पर अल्टीमेटम दिए जा रहे हैं। ट्रंप ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रूथ पर जो लिखा वो ईरान के लिए किसी सीधे सरेंडर नोट जैसा है। अगर ईरान सरेंडर कर दे, मान ले कि उसकी नेवी खत्म हो चुकी है और उसकी एयरफोर्स खत्म हो गई है, और अगर उसकी पूरी सेना हथियार डालकर तेहरान से बाहर निकल आए, हाथ ऊपर करके मैं सरेंडर करता हूँ चिल्लाए और सफेद झंडा लहराए, और अगर उसका बचा हुआ पूरा नेतृत्व हार मानने वाले सारे दस्तावेजों पर साइन कर दे और अमेरिका की ताकत के सामने अपनी हार स्वीकार कर ले, तभी बात बनेगी। लेकिन सवाल तो वही है, डिप्लोमेसी अपनी जगह है, धमकियां अपनी जगह। अगर इस बातचीत के बाद भी ईरान टस से मस नहीं हुआ तो क्या होगा? अगर ईरान ने अमेरिका की इन शर्तों पर हामी नहीं भरी तो फिर ट्रंप क्या करेंगे? सच यह कि इस जंग में अब बेहद सीमित विकल्प ही बचे हैं। पानी सिर से ऊपर जा चुका है और अगर ईरान पीछे नहीं हटा तो डोनाल्ड ट्रंप के पास प्लान बी के तौर पर तीन सबसे बड़े और विनाशकारी विकल्प तैयार है। ट्रंप के तर्कश में वो कौन से तीन तीर हैं जो ईरान को पूरी तरह बर्बाद कर सकते हैं? विकल्प नंबर एक, पूर्ण सैन्य हमला। ये ट्रंप का सबसे बड़ा और आखिरी हथियार है। अगर राजनीतिक प्रयास और सौदेबाजी पूरी तरह फेल हो जाती है तो ट्रंप अमेरिकी कमांडरों को ईरान के परमाणु संयंत्रों और सैन्य ठिकानों पर बड़े पैमाने पर बमबारी का सीधा आदेश दे सकते हैं। इसके लिए अमेरिकी सेना को पहले ही हाई अलर्ट पर रखा जा चुका है। विकल्प नंबर दो, आर्थिक प्रतिबंधों को चरम पर पहुंचाना। अगर ट्रंप सीधे मिलिट्री एक्शन से बचना चाहेंगे तो वो मैक्सिमम प्रेशर की नीति को इस हद तक ले जाएंगे जिसकी कल्पना भी ईरान ने नहीं की होगी। ईरान के तेल निर्यात को पूरी तरह ठप कर दिया जाएगा जिससे ईरान अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आर्थिक रूप से पूरी तरह पंगु हो जाएगा। विकल्प नंबर तीन, क्षेत्रीय गठबंधनों से ईरान की घेराबंदी। अमेरिका अकेले नहीं लड़ेगा, वो खाड़ी देशों जैसे सऊदी अरब, यूएई, ओमान, कतर, कुवैत, बहरीन और अपने सबसे भरोसेमंद साथी इजराइल के साथ मिलकर ईरान को चारों तरफ से घेरेगा। रणनीति साफ है, ईरान के पूरे प्रॉक्सी नेटवर्क को जड़ से नेस्तनाबूद कर दिया जाए।
2: कोई चांस ज्यादा नजर नहीं आ रहा। अगर ईरान इस डील को मानने के लिए मना कर देता है तो फिर डोनाल्ड ट्रंप के पास कोई ज्यादा ऑप्शन नहीं है, फिर लड़ाई दोबारा स्टार्ट होगी और इस बार जो लड़ाई है वो बहुत भयानक होगी। और ये भी सच्चाई है कि जो ईरान के पास मिसाइल रॉकेट ड्रोन्स हैं उसका भंडार अब 60-70% अभी भी है, जबकि अमेरिका के पास हथियारों की भारी कमी है।
0: यानी साफ है ट्रंप ने अपनी लाइन खींच दी है, अब गेंद ईरान के पाले में है। या तो वो सफेद झंडा दिखाकर सरेंडर कर दे या फिर अमेरिकी सेना के उस भीषण प्रहार को झेलने के लिए तैयार रहे जो वेस्ट एशिया का पूरा भूगोल बदल सकता है, जिसकी तस्दीक ट्रंप पहले ही पोस्ट कर चुके हैं।
3: अब्राहम अकॉर्ड, दो शब्द, लेकिन इन दो शब्दों ने पश्चिम एशिया की रेत में ऐसी दरार डाल दी जिसकी गूंज तेहरान से इस्लामाबाद और अंकारा तक सुनाई दे रही है। डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान से कहा है अगर अमन चाहिए तो पहले इसराइल को स्वीकार करो। यही है अब्राहम अकॉर्ड की पहली शर्त और यहीं से शुरू होता है वो भूचाल जिसने मुस्लिम दुनिया की दशकों पुरानी राजनीति को उलट कर रख दिया। अब तक इसराइल का विरोध ही इस्लामी जगत की साझा जमीन थी। अरब हो या गैर अरब, सबकी जुबान पर एक ही बात रहती थी, इसराइल को मान्यता नहीं, उससे रिश्ते नहीं। लेकिन अब अमेरिका कह रहा है कि शांति की कीमत इसराइल की स्वीकार्यता होगी, यानी लड़ाई अब सिर्फ जमीन की नहीं रही, विचार की हो गई है। और ट्रंप ने यही चाल चलकर खाड़ी के पानी में ऐसा तूफान खड़ा कर दिया है जिसमें हर मुल्क अपने किनारे बचाने में लग गया है।
4: I'm not sure we should make the deal if they don't sign. You want to know that the
5: Trump का अंदाज किसी request का नहीं है, बल्कि एक सीधे order का है। Trump कह रहे हैं कि ईरान के साथ युद्ध खत्म करने की deal तभी होगी जब अब्राहम accord पर बात होगी।
4: I would like to have the countries we were talking about with Saudi Arabia, UAE, Qatar and the others. We'd like to have them immediately join the, and see Woodcock is working on that with Jared and some others, but would like to have them join the Abraham Accords. It'll be historic if they do it. And we would, I think they owe that to us, to be honest. I think, because that really would be a tremendous sign. And I think those countries owe it to us.
5: अब तक दुनिया समझ रही थी कि अमेरिका की सबसे बड़ी टेंशन ईरान का यूरेनियम और उसका बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम। अब तक वॉशिंगटन इसी बात पर आक्रामक था कि ईरान को परमाणु बम बनाने से रोकना है, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने अचानक अपनी शर्तें बढ़ाकर पूरे खाड़ी और मुस्लिम जगत को एक ऐसे धर्म संकट में डाल दिया है जिससे निकलना नामुमकिन लग रहा है। पहले हम आपको बताते हैं कि अब्राहम अकॉर्ड है क्या। अब्राहम अकॉर्ड्स इसराइल और अरब देशों के बीच रिश्ते सामान्य करने वाले समझौते हैं। डोनाल्ड ट्रंप के पहले कार्यकाल में 2020 में संयुक्त अरब अमीरात और बहरीन ने इसराइल को मान्यता देकर इन समझौतों पर हस्ताक्षर किए। बाद में मोरक्को, सूडान और 2025 में कजाखस्तान भी इसमें शामिल हुए। इन समझौतों से पहले सिर्फ मिस्र और जॉर्डन मुस्लिम बहुल देश थे जो इसराइल को मान्यता देते थे। लंबे समय तक अरब देशों का कहना था कि फिलिस्तीन को अलग राष्ट्र का दर्जा मिलने तक वो इसराइल से संबंध नहीं बनाएंगे। फिलिस्तीनी नेताओं ने इन समझौतों को विश्वासघात बताया, जबकि ईरान और पाकिस्तान में भी इसका विरोध हुआ। इसराइल को सबसे बड़ा फायदा यूएई के साथ समझौते से मिला। दोनों देशों के बीच व्यापार, निवेश और रक्षा सहयोग तेजी से बढ़ा। अब अमेरिका चाहता है कि सऊदी अरब भी इस समझौते में शामिल हो, लेकिन सऊदी अरब ने साफ कहा है कि फिलिस्तीनी राष्ट्र के बिना वो इसराइल से रिश्ते सामान्य नहीं करेगा।
6: अब्राहम अकॉर्ड 15 सितंबर 2020 को साइन हुआ था बिटवीन अरब नेशंस एंड इसराइल। दिस मींस कि दे आर रिकॉग्नाइजिंग इसराइल एज ए इंडिपेंडेंट कंट्री। कुछ देश हैं उन्होंने अब्राहम अकॉर्ड को साइन करने से मना कर दिया, उसमें पाकिस्तान है, उसमें ईरान है, उसमें कुछ हद तक सऊदी अरेबिया, हालांकि सऊदी अरेबिया शायद मानने को तैयार है लेकिन फिजिकली उसने अभी तक साइन नहीं किया है। अब्राहम अकॉर्ड कहता है कि आप इसराइल को एक्सेप्ट कीजिए, रिकग्नाइज कीजिए एज एन इंडिपेंडेंट स्टेट। तो अभी जो लेटेस्ट डिमांड, लेटेस्ट बयान आया है प्रेसिडेंट ट्रंप का, वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान मस्ट एक्सेप्ट अब्राहम अकॉर्ड एंड साइन इट, ईरान मस्ट एक्सेप्ट अब्राहम अकॉर्ड एंड साइन इट। अगर ईरान ने इसको साइन कर दिया तो फिर ये न्यूक्लियर की जो प्रॉब्लम है 60%, इस पर ही बड़ा इफेक्ट पड़ेगा।
5: दरअसल ये मुस्लिम देशों के गले की फांस क्यों बन गया है, इसे क्रोनोलॉजी से समझिए। साल 1948 में इसराइल के आजाद होने के बाद से ही पूरा मुस्लिम जगत उसके अस्तित्व को खारिज करता रहा है। लेकिन आज ट्रंप ने इसी अकॉर्ड को ईरान पीस डील की पहली शर्त बना दिया है। सुनने में ये भले छोटी बात लगे, लेकिन इसको इस तरह समझिए, जो जंग आज दुनिया देख रही है वो दरअसल 28 फरवरी 2026 को शुरू नहीं हुई। इसकी बुनियाद पड़ी थी 7 अक्टूबर 2023 को, जब हमास ने इसराइल पर एक बड़ा प्लैंड अटैक किया था।

0: और तब से इसराइल लगातार, कभी वो गाजा में हमास लड़ता है, कभी लेबनान में हिजबुल्ला से, और इस पूरे प्रॉक्सी टेरर नेटवर्क को पर्दे के पीछे से जो मुल्क रिमोट कंट्रोल चला रहा है उसका नाम है ईरान। ईरान की कुछ फोर्स खाड़ी के आसपास इसराइल और पश्चिमी देशों के खिलाफ लड़ने वाले प्रॉक्सी ग्रुप्स को पैसा और हथियार देती है। अमेरिका यह अच्छी तरह जानता है, इसलिए ट्रंप अब्राहम अकॉर्ड पर अड़े हैं। अमेरिका मानता है कि ईरान माने या ना माने, लेकिन खाड़ी के कई देशों को इसमें शामिल होना पड़ेगा, खासकर वो देश जो अब तक ईरान से सीधे टकराव से बचते रहे। अगर ट्रंप अपनी इस नीति पर टिके रहे तो हालात खतरनाक हो सकते हैं। खाड़ी के बड़े मुस्लिम देशों पर भी अकॉर्ड में शामिल होने का दबाव बढ़ेगा। ऐसा होने पर ईरान काफी हद तक अलग थलग पड़ सकता है। अभी तक सीधा हमला अमेरिका और इसराइल कर रहे थे, जबकि बाकी मुस्लिम देश दूरी बनाए हुए थे, लेकिन इस अकॉर्ड के बाद पूरा समीकरण बदल सकता है। लेकिन इसका दूसरा पहलू और भी खतरनाक है। खाड़ी के जो मुस्लिम देश अब्राहम अकॉर्ड पर दस्तखत करेंगे, उनके लिए सबसे बड़ा खतरा बाहर से नहीं बल्कि अपने ही देश के अंदर होगा। इन देशों की जनता में इसराइल को लेकर भारी गुस्सा है। नेतन्याहू इस मुद्दे पर चुप है। चुनाव का माहौल है और जंग में मुस्लिम देशों का खुला समर्थन मिलना मुश्किल है। अमेरिका का मकसद ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को कमजोर करना या अब्राहम समझौते से इसराइल की सुरक्षा बढ़ाना है, लेकिन अरब देशों में गुस्सा बढ़ रहा है, खासकर गाजा और लेबनान की तबाही के बाद। ऐसे में दबाव बढ़ने से इसराइल की स्वीकार्यता और मुश्किल हो सकती है।
1: रुक रहे छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद भी दुनिया के संघर्ष का विश्लेषण जारी है इस वॉर रूम में।

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोस, इन एसोसिएशन विद
1: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक।
2: The music you love is all right here on TuneIn, bringing you good vibes and the hottest hits. But are you ready to amp things up even more? Just upgrade to TuneIn Premium for all of our exclusive music channels, completely commercial free. So you get more of today's hits. More country roads. And everything else. Hear it all here, commercial free, on TuneIn.
3: Hop on board. We're going for a cruise with some easy listening. Feel the wind in your hair and bounce to the beat of the waves with Yacht Rock Classics from artists like Hall & Oates, Steely Dan, Loggins & Messina, and more. Only smooth sailing ahead with songs that help you get away. Just search sailing or tell your device to play sailing on TuneIn.
4: सवारी सोकुडो
5: विक्रम चाहे जितना भी फड़फड़ा ले ढूंढ नहीं पाएगा।
6: ए प्रिया, कैसा लगा मेरा स्टंट?
7: विक्रम, एक हिंट तो देते।
8: विक्रम!
7: हिंट
6: बड़े आराम से।
9: और भाई कहाँ गए थे घूमने?
10: जीके मैक्स।
11: वैसे रोहन पढ़ाई में कैसा है?
10: जीके मैक्स बेस्ट पुट्टी,
11: जेके वॉल मैक्स
10: बेस्ट पेंट,
11: जेके मैक्स।
10: बाकी सब सवालों का पता नहीं, लेकिन मोस्ट ब्यूटीफुल वॉल्स के लिए सिर्फ जेके मैक्स पेंट्स। जेके मैक्स पेंट्स, खुशियों के रंग।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: मौसम विभाग ने कहा है कि इस साल भारत में गर्मी का असर बहुत ही ज्यादा होने वाला है।
3: रामराज व्हाइट शर्ट्स इस समर को कूल बना दे।
4: हनी, इस घर में कुछ है जो टूटता नहीं।
5: ये पिलर कभी नहीं टूटेगा। रुंगटा स्टील TMT से बना।
6: रुंगटा नहीं तो घर स्ट्रॉन्ग नहीं। रुंगटा स्टील TMT बार एकदम सॉलिड।
7: इसमें है फाइबर, बीटा ग्लूकोन, प्रोटीन, मैग्नीशियम तत्व, इसलिए यह शारीरिक संतुलन के साथ साथ शरीर को स्वस्थ रखता है। लायन ओट्स फैमिली, सुपर एक्शन फैमिली।
8: आपके पास दो ऑप्शंस हैं, या तो सुपरमैन बनकर फर्नीचर को भीगने से बचा लो, या E3 HDMR बोर्ड्स लगाकर फर्नीचर को लाइफटाइम के लिए वाटर और टर्माइट प्रूफ बना लो। E3 प्रोडक्ट्स, ये रिश्ता लंबा चलेगा।

0: feels like summer. Monte Carlo, it's the way you make me feel.
1: ऊंचाई पर बने रहने के लिए जरूरी है इरादों का प्योर होना। कैलेंट एडवांस बनाते हैं ऐसा स्टील जो अंदर से है ज्यादा प्योर, ज्यादा मजबूत। कैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो।
2: डायरेक्टर, द टेस्ट ऑफ सक्सेस।
3: 11 मई आज तक पर पेपर लीक कनेक्शन का पर्दाफाश।
4: नीट की परीक्षा से पहले एक गेस पेपर धड़ल्ले से मोबाइल पर बंटता है। 135 सवाल उसी गेस पेपर से हूबहू मिलते हैं।
5: 15 दिन पहले से पूरे देश में बट रहा था, एनटीए को पता नहीं।
3: 12 मई आज तक के खुलासे पर मुहर।
6: जिम्मेदारी लेते हैं कि जो हुआ गलत हुआ।
4: आज तक की खबर के बाद आज सरकार की तरफ से एक्शन हुआ, एनटीए जागी, पेपर रद्द हुआ। हमने आज तक पर लगातार दस्तक दी है, खबरदार किया है, हर दल की सरकार को जगाया है, बताया है कि पेपर लीक रोक लीजिए वरना बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ होता रहेगा।
3: जहां खबर वहां खबरदार।
7: इन एसोसिएशन विद E3 HDMR, ये रिश्ता लंबा चलेगा।
8: गंगा के तट पर बसा शहर समेटे संस्कृति, संघर्ष और स्वाभिमान, जहां उद्योग की ताकत भी है और राजनीति की गूंज भी। क्रांति की विरासत से लेकर आधुनिक विकास तक जहां गूंजेगी विकसित यूपी की ऐतिहासिक बैठक। विकसित यूपी बैठक कानपुर, सिर्फ यूपी तक पर।
5: कोटा मेडिकल कॉलेज के सरकारी अस्पतालों में 5 प्रसूताओं के मौत के मामले में नया खुलासा हुआ है कि मरने वाली 5 महिलाओं को ऑक्सीटोसिन का जो इंजेक्शन लगाया गया था दरअसल वो नकली था। अब बड़ा सवाल है, सरकारी अस्पताल में नकली इंजेक्शन कैसे पहुंचा? राजस्थान सरकार के तरफ से आज तक कुछ भी नहीं बताया गया है इन महिलाओं की मौत कैसे हुई थी। शरद कुमार, जयपुर आज तक।

0: दक्षिणी लेबनन फिर धधक रहा है। इसराइल ने साफ कह दिया है कि हिजबुल्ला के अंत तक हमला रुकेगा नहीं। नेतन्याहू का गुस्सा अब खुली चेतावनी में बदल चुका है। इजरायली सेना ने दक्षिणी लेबनन के बड़े इलाके को कॉम्बैट जोन घोषित कर लोगों को तुरंत उत्तर की ओर जाने का आदेश दे दिया है। यानी साफ संदेश कि अब जंग और तेज होगी। नेतन्याहू कह रहे हैं हिजबुल्ला पर हमलों की तीव्रता और बढ़ेगी। उधर लाखों लोग घर छोड़ने को मजबूर हैं। सवाल यही है कि क्या लेबनन अब पूरी तरह युद्ध के मुहाने पर खड़ा है?
1: लेबनन का दक्षिणी हिस्सा एक बार फिर धधक रहा है। आसमान से बरसते बारूद और जमीन पर गरजते टैंकों ने साफ कर दिया है कि युद्ध अब किसी अंतिम अंजाम की ओर बढ़ रहा है। हिजबुल्ला को खत्म करने के उद्देश्य से शुरू की गई ये जंग अब लेबनान के सीमा के अंदर आ गई है। इसराइल ने दो टूक कह दिया है कि जब तक हिजबुल्ला का अंत नहीं होता ये हमला रुकेगा नहीं।
2: ये जो शांति वार्ता अमेरिका इसराइल और ईरान के झगड़े के बीच में हो रही है, जब 7 अप्रैल को जब पहली बार ये वार्ता शुरू हुई थी पाकिस्तान में, तो उस टाइम पे भी अगर हम उस टाइम के जो इवेंट्स हैं उन पे एक नज़र लें तो पाकिस्तान इसराइल को मान्यता नहीं देता है, ना ही पाकिस्तान में इसराइल की एम्बेसी है, और उस शांति वार्ता में इसराइल कभी उसका हिस्सा भी नहीं था। जब भी कोई सीज़फायर या शांति वार्ता की बात शुरू होती है तो इसराइल ये चीज तय करता है कि उससे पहले पहले जितना नुकसान वो प्रोक्सीज़ का कर सके वो कर ले। तो इसराइल इस शांति वार्ता में किसी तरह से भी विनर नहीं है। इसराइल विनर है जब जितने भी प्रोक्सीज़, चाहे वो हिजबुल्ला है, चाहे वो हमास है, चाहे वो हाउथीज़ हैं, उनका ज्यादा से ज्यादा नुकसान हो जाए और ईरान जो कि उन सबको सपोर्ट करता है उसका ज्यादा से ज्यादा नुकसान हो जाए। तो इसलिए शांति वार्ता एक तरफ चलती रहेगी, इसराइल अपनी कार्रवाई साथ साथ करता रहेगा।
1: इजरायली सेना ने दक्षिण लेबनान के एक बहुत बड़े हिस्से को कॉम्बैट जोन यानी युद्ध क्षेत्र घोषित कर दिया है। सेना ने स्थानीय नागरिकों को तुरंत जहरानी नदी के उत्तर की ओर जाने का हुक्म सुनाया है। ये कोई मामूली आदेश नहीं है। इसराइल की सीमा से 40 किलोमीटर दूर बहने वाली इस नदी के दक्षिण का पूरा इलाका जो लगभग 2000 वर्ग किलोमीटर में फैला है अब इसराइल के निशाने पर है। संदेश बिल्कुल साफ है, जंग अब और ज्यादा खतरनाक होने वाली है।

0: लेकिन इस बारूदी खेल के बीच पिस रही है आम जनता। हालत यह है कि सिडन शहर के राहत कैंप पूरी तरह भर चुके हैं, वहां तिल रखने की जगह नहीं बची है। मार्च से लेकर अब तक 12 लाख से ज्यादा लेबनानी नागरिक बेघर हो चुके हैं। सवाल यही है कि आखिर ये लोग जाएं तो कहां जाएं? अब सवाल उठता है कि आखिर युद्ध विराम के बाद भी इस क्षेत्र में हमले क्यों हो रहे हैं? तो समझिए, 16 अप्रैल को युद्ध विराम का ऐलान तो कर दिया गया था, लेकिन इसके बावजूद दोनों पक्ष लगातार एक दूसरे पर समझौता तोड़ने का आरोप लगाते रहे। लेबनान का कहना है कि इजरायली हमलों में अब तक 3,200 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है, जिनमें युद्ध विराम के बाद मारे गए 608 लोग भी शामिल हैं। दूसरी तरफ इसराइल का दावा है कि मार्च से अब तक उसके 23 सैनिक और 4 नागरिक मारे गए हैं। इसराइल के मुताबिक युद्ध विराम लागू होने के बाद भी हिजबुल्ला के ड्रोन हमलों में उसके 10 सैनिकों की जान गई।
1: सच्चाई यह है कि अमेरिका इसको चाहता है कि कोई डील हो, ईरान भी चाहता डील हो, मगर इसराइल नहीं चाहता। इसराइल चाहता है कि ये लड़ाई लंबी चले। पहली बात वो चाहता है कि किसी तरीके से ईरान कमजोर हो, और दूसरा वो लेबनान को जो हिजबुल्ला है उसको वो धकेलना चाहता है मिडल ऑफ जो लेबनान तक, और वो लिटानी नदी तक पहले ही पहुंच गए। तो ये सच्चाई है कि ये लड़ाई इतनी जल्दी खत्म होती नजर नहीं आ रही, क्योंकि इसराइल इस लड़ाई को बिल्कुल खत्म नहीं करना चाहता।
0: दोनों पक्ष एक दूसरे पर संघर्ष विराम के उल्लंघन का आरोप मढ़ रहे हैं। इसराइल का कहना है कि हिजबुल्ला के ड्रोन हमलों ने समझौते को तोड़ा है, इसलिए वो उत्तरी इसराइल की सुरक्षा के लिए अपनी जमीनी कार्रवाई को आगे बढ़ा रहा है।
2: October 7th, Hamas invaded us, butchered our men, beheaded our men, raped our women and then killed them, burnt our babies, did the worst massacre against the Jewish people since the Holocaust. And guess what? On the other border, Hezbollah from Lebanon was planning to do even more. They had 5,000 Redwan Force terrorists ready to invade the Galilee. So we pushed them back. We've got a security belt now that prevents them from doing that or shooting anti-tank missiles into our kitchens, into our living rooms. But it's not over yet. We still have missiles, we have drones, killer drones, we have to do.
0: इजरायली सैनिक अब येलो लाइन यानी पहले बनाए गए बफर जोन को पार कर आगे बढ़ चुके हैं, वहीं दूसरी तरफ हिजबुल्ला भी पीछे हटने को तैयार नहीं है।
3: दूसरों के घर में आग लगाने की नीति अब पाकिस्तान के अपने आंगन को जलाने लगी है। बलूचिस्तान में एक बार फिर धमाकों की गूंज सुनाई दी। बलूच लिबरेशन आर्मी यानी BLA ने दावा किया है कि उसने क्वेटा कैंट के पास पाकिस्तानी सैन्य ट्रेन को निशाना बनाया, जिसमें 82 सैनिक मारे गए। हालांकि पाकिस्तान की सेना ने अभी तक इन आंकड़ों की पुष्टि नहीं की है, लेकिन इतना तय है कि बलूचिस्तान अब इस्लामाबाद के लिए सबसे बड़ा जख्म बन चुका है। CPEC ठप पड़ रहा है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद से ही पाकिस्तान सेना का मनोबल गिर रहा है, और अब पाकिस्तान के सेना प्रमुख आसिम मुनीर हर हमले के पीछे भारत का नाम लेकर अपनी नाकामी छिपाने की कोशिश कर रहे हैं। सवाल यही है कि क्या आतंक की फैक्ट्री चलाने वाला पाकिस्तान अब उसी आग में जल रहा है जिसे उसने वर्षों तक दूसरों के लिए तैयार किया?
0: पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क जिसके आतंकवाद की आग से अब तक दूसरों का घर जलता आया है, लेकिन अब उस आग की आंच उसके घर तक आने लगी तो वो छटपटाने लगा। बलूचिस्तान की क्वेटा छावनी के पास एक बहुत बड़ा धमाका हुआ। बलूच लिबरेशन आर्मी के मजीद ब्रिगेड ने पाकिस्तानी सेना के एक स्पेशल मिलिट्री ट्रेन को उड़ा दिया। दावा की इस फिदायीन हमले में पाकिस्तानी सेना के 82 जवान ढेर हो गए और 121 से ज्यादा घायल। हमले की जिम्मेदारी लेते हुए BLA ने बयान जारी करते हुए कहा कि इस हमले को चमन फाटक के पास क्वेटा कंटोनमेंट के नजदीक अंजाम दिया गया। BLA के खुफिया विंग जिराब ने इस हमले की सटीक जानकारी मुहैया करवाई थी। सुबह ठीक 8 बजे एक सुसाइड हमलावर ने इस मिलिट्री ट्रेन को ही निशाना बना डाला। लेकिन हमेशा की तरह इस दर्दनाक बर्बादी के बाद भी पाकिस्तान का तोगला रवैया नहीं बदला। हमेशा की तरह अपनी नाकामी का ठीकरा दूसरों पर फोड़ने की आदत सामने आ गई है। अब बात करते हैं पाकिस्तान के फील्ड मार्शल और चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस आसिम मुनीर की। खुद को संविधान बदलकर बड़ा पद तो दे दिया, लेकिन अपनी फौज को सुरक्षा नहीं दे पा रहे। इस हमले के बाद जब अपनी जनता को जवाब देने की औकात नहीं बची तो मुनीर साहब भागे भागे बलूचिस्तान सीमा पर पहुंचे और वहां जाकर क्या किया, वही पुराना घिसा पिटा पाकिस्तानी प्रोपेगेंडा। मुनीर ने इस तबाही का आरोप सीधा भारत पर मढ़ दिया, नाम दे दिया फितनाल हिंदुस्तान।
4: जो मिलिट्री स्पेशल ट्रेन के ऊपर जो बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी के फ्रीडम फाइटर ने हमला किया और उसमें जितनी भी कैजुअल्टी हुई वो तमाम कैजुअल्टीज मोस्टली जो है जेसीओ और जवानों की थी, ऑफिसर्स के नाम उसमें नहीं आए। तो ये कोई नई बात नहीं है। लाइन ऑफ कंट्रोल पे जब हम लोग वहां पे रहते हैं, हमारे ऑफिसर करीब करीब हर पोस्ट के ऊपर ऑफिसर रहते हैं और सामने जब पाकिस्तान के पोस्ट देखते हैं उनका ऑफिसर कभी 2 महीने में 3 महीने में एक बार विजिट के लिए आता है। यंग ऑफिसर्स कैप्टन मेजर भी, उनकी तमाम पोस्टें जो हैं वो जेसीओ या एनसीओ या हवलदार ही मैन करते हैं। तो पाकिस्तान आर्मी के ऑफिसर जो हैं उनके अफसरान साहिबान हैं वो, तो वो अपने जैसे इंडियन आर्मी का एक तरतीब है, एक ऑनर कोड है, ऑफिसर लीड फ्रॉम द फ्रंट। आप आईपीकेएफ की कैजुअल्टीज देख लीजिए, आप जेएनके की इंसर्जेंसी की काउंटर टेररिज्म कैजुअल्टी देख लीजिए, ऑफिसर्स की जो फिजिकल कैजुअल्टीज हैं, जो एक्चुअल ऑफिसर्स की जो उन्होंने अपने प्राण गुवाए हैं उनका अगर आप देखें तो हमारे ऑफिसर्स की कैजुअल्टी हमेशा ज्यादा होती है क्योंकि हमारे ऑफिसर लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट रहते हैं।
0: अब हम बताते हैं कि पाकिस्तान हर हमले के पीछे भारत का हाथ तो बता देता है लेकिन सबूत नहीं दे पाता है। भारत पर आरोप लगाना सिर्फ एक तरीका है ताकि पाकिस्तान अपनी प्रशासनिक नाकामी छुपा सके। पाकिस्तानी फौज का मनोबल इतिहास के सबसे निचले स्तर पर है। आम पाकिस्तानी सैनिक बलूचिस्तान के गुरिल्ला हमलों और वहां की स्थानीय जनता के गुस्से के बीच पिस रहा है।
4: पाकिस्तान की मिलिट्री के जो अंदरूनी हालात इस वक्त है, देश के जो पॉलिटिकल, इकोनॉमिक और डिप्लोमेटिक जो हालत है उसी का एक फॉलोअर होता है कि मिलिट्री का क्या कंडीशन है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद चाहे उन्होंने अपना नैरेटिव बिल्डिंग कुछ भी किया हो लेकिन अंदरूनी हालात मिलिट्री को मालूम है, अंदरूनी हालात देश की पब्लिक को मालूम है। जिन्होंने उनके एयर बेसिस को जलते हुए देखा है, जिन्होंने टेरर टारगेट को ध्वस्त होते हुए देखा है, तो उन सबको मालूम है कि पाकिस्तान मिलिट्री अंदर से खोखली हो चुकी है। और यही बात बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी के जो फ्रीडम फाइटर्स हैं, चाहे वो जाफर एक्सप्रेस जो पहले हुआ था, चाहे जो अभी उन्होंने ट्रेन पे हमला किया मिलिट्री स्पेशल के ऊपर, और जहां वैसे भी जो पाकिस्तान मिलिट्री की कैजुअल्टी कर रहे हैं, तो बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी या BLA पूरी तरह से हावी है इस वक्त पाकिस्तान आर्मी के ऊपर।
0: सोचिए उस आम पाकिस्तानी फौजी का क्या कसूर है जिसे रावलपिंडी के एयर कंडीशन कमरों में बैठे आकाओं की गलत नीतियों की वजह से मरने के लिए छोड़ दिया गया है। जाफर एक्सप्रेस में मारे गए सारे नाम JCO या उससे नीचे के रैंक के सैनिक, यानी पाक सेना के ऑफिसर और सैनिकों के स्टेटस का अंतर आज भी है। पाक फौज का हौसला टूटने के पीछे ये सबसे बड़ी वजह है। इसलिए आसिम मुनीर जैसे नकली फील्ड मार्शल अपनी आवाम का ध्यान भटकाने के लिए भारत का नाम जपने लगते हैं।
3: दावा मसीहा बनने का था, पैरवी पश्चिमी एशिया में शांति दूत बनने की थी, लेकिन अब जो खेल हुआ है उसने इस्लामाबाद से लेकर रावलपिंडी तक हड़कंप मचा दिया है। जी हां, अब्राहम अकॉर्ड के चक्रव्यूह में पाकिस्तान ऐसा फंसा है कि अब उसे काटो तो खून नहीं। एक तरफ अंदरूनी हालात, बदहाली की मार, आतंकवाद, और दूसरी तरफ महाशक्ति अमेरिका का वो सीधा फरमान जिसने पाकिस्तान के दोहरे चेहरे को दुनिया के सामने सरेआम बेनकाब कर दिया।
0: ईरान और अमेरिका के बीच जो शांति का महाप्रस्ताव आया उसमें पाकिस्तान ब्रोकर यानी दलाल की भूमिका में था, लेकिन अब इसको पार्टी बनाने की प्रस्तावना लिखी जा रही है। अब अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ऐसा पासा फेंका है कि पाकिस्तान के हुक्मरान कांप रहे हैं। ट्रंप का साफ आदेश है, या तो इसराइल को मान्यता दो, अब्राहम अकॉर्ड पर दस्तखत करो, या फिर अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहो। डोनाल्ड ट्रंप का आदेश हमेशा से लीक से हट कर रहा है। इस बार उन्होंने पश्चिमी एशिया में स्थायी शांति के लिए एक नया और बेहद कड़ा ब्लूप्रिंट तैयार किया। ट्रंप ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए लिखा, मेरा मानना है कि इस पेचीदा पहेली को सुलझाने के लिए अमेरिका ने जो मेहनत की है, उसके बाद ये जरूरी होना चाहिए कि ये सभी देश एक ही समय पर अब्राहम समझौते पर दस्तखत कर दें। सऊदी अरब, कतर, पाकिस्तान, तुर्की, मिस्र और जॉर्डन को ईरान के साथ समझौते को एक बहुत बड़ी ऐतिहासिक घटना बनाने के लिए पूरी तरह तैयार रहना चाहिए। ट्रंप इसे पश्चिमी एशिया में शांति बहाली की पहली और ऐतिहासिक शर्त मान रहे हैं, लेकिन खबर ये है कि पाकिस्तान ने इन शर्तों को मानने से इनकार कर दिया है।
5: साहब जो है उनकी दिल के बड़ी करीब चीज है, और वो पीस अकॉर्ड के बाद अगला स्टेप उनका ये होना है कि इंडोनेशिया, पाकिस्तान और सऊदी अरब तीनों को कायल करें कि इब्राहिम अकॉर्ड का हिस्सा बने।
6: मैं तो जाती तौर पे तो मेरा इसमें कोई मेरे नहीं ख्याल कि हम किसी भी ऐसे अकॉर्ड में शामिल हों जो हमारे बुनियादी जो नज़रियात हैं उसके साथ क्लैश करे, और मेरा ख्याल है इस वक्त कोई इनिशिएटिव इस सिलसिले में हमारी तरफ से नहीं लिया गया, ना हमें किसी ने कहा है। तो आप किस तरह उन लोगों के साथ बैठेंगे जिन लोगों का जो है वो एक दिन का भी इतबार नहीं किया जा सकता?
5: हुकूमत को किसी लेवल के ऊपर अप्रोच किया गया यूएस स्टेट डिपार्टमेंट से या किसी और जगह से?
6: वी हैव ए वेरी क्लियर स्टैंड कि ये चीज़ जो है हमें एक्सेप्टेबल नहीं है। और अब दूसरा ये है कि हमारे पासपोर्ट के ऊपर जो है, हम वाहिद मुल्क हैं जिनके ऊपर जिनमें इंक्लूड ही नहीं है इसराइल का नाम।
7: सर, कैटेगोरिकली रिजेक्ट कर रहे हैं कि अब्राहम अकॉर्ड्स का पाकिस्तान हिस्सा बनने जा रहा है, सबके नतीजे में ऐसा कुछ होने जा रहा है?
8: नहीं, हम किसी अकॉर्ड का हिस्सा नहीं बनने जा रहे। हमारी पॉलिसी जो है अपनी विज़ इसराइल रिमेन्स एज इट इज, लेकिन वी आर पार्टनर इन एट कंट्रीज ताकि हम वहां खून जो बह रहा है मासूम लोगों का, 64,000 बह चुका है लोगों का, उसको हम रोक लें।
0: ट्रंप के अल्टीमेटम के बीच अमेरिका के सबसे रसूखदार रिपब्लिकन सीनेटर और ट्रंप के बेहद करीबी लिंजे ग्राहम ने जो खुलासा किया उसने पूरी दुनिया को चौंका दिया है। सीनेटर ग्राहम ने पाकिस्तान के दोहरे चेहरे पर से पर्दा उठाते हुए साफ कह दिया कि पाकिस्तान कोई मीडिएटर नहीं बल्कि खुद एक बहुत बड़ी समस्या है। दरअसल ये विवाद आज का नहीं है, पिछले साल अक्टूबर में ही पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ और विदेश मंत्री और उप प्रधानमंत्री इशाक डार ने अब्राहम अकॉर्ड में शामिल होने के प्रस्ताव को सिरे से खारिज कर दिया था। उनका कहना था कि उन्हें इसराइल पर भरोसा नहीं है, लेकिन कूटनीति के जानकार यहां दो कारण देखते हैं। पहला, पाकिस्तान के अंदर आतंकियों और अवाम का दबाव, और दूसरा कि पाकिस्तान का अपना कोई स्वतंत्र स्टैंड नहीं है।
4: अब्राहम अकॉर्ड किसी भी हालत में पाकिस्तान को मंजूर नहीं है। देखिए, एक मुल्क ने पिछले 80 साल से इसराइल को मान्यता नहीं दी है, उनकी एम्बेसी नहीं है, उनके साथ में कोई डील नहीं है। हर रोज उनका दिन शुरू होता है कि हमने इसराइल को तहस नहस करना है, ज्यूस को हमने खत्म करना है, और अचानक अभी क्योंकि अमेरिका बोल रहा है कि अब्राहम अकॉर्ड कीजिए, तो पाकिस्तान में अंदरूनी रिवॉल्ट इतना बुरा होगा अगर इसराइल के साथ किसी तरह की भी संधि या समझौता या हैंडशेक होता है। जो रेडिकलाइजेशन के खिलाफ जाकर के इसराइल के साथ समझौता करेंगे तो पाकिस्तान के अंदरूनी हालात वो बहुत ज्यादा बिगड़ जाएंगे, और ये पाकिस्तान की लीडरशिप को मालूम है, पॉलिटिकल और मिलिट्री दोनों को। इसलिए पाकिस्तान के ऊपर चाहे अमेरिका का कितना भी दबाव हो, इसराइल के साथ अब्राहम अकॉर्ड में शामिल होना उनके लिए अंदरूनी हालात को बहुत ज्यादा नाजुक बना देगा, लेकिन पाकिस्तान तो पाकिस्तान है, पैसे के लिए कुछ भी करेगा। तो लेट्स सी,
0: इतिहास गवाह है, जब जब पाकिस्तान को आर्थिक मदद या कर्ज की जरूरत होती है वो अपने फैसले बदल लेता है। जानकारों का कहना है कि अगर आने वाले समय में सऊदी अरब ने अब्राहम अकॉर्ड पर हस्ताक्षर कर दिए तो पाकिस्तान भी मजबूरी में दुम हिलाता हुआ इस समझौते पर साइन कर देगा।
9: अब्राहम अकॉर्ड्स का कन्फ्यूजन पाकिस्तान के लिए तो होना ही था। जिस तरह से पाकिस्तान ने अपना अलाइनमेंट अमेरिका और इसराइल के साथ किया है, एक्चुअली पाकिस्तान का अलाइनमेंट नहीं है, ये वहां के मिलिट्री डिस्पेंसेशन का अलाइनमेंट है जो उनके सहारे अपनी सत्ता वहां बचा के रखते हैं। तो जहां तक स्ट्रीट एंगर का सवाल है, फिलिस्तीन का मसला सुलझे बिना अगर अब्राहम अकॉर्ड्स को पाकिस्तानी एडमिनिस्ट्रेशन या पाकिस्तानी गवर्नमेंट एक्सेप्ट करती है तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा विरोध होने की संभावना है। मुस्लिम्स इस बात को बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं करेंगे।
0: नाइन इलेवन के आतंकी हमले के बाद से ही दुनिया पाकिस्तान के इस दोहरे रवैये को देख रही है। एक तरफ वो अमेरिका का सहयोगी बनने का ढोंग करता है तो दूसरी तरफ पर्दे के पीछे उसके काम कुछ और ही कहानी बयां करते हैं। अब पाकिस्तान के सामने केवल दो ही रास्ते बचे हैं, या तो वो अपने पुराने ढर्रे पर अड़ा रहे और वैश्विक स्तर पर पूरी तरह अलग थलग हो जाए, या फिर अमेरिका के इस फरमान के आगे घुटने टेक कर अब्राहम अकॉर्ड का हिस्सा बन जाए। देखना होगा कि शहबाज शरीफ और जनरल आसिम मुनीर इस चक्रव्यूह से निकलने के लिए क्या रास्ता चुनते हैं।
3: वॉर रूम में आज के लिए इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।

0: presented by Patanjali Dant Kanti Toothpaste, complete oral health ka sach.
1: In association with
2: Bharat ki apni electric sawari, Sokudo.
3: To 15-year-old Harper, buying an $80 vintage rock t-shirt is a great investment. To Harper's mom, this logic has a few holes in it. So she helped Harper open a Wells Fargo Clear Access banking account. With no overdraft fees and tools to track spending, Harper's learning, one heavy metal tee at a time. However you make money work, Wells Fargo can work with that.
4: Terms apply. Visit wellsfargo.com/deposit disclosures for fees and details.
5: The music you love is all right here on TuneIn, bringing you good vibes and the hottest hits. But are you ready to amp things up even more? Just upgrade to TuneIn Premium for all of our exclusive music channels, completely commercial free. So you get more of today's hits. More country roads. And everything else. Hear it all here, commercial free, on TuneIn.
6: There's just something about classic soul music that gets you moving. And TuneIn's exclusive soul groove station has all the right moves. Hit play on the grooviest 70s selection. Get your masters in melody with Motown Classics. Or just set the right tone with smooth, soulful vibes from Marvin Gaye and more. It's all right here on TuneIn, ready to set the perfect 70s tone. Search Soul Groove or tell your device to play Soul Groove on TuneIn now to listen.
7: Whatever you're in the mood for, there's always something to listen to on TuneIn. Music, news, sports, podcasts, and live radio from around the world. All in one place. Enjoy over 100,000 stations, from local favorites to global voices, so you never miss a beat. Plus, you can listen to TuneIn on over 200 devices, at home, in the car, or on the go. Hear it all and more right here on TuneIn.
8: मौसम विभाग ने कहा है कि इस साल भारत में गर्मी का असर बहुत ही ज्यादा होने वाला है।
9: रामराज व्हाइट शर्ट्स इस समर को कूल बना दे।
10: गहरे नारंगी रंग की शर्ट पहने एक लड़के को 4 से 5 लड़कों ने पकड़ रखा है। सफेद शर्ट पहना लड़का उसे छुड़ाने की कोशिश कर रहा है। कुछ लड़के आसपास भी खड़े हैं। इन सब के बीच गुट में जुटे लड़के नारंगी रंग की शर्ट पहने लड़के को छोड़ नहीं रहे हैं। ये तस्वीरें गाजियाबाद के खेड़ा इलाके में बेरहमी से हुई हिंदू नाबालिग सूर्या की हत्या से ठीक पहले की बताई जा रही है, जहां मामूली विवाद में मुस्लिम दोस्तों ने चाकुओं से गोदकर 17 साल के सूर्या की जान ले ली। बकरीद के मौके पर दिन दहाड़े हुई ये वारदात जितनी सनसनीखेज है, आरोप उतने ही संगीन। दावा हो रहा है कि सूर्या की हत्या से पहले आरोपियों ने उससे पूछा था कि कभी उसने बकरा कटते देखा है। इनकार करने के फौरन बाद उस पर चाकुओं से हमला बोल दिया।
11: इन लोगों ने फोन करके धोखे से मेरे बेटे को बुलाया और जाके ही आ जाओ ईद मिलते हैं, ठीक है। फिर मेरे बेटे से कहा तुमने बकरा कटते हुए देखा है? मेरा बोला मैंने नहीं देखा है। ऐसे कहकर एकदम चप्पू उसके पेट में डाल के ऐसे घुमा दिया है।
10: सूर्या पर हमले के बाद मौके पर चीख पुकार मची, जिसे सुनकर सूर्या का भाई यश चौहान और उसकी माँ मौके पर पहुंचे। तब तक सभी आरोपी फरार हो चुके थे। जख्मी हालत में सूर्या को अस्पताल ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान उसने दम तोड़ दिया। हिंदू लड़के सूर्या की हत्या के बाद गाजियाबाद के खेड़ा में भारी तनाव है। हिंदूवादी संगठन प्रदर्शन कर रहे हैं। हालात को देखते हुए भारी पुलिस बल की तैनाती की गई है।
12: एक हिंदू परिवार के लड़के को बाहर बुलाया जाता है और उसे 5 से 6 लोग पकड़ते हैं और उसे बकरा बताकर काटने का काम करते हैं। उसके पेट में 6 से 7 वार करते हैं, उसकी हथेलियां तक बाहर आ जाती है। किस तरह की स्थिति खोड़ा की हो गई है। हम लोग बार बार कह रहे हैं कि हिंदू सुरक्षित नहीं है, पलायन करने की स्थिति में है, क्योंकि तरुण खटिक की जो आग थी अभी तक नहीं बुझी, मगर खोड़ा में दोबारा ऐसे तरुण खटिक जैसी घटना हो चुकी है।
10: उधर सूर्या की मौत के बाद माँ का रो रो कर बुरा हाल है। परिवार वाले सूर्या के हत्यारों को सख्त से सख्त सजा की मांग कर रहे हैं। मामले की गंभीरता को देखते हुए कुछ संदिग्धों को हिरासत में लिया गया है। पूछताछ हो रही है। पुलिस आरोपियों की धरपकड़ की कोशिश में लगी है। गाजियाबाद में हुई इस वारदात के बाद स्थिति तनावपूर्ण बनी हुई है। गाजियाबाद से मयंक कौर के साथ अंशुल सिंह आज तक।
0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच
1: इन एसोसिएशन विद
2: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।

बंगाल के सोनारपुर में अभिषेक बैनर्जी पर हमले से बवाल गुस्साए लोगों ने कपड़े फाड़े, फेंके पत्थर। अंडी टीएमसी सांसद ने कहा, मुझे मारने की थी साजिश। ममता, राहुल, अखिलेश ने बीजेपी पर उठाए सवाल। कर्नाटक के अगले मुख्यमंत्री होंगे डीके शिवकुमार। कांग्रेस विधायक दल की बैठक में चुने गए नेता 3 जून को 8 से 10 मंत्रियों के साथ ले सकते हैं शपथ। लखनऊ में सीएम योगी का बड़ा बयान, अहिंसा ही इंसान का परम धर्म, लेकिन जब कोई देश समाज के लिए खतरा है तो अपनानी पड़ती है हिंसा की नीति। गाजियाबाद में अंतर्राष्ट्रीय लेवल के पैरा एथलीट चिराग त्यागी की हत्या, साय उपवन इलाके में मिला शव। अगले महीने जापान में खेलने वाले थे टूर्नामेंट। राजस्थान के कई शहरों में रेतीले तूफान से दहशत, धूल भरी आंधी से दिन में ही छाया अंधेरा। दिल्ली एनसीआर में बारिश से गिरा तापमान।

0: नमस्कार, मैं हूं नेहा बाथम और आप देख रहे हैं कहानी 2.0। 12 साल भारतीय राजनीति का एक ऐसा दौर जहां चुनाव से सरकार चुनने की प्रक्रिया नहीं रहे, बल्कि नेतृत्व, छवि और जन भावना की सबसे बड़ी लड़ाई बन गए। नरेंद्र मोदी ने हर चुनाव के साथ राजनीति की शैली, प्रचार का तरीका और जनता से संवाद का स्वर बदल दिया। 2014 में बदलाव की लहर, 2019 में राष्ट्रवाद और मजबूत नेतृत्व का संदेश और 2024 में तीसरी बार सत्ता तक वापसी। आज कहानी नरेंद्र मोदी की जीत की।
1: मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मुझे गरीब के लिए जीना है, गरीब के लिए जूझना है, गरीबों के लिए कुछ करना, उनकी जिंदगी में बदलाव लाना, इसका मैंने बीड़ा उठाया।
2: 14 में जो लहर थी, क्या उसे आप देख रहे हैं? पिछली बार आप चैलेंजर थे, इस बार इनकम्बेंट है।
3: जो हमारे विरोधी थे, उनका गालियों का फोकस एक ही, नरेंद्र मोदी।
1: आज देश निराशा के अंधकार से निकलकर विश्वास के उजाले में तिरंगा फहरा रहा। माय आइडिया ऑफ इंडिया यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवताः। भारत माता की।
0: नरेंद्र मोदी पिछले 12 साल से प्रधानमंत्री हैं। उन्होंने सिर्फ सत्ता नहीं संभाली, बल्कि देश की दिशा और चर्चा दोनों को बदल डाला। संघर्ष की जमीन से उठकर शिखर तक पहुंचने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजनीति को राष्ट्रनीति के केंद्र में ला खड़ा किया। ये सफर समर्थकों के लिए विश्वास की कहानी रहा, तो विरोधियों के लिए लगातार चुनौती। कहानी सिर्फ सरकार के 12 साल की नहीं है, कहानी उस नेतृत्व की है जिसने भारतीय राजनीति की तस्वीर और तेवर दोनों बदल दिए।
1: मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा।
4: 2014 के बाद से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विपक्ष के हर सवाल का जवाब अपने कान से दिया, हर उस हमले को ही हौसले में बदल दिया जिसने उन्हें घेरा, हर उस हवा का ही रुख बदल दिया जो उनके दामन को उड़ाने के लिए बही।
5: ये सारे विपक्षी दल सुबह शाम मोदी मोदी मोदी मोदी, बारिश नहीं आई मोदी जिम्मेवार, बस लेट आई मोदी जिम्मेवार, डॉक्टर नहीं आया मोदी जिम्मेवार, घर में खिचड़ी पकाई थोड़ी कच्ची रह गई मोदी जिम्मेवार।
1: चार पीढ़ी से देश पर राज करने वाले लोगों को कोर्ट के दरवाजे पर जाना पड़ा और

0: ने की। और मैं अपने प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी के बारे में कहना चाहता हूं, हमारी सेना के जवानों के प्रति, हमारे देश के वेटरन्स के प्रति उनके दिल में कितना सम्मान है ये बताने की जरूरत नहीं है।
1: आज कहानी में देखिए 2014 में नरेंद्र मोदी ने गुजरात से दिल्ली की सत्ता तक का सफर कैसे तय किया, 2019 में पहले से भी बड़ा जनादेश कैसे मिला और कैसे 2024 में तमाम राजनीतिक चुनौतियों के बावजूद तीसरी बार देश की सत्ता पर काबिज हुए।
2: मेरे लिए देश से बड़ा, देशवासियों से बड़ा कुछ भी नहीं है।
3: संविधान एवं भारत
1: 12 साल हो गए मोदी सरकार के। पीएम मोदी पार्टी और संगठन को बुलंदियों पर पहुंचा चुके हैं। पीएम मोदी का सियासी इतिहास कहता है कि जो बीड़ा उन्होंने उठाया उसमें कभी नाकाम नहीं हुए, परिस्थितियां चाहे जैसी भी रही हो।
2: मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा।
4: 2012 से 2014 ये सिर्फ 2 साल का राजनीतिक सफर नहीं था, ये उस नेता के राष्ट्रीय उदय की कहानी है जो गुजरात की सीमाओं को पार करके दिल्ली पहुंच चुका था। 2012 में चौथी बार गुजरात जीतने वाले नरेंद्र मोदी ने सिर्फ चुनाव नहीं जीता था, उन्होंने उम्मीद, आक्रामक प्रचार और मजबूत नेतृत्व की नई राजनीति गढ़ी थी। पार्टी के भीतर विरोध था, विपक्ष लगातार हमलावर था, लेकिन हर चुनौती के साथ मोदी का कद और बढ़ता गया और फिर 2014 में देश ने ऐसा जनादेश दिया जिसने पूरे देश को चकित कर दिया।
2: 60 साल महास्वार्थ बंधन को दिए हैं आप, एनडीए को, बीजेपी को 60 महीने दीजिए, पूरी एबीसीडी कांग्रेस के भ्रष्टाचार की पहचान बन गई है।
0: मैंने ऐसी आंधी कभी नहीं देखी जो आज देखा।
2: पाकिस्तान एक के बाद एक जुल्म करता चला जा रहा है और 125 करोड़ का देश चुपचाप सारी चीजें झेल रहा है। आप गुजरात नहीं बना सकते, इसके लिए तो 56 इंच का सीना लगता है।
1: पूरा देश दंग था इस तस्वीर को देखकर। ये दृश्य प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हिस्से में एक दिन में आकर नहीं गिर गए थे, इसके लिए उन्होंने भारत की जनता का ये भरोसा हासिल किया था कि वही देश का भाग्य बदल सकते हैं। साल 2012 का गुजरात चुनाव नरेंद्र मोदी के राजनीतिक सफर का ये वो पड़ाव था जहां से गुजरात का नेता दिल्ली की सत्ता के दरवाजे तक पहुंचने लगा था। चुनौती छोटी नहीं थी, लगातार चौथी बार मुख्यमंत्री बनने की चुनौती थी, लेकिन नरेंद्र मोदी का अंदाज बाकी नेताओं से अलग था। नरेंद्र मोदी सिर्फ चुनाव नहीं लड़ रहे थे, वो अपने नाम को एक ब्रांड बना रहे थे।
2: पाकिस्तान ने हमला बोला, आतंकवादियों को भेजा, 26/11 करके मुंबई में निर्दोषों को मौत के घाट उतार दिया, पाकिस्तान गुनहगार है, उसका जवाब देने के बाद बजाय वो मुंबई की घटना को अयोध्या की राम मंदिर की घटना के साथ जोड़ करके वो जस्टिफाई कर रहा है। भाइयों बहनों, पाकिस्तान की ये हरकतें, ये इसलिए पाकिस्तान है क्योंकि दिल्ली में बैठी हुई सरकार में दम नहीं।
5: जेमना निराला नेतृत्व ने दृष्टिवंत आयोजन, प्रगति और विकास,
1: नतीजे आए और एक बार फिर गुजरात ने नरेंद्र मोदी के नाम पर भरोसा जता दिया। बीजेपी सत्ता में लौटी और नरेंद्र मोदी चौथी बार मुख्यमंत्री बन गए। लेकिन इस जीत के बाद सवाल सिर्फ गुजरात तक सीमित नहीं रहे, अब सवाल दिल्ली को लेकर होने लगे थे। क्या नरेंद्र मोदी राष्ट्रीय राजनीति का अगला बड़ा चेहरा बनने जा रहे हैं?
6: खूब खूब आभार, भारत माता की।
7: नामोजी तैयार हैं यहाँ आने के लिए प्रधानमंत्री बन।

0: करने के लिए जो मर्जी आपके पार्टी करें।
1: मैं बताता हूं, गुजरात मॉडल अच्छा लगता है तो जो भी बैठे हैं थोड़ा गुजरात से थोड़ा सीखना शुरू कर दे, अपने आप यहाँ लागू हो जाएगा, मेरी आने की जरूरत नहीं है।
0: आपने पूरा जवाब नहीं दिया, मैं बोला आप आप इस देश की प्रधानमंत्री बनना चाहते हो कि नहीं, सीधी बात, जो जो मर्जी आपकी पार्टी बोले।
1: मैं बताता हूं, मैंने अपने जीवन में मान करके चला हूं, कभी कुछ बनने का सपना मत देखो, कुछ करने का जरूर सपने होने चाहिए और उस करते रहना चाहिए।
2: मोदी अब सिर्फ एक मुख्यमंत्री नहीं थे, उनका कद बढ़ रहा था और हर कोई इसे महसूस कर रहा था। सीएम बनते ही ब्रिटेन ने 2002 दंगों के बाद करीब 10 साल तक नरेंद्र मोदी का कूटनीतिक बहिष्कार किया था। उसने अपने दरवाजे खोल दिए थे। ये सिर्फ रिश्तों में बदलाव नहीं था, ये नरेंद्र मोदी को लेकर बदलते नजरिए का संकेत था। मोदी के आलोचक उन्हें कट्टर हिंदुत्व की राजनीति का चेहरा बताते रहे, लेकिन दूसरी तरफ गुजरात मॉडल की चर्चा पूरे देश में हो रही थी। तेज आर्थिक विकास, निवेश, इंफ्रास्ट्रक्चर और भ्रष्टाचार के आरोपों से लगभग बेदाग छवि थी गुजरात सरकार की। यही वजह थी कि समर्थकों के बीच मोदी सिर्फ हिंदू हृदय सम्राट नहीं थे, वो बीजेपी के विकास पुरुष भी बन चुके थे।
3: पिछले 10 साल में महात्मा गांधी जी ने जो जिक्र किया था राम राज्य का, वैसे राम राज्य को नरेंद्र भाई ने पूरा गुजरात प्रदेश में स्थापित किया है।
2: 2012 की जीत के बाद बीजेपी के भीतर भले खुलकर कुछ नहीं कहा जा रहा था, लेकिन कार्यकर्ताओं की जुबान पर एक ही नाम था, नरेंद्र मोदी। साल 2013 आते आते मोदी का अंदाज बदल चुका था। अब वो सिर्फ गुजरात की बात नहीं कर रहे थे, वो 130 करोड़ हिंदुस्तानियों की बात कर रहे थे। गांधीनगर से दिल्ली को चुनौती दी जा रही थी। बार बार उनसे सवाल किया जा रहा था कि मोदी दिल्ली आने के लिए तैयार हैं, तो जवाब भले संतुलित था, लेकिन राजनीति समझ चुकी थी कि देश बदलाव की तरफ बढ़ रहा है।
1: मैं मणिनगर को ही अपना सब कुछ मानता हूं, इसलिए मैं और दूरियों को नापता नहीं रहता हूं। भैया, मैं तो मुख्यमंत्री का भी कभी दावेदार नहीं रहा, मैं किसी चीज का दावेदार नहीं हूं, मैं एक कार्यकर्ता हूं और कार्यकर्ता के रूप में काम करना यही मेरा काम है, इससे अधिक मैं सोचता नहीं हूं।
2: बीजेपी में अब मुद्दे बदल रहे थे, पार्टी में राजनीति का विमर्श बदल रहा था और सबसे बड़ा बदलाव ये था कि राजनीति का चेहरा बदल रहा था। साल 2013, गोवा में बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक होती है और नरेंद्र मोदी को 2014 लोकसभा चुनाव के लिए पार्टी की कैंपेन कमेटी का चीफ बना दिया गया। ये सिर्फ संगठन का फैसला नहीं था, ये बीजेपी का सबसे बड़ा राजनीतिक दाव था। ऐसा लगने लगा कि मोदी की राह उनकी पार्टी में ही रोक दी जाएगी, लेकिन नरेंद्र मोदी ने विरोध की हवा का रुख मोड़ दिया था। बीजेपी कार्यकर्ता खुलकर मोदी के समर्थन में उतर आए थे और साल 2013 आते आते बीजेपी ने नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित कर दिया था।
4: द पार्लियामेंट्री बोर्ड ऑफ बीजेपी मेट टुडे एंड डिसाइडेड दैट श्री नरेंद्र मोदी विल बी आवर प्राइम मिनिस्ट्रियल कैंडिडेट फॉर द कमिंग लोकसभा इलेक्शन।
2: अब लड़ाई सिर्फ चुनाव की नहीं थी, अब लड़ाई नेतृत्व की थी। 2014 का चुनाव आते आते नरेंद्र मोदी ने भारतीय राजनीति का पूरा स्टाइल बदल दिया था। देश की राजनीति पहली बार एक चेहरे के इर्द गिर्द घूम रही थी। उत्तर प्रदेश हो, बिहार हो, महाराष्ट्र हो या कर्नाटक,
5: मैं आपसे वादा करने आया, आप बात भारतीय जनता पार्टी का अवसर।
2: हर जगह मुकाबला मोदी बनाम बाकी सब होता जा रहा था, और अब इस लड़ाई में प्रधानमंत्री मोदी के साथ लाल कृष्ण आडवाणी भी खड़े थे।
6: 16 तारीख को परिणाम आएंगे और नरेंद्र भाई को
2: अब पार्टी में सारे मनभेद और मतभेद खत्म हो गए थे। अब नरेंद्र मोदी अपनी हर रैली में अलग अलग वर्गों की उम्मीदों को सीधे छूने की कोशिश कर रहे थे। चुनावी मंचों से वो सिर्फ भाषण नहीं दे रहे थे, बल्कि देश के हर तबके के लिए अपना विजन सामने रख रहे थे।
1: इस संकट में आए सभी किसानों से हम मिले, उनकी मुसीबत को समझे और सरकार के पास जाकर के उनके हक के लिए हम लड़ाई लड़े।
2: मोदी अपनी रैलियों में युवाओं से रोजगार की बात कर रहे थे, किसानों से कमाई की बात कर रहे थे, कारोबारियों से विकास की बात कर रहे थे, मध्यम वर्ग से मजबूत अर्थव्यवस्था की बात कर रहे थे और पूरे देश से मजबूत नेतृत्व की बात कर रहे थे।
1: बहनों, मैंने बिड़ा उठाया है और मेरा तो मंत्र है, न खाऊंगा न खाने दूंगा।
2: मोदी जब 2014 में अपने सबसे बड़े राजनीतिक मिशन की शुरुआत कर रहे थे, तब उन्होंने वाराणसी से चुनाव लड़ने का फैसला किया। काशी पहुंचकर नरेंद्र मोदी ने खुद को गंगा पुत्र की तरह पेश किया और एक बयान ने पूरे चुनावी माहौल को भावनात्मक रंग दे दिया।
1: न मुझे किसी ने भेजा है, न मैं यहाँ आया हूँ, मुझे तो माँ गंगा ने बुलाया है।
2: यही वो पल था जब नरेंद्र मोदी सिर्फ एक राजनीतिक नेता नहीं रहे, वो करोड़ों लोगों की भावनाओं से जुड़ते चले गए। लेकिन इसी बीच कांग्रेस नेता मणिशंकर अय्यर का बयान आया। उन्होंने कहा कि मोदी यहाँ चाय बेच सकते हैं, प्रधानमंत्री नहीं बन सकते।
7: नरेंद्र मोदी कभी भी देश के प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे। लेकिन यहाँ आकर चाय का वितरण करना चाहते हैं तो हम उनके लिए कुछ जगह बना रहे हैं।
2: कांग्रेस का यही हमला नरेंद्र मोदी का सबसे बड़ा हथियार बन गया। चाय पर चर्चा देश का सबसे बड़ा राजनीतिक कैंपेन बन गया था। मोदी ने खुद को उस आम आदमी के तौर पर पेश किया जिसने संघर्ष से यहां तक का सफर तय किया था। विपक्ष ने गुजरात दंगों का मुद्दा उठाया, सोनिया गांधी ने जहर की खेती वाला बयान दिया, लेकिन नरेंद्र मोदी ने जवाब में एक नया राजनीतिक मुहावरा दे दिया।
1: आपकी हैसियत नहीं है, आप गुजरात नहीं बना सकते, इसके लिए तो 56 इंच का सीना लगता है।
2: अब चुनाव सिर्फ पार्टियों का नहीं रहा था, ये चुनाव व्यक्तित्व का बन चुका था। एक तरफ यूपीए सरकार के खिलाफ नाराजगी थी, दूसरी तरफ नरेंद्र मोदी की आक्रामक और निर्णायक छवि, और फिर आया वो नारा जिसने 2014 के चुनाव को आंदोलन में बदल दिया। देश के गांव, शहर, सोशल मीडिया, टीवी, हर जगह सिर्फ एक ही नाम गूंज रहा था, मोदी। ২০১৪ लोकसभा चुनाव के नतीजे आए और भारतीय राजनीति की तस्वीर बदल गई। बीजेपी ने अपने दम पर 282 सीटें जीत ली थी। 3 दशक बाद किसी पार्टी को पूर्ण बहुमत मिला था। कांग्रेस सिर्फ 44 सीटों पर सिमट गई।
1: मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी।
2: ये सिर्फ सरकार बदलने का चुनाव नहीं था, ये भारतीय राजनीति में सत्ता के केंद्र के बदलने का चुनाव था। नरेंद्र मोदी जो कभी गुजरात के मुख्यमंत्री थे, अब देश के प्रधानमंत्री बन चुके थे।
5: 2014 में मोदी सिर्फ चुनाव नहीं जीते थे, उन्होंने भारतीय राजनीति की भाषा, शैली और दिशा तीनों बदल दी थी।
8: वक्त एक छोटे से ब्रेक का हौसला है, ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे 2019 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कैसे किया करिश्मा, कैसे बदल दी बीजेपी की रणनीति।

क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।

बंगाल के सोनारपुर में अभिषेक बैनर्जी पर हमले से बवाल गुस्साए लोगों ने कपड़े फाड़े, फेंके पत्थर। अंडी टीएमसी सांसद ने कहा, मुझे मारने की थी साजिश। ममता, राहुल, अखिलेश ने बीजेपी पर उठाए सवाल। कर्नाटक के अगले मुख्यमंत्री होंगे डीके शिवकुमार। कांग्रेस विधायक दल की बैठक में चुने गए नेता 3 जून को 8 से 10 मंत्रियों के साथ ले सकते हैं शपथ। लखनऊ में सीएम योगी का बड़ा बयान, अहिंसा ही इंसान का परम धर्म, लेकिन जब कोई देश समाज के लिए खतरा है तो अपनानी पड़ती है हिंसा की नीति। गाजियाबाद में अंतर्राष्ट्रीय लेवल के पैरा एथलीट चिराग त्यागी की हत्या, साय उपवन इलाके में मिला शव। अगले महीने जापान में खेलने वाले थे टूर्नामेंट। राजस्थान के कई शहरों में रेतीले तूफान से दहशत, धूल भरी आंधी से दिन में ही छाया अंधेरा। दिल्ली एनसीआर में बारिश से गिरा तापमान।

0: 2014 में देश ने नरेंद्र मोदी को बदलाव की उम्मीद के साथ दिल्ली की सत्ता सौंपी थी, लेकिन 2019 का रण अलग था। अब सवाल इरादों का नहीं, प्रदर्शन का था। एक तरफ विपक्ष मोदी सरकार को घेरने के लिए एकजुट हो रहा था, तो दूसरी तरफ प्रधानमंत्री मोदी हर चुनावी मंच को सीधे जनता से संवाद में बदल रहे थे। राष्ट्रीय सुरक्षा, कल्याणकारी योजनाएं और व्यक्तित्व आधारित राजनीति, इन सब ने चुनाव को पूरी तरह नया रंग दे दिया था। और फिर आया वो जनादेश जिसने साबित कर दिया कि भारतीय राजनीति का केंद्र अब पूरी तरह से बदल चुका है।
1: ये सिर्फ एक चुनाव नहीं था, ये उस नेता की अग्नि परीक्षा थी जिसने 2014 में उम्मीदों के दम पर सत्ता हासिल की थी और अब 5 साल बाद जनता के बीच अपने काम, अपने फैसलों और अपनी छवि के साथ खड़े थे।
2: 2014 में आप चाय वाला थे, 2019 में आप चौकीदार हैं। दोनों में से कौन सी उपाधि आपको पसंद है?
3: चाय वाला जो है, ये मैं इतने साल मुख्यमंत्री रहा, मेरे मुंह से मैंने कभी नहीं बोला। लेकिन जब कांग्रेस के लोगों ने मेरी मजाक उड़ाना शुरू किया कि ये क्या चलाएगा, ये तो चाय वाला है, तब जाकर कोई इश्यू बना। और मैं गरीबी के नाम पर देश की जनता से वोट मांगने के पक्ष में नहीं हूँ, क्योंकि मैं तो गरीब को भी सम्मान और स्वाभिमान से जीने सिखाना चाहता हूँ। तो मैं कौन होता हूँ कि जो गरीबी का रोता रहूंगा? गरीबी का रोना रोना मुझे मंजूर नहीं है।
1: 2014 में नरेंद्र मोदी ने देश से बदलाव का वादा किया था। 2019 आते आते सवाल ये था कि क्या देश उस वादे पर दोबारा भरोसा करेगा? 2014 से 2019, इन 5 सालों में भारतीय राजनीति का चेहरा बदल चुका था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सिर्फ सरकार चलाने वाले नेता नहीं रहे थे, वो भारतीय राजनीति का सबसे बड़ा चेहरा बन चुके थे। एक तो नहीं, कई सारी कल्याणकारी योजनाएं लेकर सरकार आई थी, स्वच्छ भारत, जनधन, उज्ज्वला, आयुष्मान भारत, डिजिटल इंडिया, मेक इन इंडिया, प्रधानमंत्री आवास योजना, मुद्रा योजना। और सिर्फ मोदी सरकार योजनाएं लेकर नहीं आई थी, अपनी योजनाओं को जनता तक पहुंचाने में भी जुटी थी।
3: कल्याण को सर्वोच्च प्राथमिकता दे रहे हैं, गरीब को सशक्त कर रहे हैं, वंचितों को वरीयता दे रहे हैं, किसी भी गरीब को भूखे पेट सोना न पड़े इसलिए हम मुफ्त राशन दे रहे हैं, किसी गरीब को इलाज के लिए कर्ज ना लेना पड़े इसलिए हम 5 लाख रुपीज तक का मुफ्त इलाज देने वाली आयुष्मान योजना चला रहे हैं, किसी गरीब को बेघरों की तरह फुटपाथ पर या झुग्गी झोपड़ी में ना रहना पड़े इसलिए पीएम आवास के घर बनाकर उन्हें पक्का घर दे रहे।
1: नरेंद्र मोदी की छवि एक ऐसे नेता की बन गई थी जो फैसले लेने से डरता नहीं था। 2016 में उरी हमले ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया था, 19 जवानों की मौत हो गई थी और अब बारी थी बदले की। पीएम मोदी ने दुश्मन को बता दिया कि ये नया भारत है, घर में घुसेगा भी और मारेगा भी।
3: हमें सोने नहीं दिया, भीतर वो आग थी जो आग उस जवान के दिल में थी, वही आग इस प्रधानमंत्री के दिल में। और उसी का परिणाम हुआ सर्जिकल स्ट्राइक।
4: उन्हें कुछ नहीं चाहिए, 125 करोड़ देशवासी यही मेरा परिवार है।
1: लेकिन 2019 की राह आसान नहीं थी। नोटबंदी पर सवाल उठ रहे थे, जीएसटी को लेकर व्यापारियों में नाराजगी थी, बेरोजगारी विपक्ष का सबसे बड़ा हथियार बन चुकी थी, राहुल गांधी लगातार हमलावर थे।
5: अभी जाते हैं रोजगार की बात करते हैं, एक के बाद एक युवाओं को रोजगार दूंगा, युवाओं को रोजगार दूंगा, युवाओं को रोजगार दूंगा। थक गया हिंदुस्तान का युवा। आपने नोटबंदी की, आप जीएसटी लाए, राजस्थान और हिंदुस्तान के छोटे दुकानदार, स्मॉल एंड मीडियम बिजनेसेस को आपने नष्ट कर दिया, खत्म कर दिया।
1: विपक्ष को लग रहा था कि इस बार मोदी सरकार को रोका जा सकता है। समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी साथ आ चुके थे। महागठबंधन की राजनीति को बीजेपी के सामने सबसे बड़ी चुनौती माना जा रहा था, लेकिन नरेंद्र मोदी एक बार फिर चुनाव को अपने अंदाज में बदलने लगे थे।
6: आदरणीय प्रधानमंत्री जी के
1: 2019 आते आते चुनाव सिर्फ सरकार के कामकाज का ही नहीं रहा था, ये चुनाव नेतृत्व बनाम गठबंधन में बदल रहा था।
0: पिछली बार जब आप चुनाव में उतरे थे तो 2014 में सर विपक्ष बिखरा हुआ था उत्तर प्रदेश में। इस बार लेकिन समाजवादी पार्टी और बीएसपी का गठबंधन है, चुनौती होगी।
3: अभी तक जितने एनालिसिस आ रहे हैं, चर्चा देश में यह होनी चाहिए कि जब कर्नाटक के सीएम का शपथ समारोह हो रहा था और जिस प्रकार से एक दूसरे को गले लगाया जा रहा था, जिस प्रकार से हाथ पकड़ पकड़ करके 2019 के विजय की तैयारियां शुरू हो चुकी थी, बेंगलोर से लखनऊ पहुंचते पहुंचते जो गले लगने वाले थे वो जानी दुश्मन बन गए, एक दूसरे का गला काटने में लग गए।
1: पूरे देश में चुनाव का शोर था, रैलियां हो रही थी, चुनावी रण, राजनीतिक दाव और जनता अपना फैसला सुनाने की तैयारी कर रही थी। और तभी 14 फरवरी 2019 पुलवामा में आतंकियों का बड़ा हमला होता है। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में सीआरपीएफ के काफिले पर हुए इस हमले में 40 जवान शहीद हो गए थे। पूरे देश गुस्से में था। देश जवाब चाहता था और कुछ ही दिनों बाद भारत ने बालाकोट एयर स्ट्राइक कर दी।
4: जिन परिवारों ने अपने लाल को खोया है उनकी पीड़ा मैं भली भांति अनुभव कर सकता हूं। हम सभी की संवेदनाएं उनके साथ हैं। भाइयों और बहनों, मैंने कल भी कहा है और आज भी दोहरा रहा हूं, इन शहीदों का बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा।
1: बालाकोट के बाद चुनाव का नैरेटिव पूरी तरह बदल चुका था। अब बहस सिर्फ बेरोजगारी या महंगाई पर नहीं थी, अब मुद्दा राष्ट्रीय सुरक्षा था, मजबूत सरकार थी और निर्णायक नेतृत्व था।
7: एक बड़ा मुद्दा था राष्ट्रवाद और राष्ट्रीय सुरक्षा, एक बड़ा मुद्दा बन गया और उससे पूरे देश में एक माहौल बना, पड़ोसी देश के खिलाफ एक माहौल बना और राष्ट्रवाद हिंदुस्तान का एक बड़ा मुद्दा बन गया, पॉलिटिकल इश्यू बन गया, कहना चाहिए केंद्र हो गया। लेकिन केवल ये केंद्र नहीं था, इसको समझना चाहिए कि जो पिछले 5 साल में मोदी सरकार ने, प्रधानमंत्री जी ने जो काम किया वो भी उसमें एड ऑन होता है।
1: देश भर में मोदी की रैलियों में एक अलग ही माहौल दिखाई देने लगा था, हर मंच पर राष्ट्रवाद की गूंज थी। मोदी खुद को देश की सुरक्षा के सबसे मजबूत प्रहरी के तौर पर पेश कर रहे थे।
4: बालाकोट पर एयर स्ट्राइक किया, चोरी छुपी के नहीं किया, एयर स्ट्राइक कर करके प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया आज हमने ऐसा ऐसा किया है और दुश्मन का इतना इतना नुकसान किया।
1: 2019 के चुनाव को बीजेपी ने पूरी तरह हाईटेक बना दिया था। सोशल मीडिया, वीडियो कैंपेन, मोबाइल मैसेजिंग, हर प्लेटफॉर्म पर सिर्फ एक ही चेहरा दिखाई दे रहा था, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। इधर कांग्रेस न्याय योजना लेकर आई थी, राहुल गांधी रोजगार और किसानों के मुद्दे उठा रहे थे, लेकिन बीजेपी ने चुनाव को सीधे नेतृत्व की लड़ाई बना दिया था।
8: कहीं भी आप जाके कह दीजिए चौकीदार
4: का काम दिया है, अब मैं चौकीदारी कर रहा हूं तो कुछ लोग परेशान हैं।
9: उनको तकलीफ हो रही है, उनको लग रहा है ऐसा कैसा चौकीदार आ गया, चोरों के सरदारों पर ही पहले वार कर रहा है।
1: राहुल गांधी के चौकीदार चोर है वाले हमले को बीजेपी ने जवाबी कैंपेन में बदल दिया। मैं भी चौकीदार देश भर में ट्रेंड करने लगा। बीजेपी कार्यकर्ता, केंद्रीय मंत्री, बीजेपी के समर्थक सब अपने नाम के आगे चौकीदार लगाने लगे थे। 2014 में चायवाला, 2019 में चौकीदार, नरेंद्र मोदी हर राजनीतिक हमले को अपने पक्ष में मोड़ते दिखाई दे रहे थे।
7: चुनाव जीतने के लिए सरकार के खिलाफ गुस्सा काफी नहीं होता, उस गुस्से को आप कैसे मैच्योर करते हैं, कैसे परिपक्व करते हैं, कैसे पकाते हैं, और फिर क्या आप कोई अल्टरनेटिव देते हैं? क्या आपके पास कोई अल्टरनेट है कि ये सरकार जाए, प्रधानमंत्री के तौर पर नरेंद्र मोदी जाए, तो आपके पास कौन सा चेहरा है, आपके पास क्या एजेंडा है, आपके पास क्या सपने हैं, जो भारत आगे बढ़ रहा है उसको आगे बढ़ने के लिए किस तरह की योजना, किस तरह का विकास, किस तरह के सपने आपके पास हैं, वो सब दिन, और फिर क्या आप ये लड़ाई लड़ सकते हैं, क्या आप एकजुट होकर इस सरकार को हटा सकते हैं, उन सब पैमानों पर विपक्ष खरा नहीं उतर रहा था।
1: उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा में बीजेपी सिर्फ अपनी सीटें बचाने के लिए नहीं लड़ रही थी, वो नए राज्यों में भी विस्तार की लड़ाई लड़ रही थी। पश्चिम बंगाल में अमित शाह और नरेंद्र मोदी ने पूरी ताकत झोंक दी थी। बंगाल की राजनीति पहली बार बीजेपी बनाम तृणमूल में बदलती दिखाई देने लगी।
10: दीदी पीछे रहकर कैसे कैसे की दादागिरी और कैसे कैसे लोगों की हुकूमत चलवा रही है।
1: लेकिन नरेंद्र मोदी हर रैली में खुद को देश के सपनों से जोड़ रहे थे।
9: सौगंध मुझे इस मिट्टी की, सौगंध मुझे इस मिट्टी की, मैं देश नहीं मिटने दूंगा, मैं देश नहीं रुकने दूंगा, मैं देश नहीं झुकने दूंगा।
1: अब चुनाव सिर्फ मुद्दों का नहीं रहा था, ये चुनाव भरोसे का बन चुका था। मोदी अपनी सभाओं में गरीबों के बैंक खाते गिना रहे थे, गैस कनेक्शन गिना रहे थे, शौचालय गिना रहे थे, और हर योजना के साथ एक संदेश दे रहे थे कि सरकार सीधे गरीब तक पहुंच रही है।
3: कहा है 5 साल में हम 100,00,000 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट लाएंगे, हम नेक्स्ट जनरेशन इंफ्रास्ट्रक्चर पर बल देना चाहते हैं, और हमारे विकास के मॉडल साफ है। एक है ग्लोबल बेंचमार्क वाला इंफ्रास्ट्रक्चर, हम आज जितने एयरपोर्ट हैं डबल एयरपोर्ट फंक्शनल करना चाहते हैं, हम किसान की इनकम डबल करना चाहते हैं, तो हमारा एक दूसरा वेलफेयर, सामान्य मानवीय की जरूरतें हैं उसकी जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है, हिंदुस्तान का नागरिक शुद्ध पानी का पीना चाहेगा कि नहीं चाहेगा, उसके बच्चों को अच्छी शिक्षा मिलने चाहेगा कि नहीं चाहेगा, उस पर हम बल देंगे।
11: देश के कोने कोने में पहुंच,
1: देश के गांवों से लेकर सोशल मीडिया तक एक बार फिर चुनाव मोदी केंद्रित हो चुका था।
11: पहुंचाए हम तक अपनी मन की बात, आइए बनाए भविष्य का भारत मिलकर एक साथ।
1: 19 मई 2019, 7 चरणों का चुनाव खत्म हुआ। 23 मई 2019,
12: भारतीय जनता पार्टी 300 से अधिक सीट जीतने वाली है और जीत चुकी है।
1: नतीजे आए और नरेंद्र मोदी ने सिर्फ वापसी नहीं की, उन्होंने पहले से भी बड़ी जीत हासिल कर ली। बीजेपी 303 सीटें, एनडीए 350 से ज्यादा सीटें और कांग्रेस 52 सीटें।
12: देशवासियों का आभार व्यक्त कर रहे हैं, धन्यवाद दे रहे हैं।
1: 3 दशक बाद कोई गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री लगातार दूसरी बार पूर्ण बहुमत के साथ सत्ता में लौटा था।
12: निवेदन करूंगा कि सामूहिक रूप से
1: दिल्ली बीजेपी मुख्यालय में जश्न था।
12: प्रधानमंत्री जी का स्वागत करें।
1: मोदी मोदी के नारे गूंज रहे थे और मंच पर खड़े नरेंद्र मोदी अब सिर्फ 2014 वाले बदलाव के नेता नहीं थे, अब वो भारतीय राजनीति के सबसे प्रभावशाली नेता बन चुके थे।
13: लोकतांत्रिक विश्व में 2019 का ये जो मतदान का सिर्फ आंकड़ा है, ये अपने आप में लोकतांत्रिक विश्व के इतिहास की सबसे बड़ी घटना है। पूरे विश्व की ये सबसे बड़ी घटना है।
1: 2019 का चुनाव सिर्फ एक राजनीतिक जीत नहीं थी, ये उस छवि की जीत थी जिसे नरेंद्र मोदी ने 5 साल तक लगातार गढ़ा था। 2014 में मोदी उम्मीद बनकर आए थे, 2019 में मोदी भरोसा बन चुके थे। और यही वजह थी कि 2019 में नरेंद्र मोदी सिर्फ चुनाव नहीं जीते, उन्होंने भारतीय राजनीति में अपनी पकड़ को और मजबूत कर दिया।
0: 10 साल की सत्ता, लगातार 2 प्रचंड जीत और फिर 2024 का चुनाव। इस बार मुकाबला सिर्फ सीटों का नहीं था बल्कि राजनीतिक वर्चस्व और जन समर्थन की नई कसौटी का था। एक तरफ नरेंद्र मोदी तीसरी बार इतिहास रचने के मिशन पर थे तो दूसरी तरफ विपक्ष इसे सत्ता के खिलाफ सबसे बड़ी लड़ाई बताने में जुटा था। चुनाव प्रचार, नारों, गठबंधनों और आरोप प्रत्यारोप के बीच देश ने एक ऐसा जनादेश दिया जिसे साफ कर दिया कि भारतीय राजनीति अब पुराने दौर में लौटने वाली नहीं है।
1: दो हजार चौदह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बदलाव का चेहरा बनकर आए थे, 2019 में भरोसे का नाम बन गए थे और 2024 आते आते सवाल सिर्फ इतना था, क्या मोदी तीसरी बार इतिहास रच पाएंगे? पहले 2014, फिर 2019, इन 10 सालों में भारतीय राजनीति पूरी तरह बदल चुकी थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सिर्फ सरकार चलाने वाले नेता नहीं रहे थे, वो भारतीय राजनीति की सबसे बड़ी धुरी बन चुके थे।
3: मैं लाल किले से बोलता हूं, इस देश में वेल्थ क्रिएटर्स की इज्जत होनी चाहिए। मेरे देश में जो सक्षम लोग हैं, जो सामर्थ्यवान लोग हैं, इनकी प्रतिष्ठा बढ़नी चाहिए। मैं मेरे 15 अगस्त के जो गेस्ट लिस्ट होता है उसमें मैं खिलाड़ी जो अचीवर्स हैं उनको बिठाता हूं। अगर देश अचीवर्स की पूजा नहीं करेगा, देश अचीवर्स का महात्मा ही नहीं करेगा, तो मेरे देश में पीएचडी करने वाले लोग कहां से निकलेंगे, साइंटिस्ट कहां से निकलेंगे? जीवन के हर क्षेत्र में अचीवर्स की इज्जत होनी चाहिए भाई।
1: बीजेपी हर मंथ से कह रही थी मोदी है तो मुमकिन है और मोदी सरकार अपनी उपलब्धियों को जनता तक पहुंचाने में जुटी थी।
9: जब काम करता है तो सबके लिए करता है और इसमें भी सबसे गरीब सबसे ऊपर रहते हैं, इसलिए आज भारत के हर गरीब के पास मोदी ने गारंटी। पूरा देश जानता है कि ये मोदी इन गारंटी अब अगले कई सालों तक और चलने वाली है।
1: लेकिन 2024 की राह आसान नहीं थी। विपक्ष इस बार पहले से ज्यादा आक्रामक था। कांग्रेस समेत कई दल इंडिया गठबंधन के बैनर तले एक साथ आ चुके थे। विपक्ष का दावा था कि इस बार मुकाबला बराबरी का है, लेकिन नरेंद्र मोदी एक बार फिर चुनाव को अपने अंदाज में ढाल रहे थे। 2024 आते आते चुनाव सिर्फ सांसद चुनने का नहीं रहा था, ये चुनाव मोदी के तीसरे कार्यकाल पर जनमत संग्रह बनता जा रहा था। विपक्ष संविधान, लोकतंत्र और आरक्षण के मुद्दे उठा रहा था। राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा के जरिए सीधे जनता तक पहुंचने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन चुनावी मैदान में एक बार फिर सबसे बड़ा चेहरा नरेंद्र मोदी ही बने हुए थे। अयोध्या में राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के बाद बीजेपी ने चुनावी माहौल को सांस्कृतिक राष्ट्रवाद से जोड़ दिया था। हर रैली में राम मंदिर का जिक्र हो रहा था, हर मंच पर 500 साल के इंतजार की बात हो रही थी। इसी बीच चुनावी माहौल में संविधान और आरक्षण का मुद्दा भी गर्मा गया। विपक्ष लगातार दावा कर रहा था कि बीजेपी 400 पार के जरिए संविधान बदलना चाहती है। बीजेपी ने इसका जवाब विकास और स्थिर सरकार के मुद्दे से दिया। मोदी हर सभा में खुद को गरीबों, महिलाओं और लाभार्थियों से जोड़ रहे थे।
14: खुशहाल बनेंगे गांव किसान।
1: पीएम मोदी बता रहे थे कि वो क्या कर रहे हैं। हर रैली में बात कर रहे थे कि 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन दिया जा रहा है, पीएम आवास योजना के जरिए घर दिया जा रहा है, जल जीवन मिशन के जरिए घर घर पानी पहुंचाया जा रहा है, महिला सशक्तिकरण के लिए महिला आरक्षण की व्यवस्था की जाएगी।
15: फिर मुझे विचार आया कि जो गांव सबकी सब महिलाएं करेगा उसको मैं 7 लाख दूंगा। फिर मैंने कहा कि जो गांव में सबकी सब महिलाएं होगी तो वहां का जो गवर्नमेंट अफसर होंगे वो भी महिलाएं होगी, हो सके तो पुलिस भी मैं वहां महिला रखूंगा और मैं इनको पैसे भी दूंगा और तहसील लेवल तक मैं वहां महिलाओं की पूरी ऊपर से नीचे तक 45% विलेजेस सहमति से मेरे में होने लगे 45% विलेज और आज भी चल रहे हैं, हम पैसे भी देते हैं।
1: देश के गांवों से लेकर सोशल मीडिया तक एक बार फिर चुनाव मोदी केंद्रित हो चुका था, लेकिन इस बार विपक्ष भी पूरी ताकत से मैदान में था। कई राज्यों में बीजेपी को कड़ी चुनौती मिल रही थी। उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और राजस्थान जैसे राज्यों में मुकाबला पहले से ज्यादा कठिन दिखाई दे रहा था। 4 जून 2024 नतीजे आए और नरेंद्र मोदी ने लगातार तीसरी बार सत्ता में वापसी कर ली। बीजेपी को 240 सीटें, एनडीए को 290 सीटें, कांग्रेस को 99 सीटें। बीजेपी अपने दम पर बहुमत से पीछे रह गई थी, लेकिन एनडीए के साथ मिलकर सरकार बनाने की स्थिति में थी। 3 दशक बाद पहली बार कोई नेता लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने जा रहा था। दिल्ली में एनडीए खेमे में जश्न था, मोदी मोदी के नारे एक बार फिर गूंज रहे थे, लेकिन 2024 का जनादेश 2014 और 2019 से अलग था। जनता ने मोदी को सत्ता तो दी, लेकिन साथ ही एक राजनीतिक संदेश भी दिया। 2024 का चुनाव परिणाम सिर्फ जीत की कहानी नहीं कह रहा था, ये मोदी के होने का अर्थ बता रहा था। 2014 में मोदी उम्मीद थे, 2019 में भरोसा बने और 2024 में नरेंद्र मोदी भारतीय राजनीति के सबसे लंबे और सबसे प्रभावशाली दौर के केंद्र में खड़े दिखाई दिए।
0: फिलहाल कहानी मेरे साथ अभी के लिए बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।

क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।

बंगाल के सोनालपुर में अभिषेक बैनर्जी पर हमले से बवाल, लोगों ने फेंके पत्थर अंडे कपड़े फाड़े, कहा मुझे मारने की थी साजिश, विपक्ष ने बीजेपी पर उठाए सवाल, सोमवार को ममता करेंगे प्रदर्शन। कर्नाटक के अगले मुख्यमंत्री होंगे डीके शिवकुमार, कांग्रेस विधायक दल की बैठक में चुने गए नेता, 3 जून को 8 से 10 मंत्रियों के साथ ले सकते हैं शपथ। सीएम योगी का बड़ा बयान, कहा कि अहिंसा ही परम धर्म, लेकिन जब कोई देश समाज के लिए खतरा है तो अपनानी पड़ती है हिंसा की नीति, समाजवादी पार्टी बोली यूपी में बढ़ रहा है अपराध। गाजियाबाद में अंतर्राष्ट्रीय पैरा एथलीट चिराग त्यागी की हत्या, साथी खिलाड़ी पर गोली मारने का आरोप, अगले महीने जापान में खेलने वाले थे टूर्नामेंट। राजस्थान के कई शहरों में रेतीले तूफान से दहशत, धूल भरी आंधी से दिन में छाया अंधेरा, दिल्ली एनसीआर में बारिश से गिरा तापमान।

पश्चिम बंगाल के सोनारपुर में टीएमसी सांसद अभिषेक बैनर्जी पर हमला, भीड़ ने अंडे फेंके, टी शर्ट फाड़ दी, बीजेपी कार्यकर्ताओं पर आरोप। हमले के बाद बोले अभिषेक बैनर्जी कि वो मुझे मारना चाहते थे, घटना के खिलाफ जाऊंगा कोर्ट, इलाज करने वाले क्लिनिक का भी दावा, मेडिकल जांच में कोई भी चोट नहीं है। भतीजे अभिषेक पर हमले के बाद से भड़की ममता बैनर्जी, कहा कि शासन हत्यारा बन गए। सांसद अभिषेक बैनर्जी पर हमले को लेकर विपक्ष आक्रामक, राहुल गांधी बोले कि यह हमला लोकतंत्र पर है जब हमारी साझी विरासत है। अखिलेश यादव का भी बीजेपी पर हमला, कहा कि बीजेपी हिंसा के अलावा कुछ और कर ही नहीं सकती। अभिषेक बैनर्जी के अचानक घर पर पहुंचे सीआईडी, विधानसभा में फर्जी हस्ताक्षर मामले की जांच के सिलसिले में कानूनी नोटिस थमाया गया। डीके शिवकुमार 3 जून को लेंगे कर्नाटक के मुख्यमंत्री की शपथ, राज्यपाल ने निमंत्रण भेजा। सिद्धरमैया ने डीके शिवकुमार का नाम बढ़ा, गुरुवार को कर्नाटक के मुख्यमंत्री पद से सिद्धरमैया का इस्तीफा था। लखनऊ में बोले सीएम योगी आदित्यनाथ, अहिंसा ही इंसान का सच्चा, लेकिन कोई समाज और देश के लिए खतरा बने तो फिर हिंसा अपनानी पड़ती है। आज पीएम मोदी के मन की बात के 134वां एपिसोड है, पश्चिमी एशिया संकट, ऊर्जा बचत, पद्म पुरस्कारों पर अपनी बात रख सकते हैं। देहरादून के टपकेश्वर महादेव मंदिर में पहुंचे बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन, भक्तिभाव से पूजा। पटना के 10 अक्टूबर रोड आवास को खाली करने से राबड़ी देवी ने किया इनकार, कहा कि जितनी फोर्स बुलानी है बुला लो, मकान खाली नहीं करूंगी। पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों के खिलाफ पंजाब कांग्रेस का हल्ला, बोल मोदी सरकार के खिलाफ कांग्रेस कार्यकर्ताओं की नारेबाजी। प्रयागराज में लेखपाल भर्ती लीक, पेपर लीक के खिलाफ छात्रों का गुस्सा, दोबारा परीक्षा करवाने की मांग, हजारों छात्रों ने कंपनी बाग तक मार्च निकाला। पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने आप विधायक हरमीत सिंह पाटन माजरा को रेप के केस में जमानत दी, विधायक के खिलाफ पिछले साल पटियाला में रेप, धोखाधड़ी, आपराधिक धमकी का केस हुआ था दर्ज। दिल्ली में आईएसआई दाऊद नेटवर्क से जुड़े हुए 9 लोग गिरफ्तार, धार्मिक स्थलों और सरकारी इमारतों पर साजिश नाकाम। मल्लपुरम में अवैध विस्फोटक मिलने के मामले में एनआईए ने 3 राज्यों के 19 ठिकानों पर रेड की, केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु में छापे मारे। दिल्ली में सीबीएसई दफ्तर के बाहर एनएसयूआई का प्रदर्शन, शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांगा। राहुल गांधी ने नीट, सीबीएसई, एसएससी की परीक्षा व्यवस्था पर उठाए सवाल, कहा कि ईमानदारी से एक भी परीक्षा नहीं हो पाई। यूपी में बिजली बिल में 10% की बढ़ोतरी, यूपीपीसीएल ने फ्यूल सरचार्ज बढ़ाया। मुंबई में सीएनजी के फिर से बढ़े दाम, 2 रुपए प्रति किलो महंगा हुआ, अब 1 किलो सीएनजी की कीमत 86 रुपए। भ्रष्टाचार पर बिहार सरकार की कार्रवाई, एस योगेश सागर, अभिलाषा शर्मा सस्पेंड, टेंडर माफिया ऋषिश्री गिरफ्तार। उधर 24 परगना में टीएमसी नेताओं की जमीन से हथियार हुए बरामद, सुजीत साह, अजीत साह गिरफ्तार। मेघालय के उमरोई में भारतीय

मनाली के रोहतांग में अभी भी बर्फ की मोटी परत दिखी, सैलानियों की भारी भीड़ लगा लंबा जाम। दिल्ली के जहांगीरपुरी में 26 साल के अरबाज की चाकू मारकर हत्या, 3 नाबालिग हिरासत में लिए गए। गाजियाबाद में युवक की हत्या में 3 आरोपी गिरफ्तार, चाकुओं से हमले का सीसीटीवी फुटेज सामने आया। यूपी के हापुड़ में युवक पर चाकू से जानलेवा हमला, घटना सीसीटीवी में कैद। झांसी में दीवार गिराने के बाद से खूनी संघर्ष वायरल, सीसीटीवी में लाठी डंडों से युवक की पिटाई की गई। गुजरात के जामनगर में टला बड़ा हादसा, विज्ञापन टावर गिरा, घटना सीसीटीवी में कैद, वही वीडियो वायरल। वडोदरा में दोस्त ने केटरिंग व्यवसायी दोस्त की चाकू मारकर हत्या कर दी, आरोपी गिरफ्तार। बिहार के बगहा में पुलिस ने प्रेम प्रसंग में हत्या का खुलासा किया, 27 मई को युवक का शव मिला था। दानापुर पुणे स्पेशल ट्रेन की महिला बोगी में फंसे युवक ने फांसी लगाकर आत्महत्या की थी और युवक की शिनाख्त नहीं हो सकी। अयोध्या में पुलिस की गिरफ्त में जो आरोपी था फरार हो गया, हत्या की कोशिश में नामजद आरोपी था। कुल्लू के कसौल बाजार में सैलानियों की दबंग गई, पार्किंग विवाद में स्थानीय युवक पर चलाई गोलियां, पुलिस ने 4 को पकड़ा। उदयपुर में 2 स्थानों पर बड़ी कार्रवाई, मिलावट के संदेह में 18,000 लीटर घी किया गया जब्त। दिल्ली से झारखंड शव ले जा रहे एम्बुलेंस की कौशाम्बी में ट्रक से टक्कर, 6 घायल, घटना सीसीटीवी में कैद। जलंधर में आरटीआई एक्टिविस्ट सिमरनजीत सिंह की गोली मारकर हत्या, हत्या की वजह का खुलासा अभी तक नहीं हुआ। बेंगलुरु में एक स्कूल में भीषण आग, छुट्टी के दिन की वजह से बड़ा हादसा टला। यूपी के हापुड़ में घर में लगी भीषण आग, दमकल विभाग ने आग पर पाया काबू, शॉर्ट सर्किट के चलते हादसा। उत्तराखंड में चारधाम यात्रा का 42वां दिन, अब तक 27 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं ने चारधाम के किए दर्शन। केदारनाथ धाम में 39 दिन में 10 लाख से ज्यादा श्रद्धालु पहुंचे और एक नया रिकॉर्ड बना। मदुरै के थिरुपरान कुंद्रम मुरुगन मंदिर में उमड़े श्रद्धालुओं की भीड़, बैकासी विकासम उत्सव का भव्य आयोजन। कांचीपुरम के वरदराज पेरुमल मंदिर में निकाले गए भगवान की शानदार शोभा यात्रा, बैकासी ब्रह्मोत्सव में इस अवसर पर यह भव्य आयोजन। सहरसा सदर थाना का निरीक्षण करने के लिए पहुंचे कोसी के डीआईजी कुमार आशीष, कहा कि लोगों के सहयोग से ही कोसी को बनाएंगे नशा मुक्त। स्ट्रेट ऑफ होर्मुस को खोलने को लेकर ईरान का बड़ा बयान, अमेरिकी नाकेबंदी हटने के बाद होर्मुस खोलने का फैसला लेंगे। स्ट्रेट ऑफ होर्मुस के भविष्य को लेकर ईरान और ओमान के विदेश मंत्रियों के बीच अहम बातचीत, दोनों ही देशों के बीच में सुरक्षा की गारंटी, क्षेत्रीय संप्रभुता और अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत प्रशासन चलाने पर सहमति बनी। अमेरिका से तनाव के बीच ईरान को बड़ा आर्थिक झटका, अमेरिका ने जब्त किए $1 अरब के क्रिप्टो फंड। अमेरिका के रक्षा मंत्री पीट हेक्सेथ ने सिंगापुर में शांग्रीला डायलॉग में अलग जापानी रक्षा मंत्री शिंजिरो से मुलाकात की, दोनों नेताओं में क्षेत्रीय सुरक्षा को लेकर बातचीत। लेबनान के राष्ट्रपति जोसेफ फोन ने अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो से की बातचीत, लेबनान के राष्ट्रपति ने युद्ध विराम और अमेरिका से दखल की मांग की। शांग्रीला डायलॉग में दक्षिण कोरिया के रक्षा मंत्री का बड़ा ऐलान, उत्तर कोरिया के खतरे से निपटने के लिए एंटी न्यूक्लियर क्षमता बढ़ाएगा दक्षिण कोरिया। सिंगापुर में ऑकस देशों का बड़ा ऐलान, अमेरिका ब्रिटेन और ऑस्ट्रेलिया मिलकर बनाएंगे हाईटेक अंडर वाटर ड्रोन, अमेरिकी रक्षा मंत्री ने कहा कि समुद्र में ताकत बढ़ेगी। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप मेडिकल जांच में पूरी तरह से स्वस्थ घोषित, डॉक्टर ने कहा कि ट्रंप की सेहत बिल्कुल ठीक है। पूर्वी अफगानिस्तान में दर्दनाक सड़क हादसा, पाकिस्तान से अफगानिस्तान लौट रहे शरणार्थियों का ट्रक पलट गया, हादसे में 22 लोगों की मौत, 36 घायल। ऑस्ट्रिया और इटली को जोड़ने वाला ब्रेनर अल्पाइन पास बंद, रास्ता बंद होने की वजह से लंबा ट्रैफिक जाम।

0: बंगाल के सोनारपुर में अभिषेक बैनर्जी पर हमला हुआ, चुनावी हिंसा, एक पीड़ित से मिलने के लिए अभिषेक पहुंचे थे और इसी दौरान अभिषेक से हाथापाई हुई, उन पर अंडे फेंके गए और काफी देर तक बवाल मचता रहा।
1: जो अभिषेक बनर्जी पश्चिम बंगाल में सत्ता का केंद्र होते थे, आज उन्हें बीच सड़क पर पीटा जा रहा है। ये पश्चिम बंगाल की सियासत का रक्त चरित्र है। सत्ता बदली लेकिन नहीं बदली तो पश्चिम बंगाल में सियासी रंजिश की तस्वीर, जिसकी चपेट में ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी आ गए। बीच सड़क पर लोगों ने अभिषेक को जमकर पीटा, गुस्साई भीड़ ने अभिषेक बनर्जी पर अंडे फेंके, कपड़े फाड़ दिए। हालात इतने बिगड़ गए कि अभिषेक को हेलमेट पहनकर वहां से निकलना पड़ा।
2: They want to kill me. এরা আমাদের প্রাণে মারতে চায়, মেরে দিক আমার মৃতদেহ উদ্ধারক এখান থেকে, কিন্তু আমি জায়গা ছেড়ে যাব না।

0: अभिषेक बनर्जी विधानसभा चुनाव के बाद हुई हिंसा के पीड़ित लोगों और उनके परिवारों से मिलने के लिए सोनार गए थे, जहां उन पर यह हमला हुआ। अभिषेक ने इसे बीजेपी की साजिश बताया। उधर स्थानीय लोगों का दावा कि ये हमला किसी राजनीति से प्रेरित नहीं है, बल्कि ये उनका गुस्सा टीएमसी सरकार के खिलाफ है। इलाके में सरकार ने कोई विकास का काम नहीं किया, तो वहीं टीएमसी के कार्यकर्ताओं ने कई सालों तक गुंडागर्दी की, जिसे लेकर ये गुस्सा फूटा।
1: चोर को कैसे नारे, उसको क्या फूलों से स्वागत करेंगे? चोर को अंडा फेंक के मारेंगे? अभी तो हाँ, वो भी बहुत कम हो गया। वो ये राम जी की धरती है, वो राम जी की नाराबाजी करने के माना किया था। बांग्लादेश वो खुद है, उसका जो मुख्यमंत्री पीसी है वो भी वो एक बांग्लादेशी है।
2: वो लोग भाई मारने का टाइम तो वहाँ भेजा नहीं, वहाँ भेजा है एक तो डॉक्टर को मारा है वहाँ, तो उस टाइम वो भेजा नहीं। अभी एक तो चमचा मर गया, इसलिए भेजा है यहाँ, इसके लिए भेजा है। हमारा रास्ता देखता है आज पंद्रह मौत में, ये रास्ता कैसे चलता है? हम लोग बाल बच्चा कर लिए।
0: अभिषेक बनर्जी पर हुआ हमला एक बार फिर पश्चिम बंगाल में सियासी हिंसा को लेकर सवाल खड़े करता है। तपस सेन गुप्ता, दक्षिण 24 परगना, आज तक।
3: बिहार की राजनीति में सरकारी आवास को लेकर नया घमासान छिड़ गया है। पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी ने साफ संकेत दिए हैं कि वो 10 सर्कुलर रोड स्थित सरकारी आवास खाली करने के मूड में नहीं है, जबकि पिछले 6 महीनों में उन्हें लगातार नोटिस भेजे जा रहे हैं।
4: हम तो चाहते हैं कि सम्राट चौधरी पूरा बिहार के फोर्स बुला के हमारा 10 नंबर खाली करा दे। हम नहीं खाली करेंगे, आवे हमारा सामने।
5: बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी ने बिहार सरकार को खुली चुनौती दी है कि वो अपना सरकारी आवास नहीं खाली करेंगी। पिछले 6 महीने से 10 सर्कुलर रोड आवास को खाली कराने के लिए नोटिस दिया जा रहा है, लेकिन राबड़ी के तेवर बताते हैं कि ये आवास बिहार की सियासत का नया अखाड़ा बनता जा रहा है।
6: अरे कहाँ, इसमें वो कह रही, इसमें तो जो कानून है, जो नियम है, उसके हिसाब से काम होता है और सब लोगों को नियम कानून का पालन करना चाहिए।
5: बिहार विधानसभा चुनाव खत्म होने के बाद 25 नवंबर 2025 को राबड़ी देवी को नया आवास 39 हार्डिंग रोड पर आवंटित किया गया। उस वक्त राबड़ी देवी को लेटर भी भेजा गया, लेकिन 6 महीना बीत जाने के बाद भी राबड़ी देवी ने 10 सर्कुलर रोड घर को खाली नहीं किया है। ये बंगला पशु संसाधन मंत्री नंद किशोर यादव का आवंटित है, जिसे लेकर राबड़ी देवी को 29 मई को नया नोटिस भेजा गया।
7: मैं तो कह रहा हूँ कि वो मुख्यमंत्री रही हैं, 1-2 साल नहीं, 7 साल रहे हैं, तो उनको तो कानून का पालन करना ही चाहिए। बयान निंदनीय है, ये टकराव का बयान है, आपत्तिजनक है, और क्या बात करते हैं, पूरे बिहार के फोर्स की जरूरत है, एक दरोगा जाके निकाल देगा।
5: राबड़ी देवी करीब 20 वर्षों से 10 सर्कुलर रोड आवास में रहती आई हैं। यह आवास काफी बड़ा है, इससे लालू परिवार की यादें भी जुड़ी हैं।
8: राबड़ी देवी जी, ये जंगल राज नहीं है, ये कानून का राज है, एनडीए की सरकार है। आपको इलाज कराना होता है तो सिंगापुर जाते हैं, पोता का जन्मदिन मनाना होता है तो दिल्ली नोएडा भागते हैं, और जब लूटने की बारी आती है तो आप बिहार में रहना चाहते हैं।
5: नवंबर 2005 में चुनाव हारने के बाद राबड़ी देवी को यह आवास आवंटित किया गया था। उस समय पूर्व मुख्यमंत्री को भी आवास आवंटित होता था, लेकिन जब 2019 में अपने आवास के मामले को लेकर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव पटना हाई कोर्ट गए, तब कोर्ट ने सख्त निर्देश दिया था कि कोई भी पूर्व मुख्यमंत्री या पूर्व उप मुख्यमंत्री पद से हटने के बाद सरकारी बंगला नहीं रख सकता। इसके बाद से 10 सर्कुलर रोड राबड़ी देवी को बिहार विधान परिषद के नेता प्रतिपक्ष के रूप में आवंटित किया गया, जिसे अब उन्हें खाली करना होगा। शशि भूषण, पटना, आज तक।
3: अब बात एनटीए की, जिसकी भूमिका पर एक बार फिर सवाल खड़े हो रहे हैं। एनटीए की ओर से आयोजित सीयूईटी यूजी परीक्षा में एक बार फिर तकनीकी खराबी का मामला सामने आया।
9: अभी निकल के आना 2 घंटे।
10: परीक्षा केंद्र के बाहर मचा ये हंगामा एक बार फिर एनटीए के कामकाज पर सवाल खड़े कर रहा है। आज CU-ET UG परीक्षा के केंद्रों पर तकनीकी खराबी की शिकायत आई, जिसके बाद सुबह 9 बजे शुरू होने वाली परीक्षा कई केंद्रों पर करीब 11:23 पर शुरू हुई। वहीं NTA ने दोपहर की शिफ्ट का टाइम भी बदल दिया, जिसके चलते अभ्यर्थियों और अभिभावक परेशान नजर आए। अब NTA इस पर माफी मांग रहा है, तो वहीं विपक्ष एक बार फिर NTA की भूमिका पर सवाल खड़े कर रहा है। 4 परीक्षाएं, 1 करोड़ बच्चे, एक भी ईमानदारी से नहीं हो पाई। दावे विश्व गुरु के, मगर देश में एक परीक्षा नहीं करवा सकते। मोदी जी ने पूरी शिक्षा व्यवस्था तबाह कर दी है। जिस पीढ़ी का भविष्य आप बर्बाद कर रहे हैं, वही पीढ़ी आपका हिसाब करेगी।
11: ये देखने में आ रहा है कि NTA ने CU-ET टेस्ट का भी मजाक बना के रख दिया है। CU-ET टेस्ट में करीब 18 लाख बच्चे अलग अलग यूनिवर्सिटीज में बैठने के लिए टेस्ट देते हैं। आज सेंटर पे पहुंचे, उनका टाइम बदल दिया गया, किसी का सेंटर बदल दिया जा रहा है, किसी की डेट बदल दी जा रही है। ऐसी डेट पे एग्जाम दे दिए जाते हैं जिसमें वो सेंटर फ्री नहीं है। पूरा का पूरा मिसमैनेजमेंट है।
10: उधर सरकार के नीट पेपर में सेना की मदद के फैसले पर भी विपक्ष सवाल खड़े कर रहा है।
12: कल हमारे देश की सरकार ने ऐलान किया है कि अब नीट के पेपर को लीक होने से बचाने के लिए एयरफोर्स के जहाज से उसको ट्रांसपोर्ट करेंगे, एयरफोर्स के बुलेट प्रूफ ट्रकों से उसको ट्रांसपोर्ट करेंगे। मजाक बना रखा है, हमें बेवकूफ समझ रखा है। पूरी दुनिया में इतने बड़े बड़े पेपर होते हैं, कहीं सुना है कि एयरफोर्स से उनको ट्रांसपोर्ट किया जाता है?
10: बहरहाल परीक्षाओं को लेकर NTA पूरी तरह फेल नजर आ रहा है, जहां उसकी नाकामी एक बार फिर आज CU-ET UG के पेपर में खुलकर सामने आ गई। आज तक ब्यूरो।
3: यूपी के जहां गाजियाबाद में एक शख्स की हत्या, उसके बाद हिंदू मुस्लिम का इसने रंग रूप ले लिया। परिवार का आरोप है कि बकरीद के बहाने बुलाकर बेटे की हत्या कर दी गई।
13: आज माफिया पिस्तौल लहराते हुए कोई धमका करके खुली जीप में चल करके किसी हिंदू को धमका नहीं सकता है। जन्माष्टमी हो, रक्षाबंधन हो, इन आयोजनों में अगर किसी ने व्यवधान डाला तो पर्व तो मनाई लेगा, लेकिन उसके बाद ये तय है कि रावण और कंस जैसी दुर्गति उसकी तय है जो व्यवधान डालने वाला है।
14: उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का यह बयान ऐसे समय आया जब 17 साल के हिंदू युवक की हत्या कर दी गई। गाजियाबाद के खोड़ा थाना क्षेत्र में सूर्या की बकरीद की शाम चाकुओं से गोद कर बेरहमी से हत्या कर दी जाती है और इल्जाम लगा सूर्या के ही मुस्लिम दोस्तों पर। हत्या के बाद गाजियाबाद के खोड़ा इलाके में तनाव है, पुलिस अलर्ट पर है। इस बीच लखनऊ में मुख्यमंत्री ने यूपी की कानून व्यवस्था पर अपनी सरकार के मॉडल का जिक्र एक बार फिर किया।
13: अहिंसा परमो धर्म, धर्म हिंसा तथैव च, यानी सामान्य जीवन में अहिंसा ही सर्वोच्च धर्म होना चाहिए, लेकिन अगर सामने वाला देश और समाज की सुरक्षा के लिए खतरा है तो उसके लिए अहिंसा नहीं चल सकती है, उसके लिए तो हिंसा ही हमें अंततः अपनानी पड़ेगी।
14: तो फिर गाजियाबाद की घटना कैसे हो गई? योगी सरकार के अपराध नियंत्रण के दावों पर यह घटना कितना बड़ा सवाल है। क्या यूपी की राजनीति में 2027 विधानसभा चुनाव के लिए नया नैरेटिव तैयार हो रहा है? गाजियाबाद में जिस शख्स पर 28 मई को चाकुओं से वार किया गया, उसने 29 मई को दम तोड़ा। इसी दिन यानी 29 मई को मऊ में मुख्यमंत्री ने दावा किया कि उनके राज्य में कोई हिंदू। गाजियाबाद में जिस शख्स पर 28 मई को चाकुओं से वार किया गया उसने 29 मई को दम तोड़ा। इसी दिन यानी 29 मई को मऊ में मुख्यमंत्री ने दावा किया कि उनके राज्य में कोई हिंदुओं को धमका नहीं सकता।
13: आज माफिया पिस्तौल लहराते हुए कोई धमका करके खुली जीप में चल करके किसी हिंदू को धमका नहीं सकता है।
14: यूपी की कानून व्यवस्था पर मुख्यमंत्री योगी के 48 घंटे में दो बड़े बयान आए हैं। 29 मई को मुख्यमंत्री ने कहा कि आज माफिया किसी हिंदू को खुलेआम धमका नहीं सकता। 30 मई को मुख्यमंत्री ने कहा कि खतरा हो तो हिंसा भी अपनानी पड़ती है। एक तरफ अपराध पर सख्त कार्रवाई का दावा, दूसरी तरफ हिंसा पर राजनीतिक बहस। समाजवादी पार्टी कह रही है कि गाजियाबाद की घटना को हिंदू मुसलमान से न जोड़ा जाए।
15: जिन लोगों ने भी अपराध किया है, चाहे वो किसी धर्म किसी जात के हों, उन पे कार्रवाई होनी चाहिए, सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, कानून के मुताबिक कार्रवाई होनी चाहिए। उत्तर प्रदेश में लगातार अपराध रुक नहीं रहे हैं, चाहे वो राजधानी लखनऊ की बात हो। अभी 3 दिन पहले एक प्रॉपर्टी डीलर को ही हत्या कर दी गई, अब ये गाजियाबाद की घटना है। लगातार उत्तर प्रदेश में हत्याएं हो रही हैं, लूट हो रहे हैं, बलात्कार हो रहे हैं, और भारतीय जनता पार्टी की सरकार कानून व्यवस्था देने में पूरी तरह से विफल है।
14: 2027 का रास्ता लखनऊ से नहीं बल्कि ऐसी घटनाओं पर जनता की प्रतिक्रिया से भी तय होगा। इसलिए चुनावी नैरेटिव को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष अपने अपने हिसाब से परिभाषा गढ़ते हैं। क्या अपराध का धर्म होता है या फिर हर बड़ी वारदात के बाद राजनीति धर्म का चश्मा पहन लेती है। इस बीच उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य कहते हैं कि हत्या करने वालों को फांसी के तख्ते पर चढ़ाने के लिए कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
16: प्यारा कोई भी हो वो बक्सा नहीं जाएगा, उसको खोज निकाला जाएगा और हत्या करने वाले को फांसी पर चढ़ाने के लिए जो कार्रवाई होती है कानूनी, वो कानूनी कार्रवाई की जाएगी। सरकार कानून व्यवस्था को लेकर के बहुत गंभीर है और जिन लोगों ने ऐसा अपराध किया उनके खिलाफ कठोर से कठोर कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
14: योगी सरकार में सहयोगी पार्टी के मंत्री अखिलेश यादव से चुभते हुए सवाल पूछते हैं, उनके पीडीए समीकरण पर वार करते हैं।
17: अखिलेश यादव जी को उस पे बोलना चाहिए कि उनके वोटर हैं, उन लोग ऐसी हत्या क्यों कर रहे हैं। कहीं मुसलमान मार रहा है तो कहीं यादव मार रहा है। उनका MOI जो फैक्टर है इस समय पूरे प्रदेश में आतंक मचाया हुआ है। बोलते हैं पीडीए इनका असफल है सिर्फ MOI फैक्टर को दबाने के लिए, लोगों का दिमाग भटकाने के लिए कि हमको सिर्फ MOI कहा जाता था, इस नाते पीडीए चिल्ला रहे हैं।
14: गाजियाबाद की घटना उत्तर प्रदेश की राजनीति को उस चौराहे पर लाकर खड़ा कर देती है जहां सरकार अपने दावे गिनाती है और विपक्ष जमीन की हकीकत दिखाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन सवाल है क्या यूपी में जनता सुरक्षित महसूस करती है।
3: बात दिल्ली के जहांगीरपुर में हुए मर्डर की, जहां बकरीद की रात मामूली सा विवाद एक युवक की मौत की वजह बन गया।
18: दिल्ली में सिगरेट को लेकर विवाद में युवक की हत्या। सिगरेट लाने से मना किया तो चाकू मार दिया। सुनने में भले ही यह हैरानी भरा लगे लेकिन इस वारदात ने एक शख्स की जान ले ली। बकरीद के मौके पर जब 26 साल के अरबाज के घर त्योहार की खुशियां थी, इस वारदात के बाद चीख पुकार मच गई। पुलिस के मुताबिक रात 11 बजे के करीब अरबाज अपने घर के पास ही मौजूद था। इसी दौरान इलाके के कुछ लड़कों के साथ उसकी कहासुनी हुई जो देखते ही देखते हिंसक झड़प में बदल गई। इसके पीछे की जो वजह सामने आई है वो भी बेहद हैरानी भरी है।
19: उस टाइम पे कुछ नहीं हुआ था, एक सिगरेट मंगाने का विवाद था कि सिगरेट ला के दे। तो उन्होंने बोला तेरे बाप का नौकर हूँ क्या, तेरे क्या तू जाके लिया, तू क्या बदमाश है क्या। तो उन्होंने बोला चल ठीक है। फिर इतने में उन्होंने अपने दोस्तों को फोन मिलाया, उस लड़के ने 7-8 लोंडे आ गए। इस बात को लेकर उन्होंने उसको मार दिया कि तूने हमसे ऐसा क्यों कहा।
18: विवाद के बाद जब अरबाज को लड़कों ने घेरा तो उसने मदद के लिए अपने भाई को बुलाया। भाई के सामने ही आरोपियों ने अरबाज की हत्या कर दी।
20: अरबाज का बड़ा भाई था, अरबाज ने मेरे पास फोन करा रात में पूरे 10:59 पर कि भाई ऐसे ऐसे बात है, मेरे को लड़कों ने घेर रखा है, जल्दी से इधर आ जा गली के बाहर। मैं भागते हुए गया, जाके देखा तो उस टाइम पे ना इस पे सब सवार हुए पड़े थे लड़के, जो लड़के थे सब सवार हुए पड़े थे। ये 5 से 6 लड़के थे। उसी बीच में आवाज आती है कि चाकू निकाल, उसी बीच में आवाज आती है चाकू निकाल। अब जब चाकू निकालने की आवाज आती है तो मेरे भाई को ना गेट है हमारी गली के बाहर उसमें घुसा दिया तो मैं गया, मैंने पीछे से पकड़ के खींचा उसे, लड़कों को, दो तीन लड़के उस पर चढ़े पड़े थे। जैसे मैंने उन्हें खींचा तो एक लड़का साइड में से निकल के गया, वो इतने में जाके उसके चाकू मार।
18: अरबाज जहांगीरपुरी के सी ब्लॉक का रहने वाला था और इलाके में ही एक सुनार की दुकान पर काम करता था। युवक की मौत के बाद घर में मातम है और इलाके में तनाव। पुलिस ने स्थानीय लोगों और चश्मदीदों से पूछताछ के आधार पर तीन नाबालिगों को हिरासत में लिया है। उनसे पूछताछ की जा रही है और वारदात में उनकी भूमिका की जांच हो रही है। आज तक ब्यूरो।
3: अब बात राजस्थान के, जहां पर मौसम की खौफनाक तस्वीर देखने को मिली। रेतीले तूफान ने राजस्थान के 5 जिलों को अपनी चपेट में ले लिया। आसमान में चारों ओर धूल का गुबार दिखाई दिया और इस पूरे धूल के गुबार ने पूरे शहर में अंधेरा सा कर दिया।
10: एक आम रिहायशी इलाका और सामने से आया रेत का बवंडर मानो पूरे शहर को अपने आगोश में ले लेना चाहता हो। यह हैरान करने वाली तस्वीरें राजस्थान के चुरू की है। रेत का गुब्बार धीरे धीरे शहर की ओर बढ़ता है। आसमान में सिर्फ धूल ही धूल नजर आती है। फिर शहर की गलियां, सड़क, घर, छत, हर कहीं ये धूल कब्जा करने लगती है। दिन में अंधेरा छाने लगता है। तूफान के कारण दिन में लोगों को वाहनों की हेडलाइट जलानी पड़ गई।
1: इस सीजन का जबरदस्त आंधी तूफान भयंकर है, उसमें मेरे हिसाब से लाखों करोड़ों का सरकार का नुकसान हुआ है और उसके बाद में जबरदस्त बारिश और पेड़ों का गिरना, बिजली का नुकसान होना, बहुत ही जबरदस्त, मतलब इस मौसम में जो आंधी आई है बहुत ही जबरदस्त आई है।
21: और इस तूफान में आज आपको देखने को मिला कि मतलब कि तूफान की में आंधी काफी भयंकर थी, धूल भरी आंधी थी, जिसके कारण पेड़ है और भी बहुत सारे पक्षियां वगैरह काफी इनका नुकसान हुआ।
10: इसके कई वीडियो सामने आए हैं। इनमें लोग भागकर घरों में जाते दिखे और घरों को बंद कर दिया। इस दौरान 60 से 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आंधी चली, जो करीब 30 मिनट तक इलाके में कोहराम मचाती रही। हालांकि तूफान की ऊंचाई का आधिकारिक आंकड़ा सामने नहीं आया है। इस रेतीले तूफान ने राजस्थान के 5 जिलों को अपनी चपेट में ले लिया। श्री गंगानगर, बीकानेर, चुरू, हनुमानगढ़ और सीकर के आसमान में रेत का गुब्बार देखने को मिले। करीब 200 वर्ग किलोमीटर का इलाका इससे प्रभावित नजर आया।
22: रेत का बाउंडर बहुत भारी और बहुत खतरनाक था। मैंने अपनी जिंदगी 15-20 सालों में कभी ऐसा माहौल नहीं देखा था और दिन में एकदम आंधी आई, ऐसे तो मानो साफ हो गई। ये कहीं ना कहीं अपने प्रकृति से जो पर्यावरण पौधे अपने काट रहे हैं और ये खिलवाड़ कर रहे हैं, इसके लिए अपने सजग रहने की जरूरत है।
23: और एकदम से बिल्कुल काला काला हो गया सिस्टम, जैसे रात हो गई होती एकदम से। इतनी तेज अंधेरी थी, उसका जो किलोमीटर के हिसाब से बताया गया था वो 80-90 किलोमीटर के हिसाब से उसका विंड का बताया गया था और एकदम से फुल अंधेरी थी। और जहाँ पर जो दरखत है छोटे छोटे वो इन लगे, कुछ दरखत है वो टूट भी गए थे।
10: पाकिस्तान से उठे इस तूफान ने रेगिस्तान का मौसम पूरी तरह से बदल दिया। आज तक ब्यूरो।
3: अब रुक रहे छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन होंगे हाजिर। आप देखते रहिए आज तक।

0: बंगाल के सोनालपुर में अभिषेक बैनर्जी पर हमले से बवाल, लोगों ने फेंके पत्थर, अंडे, कपड़े फाड़े, कहा मुझे मारने की थी साजिश। विपक्ष ने बीजेपी पर उठाए सवाल, सोमवार को ममता करेंगी प्रदर्शन। कर्नाटक के अगले मुख्यमंत्री होंगे डीके शिव कुमार, कांग्रेस विधायक दल की बैठक में चुने गए नेता 3 जून को 8 से 10 मंत्रियों के साथ ले सकते हैं शपथ। सीएम योगी का बड़ा बयान, कहा कि अहिंसा ही परम धर्म, लेकिन जब कोई देश समाज के लिए खतरा है तो अपनानी पड़ती है हिंसा की नीति, समाजवादी पार्टी बोली। यूपी में बढ़ रहा है अपराध। गाजियाबाद में अंतर्राष्ट्रीय पैरा एथलीट चिराग त्यागी की हत्या, साथी खिलाड़ी पर गोली मारने का आरोप, अगले महीने जापान में खेलने वाले थे टूर्नामेंट। राजस्थान के कई शहरों में रेतीले तूफान से दहशत, धूल भरी आंधी से दिन में छाया अंधेरा, दिल्ली एनसीआर में बारिश से गिरा तापमान। बंगाल के सोनारपुर में अभिषेक बैनर्जी पर हमला हुआ, चुनावी हिंसा, एक पीड़ित से मिलने के लिए अभिषेक पहुंचे थे और इसी दौरान अभिषेक से हाथापाई हुई, उन पर अंडे फेंके गए और काफी देर तक बवाल मचता रहा।
1: जो अभिषेक बनर्जी पश्चिम बंगाल में सत्ता का केंद्र होते थे, आज उन्हें बीच सड़क पर पीटा जा रहा है। ये पश्चिम बंगाल की सियासत का रक्त चरित्र है। सत्ता बदली लेकिन नहीं बदली तो पश्चिम बंगाल में सियासी रंजिश की तस्वीर, जिसकी चपेट में ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी आ गए। बीच सड़क पर लोगों ने अभिषेक को जमकर पीटा, गुस्साई भीड़ ने अभिषेक बनर्जी पर अंडे फेंके, कपड़े फाड़ दिए। हालात इतने बिगड़ गए कि अभिषेक को हेलमेट पहनकर वहां से निकलना पड़ा।
2: दे वांट टू किल मी, दे वांट टू किल मी, एरा आमादेर प्राणे मारते चाहे, मेरे दिख, अमर मृतदेह उद्धार हो केखान थेके, किन्तु आमी जायगा छेड़े जाबो ना।
1: अभिषेक बनर्जी विधानसभा चुनाव के बाद हुई हिंसा के पीड़ित लोगों और उनके परिवारों से मिलने के लिए सोनार गए थे, जहां उन पर यह हमला हुआ। अभिषेक ने इसे बीजेपी की साजिश बताया।
3: और बीजेपी स्पॉन्सर्ड, अब देखिए क्या हाल किया गया, यह है इनका लोकतंत्र का नमूना, एक महीना हुआ नहीं।
1: उधर स्थानीय लोगों का दावा कि ये हमला किसी राजनीति से प्रेरित नहीं है, बल्कि ये उनका गुस्सा टीएमसी सरकार के खिलाफ है। इलाके में सरकार ने कोई विकास का काम नहीं किया तो वहीं टीएमसी के कार्यकर्ताओं ने कई सालों तक गुंडागर्दी की, जिसे लेकर ये गुस्सा फूटा।
4: चोर को कैसे नारे, उसको क्या फूलों से स्वागत करेंगे, चोर को अंडा फेंक के मारेंगे। अभी तो हाँ वो भी बहुत कम हो गया, वो ये राम जी की धरती है, वो राम जी की नाराबाजी करने के माना किया था बांग्लादेश से, वो खुद है, उसका जो मुख्यमंत्री पीसी है वो भी वो एक बांग्लादेशी है।
5: वो लोग भाई मारने का टाइम तो वहाँ भेजा नहीं, वहाँ भेजा है, एक तो डॉक्टर को मारा है वहाँ, तो उस टाइम वो भेजा नहीं, अभी एक तो चमचा मर गया, इसलिए भेजा है यहाँ, किसके लिए भेजा है, हमारा रास्ता देखता है आज 15 मौतों में, ये रास्ता कैसे चलता है, हम लोग बाल बच्चा कर लिए।
1: अभिषेक बनर्जी पर हुआ हमला एक बार फिर पश्चिम बंगाल में सियासी हिंसा को लेकर सवाल खड़े करता है। तपस सेन गुप्ता, दक्षिण 24 परगना, आज तक।
0: बिहार की राजनीति में सरकारी आवास को लेकर नया घमासान छिड़ गया है। पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी ने साफ संकेत दिए हैं कि वो 10 सर्कुलर रोड स्थित सरकारी आवास खाली करने के मूड में नहीं है, जबकि पिछले 6 महीनों में उन्हें लगातार नोटिस भेजे जा रहे हैं।
6: हम तो चाहते हैं कि सम्राट चौधरी पूरा बिहार के फोर्स बुला के आ, हमारा 10 नंबर खाली करा दे, हम नहीं खाली करेंगे, आवे हमारा सामने।
7: बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी ने बिहार सरकार को खुली चुनौती दी है कि वो अपना सरकारी आवास नहीं खाली करेंगी। पिछले 6 महीने से 10 सर्कुलर रोड आवास को खाली कराने के लिए नोटिस दिया जा रहा है, लेकिन राबड़ी के तेवर बताते हैं कि ये आवास बिहार की सियासत का नया अखाड़ा बनता जा रहा है।
8: अरे कहाँ, इसमें वो कह रही, इसमें तो जो कानून है, जो नियम है, उसके हिसाब से काम होता है और सब लोगों को नियम कानून का पालन करना चाहिए।
1: बिहार विधानसभा चुनाव खत्म होने के बाद 25 नवंबर 2025 को राबड़ी देवी को नया आवास 39 हार्डिंग रोड पर आवंटित किया गया। उस वक्त राबड़ी देवी को लेटर भी भेजा गया, लेकिन 6 महीना बीत जाने के बाद भी राबड़ी देवी ने 10 सर्कुलर रोड घर को खाली नहीं किया है। ये बंगला पशु संसाधन मंत्री नंद किशोर यादव का आवंटित है, जिसे लेकर राबड़ी देवी को 29 मई को नया नोटिस भेजा गया।
9: मैं तो कह रहा हूँ कि वो मुख्यमंत्री रहे हैं, 1-2 साल नहीं 7 साल रहे हैं, तो उनको तो कानून का पालन करना ही चाहिए। बयान निंदनीय है, ये टकराव का बयान है, आपत्तिजनक है, और क्या बात करते हैं, पूरे बिहार के फोर्स की जरूरत है, एक दरोगा जाके निकाल देगा।
1: राबड़ी देवी करीब 20 वर्षों से 10 सर्कुलर रोड आवास में रहती आई हैं। यह आवास काफी बड़ा है, इससे लालू परिवार की यादें भी जुड़ी हैं।
10: राबड़ी देवी जी, ये जंगल राज नहीं है, ये कानून का राज है, एनडीए की सरकार है। आपको इलाज कराना होता है तो सिंगापुर जाते हैं, पोता का जन्मदिन मनाना होता है तो दिल्ली नोएडा भागते हैं, और जब लूटने की बारी आती है तो बिहार में रहना चाहते हैं।
1: नवंबर 2005 में चुनाव हारने के बाद राबड़ी देवी को यह आवास आवंटित किया गया था। उस समय पूर्व मुख्यमंत्री को भी आवास आवंटित होता था, लेकिन जब 2019 में अपने आवास के मामले को लेकर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव पटना हाई कोर्ट गए, तब कोर्ट ने सख्त निर्देश दिया था कि कोई भी पूर्व मुख्यमंत्री या पूर्व उप मुख्यमंत्री पद से हटने के बाद सरकारी बंगला नहीं रख सकता। इसके बाद से 10 सर्कुलर रोड राबड़ी देवी को बिहार विधान परिषद के नेता प्रतिपक्ष के रूप में आवंटित किया गया, जिसे अब उन्हें खाली करना होगा। शशि भूषण, पटना आज तक।
0: अब आते एनटीए की, जिसकी भूमिका पर एक बार फिर सवाल खड़े हो रहे हैं। एनटीए की ओर से आयोजित सीयूईटी यूजी परीक्षा में एक बार फिर तकनीकी खराबी का मामला सामने आया।
11: अभी निकल के आना 2 घंटे।
12: परीक्षा केंद्र के बाहर मचा ये हंगामा एक बार फिर एनटीए के कामकाज पर सवाल खड़े कर रहा है। आज सीयूईटी यूजी परीक्षा के केंद्रों पर तकनीकी खराबी की शिकायत आई, जिसके बाद सुबह 9 बजे शुरू होने वाली परीक्षा कई केंद्रों पर करीब 11:23 पर शुरू हुई। वहीं एनटीए ने दोपहर की शिफ्ट का टाइम भी बदल दिया, जिसके चलते अभ्यर्थियों और अभिभावक परेशान नजर आए। अब एनटीए इस पर माफी मांग रहा है, तो वहीं विपक्ष एक बार फिर एनटीए की भूमिका पर सवाल खड़े कर रहा है। 4 परीक्षाएं, 1 करोड़ बच्चे, एक भी ईमानदारी से नहीं हो पाई। दावे विश्व गुरु के, मगर देश में 1 परीक्षा नहीं करवा सकते। मोदी जी ने पूरी शिक्षा व्यवस्था तबाह कर दी है। जिस पीढ़ी का भविष्य आप बर्बाद कर रहे हैं, वही पीढ़ी आपका हिसाब करेगी।
13: ये देखने में आ रहा है कि एनटीए ने सीयूईटी टेस्ट का भी मजाक बना के रख दिया है। सीयूईटी टेस्ट में करीब 18 लाख बच्चे अलग अलग यूनिवर्सिटीज में बैठने के लिए टेस्ट देते हैं, आज सेंटर पे पहुंचे, उनका टाइम बदल दिया गया, किसी का सेंटर बदल दिया जा रहा है, किसी की डेट बदल दी जा रही है, ऐसी डेट पे एग्जाम दे दिए जाते हैं जिसमें वो सेंटर फ्री नहीं है, पूरा का पूरा मिसमैनेजमेंट है।
12: उधर सरकार के नीट पेपर में सेना की मदद के फैसले पर भी विपक्ष सवाल खड़े कर रहा है।
14: कल हमारे देश की सरकार ने ऐलान किया है कि अब नीट के पेपर को लीक होने से बचाने के लिए एयरफोर्स के जहाज से उसको ट्रांसपोर्ट करेंगे, एयरफोर्स के बुलेट प्रूफ ट्रकों से उसको ट्रांसपोर्ट करेंगे। मजाक बना रखा है, हमें बेवकूफ समझ रखा है। पूरी दुनिया में इतने बड़े बड़े पेपर होते हैं, कहीं सुना है कि एयरफोर्स से उनको ट्रांसपोर्ट किया जाता है?
12: बहरहाल परीक्षाओं को लेकर एनटीए पूरी तरह फेल नजर आ रहा है, जहां उसकी नाकामी एक बार फिर आज सीयूईटी यूजी के पेपर में खुलकर सामने आ गई। आज तक ब्यूरो।
0: यूपी के जहां गाजियाबाद में एक शख्स की हत्या, उसके बाद हिंदू मुस्लिम का इसने रंग रूप ले लिया। परिवार का आरोप है कि बकरीद के बहाने बुलाकर बेटे की हत्या कर दी गई।
15: आज माफिया पिस्तौल लहराते हुए कोई धमका करके खुली जीप में चल करके किसी हिंदू को धमका नहीं सकता है। जन्मा जन्माष्टमी हो, रक्षाबंधन हो, इन आयोजनों में अगर किसी ने व्यवधान डाला तो पर्व तो मनाई लेगा, लेकिन उसके बाद ये तय है कि रावण और कंस जैसी दुर्गति उसकी तय है जो व्यवधान डालने वाला है।
1: उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का यह बयान ऐसे समय आया जब 17 साल के हिंदू युवक की हत्या कर दी गई। गाजियाबाद के खोड़ा थाना क्षेत्र में सूर्या की बकरीद की शाम चाकुओं से गोद कर बेरहमी से हत्या कर दी जाती है और इल्जाम लगा सूर्या के ही मुस्लिम दोस्तों पर। हत्या के बाद गाजियाबाद के खोड़ा इलाके में तनाव है, पुलिस अलर्ट पर है। इस बीच लखनऊ में मुख्यमंत्री ने यूपी की कानून व्यवस्था पर अपनी सरकार के मॉडल का जिक्र एक बार फिर किया।
15: अहिंसा परमो धर्म, धर्म हिंसा तथैव च, यानी सामान्य जीवन में अहिंसा ही सर्वोच्च धर्म होना चाहिए, लेकिन अगर सामने वाला देश और समाज की सुरक्षा के लिए खतरा है तो उसके लिए अहिंसा नहीं चल सकती है, उसके लिए तो हिंसा ही हमें अंततः अपनानी पड़ेगी।
1: तो फिर गाजियाबाद की घटना कैसे हो गई? योगी सरकार के अपराध नियंत्रण के दावों पर यह घटना कितना बड़ा सवाल है। क्या यूपी की राजनीति में 2027 विधानसभा चुनाव के लिए नया नैरेटिव तैयार हो रहा है? गाजियाबाद में जिस शख्स पर 28 मई को चाकुओं से वार किया गया उसने 29 मई को दम तोड़ा। इसी दिन यानी 29 मई को मऊ में मुख्यमंत्री ने दावा किया कि उनके राज में कोई हिंदुओं को धमका नहीं सकता।
15: आज माफिया पिस्तौल लहराते हुए कोई धमका करके खुली जीप में चल करके किसी हिंदू को धमका नहीं सकता है।
1: यूपी की कानून व्यवस्था पर मुख्यमंत्री योगी के 48 घंटे में दो बड़े बयान आए हैं। 29 मई को मुख्यमंत्री ने कहा कि आज माफिया किसी हिंदू को खुलेआम धमका नहीं सकता। 30 मई को मुख्यमंत्री ने कहा कि खतरा हो तो हिंसा भी अपनानी पड़ती है। एक तरफ अपराध पर सख्त कार्रवाई का दावा, दूसरी तरफ हिंसा पर राजनीतिक बहस। समाजवादी पार्टी कह रही है कि गाजियाबाद की घटना को हिंदू मुसलमान से न जोड़ा जाए।
16: जिन लोगों ने भी अपराध किया है, चाहे वो किसी धर्म किसी जात के हों, उन पे कार्रवाई होनी चाहिए, सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, कानून के मुताबिक कार्रवाई होनी चाहिए। उत्तर प्रदेश में लगातार अपराध रुक नहीं रहे हैं, चाहे वो राजधानी लखनऊ की बात हो। अभी 3 दिन पहले एक प्रॉपर्टी डीलर को भी हत्या कर दी गई, अब ये गाजियाबाद की घटना है। लगातार उत्तर प्रदेश में हत्याएं हो रही हैं, लूट हो रहे हैं, बलात्कार हो रहे हैं, और भारतीय जनता पार्टी की सरकार कानून व्यवस्था देने में पूरी तरह से विफल है।
1: 2027 का रास्ता लखनऊ से नहीं बल्कि ऐसी घटनाओं पर जनता की प्रतिक्रिया से भी तय होगा, इसलिए चुनावी नैरेटिव को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष अपने अपने हिसाब से परिभाषा गढ़ते हैं। क्या अपराध का धर्म होता है या फिर हर बड़ी वारदात के बाद राजनीति धर्म का चश्मा पहन लेती है? इस बीच उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य कहते हैं कि हत्या करने वालों को फांसी के तख्ते पर चढ़ाने के लिए कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
17: प्यारा कोई भी हो, वो बक्सा नहीं जाएगा, उसको खोज निकाला जाएगा और हत्या करने वाले को फांसी पर चढ़ाने के लिए जो कार्रवाई होती है कानूनी, वो कानूनी कार्रवाई की जाएगी। सरकार कानून व्यवस्था को लेकर के बहुत गंभीर है और जिन लोगों ने ऐसा अपराध किया उनके खिलाफ कठोर से कठोर कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
1: योगी सरकार में सहयोगी पार्टी के मंत्री अखिलेश यादव से चुभते हुए सवाल पूछते हैं, उनके पीडीए समीकरण पर वार करते हैं।
18: अखिलेश यादव जी को उस पे बोलना चाहिए कि उनके वोटर हैं, उन लोग ऐसी हत्या क्यों कर रहे हैं? कहीं मुसलमान मार रहा है तो कहीं यादव मार रहा है। उनका MOI जो फैक्टर है इस समय पूरे प्रदेश में आतंक मचाया हुआ है। बोलते हैं पीडीए इनका असफल है सिर्फ MOI फैक्टर को दबाने के लिए, लोगों का दिमाग भटकाने के लिए कि हमको सिर्फ MOI कहा जाता था, इस नाते पीडीए चिल्ला रहे हैं।
1: गाजियाबाद की घटना उत्तर प्रदेश की राजनीति को उस चौराहे पर लाकर खड़ा कर देती है जहां सरकार अपने दावे गिनाती है और विपक्ष जमीन की हकीकत दिखाने की कोशिश कर रहा है।
19: लेकिन सवाल है क्या यूपी में जनता सुरक्षित महसूस करती है।
0: बात दिल्ली के जहांगीरपुर में हुए मर्डर की, जहां बकरीद की रात मामूली सा विवाद एक युवक की मौत की वजह बन गया।
1: दिल्ली में सिगरेट को लेकर विवाद में युवक की हत्या। सिगरेट लाने से मना किया तो चाकू मार दिया। सुनने में भले ही यह हैरानी भरा लगे, लेकिन इस वारदात ने एक शख्स की जान ले ली। बकरीद के मौके पर जब 26 साल के अरबाज के घर त्योहार की खुशियां थी, इस वारदात के बाद चीख पुकार मच गई। पुलिस के मुताबिक रात 11 बजे के करीब अरबाज अपने घर के पास ही मौजूद था। इसी दौरान इलाके के कुछ लड़कों के साथ उसकी कहासुनी हुई, जो देखते ही देखते हिंसक झड़प में बदल गई। इसके पीछे की जो वजह सामने आई है वो भी बेहद हैरानी भरी है।
20: उस टाइम पे कुछ नहीं हुआ था, एक सिगरेट मंगाने का विवाद था कि सिगरेट लाके दे। तो उन्होंने बोला तेरे बाप का नौकर हूँ क्या, तेरा क्या, तू जाके लिया, तू क्या बदमाश है क्या। तो उन्होंने बोला चल ठीक है। फिर इतने में उन्होंने अपने दोस्तों को फोन मिलाया, उस लड़के ने, 7-8 लोंडे आ गए। इस बात को लेकर उन्होंने उसको मार दिया कि तूने हमसे ऐसा क्यों कहा।
1: विवाद के बाद जब अरबाज को लड़कों ने घेरा तो उसने मदद के लिए अपने भाई को बुलाया। भाई के सामने ही आरोपियों ने अरबाज की हत्या कर दी।
21: अरबाज का बड़ा भाई था, अरबाज ने मेरे पास फोन करा रात में पूरे 10:59 पर कि भाई ऐसे ऐसे बात है, मेरे को लड़कों ने घेर रखा है, जल्दी से इधर आ जा गली के बाहर। मैं भागते हुए गया, जाके देखा तो उस टाइम पे ना इस पे सब सवार हुए पड़े थे लड़के, जो लड़के थे सब सवार हुए पड़े थे। ये 5-6 लड़के थे। उसी बीच में आवाज आती है कि चाकू निकाल, उसी बीच में आवाज आती है चाकू निकाल। अब जब चाकू निकालने की आवाज आती है तो मेरे भाई को ना गेट है हमारी गली के बाहर, उसमें घुसा दिया। तो मैं गया, मैंने पीछे से पकड़ के खींचा उसे, लड़कों को, 2-3 लड़के उस पर चढ़े पड़े थे। जैसे मैंने उन्हें खींचा तो एक लड़का साइड में से निकल के गया, वो इतने में जाके उसके चाकू मार।
1: अरबाज जहांगीरपुरी के सी ब्लॉक का रहने वाला था और इलाके में ही एक सुनार की दुकान पर काम करता था। युवक की मौत के बाद घर में मातम है और इलाके में तनाव। पुलिस ने स्थानीय लोगों और चश्मदीदों से पूछताछ के आधार पर 3 नाबालिगों को हिरासत में लिया है। उनसे पूछताछ की जा रही है और वारदात में उनकी भूमिका की जांच हो रही है। आज तक ब्यूरो।
0: अब बात राजस्थान के, जहां पर मौसम की खौफनाक तस्वीर देखने को मिली। रेतीले तूफान ने राजस्थान के 5 जिलों को अपनी चपेट में ले लिया। आसमान में चारों ओर धूल का गुबार दिखाई दिया और इस पूरे धूल के गुबार ने पूरे शहर में अंधेरा सा कर दिया।
12: एक आम रिहायशी इलाका और सामने से आया रेत का बवंडर मानो पूरे शहर को अपने आगोश में ले लेना चाहता हो। यह हैरान करने वाली तस्वीरें राजस्थान के चुरू की है। रेत का गुब्बार धीरे धीरे शहर की ओर बढ़ता है, आसमान में सिर्फ धूल ही धूल नजर आती है। फिर शहर की गलियां, सड़क, घर, छत, हर कहीं ये धूल कब्जा करने लगती है। दिन में अंधेरा छाने लगता है। तूफान के कारण दिन में लोगों को वाहनों की हेडलाइट जलानी पड़ गई।
22: इस सीजन का जबरदस्त आंधी तूफान भयंकर है, उसमें मेरे हिसाब से लाखों करोड़ों का सरकार का नुकसान हुआ है और उसके बाद में जबरदस्त बारिश और पेड़ों का गिरना, बिजली का नुकसान होना, बहुत ही जबरदस्त, मतलब इस मौसम में जो आंधी आई है बहुत ही जबरदस्त आई है।
23: और इस तूफान में आज आपको देखने को मिला कि मतलब कि तूफान की में आंधी काफी भयंकर थी, धूल भरी आंधी थी, जिसके कारण पेड़ है और भी बहुत सारे पक्षियां वगैरह काफी इनका नुकसान हुआ।
12: इसके कई वीडियो सामने आए हैं, इनमें लोग भागकर घरों में जाते दिखे और घरों को बंद कर दिया। इस दौरान 60-80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आंधी चली, जो करीब 30 मिनट तक इलाके में कोहराम मचाती रही। हालांकि तूफान की ऊंचाई का आधिकारिक आंकड़ा सामने नहीं आया है। इस रेतीले तूफान ने राजस्थान के 5 जिलों को अपनी चपेट में ले लिया। श्री गंगानगर, बीकानेर, चुरू, हनुमानगढ़ और सीकर के आसमान में रेत का गुब्बार देखने को मिले। करीब 200 वर्ग किलोमीटर का इलाका इससे प्रभावित नजर आया।
24: रेत का बाउंडर बहुत भारी और बहुत खतरनाक था। मैंने अपनी जिंदगी 15-20 सालों में कभी ऐसा माहौल नहीं देखा था और दिन में एकदम आंधी आई, ऐसे तो साफ हो गई। ये कहीं ना कहीं अपने प्रकृति से जो पर्यावरण पौधे अपने काट रहे हैं और ये खिलवाड़ कर रहे हैं, इसके लिए अपने सजग रहने की जरूरत है।
25: और एकदम से बिल्कुल काला काला हो गया सिस्टम, जैसे रात हो गई होती एकदम से, इतनी तेज अंधेरी थी
2: उसका जो किलोमीटर के हिसाब से बताया गया था वो 80-90 किलोमीटर के हिसाब से उसका विंड का बताया गया था, और एकदम से फुल अंधेरी थी, और जहाँ पर जो दरखत है छोटे छोटे वो इन्हें लगे, कुछ दरखत है वो टूट भी गए थे।
12: पाकिस्तान से उठे इस तूफान ने रेगिस्तान का मौसम पूरी तरह से बदल दिया। आज तक ब्यूरो।
0: अब रुख करते हैं मिडिल ईस्ट की ओर। अगर अमेरिका और ईरान डील के इतने ही करीब हैं तो दोनों के सुर अलग अलग क्यों हैं? आखिर क्यों अमेरिका लगातार कह रहा है कि वो समझौते के बेहद करीब है, जबकि ईरान आधिकारिक तौर पर इस पर चुप्पी साधे हुए है?
3: डील पर अमेरिका और ईरान के जुदा हैं बयान, सुर अलग हैं, तो फैसला कैसे एक होगा? सस्पेंस भारी, आ रही है बम बरसाने की बारी। क्या अमेरिका और ईरान में सच में कुछ ही घंटों में डील होने वाली है, या फिर महायुद्ध पार्ट टू जल्द शुरू होने वाला है? कहने को तो अमेरिका की टॉप लीडरशिप हर दिन ये उम्मीद जगा रही है कि वो डील के बेहद करीब है।
4: That we're able to get to a final agreement here. We're reopening the Straits of Hormuz. We've already decimated their conventional military, and we're in a position where we could substantially set back their nuclear program, not just during the term of this president, but over the long term. That's a very, very good thing for the American people. So we're not there yet, but we're very close. We're going to keep on working at it. Thank you, guys. Have a good evening.
3: राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति ही नहीं, रक्षा मंत्री भी हर जगह जाकर यही कह रहे हैं कि डील जल्द ही होने वाली है और ये एक शानदार डील होगी। लेकिन सिंगापुर जाने से पहले रक्षा मंत्री ईरान को धमकी भी देकर गए हैं, यानी अमेरिका को भी ये अंदेशा तो है कि हो सकता है कि डील उनके मुताबिक न हो और एक बार फिर रणभूमि में उतरना पड़े।
5: And when you do your job, the adversaries know what's coming for them. And that's when they either step up and meet the fury of the American military or back down, and you create a whole bunch of options for America. The president with what he wants to execute on behalf of the American people. So right now, hey, Iran has a choice: meet at the table with the president and give up their nuclear program. And as the president said, I'm lost on time. 2 days ago now, in the cabinet meeting, I'm sitting right next to him. He looks in the camera and says, "Well, Iran can either do it the right way with a deal across the table, or they can deal with my guy on the left. That happened to be me." But it's not me, it's you guys. It's what you're ready to do.
3: लेकिन ईरान की तरफ से कोई ऐसे संकेत नहीं मिल रहे हैं। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल भगाई ने सरकारी मीडिया से बातचीत में कहा है कि होर्मुज पर फैसला ईरान और ओमान को लेना चाहिए, और इसे खोलने का फैसला भी अमेरिका नाकेबंदी हटने के बाद ही होना चाहिए। जो भी हो, डील को लेकर हलचल तो लगातार बढ़ रही है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सिचुएशन रूम में 2 घंटे तक अहम मीटिंग की है। इस मीटिंग में ईरान के साथ डील को लेकर कई पहलुओं पर बात की गई। मीटिंग में ट्रंप ने साफ कहा कि किसी भी कीमत पर ईरान को परमाणु बम बनाने की इजाजत नहीं दी जा सकती। इसके अलावा उसे होर्मुज को बिना टोल बंदी के खोलना ही पड़ेगा। ईरान की न्यूज एजेंसी फोर्स के मुताबिक ईरान का मानना है कि ट्रंप मनगढ़ंत जीत को दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। इसके अलावा ईरानी अधिकारियों के हवाले से ये भी दावा किया गया है कि डील में एटमी मुद्दे का जिक्र नहीं है। लेकिन ईरान की 12 बिलियन अमेरिकी डॉलर की फीस संपत्ति छोड़ने का समझौता जरूर है। अभी ट्रंप ने डील के बारे में अंतिम फैसला नहीं लिया है। अगर ट्रंप ने समझौते पर मुहर लगा दी तो 60 दिन के लिए सीजफायर का ऐलान किया जा सकता है, ताकि होर्मुज को खोलने की प्रक्रिया शुरू की जा सके। आज तक ब्यूरो।
0: उसको लेकर बातें कितनी भी हो रही हो, लेकिन सच यह है कि अमेरिका और ईरान दोनों ही इस मुद्दे पर अड़े हैं। कहने को अमेरिकी नाकेबंदी चरणबद्ध तरीके से हट जाएगी, लेकिन यूएस नेवी की ताजा चेतावनी ने हालात हाहाकारी होने के संकेत दिए हैं।

0: डील पर काम तेज, कहां फंसा है पेच? हॉर्मुज में यूएस का प्रण, ईरान के खिलाफ आखिरी रण। जहाजों को चेताया, समंदर में आने वाला है बवंडर। इस चेतावनी को ध्यान से पढ़िए, इसे यूएस नेवी सेंट्रल कमांड ने जारी किया है। यह हॉर्मुज में मौजूद सारे जहाजों के लिए है। अमेरिकन नेवी ने चेतावनी जारी की है कि ईरान के खतरनाक और गैर कानूनी कामों को रोकने के लिए जल्द ही बड़ा ऑपरेशन शुरू होने वाला है। हो सकता है कि जवाब में ईरान भी हमला करे, लिहाजा हॉर्मुज में जहाजों को मुश्किल हालातों के लिए तैयार रहना चाहिए। चेतावनी में जिन इलाकों में सतर्क रहने की बात कही गई है, उनमें अरब की खाड़ी, हॉर्मुज, ओमान की खाड़ी और उत्तरी अरब सागर शामिल है। संकेत साफ है, हॉर्मुज की लहरें अंदर से भी अशांत है और अब ऊपर से भी एक बार फिर शांति भंग होने के आसार बढ़ गए हैं। ईरान हर हाल में अमेरिका की नाकेबंदी को जल्द से जल्द हटाने की मांग कर रहा है और अमेरिका की मांग है कि टोल वसूली बंद की जाए और जहाजों की आवाजाही शुरू की जाए। इस बीच डील को लेकर अभी भी सस्पेंस बना हुआ है। ना तो हॉर्मुज को लेकर अभी कोई फैसला हुआ है और ना ही यूरेनियम को लेकर। अब आपको दिखाते हैं ईरान के लोग इस डील को लेकर क्या कह रहे हैं। यह है तेहरान का इनकलाब स्क्वाड। अमेरिका के खिलाफ और ईरान की लीडरशिप के साथ अपनी भावनाओं के इजहार के लिए हजारों लोग यहां इकट्ठा हुए हैं। हाथों में झंडे हैं, जुबां पर देशभक्ति के नारे हैं। जगह जगह ईरान के नेताओं की तस्वीरें हैं। इस भीड़ में सिर्फ उन्माद नहीं है, बल्कि अमेरिका को कोसने के लिए तथ्यों पर आधारित इनके अपने तर्क।
1: اگر این حرفی که میزنه درست باشه نشان دهنده اینه که محاصرش شکست خورده و اون چیزی که تو ذهنش بوده به وقوع نپیوسته، از پس ما نتونست بر بیاد و برای اینکه بیش از این ضایع نشه میگه که ما محاصره رو پایان میدیم. حالا بعد ببینیم چقدر داره درست میگه. اصلا من حتی میگم ما همون سال 2015 هم اشتباه کردیم، اون اورانیوم ها رو چند تن اورانیوم تحویل دادیم، بسیار اشتباه بود. اورانیوم غنی سازی شده ارزش مادی بالایی داره، هم معنوی هم مادی، حکم بخشی از خاک ماه. چرا باید بدیم به اون؟ هیچ ربطی نداره، برای ماه، برای ملت یونانه و ما تصمیم میگیریم نه نخواهیم داد.
0: هرمز کو لیکر بھی لوگ ایک مت ہیں، یعنی هرمز فلال بند ہی رہے تو ایران کے لیے اچھا ہے.
2: حرف رهبرمونه، تنگه باید بسته بمونه تا وقتی که رهبرمون اعلام کنن ما هم همین رو
0: میگیم. هرمز پر خود ایران مشکلوں میں گھرا ہوا ہے، امریکی ناکےبندی کی وجہ سے اس کا لاکھوں ٹن تیل نریات نہیں ہو پا رہا ہے، لیکن یہ اکلوتا ایسا ہتھیار ہے جو 28 فروری سے شروع ہوئے مہا یدھ میں اس کی طاقت بڑھاتا رہا ہے. ظاہر ہے وہ کسی بھی قیمت پر اس کا نینترن امریکی شرطوں پر نہیں چھوڑے گا. آج تک پیرول.
3: अब रुक रहे छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन होंगे हाजिर. आप देखते रहिए आज तक.

0: बंगाल के सोनारपुर में अभिषेक बैनर्जी पर हमले से बवाल, लोगों ने फेंके पत्थर अंडे कपड़े फाड़े, कहा मुझे मारने की थी साजिश, विपक्ष ने बीजेपी पर उठाए सवाल, सोमवार को ममता करेंगे प्रदर्शन। कर्नाटक के अगले मुख्यमंत्री होंगे डीके शिव कुमार, कांग्रेस विधायक दल की बैठक में चुने गए नेता 3 जून को 8 से 10 मंत्रियों के साथ ले सकते हैं शपथ। सीएम योगी का बड़ा बयान, कहा कि अहिंसा ही परम धर्म, लेकिन जब कोई देश समाज के लिए खतरा है तो अपनानी पड़ती है हिंसा की नीति, समाजवादी पार्टी बोली यूपी में बढ़ रहा है अपराध। गाजियाबाद में अंतर्राष्ट्रीय पैरा एथलीट चिराग त्यागी की हत्या, साथी खिलाड़ी पर गोली मारने का आरोप, अगले महीने जापान में खेलने वाले थे टूर्नामेंट। राजस्थान के कई शहरों में रेतीले तूफान से दहशत, धूल भरी आंधी से दिन में छाया अंधेरा, दिल्ली एनसीआर में बारिश से गिरा तापमान। बंगाल के सोनारपुर में अभिषेक बैनर्जी पर हमला हुआ, चुनावी हिंसा, एक पीड़ित से मिलने के लिए अभिषेक पहुंचे थे और इसी दौरान अभिषेक से हाथापाई हुई, उन पर अंडे फेंके गए और काफी देर तक बवाल मचता रहा।
1: जो अभिषेक बनर्जी पश्चिम बंगाल में सत्ता का केंद्र होते थे, आज उन्हें बीच सड़क पर पीटा जा रहा है। ये पश्चिम बंगाल की सियासत का रक्त चरित्र है। सत्ता बदली लेकिन नहीं बदली तो पश्चिम बंगाल में सियासी रंजिश की तस्वीर, जिसकी चपेट में ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी आ गए। बीच सड़क पर लोगों ने अभिषेक को जमकर पीटा, गुस्साई भीड़ ने अभिषेक बनर्जी पर अंडे फेंके, कपड़े फाड़ दिए। हालात इतने बिगड़ गए कि अभिषेक को हेलमेट पहनकर वहां से निकलना पड़ा।
2: दे वांट टू किल मी एरा हमादेर प्राणे मारते चाहे, मेरे दिख अमर मृतदेह उद्धार होके खान थेके, किंतु आमी जायगा छेड़े जाबो ना।
1: अभिषेक बनर्जी विधानसभा चुनाव के बाद हुई हिंसा के पीड़ित लोगों और उनके परिवारों से मिलने के लिए सोनार गए थे, जहां उन पर यह हमला हुआ। अभिषेक ने इसे बीजेपी की साजिश बताया। उधर स्थानीय लोगों का दावा कि ये हमला किसी राजनीति से प्रेरित नहीं है, बल्कि ये उनका गुस्सा टीएमसी सरकार के खिलाफ है। इलाके में सरकार ने कोई विकास का काम नहीं किया, तो वहीं टीएमसी के कार्यकर्ताओं ने कई सालों तक गुंडागर्दी की, जिसे लेकर ये गुस्सा फूटा।
3: चोर को कैसे नारे, उसको क्या फूलों से स्वागत करेंगे, चोर को अंडा फेंक के मारेंगे। अभी तो हाँ, वो भी बहुत कम हो गया। वो ये राम जी की धरती है, वो राम जी की नाराबाजी करने के माना किया था बांग्लादेश से, वो खुद है, उसका जो मुख्यमंत्री पीसी है वो भी वो एक बांग्लादेशी है।
4: वो लोग अभय मरने का टाइम तो वहाँ भेजा नहीं, वहाँ भेजा है, एक तो डॉक्टर को मारा है वहाँ, उस टाइम वो भेजा नहीं, अभी एक तो चमचा मर गया, इसलिए भेजा है यहाँ, इसके लिए भेजा है, हमारा रास्ता देखता है आज पुंदर मधु में, ये रास्ता कैसे चलता है, हम लोग बाल बच्चा कर लिए।
1: अभिषेक बनर्जी पर हुआ हमला एक बार फिर पश्चिम बंगाल में सियासी हिंसा को लेकर सवाल खड़े करता है। तपस सेन गुप्ता, दक्षिण 24 परगना, आज तक।
0: बिहार की राजनीति में सरकारी आवास को लेकर नया घमासान छिड़ गया है। पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी ने साफ संकेत दिए हैं कि वो 10 सर्कुलर रोड स्थित सरकारी आवास खाली करने के मूड में नहीं है, जबकि पिछले 6 महीनों में उन्हें लगातार नोटिस भेजे जा रहे हैं।
5: हम तो चाहते हैं कि सम्राट चौधरी पूरा बिहार के फोर्स बुला के आ, हमारा 10 नंबर खाली करा दे, हम नहीं खाली करेंगे, आवे हमारा सामने।
6: बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी ने बिहार सरकार को खुली चुनौती दी है कि वो अपना सरकारी आवास नहीं खाली करेंगी। पिछले 6 महीने से 10 सर्कुलर रोड आवास को खाली कराने के लिए नोटिस दिया जा रहा है, लेकिन राबड़ी के तेवर बताते हैं कि ये आवास बिहार की सियासत का नया अखाड़ा बनता जा रहा है।
7: अरे कहाँ इसमें वो कह रही, इसमें तो जो कानून है, जो नियम है, उसके हिसाब से काम होता है और सब लोगों को नियम कानून का पालन करना चाहिए।
1: बिहार विधानसभा चुनाव खत्म होने के बाद 25 नवंबर 2025 को राबड़ी देवी को नया आवास 39 हार्डिंग रोड पर आवंटित किया गया। उस वक्त राबड़ी देवी को लेटर भी भेजा गया, लेकिन 6 महीना बीत जाने के बाद भी राबड़ी देवी ने 10 सर्कुलर रोड घर को खाली नहीं किया है। ये बंगला पशु संसाधन मंत्री नंद किशोर यादव का आवंटित है, जिसे लेकर राबड़ी देवी को 29 मई को नया नोटिस भेजा गया।
8: मैं तो कह रहा हूँ कि वो मुख्यमंत्री रहे हैं, 1-2 साल नहीं 7 साल रहे हैं, तो उनको तो कानून का पालन करना ही चाहिए। बयान निंदनीय है, ये टकराव का बयान है, आपत्तिजनक है, और क्या बात करते हैं, पूरे बिहार के फोर्स की जरूरत है, एक दरोगा जाके निकाल देगा।
1: राबड़ी देवी करीब 20 वर्षों से 10 सर्कुलर रोड आवास में रहती आई हैं। यह आवास काफी बड़ा है, इससे लालू परिवार की यादें भी जुड़ी हैं।
9: राबड़ी देवी जी, ये जंगल राज नहीं है, ये कानून का राज है, एनडीए की सरकार है। आपको इलाज कराना होता है तो सिंगापुर जाते हैं, पोता का जन्मदिन मनाना होता है तो दिल्ली नोएडा भागते हैं, और जब लूटने की बारी आती है तो आप बिहार में रहना चाहते हैं।
1: नवंबर 2005 में चुनाव हारने के बाद राबड़ी देवी को यह आवास आवंटित किया गया था। उस समय पूर्व मुख्यमंत्री को भी आवास आवंटित होता था, लेकिन जब 2019 में अपने आवास के मामले को लेकर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव पटना हाईकोर्ट गए, तब कोर्ट ने सख्त निर्देश दिया था कि कोई भी पूर्व मुख्यमंत्री या पूर्व उप मुख्यमंत्री पद से हटने के बाद सरकारी बंगला नहीं रख सकता। इसके बाद से 10 सर्कुलर रोड राबड़ी देवी को बिहार विधान परिषद के नेता प्रतिपक्ष के रूप में आवंटित किया गया, जिसे अब उन्हें खाली करना होगा। शशि भूषण, पटना आज तक।
0: अब आते एनटीए की, जिसकी भूमिका पर एक बार फिर सवाल खड़े हो रहे हैं। एनटीए की ओर से आयोजित

0: अभिभावक परेशान नजर आए। अब एनटीए इस पर माफी मांग रहा है तो वहीं विपक्ष एक बार फिर एनटीए की भूमिका पर सवाल खड़े कर रहा है। चार परीक्षाएं, 1 करोड़ बच्चे, एक भी ईमानदारी से नहीं हो पाई। दावे विश्व गुरु के, मगर देश में एक परीक्षा नहीं करवा सकते। मोदी जी ने पूरी शिक्षा व्यवस्था तबाह कर दी है। जिस पीढ़ी का भविष्य आप बर्बाद कर रहे हैं, वही पीढ़ी आपका हिसाब करेगी।
1: ये देखने में आ रहा है कि एनटीए ने सीयूईटी टेस्ट का भी मजाक बना के रख दिया है। सीयूईटी टेस्ट में करीब 18 लाख बच्चे अलग अलग यूनिवर्सिटीज में बैठने के लिए टेस्ट देते हैं। आज सेंटर पे पहुंचे, उनका टाइम बदल दिया गया, किसी का सेंटर बदल दिया जा रहा है, किसी की डेट बदल दी जा रही है। ऐसी डेट पे एग्जाम दे दिए जाते हैं जिसमें वो सेंटर फ्री नहीं है। पूरा का पूरा मिसमैनेजमेंट है।
0: उधर सरकार के नीट पेपर में सेना की मदद के फैसले पर भी विपक्ष सवाल खड़े कर रहा है।
2: कल हमारे देश की सरकार ने ऐलान किया है कि अब नीट के पेपर को लीक होने से बचाने के लिए एयरफोर्स के जहाज से उसको ट्रांसपोर्ट करेंगे, एयरफोर्स के बुलेट प्रूफ ट्रकों से उसको ट्रांसपोर्ट करेंगे। मजाक बना रखा है, हमें बेवकूफ समझ रखा है। पूरी दुनिया में इतने बड़े बड़े पेपर होते हैं, कहीं सुना है कि एयरफोर्स से उनको ट्रांसपोर्ट किया जाता है?
0: बहरहाल परीक्षाओं को लेकर एनटीए पूरी तरह फेल नजर आ रहा है, जहां उसकी नाकामी एक बार फिर आज सीयूईटी यूजी के पेपर में खुलकर सामने आ गई। आज तक ब्यूरो।
3: अब यूपी के जहां गाजियाबाद में एक शख्स की हत्या, उसके बाद हिंदू मुस्लिम का इसने रंग रूप ले लिया। परिवार का आरोप है कि बकरीद के बहाने बुलाकर बेटे की हत्या कर दी गई।
4: आज माफिया पिस्तौल लहराते हुए कोई धमका करके खुली जीप में चल करके किसी हिंदू को धमका नहीं सकता है। जन्माष्टमी हो, रक्षाबंधन हो, इन आयोजनों में अगर किसी ने व्यवधान डाला तो पर्व तो मनाई लेगा, लेकिन उसके बाद तय है कि रावण और कंस जैसी दुर्गति उसकी तय है जो व्यवधान डालने वाला है।
5: उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का यह बयान ऐसे समय आया जब 17 साल के हिंदू युवक की हत्या कर दी गई। गाजियाबाद के खोड़ा थाना क्षेत्र में सूर्या की बकरीद की शाम चाकुओं से गोद कर बेरहमी से हत्या कर दी जाती है और इल्जाम लगा सूर्या के ही मुस्लिम दोस्तों पर। हत्या के बाद गाजियाबाद के खोड़ा इलाके में तनाव है, पुलिस अलर्ट पर है। इस बीच लखनऊ में मुख्यमंत्री ने यूपी की कानून व्यवस्था पर अपनी सरकार के मॉडल का जिक्र एक बार फिर किया।
4: अहिंसा परमो धर्म, धर्म हिंसा तथैव च, यानी सामान्य जीवन में अहिंसा ही सर्वोच्च धर्म होना चाहिए, लेकिन अगर सामने वाला देश और समाज की सुरक्षा के लिए खतरा है तो उसके लिए अहिंसा नहीं चल सकती है, उसके लिए तो हिंसा ही हमें अंततः अपनानी पड़ेगी।
5: तो फिर गाजियाबाद की घटना कैसे हो गई? योगी सरकार के अपराध नियंत्रण के दावों पर यह घटना कितना बड़ा सवाल है। क्या यूपी की राजनीति में 2027 विधानसभा चुनाव के लिए नया नैरेटिव तैयार हो रहा है? गाजियाबाद में जिस शख्स पर 28 मई को चाकुओं से वार किया गया, उसने 29 मई को दम तोड़ा। इसी दिन यानी 29 मई को मऊ में मुख्यमंत्री ने दावा किया कि उनके राज में कोई हिंदुओं को धमका नहीं सकता।
4: आज माफिया पिस्तौल लहराते हुए कोई धमका करके खुली जीप में चल करके किसी हिंदू को धमका नहीं सकता है।

0: यूपी की कानून व्यवस्था पर मुख्यमंत्री योगी के 48 घंटे में दो बड़े बयान आए हैं। 29 मई को मुख्यमंत्री ने कहा कि आज माफिया किसी हिंदू को खुलेआम धमका नहीं सकता। 30 मई को मुख्यमंत्री ने कहा कि खतरा हो तो हिंसा भी अपनानी पड़ती है। एक तरफ अपराध पर सख्त कार्रवाई का दावा, दूसरी तरफ हिंसा पर राजनीतिक बहस। समाजवादी पार्टी कह रही है कि गाजियाबाद की घटना को हिंदू मुसलमान से न जोड़ा जाए।
1: जिन लोगों ने भी अपराध किया है, चाहे वो किसी धर्म किसी जात के हों, उन पे कार्रवाई होनी चाहिए, सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, कानून के मुताबिक कार्रवाई होनी चाहिए। उत्तर प्रदेश में लगातार अपराध रुक नहीं रहे हैं, चाहे वो राजधानी लखनऊ की बात हो। अभी 3 दिन पहले एक प्रॉपर्टी डीलर को ही हत्या कर दी गई, अब ये गाजियाबाद की घटना है। लगातार उत्तर प्रदेश में हत्याएं हो रही हैं, लूट हो रहे हैं, बलात्कार हो रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार कानून व्यवस्था देने में पूरी तरह से विफल है।
0: 2027 का रास्ता लखनऊ से नहीं बल्कि ऐसी घटनाओं पर जनता की प्रतिक्रिया से भी तय होगा। इसलिए चुनावी नैरेटिव को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष अपने अपने हिसाब से परिभाषा गढ़ते हैं। क्या अपराध का धर्म होता है या फिर हर बड़ी वारदात के बाद राजनीति धर्म का चश्मा पहन लेती है। इस बीच उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य कहते हैं कि हत्या करने वालों को फांसी के तख्ते पर चढ़ाने के लिए कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
2: प्यारा कोई भी हो, वो बक्सा नहीं जाएगा, उसको खोज निकाला जाएगा और हत्या करने वाले को फांसी पर चढ़ाने के लिए जो कार्रवाई होती है कानूनी, वो कानूनी कार्रवाई की जाएगी। सरकार कानून व्यवस्था को लेकर के बहुत गंभीर है और जिन लोगों ने ऐसा अपराध किया उनके खिलाफ कठोर से कठोर कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
0: योगी सरकार में सहयोगी पार्टी के मंत्री अखिलेश यादव से चुभते हुए सवाल पूछते हैं, उनके पीडीएस समीकरण पर वार करते हैं।
3: अखिलेश यादव जी को उस पे बोलना चाहिए कि उनके वोटर हैं, उन लोग ऐसी हत्या क्यों कर रहे हैं। कहीं मुसलमान मार रहा है तो कहीं यादव मार रहा है। उनका MOI जो फैक्टर है इस समय पूरे प्रदेश में आतंक मचाया हुआ है। बोलते हैं PDA इनका असफल है सिर्फ MOI फैक्टर को दबाने के लिए, लोगों का दिमाग भटकाने के लिए कि हमको सिर्फ MOI कहा जाता था, इस नाते PDA चिल्ला रहे हैं।
0: गाजियाबाद की घटना उत्तर प्रदेश की राजनीति को उस चौराहे पर लाकर खड़ा कर देती है जहां सरकार अपने दावे गिनाती है और विपक्ष जमीन की हकीकत दिखाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन सवाल है, क्या यूपी में जनता सुरक्षित महसूस करती है?
4: बात दिल्ली के जहांगीरपुर में हुए मर्डर की, जहां बकरीद की रात मामूली सा विवाद एक युवक की मौत की वजह बन गया।
5: दिल्ली में सिगरेट को लेकर विवाद में युवक की हत्या। सिगरेट लाने से मना किया तो चाकू मार दिया। सुनने में भले ही यह हैरानी भरा लगे लेकिन इस वारदात ने एक शख्स की जान ले ली। बकरीद के मौके पर जब 26 साल के अरबाज के घर त्योहार की खुशियां थी, इस वारदात के बाद चीख पुकार मच गई। पुलिस के मुताबिक रात 11 बजे के करीब अरबाज अपने घर के पास ही मौजूद था। इसी दौरान इलाके के कुछ लड़कों के साथ उसकी कहासुनी हुई जो देखते ही देखते हिंसक झड़प में बदल गई। इसके पीछे की जो वजह सामने आई है वो भी बेहद हैरानी भरी है।
6: उस टाइम पे कुछ नहीं हुआ था, एक सिगरेट मंगाने का विवाद था कि सिगरेट लाके दे। तो उन्होंने बोला तेरे बाप का नौकर हूँ क्या, तेरा क्या, तू जाके लिया, तू क्या बदमाश है क्या। तो उन्होंने बोला चल ठीक है। फिर इतने में उन्होंने अपने दोस्तों को फोन मिलाया, उस लड़के ने, 7-8 लोंडे आ गए। इस बात को लेकर उन्होंने उसको मार दिया कि तूने हमसे ऐसा क्यों कहा।
5: विवाद के बाद जब अरबाज को लड़कों ने घेरा तो उसने मदद के लिए अपने भाई को बुलाया। भाई के सामने ही आरोपियों ने अरबाज की हत्या कर दी।
7: अरबाज का बड़ा भाई था, अरबाज ने मेरे पास फोन करा रात में पूरे 10:59 पर कि भाई ऐसे ऐसे बात है, मेरे को लड़कों ने घेर रखा, जल्दी से इधर आ जा गली के बाहर। मैं भागते हुए गया, जाके देखा तो उस टाइम पे ना इस पे सब सवार हुए पड़े थे लड़के, जो लड़के थे सब सवार हुए पड़े थे। ये 5-6 लड़के थे। उसी बीच में आवाज आती है कि चाकू निकाल, उसी बीच में आवाज आती है चाकू निकाल। अब जब चाकू निकालने के बाद आती है तो मेरे भाई को ना गेट है हमारी गली के बाहर उसमें घुसा दिया। तो मैं गया, मैंने पीछे से पकड़ के खींचा उसे, लड़कों को, 2-3 लड़के उस पर चढ़े पड़े थे। जैसे मैंने उन्हें खींचा तो एक लड़का साइड में से निकल के गया, वो इतने में जाके उसके चाकू मार।
5: अरबाज जहांगीरपुरी के सी ब्लॉक का रहने वाला था और इलाके में ही एक सुनार की दुकान पर काम करता था। युवक की मौत के बाद घर में मातम है और इलाके में तनाव। पुलिस ने स्थानीय लोगों और चश्मदीदों से पूछताछ के आधार पर 3 नाबालिगों को हिरासत में लिया है। उनसे पूछताछ की जा रही है और वारदात में उनकी भूमिका की जांच हो रही है। आज तक ब्यूरो।
4: अब बात राजस्थान के, जहां पर मौसम की खौफनाक तस्वीर देखने को मिली। रेतीले तूफान ने राजस्थान के 5 जिलों को अपनी चपेट में ले लिया। आसमान में चारों ओर धूल का गुबार दिखाई दिया और इस पूरे धूल के गुबार ने पूरे शहर में अंधेरा सा कर दिया।
8: एक आम रिहायशी इलाका और सामने से आया रेत का बवंडर मानो पूरे शहर को अपने आगोश में ले लेना चाहता हो। यह हैरान करने वाली तस्वीरें राजस्थान के चुरू की है। रेत का गुब्बार धीरे धीरे शहर की ओर बढ़ता है। आसमान में सिर्फ धूल ही धूल नजर आती है। फिर शहर की गलियां, सड़क, घर, छत, हर कहीं ये धूल कब्जा करने लगती है। दिन में अंधेरा छाने लगता है। तूफान के कारण दिन में लोगों को वाहनों की हेडलाइट जलानी पड़ गई।
9: इस सीजन का जबरदस्त आंधी तूफान भयंकर आया, उसमें मेरे हिसाब से लाखों करोड़ों का सरकार का नुकसान हुआ है और उसके बाद में जबरदस्त बारिश और पेड़ों का गिरना, बिजली का नुकसान होना बहुत ही जबरदस्त, मतलब इस मौसम में जो आंधी आई है बहुत ही जबरदस्त आई है।
10: और इस तूफान में आज आपको देखने को मिला कि मतलब कि तूफान की में आंधी काफी भयंकर थी, धूल भरी आंधी थी, जिसके कारण पेड़ है और भी बहुत सारे पक्षी वगैरह काफी इनका नुकसान हुआ।
8: इसके कई वीडियो सामने आए हैं। इनमें लोग भागकर घरों में जाते दिखे और घरों को बंद कर दिया। इस दौरान 60 से 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आंधी चली, जो करीब 30 मिनट तक इलाके में कोहराम मचाती रही। हालांकि तूफान की ऊंचाई का आधिकारिक आंकड़ा सामने नहीं आया है। इस रेतीले तूफान ने राजस्थान के 5 जिलों को अपनी चपेट में ले लिया। श्री गंगानगर, बीकानेर, चुरू, हनुमानगढ़ और सीकर के आसमान में रेत का गुब्बार देखने को मिले। करीब 200 वर्ग किलोमीटर का इलाका इससे प्रभावित नजर आया।
11: रेत का बाउंडर बहुत भारी और बहुत खतरनाक था। मैंने अपनी जिंदगी 15-20 सालों में कभी ऐसा माहौल नहीं देखा था और दिन में एकदम आंधी आई ऐसे तो मानो साफ हो गई। ये कहीं ना कहीं अपने प्रकृति से जो पर्यावरण पौधे अपने काट रहे हैं और ये खिलवाड़ कर रहे हैं, इसके लिए अपने सजग रहने की जरूरत है।
12: और एकदम से बिल्कुल काला काला हो गया सिस्टम, जैसे रात हो गई होती है एकदम से। इतनी तेज अंधेरी थी, उसका जो किलोमीटर के हिसाब से बताया गया था वो 80-90 किलोमीटर के हिसाब से उसका विंड का बताया गया था और एकदम से फुल अंधेरी थी। और जहाँ पर जो दरख्त है छोटे छोटे वो हिलने लगे, कुछ दरख्त है वो टूट भी गए थे।
8: पाकिस्तान से उठे इस तूफान ने रेगिस्तान का मौसम पूरी तरह से बदल दिया। आज तक ब्यूरो।
4: बीते 2 दिनों से बदले मौसम से उत्तर भारत के लोगों को प्रचंड गर्मी की मार से राहत मिली। कई इलाकों में तेज हवाएं चले, कई इलाकों में भारी बारिश हुई। मौसम विभाग ने अब 1-2 दिनों तक मौसम में बदलाव के ही संकेत जारी किए हैं और कई इलाकों में बारिश की संभावना व्यक्त की है।
13: लेकर उत्तराखंड, हिमाचल से लेकर कश्मीर, यूपी, बंगाल और छत्तीसगढ़ तक मौसम का ऐसा रौद्र रूप देखने को मिला कि जनजीवन पूरी तरह अस्त व्यस्त हो गया। सबसे पहले बात राजस्थान की। यहां जयपुर में तेज बारिश और ओलावृष्टि ने शहर की रफ्तार पर ब्रेक लगा दिया। धौलपुर में 1.5 घंटे की मूसलाधार बारिश ने हालात बिगाड़ दिए। सड़कें, कॉलोनियां और गली मोहल्ले पानी में डूब गए। अब बात उत्तराखंड की। यहां देहरादून में तेज बारिश ने मौसम बदल दिया, लेकिन शहर की रफ्तार थम गई। टिहरी गढ़वाल में बारिश और भारी ओलावृष्टि ने किसानों की कमर तोड़ दी। वहीं धनौल्टी में देर रात आए तूफान ने भारी तबाही मचाई। 20 से 30 देवदार के पेड़ गिर गए, इको पार्क की टेंट शेड उड़ गई और बर्मा ब्रिज पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। बागेश्वर में लगातार बारिश के बाद नदियां उफान पर आ गईं। गोमती नदी पर बने बैजनाथ बैराज के गेट खोलने पड़े और प्रशासन ने सायरन बजाकर लोगों को अलर्ट किया। जम्मू कश्मीर की श्रीनगर गुलमर्ग रोड पर तेज आंधी से कई पेड़ उखड़ गए, सड़कें बंद करनी पड़ी और ट्रैफिक रोक दिया गया। बात उत्तर प्रदेश की करें तो आगरा में तेज आंधी और तूफान के साथ झमाझम बारिश हुई, पेड़ गिर गए, टिन शेड उड़ गए और कई इलाकों में जलभराव से ट्रैफिक थम गया। मौसम विभाग ने आने वाले दिनों में और आंधी बारिश की चेतावनी दी है। आज तक ब्यूरो।
4: अब रुख करते हैं मिडिल ईस्ट की ओर। अगर अमेरिका और ईरान डील के इतने ही करीब हैं तो दोनों के सुर अलग अलग क्यों हैं? आखिर क्यों अमेरिका लगातार कह रहा है कि वो समझौते के बेहद करीब है, जबकि ईरान आधिकारिक तौर पर इस पर चुप्पी साधे हुए है?
14: फील्ड पर अमेरिका और ईरान के जुदा हैं बयान, सुर अलग है तो फैसला कैसे एक होगा, सस्पेंस भारी, आ रही है बम बरसाने की बारी। क्या अमेरिका और ईरान में सच में कुछ ही घंटों में डील होने वाली है या फिर महायुद्ध पार्ट टू जल्द शुरू होने वाला है? कहने को तो अमेरिका की टॉप लीडरशिप हर दिन ये उम्मीद जगा रही है कि वो डील के बेहद करीब है।
15: Look at what we've already accomplished here, assuming that we're able to get to a final agreement here. We're reopening the Straits of Hormuz. We've already decimated their conventional military, and we're in a position where we could substantially set back their nuclear program, not just during the term of this president, but over the long term. That's a very, very good thing for the American people. So we're not there yet, but we're very close. We're going to keep on working at it. Thank you, guys. Have a good evening.
14: राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति ही नहीं, रक्षा मंत्री भी हर जगह जाकर यही कह रहे हैं कि डील जल्द ही होने वाली है और ये एक शानदार डील होगी। लेकिन सिंगापुर जाने से पहले रक्षा मंत्री ईरान को धमकी भी देकर गए हैं, यानी अमेरिका को भी ये अंदेशा तो है कि हो सकता है कि डील उनके मुताबिक ना हो और एक बार फिर रणभूमि में उतरना पड़े।
16: And when you do your job, the adversaries know what's coming for them. And that's when they either step up and meet the fury of the American military or back down and you create a whole bunch of options for America and the president with what he wants to execute on behalf of the American people. So right now, hey, Iran has a choice. Meet at the table with the president and give up their nuclear program. And as the president said, I'm lost on time, 2 days ago now, in the cabinet meeting, I'm sitting right next to him. He looks in the camera and says, well, Iran can either do it the right way with a deal across the table, or they can deal with my guy on the left. That happened to be me. But it's not me. It's you guys. It's what you're ready to do.
14: लेकिन ईरान की तरफ से कोई ऐसे संकेत नहीं मिल रहे हैं। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल भगाई ने सरकारी मीडिया से बातचीत में कहा है कि होर्मुज पर फैसला ईरान और ओमान को लेना चाहिए और इसे खोलने का फैसला भी अमेरिका नाकेबंदी हटने के बाद ही होना चाहिए। जो भी हो, डील को लेकर हलचल तो लगातार बढ़ रही है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सिचुएशन रूम में 2 घंटे तक अहम मीटिंग की है। इस मीटिंग में ईरान के साथ डील को लेकर कई पहलुओं पर बात की गई। मीटिंग में ट्रंप ने साफ कहा कि किसी भी कीमत पर ईरान को परमाणु बम बनाने की इजाजत नहीं दी जा सकती। उसके अलावा उसे होर्मुज को बिना टोल बंदी के खोलना ही पड़ेगा। ईरान की न्यूज एजेंसी फोर्स के मुताबिक ईरान का मानना है कि ट्रंप मनगढ़ंत जीत को दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। इसके अलावा ईरानी अधिकारियों के हवाले से ये भी दावा किया गया है कि डील में एटमी मुद्दे का जिक्र नहीं है। लेकिन ईरान की 12 बिलियन अमेरिकी डॉलर की फीस संपत्ति छोड़ने का समझौता जरूर है। अभी ट्रंप ने डील के बारे में अंतिम फैसला नहीं लिया है। अगर ट्रंप ने समझौते पर मुहर लगा दी तो 60 दिन के लिए सीजफायर का ऐलान किया जा सकता है ताकि होर्मुज को खोलने की प्रक्रिया शुरू की जा सके। आज तक ब्यूरो।
4: उसको लेकर बातें कितनी भी हो रही हो, लेकिन सच है कि अमेरिका और ईरान दोनों ही इस मुद्दे पर अड़े हैं। कहने को अमेरिकी नाकेबंदी चरणबद्ध तरीके से हट जाएगी, लेकिन यूएस नेवी की ताजा चेतावनी ने हालात हाहाकारी होने के संकेत दिए हैं।

0: बंगाल के सोनारपुर में अभिषेक बैनर्जी पर हमले से बवाल, लोगों ने फेंके पत्थर अंडे कपड़े फाड़े, कहा मुझे मारने की थी साजिश, विपक्ष ने बीजेपी पर उठाए सवाल, सोमवार को ममता करेंगी प्रदर्शन। कर्नाटक के अगले मुख्यमंत्री होंगे डीके शिवकुमार, कांग्रेस विधायक दल की बैठक में चुने गए नेता, 3 जून को 8 से 10 मंत्रियों के साथ ले सकते हैं शपथ। सीएम योगी का बड़ा बयान, कहा कि अहिंसा ही परम धर्म, लेकिन जब कोई देश समाज के लिए खतरा है तो अपनानी पड़ती है हिंसा की नीति, समाजवादी पार्टी बोली यूपी में बढ़ रहा है अपराध। गाजियाबाद में अंतर्राष्ट्रीय पैरा एथलीट चिराग त्यागी की हत्या, साथी खिलाड़ी पर गोली मारने का आरोप, अगले महीने जापान में खेलने वाले थे टूर्नामेंट। राजस्थान के कई शहरों में रेतीले तूफान से दहशत, धूल भरी आंधी से दिन में छाया अंधेरा, दिल्ली एनसीआर में बारिश से गिरा तापमान। बंगाल के सोनारपुर में अभिषेक बैनर्जी पर हमला हुआ, चुनावी हिंसा, एक पीड़ित से मिलने के लिए अभिषेक पहुंचे थे और इसी दौरान अभिषेक से हाथापाई हुई, उन पर अंडे फेंके गए और काफी देर तक बवाल मचता रहा।
1: जो अभिषेक बनर्जी पश्चिम बंगाल में सत्ता का केंद्र होते थे, आज उन्हें बीच सड़क पर पीटा जा रहा है। ये पश्चिम बंगाल की सियासत का रक्त चरित्र है। सत्ता बदली लेकिन नहीं बदली तो पश्चिम बंगाल में सियासी रंजिश की तस्वीर, जिसकी चपेट में ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी आ गए। बीच सड़क पर लोगों ने अभिषेक को जमकर पीटा, गुस्साई भीड़ ने अभिषेक बनर्जी पर अंडे फेंके कपड़े फाड़ दिए, हालात इतने बिगड़ गए कि अभिषेक को हेलमेट पहनकर वहां से निकलना पड़ा।
2: दे वांट टू किल मी एरा आमादेर प्राणे मारते चाहे, मेरे दिख अमर मृतदेह उद्धार होके खान थे, किंतु मैं जाएगा छेड़े जाबो ना।
1: अभिषेक बनर्जी विधानसभा चुनाव के बाद हुई हिंसा के पीड़ित लोगों और उनके परिवारों से मिलने के लिए सोनार गए थे, जहां उन पर यह हमला हुआ। अभिषेक ने इसे बीजेपी की साजिश बताया। उधर स्थानीय लोगों का दावा कि ये हमला किसी राजनीति से प्रेरित नहीं है, बल्कि ये उनका गुस्सा टीएमसी सरकार के खिलाफ है। इलाके में सरकार ने कोई विकास का काम नहीं किया, तो वहीं टीएमसी के कार्यकर्ताओं ने कई सालों तक गुंडागर्दी की, जिसे लेकर ये गुस्सा फूटा।
3: चोर को कैसे नारे, उसको क्या फूलों से स्वागत करेंगे, चोर को अंडा फेंक के मारेंगे। अभी तो हाँ, वो भी बहुत कम हो गया। वो ये राम जी की धरती है, वो राम जी की नाराबाजी करने के माना किया था। बांग्लादेशी वो खुद है, उसका जो मुख्यमंत्री पीसी है वो भी वो एक बांग्लादेशी है।
4: वो लोग भाई मारने का टाइम तो वहाँ भेजा नहीं, वहाँ भेजा है एक तो डॉक्टर को मारा है वहाँ, तो उस टाइम वो भेजा नहीं, अभी एक तो चमचा मर गया, इसलिए भेजा है यहाँ, किसके लिए भेजा है? हमारा रास्ता देखते है आज पुंतुर माधो में, ये रास्ता कैसे चलता है? हम लोग बाल बच्चा कर लिए।
1: अभिषेक बनर्जी पर हुआ हमला एक बार फिर पश्चिम बंगाल में सियासी हिंसा को लेकर सवाल खड़े करता है। तपस सेन गुप्ता, दक्षिण 24 परगना, आज तक।
0: बिहार की राजनीति में सरकारी आवास को लेकर नया घमासान छिड़ गया है। पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी ने साफ संकेत दिए हैं कि वो 10 सर्कुलर रोड स्थित सरकारी आवास खाली करने के मूड में नहीं है, जबकि पिछले 6 महीनों में उन्हें लगातार नोटिस भेजे जा रहे हैं।
5: हम तो चाहते हैं कि सम्राट चौधरी पूरा बिहार के फोर्स बुला के आ हमारा 10 नंबर खाली करा दे, हम नहीं खाली करेंगे, आवे हमारा सामने।
6: बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी ने बिहार सरकार को खुली चुनौती दी है कि वो अपना सरकारी आवास नहीं खाली करेंगी। पिछले 6 महीने से 10 सर्कुलर रोड आवास को खाली कराने के लिए नोटिस दिया जा रहा है, लेकिन राबड़ी के तेवर बताते हैं कि ये आवास बिहार की सियासत का नया अखाड़ा बनता जा रहा है।
7: अरे कहाँ, इसमें वो कह रही, इसमें तो जो कानून है, जो नियम है, उसके हिसाब से काम होता है और सब लोगों को नियम कानून का पालन करना चाहिए।
1: बिहार विधानसभा चुनाव खत्म होने के बाद 25 नवंबर 2025 को राबड़ी देवी को नया आवास 39 हार्डिंग रोड पर आवंटित किया गया। उस वक्त राबड़ी देवी को लेटर भी भेजा गया, लेकिन 6 महीना बीत जाने के बाद भी राबड़ी देवी ने 10 सर्कुलर रोड घर को खाली नहीं किया है। ये बंगला पशु संसाधन मंत्री नंद किशोर यादव का आवंटित है, जिसे लेकर राबड़ी देवी को 29 मई को नया नोटिस भेजा गया।
8: मैं तो कह रहा हूँ कि वो मुख्यमंत्री रही हैं, 1-2 साल नहीं 7 साल रहे हैं, तो उनको तो कानून का पालन करना ही चाहिए। बयान निंदनीय है, ये टकराव का बयान है, आपत्तिजनक है, और क्या बात करती हैं, पूरे बिहार के फोर्स की जरूरत है, एक दरोगा जाके निकाल देगा।
1: राबड़ी देवी करीब 20 वर्षों से 10 सर्कुलर रोड आवास में रहती आई हैं। यह आवास काफी बड़ा है, इससे लालू परिवार की यादें भी जुड़ी हैं।
9: राबड़ी देवी जी, ये जंगल राज नहीं है, ये कानून का राज है, एनडीए की सरकार है। आपको जब इलाज कराना होता है तो सिंगापुर जाते हैं, पोता का जन्मदिन मनाना होता है तो दिल्ली नोएडा भागते हैं, और जब लूटने की बारी आती है तो आप बिहार में रहना चाहते हैं।
1: नवंबर 2005 में चुनाव हारने के बाद राबड़ी देवी को यह आवास आवंटित किया गया था। उस समय पूर्व मुख्यमंत्री को भी आवास आवंटित होता था, लेकिन जब 2019 में अपने आवास के मामले को लेकर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव पटना हाईकोर्ट गए, तब कोर्ट ने सख्त निर्देश दिया था कि कोई भी पूर्व मुख्यमंत्री या पूर्व उप मुख्यमंत्री पद से हटने के बाद सरकारी बंगला नहीं रख सकता। इसके बाद से 10 सर्कुलर रोड राबड़ी देवी को बिहार विधान परिषद के नेता प्रतिपक्ष के रूप में आवंटित किया गया, जिसे अब उन्हें खाली करना होगा। शशि भूषण, पटना आज तक।
0: अब बात एनटीए की, जिसकी भूमिका पर एक बार फिर सवाल खड़े हो रहे हैं। एनटीए की ओर से आयोजित सीयूईटी यूजी परीक्षा में एक बार फिर तकनीकी खराबी का मामला सामने आया।
10: अभी निकल के आना 2 घंटे।
11: परीक्षा केंद्र के बाहर मचा ये हंगामा एक बार फिर एनटीए के कामकाज पर सवाल खड़े कर रहा है। आज सीयूईटी यूजी परीक्षा के केंद्रों पर तकनीकी खराबी की शिकायत आई, जिसके बाद सुबह 9 बजे शुरू होने वाली परीक्षा कई केंद्रों पर करीब 11:23 पर शुरू हुई। वहीं एनटीए ने दोपहर की शिफ्ट का टाइम भी बदल दिया, जिसके चलते अभ्यर्थियों और अभिभावक परेशान नजर आए। अब एनटीए इस पर माफी मांग रहा है, तो वहीं विपक्ष एक बार फिर एनटीए की भूमिका पर सवाल खड़े कर रहा है। 4 परीक्षाएं, 1 करोड़ बच्चे, एक भी ईमानदारी से नहीं हो पाई। दावे विश्व गुरु के, मगर देश में 1 परीक्षा नहीं करवा सकते। मोदी जी ने पूरी शिक्षा व्यवस्था तबाह कर दी है। जिस पीढ़ी का भविष्य आप बर्बाद कर रहे हैं, वही पीढ़ी आपका हिसाब करेगी।
12: ये देखने में आ रहा है कि एनटीए ने सीयूईटी टेस्ट का भी मजाक बना के रख दिया है। सीयूईटी टेस्ट में करीब 18 लाख बच्चे अलग अलग यूनिवर्सिटीज में बैठने के लिए टेस्ट देते हैं। आज सेंटर पर पहुंचे, उनका टाइम बदल दिया गया, किसी का सेंटर बदल दिया जा रहा है, किसी की डेट बदल दी जा रही है, ऐसी डेट पे एग्जाम दे दिए जाते हैं जिसमें वो सेंटर फ्री नहीं है। पूरा का पूरा मिसमैनेजमेंट है।
11: उधर सरकार के नीट पेपर में सेना की मदद के फैसले पर भी विपक्ष सवाल खड़े कर रहा है।
13: कल हमारे देश की सरकार ने ऐलान किया है कि अब नीट के पेपर को लीक होने से बचाने के लिए एयरफोर्स के जहाज से उसको ट्रांसपोर्ट करेंगे, एयरफोर्स के बुलेट प्रूफ ट्रकों से उसको ट्रांसपोर्ट करेंगे। मजाक बना रखा है, हमें बेवकूफ समझ रखा है। पूरी दुनिया में इतने बड़े बड़े पेपर होते हैं, कहीं सुना है कि एयरफोर्स से उनको ट्रांसपोर्ट किया जाता है?
11: बहरहाल परीक्षाओं को लेकर एनटीए पूरी तरह फेल नजर आ रहा है, जहां उसकी नाकामी एक बार फिर आज सीयूईटी यूजी के पेपर में खुलकर सामने आ गई। आज तक ब्यूरो।
0: बात यूपी की, जहां गाजियाबाद में एक शख्स की हत्या, उसके बाद हिंदू मुस्लिम का इसने रंग रूप ले लिया। परिवार का आरोप है कि बकरीद के बहाने बुलाकर बेटे की हत्या कर दी गई।
14: आज माफिया पिस्तौल लहराते हुए कोई धमका करके खुली जीप में चल करके किसी हिंदू को धमका नहीं सकता है। जन जन्माष्टमी हो, रक्षाबंधन हो, इन आयोजनों में अगर किसी ने व्यवधान डाला तो पर्व तो मनाई लेगा, लेकिन उसके बाद तय है कि रावण और कंस जैसी दुर्गति उसकी तय है जो व्यवधान डालने वाला है।
1: उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का यह बयान ऐसे समय आया जब 17 साल के हिंदू युवक की हत्या कर दी गई। गाजियाबाद के खोड़ा थाना क्षेत्र में सूर्या की बकरीद की शाम चाकुओं से गोद कर बेरहमी से हत्या कर दी जाती है और इल्जाम लगा सूर्या के ही मुस्लिम दोस्तों पर। हत्या के बाद गाजियाबाद के खोड़ा इलाके में तनाव है, पुलिस अलर्ट पर है। इस बीच लखनऊ में मुख्यमंत्री ने यूपी की कानून व्यवस्था पर अपनी सरकार के मॉडल का जिक्र एक बार फिर किया।
15: अहिंसा परमो धर्म, धर्म हिंसा तथैव च, यानी सामान्य जीवन में अहिंसा ही सर्वोच्च धर्म होना चाहिए, लेकिन अगर सामने वाला देश और समाज की सुरक्षा के लिए खतरा है तो उसके लिए अहिंसा नहीं चल सकती है, उसके लिए तो हिंसा ही हमें अंततः अपनानी पड़ेगी।
1: तो फिर गाजियाबाद की घटना कैसे हो गई? योगी सरकार के अपराध नियंत्रण के दावों पर यह घटना कितना बड़ा सवाल है? क्या यूपी की राजनीति में 2027 विधानसभा चुनाव के लिए नया नैरेटिव तैयार हो रहा है? गाजियाबाद में जिस शख्स पर 28 मई को चाकुओं से वार किया गया उसने 29 मई को दम तोड़ा। इसी दिन यानी 29 मई को मऊ में मुख्यमंत्री ने दावा किया कि उनके राज में कोई हिंदुओं को धमका नहीं सकता।
14: आज माफिया पिस्तौल लहराते हुए कोई धमका करके खुली जीप में चल करके किसी हिंदू को धमका नहीं सकता है।
1: यूपी की कानून व्यवस्था पर मुख्यमंत्री योगी के 48 घंटे में दो बड़े बयान आए हैं। 29 मई को मुख्यमंत्री ने कहा कि आज माफिया किसी हिंदू को खुलेआम धमका नहीं सकता। 30 मई को मुख्यमंत्री ने कहा कि खतरा हो तो हिंसा भी अपनानी पड़ती है। एक तरफ अपराध पर सख्त कार्रवाई का दावा, दूसरी तरफ हिंसा पर राजनीतिक बहस। समाजवादी पार्टी कह रही है कि गाजियाबाद की घटना को हिंदू मुसलमान से ना जोड़ा जाए।
16: जिन लोगों ने भी अपराध किया है, चाहे वो किसी धर्म किसी जात के हों, उन पे कार्रवाई होनी चाहिए, सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, कानून के मुताबिक कार्रवाई होनी चाहिए। उत्तर प्रदेश में लगातार अपराध रुक नहीं रहे हैं, चाहे वो राजधानी लखनऊ की बात हो। अभी 3 दिन पहले एक प्रॉपर्टी डीलर को ही हत्या कर दी गई, अब ये गाजियाबाद की घटना है। लगातार उत्तर प्रदेश में हत्याएं हो रही हैं, लूट हो रहे हैं, बलात्कार हो रहे हैं, और भारतीय जनता पार्टी की सरकार कानून व्यवस्था देने में पूरी तरह से विफल है।
1: 2027 का रास्ता लखनऊ से नहीं बल्कि ऐसी घटनाओं पर जनता की प्रतिक्रिया से भी तय होगा, इसलिए चुनावी नैरेटिव को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष अपने अपने हिसाब से परिभाषा गढ़ते हैं। क्या अपराध का धर्म होता है या फिर हर बड़ी वारदात के बाद राजनीति धर्म का चश्मा पहन लेती है? इस बीच उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य कहते हैं कि हत्या करने वालों को फांसी के तख्ते पर चढ़ाने के लिए कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
17: प्यारा कोई भी हो, वो बक्सा नहीं जाएगा, उसको खोज निकाला जाएगा और हत्या करने वाले को फांसी पर चढ़ाने के लिए जो कार्रवाई होती है कानूनी, वो कानूनी कार्रवाई की जाएगी। सरकार कानून व्यवस्था को लेकर के बहुत गंभीर है और जिन लोगों ने ऐसा अपराध किया उनके खिलाफ कठोर से कठोर कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
1: योगी सरकार में सहयोगी पार्टी के मंत्री अखिलेश यादव से चुभते हुए सवाल पूछते हैं, उनके पीडीएस समीकरण पर वार करते हैं।
18: अखिलेश यादव जी को उस पे बोलना चाहिए कि उनके वोटर हैं, उन लोग ऐसी हत्या क्यों कर रहे हैं? कहीं मुसलमान मार रहा है तो कहीं यादव मार रहा है। उनका MOI जो फैक्टर है इस समय पूरे प्रदेश में आतंक मचाया हुआ है। बोलते हैं पीडीए इनका असफल है सिर्फ MOI फैक्टर को दबाने के लिए, लोगों का दिमाग भटकाने के लिए कि हमको सिर्फ MOI कहा जाता था, इस नाते पीडीए चिल्ला रहे हैं।
1: गाजियाबाद की घटना उत्तर प्रदेश की राजनीति को उस चौराहे पर लाकर खड़ा कर देती है जहां सरकार अपने दावे गिनाती है और विपक्ष जमीन की हकीकत दिखाने की कोशिश कर रहा है।
19: लेकिन सवाल है क्या यूपी में जनता सुरक्षित महसूस करती है।
0: बात दिल्ली के जहांगीरपुर में हुए मर्डर की, जहां बकरीद की रात मामूली सा विवाद एक युवक की मौत की वजह बन गया।
20: दिल्ली में सिगरेट को लेकर विवाद में युवक की हत्या। सिगरेट लाने से मना किया तो चाकू मार दिया। सुनने में भले ही यह हैरानी भरा लगे, लेकिन इस वारदात ने एक शख्स की जान ले ली। बकरीद के मौके पर जब 26 साल के अरबाज के घर त्योहार की खुशियां थी, इस वारदात के बाद चीख पुकार मच गई। पुलिस के मुताबिक रात 11 बजे के करीब अरबाज अपने घर के पास ही मौजूद था। इसी दौरान इलाके के कुछ लड़कों के साथ उसकी कहासुनी हुई, जो देखते ही देखते हिंसक झड़प में बदल गई। इसके पीछे की जो वजह सामने आई है वो भी बेहद हैरानी भरी है।
21: उस टाइम पे कुछ नहीं हुआ था, एक सिगरेट मंगाने का विवाद था कि सिगरेट लाके दे। तो उन्होंने बोला तेरे बाप का नौकर हूँ क्या, तेरा क्या, तू जाके लिया, तू क्या बदमाश है क्या। तो उन्होंने बोला चल ठीक है। फिर इतने में उन्होंने अपने दोस्तों को फोन मिलाया, उस लड़के ने, 7-8 लोंडे आ गए। इस बात को लेकर उन्होंने उसको मार दिया कि तूने हमसे ऐसा क्यों कहा।
20: विवाद के बाद जब अरबाज को लड़कों ने घेरा तो उसने मदद के लिए अपने भाई को बुलाया। भाई के सामने ही आरोपियों ने अरबाज की हत्या कर दी।
22: अरबाज का बड़ा भाई था, अरबाज ने मेरे पास फोन करा रात में पूरे 10:59 पर कि भाई ऐसे ऐसे बात है, मेरे को लड़कों ने घेर रखा, जल्दी से इधर आ जा गली के बाहर। मैं भागते हुए गया, जाके देखा तो उस टाइम पे ना इस पे सब सवार हुए पड़े थे लड़के, जो लड़के थे सब सवार हुए पड़े थे। ये 5-6 लड़के थे। उसी बीच में आवाज आती है कि चाकू निकाल, उसी बीच में आवाज आती है चाकू निकाल। अब जब चाकू निकालने की आवाज आती है तो मेरे भाई को ना गेट है हमारी गली के बाहर उसमें घुसा दिया। तो मैं गया, मैंने पीछे से पकड़ के खींचा उसे, लड़कों को, 2-3 लड़के उस पर चढ़े पड़े थे। जैसे मैंने उन्हें खींचा तो एक लड़का साइड में से निकल के गया, वो इतने में जाके उसके चाकू मार।
20: अरबाज जहांगीरपुरी के सी ब्लॉक का रहने वाला था और इलाके में ही एक सुनार की दुकान पर काम करता था। युवक की मौत के बाद घर में मातम है और इलाके में तनाव। पुलिस ने स्थानीय लोगों और चश्मदीदों से पूछताछ के आधार पर 3 नाबालिगों को हिरासत में लिया है। उनसे पूछताछ की जा रही है और वारदात में उनकी भूमिका की जांच हो रही है। आज तक ब्यूरो।
0: अब बात राजस्थान के, जहां पर मौसम की खौफनाक तस्वीर देखने को मिली। रेतीले तूफान ने राजस्थान के 5 जिलों को अपनी चपेट में ले लिया। आसमान में चारों ओर धूल का गुबार दिखाई दिया और इस पूरे धूल के गुबार ने पूरे शहर में अंधेरा सा कर दिया।
11: एक आम रिहायशी इलाका और सामने से आया रेत का बवंडर मानो पूरे शहर को अपने आगोश में ले लेना चाहता हो। यह हैरान करने वाली तस्वीरें राजस्थान के चुरू की है। रेत का गुब्बार धीरे धीरे शहर की ओर बढ़ता है। आसमान में सिर्फ धूल ही धूल नजर आती है। फिर शहर की गलियां, सड़क, घर, छत, हर कहीं ये धूल कब्जा करने लगती है। दिन में अंधेरा छाने लगता है। तूफान के कारण दिन में लोगों को वाहनों की हेडलाइट जलानी पड़ गई।
23: इस सीजन का जबरदस्त आंधी तूफान भयंकर आया, उसमें मेरे हिसाब से लाखों करोड़ों का सरकार का नुकसान हुआ है और उसके बाद में जबरदस्त बारिश और पेड़ों का गिरना, बिजली का नुकसान होना बहुत ही जबरदस्त, मतलब इस मौसम में जो आंधी आई है बहुत ही जबरदस्त आई है।
24: और इस तूफान में आज आपको देखने को मिला कि मतलब कि तूफान की में आंधी काफी भयंकर थी, धूल भरी आंधी थी, जिसके कारण पेड़ है और भी बहुत सारे पक्षी वगैरह काफी इनका नुकसान हुआ।
11: इसके कई वीडियो सामने आए हैं। इनमें लोग भागकर घरों में जाते दिखे और घरों को बंद कर दिया। इस दौरान 60-80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आंधी चली, जो करीब 30 मिनट तक इलाके में कोहरा मचाती रही। हालांकि तूफान की ऊंचाई का आधिकारिक आंकड़ा सामने नहीं आया है। इस रेतीले तूफान ने राजस्थान के 5 जिलों को अपनी चपेट में ले लिया। श्री गंगानगर, बीकानेर, चुरू, हनुमानगढ़ और सीकर के आसमान में रेत का गुब्बार देखने को मिले। करीब 200 वर्ग किलोमीटर का इलाका इससे प्रभावित नजर आया।
25: रेत का बाउंडर बहुत भारी और बहुत खतरनाक था। मैंने अपनी जिंदगी 15-20 सालों में कभी ऐसा माहौल नहीं देखा था और दिन में एकदम आंधी आई ऐसे तो मानो साफ हो गई। ये कहीं ना कहीं अपने प्रकृति से जो पर्यावरण पौधे अपने काट रहे हैं और ये खिलवाड़ कर रहे हैं, इसके लिए अपने सजग रहने की जरूरत है।
26: और एकदम से बिल्कुल काला काला हो गया सिस्टम, जैसे रात हो गई होती एकदम से, इतनी तेज अंधेरी थी
2: उसका जो किलोमीटर के हिसाब से बताया गया था वो 80-90 किलोमीटर के हिसाब से उसका विंड का बताया गया था, और एकदम से फुल अंधेरी थी, और जहाँ पर जो दरखत है छोटे छोटे वो हिलने लगे, कुछ दरखत है वो टूट भी गए थे।
11: पाकिस्तान से उठे इस तूफान ने रेगिस्तान का मौसम पूरी तरह से बदल दिया। आज तक ब्यूरो।
0: अब रुख करते हैं मिडिल ईस्ट की ओर। अगर अमेरिका और ईरान डील के इतने ही करीब हैं तो दोनों के सुर अलग अलग क्यों हैं? आखिर क्यों अमेरिका लगातार कह रहा है कि वो समझौते के बेहद करीब है, जबकि ईरान आधिकारिक तौर पर इस पर चुप्पी साधे हुए है।
3: डील पर अमेरिका और ईरान के जुदा हैं बयान, सुर अलग हैं, तो फैसला कैसे एक होगा? सस्पेंस भारी, आ रही है बम बरसाने की बारी। क्या अमेरिका और ईरान में सच में कुछ ही घंटों में डील होने वाली है, या फिर महायुद्ध पार्ट टू जल्द शुरू होने वाला है? कहने को तो अमेरिका की टॉप लीडरशिप हर दिन ये उम्मीद जगा रही है कि वो डील के बेहद करीब है।
4: That we're able to get to a final agreement here. We're reopening the Straits of Hormuz. We've already decimated their conventional military, and we're in a position where we could substantially set back their nuclear program, not just during the term of this president, but over the long term. That's a very, very good thing for the American people. So we're not there yet, but we're very close. We're going to keep on working at it. Thank you, guys. Have a good evening.
3: राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति ही नहीं, रक्षा मंत्री भी हर जगह जाकर यही कह रहे हैं कि डील जल्द ही होने वाली है और ये एक शानदार डील होगी। लेकिन सिंगापुर जाने से पहले रक्षा मंत्री ईरान को धमकी भी देकर गए हैं, यानी अमेरिका को भी ये अंदेशा तो है कि हो सकता है कि डील उनके मुताबिक ना हो और एक बार फिर रणभूमि में उतरना पड़े।
5: And when you do your job, the adversaries know what's coming for them. And that's when they either step up and meet the fury of the American military or back down, and you create a whole bunch of options for America. The president of what he wants to execute on behalf of the American people. So right now, hey, Iran has a choice: meet at the table with the president and give up their nuclear program. And as the president said, I'm lost on time. 2 days ago now, in the cabinet meeting, I'm sitting right next to him. He looks in the camera and says, "Well, Iran can either do it the right way with a deal across the table, or they can deal with my guy on the left. That happened to be me." It's not me, it's you guys. It's what you're ready to do.
3: लेकिन ईरान की तरफ से कोई ऐसे संकेत नहीं मिल रहे हैं। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल भगाई ने सरकारी मीडिया से बातचीत में कहा है कि हॉर्मुज पर फैसला ईरान और ओमान को लेना चाहिए, और इसे खोलने का फैसला भी अमेरिका नाकेबंदी हटने के बाद ही होना चाहिए। जो भी हो, डील को लेकर हलचल तो लगातार बढ़ रही है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सिचुएशन रूम में 2 घंटे तक अहम मीटिंग की है। इस मीटिंग में ईरान के साथ डील को लेकर कई पहलुओं पर बात की गई। मीटिंग में ट्रंप ने साफ कहा कि किसी भी कीमत पर ईरान को परमाणु बम बनाने की इजाजत नहीं दी जा सकती। उसके अलावा उसे हॉर्मुज को बिना टोल बंदी के खोलना ही पड़ेगा। ईरान की न्यूज एजेंसी फोर्स के मुताबिक ईरान का मानना है कि ट्रंप मनगढ़ंत जीत को दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। इसके अलावा ईरानी अधिकारियों के हवाले से ये भी दावा किया गया है कि डील में एटमी मुद्दे का जिक्र नहीं है। लेकिन ईरान की 12 बिलियन अमेरिकी डॉलर की पीस संपत्ति छोड़ने का समझौता जरूर है। अभी ट्रंप ने डील के बारे में अंतिम फैसला नहीं लिया है। अगर ट्रंप ने समझौते पर मुहर लगा दी तो 60 दिन के लिए सीजफायर का ऐलान किया जा सकता है, ताकि हॉर्मुज को खोलने की प्रक्रिया शुरू की जा सके। आज तक ब्यूरो।
0: उसको लेकर बातें कितनी भी हो रही हो, लेकिन सच है कि अमेरिका और ईरान दोनों ही इस मुद्दे पर अड़े हैं। कहने को अमेरिकी नाकेबंदी चरणबद्ध तरीके से हट जाएगी, लेकिन यूएस नेवी की ताजा चेतावनी ने हालात हाहाकारी होने के संकेत दिए हैं।

0: डील पर काम तेज, कहां फंसा है पेच? हॉर्मुज में यूएस का प्रण, ईरान के खिलाफ आखिरी रण। जहाजों को चेताया, समंदर में आने वाला है बवंडर। इस चेतावनी को ध्यान से पढ़िए, इसे यूएस नेवी सेंट्रल कमांड ने जारी किया है। यह हॉर्मुज में मौजूद सारे जहाजों के लिए है। अमेरिकन नेवी ने चेतावनी जारी की है कि ईरान के खतरनाक और गैर कानूनी कामों को रोकने के लिए जल्द ही बड़ा ऑपरेशन शुरू होने वाला है। हो सकता है कि जवाब में ईरान भी हमला करे, लिहाजा हॉर्मुज में जहाजों को मुश्किल हालातों के लिए तैयार रहना चाहिए। चेतावनी में जिन इलाकों में सतर्क रहने की बात कही गई है, उनमें अरब की खाड़ी, हॉर्मुज, ओमान की खाड़ी और उत्तरी अरब सागर शामिल है। संकेत साफ है, हॉर्मुज की लहरें अंदर से भी अशांत है और अब ऊपर से भी एक बार फिर शांति भंग होने के आसार बढ़ गए हैं। ईरान हर हाल में अमेरिका की नाकेबंदी को जल्द से जल्द हटाने की मांग कर रहा है और अमेरिका की मांग है कि टोल वसूली बंद की जाए और जहाजों की आवाजाही शुरू की जाए। इस बीच डील को लेकर अभी भी सस्पेंस बना हुआ है। ना तो हॉर्मुज को लेकर अभी कोई फैसला हुआ है और ना ही यूरेनियम को लेकर। अब आपको दिखाते हैं ईरान के लोग इस डील को लेकर क्या कह रहे हैं। यह है तेहरान का इनकलाब स्क्वाड। अमेरिका के खिलाफ और ईरान की लीडरशिप के साथ अपनी भावनाओं के इजहार के लिए हजारों लोग यहां इकट्ठा हुए हैं। हाथों में झंडे हैं, जुबां पर देशभक्ति के नारे हैं। जगह जगह ईरान के नेताओं की तस्वीरें हैं। इस भीड़ में सिर्फ उन्माद नहीं है, बल्कि अमेरिका को कोसने के लिए तथ्यों पर आधारित इनके अपने तर्क हैं।
1: گرد این حرفی که میزنه درست باشه نشان دهنده اینه که محاصرش شکست خورده و اون چیزی که تو ذهنش بوده به وقوع نپیوسته، از پس ما نتونست بر بیاد و برای اینکه بیش از این ضایع نشه میگه که ما محاصره رو پایان میدیم. حالا بعد ببینیم چقدر داره درست میگه. اصلا من حتی میگم ما همون سال 2015 هم اشتباه کردیم، اون اورانیوم ها رو چند تن اورانیوم تحویل دادیم، بسیار اشتباه بود. اورانیوم غنی سازی شده ارزش مادی بالایی داره، هم معنوی هم مادی، حکم بخشی از خاک ماه. چرا باید بدیم به اون؟ هیچ ربطی نداره، برای ماه، برای ملت یونانه و ما تصمیم میگیریم. نه نخواهیم داد.
0: هرمز کو لیکر بھی لوگ ایک مت ہیں، یعنی هرمز فیلال بندی رہے تو ایران کے لیے اچھا ہے.
2: رهبرمونه تنگه باید بسته بمونه تا وقتی که رهبرمونه اعلام کنن، ما هم همین میگیم.
0: هرمز پر خود ایران مشکلوں میں گھرا ہوا ہے. امریکی ناکےبندی کی وجہ سے اس کا لاکھوں ٹن تیل نریات نہیں ہو پا رہا ہے، لیکن یہ اکلوتا ایسا ہتھیار ہے جو 28 فروری سے شروع ہوئے مہا یدھ میں اس کی طاقت بڑھاتا رہا ہے. ظاہر ہے وہ کسی بھی قیمت پر اس کا نینترن امریکی شرطوں پر نہیں چھوڑے گا. آج تک پیرول.
3: अब रुक रहे छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन होंगे हाजिर. आप देखते रहिए आज तक.

0: बंगाल के सोनालपुर में अभिषेक बैनर्जी पर हमले से बवाल, लोगों ने फेंके पत्थर अंडे कपड़े फाड़े, कहा मुझे मारने की थी साजिश, विपक्ष ने बीजेपी पर उठाए सवाल, सोमवार को ममता करेंगे प्रदर्शन। कर्नाटक के अगले मुख्यमंत्री होंगे डीके शिवकुमार, कांग्रेस विधायक दल की बैठक में चुने गए नेता, 3 जून को 8 से 10 मंत्रियों के साथ ले सकते हैं शपथ। सीएम योगी का बड़ा बयान, कहा कि अहिंसा ही परम धर्म, लेकिन जब कोई देश समाज के लिए खतरा है तो अपनानी पड़ती है हिंसा की नीति, समाजवादी पार्टी बोली यूपी में बढ़ रहा है अपराध। गाजियाबाद में अंतर्राष्ट्रीय पैरा एथलीट चिराग त्यागी की हत्या, साथी खिलाड़ी पर गोली मारने का आरोप, अगले महीने जापान में खेलने वाले थे टूर्नामेंट। राजस्थान के कई शहरों में रेतीले तूफान से दहशत, धूल भरी आंधी से दिन में छाया अंधेरा, दिल्ली एनसीआर में बारिश से गिरा तापमान। बंगाल के सोनारपुर में अभिषेक बैनर्जी पर हमला हुआ, चुनावी हिंसा, एक पीड़ित से मिलने के लिए अभिषेक पहुंचे थे और इसी दौरान अभिषेक से हाथापाई हुई, उन पर अंडे फेंके गए और काफी देर तक बवाल मचता रहा।
1: जो अभिषेक बनर्जी पश्चिम बंगाल में सत्ता का केंद्र होते थे, आज उन्हें बीच सड़क पर पीटा जा रहा है। ये पश्चिम बंगाल की सियासत का रक्त चरित्र है। सत्ता बदली लेकिन नहीं बदली तो पश्चिम बंगाल में सियासी रंजिश की तस्वीर, जिसकी चपेट में ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी आ गए। बीच सड़क पर लोगों ने अभिषेक को जमकर पीटा, गुस्साई भीड़ ने अभिषेक बनर्जी पर अंडे फेंके, कपड़े फाड़ दिए। हालात इतने बिगड़ गए कि अभिषेक को हेलमेट पहनकर वहां से निकलना पड़ा।
2: दे वांट टू किल मी एरा आमादेर प्राणे मारते चाहे, मेरे दिख अमर मृतदेह उद्धार होके खान थे, किंतु मैं जाएगा छेड़े जाबो ना।
1: अभिषेक बनर्जी विधानसभा चुनाव के बाद हुई हिंसा के पीड़ित लोगों और उनके परिवारों से मिलने के लिए सोनार गए थे, जहां उन पर यह हमला हुआ। अभिषेक ने इसे बीजेपी की साजिश बताया। उधर स्थानीय लोगों का दावा कि ये हमला किसी राजनीति से प्रेरित नहीं है, बल्कि ये उनका गुस्सा टीएमसी सरकार के खिलाफ है। इलाके में सरकार ने कोई विकास का काम नहीं किया, तो वहीं टीएमसी के कार्यकर्ताओं ने कई सालों तक गुंडागर्दी की, जिसे लेकर ये गुस्सा फूटा।
3: चोर को कैसे नाड़े, उसको क्या फूलों से स्वागत करेंगे, चोर को अंडा फेंक के मारेंगे। अभी तो हाँ, वो भी बहुत कम हो गया। वो ये राम जी की धरती है, वो राम जी की नाराबाजी करने के माना किया था। बांग्लादेश से वो खुद है, उसका जो मुख्यमंत्री पीसी है वो भी वो एक बांग्लादेशी है।
4: वो लोग भाई मारने का टाइम तो वहाँ भेजा नहीं, वहाँ भेजा है एक तो डॉक्टर को मारा है वहाँ, तो उस टाइम वो भेजा नहीं, अभी एक तो चमचा मार गया, इसलिए भेजा है यहाँ, इसके लिए भेजा है। हमारा रास्ता देखता है आज 15 माह में, रास्ता कैसे चलता है, हम लोग बाल बच्चा कर लिए।
1: अभिषेक बनर्जी पर हुआ हमला एक बार फिर पश्चिम बंगाल में सियासी हिंसा को लेकर सवाल खड़े करता है। तपस सेन गुप्ता, दक्षिण 24 परगना, आज तक।
0: बिहार की राजनीति में सरकारी आवास को लेकर नया घमासान छिड़ गया है। पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी ने साफ संकेत दिए हैं कि वो 10 सर्कुलर रोड स्थित सरकारी आवास खाली करने के मूड में नहीं है, जबकि पिछले 6 महीनों में उन्हें लगातार नोटिस भेजे जा रहे हैं।
5: हम तो चाहते हैं कि सम्राट चौधरी पूरा बिहार के फोर्स बुला के आ, हमारा 10 नंबर खाली करा दे, हम नहीं खाली करेंगे, आवे हमारा सामने।
6: बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी ने बिहार सरकार को खुली चुनौती दी है कि वो अपना सरकारी आवास नहीं खाली करेंगी। पिछले 6 महीने से 10 सर्कुलर रोड आवास को खाली कराने के लिए नोटिस दिया जा रहा है, लेकिन राबड़ी के तेवर बताते हैं कि ये आवास बिहार की सियासत का नया अखाड़ा बनता जा रहा है।
7: अरे कहाँ, इसमें वो कह रही है, इसमें तो जो कानून है, जो नियम है, उसके हिसाब से काम होता है और सब लोगों को नियम कानून का पालन करना चाहिए।
1: बिहार विधानसभा चुनाव खत्म होने के बाद 25 नवंबर 2025 को राबड़ी देवी को नया आवास 39 हार्डिंग रोड पर आवंटित किया गया। उस वक्त राबड़ी देवी को लेटर भी भेजा गया, लेकिन 6 महीना बीत जाने के बाद भी राबड़ी देवी ने 10 सर्कुलर रोड घर को खाली नहीं किया है। ये बंगला पशु संसाधन मंत्री नंद किशोर यादव का आवंटित है, जिसे लेकर राबड़ी देवी को 29 मई को नया नोटिस भेजा गया।
8: मैं तो कह रहा हूँ कि वो मुख्यमंत्री रही हैं, 1-2 साल नहीं 7 साल रहे हैं, तो उनको तो कानून का पालन करना ही चाहिए। बयान निंदनीय है, ये टकराव का बयान है, आपत्तिजनक है, और क्या बात करते हैं, पूरे बिहार के फोर्स की जरूरत है, एक दरोगा जाके निकाल देगा।
1: राबड़ी देवी करीब 20 वर्षों से 10 सर्कुलर रोड आवास में रहती आई हैं। यह आवास काफी बड़ा है, इससे लालू परिवार की यादें भी जुड़ी हैं।
9: राबड़ी देवी जी, ये जंगल राज नहीं है, ये कानून का राज है, एनडीए की सरकार है। आपको जो इलाज कराना होता है तो सिंगापुर जाते हैं, पोता का जन्मदिन मनाना होता है तो दिल्ली नोएडा भागते हैं, और जब लूटने की बारी आती है तो आप बिहार में रहना चाहते हैं।
1: नवंबर 2005 में चुनाव हारने के बाद राबड़ी देवी को यह आवास आवंटित किया गया था। उस समय पूर्व मुख्यमंत्री को भी आवास आवंटित होता था, लेकिन जब 2019 में अपने आवास के मामले को लेकर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव पटना हाईकोर्ट गए, तब कोर्ट ने सख्त निर्देश दिया था कि कोई भी पूर्व मुख्यमंत्री या पूर्व उप मुख्यमंत्री पद से हटने के बाद सरकारी बंगला नहीं रख सकता। इसके बाद से 10 सर्कुलर रोड राबड़ी देवी को बिहार विधान परिषद के नेता प्रतिपक्ष के रूप में आवंटित किया गया, जिसे अब उन्हें खाली करना होगा। शशि भूषण, पटना आज तक।
0: अब बात एनटीए की, जिसकी भूमिका पर एक बार फिर सवाल खड़े हो रहे हैं। एनटीए की ओर से आयोजित सीयूईटी यूजी परीक्षा में एक बार फिर तकनीकी खराबी का मामला सामने आया है।
10: अभी निकल के आना 2 घंटे।
11: परीक्षा केंद्र के बाहर मचा ये हंगामा एक बार फिर एनटीए के कामकाज पर सवाल खड़े कर रहा है। आज सीयूईटी यूजी परीक्षा के केंद्रों पर तकनीकी खराबी की शिकायत आई, जिसके बाद सुबह 9 बजे शुरू होने वाली परीक्षा कई केंद्रों पर करीब 11:23 पर शुरू हुई। वहीं एनटीए ने दोपहर की शिफ्ट का टाइम भी बदल दिया, जिसके चलते अभ्यर्थियों और अभिभावक परेशान नजर आए।
12: जिन बच्चों का पेपर 2 घंटे का था वो 2 घंटा जोड़ दें, जिन बच्चों का पेपर 3 घंटे का था वो 3 घंटा जोड़।

0: कर रहा है। चार परीक्षाएं, 1 करोड़ बच्चे, एक भी ईमानदारी से नहीं हो पाई। दावे विश्व गुरु के, मगर देश में एक परीक्षा नहीं करवा सकते। मोदी जी ने पूरी शिक्षा व्यवस्था तबाह कर दी है। जिस पीढ़ी का भविष्य आप बर्बाद कर रहे हैं, वही पीढ़ी आपका हिसाब करेगी।
1: ये देखने में आ रहा है कि NTA ने CUET टेस्ट का भी मजाक बना के रख दिया है। CUET टेस्ट में करीब 18 लाख बच्चे अलग अलग यूनिवर्सिटीज में बैठने के लिए टेस्ट देते हैं। आज सेंटर पे पहुंचे, उनका टाइम बदल दिया गया, किसी का सेंटर बदल दिया जा रहा है, किसी की डेट बदल दी जा रही है। ऐसी डेट पे एग्जाम दे दिए जाते हैं जिसमें वो सेंटर फ्री नहीं है। पूरा का पूरा मिसमैनेजमेंट है।
0: उधर सरकार के नीट पेपर में सेना की मदद के फैसले पर भी विपक्ष सवाल खड़े कर रहा है।
2: कल हमारे देश की सरकार ने ऐलान किया है कि अब नीट के पेपर को लीक होने से बचाने के लिए एयरफोर्स के जहाज से उसको ट्रांसपोर्ट करेंगे, एयरफोर्स के बुलेट प्रूफ ट्रकों से उसको ट्रांसपोर्ट करेंगे। मजाक बना रखा है, हमें बेवकूफ समझ रखा है। पूरी दुनिया में इतने बड़े बड़े पेपर होते हैं, कहीं सुना है कि एयरफोर्स से उनको ट्रांसपोर्ट किया जाता है?
0: बहरहाल परीक्षाओं को लेकर NTA पूरी तरह फेल नजर आ रहा है, जहां उसकी नाकामी एक बार फिर आज CUET UG के पेपर में खुलकर सामने आ गई। आज तक ब्यूरो।
3: आज यूपी के जहां गाजियाबाद में एक शख्स की हत्या, उसके बाद हिंदू मुस्लिम का इसने रंग रूप ले लिया। परिवार का आरोप है कि बकरीद के बहाने बुलाकर बेटे की हत्या कर दी गई।
4: आज माफिया पिस्तौल लहराते हुए कोई धमका करके खुली जीप में चल करके किसी हिंदू को धमका नहीं सकता है। जन्माष्टमी हो, रक्षाबंधन हो, इन आयोजनों में अगर किसी ने व्यवधान डाला तो पर्व तो मनाई लेगा, लेकिन उसके बाद ये तय है कि रावण और कंस जैसी दुर्गति उसकी तय है जो व्यवधान डालने वाला है।
5: उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का यह बयान ऐसे समय आया जब 17 साल के हिंदू युवक की हत्या कर दी गई। गाजियाबाद के खोड़ा थाना क्षेत्र में सूर्या की बकरीद की शाम चाकुओं से गोद कर बेरहमी से हत्या कर दी जाती है और इल्जाम लगा सूर्या के ही मुस्लिम दोस्तों पर। हत्या के बाद गाजियाबाद के खोड़ा इलाके में तनाव है, पुलिस अलर्ट पर है। इस बीच लखनऊ में मुख्यमंत्री ने यूपी की कानून व्यवस्था पर अपनी सरकार के मॉडल का जिक्र एक बार फिर किया।
4: अहिंसा परमो धर्म, धर्म हिंसा तथैव च, यानी सामान्य जीवन में अहिंसा ही सर्वोच्च धर्म होना चाहिए, लेकिन अगर सामने वाला देश और समाज की सुरक्षा के लिए खतरा है तो उसके लिए अहिंसा नहीं चल सकती है, उसके लिए तो हिंसा ही हमें अंततः अपनानी पड़ेगी।
5: तो फिर गाजियाबाद की घटना कैसे हो गई? योगी सरकार के अपराध नियंत्रण के दावों पर यह घटना कितना बड़ा सवाल है। क्या यूपी की राजनीति में 2027 विधानसभा चुनाव के लिए नया नैरेटिव तैयार हो रहा है? गाजियाबाद में जिस शख्स पर 28 मई को चाकुओं से वार किया गया, उसने 29 मई को दम तोड़ा। इसी दिन यानी 29 मई को मऊ में मुख्यमंत्री ने दावा किया कि उनके राज में कोई हिंदुओं को धमका नहीं सकता।
4: आज माफिया पिस्तौल लहराते हुए कोई धमका करके खुली जीप में चल करके किसी हिंदू को धमका नहीं सकता है।
5: यूपी की कानून व्यवस्था पर मुख्यमंत्री योगी के 48 घंटे में दो बड़े बयान आए हैं। 29 मई को मुख्यमंत्री ने कहा कि आज माफिया किसी हिंदू को खुलेआम धमका नहीं सकता। 30 मई को मुख्यमंत्री ने कहा कि खतरा हो तो हिंसा भी अपनानी पड़ती है। एक तरफ अपराध पर सख्त कार्रवाई का दावा, दूसरी तरफ हिंसा पर राजनीतिक बहस, समाजवादी पार्टी कह रही है कि गाजियाबाद की घटना

0: हिंदू मुसलमान से ना जोड़ा जाए।
1: जिन लोगों ने भी अपराध किया है, चाहे वो किसी धर्म किसी जात के हों, उन पे कार्रवाई होनी चाहिए, सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, कानून के मुताबिक कार्रवाई होनी चाहिए। उत्तर प्रदेश में लगातार अपराध रुक नहीं रहे हैं, चाहे वो राजधानी लखनऊ की बात हो, अभी 3 दिन पहले एक प्रॉपर्टी डीलर को ही हत्या कर दी गई, अब ये गाजियाबाद की घटना है, लगातार उत्तर प्रदेश में हत्याएं हो रही हैं, लूट हो रहे हैं, बलात्कार हो रहे हैं, और भारतीय जनता पार्टी की सरकार कानून व्यवस्था देने में पूरी तरह से विफल है।
0: 2027 का रास्ता लखनऊ से नहीं बल्कि ऐसी घटनाओं पर जनता की प्रतिक्रिया से भी तय होगा, इसलिए चुनावी नैरेटिव को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष अपने अपने हिसाब से परिभाषा गढ़ते हैं। क्या अपराध का धर्म होता है या फिर हर बड़ी वारदात के बाद राजनीति धर्म का चश्मा पहन लेती है? इस बीच उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य कहते हैं कि हत्या करने वालों को फांसी के तख्ते पर चढ़ाने के लिए कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
2: प्यारा कोई भी हो, वो बक्सा नहीं जाएगा, उसको खोज निकाला जाएगा और हत्या करने वाले को फांसी पर चढ़ाने के लिए जो कार्रवाई होती है कानूनी, वो कानूनी कार्रवाई की जाएगी। सरकार कानून व्यवस्था को लेकर के बहुत गंभीर है और जिन लोगों ने ऐसा अपराध किया उनके खिलाफ कठोर से कठोर कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
0: योगी सरकार में सहयोगी पार्टी के मंत्री अखिलेश यादव से चुभते हुए सवाल पूछते हैं, उनके पीडीएस समीकरण पर वार करते हैं।
3: अखिलेश यादव जी को उस पे बोलना चाहिए कि उनके वोटर हैं, उन लोग ऐसी हत्या क्यों कर रहे हैं? कहीं मुसलमान मार रहा है तो कहीं यादव मार रहा है। उनका MOI जो फैक्टर है इस समय पूरे प्रदेश में आतंक मचाया हुआ है। बोलते हैं पीडीए इनका असफल है सिर्फ MOI फैक्टर को दबाने के लिए, लोगों का दिमाग भटकाने के लिए कि हमको सिर्फ MOI कहा जाता था, इस नाते पीडीए चिल्ला रहे हैं।
0: गाजियाबाद की घटना उत्तर प्रदेश की राजनीति को उस चौराहे पर लाकर खड़ा कर देती है जहां सरकार अपने दावे गिनाती है और विपक्ष जमीन की हकीकत दिखाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन सवाल है, क्या यूपी में जनता सुरक्षित महसूस करती है?
4: बात दिल्ली के जहांगीरपुर में हुए मर्डर की, जहां बकरीद की रात मामूली सा विवाद एक युवक की मौत की वजह बन गया।
5: दिल्ली में सिगरेट को लेकर विवाद में युवक की हत्या, सिगरेट लाने से मना किया तो चाकू मार दिया। सुनने में भले ही यह हैरानी भरा लगे लेकिन इस वारदात ने एक शख्स की जान ले ली। बकरीद के मौके पर जब 26 साल के अरबाज के घर त्योहार की खुशियां थी, इस वारदात के बाद चीख पुकार मच गई। पुलिस के मुताबिक रात 11 बजे के करीब अरबाज अपने घर के पास ही मौजूद था। इसी दौरान इलाके के कुछ लड़कों के साथ उसकी कहासुनी हुई जो देखते ही देखते हिंसक झड़प में बदल गई। इसके पीछे की जो वजह सामने आई है वो भी बेहद हैरानी भरी है।
6: उस टाइम पे कुछ नहीं हुआ था, एक सिगरेट मंगाने का विवाद था कि सिगरेट लाके दो। तो उन्होंने बोला तेरे बाप का नौकर हूँ क्या, तेरा क्या, तू जाके लिया, तू क्या बदमाश है क्या? तो उन्होंने बोला चल ठीक है। फिर इतने में उन्होंने अपने दोस्तों को फोन मिलाया, उस लड़के ने, 7-8 लोंडे आ गए। इस बात को लेकर उन्होंने उसको मार दिया कि तूने हमसे ऐसा क्यों कहा।
5: विवाद के बाद जब अरबाज को लड़कों ने घेरा तो उसने मदद के लिए अपने भाई को बुलाया। भाई के सामने ही आरोपियों ने अरबाज की हत्या कर दी।
7: अरबाज का बड़ा भाई था, अरबाज ने मेरे पास फोन करा रात में पूरे 10:59 पर कि भाई ऐसे ऐसे बात है, मेरे को लड़कों ने घेर रखा, जल्दी से इधर आ जा गली के बाहर। मैं भागते हुए गया, जाके देखा तो उस टाइम पे ना इस पे सब सवार हुए पड़े थे लड़के, जो लड़के थे सब सवार हुए पड़े थे। ये 5-6 लड़के थे। उसी बीच में आवाज आती है कि चाकू निकाल, उसी बीच में आवाज आती है चाकू निकाल। अब जब चाकू निकालने की आवाज आती है तो मेरे भाई को ना गेट है हमारी गली के बाहर उसमें घुसा दिया। तो मैं गया, मैंने पीछे से पकड़ के खींचा उसे, लड़कों को, 2-3 लड़के उस पर चढ़े पड़े थे। जैसे मैंने उन्हें खींचा तो एक लड़का साइड में से निकल के गया, वो इतने में जाके उसके चाकू मार।
5: अरबाज जहांगीरपुरी के सी ब्लॉक का रहने वाला था और इलाके में ही एक सुनार की दुकान पर काम करता था। युवक की मौत के बाद घर में मातम है और इलाके में तनाव। पुलिस ने स्थानीय लोगों और चश्मदीदों से पूछताछ के आधार पर 3 नाबालिगों को हिरासत में लिया है। उनसे पूछताछ की जा रही है और वारदात में उनकी भूमिका की जांच हो रही है। आज तक ब्यूरो।
4: अब बात राजस्थान के, जहां पर मौसम की खौफनाक तस्वीर देखने को मिली। रेतीले तूफान ने राजस्थान के 5 जिलों को अपनी चपेट में ले लिया। आसमान में चारों ओर धूल का गुबार दिखाई दिया और इस पूरे धूल के गुबार ने पूरे शहर में अंधेरा सा कर दिया।
8: एक एक आम रिहायशी इलाका और सामने से आया रेत का बवंडर मानो पूरे शहर को अपने आगोश में ले लेना चाहता हो। यह हैरान करने वाली तस्वीरें राजस्थान के चुरू की है। रेत का गुब्बार धीरे धीरे शहर की ओर बढ़ता है, आसमान में सिर्फ धूल ही धूल नजर आती है, फिर शहर की गलियां, सड़क, घर, छत, हर कहीं ये धूल कब्जा करने लगती है। दिन में अंधेरा छाने लगता है। तूफान के कारण दिन में लोगों को वाहनों की हेडलाइट जलानी पड़ गई।
9: इस सीजन का जबरदस्त आंधी तूफान भयंकर आया, उसमें मेरे हिसाब से लाखों करोड़ों का सरकार का नुकसान हुआ है, और उसके बाद में जबरदस्त बारिश और पेड़ों का गिरना, बिजली का नुकसान होना, बहुत ही जबरदस्त, मतलब इस मौसम में जो आंधी आई है बहुत ही जबरदस्त आई है।
10: और इस तूफान में आज आपको देखने को मिला कि मतलब कि तूफान की में आंधी काफी भयंकर थी, धूल भरी आंधी थी, जिसके कारण पेड़ है और भी बहुत सारे पक्षी वगैरह काफी इनका नुकसान हुआ।
8: इसके कई वीडियो सामने आए हैं, इनमें लोग भागकर घरों में जाते दिखे और घरों को बंद कर दिया। इस दौरान 60 से 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आंधी चली, जो करीब 30 मिनट तक इलाके में कोहरा मचाती रही। हालांकि तूफान की ऊंचाई का आधिकारिक आंकड़ा सामने नहीं आया है। इस रेतीले तूफान ने राजस्थान के 5 जिलों को अपनी चपेट में ले लिया। श्री गंगानगर, बीकानेर, चुरू, हनुमानगढ़ और सीकर के आसमान में रेत का गुब्बार देखने को मिले। करीब 200 वर्ग किलोमीटर का इलाका इससे प्रभावित नजर आया।
11: रेत का बाउंडर बहुत भारी और बहुत खतरनाक था। मैंने अपनी जिंदगी 15-20 साल ये कहीं न कहीं अपने प्रकृति से जो पर्यावरण पौधे अपने काट रहे हैं और ये खिलवाड़ कर रहे हैं, इसके लिए अपने सजग रहने की जरूरत है।
12: और एकदम से बिल्कुल काला काला हो गया सिस्टम, जैसे रात हो गई होती एकदम से, इतनी तेज अंधेरी थी। उसका जो किलोमीटर के हिसाब से बताया गया था वो 80-90 किलोमीटर के हिसाब से उसका विंड का बताया गया था, और एकदम से फुल अंधेरी थी। और जहाँ पर जो दरख्त है छोटे छोटे वो हिलने लगे, कुछ दरख्त है वो टूट भी गए थे।
8: पाकिस्तान से उठे इस तूफान ने रेगिस्तान का मौसम पूरी तरह से बदल दिया। आज तक ब्यूरो।
4: बीते 2 दिनों से बदले मौसम से उत्तर भारत के लोगों को प्रचंड गर्मी की मार से राहत मिली। कई इलाकों में तेज हवाएं चले, कई इलाकों में भारी बारिश हुई। मौसम विभाग ने अब 1 से 2 दिनों तक मौसम में बदलाव के ही संकेत जारी किए हैं और कई इलाकों में बारिश की संभावना व्यक्त की है।
13: लेकर उत्तराखंड, हिमाचल से लेकर कश्मीर, यूपी, बंगाल और छत्तीसगढ़ तक मौसम का ऐसा रौद्र रूप देखने को मिला कि जनजीवन पूरी तरह अस्त व्यस्त हो गया। सबसे पहले बात राजस्थान की, जहां जयपुर में तेज बारिश और ओलावृष्टि ने शहर की रफ्तार पर ब्रेक लगा दिया। धौलपुर में 1.5 घंटे की मूसलाधार बारिश ने हालात बिगाड़ दिए। सड़कें, कॉलोनियां और गली मोहल्ले पानी में डूब गए। अब बात उत्तराखंड की, यहां देहरादून में तेज बारिश ने मौसम बदल दिया, लेकिन शहर की रफ्तार थम गई। टिहरी गढ़वाल में बारिश और भारी ओलावृष्टि ने किसानों की कमर तोड़ दी। वहीं धनौल्टी में देर रात आए तूफान ने भारी तबाही मचाई। 20 से 30 देवदार के पेड़ गिर गए, इको पार्क की टेंट शेड उड़ गई और बर्मा ब्रिज पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। बागेश्वर में लगातार बारिश के बाद नदियां उफान पर आ गईं। गोमती नदी पर बने बैजनाथ बैराज के गेट खोलने पड़े और प्रशासन ने सायरन बजाकर लोगों को अलर्ट किया। जम्मू कश्मीर की श्रीनगर गुलमर्ग रोड पर तेज आंधी से कई पेड़ उखड़ गए, सड़कें बंद करनी पड़ी और ट्रैफिक रोक दिया गया। बात उत्तर प्रदेश की करें तो आगरा में तेज आंधी और तूफान के साथ झमाझम बारिश हुई, पेड़ गिर गए, टिन शेड उड़ गए और कई इलाकों में जलभराव से ट्रैफिक थम गया। मौसम विभाग ने आने वाले दिनों में और आंधी बारिश की चेतावनी दी है। आज तक ब्यूरो।
4: अब रुख करते हैं मिडिल ईस्ट की ओर। अगर अमेरिका और ईरान डील के इतने ही करीब हैं तो दोनों के सुर अलग अलग क्यों हैं? आखिर क्यों अमेरिका लगातार कह रहा है कि वो समझौते के बेहद करीब है, जबकि ईरान आधिकारिक तौर पर इस पर चुप्पी साधे हुए है?
14: डील पर अमेरिका और ईरान के जुदा हैं बयान, सुर अलग हैं, तो फैसला कैसे एक होगा? सस्पेंस भारी, आ रही है बम बरसाने की बारी।
15: क्या अमेरिका और ईरान में सच में कुछ ही घंटों में डील होने वाली है या फिर महायुद्ध पार्ट टू जल्द शुरू होने वाला है। कहने को तो अमेरिका की टॉप लीडरशिप हर दिन ये उम्मीद जगा रही है कि वो डील के बेहद करीब है।
16: Look at what we've already accomplished here, assuming that we're able to get to a final agreement here. We're reopening the Straits of Hormuz. We've already decimated their conventional military, and we're in a position where we could substantially set back their nuclear program, not just during the term of this president, but over the long term. That's a very, very good thing for the American people. So we're not there yet, but we're very close. We're going to keep on working at it. Thank you, guys. Have a good evening.
15: राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति ही नहीं, रक्षा मंत्री भी हर जगह जाकर यही कह रहे हैं कि डील जल्द ही होने वाली है और ये एक शानदार डील होगी। लेकिन सिंगापुर जाने से पहले रक्षा मंत्री ईरान को धमकी भी देकर गए हैं, यानी अमेरिका को भी ये अंदेशा तो है कि हो सकता है कि डील उनके मुताबिक न हो और एक बार फिर रणभूमि में उतरना पड़े।
17: Step up and meet the fury of the American military, or back down and you create a whole bunch of options for America and the president with what he wants to execute on behalf of the American people. So right now, hey, Iran has a choice: meet at the table with the president and give up their nuclear program. And as the president said, I'm lost on time. 2 days ago now, in the cabinet meeting, I'm sitting right next to him. He looks in the camera and says, well, Iran can either do it the right way with a deal across the table, or they can deal with my guy on the left. That happened to be me. But it's not me. It's you guys. It's what you're ready to do.
15: लेकिन ईरान की तरफ से कोई ऐसे संकेत नहीं मिल रहे हैं। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल भगाई ने सरकारी मीडिया से बातचीत में कहा है कि होर्मुज पर फैसला ईरान और ओमान को लेना चाहिए और इसे खोलने का फैसला भी अमेरिका नाकेबंदी हटने के बाद ही होना चाहिए। जो भी हो, डील को लेकर हलचल तो लगातार बढ़ रही है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सिचुएशन रूम में 2 घंटे तक अहम मीटिंग की है। इस मीटिंग में ईरान के साथ डील को लेकर कई पहलुओं पर बात की गई। मीटिंग में ट्रंप ने साफ कहा कि किसी भी कीमत पर ईरान को परमाणु बम बनाने की इजाजत नहीं दी जा सकती। उसके अलावा उसे होर्मुज को बिना टोल बंदी के खोलना ही पड़ेगा। ईरान की न्यूज एजेंसी फोर्स के मुताबिक ईरान का मानना है कि ट्रंप मनगढ़ंत जीत को दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। इसके अलावा ईरानी अधिकारियों के हवाले से ये भी दावा किया गया है कि डील में एटमी मुद्दे का जिक्र नहीं है। लेकिन ईरान की 12 बिलियन अमेरिकी डॉलर की फीस संपत्ति छोड़ने का समझौता जरूर है। अभी ट्रंप ने डील के बारे में अंतिम फैसला नहीं लिया है। अगर ट्रंप ने समझौते पर मुहर लगा दी तो 60 दिन के लिए सीजफायर का ऐलान किया जा सकता है ताकि होर्मुज को खोलने की प्रक्रिया शुरू की जा सके। आज तक ब्यूरो।
4: उसको लेकर बातें कितनी भी हो रही हो, लेकिन सच यह है कि अमेरिका और ईरान दोनों ही इस मुद्दे पर अड़े हैं। कहने को अमेरिकी नाकेबंदी चरणबद्ध तरीके से हट जाएगी, लेकिन यूएस नेवी की ताजा चेतावनी ने हालात हाहाकारी होने के संकेत दिए हैं।

0: डील पर काम तेज, कहां फंसा है पेच? हॉर्मुज में यूएस का प्रण, ईरान के खिलाफ आखिरी रण। जहाजों को चेताया, समंदर में आने वाला है बवंडर। इस चेतावनी को ध्यान से पढ़िए, इसे यूएस नेवी सेंट्रल कमांड ने जारी किया है। यह हॉर्मुज में मौजूद सारे जहाजों के लिए है। अमेरिकन नेवी ने चेतावनी जारी की है कि ईरान के खतरनाक और गैर कानूनी कामों को रोकने के लिए जल्द ही बड़ा ऑपरेशन शुरू होने वाला है। हो सकता है कि जवाब में ईरान भी हमला करे, लिहाजा हॉर्मुज में जहाजों को मुश्किल हालातों के लिए तैयार रहना चाहिए। चेतावनी में जिन इलाकों में सतर्क रहने की बात कही गई है, उनमें अरब की खाड़ी, हॉर्मुज, ओमान की खाड़ी और उत्तरी अरब सागर शामिल है। संकेत साफ है, हॉर्मुज की लहरें अंदर से भी अशांत है और अब ऊपर से भी एक बार फिर शांति भंग होने के आसार बढ़ गए हैं। ईरान हर हाल में अमेरिका की नाकेबंदी को जल्द से जल्द हटाने की मांग कर रहा है और अमेरिका की मांग है कि टोल वसूली बंद की जाए और जहाजों की आवाजाही शुरू की जाए। इस बीच डील को लेकर अभी भी सस्पेंस बना हुआ है। ना तो हॉर्मुज को लेकर अभी कोई फैसला हुआ है और ना ही यूरेनियम को लेकर। अब आपको दिखाते हैं ईरान के लोग इस डील को लेकर क्या कह रहे हैं। यह है तेहरान का इनकलाब स्क्वाड। अमेरिका के खिलाफ और ईरान की लीडरशिप के साथ अपनी भावनाओं के इजहार के लिए हजारों लोग यहां इकट्ठा हुए हैं। हाथों में झंडे हैं, जुबां पर देशभक्ति के नारे हैं। जगह जगह ईरान के नेताओं की तस्वीरें हैं। इस भीड़ में सिर्फ उन्माद नहीं है, बल्कि अमेरिका को कोसने के लिए तथ्यों पर आधारित इनके अपने तर्क हैं।
1: اگر این حرفی که میزنه درست باشه نشان دهنده اینه که محاصرش شکست خورده و اون چیزی که تو ذهنش بوده به وقوع نپیوسته، از پس ما نتونست بر بیاد و برای اینکه بیش از این ضایع نشه میگه که ما محاصره رو پایان میدیم. حالا بعد ببینیم چقدر داره درست میگه. اصلا من حتی میگم ما همون سال 2015 هم اشتباه کردیم، اون اورانیوم ها رو چند تن اورانیوم تحویل دادیم، بسیار اشتباه بود. اورانیوم غنی سازی شده ارزش مادی بالایی داره، هم معنوی هم مادی، حکم بخشی از خاک ماه. چرا باید بدیم به اون؟ هیچ ربطی نداره، برای ماه، برای ملت یونانه و ما تصمیم میگیریم نه نخواهیم داد.
0: هرمز کو لیکر بھی لوگ ایک مت ہیں، یعنی هرمز فلال بند ہی رہے تو ایران کے لیے اچھا ہے.
2: حرف رهبرمونه، تنگه باید بسته بمونه تا وقتی که رهبرمون اعلام کنن ما هم همینو میگیم.
0: هرمز پر خود ایران مشکلوں میں گھرا ہوا ہے. امریکی ناکے‌بندی کی وجہ سے اس کا لاکھوں ٹن تیل نریات نہیں ہو پا رہا ہے، لیکن یہ اکلوتا ایسا ہتھیار ہے جو 28 فروری سے شروع ہوئے مہایدھ میں اس کی طاقت بڑھاتا رہا ہے. ظاہر ہے وہ کسی بھی قیمت پر اس کا نینترن امریکی شرطوں پر نہیں چھوڑے گا. آج تک پیرول.
3: अब रुक रहे छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन होंगे हाजिर. आप देखते रहिए आज तक.

0: बंगाल के सोनालपुर में अभिषेक बैनर्जी पर हमले से बवाल, लोगों ने फेंके पत्थर अंडे कपड़े फाड़े, कहा मुझे मारने की थी साजिश, विपक्ष ने बीजेपी पर उठाए सवाल, सोमवार को ममता करेंगी प्रदर्शन। कर्नाटक के अगले मुख्यमंत्री होंगे डीके शिवकुमार, कांग्रेस विधायक दल की बैठक में चुने गए नेता, 3 जून को 8 से 10 मंत्रियों के साथ ले सकते हैं शपथ। सीएम योगी का बड़ा बयान, कहा कि अहिंसा ही परम धर्म, लेकिन जब कोई देश समाज के लिए खतरा है तो अपनानी पड़ती है हिंसा की नीति, समाजवादी पार्टी बोली, यूपी में बढ़ रहा है अपराध। गाजियाबाद में अंतर्राष्ट्रीय पैरा एथलीट चिराग त्यागी की हत्या, साथी खिलाड़ी पर गोली मारने का आरोप, अगले महीने जापान में खेलने वाले थे टूर्नामेंट। राजस्थान के कई शहरों में रेतीले तूफान से दहशत, धूल भरी आंधी से दिन में छाया अंधेरा, दिल्ली एनसीआर में बारिश से गिरा तापमान। बंगाल के सोनारपुर में अभिषेक बैनर्जी पर हमला हुआ, चुनावी हिंसा, एक पीड़ित से मिलने के लिए अभिषेक पहुंचे थे और इसी दौरान अभिषेक से हाथापाई हुई, उन पर अंडे फेंके गए और काफी देर तक बवाल मचता रहा।
1: जो अभिषेक बनर्जी पश्चिम बंगाल में सत्ता का केंद्र होते थे, आज उन्हें बीच सड़क पर पीटा जा रहा है। ये पश्चिम बंगाल की सियासत का रक्त चरित्र है, सत्ता बदली लेकिन नहीं बदली तो पश्चिम बंगाल में सियासी रंजिश की तस्वीर, जिसकी चपेट में ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी आ गए। बीच सड़क पर लोगों ने अभिषेक को जमकर पीटा, गुस्साई भीड़ ने अभिषेक बनर्जी पर अंडे फेंके, कपड़े फाड़ दिए, हालात इतने बिगड़ गए कि अभिषेक को हेलमेट पहनकर वहां से निकलना पड़ा।
2: दे वांट टू किल मी एरा आमादेर प्राणे मारते चाहे, मेरे दिख अमर मृतदेह उद्धार होके खान थेके, किंतु आमी जायगा छेड़े जाबो ना।
1: अभिषेक बनर्जी विधानसभा चुनाव के बाद हुई हिंसा के पीड़ित लोगों और उनके परिवारों से मिलने के लिए सोनार गए थे, जहां उन पर यह हमला हुआ। अभिषेक ने इसे बीजेपी की साजिश बताया। उधर स्थानीय लोगों का दावा कि ये हमला किसी राजनीति से प्रेरित नहीं है, बल्कि ये उनका गुस्सा टीएमसी सरकार के खिलाफ है। इलाके में सरकार ने कोई विकास का काम नहीं किया, तो वहीं टीएमसी के कार्यकर्ताओं ने कई सालों तक गुंडागर्दी की, जिसे लेकर ये गुस्सा फूटा।
3: चोर को कैसे नारे, उसको क्या फूलों से स्वागत करेंगे, चोर को अंडा फेंक के मारेंगे, अभी तो हाँ वो भी बहुत कम हो गया, वो ये राम जी की धरती है, वो राम जी की नाराबाजी करने के माना किया था, बांग्लादेश से वो खुद है, उसका जो मुख्यमंत्री पीसी है वो भी वो एक बांग्लादेशी है।
4: वो लोग भाया मारने का टाइम तो वहाँ भेजा नहीं, वहाँ भेजा है, एक तो डॉक्टर को मारा है वहाँ, तो उस टाइम वो भेजा नहीं, अभी एक तो चमचा मार गया, इसलिए भेजा है यहाँ, इसके लिए भेजा है, हमारा रास्ता देखता है आज पंद्रह माधो में, रास्ता कैसे चलता है, हम लोग बाल बच्चा कर लिए।
1: अभिषेक बनर्जी पर हुआ हमला,
4: अभी एक तो चमचा मार गया, इसलिए भेजा है यहाँ, इसके लिए भेजा है, हमारा रास्ता देखता है आज पंद्रह माधो में, रास्ता कैसे चलता है, हम लोग बाल बच्चा कर लिए।
1: अभिषेक बनर्जी पर हुआ हमला एक बार फिर पश्चिम बंगाल में सियासी हिंसा को लेकर सवाल खड़े करता है। तपस सेन गुप्ता, दक्षिण 24 परगना, आज तक।
0: बिहार की राजनीति में सरकारी आवास को लेकर नया घमासान छिड़ गया है। पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी ने साफ संकेत दिए हैं कि वो 10 सर्कुलर रोड स्थित सरकारी आवास खाली करने के मूड में नहीं है, जबकि पिछले 6 महीनों में उन्हें लगातार नोटिस भेजे जा रहे हैं।
5: हम तो चाहते हैं कि सम्राट चौधरी पूरा बिहार के फोर्स बुला के हमारा 10 नंबर खाली करा दे, हम नहीं खाली करेंगे, आवे हमारा सामने जल्दी।
6: बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी ने बिहार सरकार को खुली चुनौती दी है कि वो अपना सरकारी आवास नहीं खाली करेंगी। पिछले 6 महीने से 10 सर्कुलर रोड आवास को खाली कराने के लिए नोटिस दिया जा रहा है, लेकिन राबड़ी के तेवर बताते हैं कि ये आवास बिहार की सियासत का नया अखाड़ा बनता जा रहा है।
7: अरे कहाँ इसमें वो कह रही है, इसमें तो जो कानून है जो नियम है।
6: लेकिन राबड़ी के तेवर बताते हैं कि ये आवास बिहार की सियासत का नया अखाड़ा बनता जा रहा है।
7: अरे कहाँ इसमें वो कह रही है, इसमें तो जो कानून इसमें वो कह रही है, इसमें तो जो कानून है जो नियम है उसके हिसाब से काम होता है और सब लोगों को नियम कानून का पालन करना चाहिए। यहाँ इसमें वो कह रही है, इसमें तो जो कानून है जो नियम है उसके हिसाब से काम होता है और सब लोगों को नियम कानून का पालन करना चाहिए।
6: बिहार विधानसभा चुनाव खत्म होने के बाद 25 नवंबर 2025 को राबड़ी देवी को नया आवास 39 हार्डिंग रोड पर आवंटित किया गया। उस वक्त राबड़ी देवी को लेटर भी भेजा गया, लेकिन 6 महीना बीत जाने के बाद भी राबड़ी देवी ने 10 सर्कुलर रोड घर को खाली नहीं किया है। ये बंगला पशु संसाधन मंत्री नंद किशोर यादव का आवंटित है, जिसे लेकर राबड़ी देवी को 29 मई को नया नोटिस भेजा गया।
8: मैं तो कह रहा हूँ कि वो मुख्यमंत्री रही है, 1-2 साल नहीं 7 साल रहे हैं, तो उनको तो कानून का पालन करना ही चाहिए। बयान निंदनीय है, ये टकराव का बयान है, आपत्तिजनक है, और क्या बात करते हैं, पूरे बिहार के फोर्स की जरूरत है, एक दरोगा जाके निकाल देगा।
6: राबड़ी देवी करीब 20 वर्षों से 10 सर्कुलर रोड आवास में रहती आई हैं। यह आवास काफी बड़ा है, इससे लालू परिवार की यादें भी जुड़ी हैं।
9: राबड़ी देवी जी, ये जंगल राज नहीं है, ये कानून का राज है, एनडीए की सरकार है। आपको इलाज कराना होता है तो सिंगापुर जाते हैं, पोता का जन्मदिन मनाना होता है तो दिल्ली नोएडा भागते हैं, और जब लूटने की बारी आती है तो आप बिहार में रहना चाहते हैं।
6: नवंबर 2005 में चुनाव हारने के बाद राबड़ी देवी को यह आवास आवंटित किया गया था। उस समय पूर्व मुख्यमंत्री को भी आवास आवंटित होता था, लेकिन जब 2019 में अपने आवास के मामले को लेकर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव पटना हाईकोर्ट गए, तब कोर्ट ने सख्त निर्देश दिया था कि कोई भी पूर्व मुख्यमंत्री या पूर्व उप मुख्यमंत्री पद से हटने के बाद सरकारी बंगला नहीं रख सकता। इसके बाद से 10 सर्कुलर रोड राबड़ी देवी को बिहार विधान परिषद के नेता प्रतिपक्ष के रूप में आवंटित किया गया, जिसे अब उन्हें खाली करना होगा। शशि भूषण, पटना आज तक।
0: अब बात एनटीए की, जिसकी भूमिका पर एक बार फिर सवाल खड़े हो रहे हैं। एनटीए की ओर से आयोजित सीयूईटी यूजी परीक्षा में एक बार फिर तकनीकी खराबी का मामला सामने आया है।
10: अभी निकल के आना 2 घंटे।
11: परीक्षा केंद्र के बाहर मचा ये हंगामा एक बार फिर एनटीए के कामकाज पर सवाल खड़े कर रहा है। आज सीयूईटी यूजी परीक्षा के केंद्रों पर तकनीकी खराबी की शिकायत आई, जिसके बाद सुबह 9 बजे शुरू होने वाली परीक्षा कई केंद्रों पर करीब 11:23 पर शुरू हुई। वहीं एनटीए ने दोपहर की शिफ्ट का टाइम भी बदल दिया, जिसके चलते अभ्यर्थियों और अभिभावक परेशान नजर आए। अब एनटीए इस पर माफी मांग रहा है, तो वहीं विपक्ष एक बार फिर एनटीए की भूमिका पर सवाल खड़े कर रहा है। 4 परीक्षाएं, 1 करोड़ बच्चे, एक भी ईमानदारी से नहीं हो पाई। दावे विश्व गुरु के, मगर देश में एक परीक्षा नहीं करवा सकते। मोदी जी ने पूरी शिक्षा व्यवस्था तबाह कर दी है। जिस पीढ़ी का भविष्य आप बर्बाद कर रहे हैं, वही पीढ़ी आपका हिसाब करेगी।
12: ये देखने में आ रहा है कि एनटीए ने सीयूईटी टेस्ट का भी मजाक बना के रख दिया है। सीयूईटी टेस्ट में करीब 18 लाख बच्चे अलग अलग यूनिवर्सिटीज में बैठने के लिए टेस्ट देते हैं, आज सेंटर पर पहुंचे, उनका टाइम बदल दिया गया, किसी का सेंटर बदल दिया जा रहा है, किसी की डेट बदल दी जा रही है, ऐसी डेट पे एग्जाम दे दिए जाते हैं जिसमें वो सेंटर फ्री नहीं है, पूरा का पूरा मिसमैनेजमेंट है।
11: उधर सरकार के नीट पेपर में सेना की मदद के फैसले पर भी विपक्ष सवाल खड़े कर रहा है।
13: कल हमारे देश की सरकार ने ऐलान किया है कि अब नीट के पेपर को लीक होने से बचाने के लिए एयरफोर्स के जहाज से उसको ट्रांसपोर्ट करेंगे, एयरफोर्स के बुलेट प्रूफ ट्रकों से उसको ट्रांसपोर्ट करेंगे। मजाक बना रखा है, हमें बेवकूफ समझ रखा है। पूरी दुनिया में इतने बड़े बड़े पेपर होते हैं, कहीं सुना है कि एयरफोर्स से उनको ट्रांसपोर्ट किया जाता है?
11: बहरहाल परीक्षाओं को लेकर एनटीए पूरी तरह फेल नजर आ रहा है, जहां उसकी नाकामी एक बार फिर आज सीयूईटी यूजी के पेपर में खुलकर सामने आ गई। आज तक ब्यूरो।
0: अब यूपी के जहां गाजियाबाद में एक शख्स की हत्या, उसके बाद हिंदू मुस्लिम का इसने रंग रूप ले लिया। परिवार का आरोप है कि बकरीद के बहाने बुलाकर बेटे की हत्या कर दी गई।
14: आज माफिया पिस्तौल लहराते हुए कोई धमका करके खुली जीप में चल करके किसी हिंदू को धमका नहीं सकता है। जन्माष्टमी हो, रक्षाबंधन हो, इन आयोजनों में अगर किसी ने व्यवधान डाला तो पर्व तो मनाई लेगा, लेकिन उसके बाद तय है कि रावण और कंस जैसी दुर्गति उसकी तय है जो व्यवधान डालने वाला है।
15: उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का यह बयान ऐसे समय आया जब 17 साल के हिंदू युवक की हत्या कर दी गई। गाजियाबाद के खोड़ा थाना क्षेत्र में सूर्या की बकरीद की शाम चाकुओं से गोद कर बेरहमी से हत्या कर दी जाती है और इल्जाम लगा सूर्या के ही मुस्लिम दोस्तों पर। हत्या के बाद गाजियाबाद के खोड़ा इलाके में तनाव है, पुलिस अलर्ट पर है। इस बीच लखनऊ में मुख्यमंत्री ने यूपी की कानून व्यवस्था पर अपनी सरकार के मॉडल का जिक्र एक बार फिर किया।
14: अहिंसा परमो धर्म, धर्म हिंसा तथैव च, यानी सामान्य जीवन में अहिंसा ही सर्वोच्च धर्म होना चाहिए, लेकिन अगर सामने वाला देश और समाज की सुरक्षा के लिए खतरा है तो उसके लिए अहिंसा नहीं चल सकती है, उसके लिए तो हिंसा ही हमें अंततः अपनानी पड़ेगी।
15: तो फिर गाजियाबाद की घटना कैसे हो गई? योगी सरकार के अपराध नियंत्रण के दावों पर यह घटना कितना बड़ा सवाल है। क्या यूपी की राजनीति में 2027 विधानसभा चुनाव के लिए नया नैरेटिव तैयार हो रहा है? गाजियाबाद में जिस शख्स पर 28 मई को चाकुओं से वार किया गया, उसने 29 मई को दम तोड़ा। इसी दिन यानी 29 मई को मऊ में मुख्यमंत्री ने दावा किया कि उनके राज में कोई हिंदुओं को धमका नहीं सकता।
14: आज माफिया पिस्तौल लहराते हुए कोई धमका करके खुली जीप में चल करके किसी हिंदू को धमका नहीं सकता है।
15: यूपी की कानून व्यवस्था पर मुख्यमंत्री योगी के 48 घंटे में दो बड़े बयान आए हैं। 29 मई को मुख्यमंत्री ने कहा कि आज माफिया किसी हिंदू को खुलेआम धमका नहीं सकता। 30 मई को मुख्यमंत्री ने कहा कि खतरा हो तो हिंसा भी अपनानी पड़ती है। एक तरफ अपराध पर सख्त कार्रवाई का दावा, दूसरी तरफ हिंसा पर राजनीतिक बहस। समाजवादी पार्टी कह रही है कि गाजियाबाद की घटना को हिंदू मुसलमान से ना जोड़ा जाए।
16: जिन लोगों ने भी अपराध किया है, चाहे वो किसी धर्म किसी जात के हों, उन पे कार्रवाई होनी चाहिए, सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, कानून के मुताबिक कार्रवाई होनी चाहिए। उत्तर प्रदेश में लगातार अपराध रुक नहीं रहे हैं, चाहे वो राजधानी लखनऊ की बात हो। अभी 3 दिन पहले प्रॉपर्टी डीलर को हत्या कर दी गई, अब ये गाजियाबाद की घटना है। लगातार उत्तर प्रदेश में हत्याएं हो रही हैं, लूट हो रहे हैं, बलात्कार हो रहे हैं, और भारतीय जनता पार्टी की सरकार कानून व्यवस्था देने में पूरी तरह से विफल है।
15: 2027 का रास्ता लखनऊ से नहीं बल्कि ऐसी घटनाओं पर जनता की प्रतिक्रिया से भी तय होगा, इसलिए चुनावी नैरेटिव को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष अपने अपने हिसाब से परिभाषा गढ़ते हैं। क्या अपराध का धर्म होता है या फिर हर बड़ी वारदात के बाद राजनीति धर्म का चश्मा पहन लेती है? इस बीच उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य कहते हैं कि हत्या करने वालों को फांसी के तख्ते पर चढ़ाने के लिए कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
17: प्यारा कोई भी हो, वो बक्सा नहीं जाएगा, उसको खोज निकाला जाएगा और हत्या करने वाले को फांसी पर चढ़ाने के लिए जो कार्रवाई होती है कानूनी, वो कानूनी कार्रवाई की जाएगी। सरकार कानून व्यवस्था को लेकर के बहुत गंभीर है और जिन लोगों ने ऐसा अपराध किया उनके खिलाफ कठोर से कठोर कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
15: योगी सरकार में सहयोगी पार्टी के मंत्री अखिलेश यादव से चुभते हुए सवाल पूछते हैं, उनके पीडीएस समीकरण पर वार करते हैं।
18: अखिलेश यादव जी को उस पर बोलना चाहिए कि उनके वोटर हैं, उन लोग ऐसी हत्या क्यों कर रहे हैं, कहीं मुसलमान मार रहा है तो कहीं यादव मार रहा है। उनका MOI जो फैक्टर है इस समय पूरे प्रदेश में आतंक मचाया हुआ है। बोलते हैं पीडीए इनका असफल है सिर्फ MOI फैक्टर को दबाने के लिए, लोगों का दिमाग भटकाने के लिए कि हमको सिर्फ MOI कहा जाता था, इस नाते पीडीए चिल्ला रहे हैं।
15: गाजियाबाद की घटना उत्तर प्रदेश की राजनीति को उस चौराहे पर लाकर खड़ा कर देती है जहां सरकार अपने दावे गिनाती है और विपक्ष जमीन की हकीकत दिखाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन सवाल है क्या यूपी में जनता सुरक्षित महसूस करती है।
0: बात दिल्ली के जहांगीरपुर में हुए मर्डर की, जहां बकरीद की रात मामूली सा विवाद एक युवक की मौत की वजह बन गया।
1: दिल्ली में सिगरेट को लेकर विवाद में युवक की हत्या। सिगरेट लाने से मना किया तो चाकू मार दिया। सुनने में भले ही यह हैरानी भरा लगे लेकिन इस वारदात ने एक शख्स की जान ले ली। बकरीद के मौके पर जब 26 साल के अरबाज के घर त्योहार की खुशियां थी, इस वारदात के बाद चीख पुकार मच गई। पुलिस के मुताबिक रात 11 बजे के करीब अरबाज अपने घर के पास ही मौजूद था। इसी दौरान इलाके के कुछ लड़कों के साथ उसकी कहासुनी हुई जो देखते ही देखते हिंसक झड़प में बदल गई। इसके पीछे की जो वजह सामने आई है वो भी बेहद हैरानी भरी है।
19: उस टाइम पे कुछ नहीं हुआ था, एक सिगरेट मंगाने का विवाद था कि एक सिगरेट लाके दे। तो उन्होंने बोला तेरे बाप का नौकर हूँ क्या, तेरा क्या, तू जाके लिया, तू क्या बदमाश है क्या। तो उन्होंने बोला चल ठीक है। फिर इतने में उन्होंने अपने दोस्तों को फोन मिलाया, उस लड़के ने, 7-8 लोंडे आ गए। इस बात को लेकर उन्होंने उसको मार दिया कि तूने हमसे ऐसे क्यों कहा।
1: विवाद के बाद जब अरबाज को लड़कों ने घेरा तो उसने मदद के लिए अपने भाई को बुलाया। भाई के सामने ही आरोपियों ने अरबाज की हत्या कर दी।
20: अरबाज का बड़ा भाई था, अरबाज ने मेरे पास फोन करा रात में पूरे 10:59 पे कि भाई ऐसे ऐसे बात है, मेरे को लड़कों ने घेर रखा, जल्दी से इधर आ जा गली के बाहर। मैं भागते हुए गया, जाके देखा तो उस टाइम पे ना इस पे सब सवार हुए पड़े थे लड़के, जो लड़के थे सब सवार हुए पड़े थे। ये 5-6 लड़के थे। उसी बीच में आवाज आती है कि चाकू निकाल, उसी बीच में आवाज आती है चाकू निकाल। अब जब चाकू निकालने की आवाज आती है तो मेरे भाई को ना गेट है हमारी गली के बाहर उसमें घुसा दिया। तो मैं गया, मैंने पीछे से पकड़ के खींचा उसे, लड़कों को, 2-3 लड़के उस पर चढ़े पड़े थे। जैसे मैंने उन्हें खींचा तो एक लड़का साइड में से निकल के गया, वो इतने में जाके उसके चाकू मार।
1: अरबाज जहांगीरपुरी के सी ब्लॉक का रहने वाला था और इलाके में ही एक सुनार की दुकान पर काम करता था। युवक की मौत के बाद घर में मातम है और इलाके में तनाव। पुलिस ने स्थानीय लोगों और चश्मदीदों से पूछताछ के आधार पर 3 नाबालिगों को हिरासत में लिया है। उनसे पूछताछ की जा रही है और वारदात में उनकी भूमिका की जांच हो रही है। आज तक ब्यूरो।
0: अब बात राजस्थान के, जहां पर मौसम की खौफनाक तस्वीर देखने को मिली। रेतीले तूफान ने राजस्थान के 5 जिलों को अपनी चपेट में ले लिया। आसमान में चारों ओर धूल का गुबार दिखाई दिया और इस पूरे धूल के गुबार ने पूरे शहर में अंधेरा सा कर दिया।
11: एक आम रिहायशी इलाका और सामने से आया रेत का बवंडर मानो पूरे शहर को अपने आगोश में ले लेना चाहता हो। यह हैरान करने वाली तस्वीरें राजस्थान के चुरू की है। रेत का गुब्बार धीरे धीरे शहर की ओर बढ़ता है, आसमान में सिर्फ धूल ही धूल नजर आती है। फिर शहर की गलियां, सड़क, घर, छत, हर कहीं ये धूल कब्जा करने लगती है। दिन में अंधेरा छाने लगता है। तूफान के कारण दिन में लोगों को वाहनों की हेडलाइट जलानी पड़ गई।
21: इस सीजन का जबरदस्त आंधी तूफान भयंकर आया, उसमें मेरे हिसाब से लाखों करोड़ों का सरकार का नुकसान हुआ है और उसके बाद में जबरदस्त बारिश और पेड़ों का गिरना, बिजली का नुकसान होना बहुत ही जबरदस्त, मतलब इस मौसम में जो आंधी आई है बहुत ही जबरदस्त आई है।
22: और इस तूफान में आज आपको देखने को मिला कि मतलब कि तूफान की में आंधी काफी भयंकर थी, धूल भरी आंधी थी जिसके कारण पेड़ है और भी बहुत सारे पक्षी वगैरह काफी इनका नुकसान हुआ।
11: इसके कई वीडियो सामने आए हैं, इनमें लोग भागकर घरों में जाते दिखे और घरों को बंद कर दिया। इस दौरान 60-80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आंधी चली जो करीब 30 मिनट तक इलाके में कोहरा मचाती रही। हालांकि तूफान की ऊंचाई का आधिकारिक आंकड़ा सामने नहीं आया है। इस रेतीले तूफान ने राजस्थान के 5 जिलों को अपनी चपेट में ले लिया। श्री गंगानगर, बीकानेर, चुरू, हनुमानगढ़ और सीकर के आसमान में रेत का गुब्बार देखने को मिले। करीब 200 वर्ग किलोमीटर का इलाका इससे प्रभावित नजर आया।
2: रेत का बाउंडर बहुत भारी और बहुत खतरनाक था। मैंने अपनी जिंदगी 15-20 सालों में कभी ऐसा माहौल नहीं देखा था और दिन में एकदम अंधी आई ऐसे तो मानो साफ हो गई। ये कहीं न कहीं अपने प्रकृति से जो पर्यावरण पौधे अपने काट रहे हैं और ये खिलवाड़ कर रहे हैं, इसके लिए अपने सजग रहने की जरूरत है।
3: और एकदम से बिल्कुल काला काला हो गया सिस्टम, जैसे रात हो गई होती एकदम से। इतनी तेज अंधेरी थी, उसका जो किलोमीटर के हिसाब से बताया गया था वो 80-90 किलोमीटर के हिसाब से उसका विंड का बताया गया था और एकदम से फुल अंधेरी थी। और जहाँ पर जो दरखत है छोटे छोटे वो हिलने लगे, कुछ दरखत है वो टूट भी गए थे।
11: पाकिस्तान से उठे इस तूफान ने रेगिस्तान का मौसम पूरी तरह से बदल दिया। आज तक ब्यूरो।
0: अब रुख करते हैं मिडिल ईस्ट की ओर। अगर अमेरिका और ईरान डील के इतने ही करीब हैं तो दोनों के सुर अलग अलग क्यों हैं? आखिर क्यों अमेरिका लगातार कह रहा है कि वो समझौते के बेहद करीब है जबकि ईरान आधिकारिक तौर पर इस पर चुप्पी साधे हुए है?
4: डील पर अमेरिका और ईरान के जुदा हैं बयान। सुर अलग हैं तो फैसला कैसे एक होगा? सस्पेंस भारी, आ रही है बम बरसाने की बारी। क्या अमेरिका और ईरान में सच में कुछ ही घंटों में डील होने वाली है या फिर महायुद्ध पार्ट 2 जल्द शुरू होने वाला है? कहने को तो अमेरिका की टॉप लीडरशिप हर दिन ये उम्मीद जगा रही है कि वो डील के बेहद करीब है।
23: That we're able to get to a final agreement here. We're reopening the Straits of Hormuz. We've already decimated their conventional military, and we're in a position where we could substantially step back their nuclear program, not just during the term of this president, but over the long term. That's a very, very good thing for the American people. So we're not there yet, but we're very close. We're going to keep on working at it. Thank you, guys. Have a good evening.
4: राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति ही नहीं, रक्षा मंत्री भी हर जगह जाकर यही कह रहे हैं कि डील जल्द ही होने वाली है और ये एक शानदार डील होगी। लेकिन सिंगापुर जाने से पहले रक्षा मंत्री ईरान को धमकी भी देकर गए हैं, यानी अमेरिका को भी ये अंदेशा तो है कि हो सकता है कि डील उनके मुताबिक ना हो और एक बार फिर रणभूमि में उतरना पड़े।
24: And when you do your job, the adversaries know what's coming for them. And that's when they either step up and meet the fury of the American military or back down and you create a whole bunch of options for America. The president of what he wants to execute on behalf of the American people. So right now, hey, Iran has a choice: meet at the table with the president and give up their nuclear program. And as the president said, I'm lost on time. 2 days ago now, in the cabinet meeting, I'm sitting right next to him. He looks in the camera and says, "Well, Iran can either do it the right way with a deal across the table, or they can deal with my guy on the left. That happened to be me." But it's not me, it's you guys. It's what you're ready to do.
4: लेकिन ईरान की तरफ से कोई ऐसे संकेत नहीं मिल रहे हैं। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल भगाई ने सरकारी मीडिया से बातचीत में कहा है कि हॉर्मुज पर फैसला ईरान और ओमान को लेना चाहिए और इसे खोलने का फैसला भी अमेरिका नाकेबंदी हटने के बाद ही होना चाहिए। जो भी हो, डील को लेकर हलचल तो लगातार बढ़ रही है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सिचुएशन रूम में 2 घंटे तक अहम मीटिंग की है। इस मीटिंग में ईरान के साथ डील को लेकर कई पहलुओं पर बात की गई। मीटिंग में ट्रंप ने साफ कहा कि किसी भी कीमत पर ईरान को परमाणु बम बनाने की इजाजत नहीं दी जा सकती। उसके अलावा उसे हॉर्मुज को बिना टोल बंदी के खोलना ही पड़ेगा। ईरान की न्यूज एजेंसी फोर्स के मुताबिक ईरान का मानना है कि ट्रंप मनगढ़ंत जीत को दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। इसके अलावा ईरानी अधिकारियों के हवाले से ये भी दावा किया गया है कि डील में एटमी मुद्दे का जिक्र नहीं है। लेकिन ईरान की 12 बिलियन अमेरिकी डॉलर की पीस संपत्ति छोड़ने का समझौता जरूर है। अभी ट्रंप ने डील के बारे में अंतिम फैसला नहीं लिया है। अगर ट्रंप ने समझौते पर मुहर लगा दी तो 60 दिन के लिए सीज फायर का ऐलान किया जा सकता है। ताकि हॉर्मोन्स को खोलने की प्रक्रिया शुरू की जा सके। आज तक ब्यूरो।
0: उसको लेकर बातें कितनी भी हो रही हो, लेकिन सच है कि अमेरिका और ईरान दोनों ही इस मुद्दे पर अड़े हैं। कहने को अमेरिकी नाकेबंदी चरणबद्ध तरीके से हट जाएगी, लेकिन यूएस नेवी की ताजा चेतावनी ने हालात हाहाकारी होने के संकेत दिए हैं।

0: डील पर काम तेज, कहां फंसा है पेच। हॉर्मुज में यूएस का प्रण, ईरान के खिलाफ आखिरी रण। जहाजों को चेताया, समंदर में आने वाला है बवंडर। इस चेतावनी को ध्यान से पढ़िए, इसे यूएस नेवी सेंट्रल कमांड ने जारी किया है। यह हॉर्मुज में मौजूद सारे जहाजों के लिए है। अमेरिकन नेवी ने चेतावनी जारी की है कि ईरान के खतरनाक और गैर कानूनी कामों को रोकने के लिए जल्द ही बड़ा ऑपरेशन शुरू होने वाला है। हो सकता है कि जवाब में ईरान भी हमला करे, लिहाजा हॉर्मुज में जहाजों को मुश्किल हालातों के लिए तैयार रहना चाहिए। चेतावनी में जिन इलाकों में सतर्क रहने की बात कही गई है, उनमें अरब की खाड़ी, हॉर्मुज, ओमान की खाड़ी और उत्तरी अरब सागर शामिल है। संकेत साफ है, हॉर्मुज की लहरें अंदर से भी अशांत है और अब ऊपर से भी एक बार फिर शांति भंग होने के आसार बढ़ गए हैं। ईरान हर हाल में अमेरिका की नाकेबंदी को जल्द से जल्द हटाने की मांग कर रहा है और अमेरिका की मांग है कि टोल वसूली बंद की जाए और जहाजों की आवाजाही शुरू की जाए। इस बीच डील को लेकर अभी भी सस्पेंस बना हुआ है। ना तो हॉर्मुज को लेकर अभी कोई फैसला हुआ है और ना ही यूरेनियम को लेकर। अब आपको दिखाते हैं ईरान के लोग इस डील को लेकर क्या कह रहे हैं। यह है तेहरान का इनकलाब स्क्वाड। अमेरिका के खिलाफ और ईरान की लीडरशिप के साथ अपनी भावनाओं के इजहार के लिए हजारों लोग यहां इकट्ठा हुए हैं। हाथों में झंडे हैं, जुबां पर देशभक्ति के नारे हैं। जगह जगह ईरान के नेताओं की तस्वीरें हैं। इस भीड़ में सिर्फ उन्माद नहीं है बल्कि अमेरिका को कोसने के लिए तथ्यों पर आधारित इनके अपने तर्क हैं।
1: اگر این حرفی که میزنه درست باشه نشان دهنده اینه که محاصرش شکست خورده و اون چیزی که تو ذهنش بوده به وقوع نپیوسته، از پس ما نتونست بر بیاد و برای اینکه بیش از این ضایع نشه میگه که ما محاصره رو پایان میدیم. حالا بعد ببینیم چقدر داره درست میگه. اصلا من حتی میگم ما همون سال 2015 هم اشتباه کردیم، اون اورانیوم ها رو چند تن اورانیوم تحلیل دادیم، بسیار اشتباه بود. اورانیوم غنی سازی شده ارزش مادی بالایی داره، هم معنوی هم مادی، حکم بخشی از خاک ماه. چرا بعد بریم به اون؟ هیچ ربطی نداره، برای ماه، برای ملت ایرانه و ما تصمیم میگیریم. نه نخواهیم داد.
0: هرمز کو لیکر بھی لوگ ایک مت ہیں، یعنی هرمز فی الحال بند ہی رہے تو ایران کے لیے اچھا ہے.
2: حرف رهبرمونه، تنگه باید بسته بمونه تا وقتی که رهبرمون اعلام کنن. ما هم همینو
0: میگیم. هرمز پر خود ایران مشکلوں میں گھرا ہوا ہے. امریکی ناکبندی کی وجہ سے اس کا لاکھوں ٹن تیل نریات نہیں ہو پا رہا ہے، لیکن یہ اکلوتا ایسا ہتھیار ہے جو 28 فروری سے شروع ہوئے مہا یدھ میں اس کی طاقت بڑھاتا رہا ہے. ظاہر ہے وہ کسی بھی قیمت پر اس کا نینترن امریکی شرطوں پر نہیں چھوڑے گا. آج تک پیرو.
3: अब रुक रहे छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन होंगे हाजिर. आप देखते रहिए आज तक.

0: बंगाल के सोनारपुर में अभिषेक बैनर्जी पर हमले से बवाल, लोगों ने फेंके पत्थर अंडे कपड़े फाड़े, कहा मुझे मारने की थी साजिश, विपक्ष ने बीजेपी पर उठाए सवाल, सोमवार को ममता करेंगी प्रदर्शन। कर्नाटक के अगले मुख्यमंत्री होंगे डीके शिवकुमार, कांग्रेस विधायक दल की बैठक में चुने गए नेता, 3 जून को 8 से 10 मंत्रियों के साथ ले सकते हैं शपथ। सीएम योगी का बड़ा बयान, कहा कि अहिंसा ही परम धर्म, लेकिन जब कोई देश समाज के लिए खतरा है तो अपनानी पड़ती है हिंसा की नीति, समाजवादी पार्टी बोली यूपी में बढ़ रहा है अपराध। गाजियाबाद में अंतर्राष्ट्रीय पैरा एथलीट चिराग त्यागी की हत्या, साथी खिलाड़ी पर गोली मारने का आरोप, अगले महीने जापान में खेलने वाले थे टूर्नामेंट। राजस्थान के कई शहरों में रेतीले तूफान से दहशत, धूल भरी आंधी से दिन में छाया अंधेरा, दिल्ली एनसीआर में बारिश से गिरा तापमान। बंगाल के सोनारपुर में अभिषेक बैनर्जी पर हमला हुआ, चुनावी हिंसा, एक पीड़ित से मिलने के लिए अभिषेक पहुंचे थे और इसी दौरान अभिषेक से हाथापाई हुई, उन पर अंडे फेंके गए और काफी देर तक बवाल मचता रहा।
1: जो अभिषेक बनर्जी पश्चिम बंगाल में सत्ता का केंद्र होते थे, आज उन्हें बीच सड़क पर पीटा जा रहा है। ये पश्चिम बंगाल की सियासत का रक्त चरित्र है। सत्ता बदली लेकिन नहीं बदली तो पश्चिम बंगाल में सियासी रंजिश की तस्वीर, जिसकी चपेट में ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी आ गए। बीच सड़क पर लोगों ने अभिषेक को जमकर पीटा, गुस्साई भीड़ ने अभिषेक बनर्जी पर अंडे फेंके, कपड़े फाड़ दिए। हालात इतने बिगड़ गए कि अभिषेक को हेलमेट पहनकर वहां से निकलना पड़ा।
2: दे वांट टू किल मी एरा आमादेर प्राणे मारते चाहे, मेरे दिख अमर मृतदेह उद्धार हो केखान थेके, किंतु आमी जायगा छेड़े जाबो ना।
1: अभिषेक बनर्जी विधानसभा चुनाव के बाद हुई हिंसा के पीड़ित लोगों और उनके परिवारों से मिलने के लिए सोनार गए थे, जहां उन पर यह हमला हुआ। अभिषेक ने इसे बीजेपी की साजिश बताया। उधर स्थानीय लोगों का दावा कि ये हमला किसी राजनीति से प्रेरित नहीं है, बल्कि ये उनका गुस्सा टीएमसी सरकार के खिलाफ है। इलाके में सरकार ने कोई विकास का काम नहीं किया, तो वहीं टीएमसी के कार्यकर्ताओं ने कई सालों तक गुंडागर्दी की, जिसे लेकर ये गुस्सा फूटा।
3: चोर को कैसे नारे, उसको क्या फूलों से स्वागत करेंगे, चोर को अंडा फेंक के मारेंगे। अभी तो हाँ वो भी बहुत कम हो गया, वो ये राम जी की धरती है, वो राम जी की नाराबाजी करने के माना किया था बांग्लादेशी, वो खुद है, उसका जो मुख्यमंत्री पीसी है वो भी वो एक बांग्लादेशी है।
4: वो लोग भाई मारने का टाइम तो वहाँ भेजा नहीं, वहाँ भेजा है एक तो डॉक्टर को मारा है वहाँ, तो उस टाइम वो भेजा नहीं, अभी एक तो चमचा मर गया इसलिए भेजा है, यहाँ इसके लिए भेजा है, हमारा रास्ता देखता है आज पंद्रह मौतों में, ये रास्ता कैसे चलता है, हम लोग बाल बच्चा कर लिए।
1: अभिषेक बनर्जी पर हुआ हमला एक बार फिर पश्चिम बंगाल में सियासी हिंसा को लेकर सवाल खड़े करता है। तपस सेन गुप्ता, दक्षिण 24 परगना, आज तक।
0: बिहार की राजनीति में सरकारी आवास को लेकर नया घमासान छिड़ गया है। पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी ने साफ संकेत दिए हैं कि वो 10 सर्कुलर रोड स्थित सरकारी आवास खाली करने के मूड में नहीं है, जबकि पिछले 6 महीनों में उन्हें लगातार नोटिस भेजे जा रहे हैं।
5: हम तो चाहते हैं कि सम्राट चौधरी पूरा बिहार के फोर्स बुला के आ, हमारा 10 नंबर खाली करा दे, हम नहीं खाली करेंगे, आवे हमारा सामने।
6: बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी ने बिहार सरकार को खुली चुनौती दी है कि वो अपना सरकारी आवास नहीं खाली करेंगी। पिछले 6 महीने से 10 सर्कुलर रोड आवास को खाली कराने के लिए नोटिस दिया जा रहा है, लेकिन राबड़ी के तेवर बताते हैं कि ये आवास बिहार की सियासत का नया अखाड़ा बनता जा रहा है।
7: अरे कहाँ, इसमें वो कह रही, इसमें तो जो कानून है, जो नियम है, उसके हिसाब से काम होता है और सब लोगों को नियम कानून का पालन करना चाहिए।
6: बिहार विधानसभा चुनाव खत्म होने के बाद 25 नवंबर 2025 को राबड़ी देवी को नया आवास 39 हार्डिंग रोड पर आवंटित किया गया। उस वक्त राबड़ी देवी को लेटर भी भेजा गया, लेकिन 6 महीना बीत जाने के बाद भी राबड़ी देवी ने 10 सर्कुलर रोड घर को खाली नहीं किया है। ये बंगला पशु संसाधन मंत्री नंद किशोर यादव का आवंटित है, जिसे लेकर राबड़ी देवी को 29 मई को नया नोटिस भेजा गया।
8: मैं तो कह रहा हूँ कि वो मुख्यमंत्री रहे हैं, 1-2 साल नहीं 7 साल रहे हैं, तो उनको तो कानून का पालन करना ही चाहिए। बयान निंदनीय है, ये टकराव का बयान है, आपत्तिजनक है, और क्या बात करते हैं, पूरे बिहार के फोर्स की जरूरत है, एक दरोगा जाके निकाल देगा।
6: राबड़ी देवी करीब 20 वर्षों से 10 सर्कुलर रोड आवास में रहती आई हैं। यह आवास काफी बड़ा है, इससे लालू परिवार की यादें भी जुड़ी हैं।
9: राबड़ी देवी जी, ये जंगल राज नहीं है, ये कानून का राज है, एनडीए की सरकार है। आपको इलाज कराना होता है तो सिंगापुर जाते हैं, पोता का जन्मदिन मनाना होता है तो दिल्ली नोएडा भागते हैं, और जब लूटने की बारी आती है तो आप बिहार में रहना चाहते हैं।
6: नवंबर 2005 में चुनाव हारने के बाद राबड़ी देवी को यह आवास आवंटित किया गया था। उस समय पूर्व मुख्यमंत्री को भी आवास आवंटित होता था, लेकिन जब 2019 में अपने आवास के मामले को लेकर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव पटना हाईकोर्ट गए, तब कोर्ट ने सख्त निर्देश दिया था कि कोई भी पूर्व मुख्यमंत्री या पूर्व उप मुख्यमंत्री पद से हटने के बाद सरकारी बंगला नहीं रख सकता। इसके बाद से 10 सर्कुलर रोड राबड़ी देवी को बिहार विधान परिषद के नेता प्रतिपक्ष के रूप में आवंटित किया गया, जिसे अब उन्हें खाली करना होगा। शशि भूषण, पटना आज तक।
0: अब आते एनटीए की, जिसकी भूमिका पर एक बार फिर सवाल खड़े हो रहे हैं। एनटीए की ओर से आयोजित सीयूईटी यूजी परीक्षा में एक बार फिर तकनीकी खराबी का मामला सामने आया।
10: अभी निकल के आना 2 घंटे।
11: परीक्षा केंद्र के बाहर मचा ये हंगामा एक बार फिर एनटीए के कामकाज पर सवाल खड़े कर रहा है। आज सीयूईटी यूजी परीक्षा के केंद्रों पर तकनीकी खराबी की शिकायत आई, जिसके बाद सुबह 9 बजे शुरू होने वाली परीक्षा कई केंद्रों पर करीब 11:23 पर शुरू हुई।

0: सीयूईटी टेस्ट का भी मजाक बना के रख दिया है। सीयूईटी टेस्ट में करीब 18 लाख बच्चे अलग अलग यूनिवर्सिटीज में बैठने के लिए टेस्ट देते हैं। आज सेंटर पे पहुंचे, उनका टाइम बदल दिया गया, किसी का सेंटर बदल दिया जा रहा है, किसी की डेट बदल दी जा रही है, ऐसी डेट पे एग्जाम दे दिए जाते हैं जिसमें वो सेंटर फ्री नहीं है। पूरा का पूरा मिसमैनेजमेंट है।
1: उधर सरकार के नीट पेपर में सेना की मदद के फैसले पर भी विपक्ष सवाल खड़े कर रहा है।
2: कल हमारे देश की सरकार ने ऐलान किया है कि अब नीट के पेपर को लीक होने से बचाने के लिए एयरफोर्स के जहाज से उसको ट्रांसपोर्ट करेंगे, एयरफोर्स के बुलेट प्रूफ ट्रकों से उसको ट्रांसपोर्ट करेंगे। मजाक बना रखा है, हमें बेवकूफ समझ रखा है। पूरी दुनिया में इतने बड़े बड़े पेपर होते हैं, कहीं सुना है कि एयरफोर्स से उनको ट्रांसपोर्ट किया जाता है?
1: बहरहाल परीक्षाओं को लेकर एनटीए पूरी तरह फेल नजर आ रहा है, जहां उसकी नाकामी एक बार फिर आज सीयूईटी यूजी के पेपर में खुलकर सामने आ गई। आज तक ब्यूरो।
3: यूपी के जहां गाजियाबाद में एक शख्स की हत्या, उसके बाद हिंदू मुस्लिम का इसने रंग रूप ले लिया। परिवार का आरोप है कि बकरीद के बहाने बुलाकर बेटे की हत्या कर दी गई।
4: आज माफिया पिस्तौल लहराते हुए कोई धमका करके खुली जीप में चल करके किसी हिंदू को धमका नहीं सकता है। जन्माष्टमी हो, रक्षाबंधन हो, इन आयोजनों में अगर किसी ने व्यवधान डाला तो पर्व तो मनाई लेगा, लेकिन उसके बाद तय है कि रावण और कंस जैसी दुर्गति उसकी तय है जो व्यवधान डालने वाला है।
5: उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का यह बयान ऐसे समय आया जब 17 साल के हिंदू युवक की हत्या कर दी गई। गाजियाबाद के खोड़ा थाना क्षेत्र में सूर्या की बकरीद की शाम चाकुओं से गोद कर बेरहमी से हत्या कर दी जाती है और इल्जाम लगा सूर्या के ही मुस्लिम दोस्तों पर। हत्या के बाद गाजियाबाद के खोड़ा इलाके में तनाव है, पुलिस अलर्ट पर है। इस बीच लखनऊ में मुख्यमंत्री ने यूपी की कानून व्यवस्था पर अपनी सरकार के मॉडल का जिक्र एक बार फिर किया।
4: अहिंसा परमो धर्म, धर्म हिंसा तथैव च, यानी सामान्य जीवन में अहिंसा ही सर्वोच्च धर्म होना चाहिए, लेकिन अगर सामने वाला देश और समाज की सुरक्षा के लिए खतरा है तो उसके लिए अहिंसा नहीं चल सकती है, उसके लिए तो हिंसा ही हमें अंततः अपनानी पड़ेगी।
5: तो फिर गाजियाबाद की घटना कैसे हो गई? योगी सरकार के अपराध नियंत्रण के दावों पर यह घटना कितना बड़ा सवाल है। क्या यूपी की राजनीति में 2027 विधानसभा चुनाव के लिए नया नैरेटिव तैयार हो रहा है? गाजियाबाद में जिस शख्स पर 28 मई को चाकुओं से वार किया गया, उसने 29 मई को दम तोड़ा। इसी दिन यानी 29 मई को मऊ में मुख्यमंत्री ने दावा किया कि उनके राज में कोई हिंदुओं को धमका नहीं सकता।
4: आज माफिया पिस्तौल लहराते हुए कोई धमका करके खुली जीप में चल करके किसी हिंदू को धमका नहीं सकता है।
5: यूपी की कानून व्यवस्था पर मुख्यमंत्री योगी के 48 घंटे में दो बड़े बयान आए हैं। 29 मई को मुख्यमंत्री ने कहा कि आज माफिया किसी हिंदू को खुलेआम धमका नहीं सकता। 30 मई को मुख्यमंत्री ने कहा कि खतरा हो तो हिंसा भी अपनानी पड़ती है। एक तरफ अपराध पर सख्त कार्रवाई का दावा, दूसरी तरफ हिंसा पर राजनीतिक बहस। समाजवादी पार्टी कह रही है कि गाजियाबाद की घटना को हिंदू मुसलमान से ना जोड़ा जाए।
6: जिन लोगों ने भी अपराध किया है, चाहे वो किसी धर्म किसी जात के हों, उन पे कार्रवाई होनी चाहिए, सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, कानून के मुताबिक कार्रवाई होनी चाहिए। उत्तर प्रदेश में लगातार अपराध रुक नहीं रहे हैं, चाहे वो राजधानी लखनऊ की बात हो। अभी 3 दिन पहले एक प्रॉपर्टी डीलर को ही हत्या कर दी गई। अब ये गाजी

0: बात की घटना है, लगातार उत्तर प्रदेश में हत्याएं हो रही हैं, लूट हो रहे हैं, बलात्कार हो रहे हैं, और भारतीय जनता पार्टी की सरकार कानून व्यवस्था देने में पूरी तरह से विफल है।
1: 2027 का रास्ता लखनऊ से नहीं बल्कि ऐसी घटनाओं पर जनता की प्रतिक्रिया से भी तय होगा, इसलिए चुनावी नैरेटिव को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष अपने अपने हिसाब से परिभाषा गढ़ते हैं। क्या अपराध का धर्म होता है या फिर हर बड़ी वारदात के बाद राजनीति धर्म का चश्मा पहन लेती है। इस बीच उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य कहते हैं कि हत्या करने वालों को फांसी के तख्ते पर चढ़ाने के लिए कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
2: प्यारा कोई भी हो वो बक्सा नहीं जाएगा, उसको खोज निकाला जाएगा और हत्या करने वाले को फांसी पर चढ़ाने के लिए जो कार्रवाई होती है कानूनी, वो कानूनी कार्रवाई की जाएगी। सरकार कानून व्यवस्था को लेकर के बहुत गंभीर है और जिन लोगों ने ऐसा अपराध किया उनके खिलाफ कठोर से कठोर कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
1: योगी सरकार में सहयोगी पार्टी के मंत्री अखिलेश यादव से चुभते हुए सवाल पूछते हैं, उनके पीडीए समीकरण पर वार करते हैं।
3: अखिलेश यादव जी को उस पे बोलना चाहिए कि उनके वोटर हैं उन लोग ऐसी हत्या क्यों कर रहे हैं, कहीं मुसलमान मार रहा है तो कहीं यादव मार रहा है। उनका MOI जो फैक्टर है इस समय पूरे प्रदेश में आतंक मचाया हुआ है। बोलते हैं पीडीए इनका असफल है सिर्फ MOI फैक्टर को दबाने के लिए, लोगों का दिमाग भटकाने के लिए कि हमको सिर्फ MOI कहा जाता था, इस नाते पीडीए पीडीए चिल्ला रहे हैं।
1: गाजियाबाद की घटना उत्तर प्रदेश की राजनीति को उस चौराहे पर लाकर खड़ा कर देती है जहां सरकार अपने दावे गिनाती है और विपक्ष जमीन की हकीकत दिखाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन सवाल है क्या यूपी में जनता सुरक्षित महसूस करती है।
4: बात दिल्ली के जहांगीरपुर में हुए मर्डर की, जहां बकरीद की रात मामूली सा विवाद एक युवक की मौत की वजह बन गया।
5: दिल्ली में सिगरेट को लेकर विवाद में युवक की हत्या, सिगरेट लाने से मना किया तो चाकू मार दिया। सुनने में भले ही यह हैरानी भरा लगे लेकिन इस वारदात ने एक शख्स की जान ले ली। बकरीद के मौके पर जब 26 साल के अरबाज के घर त्योहार की खुशियां थी, इस वारदात के बाद चीख पुकार मच गई। पुलिस के मुताबिक रात 11 बजे के करीब अरबाज अपने घर के पास ही मौजूद था। इसी दौरान इलाके के कुछ लड़कों के साथ उसकी कहासुनी हुई जो देखते ही देखते हिंसक झड़प में बदल गई। इसके पीछे की जो वजह सामने आई है वो भी बेहद हैरानी भरी है।
6: उस टाइम पे कुछ नहीं हुआ था, एक सिगरेट मंगाने का विवाद था कि सिगरेट लाके दे, तो उन्होंने बोला तेरे बाप का नौकर हूँ क्या, तेरा क्या, तू जाके लिया, तू क्या बदमाश है क्या। तो उन्होंने बोला चल ठीक है। फिर इतने में उन्होंने अपने दोस्तों को फोन मिलाया, उस लड़के ने, 7-8 लोंडे आ गए। इस बात को लेकर उन्होंने उसको मार दिया कि तूने हमसे ऐसा क्यों कहा।
5: विवाद के बाद जब अरबाज को लड़कों ने घेरा तो उसने मदद के लिए अपने भाई को बुलाया। भाई के सामने ही आरोपियों ने अरबाज की हत्या कर दी।
7: अरबाज का बड़ा भाई था, अरबाज ने मेरे पास फोन करा रात में पूरे 10:59 पर कि भाई ऐसे ऐसे बात है, मेरे को लड़कों ने घेर रखा है, जल्दी से इधर आ जा गली के बाहर। मैं भागते हुए गया, जाके देखा तो उस टाइम पे ना इस पे सब सवार हुए पड़े थे लड़के, जो जो लड़के थे सब सवार हुए पड़े थे। ये 5 से 6 लड़के थे। उसी बीच में आवाज आती है कि चाकू निकाल, उसी बीच में आवाज आती है चाकू निकाल। अब जब चाकू निकालने की आवाज आती है तो मेरे भाई को ना गेट है हमारी गली के बाहर उसमें घुसा दिया। तो मैं गया, मैंने पीछे से पकड़ के खींचा उसे, लड़कों को, 2-3 लड़के उस पर चढ़े पड़े थे। जैसे मैंने उन्हें खींचा तो एक लड़का साइड में से निकल के गया, वो इतने में जाके उसके चाकू मार।
5: अरबाज जहांगीरपुरी के सी ब्लॉक का रहने वाला था और इलाके में ही एक सुनार की दुकान पर काम करता था। युवक की मौत के बाद घर में मातम है और इलाके में तनाव। पुलिस ने स्थानीय लोगों और चश्मदीदों से पूछताछ के आधार पर 3 नाबालिगों को हिरासत में लिया है। उनसे पूछताछ की जा रही है और वारदात में उनकी भूमिका की जांच हो रही है। आज तक ब्यूरो।
4: अब बात राजस्थान के, जहां पर मौसम की खौफनाक तस्वीर देखने को मिली। रेतीले तूफान ने राजस्थान के 5 जिलों को अपनी चपेट में ले लिया। आसमान में चारों ओर धूल का गुबार दिखाई दिया और इस पूरे धूल के गुबार ने पूरे शहर में अंधेरा सा कर दिया।
8: एक आम रिहायशी इलाका और सामने से आया रेत का बवंडर मानो पूरे शहर को अपने आगोश में ले लेना चाहता हो। यह हैरान करने वाली तस्वीरें राजस्थान के चुरू की है। रेत का गुब्बार धीरे धीरे शहर की ओर बढ़ता है, आसमान में सिर्फ धूल ही धूल नजर आती है। फिर शहर की गलियां, सड़क, घर, छत, हर कहीं ये धूल कब्जा करने लगती है। दिन में अंधेरा छाने लगता है। तूफान के कारण दिन में लोगों को वाहनों की हेडलाइट जलानी पड़ गई।
9: इस सीजन का जबरदस्त आंधी तूफान भयंकर है, उसमें मेरे हिसाब से लाखों करोड़ों का सरकार का नुकसान हुआ है और उसके बाद में जबरदस्त बारिश और पेड़ों का गिरना, बिजली का नुकसान होना बहुत ही जबरदस्त, मतलब इस मौसम में जो आंधी आई है बहुत ही जबरदस्त आई है।
10: और इस तूफान में आज आपको देखने को मिला कि मतलब कि तूफान की में आंधी काफी भयंकर थी, धूल भरी आंधी थी जिसके कारण पेड़ है और भी बहुत सारे पक्षियां वगैरह काफी इनका नुकसान हुआ।
8: इसके कई वीडियो सामने आए हैं, इनमें लोग भागकर घरों में जाते दिखे और घरों को बंद कर दिया। इस दौरान 60 से 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आंधी चली जो करीब 30 मिनट तक इलाके में कोहराम मचाती रही। हालांकि तूफान की ऊंचाई का आधिकारिक आंकड़ा सामने नहीं आया है। इस रेतीले तूफान ने राजस्थान के 5 जिलों को अपनी चपेट में ले लिया। श्री गंगानगर, बीकानेर, चुरू, हनुमानगढ़ और सीकर के आसमान में रेत का गुब्बार देखने को मिले। करीब 200 वर्ग किलोमीटर का इलाका इससे प्रभावित नजर आया।
11: रेत का बाउंडर बहुत भारी और बहुत खतरनाक था। मैंने अपनी जिंदगी 15-20 सालों में कभी ऐसा माहौल नहीं देखा था और दिन में एकदम आंधी आई ऐसे तो मानो साफ हो गई। ये कहीं ना कहीं अपने प्रकृति से जो पर्यावरण पौधे अपने काट रहे हैं और ये खिलवाड़ कर रहे हैं, इसके लिए अपने सजग रहने की जरूरत है।
12: एकदम से बिल्कुल काला काला हो गया सिस्टम, जैसे रात हो गई होती है एकदम से। इतनी तेज अंधेरी थी, उसका जो किलोमीटर के हिसाब से बताया गया था वो 80-90 किलोमीटर के हिसाब से उसका विंड का बताया गया था और एकदम से फुल अंधेरी थी। और जहाँ पर जो दरखत है छोटे छोटे वो इन्हें लगे, कुछ दरखत है वो टूट भी गए थे।
8: पाकिस्तान से उठे इस तूफान ने रेगिस्तान का मौसम पूरी तरह से बदल दिया। आज तक ब्यूरो।
4: बीते दो दिनों से बदले मौसम से उत्तर भारत के लोगों को प्रचंड गर्मी की मार से राहत मिली। कई इलाकों में तेज हवाएं चली, कई इलाकों में भारी बारिश हुई। मौसम विभाग ने अब 1-2 दिनों तक मौसम में बदलाव के ही संकेत जारी किए हैं और कई इलाकों में बारिश की संभावना व्यक्त की है।
13: लेकर उत्तराखंड, हिमाचल से लेकर कश्मीर, यूपी, बंगाल और छत्तीसगढ़ तक मौसम का ऐसा रौद्र रूप देखने को मिला कि जनजीवन पूरी तरह अस्त व्यस्त हो गया। सबसे पहले बात राजस्थान की, यहाँ जयपुर में तेज बारिश और ओलावृष्टि ने शहर की रफ्तार पर ब्रेक लगा दिया। धौलपुर में 1.5 घंटे की मूसलाधार बारिश ने हालात बिगाड़ दिए। सड़कें, कॉलोनियां और गली मोहल्ले पानी में डूब गए। अब बात उत्तराखंड की, यहाँ देहरादून में तेज बारिश ने मौसम बदल दिया लेकिन शहर की रफ्तार थम गई। टिहरी गढ़वाल में बारिश और भारी ओलावृष्टि ने किसानों की कमर तोड़ दी। वहीं धनौल्टी में देर रात आए तूफान ने भारी तबाही मचाई। 20 से 30 देवदार के पेड़ गिर गए, इको पार्क की टेंट शेड उड़ गई और बर्मा ब्रिज पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। बागेश्वर में लगातार बारिश के बाद नदियां उफान पर आ गईं। गोमती नदी पर बने बैजनाथ बैराज के गेट खोलने पड़े और प्रशासन ने सायरन बजाकर लोगों को अलर्ट किया। जम्मू कश्मीर की श्रीनगर गुलमर्ग रोड पर तेज आंधी से कई पेड़ उखड़ गए, सड़कें बंद करनी पड़ी और ट्रैफिक रोक दिया गया। बात उत्तर प्रदेश की करें तो आगरा में तेज आंधी और तूफान के साथ झमाझम बारिश हुई, पेड़ गिर गए, टिन शेड उड़ गए और कई इलाकों में जलभराव से ट्रैफिक थम गया। मौसम विभाग ने आने वाले दिनों में और आंधी बारिश की चेतावनी दी है। आज तक ब्यूरो।
4: अब रुख करते हैं मिडिल ईस्ट की ओर। अगर अमेरिका और ईरान डील के इतने ही करीब हैं तो दोनों के सुर अलग अलग क्यों हैं? आखिर क्यों अमेरिका लगातार कह रहा है कि वो समझौते के बेहद करीब है जबकि ईरान आधिकारिक तौर पर इस पर चुप्पी साधे हुए है?
14: डील पर अमेरिका और ईरान के जुदा हैं बयान, सुर अलग हैं तो फैसला कैसे एक होगा? सस्पेंस भारी, आ रही है बम बरसाने की बारी। क्या अमेरिका और ईरान में सच में कुछ ही घंटों में डील होने वाली है या फिर महायुद्ध पार्ट 2 जल्द शुरू होने वाला है? कहने को तो अमेरिका की टॉप लीडरशिप हर दिन ये उम्मीद जगा रही है कि वो डील के बेहद करीब है।
15: वो look at what we've already accomplished here, assuming that we're able to get to a final agreement here, we're reopening the Straits of Hormuz. We've already decimated their conventional military, and we're in a position where we could substantially set back their nuclear program, not just during the term of this president, but over the long term. That's a very, very good thing for the American people. So we're not there yet, but we're very close. We're going to keep on working at it. Thank you, guys. Have a good evening.
16: राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति ही नहीं, रक्षा मंत्री भी हर जगह जाकर यही कह रहे हैं कि डील जल्द ही होने वाली है और ये एक शानदार डील होगी। लेकिन सिंगापुर जाने से पहले रक्षा मंत्री ईरान को धमकी भी देकर गए हैं, यानी अमेरिका को भी ये अंदेशा तो है कि हो सकता है कि डील उनके मुताबिक ना हो और एक बार फिर रणभूमि में उतरना पड़े।
17: And when you do your job, the adversaries know what's coming for them. And that's when they either step up and meet the fury of the American military or back down, and you create a whole bunch of options for America and the president with what he wants to execute on behalf of the American people. So right now, hey, Iran has a choice: meet at the table with the president and give up their nuclear program. And as the president said, I'm lost on time, 2 days ago now, in the cabinet meeting, I'm sitting right next to him. He looks in the camera and says, well, Iran can either do it the right way with a deal across the table, or they can deal with my guy on the left. That happened to be me. But it's not me. It's you guys. It's what you're ready to do.
16: लेकिन ईरान की तरफ से कोई ऐसे संकेत नहीं मिल रहे हैं। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल भगाई ने सरकारी मीडिया से बातचीत में कहा है कि हॉर्मुज पर फैसला ईरान और ओमान को लेना चाहिए और इसे खोलने का फैसला भी अमेरिका नाकेबंदी हटने के बाद ही होना चाहिए। जो भी हो, डील को लेकर हलचल तो लगातार बढ़ रही है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सिचुएशन रूम में 2 घंटे तक अहम मीटिंग की है। इस मीटिंग में ईरान के साथ डील को लेकर कई पहलुओं पर बात की गई। मीटिंग में ट्रंप ने साफ कहा कि किसी भी कीमत पर ईरान को परमाणु बम बनाने की इजाजत नहीं दी जा सकती। उसके अलावा उसे हॉर्मुज को बिना टोल बंदी के खोलना ही पड़ेगा। ईरान की न्यूज एजेंसी फोर्स के मुताबिक ईरान का मानना है कि ट्रंप मनगढ़ंत जीत को दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। इसके अलावा ईरानी अधिकारियों के हवाले से ये भी दावा किया गया है कि डील में एटमी मुद्दे का जिक्र नहीं है। लेकिन ईरान की 12 बिलियन अमेरिकी डॉलर की फीस संपत्ति छोड़ने का समझौता जरूर है। अभी ट्रंप ने डील के बारे में अंतिम फैसला नहीं लिया है। अगर ट्रंप ने समझौते पर मुहर लगा दी तो 60 दिन के लिए सीजफायर का ऐलान किया जा सकता है ताकि हॉर्मुज को खोलने की प्रक्रिया शुरू की जा सके। आज तक ब्यूरो।
4: उसको लेकर बातें कितनी भी हो रही हो, लेकिन सच है कि अमेरिका और ईरान दोनों ही इस मुद्दे पर अड़े हैं। कहने को अमेरिकी नाकेबंदी चरणबद्ध तरीके से हट जाएगी, लेकिन यूएस नेवी की ताजा चेतावनी ने हालात हाहाकारी होने के संकेत दिए हैं।

डील पर काम तेज, कहां फंसा है पेच? हॉर्मुज में यूएस का प्रण, ईरान के खिलाफ आखिरी रण। जहाजों को चेताया, समंदर में आने वाला है बवंडर। इस चेतावनी को ध्यान से पढ़िए, इसे यूएस नेवी सेंट्रल कमांड ने जारी किया है। यह हॉर्मुज में मौजूद सारे जहाजों के लिए है। अमेरिकन नेवी ने चेतावनी जारी की है कि ईरान के खतरनाक और गैर कानूनी कामों को रोकने के लिए जल्द ही बड़ा ऑपरेशन शुरू होने वाला है। हो सकता है कि जवाब में ईरान भी हमला करे, लिहाजा हॉर्मुज में जहाजों को मुश्किल हालातों के लिए तैयार रहना चाहिए। चेतावनी में जिन इलाकों में सतर्क रहने की बात कही गई है, उनमें अरब की खाड़ी, हॉर्मुज, ओमान की खाड़ी और उत्तरी अरब सागर शामिल है। संकेत साफ है, हॉर्मुज की लहरें अंदर से भी अशांत है और अब ऊपर से भी एक बार फिर शांति भंग होने के आसार बढ़ गए हैं। ईरान हर हाल में अमेरिका की नाकेबंदी को जल्द से जल्द हटाने की मांग कर रहा है और अमेरिका की मांग है कि टोल वसूली बंद की जाए और जहाजों की आवाजाही शुरू की जाए। इस बीच डील को लेकर अभी भी सस्पेंस बना हुआ है। ना तो हॉर्मुज को लेकर अभी कोई फैसला हुआ है और ना ही यूरेनियम को लेकर।

0: बंगाल के सोनारपुर में अभिषेक बैनर्जी पर हमले से बवाल, लोगों ने फेंके पत्थर अंडे कपड़े फाड़े, कहा मुझे मारने की थी साजिश, विपक्ष ने बीजेपी पर उठाए सवाल, सोमवार को ममता करेंगे प्रदर्शन। कर्नाटक के अगले मुख्यमंत्री होंगे डीके शिव कुमार, कांग्रेस विधायक दल की बैठक में चुने गए नेता 3 जून को 8 से 10 मंत्रियों के साथ ले सकते हैं शपथ। सीएम योगी का बड़ा बयान, कहा कि अहिंसा ही परम धर्म, लेकिन जब कोई देश समाज के लिए खतरा है तो अपनानी पड़ती है हिंसा की नीति, समाजवादी पार्टी बोली यूपी में बढ़ रहा है अपराध। गाजियाबाद में अंतर्राष्ट्रीय पैरा एथलीट चिराग त्यागी की हत्या, साथी खिलाड़ी पर गोली मारने का आरोप, अगले महीने जापान में खेलने वाले थे टूर्नामेंट। राजस्थान के कई शहरों में रेतीले तूफान से दहशत, धूल भरी आंधी से दिन में छाया अंधेरा, दिल्ली एनसीआर में बारिश से गिरा तापमान। बंगाल के सोनारपुर में अभिषेक बैनर्जी पर हमला हुआ, चुनावी हिंसा, एक पीड़ित से मिलने के लिए अभिषेक पहुंचे थे और इसी दौरान अभिषेक से हाथापाई हुई, उन पर अंडे फेंके गए और काफी देर तक बवाल मचता रहा।
1: जो अभिषेक बनर्जी पश्चिम बंगाल में सत्ता का केंद्र होते थे, आज उन्हें बीच सड़क पर पीटा जा रहा है। ये पश्चिम बंगाल की सियासत का रक्त चरित्र है। सत्ता बदली लेकिन नहीं बदली तो पश्चिम बंगाल में सियासी रंजिश की तस्वीर, जिसकी चपेट में ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी आ गए। बीच सड़क पर लोगों ने अभिषेक को जमकर पीटा, गुस्साई भीड़ ने अभिषेक बनर्जी पर अंडे फेंके, कपड़े फाड़ दिए। हालात इतने बिगड़ गए कि अभिषेक को हेलमेट पहनकर वहां से निकलना पड़ा।
2: दे वांट टू किल मी एरा आमादेर प्राणे मारते चाहे, मेरे दिख अमर मृतदेह उद्धार होके खान थेके, किंतु आमी जायगा छेड़े जाबो ना।
1: अभिषेक बनर्जी विधानसभा चुनाव के बाद हुई हिंसा के पीड़ित लोगों और उनके परिवारों से मिलने के लिए सोनार गए थे, जहां उन पर यह हमला हुआ। अभिषेक ने इसे बीजेपी की साजिश बताया। उधर स्थानीय लोगों का दावा कि ये हमला किसी राजनीति से प्रेरित नहीं है, बल्कि ये उनका गुस्सा टीएमसी सरकार के खिलाफ है। इलाके में सरकार ने कोई विकास का काम नहीं किया, तो वहीं टीएमसी के कार्यकर्ताओं ने कई सालों तक गुंडागर्दी की, जिसे लेकर ये गुस्सा फूटा।
3: चोर को कैसे नारे, उसको क्या फूलों से स्वागत करेंगे, चोर को अंडा फेंक के मारेंगे। अभी तो हाँ, वो भी बहुत कम हो गया। वो ये राम जी की धरती है, वो राम जी की नाराबाजी करने के माना किया था बांग्लादेश से, वो खुद है, उसका जो मुख्यमंत्री पीसी है वो भी वो एक बांग्लादेशी है।
4: वो लोग अभय मरने का टाइम तो वहाँ भेजा नहीं, वहाँ भेजा है, एक तो डॉक्टर को मारा है वहाँ, उस टाइम वो भेजा नहीं, अभी एक तो चमचा मर गया इसलिए भेजा है, यहाँ इसके लिए भेजा है, हमारा रास्ता देखता है आज 15 मधु में ये रास्ता कैसे चलता है, हम लोग बाल बच्चा कर लिए।
1: अभिषेक बनर्जी पर हुआ हमला एक बार फिर पश्चिम बंगाल में सियासी हिंसा को लेकर सवाल खड़े करता है। तपस सेन गुप्ता, दक्षिण 24 परगना, आज तक।
0: बिहार की राजनीति में सरकारी आवास को लेकर नया घमासान छिड़ गया है। पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी ने साफ संकेत दिए हैं कि वो 10 सर्कुलर रोड स्थित सरकारी आवास खाली करने के मूड में नहीं है, जबकि पिछले 6 महीनों में उन्हें लगातार नोटिस भेजे जा रहे हैं।
5: हम तो चाहते हैं कि सम्राट चौधरी पूरा बिहार के फोर्स बुला के आ, हमारा 10 नंबर खाली करा दे, हम नहीं खाली करेंगे, आवे हमारा सामने।
6: बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी ने बिहार सरकार को खुली चुनौती दी है कि वो अपना सरकारी आवास नहीं खाली करेंगी। पिछले 6 महीने से 10 सर्कुलर रोड आवास को खाली कराने के लिए नोटिस दिया जा रहा है, लेकिन राबड़ी के तेवर बताते हैं कि ये आवास बिहार की सियासत का नया अखाड़ा बनता जा रहा है।
7: अरे कहाँ इसमें वो कह रही, इसमें तो जो कानून है, जो नियम है, उसके हिसाब से काम होता है और सब लोगों को नियम कानून का पालन करना चाहिए।
1: बिहार विधानसभा चुनाव खत्म होने के बाद 25 नवंबर 2025 को राबड़ी देवी को नया आवास 39 हार्डिंग रोड पर आवंटित किया गया। उस वक्त राबड़ी देवी को लेटर भी भेजा गया, लेकिन 6 महीना बीत जाने के बाद भी राबड़ी देवी ने 10 सर्कुलर रोड घर को खाली नहीं किया है। ये बंगला पशु संसाधन मंत्री नंद किशोर यादव का आवंटित है, जिसे लेकर राबड़ी देवी को 29 मई को नया नोटिस भेजा गया।
8: मैं तो कह रहा हूँ कि वो मुख्यमंत्री रहे हैं, 1-2 साल नहीं 7 साल रहे हैं, तो उनको तो कानून का पालन करना ही चाहिए। बयान निंदनीय है, ये टकराव का बयान है, आपत्तिजनक है, और क्या बात करते हैं, पूरे बिहार के फोर्स की जरूरत है, एक दरोगा जाके निकाल देगा।
1: राबड़ी देवी करीब 20 वर्षों से 10 सर्कुलर रोड आवास में रहती आई हैं। यह आवास काफी बड़ा है, इससे लालू परिवार की यादें भी जुड़ी हैं।
9: राबड़ी देवी जी, ये जंगल राज नहीं है, ये कानून का राज है, एनडीए की सरकार है। आपको जो इलाज कराना होता है तो सिंगापुर जाते हैं, पोता का जन्मदिन मनाना होता है तो दिल्ली नोएडा भागते हैं, और जब लूटने की बारी आती है तो आप बिहार में रहना चाहते हैं।
1: नवंबर 2005 में चुनाव हारने के बाद राबड़ी देवी को यह आवास आवंटित किया गया था। उस समय पूर्व मुख्यमंत्री को भी आवास आवंटित होता था, लेकिन जब 2019 में अपने आवास के मामले को लेकर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव पटना हाईकोर्ट गए, तब कोर्ट ने सख्त निर्देश दिया था कि कोई भी पूर्व मुख्यमंत्री या पूर्व उप मुख्यमंत्री पद से हटने के बाद सरकारी बंगला नहीं रख सकता। इसके बाद से 10 सर्कुलर रोड राबड़ी देवी को बिहार विधान परिषद के नेता प्रतिपक्ष के रूप में आवंटित किया गया, जिसे अब उन्हें खाली करना होगा। शशि भूषण, पटना आज तक।
0: अब बात एनटीए की, जिसकी भूमिका पर एक बार फिर सवाल खड़े हो रहे हैं। एनटीए की ओर से आयोजित सीयूईटी यूजी परीक्षा में एक बार फिर तकनीकी खराबी का मामला सामने आया।
10: अभी निकल के आना 2 घंटे।
11: परीक्षा केंद्र के बाहर मचा ये हंगामा एक बार फिर एनटीए के कामकाज पर सवाल खड़े कर रहा है। आज सीयूईटी यूजी परीक्षा के केंद्रों पर तकनीकी खराबी की शिकायत आई, जिसके बाद सुबह 9 बजे शुरू होने वाली परीक्षा कई केंद्रों पर करीब 11:23 पर शुरू हुई। वहीं एनटीए ने दोपहर की शिफ्ट का टाइम भी बदल दिया, जिसके चलते अभ्यर्थियों और अभिभावक परेशान नजर आए। अब एनटीए इस पर माफी मांग रहा है, तो वहीं विपक्ष एक बार फिर एनटीए की भूमिका पर सवाल खड़े कर रहा है। 4 परीक्षाएं, 1 करोड़ बच्चे, एक भी ईमानदारी से नहीं हो पाई। दावे विश्व गुरु के, मगर देश में एक परीक्षा नहीं करवा सकते। मोदी जी ने पूरी शिक्षा व्यवस्था तबाह कर दी है। जिस पीढ़ी का भविष्य आप बर्बाद कर रहे हैं, वही पीढ़ी आपका हिसाब करेगी।
12: ये देखने में आ रहा है कि एनटीए ने सीयूईटी टेस्ट का भी मजाक बना के रख दिया है। सीयूईटी टेस्ट में करीब 18 लाख बच्चे अलग अलग यूनिवर्सिटीज में बैठने के लिए टेस्ट देते हैं। आज सेंटर पर पहुंचे, उनका टाइम बदल दिया गया, किसी का सेंटर बदल दिया जा रहा है, किसी की डेट बदल दी जा रही है, ऐसी डेट पे एग्जाम दे दिए जाते हैं जिसमें वो सेंटर फ्री नहीं है, पूरा का पूरा मिसमैनेजमेंट है।
11: उधर सरकार के नीट पेपर में सेना की मदद के फैसले पर भी विपक्ष सवाल खड़े कर रहा है।
13: कल हमारे देश की सरकार ने ऐलान किया है कि अब नीट के पेपर को लीक होने से बचाने के लिए एयरफोर्स के जहाज से उसको ट्रांसपोर्ट करेंगे, एयरफोर्स के बुलेट प्रूफ ट्रकों से उसको ट्रांसपोर्ट करेंगे। मजाक बना रखा है, हमें बेवकूफ समझ रखा है। पूरी दुनिया में इतने बड़े बड़े पेपर होते हैं, कहीं सुना है कि एयरफोर्स से उनको ट्रांसपोर्ट किया जाता है?
11: बहरहाल परीक्षाओं को लेकर एनटीए पूरी तरह फेल नजर आ रहा है, जहां उसकी नाकामी एक बार फिर आज सीयूईटी यूजी के पेपर में खुलकर सामने आ गई। आज तक ब्यूरो।
0: यूपी के जहां गाजियाबाद में एक शख्स की हत्या, उसके बाद हिंदू मुस्लिम का इसने रंग रूप ले लिया। परिवार का आरोप है कि बकरीद के बहाने बुलाकर बेटे की हत्या कर दी गई।
14: आज माफिया पिस्तौल लहराते हुए कोई धमका करके खुली जीप में चल करके किसी हिंदू को धमका नहीं सकता है। जन जन्माष्टमी हो, रक्षाबंधन हो, इन आयोजनों में अगर किसी ने व्यवधान डाला तो पर्व तो मनाई लेगा, लेकिन उसके बाद ये तय है कि रावण और कंस जैसी दुर्गति उसकी तय है जो व्यवधान डालने वाला है।
1: उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का यह बयान ऐसे समय आया जब 17 साल के हिंदू युवक की हत्या कर दी गई। गाजियाबाद के खोड़ा थाना क्षेत्र में सूर्या की बकरीद की शाम चाकुओं से गोद कर बेरहमी से हत्या कर दी जाती है और इल्जाम लगा सूर्या के ही मुस्लिम दोस्तों पर। हत्या के बाद गाजियाबाद के खोड़ा इलाके में तनाव है, पुलिस अलर्ट पर है। इस बीच लखनऊ में मुख्यमंत्री ने यूपी की कानून व्यवस्था पर अपनी सरकार के मॉडल का जिक्र एक बार फिर किया।
14: अहिंसा परमो धर्म, धर्म हिंसा तथैव च, यानी सामान्य जीवन में अहिंसा ही सर्वोच्च धर्म होना चाहिए, लेकिन अगर सामने वाला देश और समाज की सुरक्षा के लिए खतरा है तो उसके लिए अहिंसा नहीं चल सकती है, उसके लिए तो हिंसा ही हमें अंततः अपनानी पड़ेगी।
1: तो फिर गाजियाबाद की घटना कैसे हो गई? योगी सरकार के अपराध नियंत्रण के दावों पर यह घटना कितना बड़ा सवाल है। क्या यूपी की राजनीति में 2027 विधानसभा चुनाव के लिए नया नैरेटिव तैयार हो रहा है? गाजियाबाद में जिस शख्स पर 28 मई को चाकुओं से वार किया गया उसने 29 मई को दम तोड़ा। इसी दिन यानी 29 मई को मऊ में मुख्यमंत्री ने दावा किया कि उनके राज में कोई हिंदुओं को धमका नहीं सकता।
14: आज माफिया पिस्तौल लहराते हुए कोई धमका करके खुली जीप में चल करके किसी हिंदू को धमका नहीं सकता है।
1: यूपी की कानून व्यवस्था पर मुख्यमंत्री योगी के 48 घंटे में दो बड़े बयान आए हैं। 29 मई को मुख्यमंत्री ने कहा कि आज माफिया किसी हिंदू को खुलेआम धमका नहीं सकता। 30 मई को मुख्यमंत्री ने कहा कि खतरा हो तो हिंसा भी अपनानी पड़ती है। एक तरफ अपराध पर सख्त कार्रवाई का दावा, दूसरी तरफ हिंसा पर राजनीतिक बहस। समाजवादी पार्टी कह रही है कि गाजियाबाद की घटना को हिंदू मुसलमान से न जोड़ा जाए।
15: जिन लोगों ने भी अपराध किया है, चाहे वो किसी धर्म किसी जात के हों, उन पे कार्रवाई होनी चाहिए, सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, कानून के मुताबिक कार्रवाई होनी चाहिए। उत्तर प्रदेश में लगातार अपराध रुक नहीं रहे हैं, चाहे वो राजधानी लखनऊ की बात हो। अभी 3 दिन पहले एक प्रॉपर्टी डीलर को ये हत्या कर दी गई, अब ये गाजियाबाद की घटना है। लगातार उत्तर प्रदेश में हत्याएं हो रही हैं, लूट हो रहे हैं, बलात्कार हो रहे हैं, और भारतीय जनता पार्टी की सरकार कानून व्यवस्था देने में पूरी तरह से विफल है।
1: 2027 का रास्ता लखनऊ से नहीं बल्कि ऐसी घटनाओं पर जनता की प्रतिक्रिया से भी तय होगा, इसलिए चुनावी नैरेटिव को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष अपने अपने हिसाब से परिभाषा गढ़ते हैं। क्या अपराध का धर्म होता है या फिर हर बड़ी वारदात के बाद राजनीति धर्म का चश्मा पहन लेती है? इस बीच उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य कहते हैं कि हत्या करने वालों को फांसी के तख्ते पर चढ़ाने के लिए कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
16: प्यारा कोई भी हो, वो बक्सा नहीं जाएगा, उसको खोज निकाला जाएगा और हत्या करने वाले को फांसी पर चढ़ाने के लिए जो कार्रवाई होती है कानूनी, वो कानूनी कार्रवाई की जाएगी। सरकार कानून व्यवस्था को लेकर के बहुत गंभीर है और जिन लोगों ने ऐसा अपराध किया उनके खिलाफ कठोर से कठोर कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
1: योगी सरकार में सहयोगी पार्टी के मंत्री अखिलेश यादव से चुभते हुए सवाल पूछते हैं, उनके पीडीए समीकरण पर वार करते हैं।
17: अखिलेश यादव जी को उस पे बोलना चाहिए कि उनके वोटर हैं, उन लोग ऐसी हत्या क्यों कर रहे हैं? कहीं मुसलमान मार रहा है तो कहीं यादव मार रहा है। उनका MOI जो फैक्टर है इस समय पूरे प्रदेश में आतंक मचाया हुआ है। बोलते हैं पीडीए इनका असफल है सिर्फ MOI फैक्टर को दबाने के लिए, लोगों का दिमाग भटकाने के लिए कि हमको सिर्फ MOI कहा जाता था, इस नाते पीडीए चिल्ला रहे हैं।
1: गाजियाबाद की घटना उत्तर प्रदेश की राजनीति को उस चौराहे पर लाकर खड़ा कर देती है जहां सरकार अपने दावे गिनाती है और विपक्ष जमीन की हकीकत दिखाने की कोशिश कर रहा है।
18: लेकिन सवाल है क्या यूपी में जनता सुरक्षित महसूस करती है।
0: बात दिल्ली के जहांगीरपुर में हुए मर्डर की, जहां बकरीद की रात मामूली सा विवाद एक युवक की मौत की वजह बन गया।
1: दिल्ली में सिगरेट को लेकर विवाद में युवक की हत्या। सिगरेट लाने से मना किया तो चाकू मार दिया। सुनने में भले ही यह हैरानी भरा लगे, लेकिन इस वारदात ने एक शख्स की जान ले ली। बकरीद के मौके पर जब 26 साल के अरबाज के घर त्योहार की खुशियां थी, इस वारदात के बाद चीख पुकार मच गई। पुलिस के मुताबिक रात 11 बजे के करीब अरबाज अपने घर के पास ही मौजूद था। इसी दौरान इलाके के कुछ लड़कों के साथ उसकी कहासुनी हुई, जो देखते ही देखते हिंसक झड़प में बदल गई। इसके पीछे की जो वजह सामने आई है वो भी बेहद हैरानी भरी है।
19: उस टाइम पे कुछ नहीं हुआ था, एक सिगरेट मंगाने का विवाद था कि सिगरेट ला के दे। तो उन्होंने बोला तेरे बाप का नौकर हूँ क्या, तेरा क्या, तू जाके लिया, तू क्या बदमाश है क्या। तो उन्होंने बोला चल ठीक है। फिर इतने में उन्होंने अपने दोस्तों को फोन मिलाया, उस लड़के ने, 7-8 लोंडे आ गए। इस बात को लेकर उन्होंने उसको मार दिया कि तूने हमसे ऐसा क्यों कहा।
1: विवाद के बाद जब अरबाज को लड़कों ने घेरा तो उसने मदद के लिए अपने भाई को बुलाया। भाई के सामने ही आरोपियों ने अरबाज की हत्या कर दी।
20: अरबाज का बड़ा भाई था, अरबाज ने मेरे पास फोन करा रात में पूरे 10:59 पर कि भाई ऐसे ऐसे बात है, मेरे को लड़कों ने गिर रखा, जल्दी से इधर आ जा गली के बाहर। मैं भागते हुए गया, जाके देखा तो उस टाइम पे ना इस पे सब सवार हुए पड़े थे लड़के, जो लड़के थे सब सवार हुए पड़े थे। ये 5-6 लड़के थे। उसी बीच में आवाज आती है कि चाकू निकाल, उसी बीच में आवाज आती है चाकू निकाल। अब जब चाकू निकालने के बाद आती है तो मेरे भाई को ना गेट है हमारी गली के बाहर, उसमें घुसा दिया। तो मैं गया, मैंने पीछे से पकड़ के खींचा उसे, लड़कों को, 2-3 लड़के उस पर चढ़े पड़े थे। जैसे मैंने उन्हें खींचा तो एक लड़का साइड में से निकल के गया, वो इतने में जाके उसके चाकू मार दिया।
1: अरबाज जहांगीरपुरी के सी ब्लॉक का रहने वाला था और इलाके में ही एक सुनार की दुकान पर काम करता था। युवक की मौत के बाद घर में मातम है और इलाके में तनाव। पुलिस ने स्थानीय लोगों और चश्मदीदों से पूछताछ के आधार पर 3 नाबालिगों को हिरासत में लिया है। उनसे पूछताछ की जा रही है और वारदात में उनकी भूमिका की जांच हो रही है। आज तक ब्यूरो।
0: अब बात राजस्थान के, जहां पर मौसम की खौफनाक तस्वीर देखने को मिली। रेतीले तूफान ने राजस्थान के 5 जिलों को अपनी चपेट में ले लिया। आसमान में चारों ओर धूल का गुबार दिखाई दिया और इस पूरे धूल के गुबार ने पूरे शहर में अंधेरा सा कर दिया।
11: एक आम रिहायशी इलाका और सामने से आया रेत का बवंडर मानो पूरे शहर को अपने आगोश में ले लेना चाहता हो। ये हैरान करने वाली तस्वीरें राजस्थान के चुरू की है। रेत का गुब्बार धीरे धीरे शहर की ओर बढ़ता है। आसमान में सिर्फ धूल ही धूल नजर आती है। फिर शहर की गलियां, सड़क, घर, छत, हर कहीं ये धूल कब्जा करने लगती है। दिन में अंधेरा छाने लगता है। तूफान के कारण दिन में लोगों को वाहनों की हेडलाइट जलानी पड़ गई।
21: इस सीजन का जबरदस्त आंधी तूफान भयंकर है, उसमें मेरे हिसाब से लाखों करोड़ों का सरकार का नुकसान हुआ है और उसके बाद में जबरदस्त बारिश और पेड़ों का गिरना, बिजली का नुकसान होना, बहुत ही जबरदस्त, मतलब इस मौसम में जो आंधी आई है बहुत ही जबरदस्त आई है।
22: और इस तूफान में आज आपको देखने को मिला कि मतलब कि तूफान की में आंधी काफी भयंकर थी, धूल भरी आंधी थी, जिसके कारण पेड़ है और भी बहुत सारे पक्षी वगैरह काफी इनका नुकसान हुआ।
11: इसके कई वीडियो सामने आए हैं। इनमें लोग भागकर घरों में जाते दिखे और घरों को बंद कर दिया। इस दौरान 60-80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आंधी चली, जो करीब 30 मिनट तक इलाके में कोहराम मचाती रही। हालांकि तूफान की ऊंचाई का आधिकारिक आंकड़ा सामने नहीं आया है। इस रेतीले तूफान ने राजस्थान के 5 जिलों को अपनी चपेट में ले लिया। श्री गंगानगर, बीकानेर, चुरू, हनुमानगढ़ और सीकर के आसमान में रेत का गुब्बार देखने को मिले। करीब 200 वर्ग किलोमीटर का इलाका इससे प्रभावित नजर आया।
23: रेत का बाउंडर बहुत भारी और बहुत खतरनाक था। मैंने अपनी जिंदगी 15-20 सालों में कभी ऐसा माहौल नहीं देखा था और दिन में एकदम अंधी आई, ऐसे तो मानो शाम हो गई। ये कहीं न कहीं अपने प्रकृति से जो पर्यावरण पौधे अपने काट रहे हैं और ये खिलवाड़ कर रहे हैं, इसके लिए अपने सजग रहने की जरूरत है।
24: और एकदम से बिल्कुल काला काला हो गया सिस्टम, जैसे रात हो गई होती है एकदम से। इतनी तेज अंधेरी थी,
2: उसका जो किलोमीटर के हिसाब से बताया गया था वो 80-90 किलोमीटर के हिसाब से उसका विंड का बताया गया था, और एकदम से फुल अंधेरी थी, और जहाँ पर जो दरखत है छोटे छोटे वो हिलने लगे, कुछ दरखत है वो टूट भी गए थे।
11: पाकिस्तान से उठे इस तूफान ने रेगिस्तान का मौसम पूरी तरह से बदल दिया। आज तक ब्यूरो।
0: अब रुख करते हैं मिडिल ईस्ट की ओर। अगर अमेरिका और ईरान डील के इतने ही करीब हैं तो दोनों के सुर अलग अलग क्यों हैं? आखिर क्यों अमेरिका लगातार कह रहा है कि वो समझौते के बेहद करीब है जबकि ईरान आधिकारिक तौर पर इस पर चुप्पी साधे हुए है?
3: डील पर अमेरिका और ईरान के जुदा हैं बयान, सुर अलग हैं, तो फैसला कैसे एक होगा? सस्पेंस भारी, आ रही है बम बरसाने की बारी। क्या अमेरिका और ईरान में सच में कुछ ही घंटों में डील होने वाली है या फिर महायुद्ध पार्ट टू जल्द शुरू होने वाला है? कहने को तो अमेरिका की टॉप लीडरशिप हर दिन ये उम्मीद जगा रही है कि वो डील के बेहद करीब है।
4: That we're able to get to a final agreement here. We're reopening the Straits of Hormuz. We've already decimated their conventional military, and we're in a position where we could substantially step back their nuclear program, not just during the term of this president, but over the long term. That's a very, very good thing for the American people. So we're not there yet, but we're very close. We're going to keep on working at it. Thank you, guys. Have a good evening.
3: राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति ही नहीं, रक्षा मंत्री भी हर जगह जाकर यही कह रहे हैं कि डील जल्द ही होने वाली है और ये एक शानदार डील होगी। लेकिन सिंगापुर जाने से पहले रक्षा मंत्री ईरान को धमकी भी देकर गए हैं, यानी अमेरिका को भी ये अंदेशा तो है कि हो सकता है कि डील उनके मुताबिक ना हो और एक बार फिर रणभूमि में उतरना पड़े।
5: And when you do your job, the adversaries know what's coming for them. And that's when they either step up and meet the fury of the American military or back down and you create a whole bunch of options for America. The president with what he wants to execute on behalf of the American people. So right now, hey, Iran has a choice: meet at the table with the president and give up their nuclear program. And as the president said, I'm lost on time. 2 days ago now, in the cabinet meeting, I'm sitting right next to him. He looks in the camera and says, "Well, Iran can either do it the right way with a deal across the table, or they can deal with my guy on the left. That happened to be me." But it's not me, it's you guys. It's what you're ready to do.
3: लेकिन ईरान की तरफ से कोई ऐसे संकेत नहीं मिल रहे हैं। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल भगाई ने सरकारी मीडिया से बातचीत में कहा है कि होर्मुज पर फैसला ईरान और ओमान को लेना चाहिए और इसे खोलने का फैसला भी अमेरिका नाकेबंदी हटने के बाद ही होना चाहिए। जो भी हो, डील को लेकर हलचल तो लगातार बढ़ रही है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सिचुएशन रूम में 2 घंटे तक अहम मीटिंग की है। इस मीटिंग में ईरान के साथ डील को लेकर कई पहलुओं पर बात की गई। मीटिंग में ट्रंप ने साफ कहा कि किसी भी कीमत पर ईरान को परमाणु बम बनाने की इजाजत नहीं दी जा सकती। उसके अलावा उसे होर्मुज को बिना टोल बंदी के खोलना ही पड़ेगा। ईरान की न्यूज एजेंसी फोर्स के मुताबिक ईरान का मानना है कि ट्रंप मनगढ़ंत जीत को दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। इसके अलावा ईरानी अधिकारियों के हवाले से ये भी दावा किया गया है कि डील में एटमी मुद्दे का जिक्र नहीं है। लेकिन ईरान की 12 बिलियन अमेरिकी डॉलर की फीस संपत्ति छोड़ने का समझौता जरूर है। अभी ट्रंप ने डील के बारे में अंतिम फैसला नहीं लिया है। अगर ट्रंप ने समझौते पर मुहर लगा दी तो 60 दिन के लिए सीजफायर का ऐलान किया जा सकता है ताकि होर्मुज को खोलने की प्रक्रिया शुरू की जा सके। आज तक ब्यूरो।
0: उसको लेकर बातें कितनी भी हो रही हो लेकिन सच यह है कि अमेरिका और ईरान दोनों ही इस मुद्दे पर अड़े हैं। कहने को अमेरिकी नाकेबंदी चरणबद्ध तरीके से हट जाएगी लेकिन यूएस नेवी की ताजा चेतावनी ने हालात हाहाकारी होने के संकेत दिए हैं।

0: डील पर काम तेज, कहां फंसा है पेच। हॉर्मुज में यूएस का प्रण, ईरान के खिलाफ आखिरी रण। जहाजों को चेताया, समंदर में आने वाला है बवंडर। इस चेतावनी को ध्यान से पढ़िए, इसे यूएस नेवी सेंट्रल कमांड ने जारी किया है। यह हॉर्मुज में मौजूद सारे जहाजों के लिए है। अमेरिकन नेवी ने चेतावनी जारी की है कि ईरान के खतरनाक और गैर कानूनी कामों को रोकने के लिए जल्द ही बड़ा ऑपरेशन शुरू होने वाला है। हो सकता है कि जवाब में ईरान भी हमला करे, लिहाजा हॉर्मुज में जहाजों को मुश्किल हालातों के लिए तैयार रहना चाहिए। चेतावनी में जिन इलाकों में सतर्क रहने की बात कही गई है, उनमें अरब की खाड़ी, हॉर्मुज, ओमान की खाड़ी और उत्तरी अरब सागर शामिल है। संकेत साफ है, हॉर्मुज की लहरें अंदर से भी अशांत है और अब ऊपर से भी एक बार फिर शांति भंग होने के आसार बढ़ गए हैं। ईरान हर हाल में अमेरिका की नाकेबंदी को जल्द से जल्द हटाने की मांग कर रहा है और अमेरिका की मांग है कि टोल वसूली बंद की जाए और जहाजों की आवाजाही शुरू की जाए। इस बीच डील को लेकर अभी भी सस्पेंस बना हुआ है। ना तो हॉर्मुज को लेकर अभी कोई फैसला हुआ है और ना ही यूरेनियम को लेकर। अब आपको दिखाते हैं ईरान के लोग इस डील को लेकर क्या कह रहे हैं। यह है तेहरान का इनकलाब स्क्वाड। अमेरिका के खिलाफ और ईरान की लीडरशिप के साथ अपनी भावनाओं के इजहार के लिए हजारों लोग यहां इकट्ठा हुए हैं। हाथों में झंडे हैं, जुबां पर देशभक्ति के नारे हैं। जगह जगह ईरान के नेताओं की तस्वीरें हैं। इस भीड़ में सिर्फ उन्माद नहीं है बल्कि अमेरिका को कोसने के लिए तथ्यों पर आधारित इनके अपने तर्क हैं।
1: اگر این حرفی که میزنه درست باشه نشان دهنده اینه که محاصرش شکست خورده و اون چیزی که تو ذهنش بوده به وقوع نپیوسته، از پس ما نتونست بر بیاد و برای اینکه بیش از این ضایع نشه میگه که ما محاصره رو پایان میدیم. حالا بعد ببینیم چقدر داره درست میگه. اصلا من حتی میگم ما همون سال 2015 هم اشتباه کردیم، اون اورانیوم ها رو چند تن اورانیوم تحویل دادیم، بسیار اشتباه بود. اورانیوم غنی سازی شده ارزش مادی بالایی داره، هم معنوی هم مادی، حکم بخشی از خاک ماه. چرا بعد بریم به اون؟ هیچ ربطی نداره برای ماه، برای ملت یونانه و ما تصمیم میگیریم نخواهیم داد.
0: هرمز کو لیکر بھی لوگ ایک مت ہیں، یعنی هرمز فی الحال بند ہی رہے تو ایران کے لیے اچھا ہے.
2: حرف رهبرمونه، تنگه باید بسته بمونه تا وقتی که رهبرمون اعلام کنن ما هم همین رو
0: میگیم. هرمز پر خود ایران مشکلوں میں گھرا ہوا ہے. امریکی ناکےبندی کی وجہ سے اس کا لاکھوں ٹن تیل نریات نہیں ہو پا رہا ہے، لیکن یہ اکلوتا ایسا ہتھیار ہے جو 28 فروری سے شروع ہوئے مہا یدھ میں اس کی طاقت بڑھاتا رہا ہے. ظاہر ہے وہ کسی بھی قیمت پر اس کا نینترن امریکی شرطوں پر نہیں چھوڑے گا. آج تک پیرو.
3: अब रुक रहे छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन होंगे हाजिर. आप देखते रहिए आज तक.

0: बंगाल के सोनारपुर में अभिषेक बैनर्जी पर हमले से बवाल, लोगों ने फेंके पत्थर अंडे कपड़े फाड़े, कहा मुझे मारने की थी साजिश, विपक्ष ने बीजेपी पर उठाए सवाल, सोमवार को ममता करेंगी प्रदर्शन। कर्नाटक के अगले मुख्यमंत्री होंगे डीके शिव कुमार, कांग्रेस विधायक दल की बैठक में चुने गए नेता 3 जून को 8 से 10 मंत्रियों के साथ ले सकते हैं शपथ। सीएम योगी का बड़ा बयान, कहा कि अहिंसा ही परम धर्म, लेकिन जब कोई देश समाज के लिए खतरा है तो अपनानी पड़ती है हिंसा की नीति, समाजवादी पार्टी बोली यूपी में बढ़ रहा है अपराध। गाजियाबाद में अंतर्राष्ट्रीय पैरा एथलीट चिराग त्यागी की हत्या, साथी खिलाड़ी पर गोली मारने का आरोप, अगले महीने जापान में खेलने वाले थे टूर्नामेंट। राजस्थान के कई शहरों में रेतीले तूफान से दहशत, धूल भरी आंधी से दिन में छाया अंधेरा, दिल्ली एनसीआर में बारिश से गिरा तापमान। बंगाल के सोनारपुर में अभिषेक बैनर्जी पर हमला हुआ, चुनावी हिंसा, एक पीड़ित से मिलने के लिए अभिषेक पहुंचे थे और इसी दौरान अभिषेक से हाथापाई हुई, उन पर अंडे फेंके गए और काफी देर तक बवाल मचता रहा।
1: जो अभिषेक बनर्जी पश्चिम बंगाल में सत्ता का केंद्र होते थे, आज उन्हें बीच सड़क पर पीटा जा रहा है। ये पश्चिम बंगाल की सियासत का रक्त चरित्र है। सत्ता बदली लेकिन नहीं बदली तो पश्चिम बंगाल में सियासी रंजिश की तस्वीर, जिसकी चपेट में ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी आ गए। बीच सड़क पर लोगों ने अभिषेक को जमकर पीटा, गुस्साई भीड़ ने अभिषेक बनर्जी पर अंडे फेंके, कपड़े फाड़ दिए। हालात इतने बिगड़ गए कि अभिषेक को हेलमेट पहनकर वहां से निकलना पड़ा।
2: दे वांट टू किल मी एरा आमादेर प्राणे मारते चाहे, मेरे दिख अमर मृतदेह उद्धार होके खान थेके, किंतु मैं जायगा छेड़े जाबो ना।
1: अभिषेक बनर्जी विधानसभा चुनाव के बाद हुई हिंसा के पीड़ित लोगों और उनके परिवारों से मिलने के लिए सोनार गए थे, जहां उन पर यह हमला हुआ। अभिषेक ने इसे बीजेपी की साजिश बताया। उधर स्थानीय लोगों का दावा कि ये हमला किसी राजनीति से प्रेरित नहीं है, बल्कि ये उनका गुस्सा टीएमसी सरकार के खिलाफ है। इलाके में सरकार ने कोई विकास का काम नहीं किया तो वहीं टीएमसी के कार्यकर्ताओं ने कई सालों तक गुंडागर्दी की, जिसे लेकर ये गुस्सा फूटा।
3: चोर को कैसे नारे, उसको क्या फूलों से स्वागत करेंगे, चोर को अंडा फेंक के मारेंगे। अभी तो हाँ वो भी बहुत कम हो गया, वो ये राम जी की धरती है, वो राम जी की नाराबाजी करने के माना किया था बांग्लादेशी, वो खुद है, उसका जो मुख्यमंत्री पीसी है वो भी वो एक बांग्लादेशी है।
4: वो लोग भाई मारने का टाइम तो वहाँ भेजा नहीं, वहाँ भेजा है एक तो डॉक्टर को मारा है वहाँ, उस टाइम वो भेजा नहीं, अभी एक तो चमचा मर गया इसलिए भेजा है, यहाँ किसके लिए भेजा है, हमारा रास्ता देखता है आज पुंदर माधो में ये रास्ता कैसे चलता है, हम लोग बाल बच्चा कर लिए।
1: अभिषेक बनर्जी पर हुआ हमला एक बार फिर पश्चिम बंगाल में सियासी हिंसा को लेकर सवाल खड़े करता है। तपस सेन गुप्ता, दक्षिण 24 परगना, आज तक।
0: बिहार की राजनीति में सरकारी आवास को लेकर नया घमासान छिड़ गया है। पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी ने साफ संकेत दिए हैं कि वो 10 सर्कुलर रोड स्थित सरकारी आवास खाली करने के मूड में नहीं है, जबकि पिछले 6 महीनों में उन्हें लगातार नोटिस भेजे जा रहे हैं।
5: हम तो चाहते हैं कि सम्राट चौधरी पूरा बिहार के फोर्स बुला के हमारा 10 नंबर खाली करा दे, हम नहीं खाली करेंगे, आओ हमारा सामने।
6: बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी ने बिहार सरकार को खुली चुनौती दी है कि वो अपना सरकारी आवास नहीं खाली करेंगी। पिछले 6 महीने से 10 सर्कुलर रोड आवास को खाली कराने के लिए नोटिस दिया जा रहा है, लेकिन राबड़ी के तेवर बताते हैं कि ये आवास बिहार की सियासत का नया अखाड़ा बनता जा रहा है।
7: अरे कहाँ इसमें वो कह रही, इसमें तो जो कानून है, जो नियम है, उसके हिसाब से काम होता है और सब लोगों को नियम कानून का पालन करना चाहिए।
1: बिहार विधानसभा चुनाव खत्म होने के बाद 25 नवंबर 2025 को राबड़ी देवी को नया आवास 39 हार्डिंग रोड पर आवंटित किया गया। उस वक्त राबड़ी देवी को लेटर भी भेजा गया, लेकिन 6 महीना बीत जाने के बाद भी राबड़ी देवी ने 10 सर्कुलर रोड घर को खाली नहीं किया है। ये बंगला पशु संसाधन मंत्री नंद किशोर यादव का आवंटित है, जिसे लेकर राबड़ी देवी को 29 मई को नया नोटिस भेजा गया।
8: मैं तो कह रहा हूँ कि वो मुख्यमंत्री रही हैं, 1-2 साल नहीं 7 साल रहे हैं, तो उनको तो कानून का पालन करना ही चाहिए। बयान निंदनीय है, ये टकराव का बयान है, आपत्तिजनक है, और क्या बात करते हैं, पूरे बिहार के फोर्स की जरूरत है, एक दरोगा जाके निकाल देगा।
1: राबड़ी देवी करीब 20 वर्षों से 10 सर्कुलर रोड आवास में रहती आई हैं। यह आवास काफी बड़ा है, इससे लालू परिवार की यादें भी जुड़ी हैं।
9: राबड़ी देवी जी, ये जंगल राज नहीं है, ये कानून का राज है, एनडीए की सरकार है। आपको इलाज कराना होता है तो सिंगापुर जाते हैं, पोता का जन्मदिन मनाना होता है तो दिल्ली नोएडा भागते हैं, और जब लूटने की बारी आती है तो आप बिहार में रहना चाहते हैं।
1: नवंबर 2005 में चुनाव हारने के बाद राबड़ी देवी को यह आवास आवंटित किया गया था। उस समय पूर्व मुख्यमंत्री को भी आवास आवंटित होता था, लेकिन जब 2019 में अपने आवास के मामले को लेकर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव पटना हाई कोर्ट गए, तब कोर्ट ने सख्त निर्देश दिया था कि कोई भी पूर्व मुख्यमंत्री या पूर्व उप मुख्यमंत्री पद से हटने के बाद सरकारी बंगला नहीं रख सकता। इसके बाद से 10 सर्कुलर रोड राबड़ी देवी को बिहार विधान परिषद के नेता प्रतिपक्ष के रूप में आवंटित किया गया, जिसे अब उन्हें खाली करना होगा। शशि भूषण, पटना आज तक।
0: अब बात एनटीए की, जिसकी भूमिका पर एक बार फिर सवाल खड़े हो रहे हैं। एनटीए की ओर से आयोजित सीयूईटी यूजी परीक्षा में एक बार फिर तकनीकी खराबी का मामला सामने आया।
10: अभी निकल के आना 2 घंटे।
11: परीक्षा केंद्र के बाहर मचा ये हंगामा एक बार फिर एनटीए के कामकाज पर सवाल खड़े कर रहा है। आज सीयूईटी यूजी परीक्षा के केंद्रों पर तकनीकी खराबी की शिकायत आई, जिसके बाद सुबह 9 बजे शुरू होने वाली परीक्षा कई केंद्रों पर करीब 11:23 पर शुरू हुई। वहीं एनटीए ने दोपहर की शिफ्ट का टाइम भी बदल दिया, जिसके चलते अभ्यर्थियों और अभिभावक परेशान नजर आए। अब एनटीए इस पर माफी मांग रहा है, तो वहीं विपक्ष एक बार फिर एनटीए की भूमिका पर सवाल खड़े कर रहा है। 4 परीक्षाएं, 1 करोड़ बच्चे, एक भी ईमानदारी से नहीं हो पाई। दावे विश्व गुरु के, मगर देश में एक परीक्षा नहीं करवा सकते। मोदी जी ने पूरी शिक्षा व्यवस्था तबाह कर दी है। जिस पीढ़ी का भविष्य आप बर्बाद कर रहे हैं, वही पीढ़ी आपका हिसाब करेगी।
12: ये देखने में आ रहा है कि एनटीए ने सीयूईटी टेस्ट का भी मजाक बना के रख दिया है। सीयूईटी टेस्ट में करीब 18 लाख बच्चे अलग अलग यूनिवर्सिटीज में बैठने के लिए टेस्ट देते हैं, आज सेंटर पे पहुंचे

0: पेपर को लीक होने से बचाने के लिए एयरफोर्स के जहाज से उसको ट्रांसपोर्ट करेंगे, एयरफोर्स के बुलेट प्रूफ ट्रकों से उसको ट्रांसपोर्ट करेंगे। मजाक बना रखा है, हमें बेवकूफ समझ रखा है। पूरी दुनिया में इतने बड़े बड़े पेपर होते हैं, कहीं सुना है कि एयरफोर्स से उनको ट्रांसपोर्ट किया जाता है?
1: बहरहाल परीक्षाओं को लेकर एनटीए पूरी तरह फेल नजर आ रहा है, जहां उसकी नाकामी एक बार फिर आज सीयूईटी यूजी के पेपर में खुलकर सामने आ गई। आज तक ब्यूरो।
2: यूपी के जहां गाजियाबाद में एक शख्स की हत्या, उसके बाद हिंदू मुस्लिम का इसने रंग रूप ले लिया। परिवार का आरोप है कि बकरीद के बहाने बुलाकर बेटे की हत्या कर दी गई।
3: आज माफिया पिस्तौल लहराते हुए कोई धमका करके खुली जीप में चल करके किसी हिंदू को धमका नहीं सकता है। जन्माष्टमी हो, रक्षाबंधन हो, इन आयोजनों में अगर किसी ने व्यवधान डाला तो पर्व तो मनाई लेगा, लेकिन उसके बाद ये तय है कि रावण और कंस जैसी दुर्गति उसकी तय है जो व्यवधान डालने वाला है।
4: उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का यह बयान ऐसे समय आया जब 17 साल के हिंदू युवक की हत्या कर दी गई। गाजियाबाद के खोड़ा थाना क्षेत्र में सूर्या की बकरीद की शाम चाकुओं से गोद कर बेरहमी से हत्या कर दी जाती है और इल्जाम लगा सूर्या के ही मुस्लिम दोस्तों पर। हत्या के बाद गाजियाबाद के खोड़ा इलाके में तनाव है, पुलिस अलर्ट पर है। इस बीच लखनऊ में मुख्यमंत्री ने यूपी की कानून व्यवस्था पर अपनी सरकार के मॉडल का जिक्र एक बार फिर किया।
3: अहिंसा परमो धर्म, धर्म हिंसा तथैव च, यानी सामान्य जीवन में अहिंसा ही सर्वोच्च धर्म होना चाहिए, लेकिन अगर सामने वाला देश और समाज की सुरक्षा के लिए खतरा है तो उसके लिए अहिंसा नहीं चल सकती है, उसके लिए तो हिंसा ही हमें अंततः अपनानी पड़ेगी।
4: तो फिर गाजियाबाद की घटना कैसे हो गई? योगी सरकार के अपराध नियंत्रण के दावों पर यह घटना कितना बड़ा सवाल है। क्या यूपी की राजनीति में 2027 विधानसभा चुनाव के लिए नया नैरेटिव तैयार हो रहा है? गाजियाबाद में जिस शख्स पर 28 मई को चाकुओं से वार किया गया, उसने 29 मई को दम तोड़ा। इसी दिन यानी 29 मई को मऊ में मुख्यमंत्री ने दावा किया कि उनके राज में कोई हिंदुओं को धमका नहीं सकता।
3: आज माफिया पिस्तौल लहराते हुए कोई धमका करके खुली जीप में चल करके किसी हिंदू को धमका नहीं सकता है।
4: यूपी की कानून व्यवस्था पर मुख्यमंत्री योगी के 48 घंटे में दो बड़े बयान आए हैं। 29 मई को मुख्यमंत्री ने कहा कि आज माफिया किसी हिंदू को खुलेआम धमका नहीं सकता। 30 मई को मुख्यमंत्री ने कहा कि खतरा हो तो हिंसा भी अपनानी पड़ती है। एक तरफ अपराध पर सख्त कार्रवाई का दावा, दूसरी तरफ हिंसा पर राजनीतिक बहस। समाजवादी पार्टी कह रही है कि गाजियाबाद की घटना को हिंदू मुसलमान से न जोड़ा जाए।
5: जिन लोगों ने भी अपराध किया है, चाहे वो किसी धर्म किसी जात के हों, उन पे कार्रवाई होनी चाहिए, सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, कानून के मुताबिक कार्रवाई होनी चाहिए। उत्तर प्रदेश में लगातार अपराध रुक नहीं रहे हैं, चाहे वो राजधानी लखनऊ की बात हो। अभी 3 दिन पहले एक प्रॉपर्टी डीलर को ये हत्या कर दी गई, अब ये गाजियाबाद की घटना है। लगातार उत्तर प्रदेश में हत्याएं हो रही हैं, लूट हो रहे हैं, बलात्कार हो रहे हैं, और भारतीय जनता पार्टी की सरकार कानून व्यवस्था देने में पूरी तरह से विफल है।
4: 2027 का रास्ता लखनऊ से नहीं बल्कि ऐसी घटनाओं पर जनता की प्रतिक्रिया से भी तय होगा, इसलिए चुनावी नैरेटिव को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष अपने अपने हिसाब से परिभाषा गढ़ते हैं। क्या अपराध का धर्म होता है या फिर हर बड़ी वारदात के बाद राजनीति धर्म का चश्मा पहन लेती है? इस बीच उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य कहते हैं कि हत्या करने वालों को फांसी के तख्ते

0: पर चढ़ाने के लिए कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
1: प्यारा कोई भी हो, वो बक्सा नहीं जाएगा, उसको खोज निकाला जाएगा और हत्या करने वाले को फांसी पर चढ़ाने के लिए जो कार्रवाई होती है कानूनी, वो कानूनी कार्रवाई की जाएगी। सरकार कानून व्यवस्था को लेकर के बहुत गंभीर है और जिन लोगों ने ऐसा अपराध किया उनके खिलाफ कठोर से कठोर कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
0: योगी सरकार में सहयोगी पार्टी के मंत्री अखिलेश यादव से चुभते हुए सवाल पूछते हैं, उनके पीडीए समीकरण पर वार करते हैं।
2: अखिलेश यादव जी को उस पर बोलना चाहिए कि उनके वोटर हैं, उन लोग ऐसी हत्या क्यों कर रहे हैं। कहीं मुसलमान मार रहा है तो कहीं यादव मार रहा है। उनका एमओआई जो फैक्टर है इस समय पूरे प्रदेश में आतंक मचाया हुआ है। बोलते हैं पीडीए इनका असफल है सिर्फ एमओआई फैक्टर को दबाने के लिए, लोगों का दिमाग भटकाने के लिए कि हमको सिर्फ एमओआई कहा जाता था, इस नाते पीडीए पीडीए चिल्ला रहे हैं।
0: गाजियाबाद की घटना उत्तर प्रदेश की राजनीति को उस चौराहे पर लाकर खड़ा कर देती है जहां सरकार अपने दावे गिनाती है और विपक्ष जमीन की हकीकत दिखाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन सवाल है, क्या यूपी में जनता सुरक्षित महसूस करती है?
3: बात दिल्ली के जहांगीरपुर में हुए मर्डर की, जहां बकरीद की रात मामूली सा विवाद एक युवक की मौत की वजह बन गया।
4: दिल्ली में सिगरेट को लेकर विवाद में युवक की हत्या। सिगरेट लाने से मना किया तो चाकू मार दिया। सुनने में भले ही यह हैरानी भरा लगे लेकिन इस वारदात ने एक शख्स की जान ले ली। बकरीद के मौके पर जब 26 साल के अरबाज के घर त्योहार की खुशियां थी, इस वारदात के बाद चीख पुकार मच गई। पुलिस के मुताबिक रात 11 बजे के करीब अरबाज अपने घर के पास ही मौजूद था। इसी दौरान इलाके के कुछ लड़कों के साथ उसकी कहासुनी हुई जो देखते ही देखते हिंसक झड़प में बदल गई। इसके पीछे की जो वजह सामने आई है वो भी बेहद हैरानी भरी है।
5: उस टाइम पे कुछ नहीं हुआ था, एक सिगरेट मंगाने का विवाद था कि सिगरेट ला के दे। तो बोला तेरे बाप का नौकर हूँ क्या, तेरा क्या, तू जाके लिया, तू क्या बदमाश है क्या? तो उन्होंने बोला चल ठीक है। फिर इतने में उन्होंने अपने दोस्तों को फोन मिलाया, उस लड़के ने, 7-8 लोंडे आ गए। इस बात को लेकर उन्होंने उसको मार दिया कि तूने हमसे ऐसा क्यों कहा।
4: विवाद के बाद जब अरबाज को लड़कों ने घेरा तो उसने मदद के लिए अपने भाई को बुलाया। भाई के सामने ही आरोपियों ने अरबाज की हत्या कर दी।
6: अरबाज का बड़ा भाई था, अरबाज ने मेरे पास फोन करा रात में पूरे 10:59 पर कि भाई ऐसे ऐसे बात है, मेरे को लड़कों ने घेर रखा है, जल्दी से इधर आ जा गली के बाहर। मैं भागते हुए गया, जाके देखा तो उस टाइम पे ना इस पे सब सवार हुए पड़े थे लड़के, जो लड़के थे सब सवार हुए पड़े थे। ये 5-6 लड़के थे। उसी बीच में आवाज आती है कि चाकू निकाल, उसी बीच में आवाज आती है चाकू निकाल। अब जब चाकू निकालने के बाद आती है तो मेरे भाई को ना गेट है हमारी गली के बाहर उसमें घुसा दिया। तो मैं गया, मैंने पीछे से पकड़ के खींचा उसे, लड़कों को, 2-3 लड़के उस पर चढ़े पड़े थे। जैसे मैंने उन्हें खींचा तो एक लड़का साइड में से निकल के गया, वो इतने में जाके उसके चाकू मार दिया।
4: अरबाज जहांगीरपुरी के सी ब्लॉक का रहने वाला था और इलाके में ही एक सुनार की दुकान पर काम करता था। युवक की मौत के बाद घर में मातम है और इलाके में तनाव। पुलिस ने स्थानीय लोगों और चश्मदीदों से पूछताछ के आधार पर 3 नाबालिगों को हिरासत में लिया है। उनसे पूछताछ की जा रही है और वारदात में उनकी भूमिका की जांच हो रही है। आज तक ब्यूरो।
3: अब बात राजस्थान के, जहां पर मौसम की खौफनाक तस्वीर देखने को मिली। रेतीले तूफान ने राजस्थान के 5 जिलों को अपनी चपेट में ले लिया। आसमान में चारों ओर धूल का गुबार दिखाई दिया और इस पूरे धूल के गुबार ने पूरे शहर में अंधेरा सा कर दिया।
7: एक आम रिहायशी इलाका और सामने से आया रेत का बवंडर मानो पूरे शहर को अपने आगोश में ले लेना चाहता हो। यह हैरान करने वाली तस्वीरें राजस्थान के चुरू की है। रेत का गुब्बार धीरे धीरे शहर की ओर बढ़ता है, आसमान में सिर्फ धूल ही धूल नजर आती है। फिर शहर की गलियां, सड़क, घर, छत, हर कहीं ये धूल कब्जा करने लगती है। दिन में अंधेरा छाने लगता है। तूफान के कारण दिन में लोगों को वाहनों की हेडलाइट जलानी पड़ गई।
8: इस सीजन का जबरदस्त आंधी तूफान भयंकर है, उसमें मेरे हिसाब से लाखों करोड़ों का सरकार का नुकसान हुआ है और उसके बाद में जबरदस्त बारिश और पेड़ों का गिरना, बिजली का नुकसान होना, बहुत ही जबरदस्त, मतलब इस मौसम में जो आंधी आई है बहुत ही जबरदस्त आई है।
9: और इस तूफान में आज आपको देखने को मिला कि मतलब कि तूफान की में आंधी काफी भयंकर थी, धूल भरी आंधी थी जिसके कारण पेड़ है और भी बहुत सारे पक्षियां वगैरह काफी इनका नुकसान हुआ।
7: जिसके कई वीडियो सामने आए हैं। इनमें लोग भागकर घरों में जाते दिखे और घरों को बंद कर दिया। इस दौरान 60 से 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आंधी चली, जो करीब 30 मिनट तक इलाके में कोहराम मचाती रही। हालांकि तूफान की ऊंचाई का आधिकारिक आंकड़ा सामने नहीं आया है। इस रेतीले तूफान ने राजस्थान के 5 जिलों को अपनी चपेट में ले लिया। श्री गंगानगर, बीकानेर, चुरू, हनुमानगढ़ और सीकर के आसमान में रेत का गुब्बार देखने को मिले। करीब 200 वर्ग किलोमीटर का इलाका इससे प्रभावित नजर आया।
10: रेत का बाउंडर बहुत भारी और बहुत खतरनाक था। मैंने अपनी जिंदगी 15-20 सालों में कभी ऐसा माहौल नहीं देखा था। और दिन में एकदम अंधी आई, ऐसे तो मानो साफ हो गई। ये कहीं न कहीं अपने प्रकृति से जो पर्यावरण पौधे अपने काट रहे हैं और ये खिलवाड़ कर रहे हैं, इसके लिए अपने सजग रहने की जरूरत है।
11: एकदम से बिल्कुल काला काला हो गया सिस्टम, जैसे रात होगी होती है एकदम से। इतनी तेज अंधेरी थी, उसका जो किलोमीटर के हिसाब से बताया गया था वो 80-90 किलोमीटर के हिसाब से उसका विंड का बताया गया था, और एकदम से फुल अंधेरी थी। और जहाँ पर जो दरखत है छोटे छोटे वो इन्हें लगे, कुछ दरखत है वो टूट भी गए थे।
7: पाकिस्तान से उठे इस तूफान ने रेगिस्तान का मौसम पूरी तरह से बदल दिया। आज तक ब्यूरो।
3: बीते 2 दिनों से बदले मौसम से उत्तर भारत के लोगों को प्रचंड गर्मी की मार से राहत मिली। कई इलाकों में तेज हवाएं चले, कई इलाकों में भारी बारिश हुई। मौसम विभाग ने अब 1-2 दिनों तक मौसम में बदलाव के ही संकेत जारी किए हैं और कई इलाकों में बारिश की संभावना व्यक्त की है।
12: लेकर उत्तराखंड, हिमाचल से लेकर कश्मीर, यूपी, बंगाल और छत्तीसगढ़ तक मौसम का ऐसा रौद्र रूप देखने को मिला कि जनजीवन पूरी तरह अस्त व्यस्त हो गया। सबसे पहले बात राजस्थान की, यहाँ जयपुर में तेज बारिश और ओलावृष्टि ने शहर की रफ्तार पर ब्रेक लगा दिया। धौलपुर में 1.5 घंटे की मूसलाधार बारिश ने हालात बिगाड़ दिए। सड़कें, कॉलोनियां और गली मोहल्ले पानी में डूब गए। अब बात उत्तराखंड की, यहाँ देहरादून में तेज बारिश ने मौसम बदल दिया, लेकिन शहर की रफ्तार थम गई। टिहरी गढ़वाल में बारिश और भारी ओलावृष्टि ने किसानों की कमर तोड़ दी। वहीं धनौल्टी में देर रात आए तूफान ने भारी तबाही मचाई। 20-30 देवदार के पेड़ गिर गए, इको पार्क की टेंट शेड उड़ गई और बर्मा ब्रिज पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। बागेश्वर में लगातार बारिश के बाद नदियां उफान पर आ गईं। गोमती नदी पर बने बैजनाथ बैराज के गेट खोलने पड़े और प्रशासन ने सायरन बजाकर लोगों को अलर्ट किया। जम्मू कश्मीर की श्रीनगर गुलमर्ग रोड पर तेज आंधी से कई पेड़ उखड़ गए, सड़कें बंद करनी पड़ी और ट्रैफिक रोक दिया गया। बात उत्तर प्रदेश की करें तो आगरा में तेज आंधी और तूफान के साथ झमाझम बारिश हुई, पेड़ गिर गए, टिन शेड उड़ गए और कई इलाकों में जलभराव से ट्रैफिक थम गया। मौसम विभाग ने आने वाले दिनों में और आंधी बारिश की चेतावनी दी है। आज तक ब्यूरो।
3: अब रुख करते हैं मिडिल ईस्ट की ओर। अगर अमेरिका और ईरान डील के इतने ही करीब हैं तो दोनों के सुर अलग अलग क्यों हैं? आखिर क्यों अमेरिका लगातार कह रहा है कि वो समझौते के बेहद करीब है, जबकि ईरान आधिकारिक तौर पर इस पर चुप्पी साधे हुए है?
13: डील पर अमेरिका और ईरान के जुदा हैं बयान, सुर अलग हैं, तो फैसला कैसे एक होगा? सस्पेंस भारी, आ रही है बम बरसाने की बारी। क्या अमेरिका और ईरान में सच में कुछ ही घंटों में डील होने वाली है, या फिर महायुद्ध पार्ट 2 जल्द शुरू होने वाला है? कहने को तो अमेरिका की टॉप लीडरशिप हर दिन ये उम्मीद जगा रही है कि वो डील के बेहद करीब है।
14: That we're able to get to a final agreement here. We're reopening the Straits of Hormuz. We've already decimated their conventional military, and we're in a position where we could substantially step back their nuclear program, not just during the term of this president, but over the long term. That's a very, very good thing for the American people. So we're not there yet, but we're very close. We're going to keep on working at it. Thank you, guys. Have a good evening.
13: राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति ही नहीं, रक्षा मंत्री भी हर जगह जाकर यही कह रहे हैं कि डील जल्द ही होने वाली है और ये एक शानदार डील होगी। लेकिन सिंगापुर जाने से पहले रक्षा मंत्री ईरान को धमकी भी देकर गए हैं, यानी अमेरिका को भी ये अंदेशा तो है कि हो सकता है कि डील उनके मुताबिक ना हो और एक बार फिर रणभूमि में उतरना पड़े।
15: And when you do your job, the adversaries know what's coming for them. And that's when they either step up and meet the fury of the American military or back down and you create a whole bunch of options for America and the president with what he wants to execute on behalf of the American people. So right now, hey, Iran has a choice. Meet at the table with the president and give up their nuclear program. And as the president said, I'm lost on time, 2 days ago now, in the cabinet meeting, I'm sitting right next to him. He looks in the camera and says, well, Iran can either do it the right way with a deal across the table, or they can deal with my guy on the left. That happened to be me. But it's not me, it's you guys. It's what you're ready to do. It's what the-
13: लेकिन ईरान की तरफ से कोई ऐसे संकेत नहीं मिल रहे हैं। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल भगाई ने सरकारी मीडिया से बातचीत में कहा है कि हॉर्मुज पर फैसला ईरान और ओमान को लेना चाहिए और इसे खोलने का फैसला भी अमेरिका नाकेबंदी हटने के बाद ही होना चाहिए। जो भी हो, डील को लेकर हलचल तो लगातार बढ़ रही है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सिचुएशन रूम में 2 घंटे तक अहम मीटिंग की है। इस मीटिंग में ईरान के साथ डील को लेकर कई पहलुओं पर बात की गई। मीटिंग में ट्रंप ने साफ कहा कि किसी भी कीमत पर ईरान को परमाणु बम बनाने की इजाजत नहीं दी जा सकती। उसके अलावा उसे हॉर्मुज को बिना टोल बंदी के खोलना ही पड़ेगा। ईरान की न्यूज एजेंसी फोर्स के मुताबिक ईरान का मानना है कि ट्रंप मनगढ़ंत जीत को दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। इसके अलावा ईरानी अधिकारियों के हवाले से ये भी दावा किया गया है कि डील में एटमी मुद्दे का जिक्र नहीं है। लेकिन ईरान की 12 बिलियन अमेरिकी डॉलर की पीस संपत्ति छोड़ने का समझौता जरूर है। अभी ट्रंप ने डील के बारे में अंतिम फैसला नहीं लिया है। अगर ट्रंप ने समझौते पर मुहर लगा दी तो 60 दिन के लिए सीजफायर का ऐलान किया जा सकता है ताकि हॉर्मुज को खोलने की प्रक्रिया शुरू की जा सके। आज तक ब्यूरो।
3: उसको लेकर बातें कितनी भी हो रही हो, लेकिन सच है कि अमेरिका और ईरान दोनों ही इस मुद्दे पर अड़े हैं। कहने को अमेरिकी नाकेबंदी चरणबद्ध तरीके से हट जाएगी, लेकिन यूएस नेवी की ताजा चेतावनी ने हालात हाहाकारी होने के संकेत दिए हैं।

0: डील पर काम तेज, कहां फंसा है पेच। हॉर्मुज में यूएस का प्रण, ईरान के खिलाफ आखिरी रण। जहाजों को चेताया, समंदर में आने वाला है बवंडर। इस चेतावनी को ध्यान से पढ़िए, इसे यूएस नेवी सेंट्रल कमांड ने जारी किया है। यह हॉर्मुज में मौजूद सारे जहाजों के लिए है। अमेरिकन नेवी ने चेतावनी जारी की है कि ईरान के खतरनाक और गैर कानूनी कामों को रोकने के लिए जल्द ही बड़ा ऑपरेशन शुरू होने वाला है। हो सकता है कि जवाब में ईरान भी हमला करे, लिहाजा हॉर्मुज में जहाजों को मुश्किल हालातों के लिए तैयार रहना चाहिए। चेतावनी में जिन इलाकों में सतर्क रहने की बात कही गई है, उनमें अरब की खाड़ी, हॉर्मुज, ओमान की खाड़ी और उत्तरी अरब सागर शामिल है। संकेत साफ है, हॉर्मुज की लहरें अंदर से भी अशांत है और अब ऊपर से भी एक बार फिर शांति भंग होने के आसार बढ़ गए हैं। ईरान हर हाल में अमेरिका की नाकेबंदी को जल्द से जल्द हटाने की मांग कर रहा है और अमेरिका की मांग है कि टोल वसूली बंद की जाए और जहाजों की आवाजाही शुरू की जाए। इस बीच डील को लेकर अभी भी सस्पेंस बना हुआ है। ना तो हॉर्मुज को लेकर अभी कोई फैसला हुआ है और ना ही यूरेनियम को लेकर। अब आपको दिखाते हैं ईरान के लोग इस डील को लेकर क्या कह रहे हैं। यह है तेहरान का इनकलाब स्क्वाड। अमेरिका के खिलाफ और ईरान की लीडरशिप के साथ अपनी भावनाओं के इजहार के लिए हजारों लोग यहां इकट्ठा हुए हैं। हाथों में झंडे हैं, जुबां पर देशभक्ति के नारे हैं। जगह जगह ईरान के नेताओं की तस्वीरें हैं। इस भीड़ में सिर्फ उन्माद नहीं है बल्कि अमेरिका को कोसने के लिए तथ्यों पर आधारित इनके अपने तर्क हैं।
1: گرد این حرفی که میزنه درست باشه نشان دهنده اینه که محاصرش شکست خورده و اون چیزی که تو ذهنش بوده به وقوع نپیوسته، از پس ما نتونست بر بیاد و برای اینکه بیش از این ضایع نشه میگه که ما محاصره رو پایان میدیم. حالا بعد ببینیم چقدر داره درست میگه. اصلا من حتی میگم ما همون سال 2015 هم اشتباه کردیم، اون اورانیوم ها رو چند تن اورانیوم تحویل دادیم، بسیار اشتباه بود. اورانیوم غنی سازی شده ارزش مادی بالایی داره، هم معنوی هم مادی، حکم بخشی از خاک ماه. چرا بعد بریم به اون؟ هیچ ربطی نداره، برای ماه، برای ملت یونانه و ما تصمیم میگیریم. نه نخواهیم داد.
0: هرمز کو لیکر بھی لوگ ایک مت ہیں، یعنی هرمز فیلال بندی رہے تو ایران کے لیے اچھا ہے.
2: حرف رهبرمونه، تنگه باید بسته بمونه تا وقتی که رهبرمون اعلام کنن. ما هم همینو
0: میگیم. هرمز پر خود ایران مشکلوں میں گھرا ہوا ہے. امریکی ناکبندی کی وجہ سے اس کا لاکھوں ٹن تیل نریات نہیں ہو پا رہا ہے، لیکن یہ اکلوتا ایسا ہتھیار ہے جو 28 فروری سے شروع ہوئے مہا یدھ میں اس کی طاقت بڑھاتا رہا ہے. ظاہر ہے وہ کسی بھی قیمت پر اس کا نینترن امریکی شرطوں پر نہیں چھوڑے گا. آج تک پیرو.
3: अब रुक रहे छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन होंगे हाजिर. आप देखते रहिए आज तक.

0: बंगाल के सोनारपुर में अभिषेक बैनर्जी पर हमले से बवाल, लोगों ने फेंके पत्थर अंडे कपड़े फाड़े, कहा मुझे मारने की थी साजिश, विपक्ष ने बीजेपी पर उठाए सवाल, सोमवार को ममता करेंगे प्रदर्शन। कर्नाटक के अगले मुख्यमंत्री होंगे डीके शिव कुमार, कांग्रेस विधायक दल की बैठक में चुने गए नेता, 3 जून को 8 से 10 मंत्रियों के साथ ले सकते हैं शपथ। सीएम योगी का बड़ा बयान, कहा कि अहिंसा ही परम धर्म, लेकिन जब कोई देश समाज के लिए खतरा है तो अपनानी पड़ती है हिंसा की नीति, समाजवादी पार्टी बोली यूपी में बढ़ रहा है अपराध। गाजियाबाद में अंतर्राष्ट्रीय पैरा एथलीट चिराग त्यागी की हत्या, साथी खिलाड़ी पर गोली मारने का आरोप, अगले महीने जापान में खेलने वाले थे टूर्नामेंट। राजस्थान के कई शहरों में रेतीले तूफान से दहशत, धूल भरी आंधी से दिन में छाया अंधेरा, दिल्ली एनसीआर में बारिश से गिरा तापमान। बंगाल के सोनारपुर में अभिषेक बैनर्जी पर हमला हुआ, चुनावी हिंसा, एक पीड़ित से मिलने के लिए अभिषेक पहुंचे थे और इसी दौरान अभिषेक से हाथापाई हुई, उन पर अंडे फेंके गए और काफी देर तक बवाल मचता रहा।
1: जो अभिषेक बनर्जी पश्चिम बंगाल में सत्ता का केंद्र होते थे, आज उन्हें बीच सड़क पर पीटा जा रहा है। ये पश्चिम बंगाल की सियासत का रक्त चरित्र है। सत्ता बदली लेकिन नहीं बदली तो पश्चिम बंगाल में सियासी रंजिश की तस्वीर, जिसकी चपेट में ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी आ गए। बीच सड़क पर लोगों ने अभिषेक को जमकर पीटा, गुस्साई भीड़ ने अभिषेक बनर्जी पर अंडे फेंके, कपड़े फाड़ दिए। हालात इतने बिगड़ गए कि अभिषेक को हेलमेट पहनकर वहां से निकलना पड़ा।
2: दे वांट टू किल मी एरा हमादेर प्राणे मारते चाहे, मेरे दिख अमर मृतदेह उद्धार होके खान थेके, किंतु आमी जायगा छेड़े जाबो ना।
1: अभिषेक बनर्जी विधानसभा चुनाव के बाद हुई हिंसा के पीड़ित लोगों और उनके परिवारों से मिलने के लिए सोनार गए थे, जहां उन पर यह हमला हुआ। अभिषेक ने इसे बीजेपी की साजिश बताया। उधर स्थानीय लोगों का दावा कि ये हमला किसी राजनीति से प्रेरित नहीं है, बल्कि ये उनका गुस्सा टीएमसी सरकार के खिलाफ है। इलाके में सरकार ने कोई विकास का काम नहीं किया, तो वहीं टीएमसी के कार्यकर्ताओं ने कई सालों तक गुंडागर्दी की, जिसे लेकर ये गुस्सा फूटा।
3: चोर को कैसे नारे, उसको क्या फूलों से स्वागत करेंगे, चोर को अंडा फेंक के मारेंगे। अभी तो हाँ वो भी बहुत कम हो गया, वो ये राम जी की धरती है, वो राम जी की नाराबाजी करने के माना किया था। बांग्लादेश से वो खुद है, उसका जो मुख्यमंत्री पीसी है वो भी वो एक बांग्लादेशी है।
4: वो लोग अभय मारने का टाइम तो वहाँ भेजा नहीं, वहाँ भेजा है एक तो डॉक्टर को मारा है वहाँ, तो उस टाइम वो भेजा नहीं, अभी एक तो चमचा मर गया इसलिए भेजा है, यहाँ इसके लिए भेजा है, हमारा रास्ता देखता है आज पुंदर मधु में, रास्ता कैसे चलता है, हम लोग बाल बच्चा कर लिए।
1: अभिषेक बनर्जी पर हुआ हमला एक बार फिर पश्चिम बंगाल में सियासी हिंसा को लेकर सवाल खड़े करता है। तपस सेन गुप्ता, दक्षिण 24 परगना, आज तक।
0: बिहार की राजनीति में सरकारी आवास को लेकर नया घमासान छिड़ गया है। पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी ने साफ संकेत दिए हैं कि वो 10 सर्कुलर रोड स्थित सरकारी आवास खाली करने के मूड में नहीं है, जबकि पिछले 6 महीनों में उन्हें लगातार नोटिस भेजे जा रहे हैं।
5: हम तो चाहते हैं कि सम्राट चौधरी पूरा बिहार के फोर्स बुला के आ हमारा 10 नंबर खाली करा दे, हम नहीं खाली करेंगे, आवे हमारा सामने।
1: बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी ने बिहार सरकार को खुली चुनौती दी है कि वो अपना सरकारी आवास नहीं खाली करेंगी। पिछले 6 महीने से 10 सर्कुलर रोड आवास को खाली कराने के लिए नोटिस दिया जा रहा है, लेकिन राबड़ी के तेवर बताते हैं कि ये आवास बिहार की सियासत का नया अखाड़ा बनता जा रहा है।
6: अरे कहाँ इसमें वो कह रही है, इसमें तो जो कानून है, जो नियम है, उसके हिसाब से काम होता है और सब लोगों को नियम कानून का पालन करना चाहिए।
1: बिहार विधानसभा चुनाव खत्म होने के बाद 25 नवंबर 2025 को राबड़ी देवी को नया आवास 39 हार्डिंग रोड पर आवंटित किया गया। उस वक्त राबड़ी देवी को लेटर भी भेजा गया, लेकिन 6 महीना बीत जाने के बाद भी राबड़ी देवी ने 10 सर्कुलर रोड घर को खाली नहीं किया है। ये बंगला पशु संसाधन मंत्री नंद किशोर यादव का आवंटित है, जिसे लेकर राबड़ी देवी को 29 मई को नया नोटिस भेजा गया।
7: मैं तो कह रहा हूँ कि वो मुख्यमंत्री रही हैं, 1-2 साल नहीं 7 साल रहे हैं, तो उनको तो कानून का पालन करना ही चाहिए। बयान निंदनीय है, ये टकराव का बयान है, आपत्तिजनक है, और क्या बात करते हैं, पूरे बिहार के फोर्स की जरूरत है, एक दरोगा जाके निकाल देगा।
1: राबड़ी देवी करीब 20 वर्षों से 10 सर्कुलर रोड आवास में रहती आई हैं। यह आवास काफी बड़ा है, इससे लालू परिवार की यादें भी जुड़ी हैं।
8: राबड़ी देवी जी, ये जंगल राज नहीं है, ये कानून का राज है, एनडीए की सरकार है। आपको जो इलाज कराना होता है तो सिंगापुर जाते हैं, पोता का जन्मदिन मनाना होता है तो दिल्ली नोएडा भागते हैं, और जब लूटने की बारी आती है तो आप बिहार में रहना चाहते हैं।
1: नवंबर 2005 में चुनाव हारने के बाद राबड़ी देवी को यह आवास आवंटित किया गया था। उस समय पूर्व मुख्यमंत्री को भी आवास आवंटित होता था, लेकिन जब 2019 में अपने आवास के मामले को लेकर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव पटना हाईकोर्ट गए, तब कोर्ट ने सख्त निर्देश दिया था कि कोई भी पूर्व मुख्यमंत्री या पूर्व उप मुख्यमंत्री पद से हटने के बाद सरकारी बंगला नहीं रख सकता। इसके बाद से 10 सर्कुलर रोड राबड़ी देवी को बिहार विधान परिषद के नेता प्रतिपक्ष के रूप में आवंटित किया गया, जिसे अब उन्हें खाली करना होगा। शशि भूषण, पटना आज तक।
0: अब बात एनटीए की, जिसकी भूमिका पर एक बार फिर सवाल खड़े हो रहे हैं। एनटीए की ओर से आयोजित सीयूईटी यूजी परीक्षा में एक बार फिर तकनीकी खराबी का मामला सामने आया है।
9: अभी निकल के आना 2 घंटे।
10: परीक्षा केंद्र के बाहर मचा ये हंगामा एक बार फिर एनटीए के कामकाज पर सवाल खड़े कर रहा है। आज सीयूईटी यूजी परीक्षा के केंद्रों पर तकनीकी खराबी की शिकायत आई, जिसके बाद सुबह 9 बजे शुरू होने वाली परीक्षा कई केंद्रों पर करीब 11:23 पर शुरू हुई। वहीं एनटीए ने दोपहर की शिफ्ट का टाइम भी बदल दिया, जिसके चलते अभ्यर्थियों और अभिभावक परेशान नजर आए। अब एनटीए इस पर माफी मांग रहा है, तो वहीं विपक्ष एक बार फिर एनटीए की भूमिका पर सवाल खड़े कर रहा है। 4 परीक्षाएं, 1 करोड़ बच्चे, एक भी ईमानदारी से नहीं हो पाई। दावे विश्व गुरु के, मगर देश में एक परीक्षा नहीं करवा सकते। मोदी जी ने पूरी शिक्षा व्यवस्था तबाह कर दी है। जिस पीढ़ी का भविष्य आप बर्बाद कर रहे हैं, वही पीढ़ी आपका हिसाब करेगी।
11: ये देखने में आ रहा है कि एनटीए ने सीयूईटी टेस्ट का भी मजाक बना के रख दिया है। सीयूईटी टेस्ट में करीब 18 लाख बच्चे अलग अलग यूनिवर्सिटीज में बैठने के लिए टेस्ट देते हैं, आज सेंटर पे पहुंचे, उनका टाइम बदल दिया गया, किसी का सेंटर बदल दिया जा रहा है, किसी की डेट बदल दी जा रही है, ऐसी डेट पे एग्जाम दे दिए जाते हैं जिसमें वो सेंटर फ्री नहीं है, पूरा का पूरा मिसमैनेजमेंट है।
10: उधर सरकार के नीट पेपर में सेना की मदद के फैसले पर भी विपक्ष सवाल खड़े कर रहा है।
12: कल हमारे देश की सरकार ने ऐलान किया है कि अब नीट के पेपर को लीक होने से बचाने के लिए एयरफोर्स के जहाज से उसको ट्रांसपोर्ट करेंगे, एयरफोर्स के बुलेट प्रूफ ट्रकों से उसको ट्रांसपोर्ट करेंगे। मजाक बना रखा है, हमें बेवकूफ समझ रखा है। पूरी दुनिया में इतने बड़े बड़े पेपर होते हैं, कहीं सुना है कि एयरफोर्स से उनको ट्रांसपोर्ट किया जाता है?
10: बहरहाल परीक्षाओं को लेकर एनटीए पूरी तरह फेल नजर आ रहा है, जहां उसकी नाकामी एक बार फिर आज सीयूईटी यूजी के पेपर में खुलकर सामने आ गई। आज तक ब्यूरो।
0: बात यूपी की, जहां गाजियाबाद में एक शख्स की हत्या, उसके बाद हिंदू मुस्लिम का इसने रंग रूप ले लिया। परिवार का आरोप है कि बकरीद के बहाने बुलाकर बेटे की हत्या कर दी गई।
13: आज माफिया पिस्तौल लहराते हुए कोई धमका करके खुली जीप में चल करके किसी हिंदू को धमका नहीं सकता है। चल जन्माष्टमी हो, रक्षाबंधन हो, इन आयोजनों में अगर किसी ने व्यवधान डाला तो पर्व तो मनाई लेगा, लेकिन उसके बाद ये तय है कि रावण और कंस जैसी दुर्गति उसकी तय है जो व्यवधान डालने वाला है।
1: उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का यह बयान ऐसे समय आया जब 17 साल के हिंदू युवक की हत्या कर दी गई। गाजियाबाद के खोड़ा थाना क्षेत्र में सूर्या की बकरीद की शाम चाकुओं से गोद कर बेरहमी से हत्या कर दी जाती है और इल्जाम लगा सूर्या के ही मुस्लिम दोस्तों पर। हत्या के बाद गाजियाबाद के खोड़ा इलाके में तनाव है, पुलिस अलर्ट पर है। इस बीच लखनऊ में मुख्यमंत्री ने यूपी की कानून व्यवस्था पर अपनी सरकार के मॉडल का जिक्र एक बार फिर किया।
14: अहिंसा परमो धर्म, धर्म हिंसा तथैव च, यानी सामान्य जीवन में अहिंसा ही सर्वोच्च धर्म होना चाहिए, लेकिन अगर सामने वाला देश और समाज की सुरक्षा के लिए खतरा है तो उसके लिए अहिंसा नहीं चल सकती है, उसके लिए तो हिंसा ही हमें अंततः अपनानी पड़ेगी।
1: तो फिर गाजियाबाद की घटना कैसे हो गई? योगी सरकार के अपराध नियंत्रण के दावों पर यह घटना कितना बड़ा सवाल है। क्या यूपी की राजनीति में 2027 विधानसभा चुनाव के लिए नया नैरेटिव तैयार हो रहा है? गाजियाबाद में जिस शख्स पर 28 मई को चाकुओं से वार किया गया उसने 29 मई को दम तोड़ा। इसी दिन यानी 29 मई को मऊ में मुख्यमंत्री ने दावा किया कि उनके राज में कोई हिंदुओं को धमका नहीं सकता।
13: आज माफिया पिस्तौल लहराते हुए कोई धमका करके खुली जीप में चल करके किसी हिंदू को धमका नहीं सकता है।
1: यूपी की कानून व्यवस्था पर मुख्यमंत्री योगी के 48 घंटे में दो बड़े बयान आए हैं। 29 मई को मुख्यमंत्री ने कहा कि आज माफिया किसी हिंदू को खुलेआम धमका नहीं सकता। 30 मई को मुख्यमंत्री ने कहा कि खतरा हो तो हिंसा भी अपनानी पड़ती है। एक तरफ अपराध पर सख्त कार्रवाई का दावा, दूसरी तरफ हिंसा पर राजनीतिक बहस। समाजवादी पार्टी कह रही है कि गाजियाबाद की घटना को हिंदू मुसलमान से ना जोड़ा जाए।
15: जिन लोगों ने भी अपराध किया है, चाहे वो किसी धर्म किसी जात के हों, उन पे कार्रवाई होनी चाहिए, सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, कानून के मुताबिक कार्रवाई होनी चाहिए। उत्तर प्रदेश में लगातार अपराध रुक नहीं रहे हैं, चाहे वो राजधानी लखनऊ की बात हो, अभी 3 दिन पहले प्रॉपर्टी डीलर को ये हत्या कर दी गई, अब ये गाजियाबाद की घटना है। लगातार उत्तर प्रदेश में हत्याएं हो रही हैं, लूट हो रहे हैं, बलात्कार हो रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी की सरकार कानून व्यवस्था देने में पूरी तरह से विफल है।
1: 2027 का रास्ता लखनऊ से नहीं बल्कि ऐसी घटनाओं पर जनता की प्रतिक्रिया से भी तय होगा, इसलिए चुनावी नैरेटिव को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष अपने अपने हिसाब से परिभाषा गढ़ते हैं। क्या अपराध का धर्म होता है या फिर हर बड़ी वारदात के बाद राजनीति धर्म का चश्मा पहन लेती है? इस बीच उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य कहते हैं कि हत्या करने वालों को फांसी के तख्ते पर चढ़ाने के लिए कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
16: प्यारा कोई भी हो, वो बक्सा नहीं जाएगा, उसको खोज निकाला जाएगा और हत्या करने वाले को फांसी पर चढ़ाने के लिए जो कार्रवाई होती है कानूनी, वो कानूनी कार्रवाई की जाएगी। सरकार कानून व्यवस्था को लेकर के बहुत गंभीर है और जिन लोगों ने ऐसा अपराध किया उनके खिलाफ कठोर से कठोर कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
1: योगी सरकार में सहयोगी पार्टी के मंत्री अखिलेश यादव से चुभते हुए सवाल पूछते हैं, उनके पीडीएस समीकरण पर वार करते हैं।
17: अखिलेश यादव जी को उस पे बोलना चाहिए कि उनके वोटर हैं, उन लोग ऐसी हत्या क्यों कर रहे हैं? कहीं मुसलमान मार रहा है तो कहीं यादव मार रहा है। उनका MOI जो फैक्टर है इस समय पूरे प्रदेश में आतंक मचाया हुआ है। बोलते हैं पीडीए इनका असफल है सिर्फ MOI फैक्टर को दबाने के लिए, लोगों का दिमाग भटकाने के लिए कि हमको सिर्फ MOI कहा जाता था, इस नाते पीडीए चिल्ला रहे हैं।
1: गाजियाबाद की घटना उत्तर प्रदेश की राजनीति को उस चौराहे पर लाकर खड़ा कर देती है जहां सरकार अपने दावे गिनाती है और विपक्ष जमीन की हकीकत दिखाने की कोशिश कर रहा है।
18: लेकिन सवाल है क्या यूपी में जनता सुरक्षित महसूस करती है।
0: बात दिल्ली के जहांगीरपुर में हुए मर्डर की, जहां बकरीद की रात मामूली सा विवाद एक युवक की मौत की वजह बन गया।
1: दिल्ली में सिगरेट को लेकर विवाद में युवक की हत्या। सिगरेट लाने से मना किया तो चाकू मार दिया। सुनने में भले ही यह हैरानी भरा लगे, लेकिन इस वारदात ने एक शख्स की जान ले ली। बकरीद के मौके पर जब 26 साल के अरबाज के घर त्योहार की खुशियां थी, इस वारदात के बाद चीख पुकार मच गई। पुलिस के मुताबिक रात 11 बजे के करीब अरबाज अपने घर के पास ही मौजूद था। इसी दौरान इलाके के कुछ लड़कों के साथ उसकी कहासुनी हुई, जो देखते ही देखते हिंसक झड़प में बदल गई। इसके पीछे की जो वजह सामने आई है वो भी बेहद हैरानी भरी है।
19: उस टाइम पे कुछ नहीं हुआ था, एक सिगरेट मंगाने का विवाद था कि सिगरेट लाके दे। तो उन्होंने बोला तेरे बाप का नौकर हूँ क्या, तेरा क्या, तू जाके लिया, तू क्या बदमाश है क्या। तो उन्होंने बोला चल ठीक है। फिर इतने में उन्होंने अपने दोस्तों को फोन मिलाया, उस लड़के ने, 7-8 लोंडे आ गए। इस बात को लेकर उन्होंने उसको मार दिया कि तूने हमसे ऐसा क्यों कहा।
1: विवाद के बाद जब अरबाज को लड़कों ने घेरा तो उसने मदद के लिए अपने भाई को बुलाया। भाई के सामने ही आरोपियों ने अरबाज की हत्या कर दी।
20: अरबाज का बड़ा भाई था, अरबाज ने मेरे पास फोन करा रात में पूरे 10:59 पे कि भाई ऐसे ऐसे बात है, मेरे को लड़कों ने गिर रखा, जल्दी से इधर आ जा गली के बाहर। मैं भागते हुए गया, जाके देखा तो उस टाइम पे ना इस पे सब सवार हुए पड़े थे लड़के, जो लड़के थे सब सवार हुए पड़े थे। ये 5 से 6 लड़के थे। उसी बीच में आवाज आती है कि चाकू निकाल, उसी बीच में आवाज आती है चाकू निकाल। अब जब चाकू निकालने की आवाज आती है तो मेरे भाई को ना गेट है हमारी गली के बाहर उसमें घुसा दिया। तो मैं गया, मैंने पीछे से पकड़ के खींचा उसे, लड़कों को, 2-3 लड़के उस पर चढ़े पड़े थे। जैसे मैंने उन्हें खींचा तो एक लड़का साइड में से निकल के गया, वो इतने में जाके उसके चाकू मार दिए।
1: अरबाज जहांगीरपुरी के सी ब्लॉक का रहने वाला था और इलाके में ही एक सुनार की दुकान पर काम करता था। युवक की मौत के बाद घर में मातम है और इलाके में तनाव। पुलिस ने स्थानीय लोगों और चश्मदीदों से पूछताछ के आधार पर 3 नाबालिगों को हिरासत में लिया है। उनसे पूछताछ की जा रही है और वारदात में उनकी भूमिका की जांच हो रही है। आज तक ब्यूरो।
0: अब बात राजस्थान के, जहां पर मौसम की खौफनाक तस्वीर देखने को मिली। रेतीले तूफान ने राजस्थान के 5 जिलों को अपनी चपेट में ले लिया। आसमान में चारों ओर धूल का गुबार दिखाई दिया और इस पूरे धूल के गुबार ने पूरे शहर में अंधेरा सा कर दिया।
10: एक आम रिहायशी इलाका और सामने से आया रेत का बवंडर मानो पूरे शहर को अपने आगोश में ले लेना चाहता हो। यह हैरान करने वाली तस्वीरें राजस्थान के चुरू की है। रेत का गुब्बार धीरे धीरे शहर की ओर बढ़ता है। आसमान में सिर्फ धूल ही धूल नजर आती है। फिर शहर की गलियां, सड़क, घर, छत, हर कहीं ये धूल कब्जा करने लगती है। दिन में अंधेरा छाने लगता है। तूफान के कारण दिन में लोगों को वाहनों की हेडलाइट जलानी पड़ गई।
21: इस सीजन का जबरदस्त आंधी तूफान भयंकर आया, उसमें मेरे हिसाब से लाखों करोड़ों का सरकार का नुकसान हुआ है और उसके बाद में जबरदस्त बारिश और पेड़ों का गिरना, बिजली का नुकसान होना बहुत ही जबरदस्त, मतलब इस मौसम में जो आंधी आई है बहुत ही जबरदस्त आई है।
22: और इस तूफान में आज आपको देखने को मिला कि मतलब कि तूफान की में आंधी काफी भयंकर थी, धूल भरी आंधी थी, जिसके कारण पेड़ है और भी बहुत सारे पक्षी वगैरह काफी इनका नुकसान हुआ।
10: इसके कई वीडियो सामने आए हैं। इनमें लोग भागकर घरों में जाते दिखे और घरों को बंद कर दिया। इस दौरान 60 से 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आंधी चली, जो करीब 30 मिनट तक इलाके में कोहराम मचाती रही। हालांकि तूफान की ऊंचाई का आधिकारिक आंकड़ा सामने नहीं आया है। इस रेतीले तूफान ने राजस्थान के 5 जिलों को अपनी चपेट में ले लिया। श्री गंगानगर, बीकानेर, चुरू, हनुमानगढ़ और सीकर के आसमान में रेत का गुब्बार देखने को मिले। करीब 200 वर्ग किलोमीटर का इलाका इससे प्रभावित नजर आया।
23: रेत का बाउंडर बहुत भारी और बहुत खतरनाक था। मैंने अपनी जिंदगी 15-20 सालों में कभी ऐसा माहौल नहीं देखा था और दिन में एकदम आंधी आई, ऐसे तो मानो साफ हो गई। ये कहीं न कहीं अपने प्रकृति से जो पर्यावरण पौधे अपने काट रहे हैं और ये खिलवाड़ कर रहे हैं, इसके लिए अपने सजग रहने की जरूरत है।
24: और एकदम से बिल्कुल
2: काला काला हो गया सिस्टम, जैसे रात हो गई होती एकदम से, इतनी तेज अंधेरी थी। उसका जो किलोमीटर के हिसाब से बताया गया था वो 80-90 किलोमीटर के हिसाब से उसका विंड का बताया गया था, और एकदम से फुल अंधेरी थी। और जहाँ पर जो दरखत है छोटे छोटे वो हिलने लगे, कुछ दरखत है वो टूट भी गए थे।
10: पाकिस्तान से उठे इस तूफान ने रेगिस्तान का मौसम पूरी तरह से बदल दिया। आज तक ब्यूरो।
0: अब रुख करते हैं मिडिल ईस्ट की ओर। अगर अमेरिका और ईरान डील के इतने ही करीब हैं तो दोनों के सुर अलग अलग क्यों हैं? आखिर क्यों अमेरिका लगातार कह रहा है कि वो समझौते के बेहद करीब है, जबकि ईरान आधिकारिक तौर पर इस पर चुप्पी साधे हुए है?
3: डील पर अमेरिका और ईरान के जुदा हैं बयान। सुर अलग हैं तो फैसला कैसे एक होगा? सस्पेंस भारी, आ रही है बम बरसाने की बारी। क्या अमेरिका और ईरान में सच में कुछ ही घंटों में डील होने वाली है, या फिर महायुद्ध पार्ट टू जल्द शुरू होने वाला है? कहने को तो अमेरिका की टॉप लीडरशिप हर दिन ये उम्मीद जगा रही है कि वो डील के बेहद करीब है।
4: That we're able to get to a final agreement here. We're reopening the Straits of Hormuz. We've already decimated their conventional military, and we're in a position where we could substantially set back their nuclear program, not just during the term of this president, but over the long term. That's a very, very good thing for the American people. So we're not there yet, but we're very close. We're going to keep on working at it. Thank you, guys. Have a good evening.
3: राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति ही नहीं, रक्षा मंत्री भी हर जगह जाकर यही कह रहे हैं कि डील जल्द ही होने वाली है और ये एक शानदार डील होगी। लेकिन सिंगापुर जाने से पहले रक्षा मंत्री ईरान को धमकी भी देकर गए हैं, यानी अमेरिका को भी ये अंदेशा तो है कि हो सकता है कि डील उनके मुताबिक ना हो और एक बार फिर रणभूमि में उतरना पड़े।
5: And when you do your job, the adversaries know what's coming for them. And that's when they either step up and meet the fury of the American military or back down and you create a whole bunch of options for America. The president of what he wants to execute on behalf of the American people. So right now, hey, Iran has a choice: meet at the table with the president and give up their nuclear program. And as the president said, I'm lost on time. 2 days ago now, in the cabinet meeting, I'm sitting right next to him. He looks in the camera and says, "Well, Iran can either do it the right way with a deal across the table, or they can deal with my guy on the left. That happened to be me." But it's not me, it's you guys. It's what you're ready to do.
3: लेकिन ईरान की तरफ से कोई ऐसे संकेत नहीं मिल रहे हैं। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल भगाई ने सरकारी मीडिया से बातचीत में कहा है कि हॉर्मुज पर फैसला ईरान और ओमान को लेना चाहिए और इसे खोलने का फैसला भी अमेरिका नाकेबंदी हटने के बाद ही होना चाहिए। जो भी हो, डील को लेकर हलचल तो लगातार बढ़ रही है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सिचुएशन रूम में 2 घंटे तक अहम मीटिंग की है। इस मीटिंग में ईरान के साथ डील को लेकर कई पहलुओं पर बात की गई। मीटिंग में ट्रंप ने साफ कहा कि किसी भी कीमत पर ईरान को परमाणु बम बनाने की इजाजत नहीं दी जा सकती। उसके अलावा उसे हॉर्मुज को बिना टोल बंदी के खोलना ही पड़ेगा। ईरान की न्यूज एजेंसी फोर्स के मुताबिक ईरान का मानना है कि ट्रंप मनगढ़ंत जीत को दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। इसके अलावा ईरानी अधिकारियों के हवाले से ये भी दावा किया गया है कि डील में एटमी मुद्दे का जिक्र नहीं है। लेकिन ईरान की 12 बिलियन अमेरिकी डॉलर की फीस संपत्ति छोड़ने का समझौता जरूर है। अभी ट्रंप ने डील के बारे में अंतिम फैसला नहीं लिया है। अगर ट्रंप ने समझौते पर मुहर लगा दी तो 60 दिन के लिए सीजफायर का ऐलान किया जा सकता है ताकि हॉर्मुज को खोलने की प्रक्रिया शुरू की जा सके। आज तक ब्यूरो।
0: उसको लेकर बातें कितनी भी हो रही हो, लेकिन सच है कि अमेरिका और ईरान दोनों ही इस मुद्दे पर अड़े हैं। कहने को अमेरिकी नाकेबंदी चरणबद्ध तरीके से हट जाएगी, लेकिन यूएस नेवी की ताजा चेतावनी ने हालात हाहाकारी होने के संकेत दिए हैं।

0: डील पर काम तेज, कहां फंसा है पेच? हॉर्मुज में यूएस का प्रण, ईरान के खिलाफ आखिरी रण। जहाजों को चेताया, समंदर में आने वाला है बवंडर। इस चेतावनी को ध्यान से पढ़िए, इसे यूएस नेवी सेंट्रल कमांड ने जारी किया है। यह हॉर्मुज में मौजूद सारे जहाजों के लिए है। अमेरिकन नेवी ने चेतावनी जारी की है कि ईरान के खतरनाक और गैर कानूनी कामों को रोकने के लिए जल्द ही बड़ा ऑपरेशन शुरू होने वाला है। हो सकता है कि जवाब में ईरान भी हमला करे, लिहाजा हॉर्मुज में जहाजों को मुश्किल हालातों के लिए तैयार रहना चाहिए। चेतावनी में जिन इलाकों में सतर्क रहने की बात कही गई है, उनमें अरब की खाड़ी, हॉर्मुज, ओमान की खाड़ी और उत्तरी अरब सागर शामिल है। संकेत साफ है, हॉर्मुज की लहरें अंदर से भी अशांत है और अब ऊपर से भी एक बार फिर शांति भंग होने के आसार बढ़ गए हैं। ईरान हर हाल में अमेरिका की नाकेबंदी को जल्द से जल्द हटाने की मांग कर रहा है और अमेरिका की मांग है कि टोल वसूली बंद की जाए और जहाजों की आवाजाही शुरू की जाए। इस बीच डील को लेकर अभी भी सस्पेंस बना हुआ है। ना तो हॉर्मुज को लेकर अभी कोई फैसला हुआ है और ना ही यूरेनियम को लेकर। अब आपको दिखाते हैं ईरान के लोग इस डील को लेकर क्या कह रहे हैं। यह है तेहरान का इनकलाब स्क्वायर। अमेरिका के खिलाफ और ईरान की लीडरशिप के साथ अपनी भावनाओं के इजहार के लिए हजारों लोग यहां इकट्ठा हुए हैं। हाथों में झंडे हैं, जुबां पर देशभक्ति के नारे हैं। जगह जगह ईरान के नेताओं की तस्वीरें हैं। इस भीड़ में सिर्फ उन्माद नहीं है, बल्कि अमेरिका को कोसने के लिए तथ्यों पर आधारित इनके अपने तर्क हैं।
1: این حرفی که میزنه درست باشه نشان دهنده اینه که محاصرش شکست خورده و اون چیزی که تو ذهنش بوده به وقوع نپیوسته، از پس ما نتونست بر بیاد و برای اینکه بیش از این ضایع نشه میگه که ما محاصره رو پایان میدیم. حالا بعد ببینیم چقدر داره درست میگه. اصلا من حتی میگم ما همون سال 2015 هم اشتباه کردیم، اون اورانیوم ها رو چند تن اورانیوم تحویل دادیم، بسیار اشتباه بود. اورانیوم غنی سازی شده ارزش مادی بالایی داره، هم معنوی هم مادی، حکم بخشی از خاک ماه. چرا باید بریم به اون؟ هیچ ربطی نداره، برای ماه، برای ملت یونانه و ما تصمیم میگیریم نخواهیم داد.
0: هرمز کو لیکر بھی لوگ ایک مت ہیں، یعنی هرمز فی الحال بند ہی رہے تو ایران کے لیے اچھا ہے.
2: حرف رهبرمونه، تنگه باید بسته بمونه تا وقتی که رهبرمون اعلام کنن. ما هم همینو میگیم.
0: هرمز پر خود ایران مشکلوں میں گھرا ہوا ہے. امریکی ناکے‌بندی کی وجہ سے اس کا لاکھوں ٹن تیل نریات نہیں ہو پا رہا ہے، لیکن یہ اکلوتا ایسا ہتھیار ہے جو 28 فروری سے شروع ہوئے مہایدھ میں اس کی طاقت بڑھاتا رہا ہے. ظاہر ہے وہ کسی بھی قیمت پر اس کا نینترن امریکی شرطوں پر نہیں چھوڑے گا. آج تک پیرول.
3: अब रुक रहे छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन होंगे हाजिर. आप देखते रहिए आज तक.

0: बंगाल के सोनारपुर में अभिषेक बैनर्जी पर हमले से बवाल, लोगों ने फेंके पत्थर अंडे कपड़े फाड़े, कहा मुझे मारने की थी साजिश, विपक्ष ने बीजेपी पर उठाए सवाल, सोमवार को ममता करेंगी प्रदर्शन। कर्नाटक के अगले मुख्यमंत्री होंगे डीके शिव कुमार, कांग्रेस विधायक दल की बैठक में चुने गए नेता 3 जून को 8 से 10 मंत्रियों के साथ ले सकते हैं शपथ। सीएम योगी का बड़ा बयान, कहा कि अहिंसा ही परम धर्म, लेकिन जब कोई देश समाज के लिए खतरा है तो अपनानी पड़ती है हिंसा की नीति, समाजवादी पार्टी बोली यूपी में बढ़ रहा है अपराध। गाजियाबाद में अंतर्राष्ट्रीय पैरा एथलीट चिराग त्यागी की हत्या, साथ ही खिलाड़ी पर गोली मारने का आरोप, अगले महीने जापान में खेलने वाले थे टूर्नामेंट। राजस्थान के कई शहरों में रेतीले तूफान से दहशत, धूल भरी आंधी से दिन में छाया अंधेरा, दिल्ली एनसीआर में बारिश से गिरा तापमान। बंगाल के सोनारपुर में अभिषेक बैनर्जी पर हमला हुआ, चुनावी हिंसा, एक पीड़ित से मिलने के लिए अभिषेक पहुंचे थे और इसी दौरान अभिषेक से हाथापाई हुई, उन पर अंडे फेंके गए और काफी देर तक बवाल मचता रहा।
1: जो अभिषेक बनर्जी पश्चिम बंगाल में सत्ता का केंद्र होते थे, आज उन्हें बीच सड़क पर पीटा जा रहा है। ये पश्चिम बंगाल की सियासत का रक्त चरित्र है। सत्ता बदली लेकिन नहीं बदली तो पश्चिम बंगाल में सियासी रंजिश की तस्वीर, जिसकी चपेट में ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी आ गए। बीच सड़क पर लोगों ने अभिषेक को जमकर पीटा, गुस्साई भीड़ ने अभिषेक बनर्जी पर अंडे फेंके, कपड़े फाड़ दिए। हालात इतने बिगड़ गए कि अभिषेक को हेलमेट पहनकर वहां से निकलना पड़ा।
2: दे वांट टू किल मी, दे वांट टू किल मी, एरा आमादेर प्राणे मारते चाहे, मेरे दिख अमर मृतदेह उद्धार हो केखान थेके, किन्तु आमी जायगा छेड़े जाबो ना।
1: अभिषेक बनर्जी विधानसभा चुनाव के बाद हुई हिंसा के पीड़ित लोगों और उनके परिवारों से मिलने के लिए सोनार गए थे, जहां उन पर यह हमला हुआ। अभिषेक ने इसे बीजेपी की साजिश बताया। उधर स्थानीय लोगों का दावा कि ये हमला किसी राजनीति से प्रेरित नहीं है, बल्कि ये उनका गुस्सा टीएमसी सरकार के खिलाफ है। इलाके में सरकार ने कोई विकास का काम नहीं किया, तो वहीं टीएमसी के कार्यकर्ताओं ने कई सालों तक गुंडागर्दी की, जिसे लेकर ये गुस्सा फूटा।
3: चोर को कैसे नारे, उसको क्या फूलों से स्वागत करेंगे, चोर को अंडा फेंक के मारेंगे। अभी तो हाँ, वो भी बहुत कम हो गया। वो ये राम जी की धरती है, वो राम जी की नाराबाजी करने के माना किया था बांग्लादेशी, वो खुद है, उसका जो मुख्यमंत्री पीसी है वो भी वो एक बांग्लादेशी है।
4: वो लोग भाया मारने का टाइम तो वहाँ भेजा नहीं, वहाँ भेजा है, एक तो डॉक्टर को मारा है वहाँ, तो उस टाइम वो भेजा नहीं, अभी एक तो चमचा मर गया, इसलिए भेजा है यहाँ, इसके लिए भेजा है, हमारा रास्ता देखता है आज 15 मौतों में, ये रास्ता कैसे चलता है, हम लोग बाल बच्चा कर लिए।
1: अभिषेक बनर्जी पर हुआ हमला एक बार फिर पश्चिम बंगाल में सियासी हिंसा को लेकर सवाल खड़े करता है। तपस सेन गुप्ता, दक्षिण 24 परगना, आज तक।
0: बिहार की राजनीति में सरकारी आवास को लेकर नया घमासान छिड़ गया है। पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी ने साफ संकेत दिए हैं कि वो 10 सर्कुलर रोड स्थित सरकारी आवास खाली करने के मूड में नहीं है, जबकि पिछले 6 महीनों में उन्हें लगातार नोटिस भेजे जा रहे हैं।
5: हम तो चाहते हैं कि सम्राट चौधरी पूरा बिहार के फोर्स बुला के आ, हमारा 10 नंबर खाली करा दे, हम नहीं खाली करेंगे, आवे हमारा सामने।
6: बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी ने बिहार सरकार को खुली चुनौती दी है कि वो अपना सरकारी आवास नहीं खाली करेंगी। पिछले 6 महीने से 10 सर्कुलर रोड आवास को खाली कराने के लिए नोटिस दिया जा रहा है, लेकिन राबड़ी के तेवर बताते हैं कि ये आवास बिहार की सियासत का नया अखाड़ा बनता जा रहा है।
7: अरे कहाँ, इसमें वो कह रही, इसमें तो जो कानून है, जो नियम है, उसके हिसाब से काम होता है और सब लोगों को नियम कानून का पालन करना चाहिए।
1: बिहार विधानसभा चुनाव खत्म होने के बाद 25 नवंबर 2025 को राबड़ी देवी को नया आवास 39 हार्डिंग रोड पर आवंटित किया गया। उस वक्त राबड़ी देवी को लेटर भी भेजा गया, लेकिन 6 महीना बीत जाने के बाद भी राबड़ी देवी ने 10 सर्कुलर रोड घर को खाली नहीं किया है। ये बंगला पशु संसाधन मंत्री नंद किशोर यादव का आवंटित है, जिसे लेकर राबड़ी देवी को 29 मई को नया नोटिस भेजा गया।
8: मैं तो कह रहा हूँ कि वो मुख्यमंत्री रहे हैं, 1-2 साल नहीं 7 साल रहे हैं, तो उनको तो कानून का पालन करना ही चाहिए। बयान निंदनीय है, ये टकराव का बयान है, आपत्तिजनक है, और क्या बात करते हैं, पूरे बिहार के फोर्स की जरूरत है, एक दरोगा जाके निकाल देगा।
1: राबड़ी देवी करीब 20 वर्षों से 10 सर्कुलर रोड आवास में रहती आई हैं। यह आवास काफी बड़ा है, इससे लालू परिवार की यादें भी जुड़ी हैं।
9: राबड़ी देवी जी, ये जंगल राज नहीं है, ये कानून का राज है, एनडीए की सरकार है। आपको इलाज कराना होता है तो सिंगापुर जाते हैं, पोता का जन्मदिन मनाना होता है तो दिल्ली नोएडा भागते हैं, और जब लूटने की बारी आती है तो बिहार में रहना चाहते हैं।
1: नवंबर 2005 में चुनाव हारने के बाद राबड़ी देवी को यह आवास आवंटित किया गया था। उस समय पूर्व मुख्यमंत्री को भी आवास आवंटित होता था, लेकिन जब 2019 में अपने आवास के मामले को लेकर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव पटना हाई कोर्ट गए, तब कोर्ट ने सख्त निर्देश दिया था कि कोई भी पूर्व मुख्यमंत्री या पूर्व उप मुख्यमंत्री पद से हटने के बाद सरकारी बंगला नहीं रख सकता। इसके बाद से 10 सर्कुलर रोड राबड़ी देवी को बिहार विधान परिषद के नेता प्रतिपक्ष के रूप में आवंटित किया गया, जिसे अब उन्हें खाली करना होगा। शशि भूषण, पटना आज तक।
0: अब आते एनटीए की, जिसकी भूमिका पर एक बार फिर सवाल खड़े हो रहे हैं। एनटीए की ओर से आयोजित सीयूईटी यूजी परीक्षा में एक बार फिर तकनीकी खराबी का मामला सामने आया।
10: अभी निकल के आना 2 घंटे।
11: परीक्षा केंद्र के बाहर मचा ये हंगामा एक बार फिर एनटीए के कामकाज पर सवाल खड़े कर रहा है। आज सीयूईटी यूजी परीक्षा के केंद्रों पर तकनीकी खराबी की शिकायत आई, जिसके बाद सुबह 9 बजे शुरू होने वाली परीक्षा कई केंद्रों पर करीब 11:23 पर शुरू हुई। वहीं एनटीए ने दोपहर की शिफ्ट का टाइम भी बदल दिया, जिसके चलते अभ्यर्थियों और अभिभावक परेशान नजर आए। अब एनटीए इस पर माफी मांग रहा है, तो वहीं विपक्ष एक बार फिर एनटीए की भूमिका पर सवाल खड़े कर रहा है। 4 परीक्षाएं, 1 करोड़ बच्चे, एक भी ईमानदारी से नहीं हो पाई। दावे विश्व गुरु के, मगर देश में 1 परीक्षा नहीं करवा सकते। मोदी जी ने पूरी शिक्षा व्यवस्था तबाह कर दी है। जिस पीढ़ी का भविष्य आप बर्बाद कर रहे हैं, वही पीढ़ी आपका हिसाब करेगी।
12: ये देखने में आ रहा है कि एनटीए ने सीयूईटी टेस्ट का भी मजाक बना के रख दिया है। सीयूईटी टेस्ट में करीब 18 लाख बच्चे अलग अलग यूनिवर्सिटीज में बैठने के लिए टेस्ट देते हैं। आज सेंटर पे पहुंचे, उनका टाइम बदल दिया गया, किसी का सेंटर बदल दिया जा रहा है, किसी की डेट बदल दी जा रही है। ऐसी डेट पे एग्जाम दे दिए जाते हैं जिसमें वो सेंटर फ्री नहीं है। पूरा का पूरा मिसमैनेजमेंट है।
11: उधर सरकार के नीट पेपर में सेना की मदद के फैसले पर भी विपक्ष सवाल खड़े कर रहा है।
13: कल हमारे देश की सरकार ने ऐलान किया है कि अब नीट के पेपर को लीक होने से बचाने के लिए एयरफोर्स के जहाज से उसको ट्रांसपोर्ट करेंगे, एयरफोर्स के बुलेट प्रूफ ट्रकों से उसको ट्रांसपोर्ट करेंगे। मजाक बना रखा है, हमें बेवकूफ समझ रखा है।

0: बहरहाल परीक्षाओं को लेकर एनटीए पूरी तरह फेल नजर आ रहा है, जहां उसकी नाकामी एक बार फिर आज सीयूईटी यूजी के पेपर में खुलकर सामने आ गई। आज तक ब्यूरो।
1: यूपी के जहां गाजियाबाद में एक शख्स की हत्या, उसके बाद हिंदू मुस्लिम का इसने रंग रूप ले लिया। परिवार का आरोप है कि बकरीद के बहाने बुलाकर बेटे की हत्या कर दी गई।
2: आज माफिया पिस्तौल लहराते हुए कोई धमका करके खुली जीप में चल करके किसी हिंदू को धमका नहीं सकता है। जन्माष्टमी हो, रक्षाबंधन हो, इन आयोजनों में अगर किसी ने व्यवधान डाला तो पर्व तो मनाई लेगा, लेकिन उसके बाद ये तय है कि रावण और कंस जैसी दुर्गति उसकी तय है जो व्यवधान डालने वाला है।
3: उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का यह बयान ऐसे समय आया जब 17 साल के हिंदू युवक की हत्या कर दी गई। गाजियाबाद के खोड़ा थाना क्षेत्र में सूर्या की बकरीद की शाम चाकुओं से गोद कर बेरहमी से हत्या कर दी जाती है और इल्जाम लगा सूर्या के ही मुस्लिम दोस्तों पर। हत्या के बाद गाजियाबाद के खोड़ा इलाके में तनाव है, पुलिस अलर्ट पर है। इस बीच लखनऊ में मुख्यमंत्री ने यूपी की कानून व्यवस्था पर अपनी सरकार के मॉडल का जिक्र एक बार फिर किया।
2: अहिंसा परमो धर्म, धर्म हिंसा तथैव च, यानी सामान्य जीवन में अहिंसा ही सर्वोच्च धर्म होना चाहिए, लेकिन अगर सामने वाला देश और समाज की सुरक्षा के लिए खतरा है तो उसके लिए अहिंसा नहीं चल सकती है, उसके लिए तो हिंसा ही हमें अंततः अपनानी पड़ेगी।
3: तो फिर गाजियाबाद की घटना कैसे हो गई? योगी सरकार के अपराध नियंत्रण के दावों पर यह घटना कितना बड़ा सवाल है। क्या यूपी की राजनीति में 2027 विधानसभा चुनाव के लिए नया नैरेटिव तैयार हो रहा है? गाजियाबाद में जिस शख्स पर 28 मई को चाकुओं से वार किया गया, उसने 29 मई को दम तोड़ा। इसी दिन यानी 29 मई को मऊ में मुख्यमंत्री ने दावा किया कि उनके राज में कोई हिंदुओं को धमका नहीं सकता।
2: आज माफिया पिस्तौल लहराते हुए कोई धमका करके खुली जीप में चल करके किसी हिंदू को धमका नहीं सकता है।
3: यूपी की कानून व्यवस्था पर मुख्यमंत्री योगी के 48 घंटे में दो बड़े बयान आए हैं। 29 मई को मुख्यमंत्री ने कहा कि आज माफिया किसी हिंदू को खुलेआम धमका नहीं सकता। 30 मई को मुख्यमंत्री ने कहा कि खतरा हो तो हिंसा भी अपनानी पड़ती है। एक तरफ अपराध पर सख्त कार्रवाई का दावा, दूसरी तरफ हिंसा पर राजनीतिक बहस। समाजवादी पार्टी कह रही है कि गाजियाबाद की घटना को हिंदू मुसलमान से ना जोड़ा जाए।
4: जिन लोगों ने भी अपराध किया है, चाहे वो किसी धर्म किसी जात के हों, उन पे कार्रवाई होनी चाहिए, सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, कानून के मुताबिक कार्रवाई होनी चाहिए। उत्तर प्रदेश में लगातार अपराध रुक नहीं रहे हैं, चाहे वो राजधानी लखनऊ की बात हो। अभी 3 दिन पहले एक प्रॉपर्टी डीलर को भी हत्या कर दी गई, अब ये गाजियाबाद की घटना है। लगातार उत्तर प्रदेश में हत्याएं हो रही हैं, लूट हो रहे हैं, बलात्कार हो रहे हैं, और भारतीय जनता पार्टी की सरकार कानून व्यवस्था देने में पूरी तरह से विफल है।
3: 2027 का रास्ता लखनऊ से नहीं बल्कि ऐसी घटनाओं पर जनता की प्रतिक्रिया से भी तय होगा, इसलिए चुनावी नैरेटिव को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष अपने अपने हिसाब से परिभाषा गढ़ते हैं। क्या अपराध का धर्म होता है या फिर हर बड़ी वारदात के बाद राजनीति धर्म का चश्मा पहन लेती है? इस बीच उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य कहते हैं कि हत्या करने वालों को फांसी के तख्ते पर चढ़ाने के लिए कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
5: प्यारा कोई भी हो, वो बक्सा नहीं जाएगा, उसको खोज निकाला जाएगा और हत्या करने वाले को फांसी पर चढ़ाने के लिए जो कार्रवाई होती है कानूनी, वो कानूनी कार्रवाई की जाएगी। सरकार कानून व्यवस्था को लेकर के बहुत गंभीर है और जिन लोगों ने ऐसा अपराध किया उनके खिलाफ कठोर से कठोर कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

0: योगी सरकार में सहयोगी पार्टी के मंत्री अखिलेश यादव से चुभते हुए सवाल पूछते हैं, उनके पीडीएस समीकरण पर वार करते हैं।
1: अखिलेश यादव जी को उस पर बोलना चाहिए कि उनके वोटर हैं, उन लोग ऐसी हत्या क्यों कर रहे हैं, कहीं मुसलमान मार रहा है तो कहीं यादव मार रहा है। उनका MOI जो फैक्टर है इस समय पूरे प्रदेश में आतंक मचाया हुआ है। बोलते हैं पीडीए इनका असफल है सिर्फ MOI फैक्टर को दबाने के लिए, लोगों का दिमाग भटकाने के लिए कि हमको सिर्फ MOI कहा जाता था, इस नाते पीडीए चिल्ला रहे हैं।
0: गाजियाबाद की घटना उत्तर प्रदेश की राजनीति को उस चौराहे पर लाकर खड़ा कर देती है जहां सरकार अपने दावे गिनाती है और विपक्ष जमीन की हकीकत दिखाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन सवाल है, क्या यूपी में जनता सुरक्षित महसूस करती है?
2: बात दिल्ली के जहांगीरपुर में हुए मर्डर की, जहां बकरीद की रात मामूली सा विवाद एक युवक की मौत की वजह बन गया।
3: दिल्ली में सिगरेट को लेकर विवाद में युवक की हत्या। सिगरेट लाने से मना किया तो चाकू मार दिया। सुनने में भले ही यह हैरानी भरा लगे, लेकिन इस वारदात ने एक शख्स की जान ले ली। बकरीद के मौके पर जब 26 साल के अरबाज के घर त्योहार की खुशियां थी, इस वारदात के बाद चीख पुकार मच गई। पुलिस के मुताबिक रात 11 बजे के करीब अरबाज अपने घर के पास ही मौजूद था। इसी दौरान इलाके के कुछ लड़कों के साथ उसकी कहासुनी हुई, जो देखते ही देखते हिंसक झड़प में बदल गई। इसके पीछे की जो वजह सामने आई है वो भी बेहद हैरानी भरी है।
4: उस टाइम पे कुछ नहीं हुआ था, एक सिगरेट मंगाने का विवाद था कि सिगरेट लाके दो। तो उन्होंने बोला तेरे बाप का नौकर हूँ क्या, तेरे क्या तू जाके लिया, तू क्या बदमाश है क्या। तो उन्होंने बोला चल ठीक है। फिर इतने में उन्होंने अपने दोस्तों को फोन मिलाया, उस लड़के ने 7-8 लोंडे आ गए। इस बात को लेकर उन्होंने उसको मार दिया कि तूने हमसे ऐसा क्यों कहा।
3: विवाद के बाद जब अरबाज को लड़कों ने घेरा तो उसने मदद के लिए अपने भाई को बुलाया। भाई के सामने ही आरोपियों ने अरबाज की हत्या कर दी।
5: अरबाज का बड़ा भाई था, अरबाज ने मेरे पास फोन करा रात में पूरे 10:59 पर कि भाई ऐसे ऐसे बात है, मेरे को लड़कों ने घेर रखा है, जल्दी से इधर आ जा गली के बाहर। मैं भागते हुए गया, जाके देखा तो उस टाइम पे ना इस पे सब सवार हुए पड़े थे लड़के, जो लड़के थे सब सवार हुए पड़े थे। ये 5-6 लड़के थे। उसी बीच में आवाज आती है कि चाकू निकाल, उसी बीच में आवाज आती है चाकू निकाल। अब जब चाकू निकालने की आवाज आती है तो मेरे भाई को ना गेट है हमारी गली के बाहर उसमें घुसा दिया। तो मैं गया, मैंने पीछे से पकड़ के खींचा उसे, लड़कों को 2-3 लड़के उस पर चढ़े पड़े थे। जैसे मैंने उन्हें खींचा तो एक लड़का साइड में से निकल के गया, वो इतने में जाके उसके चाकू मार।
3: अरबाज जहांगीरपुरी के सी ब्लॉक का रहने वाला था और इलाके में ही एक सुनार की दुकान पर काम करता था। युवक की मौत के बाद घर में मातम है और इलाके में तनाव। पुलिस ने स्थानीय लोगों और चश्मदीदों से पूछताछ के आधार पर 3 नाबालिगों को हिरासत में लिया है। उनसे पूछताछ की जा रही है और वारदात में उनकी भूमिका की जांच हो रही है। आज तक ब्यूरो।
2: अब बात राजस्थान के, जहां पर मौसम की खौफनाक तस्वीर देखने को मिली। रेतीले तूफान ने राजस्थान के 5 जिलों को अपनी चपेट में ले लिया। आसमान में चारों ओर धूल का गुबार दिखाई दिया और इस पूरे धूल के गुबार ने पूरे शहर में अंधेरा सा कर दिया।
6: एक आम रिहायशी इलाका और सामने से आया रेत का बवंडर मानो पूरे शहर को अपने आगोश में ले लेना चाहता हो। यह हैरान करने वाली तस्वीरें राजस्थान के चुरू की है। रेत का गुब्बार धीरे धीरे शहर की ओर बढ़ता है, आसमान में सिर्फ धूल ही धूल नजर आती है। फिर शहर की गलियां, सड़क, घर, छत, हर कहीं ये धूल कब्जा करने लगती है। दिन में अंधेरा छाने लगता है। तूफान के कारण दिन में लोगों को वाहनों की हेडलाइट जलानी पड़ गई।
7: इस सीजन का जबरदस्त आंधी तूफान भयंकर है, उसमें मेरे हिसाब से लाखों करोड़ों का सरकार का नुकसान हुआ है और उसके बाद में जबरदस्त बारिश और पेड़ों का गिरना, बिजली का नुकसान होना बहुत ही जबरदस्त, मतलब इस मौसम में जो आंधी आई है बहुत ही जबरदस्त आई है।
8: और इस तूफान में आज आपको देखने को मिला कि मतलब कि तूफान की में आंधी काफी भयंकर थी, धूल भरी आंधी थी, जिसके कारण पेड़ है और भी बहुत सारे पक्षी वगैरह काफी इनका नुकसान हुआ।
6: इसके कई वीडियो सामने आए हैं, इनमें लोग भागकर घरों में जाते दिखे और घरों को बंद कर दिया। इस दौरान 60-80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आंधी चली, जो करीब 30 मिनट तक इलाके में कोहराम मचाती रही। हालांकि तूफान की ऊंचाई का आधिकारिक आंकड़ा सामने नहीं आया है। इस रेतीले तूफान ने राजस्थान के 5 जिलों को अपनी चपेट में ले लिया। श्री गंगानगर, बीकानेर, चुरू, हनुमानगढ़ और सीकर के आसमान में रेत का गुब्बार देखने को मिले। करीब 200 वर्ग किलोमीटर का इलाका इससे प्रभावित नजर आया।
9: रेत का बाउंडर बहुत भारी और बहुत खतरनाक था। मैंने अपनी जिंदगी 15-20 सालों में कभी ऐसा माहौल नहीं देखा था और दिन में एकदम अंधी आई ऐसे तो मानो साफ हो गई। ये कहीं ना कहीं अपने प्रकृति से जो पर्यावरण पौधे अपने काट रहे हैं और ये खिलवाड़ कर रहे हैं, इसके लिए अपने सजग रहने की जरूरत है।
10: एकदम से बिल्कुल काला काला हो गया सिस्टम, जैसे रात हो गई होती एकदम से। इतनी तेज अंधेरी थी, उसका जो किलोमीटर के हिसाब से बताया गया था वो 80-90 किलोमीटर के हिसाब से उसका विंड का बताया गया था और एकदम से फुल अंधेरी थी। और जहाँ पर जो दरखत है छोटे छोटे वो इन्हें लगे, कुछ दरखत है वो टूट भी गए थे।
6: पाकिस्तान से उठे इस तूफान ने रेगिस्तान का मौसम पूरी तरह से बदल दिया। आज तक ब्यूरो।
2: बीते 2 दिनों से बदले मौसम से उत्तर भारत के लोगों को प्रचंड गर्मी की मार से राहत मिली। कई इलाकों में तेज हवाएं चले, कई इलाकों में भारी बारिश हुई। मौसम विभाग ने अब 1-2 दिनों तक मौसम में बदलाव के ही संकेत जारी किए हैं और कई इलाकों में बारिश की संभावना व्यक्त की है।
11: लेकर उत्तराखंड, हिमाचल से लेकर कश्मीर, यूपी, बंगाल और छत्तीसगढ़ तक मौसम का ऐसा रौद्र रूप देखने को मिला कि जनजीवन पूरी तरह अस्त व्यस्त हो गया। सबसे पहले बात राजस्थान की, यहाँ जयपुर में तेज बारिश और ओलावृष्टि ने शहर की रफ्तार पर ब्रेक लगा दिया। धौलपुर में 1.5 घंटे की मूसलाधार बारिश ने हालात बिगाड़ दिए। सड़कें, कॉलोनियां और गली मोहल्ले पानी में डूब गए। अब बात उत्तराखंड की, यहाँ देहरादून में तेज बारिश ने मौसम बदल दिया लेकिन शहर की रफ्तार थम गई। टिहरी गढ़वाल में बारिश और भारी ओलावृष्टि ने किसानों की कमर तोड़ दी। वहीं धनौल्टी में देर रात आए तूफान ने भारी तबाही मचाई। 20-30 देवदार के पेड़ गिर गए, इको पार्क की टेंट शेड उड़ गई और बर्मा ब्रिज पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। बागेश्वर में लगातार बारिश के बाद नदियां उफान पर आ गईं। गोमती नदी पर बने बैजनाथ बैराज के गेट खोलने पड़े और प्रशासन ने सायरन बजाकर लोगों को अलर्ट किया। जम्मू कश्मीर की श्रीनगर गुलमर्ग रोड पर तेज आंधी से कई पेड़ उखड़ गए, सड़कें बंद करनी पड़ी और ट्रैफिक रोक दिया गया। बात उत्तर प्रदेश की करें तो आगरा में तेज आंधी और तूफान के साथ झमाझम बारिश हुई, पेड़ गिर गए, टिन शेड उड़ गए और कई इलाकों में जलभराव से ट्रैफिक थम गया। मौसम विभाग ने आने वाले दिनों में और आंधी बारिश की चेतावनी दी है। आज तक ब्यूरो।
2: अब रुख करते हैं मिडिल ईस्ट की ओर। अगर अमेरिका और ईरान डील के इतने ही करीब हैं तो दोनों के सुर अलग अलग क्यों हैं? आखिर क्यों अमेरिका लगातार कह रहा है कि वो समझौते के बेहद करीब है जबकि ईरान आधिकारिक तौर पर इस पर चुप्पी साधे हुए है।
12: डील पर अमेरिका और ईरान के जुदा हैं बयान, सुर अलग हैं तो फैसला कैसे एक होगा? सस्पेंस भारी, आ रही है बम बरसाने की बारी। क्या अमेरिका और ईरान में सच में कुछ ही घंटों में डील होने वाली है या फिर महायुद्ध पार्ट 2 जल्द शुरू होने वाला है? कहने को तो अमेरिका की टॉप लीडरशिप हर दिन ये उम्मीद जगा रही है कि वो डील के बेहद करीब है।
13: That we're able to get to a final agreement here. We're reopening the Straits of Hormuz. We've already decimated their conventional military, and we're in a position where we could substantially set back their nuclear program, not just during the term of this president, but over the long term. That's a very, very good thing for the American people. So we're not there yet, but we're very close. We're going to keep on working at it. Thank you, guys. Have a good evening.
12: राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति ही नहीं, रक्षा मंत्री भी हर जगह जाकर यही कह रहे हैं कि डील जल्द ही होने वाली है और ये एक शानदार डील होगी। लेकिन सिंगापुर जाने से पहले रक्षा मंत्री ईरान को धमकी भी देकर गए हैं, यानी अमेरिका को भी ये अंदेशा तो है कि हो सकता है कि डील उनके मुताबिक ना हो और एक बार फिर रणभूमि में उतरना पड़े।
14: And when you do your job, the adversaries know what's coming for them. And that's when they either step up and meet the fury of the American military or back down and you create a whole bunch of options for America. of the president with what he wants to execute on behalf of the American people. So right now, hey, Iran has a choice. Meet at the table with the president and give up their nuclear program. And as the president said, I'm lost on time, 2 days ago now, in the cabinet meeting, I'm sitting right next to him. He looks in the camera and says, well, Iran can either do it the right way with a deal across the table, or they can deal with my guy on the left. That happened to be me. But it's not me. It's you guys. It's what you're ready to do. It's what the...
12: लेकिन ईरान की तरफ से कोई ऐसे संकेत नहीं मिल रहे हैं। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल भगाई ने सरकारी मीडिया से बातचीत में कहा है कि होर्मुज पर फैसला ईरान और ओमान को लेना चाहिए और इसे खोलने का फैसला भी अमेरिका नाकेबंदी हटने के बाद ही होना चाहिए। जो भी हो, डील को लेकर हलचल तो लगातार बढ़ रही है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सिचुएशन रूम में 2 घंटे तक अहम मीटिंग की है। इस मीटिंग में ईरान के साथ डील को लेकर कई पहलुओं पर बात की गई। मीटिंग में ट्रंप ने साफ कहा कि किसी भी कीमत पर ईरान को परमाणु बम बनाने की इजाजत नहीं दी जा सकती। उसके अलावा उसे होर्मुज को बिना टोल बंदी के खोलना ही पड़ेगा। ईरान की न्यूज एजेंसी फोर्स के मुताबिक ईरान का मानना है कि ट्रंप मनगढ़ंत जीत को दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। इसके अलावा ईरानी अधिकारियों के हवाले से ये भी दावा किया गया है कि डील में एटमी मुद्दे का जिक्र नहीं है। लेकिन ईरान की 12 बिलियन अमेरिकी डॉलर की पीस संपत्ति छोड़ने का समझौता जरूर है। अभी ट्रंप ने डील के बारे में अंतिम फैसला नहीं लिया है। अगर ट्रंप ने समझौते पर मुहर लगा दी तो 60 दिन के लिए सीजफायर का ऐलान किया जा सकता है ताकि होर्मुज को खोलने की प्रक्रिया शुरू की जा सके। आज तक ब्यूरो।
2: उसको लेकर बातें कितनी भी हो रही हो, लेकिन सच है कि अमेरिका और ईरान दोनों ही इस मुद्दे पर अड़े हैं। कहने को अमेरिकी नाकेबंदी चरणबद्ध तरीके से हट जाएगी, लेकिन यूएस नेवी की ताजा चेतावनी ने हालात हाहाकारी होने के संकेत दिए हैं।

0: डील पर काम तेज, कहां फंसा है पेच। हॉर्मुज में यूएस का प्रण, ईरान के खिलाफ आखिरी रण। जहाजों को चेताया, समंदर में आने वाला है बवंडर। इस चेतावनी को ध्यान से पढ़िए, इसे यूएस नेवी सेंट्रल कमांड ने जारी किया है। यह हॉर्मुज में मौजूद सारे जहाजों के लिए है। अमेरिकन नेवी ने चेतावनी जारी की है कि ईरान के खतरनाक और गैर कानूनी कामों को रोकने के लिए जल्द ही बड़ा ऑपरेशन शुरू होने वाला है। हो सकता है कि जवाब में ईरान भी हमला करे, लिहाजा हॉर्मुज में जहाजों को मुश्किल हालातों के लिए तैयार रहना चाहिए। चेतावनी में जिन इलाकों में सतर्क रहने की बात कही गई है, उनमें अरब की खाड़ी, हॉर्मुज, ओमान की खाड़ी और उत्तरी अरब सागर शामिल है। संकेत साफ है, हॉर्मुज की लहरें अंदर से भी अशांत है और अब ऊपर से भी एक बार फिर शांति भंग होने के आसार बढ़ गए हैं। ईरान हर हाल में अमेरिका की नाकेबंदी को जल्द से जल्द हटाने की मांग कर रहा है और अमेरिका की मांग है कि टोल वसूली बंद की जाए और जहाजों की आवाजाही शुरू की जाए। इस बीच डील को लेकर अभी भी सस्पेंस बना हुआ है। ना तो हॉर्मुज को लेकर अभी कोई फैसला हुआ है और ना ही यूरेनियम को लेकर। अब आपको दिखाते हैं ईरान के लोग इस डील को लेकर क्या कह रहे हैं। यह है तेहरान का इनकलाब स्क्वाड। अमेरिका के खिलाफ और ईरान की लीडरशिप के साथ अपनी भावनाओं के इजहार के लिए हजारों लोग यहां इकट्ठा हुए हैं। हाथों में झंडे हैं, जुबां पर देशभक्ति के नारे हैं। जगह जगह ईरान के नेताओं की तस्वीरें हैं। इस भीड़ में सिर्फ उन्माद नहीं है, बल्कि अमेरिका को कोसने के लिए तथ्यों पर आधारित इनके अपने तर्क हैं।
1: اگر این حرفی که میزنه درست باشه نشان دهنده اینه که محاصرش شکست خورده و اون چیزی که تو ذهنش بوده به وقوع نپیوسته، از پس ما نتونست بر بیاد و برای اینکه بیش از این ضایع نشه میگه که ما محاصره رو پایان میدیم. حالا بعد ببینیم چقدر داره درست میگه. اصلا من حتی میگم ما همون سال 2015 هم اشتباه کردیم، اون اورانیوم ها رو چند تن اورانیوم تحویل دادیم، بسیار اشتباه بود. اورانیوم غنی سازی شده ارزش مادی بالایی داره، هم معنوی هم مادی. حکم بخشی از خاک ماه، چرا باید بریم به اون؟ هیچ ربطی نداره، برای ماه، برای ملت یونانه و ما تصمیم میگیریم. نه نخواهیم داد.
0: هرمز کو لیکر بھی لوگ ایکمت ہیں، یعنی هرمز فیلال بندی رہے تو ایران کے لیے اچھا ہے.
2: حرف رهبرمونه، تنگه باید بسته بمونه تا وقتی که رهبرمون اعلام کنن ما هم همین رو میگیم.
0: هرمز پر خود ایران مشکلوں میں گھرا ہوا ہے. امریکی ناکےبندی کی وجہ سے اس کا لاکھوں ٹن تیل نریات نہیں ہو پا رہا ہے، لیکن یہ اکلوتا ایسا ہتھیار ہے جو 28 فروری سے شروع ہوئے مہا یدھ میں اس کی طاقت بڑھاتا رہا ہے. ظاہر ہے وہ کسی بھی قیمت پر اس کا نینترن امریکی شرطوں پر نہیں چھوڑے گا. آج تک پیرو.
3: अब रुक रहे छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन होंगे हाजिर. आप देखते रहिए आज तक.

0: बंगाल के सोनारपुर में अभिषेक बैनर्जी पर हमले से बवाल, लोगों ने फेंके पत्थर अंडे कपड़े फाड़े, कहा मुझे मारने की थी साजिश, विपक्ष ने बीजेपी पर उठाए सवाल, सोमवार को ममता करेंगी प्रदर्शन। कर्नाटक के अगले मुख्यमंत्री होंगे डीके शिव कुमार, कांग्रेस विधायक दल की बैठक में चुने गए नेता, 3 जून को 8 से 10 मंत्रियों के साथ ले सकते हैं शपथ। सीएम योगी का बड़ा बयान, कहा कि अहिंसा ही परम धर्म, लेकिन जब कोई देश समाज के लिए खतरा है तो अपनानी पड़ती है हिंसा की नीति, समाजवादी पार्टी बोली यूपी में बढ़ रहा है अपराध। गाजियाबाद में अंतर्राष्ट्रीय पैरा एथलीट चिराग त्यागी की हत्या, साथी खिलाड़ी पर गोली मारने का आरोप, अगले महीने जापान में खेलने वाले थे टूर्नामेंट। राजस्थान के कई शहरों में रेतीले तूफान से दहशत, धूल भरी आंधी से दिन में छाया अंधेरा, दिल्ली एनसीआर में बारिश से गिरा तापमान। बंगाल के सोनारपुर में अभिषेक बैनर्जी पर हमला हुआ, चुनावी हिंसा, एक पीड़ित से मिलने के लिए अभिषेक पहुंचे थे और इसी दौरान अभिषेक से हाथापाई हुई, उन पर अंडे फेंके गए और काफी देर तक बवाल मचता रहा।
1: जो अभिषेक बनर्जी पश्चिम बंगाल में सत्ता का केंद्र होते थे, आज उन्हें बीच सड़क पर पीटा जा रहा है। ये पश्चिम बंगाल की सियासत का रक्त चरित्र है। सत्ता बदली लेकिन नहीं बदली तो पश्चिम बंगाल में सियासी रंजिश की तस्वीर, जिसकी चपेट में ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी आ गए। बीच सड़क पर लोगों ने अभिषेक को जमकर पीटा, गुस्साई भीड़ ने अभिषेक बनर्जी पर अंडे फेंके, कपड़े फाड़ दिए। हालात इतने बिगड़ गए कि अभिषेक को हेलमेट पहनकर वहां से निकलना पड़ा।
2: दे वांट टू किल मी एरा आमादेर प्राणे मारते चाहे, मेरे दिख अमर मृतदेह उद्धार हो केखान थेके, किंतु आमी जायगा छेड़े जाबो ना।
1: अभिषेक बनर्जी विधानसभा चुनाव के बाद हुई हिंसा के पीड़ित लोगों और उनके परिवारों से मिलने के लिए सोनार गए थे, जहां उन पर यह हमला हुआ। अभिषेक ने इसे बीजेपी की साजिश बताया। उधर स्थानीय लोगों का दावा कि ये हमला किसी राजनीति से प्रेरित नहीं है, बल्कि ये उनका गुस्सा टीएमसी सरकार के खिलाफ है। इलाके में सरकार ने कोई विकास